0: क्या शार्प शूटरों के निशाने पर भेज शुभेंदु? किसने दी सुपारी? कौन है मास्टरमाइंड? दिन बुधवार, वक्त रात के 10:30 बजे, जगह मध्यम ग्राम। रात के अंधेरे में पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। चंद सेकंड में सबसे सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देकर कातिल मौके वारदात से फरार हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की डेड बॉडी। इस हत्याकांड ने बंगाल में चुनावी हिंसा के काले इतिहास में एक खौफनाक अध्याय जोड़ दिया, क्योंकि चंद्रनाथ हत्याकांड फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा है और हत्याकांड की टाइमिंग भी बहुत अहम है। यानी बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के कुछ घंटों के बाद मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार शुभेंदु के पीए की हत्या।
1: ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक गाड़ी जिसको यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया, इसी गाड़ी के माध्यम से चंद्रनाथ का रास्ता जो है वो रोका गया। लगभग 10 बजे के आसपास जब चंद्रनाथ अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, तब इस गाड़ी के माध्यम से उनका रास्ता रोककर उनसे आगे का रास्ता यानी कि आसपास किस इलाके में जाने का रास्ता पूछा गया। और जैसे ही चंद्रनाथ की गाड़ी यहाँ पर रुकती है, उन पर 10 से भी ज्यादा राउंड की फायरिंग की जाती है। और अब इस फायरिंग में चंद्रनाथ की हत्या हो चुकी है। उनके साथ उनके एक सहयोगी गाड़ी में बैठे हुए थे, वो इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं। और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो गहनता से की जा रही है।
0: शुरुआती जांच में हत्याकांड की कड़ियां एक गहरी साजिश से जुड़ रही हैं, क्योंकि प्रोफेशनल शार्प शूटरों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक और कार का इस्तेमाल। शार्प शूटरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से चंद्रनाथ पर फायरिंग की। शार्प शूटरों ने विदेशी ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया। चंद्रनाथ की एक एक मूवमेंट को शार्प शूटर्स ने ट्रैक किया। हूबहू फिल्मी स्टाइल में चंद्रनाथ को मौत के घाट उतारा। चश्मदीदों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ अपनी सफेद रंग की स्कॉर्पियो से घर के लिए निकले थे। वो कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर लौट रहे थे, जिसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर है। चंद्रनाथ अपने घर से चंद मीटर की दूरी पर थे, तभी स्लेटी रंग की इसी कार ने चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो को ओवरटेक करके रास्ता रोका। गाड़ी चला रहा ड्राइवर और चंद्रनाथ कुछ समझते उससे पहले ही बाइक पर सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कातिलों ने चंद्रनाथ को करीब से गोली मारी ताकि जिंदा बचने का कोई चांस न रहे। यानी कातिल तय करके आए थे कि चंद्रनाथ किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल मौके पर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जारी हिंसा के बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से पूरा प्रदेश उबल उठा। आनन फानन में बंगाल पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में कातिलों से जुड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा।
2: हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो फोर व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है।
0: चंद्रनाथ हत्याकांड का सच साजिश की कई परतों में लिपटा हुआ है। नंबर एक, चंद्रनाथ हत्याकांड का मकसद क्या है? नंबर दो, प्रोफेशनल शूटरों को किसने सुपारी दी? नंबर तीन, चंद्रनाथ की मौत से किसका फायदा? नंबर चार, क्या शुभेंदु से बदला लेने के लिए मारा? नंबर पाँच, परफेक्ट मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है? हत्या से चंद घंटे पहले चंद्रनाथ की अपने दोस्त कासिम अली से फोन पर बात हुई थी। कासिम को चंद्रनाथ ने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन किसे पता था मुलाकात से पहले ही चंद्रनाथ को बेमौत मार दिया जाएगा।
3: जो सफलता चंद्रोदय का नेतृत्व में भवानीपुर में चुनाव में मिला है, ममता बनर्जी साइन नहीं पाया, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने उसको जान से मार दिया हमारा दादा को।
4: क्या और भी कोई टारगेट पे था?
3: टारगेट तो शुभेंदु दा था।
0: चंद्रनाथ के दोस्त कासिम हत्याकांड के पीछे सियासी एंगल देख रहे हैं, तो चंद्रनाथ के घर वालों का आरोप भी यही है।
5: আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাব যে আমার ছেলের মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটত।
0: বঙ্গাল পুলিশ কি কই টিমে কাতলো কো সরগর্মি সে তালাশ রহি হ্যায়। কুছ সন্দিগ্ধো কি গিরফতারি ভি হুই হ্যায়। लेकिन जांच टीम का माथा उस वक्त ठनका जब हत्या में इस्तेमाल कार और बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट का खुलासा हुआ। पुलिस को शक है कि हत्याकांड में एक कार और कम से कम दो बाइक का इस्तेमाल किया गया। कार को कातिल मौके पर छोड़ गए जबकि कार चला रहा हमलावर बाद में बाइक से भागा। मौके से बरामद कार का नंबर है WB74AK2270। नंबर की जांच की गई तो पता चला कि कार सिलीगुड़ी के रहने वाले जेम्स विलियम्स की है और उनकी कार घर में मौजूद थी, यानी हत्या में इस्तेमाल कार का नंबर फर्जी है। जेम्स के मुताबिक चंद दिनों पहले उन्होंने अपनी कार बेचने का पोस्ट एक वेबसाइट पर डाला था। संभव है कातिलों ने उसी पोस्ट के जरिए कार का नंबर हासिल किया। ठीक ऐसे ही हत्या में इस्तेमाल बाइक का नंबर पुलिस के हाथ लगा। बाइक पश्चिम बुर्दवान RTO में विभाष कुमार भट्टाचार्य के नाम पर दर्ज है, जिनका पता है क्वार्टर नंबर AB7/12 गुरुद्वारा रोड बर्नपुर हीरापुर वेस्ट बंगाल। नंबर की जांच की गई तो पता चला इस नाम का कोई भी शख्स मौके पर नहीं रहता।
6: सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फोन आया, उसके बाद हम लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी के लिए लेके गया और सारा जो भी इंक्वायरी करना था किया, गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया, उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर
7: वैसा तो इस क्वार्टर में नहीं, सब तो नए हैं सब।
8: मेरे पाड़ा में कोई है जो पुराना है?
7: पुराना नहीं है।
0: सुनियोजित साजिश के तहत चंद्रनाथ की हत्या की गई। हत्या से पहले कातिलों ने रेकी की थी। अब बंगाल पुलिस कातिलों के चेहरे को बेनकाब करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जांच टीम का कहना है कि कातिलों से जुड़े कुछ सुराग हाथ लगे हैं। बहुत जल्द इस हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा खुलासा होगा। सवाल यही है कि बंगाल की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले कातिलों का सच क्या है? क्या हत्या के पीछे सियासी एंगल है या फिर वजह कुछ और है? पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
9: और अब आपको दिखाते हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावों में राजनीतिक हिंसा भड़कती है, क्यों पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। बंगाल की सत्ता पर बैठने वालों के चेहरे और पार्टी का झंडा तो बदलते हैं लेकिन यहां का सियासी रक्त चरित्र नहीं बदलता। आखिर बंगाल में इतनी सियासी हिंसा की वजह है क्या?
0: बंगाल में सत्ता बदल गई, राजनीतिक हिंसा का दौर क्यों नहीं बदला? चुनावी नतीजों के बाद अशांत हुआ बंगाल, हिंसा हत्याएं आगजनी। ममता बनर्जी का शासन गया, बंगाल का रक्त चरित्र क्यों नहीं बदला? गोलियों की राजलीला, बंगाल में बदलाव के बाद बदले की आग। कैसे बदलेगा बंगाल का रक्त चरित्र? अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। बंगाल में बीजेपी बदलाव के वादे और नारे के साथ आई लेकिन ठाक के वही तीन पाल। चुनाव नतीजों के बाद से बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। 7 से 8 हत्याएं हो चुकी हैं, 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 450 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है लेकिन बंगाल शांत नहीं हो रहा है। चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटों के भीतर बंगाल के कई जिलों में हत्या, गोलीबारी, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनीतिक दफ्तरों पर हमलों की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। कई इलाकों में शव मिलने और पीट पीट कर हत्या करने के मामले दर्ज किए गए हैं। ममता बनर्जी को हराने वाले और बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोलियों से भून दिया गया। बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के गोडाउन पाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मार दी गई। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में विजय जुलूस के दौरान बुलडोजर से एक दुकान और TMC कार्यालय तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेनिन की मूर्ति भी तोड़ दी गई। हावड़ा, आसनसोल, कस्बा, टोलीगंज, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में टीएमसी के कार्यालयों पर हमले हुए। आसनसोल के रानीगंज, बनपुर और बाराबनी क्षेत्रों में टीएमसी कार्यालयों के बोर्ड हटाकर उन्हें भगवा रंग से रंगने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कोलकाता के बेलिया घाटा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक का शव उनके घर के बाहर मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर ले गए और पीट पीट कर हत्या कर दी। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली और नजत इलाके में उपद्रवियों ने पुलिस और केंद्रीय बलों पर भी गोलीबारी की। इस हमले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के जवान घायल हुए। इलाके से बम से भरे बैग भी बरामद किए गए। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में हिंसा फैलाकर डर का माहौल बना रही है। उनका दावा है कि पार्टी के सैकड़ों कार्यालयों और नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंसा फैलाने वाले टीएमसी समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के देश में उपद्रव कर रहे हैं। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है, बीजेपी कह रही है कि ये पॉलिटिकल हत्या है जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने करवाई है।
10: प्री प्लान्ड है, जिसे कोल्ड ब्लडेड प्लान मर्डर। तुरंत अभिलाप पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए।
11: राकेश जी,
10: नहीं तो आग लगेगा बंगाल में।
12: पकड़ के इनकाउंटर, जोगी बाबा की तरह इनकाउंटर। अभिषेक बनर्जी का एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी है, वो पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराधियों को संगठित करता है।
13: जब देखा भवानीपुर में भी इज्जत नहीं बचा।
14: एक कहावत है, तुझको नहीं सजा दे पाऊं, तेरा साथी को तो कम से कम मारे।
15: आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर, तो उन्होंने दिए, कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है, सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा।
0: बंगाल की सत्ता में आई और शासन की कमान संभालने जा रही बीजेपी इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर भड़क रही है, लेकिन सच ये भी है कि यही बंगाल का रक्त चरित्र है। और चुनौती 207 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए है, जो बंगाल में बदलाव के नारे के साथ आई है।
16: पहले काम किया मुर्शिदाबाद में, लेनिन का स्टैचू को भी तोड़ दिया। वो सब पहले टीएमसी, अभी सब बीजेपी बन गए। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो जनवाद का एक फुटबॉल बना रहा है, आज वो वायलेंस है जो टीएमसी ने लेफ्ट के खिलाफ किया। लेफ्ट के हर दफ्तर को टीएमसी तोड़ा, आज बीजेपी वही हथियार इस्तेमाल करके टीएमसी को कर रही है। हम इसका निंदा करते हैं।
9: बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यूपी में अगले साल चुनाव हैं, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बंगाल में जिस तरह 30% अल्पसंख्यक वोट के बावजूद बीजेपी जीती है, अब ऐसा ही प्रयोग वो यूपी में लागू करने जा रही है। सवाल अब यह है कि क्या बंगाल चुनाव ने यूपी के नतीजे तय कर दिए हैं?
17: अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है, जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी।
18: पश्चिम बंगाल में जीत से बीजेपी के हौसले उत्तर प्रदेश में और भी बुलंद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने 22 सीटों पर प्रचार किया और 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए मुद्दों की लाइन खींच दी।
17: देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है।
18: पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी ने जीत के लिए कमर कसी है। वहीं अखिलेश भी मैदान में उतर गए हैं। योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के देवबंद पहुंचे, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता गए। इस मुलाकात में अभिषेक बनर्जी भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने अखिलेश का स्वागत गले मिलकर किया। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा, दीदी आप हारी नहीं है,
15: आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है।

0: चटर्जी से मिलकर साफ कर दिया कि चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना जारी रहेगा।
1: ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है, जिसमें जितनी भी संस्थाएं थीं, जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी।
0: अखिलेश यादव का कोलकाता जाकर ममता से ये कहना कि आप हारी नहीं है, अभिषेक को ये कहकर हौसला बढ़ाना कि कोई नहीं तुम अच्छा लड़े, साफ संदेश देता है कि विपक्ष हार के बावजूद एक साथ खड़ा रहेगा।
1: भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है, उत्तर प्रदेश में, उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी, जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था, फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया।
0: तो बंगाल में हार के बाद विपक्ष नए सिरे से एकजुट हो रहा है, वोट चोरी की बात नई ताकत से कही जा रही है, ताकि 2027 के चुनाव को 2024 की तरह अपनी तरफ पलटा जा सके। लेकिन बंगाल चुनाव जीत कर उत्साह से भरी बीजेपी भी इस बार पहले से कई गुना ज्यादा शक्ति से विपक्ष को चुनौती देने को तैयार है।
2: बिहार में आज सम्राट चौधरी की सरकार का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 32 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण की खास बात यह रही कि पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों में बीजेपी के 15 मंत्री, जेडीयू के 13 और एलजेपीआर के 2, आरएलएम के और हम के एक एक मंत्री ने शपथ ली।
3: बिहार को इस वक्त का बेसब्री से इंतजार था। पटना के गांधी मैदान में कैबिनेट विस्तार का मंच सजा था। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा था। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ। नीतीश कुमार से भी पीएम गर्मजोशी से मिले। नीतीश कुमार ने पीएम का कंधा पकड़ा हुआ था। फिर शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह। खास बात ये रही कि पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी बिहार सरकार का हिस्सा बन गए। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और फिर नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। कुल 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू से 3 नए चेहरे, निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में बीजेपी से 4 नए चेहरे, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम और इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में ईबीसी 9, ओबीसी 9, दलित 7, सवर्ण 9 और एक मुस्लिम ने शपथ ली। सम्राट कैबिनेट में कुल 5 महिला मंत्री हैं, जिनमें 3 जेडीयू से हैं। यानी सम्राट सरकार में जातीय समीकरण को तो साधा ही गया है, साथ में महिलाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। खास बात ये रही कि बिहार के 2 बार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
2: और अब बात करेंगे तमिलनाडु में सरकार बनने को लेकर फंसे हुए पेच के बारे में, क्योंकि 108 सीटें हासिल करने वाली अभिनेता विजय की पार्टी से राज्यपाल ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन दिखाने के लिए कहा है। विजय की पार्टी के पास 113 विधायक हैं, जो बहुमत से 5 कम हैं। तमिलनाडु में विजय की शपथ में हो रही देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है।

तमिलनाडु की राजनीति में शुरू से फिल्मी सितारों अभिनेत्रियों का बोलबाला रहा, लेकिन इस बार विजय ने जो किया वैसी दबंगई की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती।

0: विजय की टीवी के पार्टी का पहले ही चुनाव में सबसे ज्यादा 108 सीट जीतना किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है, लेकिन विजय की शपथ राज्यपाल की शर्त के आगे ठहर गई। ऐसे में 108 सीटें जीतने वाले टीवीके को कांग्रेस का समर्थन तो मिला, लेकिन बहुमत का जादुई आंकड़ा भी दूर है। सवाल है कि क्या नंबर गेम में विजय का रथ फंस जाएगा। टीवीके की जीत के बाद विजय के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपने हीरो को मुख्यमंत्री बनते देखने के लिए चेन्नई पहुंच गए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी।
1: We want to give support for Alunara, Governor. We want to support for Vijayanna. We want to give one chance to Vijayanna for taking Padavi Pramana.
0: Vijay, जहां शपथ ग्रहण स्थल पर परेशान हो रहे थे, तो लोक भवन के भी चक्कर लगाते दिखे। राज्यपाल से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। विजय की पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करने की वजह ये बताई गई कि वो अब तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं जुटा सके। तमिलनाडु लोकभवन सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं बुलाएंगे। टीवीके को समर्थन करने वाले विधायकों के दस्तखत समेत संख्या पत्र पेश करने होंगे, उसके बाद विजय शपथ लेंगे। विजय की शपथ में लगे इस ग्रहण पर बड़ी बहस शुरू हो गई। पूछा जा रहा है कि विजय की पार्टी जब सबसे बड़ी है तो फिर उसे सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या बिना बहुमत दिखाए सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी को नहीं बुलाया जा सकता? सवाल कई हैं, लेकिन विजय की ताजपोशी में हो रही देरी उनके समर्थकों को बेचैन कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसे बुलाया जाए इसके लिए कोई विशेष उल्लेख करते हुए फॉर्मूला नहीं दिया गया। ये राज्यपाल के स्वविवेक के ऊपर आ जाता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में राज्यपाल की भूमिका खास हो जाती है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक राज्यपाल का पहला दायित्व ये सुनिश्चित करना होता है कि जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाए वो सदन में बहुमत साबित कर सके। ये नहीं कि राज्यपाल किसी को आमंत्रित करें और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो अपना बहुमत सिद्ध न कर पाए। तो क्या इसीलिए विजय को इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि उनके लिए समर्थन को लेकर बाकी पार्टियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है? तमिलनाडु की एआईएडीएमके के 28 विधायकों को पुडुचेरी के पूरन कुप्पम के एक निजी रिजॉर्ट में ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी विधायक फिलहाल रिजॉर्ट में मौजूद है। हालांकि उन्हें वहां क्यों रखा गया है और पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि ये वो विधायक हैं जो विजय को समर्थन देने के लिए पार्टी तक छोड़ सकते हैं। विजय की टीवी के जब सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है, इस बीच उसे समर्थन देने को लेकर सीपीआई सीपीएम और वीसीके के नेताओं में लगातार मंथन चल रहा है और जो विजय को सरकार बनाने का मौका दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। टीवीके की तरफ से लेफ्ट से समर्थन की औपचारिक चिट्ठी भेज दी गई है। वहीं स्टालिन की तरफ से भी कहा गया कि डीएमके 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी और जनता ने जो बदलाव चुना है उसे मौका दिया जाना चाहिए। स्टालिन के इस बयान के बाद एआईएडीएमके के साथ उनकी सरकार बनाने की चर्चा खत्म हो गई। एक्सपर्ट का मानना है कि स्टालिन ऐसा करके विजय को जनता की नजर में और बड़ा होने का मौका नहीं देना चाहते। अगर डीएमके सरकार बनने से पहले ही जोड़ तोड़ या दबाव की राजनीति करती तो विजय खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले हीरो के रूप में पेश कर सकते थे, लेकिन अब स्टालिन ने पीछे हटकर विजय से कह दिया कि ठीक है, जनता ने मौका दिया है, अब काम करके दिखाओ। इससे विजय के पास भविष्य में कोई बहाना बनाने का मौका कम रहेगा और उन्हें खुद को साबित करना होगा। स्टालिन के बयान ने राज्यपाल पर भी दबाव बढ़ा दिया, क्योंकि जब सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाना चाहती और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी डीएमके इसका विरोध नहीं कर रही है तो फिर राज्यपाल के लिए विजय को रोकना मुश्किल हो गया है।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

शुभेंदु अधिकारी के सहायक की हत्या के बाद भी नहीं थम रही बंगाल में हिंसा। हावड़ा शिवपुर में टीएमसी बीजेपी में खूनी झड़प, बमबाजी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल। बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा, सीएम के पास गृह स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार, विजय सिन्हा को मिला कृषि मंत्रालय। तमिलनाडु में सरकार गठन पर गहराया सस्पेंस, सूत्रों के मुताबिक डीएमके और एआईएडीएमके में गठबंधन की खबरों से नाराज है टीवी के, बड़े पैमाने पर इस्तीफे का विचार कर सकते हैं विधायक। अमेरिका का ईरान पर सैन्य हमला, नौसेना जहाजों पर हमलों के जवाब में सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, ईरान का भी हमले का दावा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 6 बज चुके हैं, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। संक्षिप्त युद्ध विराम के बाद मध्यपुर में एक बार फिर जंग की आग भड़क उठी है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। ईरान के क्वेशम पोर्ट और प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह बंदर अब्बास को भी निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये हमला अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में किया गया। घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। वैश्विक समुदाय की चिंता बढ़ गई है। दुनिया की नजर अब ईरान की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि यह टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका ने कार्रवाई की और उसने केशम और बंदर अब्बास 2 बंदरगाहों के पास हमले किए। उन बंदरगाहों में उसने कहा कि जहां से अमेरिकी जहाजों पर निशाना बनाया गया था उसको तबाह किया गया। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध विराम अभी भी जारी है, लेकिन परिस्थितियां उसके बिल्कुल विपरीत हैं। एक बार ईरान का हमला अमेरिकी जहाजों की ओर होता है और जिन जगहों से हमले की शुरुआत हुई उसको अमेरिका ने निशाना बनाया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच अब एक बार फिर सैन्य संघर्ष। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि सीज फायर अभी भी जारी है, ये एक लव ट्रैप था, लेकिन ईरान के हमलों के जवाब में अमेरिका ने कार्रवाई की है और अब नजर ईरान पर है। क्या वो इस जवाबी कार्रवाई पर भी पलटवार करने की तैयारी में है, यानी मध्य एशिया में सीधा इसका असर भारतीय बाजारों में भी आज देखने को मिलेगा। 39 दिन की जंग के बाद 1 महीने से लंबा समय दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की स्थिति रही, लेकिन अब एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा है। तो इन परिस्थितियों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक चौंकाने वाला बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। ट्रंप के अनुसार इन जहाजों पर कथित तौर पर हमला हुआ था जिसमें मिसाइल और ड्रोन शामिल थे, लेकिन अमेरिकी रक्षा प्रणाली ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई में ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचा है, कई छोटी नौकाएं नष्ट हो गई हैं। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान के नेतृत्व व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी भी की है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि ईरान समझौते पर नहीं पहुंचता है तो भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना की ताकत को वॉल ऑफ स्टील बताते हुए अपने सैनिकों की प्रशंसा की। ये बयान ऐसे समय आया है जब मध्यपुर में तनाव पहले से ही चरम पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। अब खबर पश्चिम बंगाल से। एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रहे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल आर एन रवि ने बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। इस संबंध में राजभवन से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें लिखा गया है कि फैसला 7 मई 2026 से लागू हो चुका है, यानी ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री हो गई है। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इस्तीफे को लेकर चल रहे खींचतान के बाद यह बदलाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू किया गया। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) कॉलम के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, यानी अब बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। जब तक कि नई सरकार शपथ नहीं ले लेती तब तक राज्यपाल ही शासन की कमान संभालेंगे। तो बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, उन्हें हराया गया है साजिश के तहत, जिसके बाद चूंकि कार्यकाल बंगाल विधानसभा का खत्म हो रहा था और ऐसे में डीम्ड सस्पेंशन विधानसभा भंग हो जाती है अपना कार्यकाल तय होते ही, नई सरकार के गठन का रास्ता साफ है। इसलिए राजभवन ने सबसे पहले कैबिनेट को बर्खास्त किया, उसके बाद विधानसभा भंग कर दी और विधानसभा भंग होते ही अपने आप उस विधानसभा के जितने सदस्य हैं उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्यपाल ने अनुच्छेद 174 के तहत अपने अधिकारों के तहत ये फैसला लिया, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही उसे भंग होना होता है, चूंकि चुनाव हो चुका है और ऐसे में अब नई सरकार के गठन का रास्ता साफ है। हालांकि ये सवाल ये उठ रहे थे कि ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो आगे क्या होगा। ऐसे में विधानसभा भंग हो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपना कार्यकाल खत्म होते ही विधानसभा भंग होती है और ऐसे में खुद ब खुद उनकी सदस्यता चली जाती है।
विधानसभा भंग होने के साथ ही बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो बंगाल में बीजेपी सरकार की कमान संभालेगा। विधायक दल की बैठक शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच होगी। सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नामों पर अंतिम निर्णय लेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर पूरे देश की नजर है। इस बीच ममता को उनके गढ़ में हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। तो आज बीजेपी की सर्वदलीय बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है वो कोलकाता में होगी। अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक जाएंगे और 3 से 5 बजे तक होने वाली इस विधायक दल में नेता चुना जाएगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी संभवतः वो चेहरा हो सकते हैं। 2 बार जिन्होंने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराया है, ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि अमित शाह और मोहन मांझी पर्यवेक्षक और बतौर सह पर्यवेक्षक जाएंगे और ऐसे में विधायकों के साथ चर्चा होगी। किसी एक नाम

0: रिलीज हो गई है। तो आज बीजेपी की सर्वदलीय बैठक, बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है वो कोलकाता में होगी। अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक जाएंगे और 3 से 5 बजे तक होने वाली इस विधायक दल में नेता चुना जाएगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी संभवतः वो चेहरा हो सकते हैं, 2 बार जिन्होंने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराया है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि अमित शाह और मोहन मांझी पर्यवेक्षक और बतौर सह पर्यवेक्षक जाएंगे और ऐसे में विधायकों के साथ चर्चा होगी। किसी एक नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उस पर समर्थन के बाद ये माना जा रहा है कि 9 मई को पश्चिम बंगाल में अगली सरकार का गठन होगा, उसके नए मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बतौर सह पर्यवेक्षक जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि आखिर आज होना क्या क्या है। तो कोलकाता में विधायक दल की बैठक होनी है, शाम 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच बैठक होगी जिसमें बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये माना जा रहा है कि प्रस्ताव अमित शाह की ओर से रखा जाएगा और मोहन मांझी सह पर्यवेक्षक के तौर पर जब बंगाल के सभी नए चुने हुए बीजेपी विधायकों से मिलेंगे तो बीजेपी ने दोनों नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है, अमित शाह जो कि पूरे चुनाव में फ्रंट फुट पर रहे, और ऐसे में अब बतौर पर्यवेक्षक नए चेहरे के ऐलान में भी उनकी भूमिका होगी। तो 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। अमित शाह जिस नाम का प्रस्ताव रखेंगे ये माना जा रहा है उस पर सभी विधायक समर्थन देंगे और ये भी माना जा रहा है कि 9 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इसी के साथ साथ तमाम कैबिनेट मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल के लिए आज बड़ा दिन है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के साथ साथ ये भी तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की कमान अगले 5 साल किसके हाथ में होगी। तो एक तरफ सरकार गठन को लेकर के मंथन शुरू हो चुका है, वहीं शुभेंदु अधिकारी के सहायक चंद्रनाथ की हत्या से बंगाल में कोहराम मच गया है। चंद्रनाथ का अंतिम संस्कार कल किया गया। अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी खुद आरोप लगा रहे हैं कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि सोची समझी साजिश थी। रथ को उनकी निकटता के कारण निशाना बनाया गया। रथ की मां ने टीएमसी को दोषी ठहराया और कड़ी सजा की मांग की है। टीएमसी अदालत की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। तो अखिलेश यादव ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को दोषी ठहराते हुए सवाल उठाया है कि ऐसी हत्या कैसे हो सकती है। इस बीच जांच में नए सुराग भी मिल रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप पूरे घटनाक्रम को समझें। चंद्रनाथ को अंतिम विदाई दी गई। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में रोष भी है। चुनाव के बाद नतीजों में बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, हिंसा और हत्याएं। और अब तक क्या क्या हुआ आपको ये भी बता देते हैं पूरे घटनाक्रम में। सिल्वर कार में बदमाश सवार थे। कार का चेसिस नंबर मिटा दिया गया था ताकि आरोपी भागने में कामयाब रहे और उनका सुराग न मिल सके। हत्याकांड के बाद कार लावारिस मिल चुकी थी और इतना ही नहीं, इस पूरे साजिश में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था पुलिस ने वो भी बरामद कर ली है। जब जांच हुई तो पता चला कि ये मोटरबाइक एक फर्जी पते पर रजिस्टर है। 2 गाड़ियां और 2 बाइक के इस्तेमाल होने का पुलिस को शक है। इस मामले में एक हाई प्रोफाइल SIT भी बना दी गई है जिसको वरिष्ठ अधिकारी लीड कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। चंद्रनाथ की मां ने क्या कहा कि जब से शुभेंदु बाबी ने ममता को हराया है उनके परिवार पर खतरा बढ़ चुका है। चुनाव के बाद से भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे थे। ये चंद्रनाथ रथ उनकी मां की ओर से बयान आया है और चुनावी नतीजों के बाद माहौल खराब हो गया था। उनके परिवार के लोग अगर ये कह रहे हैं, ऐसे में उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब ये कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि वो जिंदगी भर जेल में रहें, उन्हें एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्या हुआ है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी रोष है और तमाम सारे नेता अब बदले की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
1: আমি একজন মা, আমি চাইব না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলের নেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাব যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটে।
0: चंद्रनाथ की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल और अधिक गर्मा गया है। चुनाव के बाद से लगातार जारी हिंसा ने राज्य की राजनीति को तनावपूर्ण बना दिया है। बीजेपी ने इस हत्या के लिए सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख

0: अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री की है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव और तेज हो रहे हैं।
1: एक कहावत है, तुझको नहीं सजा दे पाऊं, तेरा साथी को तो कम से कम मारे। हमको लग रहा है ऐसा हताश होके, जब कोई रास्ता नहीं है, चारों ओर अंधकार, पूरा बंगाल का जनता ने भी तहक दिया, पार्टी का लोग भी तहक रहा है, और साथ साथ जब देखा भवानीपुर में भी इज्जत नहीं बचा, और अभी त्याग पत्रों नहीं देके इज्जत रखा करने का कोशिश भी नाकाम हो जा रहा है।
2: ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी, और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, पैरेलल स्ट्रक्चर, और उसमें बड़ी संख्या में यूपी के भी लोग थे, यूपी के लोग थे बड़ी संख्या में। और हमारी तो जानकारी में ये भी है कि बंगाल का चुनाव जो सेंट्रल फोर्स आई थी वो यूपी की आई थी, बिहार की आई थी।
0: हजारों लाखों की संख्या में तैनाती होने के बाद भी, अर्धसैनिकों की मौजूदगी के बाद भी, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हावड़ा में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें बमबाजी की तस्वीरें भी सामने आई। इस हिंसा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, पत्थरबाजी की, बम फेंके। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं क्विक रिस्पांस टीम को भी मौके पर भेजा गया है। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवपुर थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में पत्थरबाजी हुई है। बंगाल का शिवपुर का इलाका, वहां पर जमकर बमबाजी हुई। बीएजीपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और यह स्थिति तब है जब बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की बंगाल में तैनाती है। चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटों के भीतर बंगाल के कई जिलों में हत्या, गोलीबारी, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनीतिक दफ्तरों पर हमले की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। कई इलाकों में शव मिलने, पीट पीट कर हत्या करने के मामले दर्ज किए गए हैं। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। सरकार गठन से पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए को मौत के घाट उतार दिया गया। तो बात बंगाल के खूनी खेल की। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ। नतीजे आते ही सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद बंगाल में चुनावी हिंसा का पुराना पैटर्न जारी है। आज बंगाल की कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीते दिन बंगाल सीएम के बड़े दावेदार और बीजेपी के सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी के सहायक की हत्या कर दी गई। 9 मई को शपथ ग्रहण से पहले बेखौफ कातिलों ने बंगाल की शांति पर ग्रहण लगा दिया है। अब सवाल यह है कि बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र पर लगाम कब लगेगी? क्या बंगाल में बदलाव नहीं बल्कि बदले की सियासत चलती रहेगी?
3: बंगाल में सबसे सनसनीखेज हत्याकांड, शुभेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम हत्या। विदेशी हथियार और किराए के खातिर क्या शार्प शूटरों के निशाने पर थे शुभेंदु? किसने दी सुपारी? कौन है मास्टरमाइंड? दिन बुधवार, वक्त रात के 10:30 बजे, जगह मध्यम ग्राम। रात के अंधेरे में पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। चंद सेकंड में सबसे सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देकर कातिल मौके वारदात से फरार हो गए। लेकिन पीछे छोड़ गए शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की डेड बॉडी। इस हत्याकांड ने बंगाल में चुनावी हिंसा के काले इतिहास में एक खौफनाक अध्याय जोड़ दिया, क्योंकि चंद्रनाथ हत्याकांड फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा है और हत्याकांड की टाइमिंग भी बहुत अहम है। यानी बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के कुछ घंटों के बाद मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार शुभेंदु के पीए की हत्या।
4: ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक गाड़ी जिसको यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया है, इसी गाड़ी के माध्यम से चंद्रनाथ का रास्ता जो है वो रोका गया। लगभग 10 बजे के आसपास जब चंद्रनाथ अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तब इस गाड़ी के माध्यम से उनका रास्ता रोककर उनसे आगे का रास्ता यानी कि आसपास किस इलाके में जाने का रास्ता पूछा गया। और जैसे ही चंद्रनाथ की गाड़ी यहाँ पर रुकती है उन पर 10 से 20 ज्यादा राउंड की फायरिंग की जाती है। और अब इस फायरिंग में चंद्रनाथ की हत्या हो चुकी है। उनके साथ जो उनके एक सहयोगी गाड़ी में बैठे हुए थे वो इस वक्त गंभीर रूप से घायल है और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो गहनता से की जा रही है।
3: शुरुआती जांच में हत्याकांड की कड़ियां एक गहरी साजिश से जुड़ रही हैं, क्योंकि प्रोफेशनल शार्प शूटरों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक और कार का इस्तेमाल। शार्प शूटरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से चंद्रनाथ पर फायरिंग की। शार्प शूटरों ने विदेशी ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया। चंद्रनाथ की एक एक मूवमेंट को शार्प शूटर्स ने ट्रैक किया। हूबहू फिल्मी स्टाइल में चंद्रनाथ को मौत के घाट उतारा। चश्मदीदों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ अपनी सफेद रंग की स्कॉर्पियो से घर के लिए निकले थे। वो कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर लौट रहे थे जिसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर है। चंद्रनाथ अपने घर से चंद मीटर की दूरी पर थे तभी स्लेटी रंग की इसी कार ने चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो को ओवरटेक करके रास्ता रोका। गाड़ी चला रहा ड्राइवर और चंद्रनाथ कुछ समझते उससे पहले ही बाइक पर सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कातिलों ने चंद्रनाथ को करीब से गोली मारी ताकि जिंदा बचने का कोई चांस न रहे। यानी कातिल तय करके आए थे कि चंद्रनाथ किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल मौके पर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जारी हिंसा के बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से पूरा प्रदेश उबल उठा। आनन-फानन में बंगाल पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में कातिलों से जुड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा।
5: हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल जो फोर व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है।
3: चंद्रनाथ हत्याकांड का सच साजिश की कई परतों में लिपटा हुआ है। नंबर एक, चंद्रनाथ हत्याकांड का मकसद क्या है? नंबर दो, प्रोफेशनल शूटरों को किसने सुपारी दी? नंबर तीन, चंद्रनाथ की मौत से किसका फायदा? नंबर चार, क्या शुभेंदु से बदला लेने के लिए मारा? नंबर पाँच, परफेक्ट मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है? हत्या से चंद घंटे पहले चंद्रनाथ की अपने दोस्त कासिम अली से फोन पर बात हुई थी। कासिम को चंद्रनाथ ने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन किसे पता था मुलाकात से पहले ही चंद्रनाथ को बेमौत मार दिया जाएगा।
6: जो सफलता चंद्रदा का नेतृत्व में भवानीपुर में चुनाव में मिला है ममता बनर्जी सहन नहीं पाया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने उसको जान से मार दिया हमारा दादा को।
7: क्या और भी कोई टारगेट पे था?
6: टारगेट तो शुभेंदु दा था।
3: चंद्रनाथ के दोस्त कासिम हत्याकांड के पीछे सियासी एंगल देख रहे हैं, तो चंद्रनाथ के घर वालों का आरोप भी यही है।
8: আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাব যে আমার ছেলের এই মৃত্যু যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটত।
3: বঙ্গাল পুলিশ কি কই টিমে কাতলো কো সরগর্মি সে তালাশ রহি হ্যায়। কুছ সন্দিগ্ধো কি গিরফতারি ভি হুই হ্যায়, লেকিন জাঁচ টিম কা মাথা উস ওয়াক্ত ঠনকা জব হত্যা মে ইস্তেমাল কার অর বাইক পর ফর্জি নম্বর প্লেট কা খুলাসা হুয়া। पुलिस को शक है कि हत्याकांड में एक कार और कम से कम दो बाइक का इस्तेमाल किया गया। कार को कातिल मौके पर छोड़ गए जबकि कार चला रहा हमलावर बाद में बाइक से भागा। मौके से बरामद कार का नंबर है WB74AK2270। नंबर की जांच की गई तो पता चला कि कार सिलीगुड़ी के रहने वाले जेम्स विलियम्स की है और उनकी कार घर में मौजूद थी। यानी हत्या में इस्तेमाल कार का नंबर फर्जी है। जेम्स के मुताबिक चंद दिनों पहले उन्होंने अपनी कार बेचने का पोस्ट एक वेबसाइट पर डाला था। संभव है कातिलों ने उसी पोस्ट के जरिए कार का नंबर हासिल किया। ठीक ऐसे ही हत्या में इस्तेमाल बाइक का नंबर पुलिस के हाथ लगा। बाइक पश्चिम बुर्दवान RTO में विभाष कुमार भट्टाचार्य के नाम पर दर्ज है, जिनका पता है क्वार्टर नंबर AB7/12 गुरुद्वारा रोड बर्नपुर हीरापुर वेस्ट बंगाल। नंबर की जांच की गई तो पता चला इस नाम का कोई भी शख्स मौके पर नहीं रहता।
9: सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फोन आया, उसके बाद हम लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी को लेके गया और सारा जो भी उनको इंक्वायरी करना था किया, गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया, उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर
10: वैसा तो इस क्वार्टर में नहीं, सब तो नए हैं सर।
11: मेरे पाड़ा में कोई है जो
10: पुराना नहीं है।
3: सुनियोजित साजिश के तहत चंद्रनाथ की हत्या की गई। हत्या से पहले कातिलों ने रेकी की थी। अब बंगाल पुलिस कातिलों के चेहरे को बेनकाब करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जांच टीम का कहना है कि कातिलों से जुड़े कुछ सुराग हाथ लगे हैं। बहुत जल्द इस हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा खुलासा होगा। सवाल यही है कि बंगाल की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले कातिलों का सच क्या है? क्या हत्या के पीछे सियासी एंगल है या फिर वजह कुछ और है? पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
13: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
14: कौन सी राशि के लोगों को हनुमान जी की उपासना करने से लाभ होता है? किस राशि के लोगों को पीले आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए और कौन सी राशि के लोग अपनी पूजा में गुग्गल की धूप बत्ती जलाएंगे तो लाभ होगा? अलग अलग राशि के लोग किसकी करें पूजा, कैसे करें पूजा, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
15: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
15: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, आज होगा फैसला। अमित शाह की मौजूदगी में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। राज्यपाल ने भंग की विधानसभा। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद भी नहीं थम रही बंगाल में हिंसा। हावड़ा के शिवपुर में टीएमसी बीजेपी में खूनी झड़प, बमबाजी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल। बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा, सीएम के पास गृह, स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार, विजय सिन्हा को मिला कृषि मंत्रालय। तमिलनाडु में सरकार गठन पर गहराया सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक डीएमके और एआईएडीएमके में गठबंधन की खबरों से नाराज है टीवी के, बड़े पैमाने पर इस्तीफे का विचार कर सकते हैं विधायक। और अमेरिका का ईरान पर सैन्य हमला, नौसेना जहाजों पर हमलों के जवाब में सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, ईरान का भी हमले का दावा।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। संक्षिप्त युद्ध विराम के बाद मध्य पूर्व में एक बार फिर जंग की आग भड़क उठी है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। ईरान के केशम पोर्ट और प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह बंदर अब्बास को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह हमला अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में किया गया। इस घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। वैश्विक समुदाय की चिंता बढ़ गई है। दुनिया की नजर अब ईरान की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि ये टकराव आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप ले सकता है। तो अमेरिका के 3 जहाजों पर ईरान ने हमले किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर के यह तनाव हुआ। बदले की कार्रवाई अमेरिका की ओर से हुई। केशम पोर्ट और बंदर अब्बास के पास जिन नौसेना ठिकानों से ईरान ने हमले किए उसको ध्वस्त किया गया। उसके बाद एक बार फिर मध्य पूर्व में संघर्ष भड़क उठा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर अभी भी इन इफेक्ट है, लेकिन ये जवाबी कार्रवाई की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान भी जारी किया। उसमें उन्होंने कहा है कि 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यानी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सफलतापूर्वक निकल गए हैं। ये वही 3 जहाज हैं जिन पर ईरान ने हमला किया था। ट्रंप के अनुसार इन जहाजों पर कथित तौर पर हमला हुआ था जिसमें मिसाइल और ड्रोन शामिल थे, लेकिन अमेरिकी रक्षा प्रणाली ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई में ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचा है, कई छोटी नौकाएं नष्ट हो गई हैं। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान के नेतृत्व व्यवस्था पर भी कड़ी टिप्पणी की है और ये चेतावनी भी दी कि यदि ईरान समझौते पर नहीं पहुंचता है तो भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना की ताकत को वॉल ऑफ स्टील बताते हुए अपने सैनिकों की प्रशंसा की है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में तनाव पहले से ही चरम पर है। ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान, जिसमें उन्होंने ईरान के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है और उसी के साथ साथ ये भी बताया है कि कैसे परिस्थितियों को लेकर के उनका भी नियंत्रण है, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पर अब करीबी नजर रखी जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो आ रही पश्चिम बंगाल से। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रहे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल आरएन रवि ने बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। इस संबंध में राजभवन से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विधानसभा के साथ साथ कैबिनेट को भी भंग किया गया। नोटिफिकेशन में लिखा है कि फैसला 7 मई 2026 से लागू हो गया है, यानी ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री हो गई हैं। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इस्तीफे को लेकर के चल रही खींचतान के बाद यह बदलाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू किया गया है। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, यानी अब बीजेपी के नई सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। जब तक कि नई सरकार शपथ ग्रहण नहीं करती तब तक राज्यपाल ही शासन की कमान संभालेंगे। ये माना जा रहा है कि 9 मई को पश्चिम बंगाल की अगली सरकार का शपथ ग्रहण होना है। उससे पहले आज पश्चिम बंगाल में विधायक दल की बैठक होगी जिसमें बीजेपी अपना नेता चुनेगी। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा न दिए जाने की बात कहने के बाद राज्यपाल ने कार्यवाही की है। हालांकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव होने के बाद विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही विधानसभा अपने आप में उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है और सरकार अपने आप भंग हो जाती है। ममता बनर्जी अगर इस्तीफा देती तो ऐसे में एक प्रोटोकॉल के तहत उन्हें अंतरिम सरकार गठन होने तक वो अंतरिम मुख्यमंत्री बनी रह सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, जिसके बाद कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया गया। तो विधानसभा भंग होने के साथ ही बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो बंगाल में बीजेपी सरकार की कमान संभालेगा। विधायक दल की बैठक शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच होगी। सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दोनों नेता आज बंगाल पहुंचेंगे और दोनों नेता नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नामों पर अंतिम निर्णय भी लेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी अब इस पर भी नजर है। इस बीच ममता को उनके गढ़ में हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। 2021-2026 दो बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराया। लेकिन आज क्या होने वाला है नई सरकार पर मंथन में, आज बीजेपी विधायक दल का अपना नेता चुनेगी। 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच कोलकाता में यह बैठक होनी है जिसमें बीजेपी के विधायक दल के नेता पर मुहर लगेगी। संभवतः प्रस्ताव बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह रखेंगे और बीजेपी ने अमित शाह और मोहन मांझी को पर्यवेक्षक सह पर्यवेक्षक बनाया है। सीएम पर और कैबिनेट पर अमित शाह अंतिम फैसला भी लेंगे। नामों पर प्रस्ताव लेंगे जिस पर माना जा रहा है कि बीजेपी सर्वसम्मति से उस पर अपनी मुहर लगाएगी और इसी के साथ ही 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण होगा तो प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। तो एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारियां, सरकार के गठन की तैयारियां, तो दूसरी तरफ हिंसा का दौर। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या से बंगाल में कोहराम मच गया है। कल चंद्रनाथ का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी खुद आरोप लगा रहे हैं कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि सोची समझी साजिश थी। रथ को उनकी निकटता के कारण निशाना बनाया गया। रथ की मां ने टीएमसी को दोषी ठहराया है, कड़ी सजा की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि अदालत की निगरानी में जांच हो। वहीं अखिलेश यादव ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को दोषी ठहराते हुए सवाल उठाया है कि ऐसे हत्या कैसे हो सकती है। इस बीच जांच में नए सुराग भी मिल रहे हैं। तो सिल्वर कार में बदमाश सवार थे, अब तक की जांच में क्या क्या सामने, हम आपको ये भी बता रहे हैं। कार का चेसिस नंबर मिटा दिया था ताकि इस कांड के, इस हत्याकांड से ज्यादातर सबूत पुलिस को ना मिल पाए। वारदात में इस्तेमाल जो बाइक की गई थी वो बंगाल पुलिस ने बरामद कर ली है। एक एसआईटी का गठन कर लिया गया है। ये बाइक दरअसल फर्जी पते पर रजिस्टर है। तो अब तक इस पूरे हत्याकांड में शामिल दो गाड़ियां यानी दो कार और दो बाइक, कुल मिलाकर चार गाड़ियां थी जिनको जब्त कर लिया गया है। इन्हीं के इस्तेमाल होने का शक है। पुलिस की जांच कई डायमेंशन पर आगे बढ़ रही है। पूरे राज्य में जांच पड़ताल हो रही है ताकि साजिशकर्ताओं तक पुलिस पहुंच सके। आक्रोश पश्चिम बंगाल में रथ की हत्या को लेकर के, और इसीलिए अब वो मांग कर रहे हैं बदली की कार्रवाई हो। लेकिन अब चंद्रनाथ रथ की मां क्या कह रही हैं आपको वो सुनवाते हैं।
1: आमी एक जन मां, आमी चाहिबो ना तादे फांसी होक, जावज्जीवन कारादंड चाहिछी। आर चाहिछी जे आमरा भारतीय जनता पार्टी करी बोले আমাদেরকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলের নেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটে।
0: चंद्रनाथ की हत्या के बाद से ही पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल और अधिक गर्मा गया है। चुनाव के बाद से लगातार जारी हिंसा ने राज्य की राजनीति को तनावपूर्ण बना दिया है। बीजेपी ने इस हत्या के लिए सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी केंद्रीय गृहमंत्री की है। आरोप प्रत्यारोप के बीच राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। विपक्ष सत्ता पक्ष के बीच टकराव और तेज होता जा रहा है।
2: एक कहावत है, तुझको नहीं सजा दे पाऊं तेरा साथी को तो कम से कम मारे। हमको लग रहा है ऐसा हताश होके, जब कोई रास्ता नहीं है, चारों ओर अंधकार, पूरा बंगाल का जनता ने भी तहक दिया, पार्टी का लोग भी तहक रहा है, और साथ साथ जब देखा भवानीपुर में भी इज्जत नहीं बचा, और अभी त्याग पत्रों नहीं देके इज्जत रखा करने का कोशिश भी नाकाम हो जा रहा है।
3: ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, पैरेलल स्ट्रक्चर, और उसमें बड़ी संख्या में यूपी के भी लोग थे, यूपी के लोग थे बड़ी संख्या में। और हमारी तो जानकारी में ये भी है कि बंगाल का चुनाव जो सेंट्रल फोर्स आई थी वो यूपी की आई थी, बिहार की आई थी।
0: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हावड़ा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई। बमबाजी की तस्वीरें सामने आई। इस हिंसा में बीजेपी के दो कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, पत्थरबाजी की, बम फेंके। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। क्विक रिस्पॉन्स टीम को भी मौके पर भेजा गया है। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवपुर थाने का घेराव किया, जोरदार प्रदर्शन किया। तो टीएमसी नेता शमीम अहमद पर हमले का आरोप है। शिवपुर इलाके का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, पत्थरबाजी हुई, बमबाजी हुई। अब पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को वहां तैनात किया गया है। इस पूरी बमबाजी में दो बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। ये हावड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में जब बमबाजी हो रही थी, ये सब तब जब हजारों लाखों की संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, सीएपीएफ तैनात है, चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, और उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, जो पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटों के भीतर बंगाल के कई जिलों में हत्या, गोलीबारी, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनीतिक दफ्तरों पर हमलों की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। कई इलाकों में शव मिलने और पीट पीट कर हत्या करने के मामले दर्ज किए गए हैं। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं और सरकार गठन से पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए को मौत के घाट उतार दिया गया। ये 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बशीरहाट में गोलीकांड में हत्या हो गई, कोलकाता में टीएमसी दफ्तर को ध्वस्त किया गया, बुलडोजर चले और सब कुछ प्रशासन के सामने हो रहा था, तो वहीं मुर्शिदाबाद में लेनिन की प्रतिमा तोड़ी गई, संदेश खाली में उपद्रवियों ने गोलीबारी की, और ये सब हो रहा है पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद।
4: लोग जश्न मना रहे थे यहाँ पर अपने जीत का, मेरा दोस्त लोग, मेरा भाई लोग सब यहाँ पर खड़े थे, तो वहाँ से वो लोग आया, लोग बड़े का गुंडा, बड़े भी साथ में था, अब कहाँ कहाँ से अपना लड़का लेकर के आया था हम लोग को ही नहीं पता। अब आया लोग वहाँ से गाली गलौजा स्टार्ट कर दिया, लोग इतना गाली दिया सर, इतना गाली दिया। हम लोग भी जब अपना वहाँ पर गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं देखने, तो वो लोग मारने लगा, ईटा मारने लगा, कोई कांच का बोतल मारने लगा, और हम लोग अपना डिफेंस में जब अपना कुछ चलाने लगे तो वो लोग राउंड फायर करने लगा, 7 से 8 राउंड फायर किया सर। उसका बाद जब हम लोग भागने लगे तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर, 12 बम चलाया लोग टोटल सर। यहाँ से मेरा गोली गया, बम एकदम पैर का नीचे आके फटा, हम लोग 12 से 15 आदमी घायल हो गया सर, सब हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जा करके देख सकते हैं। ऐसा सर हम लोग जीत, हम वो लोग बोल रहा था कि तुम लोग को बीजेपी करने नहीं होगा, तो भाई बीजेपी करने नहीं होगा, बीजेपी तो पार्टी है, हम लोग का मन है, ये तो आजाद हिंदुस्तान है, अब अपना आदमी मन से पार्टी भी नहीं कर सकता है, ये तो कहाँ का, ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी नहीं कर सकते, ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी एकदम कर ही नहीं सकते। भाई बीजेपी बोल रहा है लोग कि हिंदू का पार्टी है, हम लोग काफिर होगा, अरे भाई ये सब का बोलने का जरूरत है, हम लोग का मन ये आजाद हिंदुस्तान है, हम लोग जो भी पार्टी करे उससे क्या लेना देना है। वो लोग आ करके बूथ पे मेरा भाई को भी चमकाया, मेरा भाई बैठा था कि 4 मई का बाद तुम्हारा हिसाब होगा, और वहां पर जब मार रहा था बम तो वो लोग बोला है कि तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, तुम लोग हम पिक्चर दिखाएंगे, तो वो लोग क्या पिक्चर दिखाएगा भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हारने का बाद वो लोग जब ऐसे किया तो जीत जाता तो वो लोग क्या करता।
0: पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल गई लेकिन तस्वीर नहीं बदली। बात बंगाल के खूनी खेल की। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ। नतीजे आते ही सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद बंगाल में चुनावी हिंसा का पुराना पैटर्न जारी है। बंगाल की कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीते दिन बंगाल सीएम के बड़े दावेदार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। 9 मई को शपथ ग्रहण से पहले बेखौफ कातिलों ने बंगाल की शांति पर ग्रहण लगा दिया। अब सवाल यह है कि बंगाल की राजनीति के इस रक्त चरित्र पर लगाम कब लगेगी? क्या बंगाल में बदलाव नहीं बल्कि बदले की सियासत चलती रहेगी?
5: बंगाल में सबसे सनसनीखेज हत्याकांड, शुभेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम हत्या, विदेशी हथियार और किराए के कातिल, क्या शार्प शूटरों के निशाने पर थे शुभेंदु? किसने दी सुपारी? कौन है मास्टरमाइंड? दिन बुधवार, वक्त रात के 10:30 बजे, जगह मध्यम ग्राम। रात के अंधेरे में पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। चंद सेकंड में सबसे सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देकर कातिल मौके वारदात से फरार हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की डेड बॉडी। इस हत्याकांड ने बंगाल में चुनावी हिंसा के काले इतिहास में एक खौफनाक अध्याय जोड़ दिया, क्योंकि चंद्रनाथ हत्याकांड फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा है और हत्याकांड की टाइमिंग भी बहुत अहम है। यानी बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के कुछ घंटों के बाद मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार शुभेंदु के पीए की हत्या।
6: ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक गाड़ी जिसको यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया है, इसी गाड़ी के माध्यम से चंद्रनाथ का रास्ता जो है वो रोका गया। लगभग 10 बजे के आसपास जब चंद्रनाथ अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तब इस गाड़ी के माध्यम से उनका रास्ता रोककर उनसे आगे का रास्ता यानी कि आसपास किस इलाके में जाने का रास्ता पूछा गया, और जैसे ही चंद्रनाथ की गाड़ी यहाँ पर रुकती है उन पर 10 से भी ज्यादा राउंड की फायरिंग की जाती है। और अब इस फायरिंग में चंद्रनाथ की हत्या हो चुकी है। उनके साथ जो उनके एक सहयोगी गाड़ी में बैठे हुए थे वो इस वक्त गंभीर रूप से घायल है, और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो गहनता से की जा रही है।
5: शुरुआती जांच में हत्याकांड की कड़ियां एक गहरी साजिश से जुड़ रही हैं, क्योंकि प्रोफेशनल शार्प शूटरों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक और कार का इस्तेमाल। शार्प शूटरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से चंद्रनाथ पर फायरिंग की। शार्प शूटरों ने विदेशी ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया। चंद्रनाथ की एक एक मूवमेंट को शार्प शूटर्स ने ट्रैक किया। हूबहू फिल्मी स्टाइल में चंद्रनाथ को मौत के घाट उतारा। चश्मदीदों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ अपनी सफेद रंग की स्कॉर्पियो से घर के लिए निकले थे। वो कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर लौट रहे थे, जिसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर है। चंद्रनाथ अपने घर से चंद मीटर की दूरी पर थे, तभी स्लेटी रंग की इसी कार ने चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो को ओवरटेक करके रास्ता रोका। गाड़ी चला रहा ड्राइवर और चंद्रनाथ कुछ समझते उससे पहले ही बाइक पर सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कातिलों ने चंद्रनाथ को करीब से गोली मारी ताकि जिंदा बचने का कोई चांस न रहे। यानी कातिल तय करके आए थे कि चंद्रनाथ किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल मौके पर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जारी हिंसा के बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से पूरा प्रदेश उबल उठा। आनन-फानन में बंगाल पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में कातिलों से जुड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा।
7: हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल जो फोर व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है, और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है।
5: चंद्रनाथ हत्याकांड का सच साजिश की कई परतों में लिपटा हुआ है। नंबर एक, चंद्रनाथ हत्याकांड का मकसद क्या है? नंबर दो, प्रोफेशनल शूटरों को किसने सुपारी दी? नंबर तीन, चंद्रनाथ की मौत से किसका फायदा? नंबर चार, क्या शुभेंदु से बदला लेने के लिए मारा? नंबर पाँच, परफेक्ट मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है? हत्या से चंद घंटे पहले चंद्रनाथ की अपने दोस्त कासिम अली से फोन पर बात हुई थी। कासिम को चंद्रनाथ ने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन किसे पता था मुलाकात से पहले ही चंद्रनाथ को बेमौत मार दिया जाएगा।
8: जो सफलता चंद्रदा का नेतृत्व में भवानीपुर में चुनाव में मिला है, ममता बनर्जी ये साइन नहीं पाया, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने उसको जान से मार दिया हमारा दादा को।
9: क्या और भी कोई टारगेट पे था?
8: टारगेट तो शुभेंदु दा था।
5: चंद्रनाथ के दोस्त कासिम हत्याकांड के पीछे सियासी एंगल देख रहे हैं, तो चंद्रनाथ के घर वालों का आरोप भी यही है।
1: আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের মৃত্যু যেন শাস্তিটুকু হয়, আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটত।
5: বঙ্গাল পুলিশ কি কই টিমে কাতলো কো সরগর্মি সে তলাশ রহি হ্যায়। কুছ সন্দিগ্ধো কি গিরফতারি ভি হুই হ্যায়, লেকিন জাঁচ টিম কা মাথা উস ওয়াক্ত ঠনকা জব হত্যা মে ইস্তেমাল কার অর বাইক পর ফর্জি নম্বর প্লেট কা খুলাসা হুয়া। पुलिस को शक है कि हत्याकांड में एक कार और कम से कम दो बाइक का इस्तेमाल किया गया। कार को कातिल मौके पर छोड़ गए, जबकि कार चला रहा हमलावर बाद में बाइक से भागा। मौके से बरामद कार का नंबर है W

0: मौजूद थी, यानी हत्या में इस्तेमाल कार का नंबर फर्जी है। जेम्स के मुताबिक चंद दिनों पहले उन्होंने अपनी कार बेचने का पोस्ट एक वेबसाइट पर डाला था। संभव है कातिलों ने उसी पोस्ट के जरिए कार का नंबर हासिल किया। ठीक ऐसे ही हत्या में इस्तेमाल बाइक का नंबर पुलिस के हाथ लगा। बाइक पश्चिम बुर्दवान RTO में विभाष कुमार भट्टाचार्य के नाम पर दर्ज है, जिनका पता है क्वार्टर नंबर AB7/12 गुरुद्वारा रोड बर्नपुर हीरापुर वेस्ट बंगाल। नंबर की जांच की गई तो पता चला इस नाम का कोई भी शख्स मौके पर नहीं रहता।
1: सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फोन आया, उसके बाद हम लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी के ऊपर लेके गया और सारा जो भी उनको इंक्वायरी करना था किया, गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया, उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर
0: सुनियोजित साजिश के तहत चंद्रनाथ की हत्या की गई। हत्या से पहले कातिलों ने रेकी की थी। अब बंगाल पुलिस कातिलों के चेहरे को बेनकाब करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जांच टीम का कहना है कि कातिलों से जुड़े कुछ सुराग हाथ लगे हैं। बहुत जल्द इस हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा खुलासा होगा। सवाल यही है कि बंगाल की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले कातिलों का सच क्या है? क्या हत्या के पीछे सियासी एंगल है या फिर वजह कुछ और है? पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: पश्चिम बंगाल में ममता राज के खात्मे और बीजेपी राज के आगाज के बीच 120 घंटे मां माटी मानुष पर बड़े भारी पड़ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद से शुरू हुई हिंसा अब एक बड़ी वारदात की शक्ल में सामने आई, जब बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता और संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के पीए 42 साल के चंद्रनाथ रथ की गोली मार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, आज होगा फैसला। अमित शाह की मौजूदगी में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। राज्यपाल ने भंग की विधानसभा। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद भी नहीं थम रही बंगाल में हिंसा। हावड़ा के शिवपुर में टीएमसी बीजेपी में खूनी झड़प, बमबाजी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल। बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा, सीएम के पास गृह, स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार, विजय सिन्हा को मिला कृषि मंत्रालय। तमिलनाडु में सरकार गठन पर गहराया सस्पेंस, सूत्रों के मुताबिक डीएमके और एआईएडीएमके में गठबंधन की खबरों से नाराज है टीवी के, बड़े पैमाने पर इस्तीफे का विचार कर सकते हैं विधायक। और अमेरिका का ईरान पर सैन्य हमला, नौसेना जहाजों पर हमलों के जवाब में सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, ईरान का भी हमले का दावा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी राशि के अनुसार आप किस देवी देवता की पूजा करके अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं और पूजा में किस चीज का प्रयोग करने से आपको ज्यादा लाभ हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 मई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 12:21 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 9:20 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी पूजा में क्या प्रयोग करें, किस तरह से पूजा करें कि उन्हें पूजा से लाभ मिले। सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन वालों का हाल जान लेते हैं। मेष राशि की बात करते हैं। जीवन में सफलता के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए उत्तम होगा और आपको अपनी पूजा में लाल फूलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा सफल होगी। वृषभ राशि, जीवन में उन्नति और सफलता के लिए आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए और अपनी पूजा में सफेद चंदन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भगवान को भी लगाएं और स्वयं को भी लगाकर पूजा करें तो आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, आप अगर भगवान कृष्ण की उपासना करें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा और आप अपनी पूजा में गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें तो आपका मन एकाग्र होगा, आपकी प्रार्थना सफल होगी। बाकी राशि पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

लाभ हो सकता है, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग पूजा में किस चीज का प्रयोग करें कि उनकी पूजा सफल हो और उनको पूजा से लाभ हो। पहले कर्क राशि को जानते हैं। कर्क राशि वालों को भगवान शिव की नियमित उपासना करनी चाहिए, नियमित पूजा करनी चाहिए और पूजा में शंख जरूर बजाएं। भगवान शिव की पूजा के दौरान नहीं, पूजा के अंत में शंख जरूर बजाइएगा। शंख का पूजा में प्रयोग करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सिंह राशि, आप अगर नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करें तो आपकी पूजा सफल होगी और आप अपनी पूजा में रोली यानी कुमकुम का प्रयोग जरूर करें, स्वयं भी लगाएं और देवता को भी लगाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी पूजा और प्रार्थना सफल होगी। कन्या राशि, जीवन में उन्नति और सफलता के लिए आपको देवी मां की आराधना करनी चाहिए। आप अपनी पूजा में शुद्ध घी का दीपक जलाकर पूजा करें, घी का एक मुखी दीपक जलाएं, उसके बाद देवी की पूजा करें, देवी से प्रार्थना करें, आपकी कामनाएं पूरी होंगी और आपको लाभ होगा। बाकी राशियों के पूजा पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, आपका विवाह
तय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। वाद विवाद से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न ममता जी ने हमें लिखा है, बरेली से लिखती हैं। ममता जी की जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1978। जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म का स्थान है बदायूं, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं बरेली से। ममता जी कह रही हैं कि पिछले 3 साल से मैं अपने मायके में रह रही हूं। मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या ये आगे सुधर पाएगा या इसमें सेपरेशन के चांसेस बनते हैं, और क्या मेरी आगे दूसरी शादी होगी। ममता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह के चल पाने की संभावना बहुत ही कमजोर है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका विवाह आगे चल सकेगा। इस विवाह में साल के अंत तक डिवोर्स होने की संभावना बनती है। और जहां तक दूसरे विवाह का प्रश्न है, आपको दूसरा विवाह करने की सलाह नहीं दी जाएगी। अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, क्योंकि दूसरा विवाह भी सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बेहतर जीवन और बेहतर उन्नति के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रस्सी का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रार्थना करें, जीवन में सुधार होगा। अब ये जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को किसकी पूजा करनी चाहिए और पूजा में किस चीज का प्रयोग करना चाहिए। तुला राशि की बात करें तो आपको नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करना लाभकारी होगा और आपको अपनी पूजा में सफेद फूलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा अगर आप सफेद फूलों से करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।
वृश्चिक राशि, आप हनुमान जी की जितनी उपासना करें, हनुमान जी की जितनी पूजा करें, उतना आपके लिए बेहतर होगा और अपनी पूजा में आपको तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें और उनको तुलसी दल अर्पित करके प्रार्थना करें, आपको अवश्य लाभ होगा। धनु राशि, आपको सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जब पूजा स्थान पर बैठकर पूजा करें तो देवी देवता को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होंगी और आपकी पूजा सफल होगी। बाकी राशियों के पूजा की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग कैसे पूजा करेंगे और पूजा में किस चीज का प्रयोग जरूर करेंगे। मकर राशि की अगर बात करें तो आपको शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। शिव जी की जितनी उपासना करें उतना कल्याण होगा। आपके लिए पूजा में पीले रंग के आसन का प्रयोग करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। पूजा सफल होगी, प्रार्थना पूरी होगी। कुंभ राशि, आपको भगवान कृष्ण की उपासना जरूर करनी चाहिए। जितना भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे जीवन उतना बेहतर होगा। और आप अपनी पूजा में कभी भी पूजा करें चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। मीन राशि, आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। आप थोड़ा भी समय निकालकर अगर गणेश जी की उपासना करें तो आपका कल्याण होगा। और आप जब भी गणेश जी की पूजा करें पूजा में भगवान को लड्डू का भोग लगाएं, चाहे बूंदी का लड्डू हो चाहे बेसन का लड्डू हो, इसका भोग लगाना अच्छा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। पूजा के दौरान अपने घर में किस तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। देखिए, सामान्यतः घर में पूजा के दौरान शाम को जब भी पूजा करते हैं घी का दीपक जलाना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर घी का दीपक अफोर्ड नहीं कर सकते तो तिल के तेल का दीपक जलाना भी अच्छा रहेगा। लेकिन सामान्य स्थितियों में घर में सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपावली के अवसर पर या यम देवता के लिए जब दीप दान कर रहे हैं तभी सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि देव के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लेकिन सामान्य स्थितियों में घर में सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 3, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, वाद विवाद से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इसमें माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह के समय माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है
तो चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न निशिकांत जी ने हमें लिखा है और निशिकांत जी हमें मेल लिखते हैं पटना बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 12 जुलाई 1992। जन्म का समय रात में 9 बजे। जन्म का स्थान है पश्चिमी चंपारण। मेल लिखते हैं पटना से। निशिकांत जी कह रहे हैं कि मेरी अब तक शादी नहीं हो पाई है तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। निशिकांत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से विलंब से विवाह की संभावना बनती है, फिर भी साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं और आपका विवाह थोड़ा एडजस्टमेंट वाला भी हो सकता है, थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 8 से 10 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करें, रोज शाम को माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं और संध्या की पूजा में रोज माता लक्ष्मी की आरती करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत

वालों के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि के लोगों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज षष्ठी तिथि है, शुक्रवार की षष्ठी विशेष शुभ मानी जाती है। आज आप शुभ कार्य कर सकते हैं और आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

आज बंगाल बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक, शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच चुना जाएगा नया मुख्यमंत्री चेहरा। आज कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह, बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर रहेंगे मौजूद। आज भी सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का नाम, टीएमसी को हराने वाले नेता पर सीएम पद को लेकर चर्चा तेज। कल होगा बंगाल में भव्य शपथ ग्रहण समारोह, कोलकाता के मेडन में नई सरकार लेगी शपथ। कल रविंद्रनाथ टैगोर जयंती पर शपथ पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता समारोह में मौजूद रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी के सहायक की हत्या पर सियासी संग्राम जारी है, चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में जांच तेज हुई, 3 लोग अब तक हिरासत में लिए गए। हमलावरों की बाइक बरामद की गई है, पुलिस को हत्या में इस्तेमाल बाइक मिली, ऐसे कई एंगल से जांच जारी है। ड्राइवर की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर की कई सर्जरी हो चुकी है, अस्पताल में इलाज जारी है। शुभेंदु ने कहा कि पहले से ही हत्या की साजिश रची गई थी, हत्या से पहले कई दिनों तक रेकी किए जाने का भी दावा किया। तृणमूल कांग्रेस ने कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जांच की मांग की है, पोस्टपोल हिंसा पर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप अब तेज हो रहे हैं। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी है, सख्त सुरक्षा के बावजूद कई इलाकों में तनाव और झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। हिंसा रोकने के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है, टॉप सुरक्षा अधिकारियों ने जीरो टॉलरेंस के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं हावड़ा में बमबाजी की खबर आई है, 2 बीजेपी कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं। शिवपुर के चौराबस्ती इलाके में हमले के बाद भारी तनाव, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, पत्थरबाजी और बम फेंकने के आरोप में इलाके में अब भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवपुर थाने का घेराव किया, घटना के विरोध में प्रदर्शन किया, मौके पर क्यूआरटी और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, बंगाल चुनाव को लेकर के बीजेपी और चुनाव आयोग पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनाव को लूटा गया, बंगाल में लोकतंत्र और वोटिंग अधिकार खतरे में डाला गया। अखिलेश यादव ने कहा कि दीदी को हराने के लिए पूरा सिस्टम लगाया गया, चुनाव में बड़े स्तर पर साजिश का आरोप भी लगाया। ममता बनर्जी और अभिषेक को अब सुरक्षा का खतरा है, समाजवादी प्रमुख ने बीजेपी पर डर और दबाव की राजनीति का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, देश में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी गई है। तमिलनाडु में सरकार गठन में देरी पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्य भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन और धरना करेगी। राज्यपाल से विजय की दूसरी मुलाकात भी बेनतीजा रही, 118 विधायकों का समर्थन साबित करने को कहा गया। पीवीके अभी भी बहुमत से देर है, कांग्रेस गठबंधन के पास 112 विधायक, बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा चाहिए। तमिलनाडु में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुके हैं, टीवीके ने अपने विधायकों को मामल्लापुरम के लग्जरी रिजॉर्ट में भेजा है। एआईएडीएमके ने भी विधायकों को शिफ्ट कर दिया है, टीवीके की जोड़तोड़ की कोशिशों के बीच एमएलए को पुदुचेरी भेज दिया गया है। आज गुरुग्राम आएंगे राहुल गांधी, सद्भाव यात्रा में शामिल होकर चुनावी माहौल को धार देंगे। नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी, 10 मई को वोटिंग से पहले राहुल गांधी का रोड शो होगा और जनसंपर्क अभियान होगा। सद्भाव यात्रा को लेकर के कांग्रेस में मतभेद भी है, कुछ नेताओं ने पहले यात्रा का विरोध भी किया था। शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने याचिका दायर की है। नाम और तस्वीर का गलत इस्तेमाल पर थरूर ने सख्ती दिखाई है, दिल्ली हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। पंजाब में धमाकों को लेकर के बीजेपी का भगवंत मान को कानूनी नोटिस, 7 दिन में माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग की गई है। बीजेपी ने कहा कि भगवंत मान झूठ फैला रहे हैं, बयान वापस नहीं लेने पर आपराधिक और सिविल कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पंजाब ब्लास्ट पर सियासत भी तेज है, मान ने कहा था बीजेपी चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाती है। बीजेपी ने डीजीपी से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, तरुण चुग ने कहा मुख्यमंत्री का बयान बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। सुनील जाखड़ ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर राजनीति बंद हो, बीजेपी ने कहा डीजीपी आईएसआई की बात कर रहे हैं, सीएम बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पंजाब में ईडी रेड से सियासी भूचाल आया है, मोहाली चंडीगढ़ में बिल्डरों और सहयोगियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आम आदमी पार्टी सरकार पर करप्शन नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया, कांग्रेस और अकाली दल ने मान सरकार को घेरा है। सीएलयू लाइसेंस घोटाले में ईडी की बड़ी जांच हुई है, सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। प्रताप बाजवा ने कहा आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आया, सीएम मान के करीबी लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी नेता अमन अरोड़ा ने ईडी के आरोपों को झूठा प्रचार बताया, कहा मेरा पूरा जीवन पारदर्शी रहा है, मैं डरने वाला नहीं हूं। बिहार के कैबिनेट विस्तार में बड़ा बदलाव हुआ है, एनडीए में पहली बार हेल्थ जेडीयू को, एजुकेशन बीजेपी को दिया गया है। पोर्टफोलियो में बड़ी अदला बदली की गई है, फॉर्मूला तय किया गया, जेडीयू और बीजेपी के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग का एक्सचेंज हो चुका है। निशांत को हेल्थ मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पहली बार जेडीयू को अहम स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। शिक्षा विभाग बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को मिला है, ऊर्जा विभाग से वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव को हटाया गया। सीएम सम्राट चौधरी के पास अहम विभाग बरकरार रहेंगे, गृह, सामान्य प्रशासन और कैबिनेट सचिवालय जैसे प्रमुख उन्हीं के पास रहेंगे।
अमेरिका का ईरान पर सैन्य हमला हुआ है। नौसेना जहाजों पर हमलों के जवाब में सैन्य ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ईरान ने भी हमले का दावा किया। केशम पोर्ट बंदर अब्बास पर हमले का दावा किया गया। अब क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अमेरिका ईरान वॉर पर डिप्लोमेसी भी तेज हो गई है। ईरान आज अमेरिका के नए युद्ध रोकने वाले प्रस्ताव पर अपना जवाब भी दे सकता है। सेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नया नियम भी लागू हुआ। ईरान ने जहाजों के लिए सख्त शर्तें लागू कर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर दबाव बढ़ा दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर से अहम मीटिंग हुई है। राष्ट्रपति मुस्तफा खामनेई से पहले रिपोर्टेड हाई लेवल की एक मुलाकात हुई है जिसमें अहम बातें चर्चा में की गई हैं। लेबनन में भी तनाव बढ़ चुका है। इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्ला कमांडर को मारने का दावा किया है। हॉर्मुज में तेल संकट की नई तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट इमेज में समुद्र में फैलते ऑयल स्पिल भी दिखाई दे रहे हैं। 120 वर्ग किलोमीटर तक तेल रिसाव स्पेस से फैलता हुआ दिखाई दिया है। सबसे बड़ा ऑयल स्पिल शहर जितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। चार जगहों पर समुद्री तेल रिसाव की पुष्टि की गई है। खाड़ी क्षेत्र में कई ऑयल रूट्स पर गंभीर पर्यावरणीय नुकसान भी हो सकता है। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर अब दोहरी मार पड़ेगी। मछुआरों, समुद्री जीवन, ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 15 जून को लखनऊ से नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। एक घंटे में पूरा होगा सफर। देश के बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित हो रहा है नोएडा एयरपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। द्वारका में 806 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज। हर साल एमबीबीएस की 250 सीटें उपलब्ध होंगी। नोरा फतेही ने विवादित गाने सर के चुनर तेरी में राष्ट्रीय महिला आयोग से माफी मांगी। कहा, अब ऐसे गानों में काम नहीं करूंगी जिनसे महिलाओं को लेकर गलत संदेश जाए। जामनगर की सिंगर सीट पर पंचायत चुनाव परिणामों में गड़बड़ी के आरोप। दोबारा मतदान की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शन। 9 मई से फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू होगी। इस वीकेंड लगेगा सस्ते स्मार्टफोन का मेला। आईफोन, मोटरोला, पिक्सल पर पाएं मोटी डील। जम्मू क्षेत्र में श्री अमरनाथ तीर्थयात्रा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के 2 हफ्तों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बारिश बर्फबारी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रुद्रनाथ धाम में तैयारियों को निरीक्षण कर लौटी अधिकारियों की टीम। कपाट खोलने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी। 18 मई को कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं 21 दिन की साधना। इस दौरान एकांतवास में रहेंगे बाबा बागेश्वर। नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार कर लिया। 25 दिन से फरार थी। दिल्ली के मोतीबाग में चलती एम्बुलेंस में आग लग गई जिससे हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका हुआ। पास में खड़ी बाइक भी जलकर खाक हो गई। कोई हताहत नहीं। बोकारो में हाईवे पर गैस टैंकर पलटने से आग लग गई। आवागमन प्रभावित हुआ। एक बड़ा हादसा टल गया। वलसाड़ में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन में आग लग गई। पुलिस हिरासत में है चालक। राजस्थान के कोटपुतली में पुलिसकर्मी ने गांव में विवाद के दौरान फायरिंग की। 2 युवक बाल बाल बचे। सिपाही को निलंबित किया गया। रेवाड़ी में सोलर कंपनी में भयंकर आग लग गई। घंटों के बाद दमकल की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। उड़ीसा के खोरदा में छेड़छाड़ के शक में जीआरपी कांस्टेबल की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि पुलिस मूर्धर्षक बनी रही। यूपी के हमीरपुर नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। यमुना नदी में नाव पलटने से सभी 6 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पत्नी ने पति को प्रेमिका संग पकड़ा, जमकर मारपीट की। सूरत में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने माफी मांगी। अमरेली में शेरों को कार से परेशान करने का वीडियो सामने आया है। वन विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। ग्वालियर में दिनदहाड़े लॉ कॉलेज छात्रा का अपहरण हो गया। कार सवार बदमाशों ने जबरन उठाया। शहर भर में अब नाकाबंदी की गई है। रायपुर में पारिवारिक विवाद में जीजा ने साली पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। 2 महिलाओं की मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद में रंगदारी मांगने के आरोप में 4 गिरफ्तार हुए हैं। गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। झारखंड के गढ़वा में डैम में डूबने से 2 लोगों की मौत। बुआ को बचाने एक भतीजा भी जो उतरा वो हादसे का शिकार हो गया। बाराबंकी में हाई प्रोफाइल चोरी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी बरामद की गई है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Character, the taste of success.
2: Vikram chahe jitna bhi phad phada le, dhoond nahi payega.
3: Hey Priya, kaisa laga mera stunt?
4: Vikram, ek hint to dete.
5: Vikram!
4: Hint.
3: Bade aaram se.
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
10: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
11: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही है।
10: आप कैसे कर लेते हो?
12: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
11: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
13: नहीं,
11: और म्यूचुअल फंड्स है
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते, ये भाई साहब सब पचा देते,
16: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
17: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
9: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
18: इसमें माइक्रो फाइबर है।
9: माइक्रो फाइबर यानी
18: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
9: हमारे सीमेंट में नहीं है,
18: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
19: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
20: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
21: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
22: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
23: बहुत टायर्ड हो गई।
24: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
25: लायन डेट नट बाइट्स।
6: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
26: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
27: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
18: इसमें माइक्रो फाइबर है।
9: माइक्रो फाइबर यानी
18: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
9: हमारे सीमेंट में नहीं है,
18: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
19: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
1: In association with Hint, बड़े आराम से।
28: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
1: विमल, बोलो जुबां केसरी।
28: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
29: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
28: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
20: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
0: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
4: just
5: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
7: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
8: विक्रम, एक हिंट तो देते।
9: विक्रम!
8: हिंट।
10: बड़े आराम से।
11: और वही कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रो फाइबर है।
13: माइक्रो फाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
13: हमारे सीमेंट में नहीं है,
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
16: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
17: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
18: बहुत टायर्ड हो गई।
19: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
20: लायन डेट नट बाइट्स।
21: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रो फाइबर है।
13: माइक्रो फाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
13: हमारे सीमेंट में नहीं है,
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
22: पश्चिम बंगाल में ममता राज के खात्मे और बीजेपी राज के आगाज के बीच 120 घंटे मां माटी मानुष पर बड़े भारी पड़ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद से शुरू हुई हिंसा अब एक बड़ी वारदात की शक्ल में सामने आई, जब बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता और संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के पीए 42 साल के चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
23: अरे मुखटा देखते हैं तो अभी हॉस्पिटल।

0: নিয়ে যান নিয়ে যান
1: দাদা আমি হসপিটালে নিয়ে যান দাদা
2: चंद्रनाथ रात 10 बजे के बाद मध्यम ग्राम में अपने घर लौट रहे थे। डुलतला और चौमाथा के बीच कार सवारों ने उनको रोक कर रास्ता पूछा। एक बाइक सवार ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी।
3: थोड़ा सा हाइट ज्यादा हो गया लेकिन पतला सा।
2: वहाँ करीब 10 राउंड फायरिंग की खबर है। 5 गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगी। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी है। जब लोग पहुंचे कार के अंदर चंद्रनाथ के साथ एक और शख्स था। चीखने रोने की आवाज आ रही थी। चंद्रनाथ को आगे की ही सीट पर बैठाकर लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।
4: स्कॉर्पियो के अंदर 3 आदमी, एक आदमी रो रहा था और डर के मारे दर्जा नहीं खुल रहा था कार का। आदमी पड़ा था और एक आदमी रो रहा था। हमने तुरंत बोला जाए ये जब अभी जिंदा है तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, हम पुलिस बुला रहे हैं।
2: अस्पताल में रात को ही सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। बीजेपी समर्थकों में नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश नजर आया। सुबह जब पोस्टमार्टम हुआ पता चला चंद्रनाथ को 5 गोलियां मारी गई।
5: टोटल हम लोगों के पास जो खबर है कि 5 गोली आया था, 5 गोली लगा था और 1 गोली उनका आईफोन में लगा था। टोटल 6 गोली शूटआउट में हुआ।
2: रात में जब चंद्रनाथ को लेकर लोग अस्पताल भागे और फौरन पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां निसान माइक्रा कार खड़ी मिली जो हत्यारे छोड़कर भागे थे।
6: ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है।
2: बीजेपी कह रही है ये पॉलिटिकल हत्या है जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कराई है। चश्मदीद कह रहे हैं कि देखने में ही शूटर प्रोफेशनल नजर आ रहे थे और पुलिस कह रही है कि हत्या प्लान करके की गई।
7: ये प्री प्लान्ड है, आपने हमें बताया। इट इज ए कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर। पूरा तुरंत अभिलंब पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए।
8: राकेश जी
7: नहीं तो आग लगेगा बंगाल में।
9: पकड़ के इनकाउंटर जोगी बाबा की तरह इनकाउंटर करना। अभिषेक बनर्जी का एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी है, वो पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराधियों को संगठित करता है।
2: बीजेपी शक जता रही है कि काफी पहले से साजिश रचकर चंद्रनाथ की हत्या की गई है, क्योंकि हत्या के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां एक कार थी। सिल्वर रंग की कार की नंबर प्लेट फर्जी थी। पुलिस ने नंबर प्लेट सर्च की, सिलीगुड़ी के शख्स की वो कार निकली जो सफेद रंग की है। कार मालिक ने इसकी तस्वीर एक ऑनलाइन वेबसाइट पर बेचने के लिए डाली थी। हत्यारों ने सफेद की जगह सिल्वर कलर की निसान माइक्रा कार ही इस्तेमाल की थी और उसकी नंबर प्लेट फर्जी लगा ली थी। इतनी साजिश के साथ अगर चंद्रनाथ रथ को मारा गया तो उसके पीछे वजह है कि चंद्रनाथ शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड माने जाते थे। नतीजों से पहले जब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंच गई थी, सैकड़ों कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे तो चंद्रनाथ अकेले कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उनका विरोध करते हुए सामना कर रहे थे। चंद्रनाथ रथ के करीबी और दोस्त भी बताते हैं कि यह हत्या राजनीतिक वजहों से हुई है।
10: तारीख को हमारा मुख्यमंत्री वोट लेंगे और 9 तारीख के शाम को एनकाउंटर मांग कर रहा है।
2: हालांकि चंद्रनाथ की मां दोषियों का एनकाउंटर नहीं बल्कि उम्र कैद चाहती हैं।
11: আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি।
2: उधर कल रात से पुलिस की जांच चल रही है। अब तक पुलिस ने हत्यारों के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन पता चला कि हत्यारे एक से अधिक थे। मेन शूटर बाइक पर था। हत्या विदेशी ग्लॉक पिस्टल से की गई। हत्या के पीछे पूरी प्लानिंग थी। सवाल है कि इस हत्या और उसके बाद के हालात का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बंगाल में एक यही हत्या नहीं हुई। बेलेघाट में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक की मौत हुई तो उदयनारायणपुर में बीजेपी कार्यकर्ता जादौबर की हत्या होती है। नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख को मार डाला गया तो न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता मधुमंडल की हत्या कर दी गई। नारायणगढ़ में टीएमसी के 2 कार्यकर्ता बमबाजी में मारे गए तो बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित राय चिंटू को गोली मार दी गई है। बाकी हमला, हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की तो FIR ही 200 दर्ज हो गई है, तो घटनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हिंसा कैसे रुकेगी, इसका जवाब दे कौन है, यही सबसे बड़ा सवाल है। जवाब फिलहाल कोई नहीं दे रहा। अनिर्बान और पीयूष मिश्रा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।

कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक, अमित शाह की मौजूदगी में चुना जाएगा बंगाल के सीएम का चेहरा। मीटिंग से पहले विधायकों से मिलेंगे शाह। मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु सबसे आगे, राज्यपाल ने भंग की विधानसभा।

हत्या को लेकर बंगाल पुलिस का एक्शन तेज। हमलावरों की बाइक बरामद, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हावड़ा के शिवपुर में टीएमसी बीजेपी में खूनी झड़प, बमबाजी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल। तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस बरकरार, डीएमके और एआईएडीएमके के गठबंधन की खबरों से टीवी के नाराज, अपने सभी विधायकों के इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं टीवी के चीफ विजय।

फ्लैट में छुप कर रह रही थी निदा। ईरान और अमेरिका के बीच फिर से बढ़ा तनाव। ईरान ने अमेरिका पर लगाया बंदरगाहों पर हमले का आरोप। ट्रंप बोले, ईरानी मिसाइल और ड्रोन पर मार गिराए, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर सुरक्षित। सभी का मैं हूं आपके साथ पूजा पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। संक्षिप्त युद्ध विराम के बाद मध्य पूर्व में एक बार फिर से जंग की आग भड़क उठी है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। ईरान के केशम पोर्ट और प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह बंदर अब्बास को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह हमला अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में किया गया। इस घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है और वैश्विक समुदाय की चिंता बढ़ गई है। दुनिया की नजरें अब ईरान की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि यह टकराव आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संक्षिप्त युद्ध विराम के बाद मध्य पूर्व में अब एक बार फिर से जंग की आग भड़क उठी है, क्योंकि अमेरिका ने यह दावा कर रहा है कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। ईरान के केशम पोर्ट को और साथ ही जो प्रमुख बंदरगाह है वहां पर, वही बंदर अब्बास को भी निशाना बनाने का दावा अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह हमला अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हुए हमले के जवाब में किया गया है। तो वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान जारी करते हुए दावा किया है कि तीन अमेरिकी डिस्ट्रॉयर युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। ट्रंप के अनुसार इन जहाजों पर कथित तौर पर हमला हुआ था जिसमें मिसाइल और ड्रोन शामिल थे, लेकिन अमेरिकी रक्षा प्रणाली ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई में ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई छोटी नौकाएं नष्ट हो गई हैं। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान की नेतृत्व व्यवस्था पर भी कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि ईरान समझौते पर नहीं पहुंचता है तो भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना की ताकत को वॉल ऑफ स्टील बताते हुए अपने सैनिकों की प्रशंसा की। ये बयान ऐसे समय में आया है जबकि मध्य पूर्व में तनाव पहले से ही चरम पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पर करीबी से नजर रखी जा रही है।

0: इस मामले से जुड़ा पूरा अपडेट आपको बता देते हैं। युद्ध को काफी समय बीत चुका है। होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला हुआ है। ईरान युद्ध का अपडेट आपको दे रहे हैं। वही अमेरिकी नेवी ने जवाबी फायर भी किया, जिसमें एक हाशिम बंदर अब्बास पर यूएस ने हमला किया है, जो कि यूएस दावा कर रहा है। ईरान के कई शहरों में धमाके की आवाज सुनाई दी है। ईरान के मिनाब शहर में भी कई धमाके किए गए। अमेरिका ने सीज फायर तोड़ दिया है, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। वही भविष्य में ज्यादा घातक जवाब दिए जाएंगे, ट्रंप का साफ तौर पर कहना है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी एक्टिव है। वही ईरान युद्ध पर ये अपडेट आपको दे रहे हैं। यूएस हमले का बड़ा जवाब ईरान देगा, वो साफ तौर पर कह रहा है। एक बार फिर से सीजफायर तोड़ने का दावा ईरान कर रहा है। वही डील नहीं हुई तो ईरान को दर्द काफी ज्यादा होगा, ये ट्रंप ने कहा। तो वही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर से सख्त और चेतावनी भरा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बातचीत और संभावित समझौते को लेकर अहम संकेत दिए। ट्रंप के अनुसार ईरान के साथ चल रही बातचीत फिलहाल बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि ये प्रक्रिया केवल बातचीत तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसे एक औपचारिक समझौते के रूप में जल्द साइन किया जाना जरूरी है। ट्रंप ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि यदि यह समझौता समय पर नहीं हुआ तो ईरान को गंभीर परिणाम और काफी दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं होता तो किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. They have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do.
0: तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रणय और अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रणय के पास लिए चलते हैं आपको। प्रणय, देखिए ट्रंप एक बार फिर से यही कह रहे हैं कि डील कर लो नहीं तो भीषण हमला किया जाएगा, एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं ट्रंप।
2: बिल्कुल पूजा, कभी कभी मौसम के अंदर सनशावर की स्थिति होती है, यानी धूप भी है और बारिश भी हो रही है। लगभग वैसी ही स्थिति यहां पर सीज फायर की देखने को मिल रही है। सीज फायर कहने को है, लेकिन उसके साथ साथ गोलियां भी चल रही हैं, बम भी चल रहे हैं, इसके साथ साथ मिसाइलें और ड्रोन भी दागे जा रहे हैं। हमने यूएई के फुजैरा के ऊपर हुए ईरान के हमले को भी देखा, और साथ ही अमेरिका की तरफ से जो ताजा दावा सामने आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिकी युद्धपोत वहां से गुजरे और उन्होंने न केवल कशम आइलैंड, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में मौजूद है, बल्कि बंदर खमीर, सिरिक जैसे कई जो इलाके हैं जो कि तटवर्ती इलाके हैं ईरान के, वहां पर बमबारी की है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से वार किया गया था, उस पर केवल प्रतिक्रिया की कार्यवाही अमेरिका की तरफ से की गई है। यानी ये सीज फायर कहने को है, लेकिन उसके बावजूद ये सारा जो एक्शन है वो भी हो रहा है। और साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक तरीके से कुछ इंपेशेंस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा है, समझौते की मेज के ऊपर कोई दस्तावेज दस्तखत के लिए आ नहीं पाया है, और यही वजह है कि वो अब धीरे धीरे मिलिट्री पुश भी करना चाहते हैं, लेकिन इस आवरण के साथ कि वो सीज फायर को मेंटेन किए हुए हैं। और ये एक बड़ी नाजुक स्थिति बन रही है यहां पर, क्योंकि इसमें ये सीज फायर ही नहीं टूट सकता, बल्कि एक व्यापक युद्ध फिर से भड़क सकता है यदि किसी तरीके की कार्यवाही दोनों तरफ से और आगे बढ़ती है तो।
0: चलिए ठीक है प्रणय, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। वही ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी नेवी ने कथित तौर पर अमेरिकी युद्धपोतों द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन के जवाब में जोरदार प्रतिक्रिया देने का दावा किया है। ईरान के राज्य प्रसारक IRIB द्वारा जारी किए गए एक फुटेज में उस पल को दिखाने का दावा किया गया, जिसे IRGC नेवी की सख्त कार्रवाई बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना उस समय हुई जब अमेरिकी डिस्ट्रॉयड जहाजों पर युद्ध विराम समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। ईरानी पक्ष का कहना है कि उनकी नौसेना ने इस उकसावे का कड़ा जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि पूरा घटनाक्रम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास के संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव से जुड़ा है, जहां पर पहले से ही हालात बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें लगातार इसी स्थिति पर बनी हुई है। हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान में एक बार फिर से तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, जहां पर एक तरफ सीज फायर का ऐलान किया गया था, अब यहां पूरा उल्लंघन दिख रहा है सीज फायर का। अमेरिका हमले कर रहा है और उसको रिटेलिएट भी ईरान कर रहा है। एक बार फिर से हॉर्मुज पर तनाव बढ़ गया है। अशरफ,
3: बिल्कुल पूजा, दरअसल जिस अंदाज से हताशा ये साफ दिखा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति की कि किस तरह से वो चाहते थे कि जो अमेरिका की शर्तें हैं उन पर ईरान आमादा हो, और ईरान ऐसा कर रहा है कि वो बिल्कुल उन शर्तों पर किसी पर भी मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क है, एक तरफ से जहां पर अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील करे, वहीं सिर्फ अगर मुद्दा है ईरान के लिए तो वो यही है कि स्टेट ऑफ हामूस पर जिस अंदाज से उन्होंने गिरफ्त बना के रखी है उसको वो कतई छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उन्हीं जहाजों को स्टेट ऑफ हामूस से गुजरने की इजाजत देना चाहते हैं जो उन्हें लेवी दे यानी टोल दे। तो जाहिर है कि उसके लिए उन्होंने एक बाड़ी भी बनाई है जो आईआरजीसी के नियंत्रण में है, और पूरी तरह से घोषणा की है ईरान की आईआरजीसी ने कि जो भी संचालन होगा स्टेट ऑफ हामूज में जहाजों का, चाहे वो तेल के टैंकर हो या वेसल्स हो, उनको जो है आईआरजीसी की निगरानी में ही वहां से गुजरना होगा। यहां तक कि कल आईआरजीसी की तरफ से ये भी कहा गया था कि जितने भी जहाज समंदर में फंसे पड़े हैं करीब 2300 यानी 2300 जो सेलर्स हैं उनको अगर कोई मदद चाहिए तो वो आईआरजीसी और ईरान के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि जो ब्लॉकेड उसने कायम रखा है ईरान के खिलाफ उसमें वो जहाजों को मदद करे वहां से निकलने के लिए, लेकिन जो उसके लिए मुश्किल हो पा रहा है, यहां तक कि जो एडवेंचर फ्रीडम करके नाम से एक अभियान की बात की थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो फंसे पड़े जहाज हैं स्टेट ऑफ हामूज में उनको निकालने के लिए वो मदद करेंगे, फिर 24 घंटे के भीतर
0: कोशिश जरूर की जा रही है अशरफ, माना जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वही अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़े तनाव को लेकर ईरान के फारस शहर में ईरानी लोगों ने कार और बाइक रैली निकाली। आईआरजीसी के समर्थन में लोगों ने रैली निकालकर अमेरिका का विरोध किया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में ईरानी लोग भी शामिल हुए हैं। गाड़ियों की ये पूरी रैली निकाली गई है। ईरान में सेना के समर्थन में ये रैली निकाली गई जहां अमेरिका का विरोध भी जताया गया है। अब एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रही ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा। राज्यपाल आर एन रवि ने बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। इस संबंध में राजभवन से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें लिखा है कि फैसला 7 मई 2026 से लागू होगा, यानी ममता बनर्जी अब बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इस्तीफे को लेकर चल रही खींचतान के बीच ये बदलाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू हुआ। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 2B के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया, यानी बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता अब साफ हो गया है। जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती तब तक राज्यपाल ही शासन की कमान संभालेंगे। विधानसभा भंग कर दी गई है। बंगाल में सियासी उलटफेर चरम पर है। बंगाल में राज्यपाल का बड़ा फैसला, राजभवन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये विधानसभा भंग होने के साथ ही बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो कि बंगाल में बीजेपी सरकार की कमान संभालेगा। विधायक दल की बैठक शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच होगी। सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नामों पर अंतिम निर्णय लेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी इस पर पूरे देश की नजर है। इस बीच ममता को उनके गढ़ में हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। तो आज विधायक दल का नेता बीजेपी का चुना जाएगा, नई सरकार पर मंथन होगा। आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और आज बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और कल होगा शपथ ग्रहण समारोह जब बंगाल का सीएम चेहरा सामने आएगा। तो आज चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। ममता दीदी ने अब इस्तीफा दे दिया है तो बीजेपी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब सीएम पद की शपथ तो गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर मौजूद रहेंगे जब आज बैठक होने वाली है। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। विधायक दल की बैठक करीब 3 बजे के आसपास होने वाली है। आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। नई सरकार पर मंथन किया जाएगा। तो इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो कि बंगाल में बीजेपी की सरकार की कमान संभालेगा। विधायक दल की बैठक शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच होने वाली है। तो बंगाल में कल हुए बवाल का नया वीडियो भी सामने आया। धार्मिक नारे लगाते दिख रहे हैं उपद्रवी। आप वीडियो देखिए, वीडियो में हमलावर अल्लाहू अकबर और नारा तकबीर का नारा लगाते हुए सुने जा सकते हैं। हावड़ा के शिवपुर थाना क्षेत्र के चौड़ा बस्ती इलाके में बमबारी की घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। इस घटना में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि इलाके के तृणमूल नेता शमीम अहमद के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान ईंट पत्थर फेंके गए और बमबारी की गई। वही घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और केंद्रीय बल के जवानों को तैनात किया गया। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवपुर थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया है। धार्मिक नारे यहां पर लगाए गए। ज्यादा जानकारी के लिए अनुपम, ये जो शिवपुर का वीडियो सामने आया है इसमें अल्लाहू अकबर नारा तकबीर के नारे सुनाई दे रहे हैं, भारी बवाल वहां मचा, उसके बाद की स्थिति वहां पर अभी कैसी है?
4: ये देखिए, कल ही ये घटना हुई थी। घटना के तुरंत बाद घटना पर काबू पा लिया गया। इस तरह की कई घटनाएं पूरे पश्चिम बंगाल में सामने आ रही है जब दो पक्षों के बीच कई जगह पर ऐसी नौबत आई है जहां मारपीट हुई है। और शिवपुर में कल ये जो इलाका है यहाँ पर कल दो पक्षों के बीच झड़प हुई जिस दौरान बम चले और आरोप है कि बम और गोली चलाई गई। तो इसके बाद सेंट्रल फोर्सेस चूंकि काफी संख्या में पश्चिम बंगाल में मौजूद है तो उन्होंने और पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया।
0: आवाज इस वीडियो में साफ सुनाई दे रही है। अनुपम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुपम, ये बवाल सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, ऐसे तमाम वीडियो जब चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद बंगाल से सामने आ रहे हैं। ये पूरी एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि बौखलाहट है ये दूसरी पार्टी की हारने के बाद, क्योंकि जगह जगह पर दंगा हो रहा है।
4: नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कई जगह जब 4 मई को चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से 2 दिन तक लगातार कई जगहों पर जो चुनाव बाद की हिंसा होती है वो हुई। इस दौरान पुलिस ने काबू करने की कोशिश की लेकिन छिटपुट घटनाएं पूरे पश्चिम बंगाल में होती रही। हमने देखा किस तरह से बुलडोजर चले, 2-3 हत्याएं भी हुई। लेकिन कल से परसों से इस पर थोड़ा सा अंकुश लगा। पुलिस के इनएक्शन की भी बातें सामने आई। फिर पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस की ओर से कड़ी व्यवस्था लेने की बात की कही गई। जो नेता हैं उनके द्वारा भी शांति संदेश भेजे गए। तो ऐसे में घटनाओं में कमी आई है। हालांकि कुछ घटनाएं अभी भी हो रही हैं जिसमें बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी हमला कर रही है। कहीं किसी जगह पर आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। तो ये कई जगह पर हुआ है लेकिन अब तक 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी चुनाव बाद जो हिंसा हुई है उसमें पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। लगभग 1,000 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट में लिया जा चुका है। तो कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से चुनाव बाद दो दिन हिंसा हुई थी उसमें काफी कमी आई है।
0: अभी ये जो शिवपुर का वीडियो है, अगर हम इसकी बात करें अनुपम, तो क्या अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है? इस सब के बाद क्या एक्शन वहां पर लिया गया है?
4: जी बिल्कुल, पुलिस की तैनाती हुई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हर जगह जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही है वहां पर गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि जो गिरफ्तारी का नंबर है वो अभी सामने नहीं आया।
0: तो अनुपम अभी एक चीज और बताइएगा, मैं आपके पास लौटती हूँ। देखिए शिवपुर में बमबाजी की ये नया वीडियो जारी किया गया है, साफ तौर पर बम की आवाज सुनाई दे रही है और नारे यहाँ पर लगाए गए हैं। वीडियो में हमलावर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। हावड़ा के शिवपुर थाना क्षेत्र के चौड़ा बस्ती इलाके में ये बमबारी की घटना सामने आई है, जिसका ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बम की आवाज सुनाई दे रही है, यहाँ पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इस घटना की वजह से बीजेपी के दो कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इलाके के तृणमूल नेता शमीम अहमद के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने यह सब किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, यानी आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि इस दौरान ईंट पत्थर तक फेंके गए हैं, बम फेंके गए हैं, बमबाजी की गई है। वही इस पूरे घटना के बाद, जैसा कि हमारे सहयोगी अनुपम बता रहे थे, भारी तनाव का माहौल बन गया, लेकिन अभी स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, केंद्रीय बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। हावड़ा के शिवपुर इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पूरे घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवपुर थाना के बाहर उसके बाद प्रदर्शन भी किया गया। टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। कोलकाता में इससे पहले बुलडोजर भी चलाया गया। चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटे के भीतर बंगाल के कई जिलों में हत्या, गोलीबारी, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनीतिक दफ्तरों पर हमलों की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। कई इलाकों में शव मिलने और पीट पीट कर हत्या करने के मामले भी दर्ज किए गए हैं। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और सरकार गठन से पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत की खबर भी सामने आई, उसको मौत के घाट उतार दिया शुभेंदु अधिकारी के पीए को। और बीजेपी कार्यकर्ता की भी हत्या की गई है। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
1: It's my music and it's my station.
0: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
4: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
5: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
3: मतलब
5: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
3: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
5: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
6: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
7: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
8: विक्रम, एक हिंट तो देते।
9: विक्रम!
8: हिंट।
10: बड़े आराम से।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
15: इसमें माइक्रो फाइबर है।
14: माइक्रो फाइबर यानी
15: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
14: हमारे सीमेंट में नहीं है,
15: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
16: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
17: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा दे।
18: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से।
19: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ।
20: और वही कहाँ गए थे घूमने?
21: जीके मैक्स।
22: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
21: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
23: जेके वॉल मैक्स
21: बेस्ट पेंट,
23: जेके मैक्स।
21: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
24: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
25: पर मार्केट की समझना, बाउंसर जा रही है।
24: आप कैसे कर लेते हो?
25: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
24: नहीं,
25: और म्यूचुअल फंड्स है
24: सही।
26: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
27: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
28: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
29: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
30: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
31: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
32: लायन डेट नट बाइट्स।
33: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
34: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
35: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील
36: TMT बार एकदम सॉलिड। करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
37: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होल्ड दिस इन। Like I said before, we better hold.
27: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
0: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
1: इसमें माइक्रो फाइबर है।
0: माइक्रो फाइबर यानी
1: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
0: हमारे सीमेंट में नहीं है?
1: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
2: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
5: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
6: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
7: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
8: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
7: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
9: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
6: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
10: इन एसोसिएशन विद
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
13: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सीएम का चेहरा अमित शाह की मौजूदगी में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु सबसे आगे, राज्यपाल ने भंग की विधानसभा। बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, हावड़ा में शिवपुर में चले बम का सामने आया एक वीडियो। टीएमसी बीजेपी में खूनी झड़प से पूरा इलाका धुआं धुआं, धार्मिक नारे लगा रहे थे उपद्रवी। चुनाव के बाद से करीब 500 गिरफ्तारियां। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ के हथियारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। शूटर्स के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ फरार होने का शक। तमिलनाडु में गहराने लगा सरकार का संकट, डीएमके और एआईएडीएमके में गठबंधन की खबरों से टीवी के नाराज। अपने सभी विधायकों के इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं विजय। ईरान और अमेरिका के बीच फिर से बढ़ा तनाव, ईरान ने अमेरिका पर लगाए बंदरगाहों पर हमले का आरोप। ट्रंप बोले, ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराए, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर सुरक्षित।

आज बंगाल बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक, आज शाम 3 से 5 बजे के बीच चुना जाएगा नया मुख्यमंत्री चेहरा। आज कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह, बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर रहेंगे मौजूद। सीएम पद की रेस में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का नाम, टीएमसी को हराने वाले नेता पर सीएम पद को लेकर चर्चा तेज। कल होगा बंगाल में भव्य शपथ ग्रहण समारोह, कोलकाता के मैदान में नई सरकार लेगी शपथ। कल रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती पर शपथ, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता समारोह में रहेंगे मौजूद। शुभेंदु के पीए की हत्या पर सियासी संग्राम, चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में जांच तेज, 3 लोग हिरासत में। हमलावरों की बाइक बरामद, पुलिस को हत्या में इस्तेमाल बाइक मिली, कई एंगल से जांच जारी। ड्राइवर की हालत अब भी गंभीर, चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर की कई सर्जरी हुई, अस्पताल में इलाज जारी। शुभेंदु बोले पहले से रची गई थी ये साजिश, हत्या से पहले कई दिनों तक रेकी किए जाने का दावा। टीएमसी ने मांगी कोर्ट मॉनिटर, सीबीआई जांच, पोस्ट पोल हिंसा पर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। बंगाल में हिंसा जारी, सख्त सुरक्षा के बावजूद कई इलाकों में तनाव और झड़पें हुई। हावड़ा में बमबाजी, 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल, शिवपुर के चौराबस्ती इलाके में हमले के बाद भारी तनाव। हावड़ा में हुए बवाल का नया वीडियो आया सामने, धार्मिक नारे लगाते दिखे उपद्रवी, आरोप है कि इस दौरान ईंट पत्थर फेंके गए और बमबाजी भी की गई। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला, पत्थरबाजी और बम फेंकने के आरोप, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। शिवपुर थाने का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, घटना के विरोध में प्रदर्शन, मौके पर QRT और केंद्रीय बल तैनात। अखिलेश यादव ने ममता से की मुलाकात, बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। अखिलेश बोले बीजेपी ECI की मिलीभगत से चुनाव लूटा गया, बंगाल में लोकतंत्र और वोटिंग अधिक खतरे में। अखिलेश यादव ने कहा दीदी को हराने के लिए पूरा सिस्टम लगाया गया, चुनाव में बड़े स्तर पर साजिश का आरोप लगाया। ममता और अभिषेक को सुरक्षा का खतरा, SP प्रमुख ने बीजेपी पर डर और दबाव की राजनीति का आरोप लगाया। अखिलेश यादव बोले बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, देश में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई। तमिलनाडु में सरकार गठन में देरी पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यभर में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्यपाल से विजय की दूसरी मुलाकात भी बेनतीजा, 118 विधायकों का समर्थन साबित करने को कहा गया। बहुमत से अभी भी दूर टीवी के कांग्रेस गठबंधन, गठबंधन के पास 112 विधायक, बहुमत के लिए चाहिए 118 का आंकड़ा। तमिलनाडु में शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, टीवीके ने अपने विधायकों को मामल्लापुरम के लग्जरी रिजॉर्ट में भेजा। AIADMK ने भी विधायकों को शिफ्ट किया, टीवीके की जोड़ तोड़ की कोशिशों के बीच MLAs को पुडुचेरी भेजा गया। आज गुरुग्राम आएंगे राहुल गांधी, सद्भाव यात्रा में शामिल होकर चुनावी माहौल को देंगे धार। नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, 10 मई वोटिंग से पहले राहुल का रोड शो और जनसंपर्क। सद्भाव यात्रा को लेकर कांग्रेस में मतभेद हुआ, कुछ नेताओं ने पहले यात्रा का विरोध भी किया था। शशि थरूर पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दायर की गई याचिका। नाम और तस्वीर के गलत इस्तेमाल पर थरूर सख्त, दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी इस मामले पर सुनवाई। ब्लास्ट बयान पर बीजेपी का भगवंत मान को कानूनी नोटिस, 7 दिन में माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग। बीजेपी बोली मान फैला रहे हैं झूठ, बयान वापस नहीं लेने पर आपराधिक और सिविल कार्रवाई की चेतावनी दी। पंजाब ब्लास्ट पर सियासत तेज, मान ने कहा था कि बीजेपी चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाती है। बीजेपी ने DGP से FIR दर्ज करने की मांग की। तरुण चुग बोले मुख्यमंत्री का बयान बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना। सुनील जाखड़ का हमला, आतंकवाद पर राजनीति बंद हो, बीजेपी बोली DGP ISI की बात कर रहे, CM बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। पंजाब में ED रेड में सियासी भूचाल, माहौल गर्म हुआ मोहाली, चंडीगढ़ में बिल्डर्स और सहयोगियों पर बड़ी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी सरकार पर करप्शन नेटवर्क चलाने का आरोप, कांग्रेस और अकाली दल ने मान सरकार को घेरा। CLU लाइसेंस घोटाले में ED की बड़ी जांच, सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। प्रताप बाजवा बोले आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आया, CM मान के करीबी लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। अमन अरोड़ा ने आरोपों को बताया झूठा प्रचार, कहा मेरा पूरा जीवन पारदर्शी रहा, डरने वाला नहीं। बिहार कैबिनेट विस्तार में बड़ा बदलाव, NDA में पहली बार हेल्थ JDU और एजुकेशन BJP को मिला। पोर्टफोलियो में बड़ा अदला बदली, फॉर्मूला तय, JDU और BJP के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग का एक्सचेंज हुआ। निशांत को हेल्थ मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी, पहली बार JDU को मिला अहम स्वास्थ्य विभाग। शिक्षा विभाग BJP के मिथिलेश तिवारी को मिला, ऊर्जा विभाग से हटाए गए वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव। CM सम्राट चौधरी के पास अहम विभाग बरकरार, गृह, सामान्य प्रशासन और कैबिनेट सचिवालय जैसे प्रमुख विभाग उन्हीं के पास। अमेरिका का ईरान पर सैन्य हमला, नौसेना जहाजों पर हमलों के जवाब में सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना, ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, ईरान का भी हमले का दावा।
हेशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले का दावा, क्षेत्र में तनाव चरम पर। यूएस ईरान वॉर पर डिप्लोमेसी तेज, ईरान आज अमेरिका के नए युद्ध रोकने वाले प्रस्ताव पर जवाब दे सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नया नियम, ईरान ने जहाजों के लिए सख्त शर्तें लागू कर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर दबाव बढ़ाया। ईरान के सुप्रीम लीडर से अहम मीटिंग, राष्ट्रपति की मुस्तफा खामेनेई से पहली रिपोर्टेड हाई लेवल मुलाकात। लेबनान में तनाव फिर से बढ़ा, इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्ला कमांडर को मारने का दावा किया। हॉर्मुज में तेल टैंकर की नई तस्वीरें, सैटेलाइट इमेज में समुद्र में फैलते ऑयल स्पिल्स दिखे। 120 वर्ग किलोमीटर तक फैला तेल रिसाव स्पेस से दिखा सबसे बड़ा ऑयल स्पिल, शहर जितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ। चार जगहों पर समुद्री तेल रिसाव की पुष्टि, खाड़ी क्षेत्र में कई ऑयल रूट्स पर गंभीर पर्यावरणीय नुकसान। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार, मछुआरों, समुद्री जीवन और ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा खतरा। 15 जून को लखनऊ से नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट, एक घंटे में पूरा होगा सफर। देश के बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित हो रहा है नोएडा एयरपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, द्वारका में 806 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज। हर साल एमबीबीएस की 250 सीटें होंगी उपलब्ध। नूरा फतेही ने विवादित गाने सर के चुनरी तेरी में राष्ट्रीय महिला आयोग से मांगी माफी, कहा अब से ऐसे गानों में नहीं करूंगी काम। जामनगर की सिंगत सीट पर पंचायत चुनाव परिणामों में गड़बड़ी के आरोप, दोबारा मतदान की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शन। 9 मई से फ्लिपकार्ट का सेल्स शुरू होगी फ्लिपकार्ट पर। इस वीकेंड लगेगा सस्ते स्मार्टफोन का मेला, आईफोन, मोटोरोला और पिक्सल पर पाएं मोटी टी।

जम्मू क्षेत्र में भी श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियां तेज। पहला जत्था 2 जुलाई को होगा रवाना। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के 2 हफ्तों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बारिश बर्फबारी के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रुद्रनाथ धाम में तैयारियों का निरीक्षण कर लौटी अधिकारियों की टीम। कपाट खोलने की तैयारियां लगभग पूरी हुई। 18 मई को खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं 21 दिन की साधना। इस दौरान एकांतवास में रहेंगे बाबा बागेश्वर। नासिक TCS धर्मांतरण केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर से किया गिरफ्तार। 25 दिन से थी फरार। दिल्ली के मोतीबाग में चलती एम्बुलेंस में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर में भी धमाका। पास में खड़ी बाइक भी जलकर खाक हो गई। बोकारो में हाईवे पर गैस टैंकर पलटने से भीषण आग लगी। आवागमन ठप हुआ। टला बड़ा हादसा। अररिया में एकतरफा प्यार में युवक ने 17 साल की लड़की को मारी गोली। मौके पर ही युवती की गई जान। अलीगढ़ पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया। 2 MU छात्रों सहित 12 गिरफ्तार। 6 अवैध हथियार बरामद। सहारनपुर में खूंखार कुत्तों का कहर। कुत्तों ने 110 भेड़ों को नोचा। पशुपालक को हुआ भारी नुकसान। दक्षिण मुंबई के पायधुनी में तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हुई। तरबूज के सैंपल में भी जिंक मिला। उसकी मौजूदगी वजह से पुष्टि हुई। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। जब्त हथियारों की बाजार कीमत लगभग 43,38,000 रुपए बताई जा रही है। मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर हिंसा बढ़ी। गांव पर हमले। उपद्रवियों ने घरों को आग लगाई। हिंसा में 6 लोग घायल।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 मई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 12:21 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 9:20 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

लाभ हो सकता है, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

विवाह तय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि,

से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
5: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
6: विक्रम, एक हिंट तो देते।
7: विक्रम!
6: हिंट।
5: बड़े आराम से।
8: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रोफाइबर है।
8: माइक्रोफाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
8: हमारे सीमेंट में नहीं है,
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
10: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
11: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
13: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
5: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
6: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
5: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
7: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
4: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
8: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Monte Carlo, it's the way you make me feel.
5: बंगाल के जनादेश में तो बदलाव हुआ, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक हिंसा की वारदातें शुरू हो गई। राजनीतिक हिंसा के शिकार शुभेंदु अधिकारी के पिए 42 साल के चंद्रनाथ रथ हो गए। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में अज्ञात बाइक सवारों ने घेर कर उन्हें गोली मार दी। चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई और उनके ड्राइवर की स्थिति नाजुक है। इस घटना से बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। जांच के लिए SIT का गठन हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने आशंका जताई है कि ये ममता बैनर्जी की भवानीपुर की हार का बदला हो सकता है।
9: एकांत रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो

0: हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है।
1: चंद्रनाथ रथ की मौत से कई गंभीर सवाल उठे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में आया बदलाव क्या कुछ लोगों को पच नहीं रहा? क्या बंगाल में हिंदुत्व की लहर से राजनीति में आए इस बदलाव को भय से परास्त करने की कोशिश हो रही है? बंगाल और असम में बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर हिंदुत्व रहा, लेकिन 2016 से पहले असम में और अब से पहले बंगाल में विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक ही उसकी बड़ी ताकत। केरल और तमिलनाडु में अभी बीजेपी सत्ता से बहुत दूर है, तो उसकी एक वजह विपक्ष का मुस्लिम फैक्टर है। ऐसे में चुनावी नतीजों के इन्हीं मुस्लिम समीकरणों के आंकड़ों को रखकर बीजेपी के नेता कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहने से नहीं हिचक रहे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने असम के नेता बदरुद्दीन अजमल का वो बयान पोस्ट किया जिसमें अजमल ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहा है।
2: जिसने के लिए जो कुआ खोदा उनके सामने कुआ है, कांग्रेस ने यूडीएफ को शेष करने के लिए कुआ खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया असम से। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया।
1: किरेन रिजिजू ने अजमल के इस बयान पर अपनी पोस्ट में कहा है, अब संसद में हमें मुस्लिम लीग का सामना करना पड़ेगा क्योंकि भारत की संसद में मुख्य विपक्षी दल मानो मुस्लिम लीग बन गया है। कांग्रेस को मुसलमानों के साथ भारतीय नागरिकों जैसा व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है कि सनातन के अपमान का अंजाम हार।
3: जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है।
1: वैसे तो मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव में कोई असर नहीं छोड़ पाई, लेकिन बंगाल के नतीजों के मद्देनजर मुसलमानों के लिए मुस्लिम नेतृत्व का दांव उन्होंने फिर चला है।
4: आई वंस अगेन रिटिरेट माई पॉइंट दैट द मुस्लिम्स शुड ट्राई टू क्रिएट देयर ओन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप। योर वोट इज गेटिंग वेस्टेड बिकॉज यू आर कास्टिंग योर वोट इन फेवर ऑफ दीज so called secular parties are not all secular and they have failed to stop BJP.
1: असम से लेकर बंगाल का फैसला एक सबक है, लेकिन विपक्ष के राजनीति की दिशा बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं दिख रही। ममता बनर्जी का समर्थन करने बंगाल पहुंचे अखिलेश यादव ने जनादेश को नकारात्मक कहा है।
5: यहां पर मतदान हुआ जरूर है, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से कम दबाव में ज्यादा मतदान किया है। इतनी नफरत भरी नकारात्मक राजनीति, जहर घुली हुई राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करेगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था।
1: विपक्ष लंबे समय से बीजेपी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाता है, लेकिन बीजेपी ने इन्हीं आरोपों को अपनी ढाल बनाकर विपक्ष को मुस्लिम तुष्टिकरण पर घेरने में कामयाबी पाई है। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि हिंदुत्व की लहर में पाई गई जीत के बाद बंगाल में शुरू हुई हिंसा को कैसे थामती है। आज तक ब्यूरो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज सामने आएगा सीएम का चेहरा। अमित शाह की मौजूदगी में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मुख्यमंत्री के रेस में शुभेंदु सबसे आगे। राज्यपाल ने भंग की विधानसभा। बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। हावड़ा के शिवपुर में चले बम, सामने आया वीडियो। टीएमसी बीजेपी में खूनी झड़प से पूरा इलाका धुआं धुआं। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ के हथियारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। शूटर्स के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ फरार होने का शक। तमिलनाडु में गिराने लगा सरकार का संकट। डीएमके और एआईडीएमके में गठबंधन की खबरों से टीवी के नाराज। अपने सभी विधायकों से इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं विजय।

0: घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन खबरों में लगातार बंगाल सुर्खियों में है। सीएम का सस्पेंस कब खत्म होगा, जबकि चुनाव के बाद हिंसा की वारदात भी वहां रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब रुक करेंगे, खबरों की झलकियां आपको दिखाते हैं। बंगाल में कब थमेगा हिंसक राजनीति का दौर, सामने आई हावड़ा के शिवपुर में बमबाजी की तस्वीर। नई सरकार बनने से पहले ही बंगाल से खत्म हुआ ममता करार, राज्यपाल ने भंग की विधानसभा। पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। जंग के मैदान से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दिखाएंगे आपको, ईरान के चाहरबाग से गीता मोहन की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से जंग भड़क गई है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से यूएई को निशाना बनाया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम इस समय ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। यूएई की वायु रक्षा प्रणाली के ने कई जगहों पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन को नाकाम कर दिया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सुनाई देने वाली तेज आवाजें मिसाइल्स और यूएई वी के खिलाफ जारी है सैन्य कार्रवाई के कारण है। तो हमलों की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये यूएई में अलग अलग जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से ईरान हमले कर रहा है और यही वजह है कि वहां पर अब इन्हें इंटरसेप्ट करने की कवायद तेज हो गई है। ईरानी हमलों के बाद यूएई में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने का ये अलर्ट है। ड्रोन और क्रूज मिसाइल से यह हमला, तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुआं और तबाही। फुजेरा यूएई की ये तस्वीर है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, एक तरफ तो संधि की बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि बातचीत प्रोग्रेस में है ईरान और अमेरिका के बीच, और इस बीच ईरान यूएई को टारगेट कर रहा है, क्या वजह हो सकती है इसकी?
1: देखिए नेहा, काफी विरोधाभासी स्थिति इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी के इलाके के अंदर देखने को मिल रही है। एक तरफ दोनों ही पक्ष, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, वो कह रहे हैं कि सीज फायर लागू है, सीज फायर अभी टूटा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मिसाइलें भी दागी जा रही हैं, ड्रोन भी दागे जा रहे हैं, बमबारी भी हो रही है। अमेरिकी युद्धपोत, 3 युद्धपोत जो है वो दावा किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं और उन्होंने ईरान के कई इलाकों के अंदर बमबारी की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के युद्धपोत पर बमबारी करने के साथ साथ ईरान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो यूएई के खिलाफ की जा रही है, ये कहते हुए, हालांकि आधिकारिक तौर पर उसे स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन जो बयान जो संकेत आ रहे हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि चूंकि यूएई जो है वो अमेरिका की मदद कर रहा है और उसको सपोर्ट दे रहा है, इसलिए वो भी एक लेजिटिमेट टारगेट बन रहा है। लेकिन फुजेरिया के खास तौर पर अगर आप देखें कि फुजेरा के ऊपर जो हमला हुआ है, 4 दिन पहले भी हमला हुआ था, फुजेरा वो जगह है जहां धन्ना से फुजेरा तक की जो पाइपलाइन है जो कि ऑयल सप्लाई का एक अल्टरनेटिव रूट बन सकता है, यानी जाहिर तौर पर ईरान की कोशिश है उस ऑयल सप्लाई के रेस्टोरेशन पर दबाव बनाने की, जिसको लेकर एक कोशिश और कवायद चल रही है। साथ ही प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द से जल्द खुल जाए, क्योंकि यही उनके लिए इस समय सबसे बड़ा सरदर्द भी बना हुआ है और सबसे बड़ी चुनौती भी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात पश्चिम बंगाल की, यहां पर हावड़ा में कल हुई बमबारी का एक नया वीडियो सामने आया है और बमबारी की घटना शिवपुर के चौड़ा बस्ती इलाके में हुई है, जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली, फिर बमबाजी की तस्वीरें सामने आई। इस हिंसा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, पत्थरबाजी की और फिर बम फेंके। इलाके में तनावपूर्ण माहौल है, स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गई। क्विक रिस्पांस टीम यानी कि QRT को भी वहां पर मौके पर भेजा गया है। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवपुर थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया।
2: हम लोग भी जब अपना वहां पर गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं देखने, तो वो लोग मारने लगा, ईटा मारने लगा, कोई कांच का बोतल मारने लगा, और हम लोग अपना डिफेंस में जब अपना कुछ चलाने लगे तो वो लोग राउंड फायर करने लगा। 7 से 8 राउंड फायर किया सर। उसका बाद जब हम लोग भागने लगे तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर, 12 बम चलाया लोग टोटल सर। यहां से मेरा गोली गया, बम एकदम पैर का नीचे आके फटा। हम लोग 12 से 15 आदमी घायल हो गया सर, सब हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जा करके देख सकते हैं। ऐसा सर हम लोग जीत, हम वो लोग बोल रहा था कि तुम लोग को बीजेपी करने नहीं होगा, तो भाई बीजेपी करने नहीं होगा, बीजेपी तो पार्टी है, हम लोग का मन है, ये तो आजाद हिंदुस्तान है।
0: तापस सिंह गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, इस वक्त क्या तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है, और क्या ये मान लिया जाए कि जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी?
3: जी देखिए, पिछले 2-3 दिनों से इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, लेकिन हावड़ा की जो ये बात सामने आया है, ये शुरू हुआ था चुनाव के दौरान। चुनाव के समय कुछ लोग तृणमूल छोड़ बीजेपी पर शामिल हुए थे, और बतौर बीजेपी के एजेंट और बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर वो चुनाव में हिस्सा लिए थे। तो उस समय से ये आरोप लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता शिवपुर के शमीम अहमद की ओर से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी, और ये चुनाव खत्म होने के बाद कल अचानक ये आरोप है कि शमीम अहमद के कुछ लोग उनके उनके ऊपर मारपीट करने पहुंचे, हाथापाई हुई, और उसके बाद जब दोनों गुटों में दोनों गुट जब आमने सामने हो गए थे तो फिर जमकर बमबारी की गई है, गोलियां भी चलाई गई हैं, और इस पूरे मामले को लेकर इलाके में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला था। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो मेन एक्यूज है शमीम अहमद वो अभी भी फरार है, उनकी तलाश उसके खोज में तलाशी चलाई जा रही है अलग अलग जगहों पर। मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले रामनवमी के जुलूस में इसी जगह पर इस तरीके की हमला हुआ था, जहां कई सारे बीजेपी कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता घायल हुए थे। वहां भी शमीम अहमद के खिलाफ आरोप था, उसके बाद उसमें एनआईए की जांच हुई, एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया था। फिलहाल शमीम अहमद बेल पर बाहर है और दोबारा वो इस तरह की काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन फिलहाल वहां पे भारी सुरक्षा बलों का तैनाती किया गया है। लेकिन इस समय जो स्थिति वो काफी ज्यादा शांतिपूर्ण है, और पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर रेड चलाया जा रहा है और शमीम अहमद को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
0: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हावड़ा के चौड़ा बस्ती में हिंसा की घटना, उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के दिन बाद हुई है। चंद्रनाथ के कातिलों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है, कातिल अब भी फरार है, और इस बीच पुलिस से पूछताछ ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली। तो अभी तक हत्यारे फरार हैं, उनके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ये कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश बॉर्डर से फरार हो चुके हैं। बाइक हालांकि जो हत्यारों ने इस्तेमाल की थी वो बरामद कर ली गई। तापस मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, कई बार कई क्लूज सीसीटीवी से मिल जाते हैं, उससे ही जुड़े हुए होते हैं, फोरेंसिक एविडेंस सामने आती है, इन सबको जोड़कर भी क्या हत्यारों के बारे में इस वक्त पुलिस क्लूलेस है?
3: जी देखिए, हत्यारों के बारे में अभी पुलिस छानबीन कर रही है, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा तत्व पाने की कोशिश में है, लेकिन एक बात साफ है कि 50 सेकंड में ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और भी तत्व सामने आया पुलिस सूत्रों के हवाले से, जो 4-व्हीलर गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो तकरीबन 4 घंटे तक उसी गली में इंतजार कर रहा था, और जो 2 बाइक का इस्तेमाल किया गया था हमलावरों की ओर से वो बाइक भी उसी गली में दूसरे जगह पे इंतजार कर रहा था। यानी एक बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत इस काम को अंजाम दिया गया है। फिलहाल 3 लोगों को से पूछताछ की जा रही है पुलिस की ओर से, लेकिन जो मेन 2 हमलावर थे जो गोली चलाने के पीछे जो थे उन्हें अभी भी उनका कोई पता नहीं चला है। लेकिन उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना का जो तमाम इलाका है यहाँ पे एक लगातार रेड चलाई जा रही है, एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ ऐसे कोई सुराग नहीं लगे कि जिससे पता चले कि ये 2 शार्पशूटर्स जो थे इनका आइडेंटिटी क्या है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं चंद्रनाथ रथ की मां ने टीएमसी को बेटे की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया, उन्होंने दोषियों के लिए फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की मांग की है।
4: আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমাদের ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলের নেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো বাম রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হবে। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটে।
0: तो बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर आज हो जाएगा फैसला।
5: कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री? शुभेंदु अधिकारी के सिर पर सजेगा ताज या बंगाल को मिलेगा कोई सरप्राइज? बंगाल में आज खत्म होगा सीएम का सस्पेंस। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह की निगरानी में होगा नए नेता का चुनाव। कोलकाता में सियासी सरगर्मी तेज। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम का शपथ ग्रहण कल। बंगाल की सबसे तेज और सटीक खबर देखते रहिए आज तक पर।
0: तो विधानसभा भंग होने के साथ ही बंगाल में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई। आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो बंगाल में बीजेपी की सरकार की कमान संभालेगा। विधायक दल की बैठक शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच होगी। सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नामों पर अंतिम निर्णय लेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और इस बीच ममता को उनके गढ़ में हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने की अटकलें तेज हैं।
6: हमारा 3 बजे सब विधायक लोग आएंगे, हमारा ओबीसी जी 4 बजे आएंगे, हमारा उस मीटिंग में हमारा घोषित होगा हमारा नेता कौन है। तो समझ लीजिए नेता जो होता है वही चीफ मिनिस्टर होता है।
0: पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, 3 बजे से लगभग 5 बजे का वक्त तय किया गया है, इसमें सब कुछ सीएम के नाम से लेकर कैबिनेट का गठन सब कुछ तय हो जाएगा?
7: देखिए, प्राथमिक चीज जो इसमें होने वाली है वो ये कि इस बैठक में बीजेपी के जो विधायक है वो अपने नेता को चुनने जा रहे हैं और ये बैठक लगभग 3 बजे के आसपास शुरू होगी। 2 बजे के आसपास सभी विधायकों को विश्वास सेंटर कन्वेंशन जो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल के अंदर वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया और 5 बजे के आसपास ये मीटिंग खत्म भी हो सकती है। इस मीटिंग के अंदर गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, साथ साथ मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री वो भी मौजूद रहेंगे और इन दोनों को पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनाकर बीजेपी ने यहाँ पर भेजा है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है वो तो आज ही तय हो जाएगा, लेकिन कैबिनेट में कौन कौन होगा उसको लेकर अभी और चर्चा मंथन पश्चिम बंगाल में होने वाला है। आज शाम में ही बड़ी बैठकें जो है वो होने वाली है। मुख्यमंत्री के चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह कल होने वाला है और आज रात से लेकर कल सुबह तक के बीच में कई नाम जो है वो तय होने वाले हैं जो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इन सभी नामों के बीच में सबसे आगे अगर किसी का नाम चल रहा है तो वो शुभेंदु अधिकारी का नाम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से हराया। नंदीग्राम में और भवानीपुर में शिकस्त दे चुके ममता बनर्जी को, तो कहीं ना कहीं उनका पलड़ा इस वक्त सबसे ज्यादा भारी है। लेकिन बीजेपी वो पार्टी है नेहा, हमने कई बार देखा है कि वो सरप्राइजेस सामने रखने के लिए जानी जाती है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, इन सभी जगहों पर हमने देखा कैसे कि जब विधायक दल की बैठक हुई उसी में नाम निकल के सामने आया। तो हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री भी आ जाए और अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो उसमें अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो कई ऐसे दावेदार हैं जो पिछले काफी लंबे समय से अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री के लिए रखते रहे हैं, लेकिन अब जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है तो उसमें बड़ा रोल एक एग्रेसिव फाइट अगर किसी ने की है तो वो शुभेंदु अधिकारी है, इसलिए उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होता हुआ नजर आ रहा है। आज लगभग 3 बजे बैठक होगी और 5 बजे शाम तक जो है तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा और प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है।
0: अनुपम मिश्र में सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, अमित शाह की मौजूदगी आज वहां पर रहने वाली है, कितने बजे वो पहुंच रहे हैं और कौन कौन से बीजेपी के अहम नेता वहां पहुंचेंगे?
8: जी बिल्कुल नेहा, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये नोवोटेल है कोलकाता में जहाँ अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वो लगभग 11 बजे के आसपास कोलकाता एयरपोर्ट पर आएंगे। हालांकि कल ही उनके रात में आने की बात थी लेकिन वो कैंसिल हो गया। अब वो 11 बजे के आसपास कोलकाता पहुंचेंगे, इसके बाद वो यहां पर सीधे आएंगे और यहां पर बैठकों का दौर चलेगा। कम से कम 2-3 बैठकें होंगी जिसमें सबसे बड़ी बात है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद तो मुख्य जो विधायक दल का नेता चुना जाना है वो विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। वहां पर सारे विधायक उपस्थित रहेंगे और वहां पर जो सस्पेंस बना हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री होगा वो खत्म हो जाएगा शाम 5:30 बजे तक। उम्मीद की जा रही है कि वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो आज थोड़ी देर में ही यहां पर जो नेता है बीजेपी के सारे बड़े नेता, खासतौर पर श्रमिक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, इनका पहुंचना शुरू हो जाएगा। बाकी के भी जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, खासतौर पर जो पर्यवेक्षक रहे हैं, सुनील बंसल कहिए, मंगल पांडे कहिए, सब लोगों का यहां पर आना शुरू हो जाएगा और मीटिंग्स होंगी। मीटिंग्स में काफी कुछ तय होगा, खासतौर पर इसी पर चर्चा होगी कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। और उसके बाद विधायक दल की जो मीटिंग होने वाली है उसमें सभी विधायकों की उपस्थिति में विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा।
0: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच आमतौर पर नई सरकार बनने तक पुरानी सरकार बनी रहती है लेकिन ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। नई सरकार की शपथ से पहले ही ममता राज का समापन हो गया। राज्यपाल आरएन रवि ने बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। संबंध में राजभवन से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि फैसला 7 मई 2026 से लागू हो गया है, यानी ममता बनर्जी अब बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रही। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और इसको लेकर चल रही खींचतान के बीच यह बदलाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू हुआ है। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, देखिए 15 साल तक राज रहा ममता बनर्जी का, लेकिन विदाई इस तरीके से होगी ये किसी ने नहीं सोचा था।
8: जी बिल्कुल, अप्रत्याशित ये विदाई हुई है और कई नाटकीय मोड़ भी इस दौरान रहे। सबसे पहले तो जो जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन एक ड्रामा हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी जो उनका गढ़ माना जाता था भवानीपुर, वहां से वो खुद अपनी सीट हार गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि रिगिंग हुई है, चुनाव रिग्ड है, इसलिए वो अपना इस्तीफा नहीं देंगी। और ऐसे में 7 मई यानी कल आखिरी तारीख थी, आखिरी दिन था जो पश्चिम बंगाल विधानसभा की मियाद खत्म होनी थी रात 12 बजे के आसपास, लेकिन उससे पहले ही शाम 7 बजे के आसपास जो गवर्नर हाउस है, गवर्नर हाउस की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। गवर्नर पी रवि ने नोटिफिकेशन जारी किया कि भंग की जा रही है पश्चिम बंगाल असेंबली और इसी के साथ ममता बनर्जी का जो कार्यकाल है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, डिसॉल्व हो गया। और ये जो एक दिन का अंतर है इसमें गवर्नर मुख्य तौर पर कार्यकारी जो एक इंटरिम व्यवस्था होती है उसको देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटा समय है क्योंकि आज ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और हो सकता है कि विधायक दल का नेता चुनने के बाद सभी राजभवन पहुंचे और स्टेक क्लेम करें।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच कल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद अखिलेश ने चुनावी धांधली का आरोप लगाया जिस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। ये मुलाकात के वक्त की तस्वीरें हैं जब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से अखिलेश यादव मिले।
9: बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया उन्होंने, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा।
10: आज अखिलेश यादव आया ममता जी का आंसू पूछने के लिए। इसके पहले अखिलेश का आंसू पूछने के लिए ममता जी गए थे, अभी 2 दिन बाद फिर दुख प्रकट करने के लिए आपका स्टैलिन आ जाएगा। तो सारे हारे हुए मोर्चा एक कट्टा होके वो लोग आगे के लिए सपना देख रहा है। सपना सपना ही होता है, हकीकत नहीं बनता।
0: और अब बात तमिलनाडु की, जहां पर सरकार का संकट गहराने लगा है। डीएमके और एआईएडीएमके में गठबंधन की खबरों से टीवीके नाराज हो गया है। अपने सभी विधायकों से इस्तीफे पर विचार विजय कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अभिनेता विजय की पार्टी ने साफ कहा कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी होने के बावजूद उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। टीवीके का आरोप है कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलीभगत कर उसे दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल ने विजय को बहुमत साबित करने के बाद ही शपथ ग्रहण कराने की बात कही। राज्यपाल ने टीवीके से 118 विधायकों के समर्थन पत्र मांगे। टीवीके को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन हासिल और वो वामपंथी दलों और अन्य छोटे दलों से बातचीत कर रहा है। पार्टी अदालत जाने की भी तैयारी कर रहा है। तो तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बहुमत से अभी भी टीवीके दूर है। ये समीकरण हम आपको वहां का दिखा रहे हैं। बहुमत से 5 विधायक कम है। टीवीके के 108 विधायक हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर ये संख्या 113 हो जाती है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 118, उससे 5 विधायक कम। वहीं डीएमके के पास 59 विधायक हैं, एआईडीएमके के पास 47, कांग्रेस के पास 5, पीएमके के पास 7 और आईयूएमएल के पास 2। तो विजय का ये दावा है कि सरकार गठन के लिए उनकी पार्टी को न्योता दिया जाना चाहिए था एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन ऐसा गवर्नर द्वारा नहीं किया गया है और ऐसे में टीवीके अब कोर्ट जाने के लिए तैयार है। और अब बात अमेरिका ईरान युद्ध की। इस बीच बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला हुआ। जवाब में अमेरिकी नेवी ने हमला किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी विध्वंसक पोत गुजर रहे थे, तभी उन पर ईरान की ओर से अटैक कर दिया गया, जिसका बाद में अमेरिका ने भी पलटवार किया। ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई। इस हमले के बाद ईरान ने अपना एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया है। उधर ट्रंप ने धमकी दी, करो नहीं डील करो, नहीं तो ईरान के लिए बहुत दर्द भरे दिन आने वाले हैं।

0: ईरान और अमेरिका में एक तरफा डील को लेकर बातचीत हो रही है, दूसरी ओर हमले हो रहे हैं। ताजा हमले को लेकर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी और ट्रंप की चेतावनी परमाणु हमले जैसी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने डील नहीं की तो बहुत बड़ा आग का गोला दिखेगा।
1: Yeah, it is. It's, they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
0: और इस बीच युद्ध से जुड़े तमाम अपडेट आपको दिखा देते हैं। ओर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला हुआ है, वहीं अमेरिकी नौसेना ने जवाबी फायरिंग की है। काशिम बंदर अब्बास पर यूएस का हमला हुआ है। ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरान के मीनाब शहर में भी कई धमाके हुए हैं। अमेरिका ने सीज़फ़ायर को तोड़ा है, यह ईरान का दावा है, और भविष्य में ज्यादा घातक जवाब दिया जाएगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। यूएस हमले का कड़ा जवाब देंगे, ये ईरान कह रहा है। डील नहीं हुई तो ईरान को दर्द होगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। इस बीच आपको तेहरान लिए चलते हैं, जहां मेरी सहयोगी गीता मोहन मौजूद हैं। युद्ध की वजह से ईरान में भारी तबाही हुई है, नागरिक मारे गए हैं, रिहायशी इलाके तबाह हुए हैं, मलबों में आज भी लोग अपनों के अवशेष खोज रहे हैं। तेहरान के पास चारबाग से गीता मोहन की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
2: 7 अप्रैल को इस विला में एक प्रिसिशन स्ट्राइक हुआ इजरायली मिसाइल से, जिसमें 15 लोग थे इस घर में, यहाँ पे विलास थे, जिनमें से 11 लोग मारे गए, 4 लोग बच गए। ये तेहरान से काफ़ी दूर है, यहाँ पे कोई आपको मिलिट्री हेडक्वार्टर भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन कहा जाता है कि इस ख़ानदान के एक इंडिविजुअल थे जो मिलिट्री में थे। ये भी कहते हैं कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन में नहीं थे, लेकिन 11 लोग, जिसमें से सबसे छोटा एक 14 महीने का बच्चा और सबसे बड़े जो थे वो 75 ईयर्स या उससे थोड़े ऊपर रहे होंगे। इमोशनल सीन्स यहाँ पर आपको उस पहले कुछ घंटों में नज़र आए थे, जहाँ पे जो यहाँ के डेप्यूटी मेयर है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स है, जिनसे हमने बात की, आप उनकी बात भी सुनेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बयां किया यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 AM का वक्त था, रात था, अंधेरा था, और यहाँ पे आग, और 11 लोग मारे गए, जिनमें से जिनके बॉडीज है बस 9 बॉडी बैग्स मिल पाए हैं। अभी भी एक इंसान है जो इंचार्ज है यहाँ पे, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको उसको निकालने के लिए। अभी जब हम बात ही कर रहे थे तो सत्या उनके साथ गया और देखा कि अभी भी वो बॉडी पार्ट्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर ग्राफिक इमेजेस हैं, तो ज़रा संभल के सोच के कॉशियसली इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो ये आपने देखे पोस्टर्स लगे हुए हैं, फोटोज़ लगे हुए हैं हर तरफ, इनका जनाजा कम्युनिटी, इस पूरे कम्युनिटी ने निकाला, क्यों? क्योंकि पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया है, जो घायल थे वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए। सवाल यही उठता है कि अगर आप आज ये जंग रोक भी थे, तब भी यहाँ के लोग जिनके बच्चे मारे गए हैं, मिनाब के पेरेंट्स, यही पूछेंगे कि क्या ये ज़रूरी था, क्या ये जंग ज़रूरी था, और क्या फिर अमन और शांति और ऐसा माहौल बन सकता है जहाँ पे दोनों देश या तीनों देश, अमेरिका, इज़राइल, ईरान, लड़ाई छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे? क्या इन्हें लोग भूल पाएंगे ईरान के? क्या दुनिया भूल पाएगी इस जंग में कितने लोग मारे गए?
0: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज सामने आएगा सीएम का चेहरा। अमित शाह की मौजूदगी में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु सबसे आगे। राज्यपाल ने भंग की विधानसभा। बंगाल में नई थम रहा हिंसा का दौर। हावड़ा के शिवपुर में चले बम में सामने आया वीडियो। टीएमसी बीजेपी में खूनी झड़प से पूरा इलाका धुआं धुआं। चंद्रनाथ के हथियारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। शूटर्स के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ फरार होने का शक। तमिलनाडु में गहराने लगा सरकार का संकट। डीएमके और एआईडीएमके में गठबंधन की खबरों से टीवी के नाराज। अपने सभी विधायकों से इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं विजय। अरब के आसमान पर फिर बारूदी धुआं। ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें। ईरानी बंदरगाहों पर अटैक के बाद हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले। ट्रंप की धमकी, नई हुई डील तो तबाह कर देंगे। डिस्ट्रॉयर के सुरक्षित होने का दावा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद।
0: 9:30 बज गए हैं। वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा।
0: बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक आज शाम 3 से 5 बजे के बीच चुना जाएगा नया मुख्यमंत्री का चेहरा। आज कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर रहेंगे मौजूद। सीएम पद की रेस में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का नाम। टीएमसी को लाने वाले नेता पर सीएम पद को लेकर चर्चा तेज। कल होगा बंगाल में भव्य शपथ ग्रहण। कोलकाता के मैदान में नई सरकार लेगी शपथ। रविनाथ टैगोर की जयंती पर शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेता समारोह में रहेंगे मौजूद। शुभेंदु के पीए की हत्या पर सियासी संग्राम। चंद्रनाथ रथ मर्डर मामले में सियासत तेज। 3 लोग हिरासत में। हमलावरों की बाइक बरामद। पुलिस को हत्या में इस्तेमाल बाइक मिली। कई एंगल से जांच जारी। ड्राइवर की हालत गंभीर। चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर की सर्जरी। अस्पताल में इलाज जारी। शुभेंदु बोले पहले से रची गई थी साजिश। हत्या के पहले कई दिन तक रेकी किए जाने का दावा। टीएमसी ने मांगा कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जांच। पोस्ट पोल हिंसा पर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। हावड़ा में बमबाजी। 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। शिवपुर के चौरा बस्ती इलाके में हमले के बाद भारी तनाव। हावड़ा में हुए बवाल का नया वीडियो आया सामने। धार्मिक नारे लगाते देखे उपद्रवी। आरोप है कि इस दौरान ईंट पत्थर फेंके गए। बमबाजी भी की गई। वीडियो में हमलावर अल्लाह अकबर और नारा ए तकबीर का नारा लगाते हुए सुनाई दिए। मौके पर भारी पुलिस बल और केंद्रीय बल के जवानों की तैनाती। शिवपुर थाने का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। घटना के विरोध में प्रदर्शन। मौके पर क्यूआरटी और केंद्रीय बल तैनात। चुनाव के बाद हुई हिंसा के चलते आसनसोल के कुलटी और नियामतपुर में पुलिस की चेकिंग तेज। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। अखिलेश यादव ने ममता से की मुलाकात। ममता को लेकर सहानुभूति जताई। चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया। अखिलेश बोले बीजेपी ईसीआई की मिलीभगत से चुनाव लूटा गया। बंगाल में लोकतंत्र और वोटिंग अधिकार खतरे में। अखिलेश यादव ने कहा दीदी को हराने के लिए पूरा सिस्टम लग गया। चुनाव बड़े स्तर पर साजिश का आरोप। ममता और अभिषेक को सुरक्षा का खतरा। एसपी प्रमुख ने बीजेपी का डर और दबाव की राजनीति का आरोप लगाया। अखिलेश यादव बोले बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। देश में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी गई है। तमिलनाडु में सरकार गठन में देरी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्यभर में आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और धरना। राज्यपाल से विजय की दूरी मुलाकात भी बेनतीजा। दूसरी मुलाकात। 118 विधायकों का समर्थन साबित करने को कहा गया। बहुमत से अभी भी दूर है टीवी के कांग्रेस गठबंधन। 112 विधायक हैं। बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा चाहिए। तमिलनाडु में शुरू हुआ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। सीवीके ने अपने विधायकों को मामल्लापुरम के लग्जरी रिजॉर्ट में रुकवाया। एआईडीएमके ने भी विधायकों किया शिफ्ट। टीवीके की जोड़ तोड़ की कोशिश के बीच एमएलएस को पुडुचेरी भेजा गया। आज गुरुग्राम आएंगे राहुल गांधी। सद्भाव यात्रा में शामिल होकर चुनावी माहौल को देंगे धार। नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। 10 मई वोटिंग से पहले राहुल का रोड शो और जनसंपर्क। सद्भाव यात्रा को लेकर कांग्रेस से मतभेद। कुछ नेताओं ने पहले यात्रा का विरोध भी किया था। शशि थरूर पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दायर की थी याचिका। नाम और तस्वीर के गलत इस्तेमाल पर थरूर सख्त। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। ब्लास्ट बयान पर बीजेपी का भगवंत मान को कानूनी नोटिस। 7 दिन में माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग। बीजेपी बोली मान फैला रहे झूठ। बयान वापस नहीं लेने पर आपराधिक और सिविल कार्रवाई की चेतावनी। पंजाब ब्लास्ट पर सियासत तेज, बान ने कहा था बीजेपी चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाती है। बीजेपी ने डीजीपी से एफआईआर दर्ज करने की मांग की, तरुण चुग बोले मुख्यमंत्री का बयान बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना। सुनील झाकर का हमला, आतंकवाद पर राजनीति बंद हो, बीजेपी बोली डीजीपी आईएसआई की बात कर रहे हैं, सीएम बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। पंजाब में ईडी रेड में सियासी भूचाल, चंडीगढ़ बिल्डर्स और सहयोगियों पर बड़ी कार्रवाई। आप सरकार पर करप्शन नेटवर्क चलाने का आरोप, कांग्रेस और अकाली दल ने मान सरकार को घेरा। सीएलयू लाइसेंस घोटाले में ईडी की बड़ी जांच, सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। प्रताप बाजवा बोले आपका असली चेहरा सामने आया, सीएम मान करीबी लोगों पर गंभीर आरोप। अमन अरोड़ा ने आरोपों को बताया झूठा प्रचार, कहा मेरा पूरा जीवन पारदर्शी रहा है, डरने वाला नहीं हूं। 15 जून को लखनऊ के नोएडा पहुंचने पहली फ्लाइट, एक घंटे में पूरा होगा सफर। देश के बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित हो रहा है नोएडा एयरपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, द्वारका में 806 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट, बड़ा खुलासा, देश में कुल अपराध घटे लेकिन साइबर क्राइम में तेजी आई। रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 1 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम, जिसमें सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड है। श्रीनगर में देखने को मिल रही है फूलों की बहार, बागवानी विभाग ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पौधे बांटने की शुरू की है मुहिम। पाकिस्तान आईएसआई के शहजाद भट्टी मॉड्यूल के पकड़े गए, गुरगो से पूछताछ में बड़ा खुलासा, दिल्ली का एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर था आईएसआई के निशाने पर। पाकिस्तान आईएसआई के इस मॉड्यूल से जुड़े एक आरोपी ने इस मंदिर की रेकी की थी, इस मंदिर की फोटो पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स को भेजे गए थे। मंदिर पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों को गोली चलाकर मंदिर को निशाना बनाना टारगेट में शामिल था। हिसार में मौजूद एक सैनिक कैंप भी पाकिस्तान आईएसआई के निशाने पर था, जिसकी रेकी का वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजा गया। नासिक टीसीआर धर्माधर मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर से किया गिरफ्तार। दक्षिण मुंबई के पायधुनी में तरबूज खाने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत, मामले में बड़ा खुलासा, चारों मृतकों के शरीर में चूहे मारने वाली दवा का इस्तेमाल होने वाला रसायन मिला। तरबूज के सैंपल में जिंक फॉस्फाइड की मौजूदगी पुष्टि हुई, फोरेंसिक डॉक्टर से परामर्श लेकर मामले की आगे की जांच जारी। महाराष्ट्र नांदेड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। जब्त हथियारों की बाजार की कीमत 43,48,000 रुपए, पुलिस का अनुमान हथियारों का जखीरा कोलंबिया, चीन, यूएई, अमेरिका और अन्य देशों से लाया गया। मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर हिंसा बढ़ी, गांवों पर हमले, उपद्रवियों ने घरों में आग लगाई, हिंसा में 6 लोग घायल। पीलीभीत में शराब की दुकान खुलवाने गई आबकारी टीम पर महिलाओं का हमला, हमलावर महिलाओं ने और पुलिस और अधिकारियों को खदेड़ा। गांव बना छावनी, आबकारी विभाग की 2 गाड़ियों पर गांव वालों का कब्जा, नाम सहित 45 और 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपियों में ज्यादातर संख्या महिलाओं की। एमपी के मंदसौर में कुटेर में हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने पति को प्रेमिका संग पकड़ा, जमकर मारपीट। सूरत में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, 2 भाइयों ने पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों ने मांगी माफी। अमरेली में शेरों को कार से परेशान करने का वीडियो वायरल, वन विभाग ने जांच के दिए आदेश। दिल्ली के मोतीबाग में चलती एम्बुलेंस में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका, पास में खड़ी बाइक जलकर खाक। बोकारो में हाईवे पर गैस टैंकर पलटने से आग लगी, आवागमन ठप, टला बड़ा हादसा। अररिया में एक तरफा प्यार में युवक ने 17 साल की लड़की को मारी गोली, मौके पर युवती की गई जान। अलीगढ़ पुलिस ने डकैती की योजना बनाने गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 AMU छात्रों सहित 12 गिरफ्तार, 6 अवैध हथियार जब्त। सहारनपुर में कुंगाल कुत्तों का कहर, कुत्तों ने 110 भेड़ों को नोचा, पशुपालक को हुआ भारी नुकसान। गोले में दिन दहाड़े लॉ कॉलेज छात्रा का अपहरण, कार सवार बदमाश ने उठाया, शहर भर में की ना गई नाकेबंदी। रायपुर में पारिवारिक विवाद में जीजा ने साली की पिस्टल से की हत्या, 2 महिलाओं की मौत, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में रंगदारी मांगने के आरोप में 4 गिरफ्तार, गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर मांगी गई 1 करोड़ रुपए की रंगदारी, 2 मोबाइल फोन जब्त। झारखंड के गढ़वा में डैम में डूबने से 2 की मौत, बुआ को बचाने उतरा भतीजा भी हादसे का शिकार। बाराबंकी में हाई प्रोफाइल चोरी गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों के जेवरात और नकदी बरामद। मेरठ में स्कूटी सवार मंचलों ने युवती के साथ की छेड़छाड़, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी। सूरत अस्पताल में एम्बुलेंस चालक का हंगामा, सिक्योरिटी गार्ड पर एम्बुलेंस की टायर की हवा निकालने का झूठा आरोप, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। वडोदरा में मगरमच्छ के हमले से युवक की मौत, नदी में पानी पीने के दौरान हुआ हादसा। सूरत में साइबर ठगी का भंडाफोड़, पुलिस ने फर्जी शिपिंग एजेंट बनकर सोशल मीडिया पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को अहमदाबाद से किया गिरफ्तार। अमरावती में पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद, 45 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच 48 घंटे के लिए बंद। 2026 कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड सितारे बिखेरेंगे चमक। फिल्म समारोह में शामिल होंगे ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी। ईशान खट्टर पंजाबी अभिनेत्री तानिया के साथ जुगाड़ों में आएंगे नजर। फिल्म का निर्देशन पलाश वासवानी करेंगे। अनुराग कश्यप निर्देशित बॉबी देओल स्टार और फिल्म बंदर का टीजर लॉन्च। फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। मुंबई में फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं की स्क्रीनिंग में लगा सितारों का मेला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्वानंद किरकिरे दिखाई दिए। फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं आज सिनेमाघर में लॉन्च होगी। दमदार भूमिका नजर आएंगे नवाजुद्दीन। आज दिल्ली में हाई वोल्टेज आईपीएल मुकाबला। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने। दोनों टीम्स पॉइंट टेबल में संघर्ष कर रही है। डीसी नंबर 7 और केकेआर नंबर 8 पर है। दिल्ली कैपिटल्स का खराब फॉर्म जारी। पिछले 8 मैचेस में सिर्फ 2 जीत। टीम पर दबाव बढ़ा। केकेआर जीत की लय के साथ मैदान में उतरेगी। पिछले मैच में शानदार जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। पिच और टॉस बन सकते हैं मैच में अहम भूमिका। अरुण जेटली स्टेडियम में चेस करने वाली टीम्स का रिकॉर्ड बेहतर है। अमेरिका का ईरान पर सैन्य हमला। नौसेना जहाजों पर हमलों के जवाब में सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी। ईरान भी हमले का दावा कर रहा है। कैशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले का दावा। क्षेत्र में तनाव चरम पर। यूएस ईरान वॉर पर डिप्लोमेसी तेज। ईरान आज अमेरिका के नए युद्ध रोकने वाले प्रस्ताव पर जवाब दे सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का नया नियम। ईरान ने जहाजों के लिए सख्त शर्तें लागू कर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर दबाव बढ़ाया। ईरान के सुप्रीम लीडर से अहम मीटिंग। राष्ट्रपति की मोश्तबा खामनेई से पहली रिपोर्टेड हाई लेवल मुलाकात। लेबनान में तनाव फिर बढ़ा। इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्ला कमांडर को मारने का दावा किया। होर्मुज में तेल संकट की नई तस्वीरें। सैटेलाइट इमेज में समुद्र में फैलते ऑयल स्पिल्स दिखाई दिए। 120 वर्ग किलोमीटर तक फैला तेल रिसाव। स्पेस में दिखा सबसे बड़ा ऑयल स्पिल। शहर जितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित। 4 जगहों पर समुद्री तेल रिसाव की पुष्टि। खाड़ी क्षेत्र में कई ऑयल रूट्स पर गंभीर पर्यावरण नुकसान। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार। मछुआरों, समुद्री जीवन और ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा खतरा।

0: और अब आपको दिखाते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड के दौरे के दौरान एक तस्वीर सामने आई है, जहां सीएम योगी ने सीएम धामी के साथ एक ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने जिम में खुद एक्सरसाइज की और फिटनेस का संदेश दिया। दोनों मुख्यमंत्रियों का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोनों सीएम एक साथ जिम की ओपनिंग पर और एक फिटनेस का संदेश देने के लिए दोनों ने यहां मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया कि कैसे फिटनेस जीवन का एक अहम हिस्सा है। दोनों मुख्यमंत्री एक साथ एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दिए। रुके यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
1: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
2: Oh, ouch.
1: However you make money work, we can work with that.
3: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Teaching and learning is evolving. That evolution is powered by those who know how to merge technology with effective instruction. A master's degree in education technology and instructional design at WGU equips you with the skills you need to turn innovative thinking into real-world impact, so you can shape learning in academic or corporate settings. Learn more at wgu.edu.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
8: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
9: विक्रम, एक हिंट तो देते।
10: विक्रम!
9: हिंट।
8: बड़े आराम से।
11: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
12: Take a date, not bites.
13: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion dates, nut bites.
12: Lion date, nut bites.
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: GK Max.
16: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
15: GK Max. Best पुट्टी?
17: JK Wall Max.
18: Best paint?
19: JK Max.
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
4: JK Max Paints. खुशियों के रंग।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
17: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। भाई साहब सब पचा देते,
5: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
11: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
19: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
20: सोच बदलो और बैंक भी।
21: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
22: इसमें माइक्रो फाइबर है।
21: माइक्रो फाइबर यानी
22: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
21: हमारे सीमेंट में नहीं है,
22: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
23: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
24: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
25: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
26: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
27: Like I said before, we better hold the sins.
28: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है।
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है,
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
4: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: विमल बोलो जुबा केसरी।
6: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
9: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
1: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
0: Smartless.
2: Hey guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
0: Marketplace.
3: The big three on the program today, or, you know, the big three of the
0: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
7: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें
9: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद JK मसाले जहां स्वाद वहां JK
10: गोल्डी छोले मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पश्चिम बंगाल में ममता राज के खात्मे और बीजेपी राज के आगाज के बीच 120 घंटे मां माटी मानुष पर बड़े भारी पड़ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद से शुरू हुई हिंसा अब एक बड़ी वारदात की शक्ल में सामने आई, जब बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता और संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के पीए 42 साल के चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
3: अरे मुख टा देखता है तो
4: अभी हॉस्पिटल जाना गए
5: बेल्टा मरो।
3: अरे हम आती तो असुविधा नहीं।
2: चंद्रनाथ रात 10 बजे के बाद मध्यम ग्राम में अपने घर लौट रहे थे। डुलतला और चौमाथा के बीच कार सवारों ने उनको रोक कर रास्ता पूछा। एक बाइक सवार ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी।
6: थोड़ा सा हाइट ज्यादा हो गया लेकिन पतला सा
2: था। वहाँ करीब 10 राउंड फायरिंग की खबर है। 5 गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगी। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी है। जब लोग पहुंचे कार के अंदर चंद्रनाथ के साथ एक और शख्स था। चीखने रोने की आवाज आ रही थी। चंद्रनाथ को आगे की ही सीट पर बैठा कर लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।
7: स्कॉर्पियो के अंदर 3 आदमी, एक आदमी रो रहा था और डर के मारे दर्जा नहीं खुल रहा था कार का। आदमी पड़ा था और एक आदमी रो रहा था। हमने तुरंत बोला जाए ये जब अभी जिंदा है तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, हम पुलिस बुला रहे हैं।
2: अस्पताल में रात को ही सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। बीजेपी समर्थकों में नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश नजर आया। सुबह जब पोस्टमार्टम हुआ पता चला चंद्रनाथ को 5 गोलियां मारी गयी।
8: टोटल हम लोगों के पास जो खबर है कि 5 गोली आया था, 5 गोली लगा था और एक गोली उनका आईफोन में लगा था। टोटल 6 गोली शूटआउट में हुआ।
2: रात में जब चंद्रनाथ को लेकर लोग अस्पताल भागे और फौरन पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां निशान माइक्रा कार खड़ी मिली जो हत्यारे छोड़कर भागे थे।
9: स्टार्ट किया हुआ है जो व्हीकल, जो फोर व्हीलर

0: क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्टेजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है। बात
1: बीजेपी कह रही है ये पॉलिटिकल हत्या है जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कराई है। चश्मदीद कह रहे हैं कि देखने में ही शूटर प्रोफेशनल नजर आ रहे थे और पुलिस कह रही है कि हत्या प्लान करके की गई।
2: प्री प्लान्ड है, आपने हमें बताया इट इज ए कोल्ड ब्लडेड प्लान मर्डर। पूरा तुरंत अभिलंब पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए।
3: राकेश जी
2: नहीं तो आग लगेगा बंगाल में।
4: पकड़ के इनकाउंटर जोगी बाबा की तरह इनकाउंटर करना। अभिषेक बनर्जी का एक अधिकारी पुलिस अधिकारी है, वो पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराधियों को संगठित करता है।
1: बीजेपी शक जता रही है कि काफी पहले से साजिश रचकर चंद्रनाथ की हत्या की गई है, क्योंकि हत्या के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां एक कार थी, सिल्वर रंग की कार की नंबर प्लेट फर्जी थी। पुलिस ने नंबर प्लेट सर्च की, सिलीगुड़ी के शख्स की वो कार निकली जो सफेद रंग की है। कार मालिक ने इसकी तस्वीर एक ऑनलाइन वेबसाइट पर बेचने के लिए डाली थी। हत्यारों ने सफेद की जगह सिल्वर कलर की निसान माइक्रा कार ही इस्तेमाल की थी और उसकी नंबर प्लेट फर्जी लगा ली थी। इतनी साजिश के साथ अगर चंद्रनाथ रथ को मारा गया तो उसके पीछे वजह है कि चंद्रनाथ शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड माने जाते थे। नतीजों से पहले जब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंच गई थी, सैकड़ों कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, तो चंद्रनाथ अकेले कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उनका विरोध करते हुए सामना कर रहे थे। चंद्रनाथ रथ के करीबी और दोस्त भी बताते हैं कि यह हत्या राजनीतिक वजहों से हुई है।
5: तारीख को हमारा मुख्यमंत्री वोट लेंगे और 9 तारीख शाम को एनकाउंटर मांग कर रहा है।
1: हालांकि चंद्रनाथ की माँ दोषियों का एनकाउंटर नहीं बल्कि उम्र कैद चाहती है।
6: जीवन कारादंड चाहिए।
1: उधर कल रात से पुलिस की जांच चल रही है। अब तक पुलिस ने हत्यारों के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन पता चला कि हत्यारे एक से अधिक थे। मेन शूटर बाइक पर था। हत्या विदेशी ग्लॉक पिस्टल से की गई। हत्या के पीछे पूरी प्लानिंग थी। सवाल है कि इस हत्या और उसके बाद के हालात का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बंगाल में एक यही हत्या नहीं हुई। बेलेघाट में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक की मौत हुई, तो उदयनारायणपुर में बीजेपी कार्यकर्ता जादवर की हत्या होती है। नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख को मार डाला गया, तो न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता मधुमंडल की हत्या कर दी गई। नारायणगढ़ में टीएमसी के दो कार्यकर्ता बमबाजी में मारे गए, तो बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित राय चिंटू को गोली मार दी गई है। बाकी हमला हिंसा तोड़फोड़ आगजनी की तो FIR ही 200 दर्ज हो गई है, तो घटनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह हिंसा कैसे रुकेगी, इसका जवाब दे कौन है, यही सबसे बड़ा सवाल है। जवाब फिलहाल कोई नहीं दे रहा। अनिर्बान और पीयूष मिश्रा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health.
1: बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज सामने आएगा सीएम का चेहरा। अमित शाह की मौजूदगी में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे। राज्यपाल ने भंग की विधानसभा। बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। हावड़ा के शिवपुर में चले बम का सामने आया वीडियो। टीएमसी बीजेपी में खूनी झड़प में पूरा इलाका धुआं धुआं। धार्मिक नारे लगा रहे थे उपद्रवी। चुनाव के बाद से करीब 500 गिरफ्तारियां। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ के हत्यारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। चप्पे चप्पे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। शूटर्स के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ फरार होने का शक। तमिलनाडु में गहराने लगा सरकार का संकट। डीएमके और एआईडीएमके में गठबंधन की खबरों से टीवी के नाराज। अपने सभी विधायकों के इस्तीफे पर विचार कर रहे विजय। अरब के आसमान पर फिर बारूदी धुआं। ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें। ईरानी बंदरगाहों पर अटैक के बाद हुर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले। ट्रंप की धमकी, डील नहीं हुई तो तबाह कर देगी के सुरक्षित होने का दावा। डिस्ट्रॉयर के सुरक्षित होने का दावा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: स्पेशल आज सुबह के साथ हाजिर है। अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे बंगाल के नए सरकार की तैयारी से लेकर हिंसा और बवाल तक। हम बताएंगे कि आज बंगाल में क्या सियासी एक्शन हो रहा है। शाम 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले गृहमंत्री अमित शाह की मेगा बैठक में क्या होने वाला है। साथ ही हम रुख करेंगे हावड़ा का, जहां टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में बमबाजी हुई है और धार्मिक नारे भी लगे हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि शुभेंदु के पीए की हत्या की जांच अब कहां तक पहुंची है और क्या था हत्यारों का एग्जिट रूट।
1: कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री? शुभेंदु अधिकारी के सिर पर सजेगा ताज या बंगाल को मिलेगा कोई सरप्राइज? बंगाल में आज खत्म होगा सीएम का सस्पेंस। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह की निगरानी में होगा नए नेता का चुनाव। कोलकाता में सियासी सरगर्मी तेज। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम का शपथ ग्रहण कल। बंगाल की सबसे तेज और सटीक खबर देखते रहिए आज तक पर।
0: लेकिन पहले बात बंगाल में हो रही नई सरकार को लेकर हो रहे एक्शन की। अब से थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के नए विधायकों और बड़े नेताओं के साथ एक बैठक करने वाले हैं। यह बैठक कोलकाता के नोवोटेल होटल में होने वाली है। बीजेपी नेता वहां पहुंच रहे हैं और इस बैठक में शाम को होने वाली विधायक दल की बैठक के साथ साथ कल के मेगा शपथ को लेकर मंथन किया जाएगा। नए मुख्यमंत्री चुनने के लिए अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है। शायद पहली बार अमित शाह किसी राज्य में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हैं पार्टी के लिए। अमित शाह इससे पहले 2022 में यूपी और 2024 में हरियाणा के पर्यवेक्षक रह चुके हैं, लेकिन 24 के बाद पहली बार वो यहां पर पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बंगाल के सह पर्यवेक्षक बनेंगे। उन्हीं दोनों पर नेता चुनने की जिम्मेदारी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार चौंकाने वाला चेहरा नहीं होगा। बंगाल के सीएम के तौर पर सबसे बड़ा नाम ममता बनर्जी को दो दो बार हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का ही है। शुभेंदु के अलावा अगर कोई रेस में है तो वो महिला चेहरा अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली भी। इसके बाद नंबर आता है बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य का और पूर्व बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का। आमतौर पर सरकार बनने तक पुरानी सरकार बनी रहती है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। नई सरकार के शपथ से पहले
2: हमारा 3 बजे सब विधायक लोग आएंगे, हमारा ओबीसी जी 4 बजे आएंगे, हमारा उस वही मीटिंग में हमारा घोषित होगा हमारा नेता कौन है। तो समझ लीजिए नेता जो होता है वही चीफ मिनिस्टर होता है।
0: अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ में है नोवोटेल होटल से। अनुपम, कब तक अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे? जो विधायक दल के पहले विधायकों से मिलना होगा, अलग अलग नेताओं से मिलना होगा, क्या उम्मीद की जा रही है?
3: ये देखिए, दो कार्यक्रम है। सबसे पहला कार्यक्रम मेरे पीछे जो प्राइवेट होटल आप देख रहे हैं उसमें है। यहां पर थोड़ी देर में लगभग 11 बजे के आसपास तो वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से ये जगह ज्यादा दूर नहीं है, तो 11:30 बजे के बाद से यहां पर कुछ मीटिंग्स होनी है, जहां पर खासतौर पर सुनील बंसल, इसके अलावा मंगल पांडे और भी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर रहेंगे, उनके साथ यहां पर मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद जो सबसे अहम बैठक है वो है विधायक दल का नेता चुनने की, वो होगी यहां से थोड़ी दूर, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है। वहां पर विधायक दल की बैठक शुरू होगी 3 बजे के आसपास, जहां पर बीजेपी के सभी विधायक उपस्थित रहेंगे। और जो ये सस्पेंस बना हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, शाम 5-5:30 बजे तक वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। उस मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद जो रस्म होती है कि विधायक दल का नेता कुछ नेताओं के साथ, कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ राजभवन पहुंचता है, राज्यपाल से मिलता है। तो उम्मीद की जा रही है कि 5-5:30 तक ये प्रक्रिया शुरू खत्म हो जाएगी, जहां पर विधायक दल का नेता और जो मुख्यमंत्री बनने वाला है उसका नाम सामने आएगा।
0: खबर ये भी आ रही थी कि कल रात को यानी कोलकाता आने से पहले गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत हुई है। यानी बंगाल का नेता चुनने की दौड़ जो है ना, वो एक बड़ी दिलचस्प दौड़ के तौर पर उभर कर आ रही है। और जो अलग अलग नाम आ रहे हैं, शमिक भट्टाचार्य हो, दिलीप घोष हो या शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं जो ओरिजिनली भारतीय जनता पार्टी से नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी 2019 में बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे क्यों माना जा रहा है?
3: अब साहिल देखिए, बहुत दिलचस्प बात है कि मोहन चरण मांझी जो सह पर्यवेक्षक हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनेंगे ये किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इस तरह से अचरज भरे निर्णय लेने में बीजेपी इससे पहले भी लेती रही है। अब रेखा गुप्ता देखिए, बहुत सारे राजस्थान देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश देख लीजिए, किसी को नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो ऐसे में अभी तक सबसे ज्यादा चर्चित जो नाम है वो शुभेंदु अधिकारी का ही है, लेकिन इस दौड़ में और भी जो लोग शामिल हैं उनमें शमिक भट्टाचार्य अब इस दौड़ में हैं, दिलीप घोष इस दौड़ में हैं। अब महिला मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले 15 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला रही, तो ऐसे में अचानक से अगर निर्णय बदला जाए तो ऐसे में अग्निमित्रा पॉल भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी अटकलें, बहुत सारा सस्पेंस यहां पर बरकरार है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी चूंकि जायंट किलर के तौर पर माने जा रहे हैं,
0: दो बार अधिकारी के पक्ष में जाती है वो ये कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डिलीवर किया बंगाल के रूप में, जिस तरीके से हिमंत बिश्व शर्मा ने असम को डिलीवर किया था। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, असम में इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो पहले से भारतीय जनता पार्टी में थे और बीजेपी के साथ कई सालों से जुड़े थे, इसीलिए बाकी नाम भी फिलहाल बंगाल के भीतर चर्चा में है। लेकिन बंगाल की कहानी पूरी तरीके से अलग है। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, जो बीजेपी का पुराना धड़ा है, जो इससे शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने के पहले से, पहले लेफ्ट सरकार के खिलाफ और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ लोहा लेता रहा है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद अब जाकर वो सत्ता के पास पहुंच पाए, दिलीप घोष हो, शमिक भट्टाचार्य हो, सुकांतो मुजुमदार हो, ये सारे लोग, किस तरीके से आप देखते हैं सत्ता की होड़ को? या कोई होड़ नहीं है, पहले से तय हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि अगर अमित शाह वहां पर आ रहे हैं पर्यवेक्षक बनकर तो कुछ तय करके वहां पर आए हुए हैं।
4: जी हाँ, देखिए बीजेपी के अंदर जो चर्चाएं इस वक्त हो रही है वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से दो दो बार नंदीग्राम और उसके बाद अब भवानीपुर से ममता बनर्जी को टक्कर दिया है उन्होंने, और उन्होंने जीत के दिखाया है, और कहीं ना कहीं अमित शाह और बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने काफी हद तक अपना जो विश्वास शुभेंदु अधिकारी पर रखा था, क्योंकि उन्हें लगा जब शुभेंदु अधिकारी 2021 से चुनाव से पहले तृणमूल छोड़ के बीजेपी में आए, उन्हें लगा कि उनको पता है किस तरह से ग्राउंड नेटवर्क जो है उसको एक्सपैंड करना चाहिए, और तृणमूल के साथ टक्कर देने के लिए जो फॉर्मूला है कहीं ना कहीं उनको पता है। हालांकि बीजेपी के जो पुराना नेतृत्व है पश्चिम बंगाल में, वो राहुल सिन्हा हो, पूर्वी राज्य अध्यक्ष अभी शमिक भट्टाचार्य है, इन सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, सुकांत मजुमदार केंद्रीय मंत्री हैं, ये सब जो हैं इतने साल से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, इनका जो रोल वो भी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि एक बैलेंसिंग एक्ट, ताकि जो नए आए हैं,
0: 3:30 बजे बैठक होगी, 3:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन उस बैठक से पहले जिस तरीके से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र हमें बता रहे थे कि विश्व बंगाल कन्वेंशन सेंटर, यहां पर सबसे पहले विधायकों से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक भी होगी, और वहां पर तय किया जाएगा कि जाहिर किया जाएगा, घोषणा की जाएगी कि विधायक दल का नेता किसे चुना गया है। लेकिन उससे पहले विधायकों का मन जानने की भी कहीं ना कहीं कोशिश जरूर हो सकती है। लेकिन अमित शाह अगर वहां पर आए हुए हैं पर्यवेक्षक बनकर, इससे पहले दो राज्यों में 2024 के पहले वो गए हुए थे, इस बार अगर वो आ रहे हैं तो कुछ तय करके आ रहे होंगे, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़ रहे हैं। सुबह 10 बजे प्रियंका टिबरेवाल प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं, प्रसून आचार्य वरिष्ठ पत्रकार और गौतम लाहिरी वरिष्ठ पत्रकार वो भी चर्चा में शामिल होंगे। गौतम जी और प्रसून कई सालों से बंगाल वहां पर कवर कर रहे हैं और पहली बार आप देख रहे हैं, आपने दो सत्ता परिवर्तन देखे हुए हैं। पहला सत्ता परिवर्तन लंबी पारी के बाद तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में आना, बात क्लियर थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी का सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे बड़ी चर्चा इस बात की होती है कि किसके हाथ में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जाएगी, कौन उस कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि आसान नहीं है उस बात का तय करना। प्रसून जी, किसके बारे में चर्चा ज्यादा सबसे ज्यादा हो रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर?
5: शुभेंदु अधिकारी को सामने रख के चुनाव हुआ था और शुभेंदु अधिकारी जो नारा दिया था हिंदू वोट एकजुट होना चाहिए, सनातनी हिंदू वोट एकजुट होना चाहिए और तभी ममता बनर्जी को हम लोग हरा सकता है, उसका जो हार्डलाइन हिंदुत्ववादी लाइन है उसी के ऊपर वोट हुआ। और अगर नतीजा देखिएगा तो पहले जो 2021 का ये 2024 का ये हिंदू वोट 53-54% बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार 65 से 70 कई जगह पर 80% हिंदू वोट उसका पीछे इकट्ठा हुआ है। तो शुभेंदु अधिकारी एक तरफ से ममता बनर्जी को भी हराया, नंदीग्राम भी जीता है और उसका जो लाइन है हार्ड लाइन वो भी जीत चुका है, क्योंकि हमको लग रहा है जो शुभेंदु अधिकारी को बनने का चांसेस 80% है।
0: बीजेपी में कोई है क्या सॉफ्ट लाइन वाला बंगाल के भीतर? शुभेंदु अधिकारी हार्ड लाइनर है वो तो ठीक है, लेकिन कोई सॉफ्ट लाइन वाला है क्या?
5: हाँ,
0: सभी का जो पूरी लिस्ट दिख रही है, श्रमिक भट्टाचार्य से लेकर दिलीप घोष से लेकर अग्निमित्रा पॉल से लेकर, सभी तो हार्ड लाइन वाले हैं
5: ना। श्रमिक भट्टाचार्य थोड़ा से पहले से भी थोड़ा सॉफ्ट लाइन दिखा रहे थे, वो पहले कहा जो देखिए शुभेंदु अधिकारी को सीधे कह दिया था हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, लेकिन बाद में श्रमिक भट्टाचार्य कहा जो हमको हिंदू मुसलमान दोनों का वोट चाहिए, और अभी भी श्रमिक भट्टाचार्य का जो रूप है वो थोड़ा सॉफ्ट दिख रहा है। देखिए अग्निमित्रा पॉल जो है वो भी पहले एक जमाना में थोड़ा से थोड़ा बहुत टीएमसी का सा झुका हुआ था, लेकिन समीक भट्टाचार्य वो लड़ाई वो इमरजेंसी का टाइम से इमरजेंसी में वो जेल जो जा चुके थे जब वो स्टूडेंट लाइफ में था, इसके बाद से मैं तो समीक भट्टाचार्य का लास्ट 38 ईयर्स बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ देखा है। वो स्टूडेंट लीडर थे, बाद में यूथ लीडर हुए, वो आरएसएस का साथ जुड़ा हुआ, लेकिन उसका वो सॉफ्ट लाइनर थोड़ा भी है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आया 2021 का चुनाव का पहले, लेकिन अचानक वो बहुत हार्डलाइनर हो गया है, तो यही फर्क है दोनों में।
0: लंबी लड़ाई लड़ी है बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने बंगाल के भीतर और आइडियोलॉजिकली पूरी तरीके से विपरीत आइडियोलॉजी की सरकारें झेलकर बीजेपी वहां पर टिकी रही और 2014 के बाद धीरे धीरे पार्टी ने अपने पांव वहां पर जमाए और आज हम देख रहे हैं कि वहां पर उनकी सरकार। गौतम लाहिरी, बाकी सारे नेताओं का हमने जिक्र किया वहां पर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात शुभेंदु अधिकारी की यह भी है कि वो ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव होता है, बंगाल जैसा राज्य कैसे चलता है उसका, एक कैबिनेट के अंदर रहकर उनका अनुभव वहां पर दिखाई देता है। और आज की स्थिति में बीजेपी के भीतर बाहरी और अंदर के पुराने इस तरीके की कोई डिफरेंसेस इस तरीके से रहे नहीं है। हम हेमंत बिस्वा सरमा देख रहे हैं, बाकी सारे राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि मौका दिया जाता है। क्या हम पुराने बीजेपी के लोग और नए शामिल हुए बीजेपी के लोग ऐसा कोई डिफरेंस करें, या आज की स्थिति में शुभेंदु अधिकारी एक पत्थर की लकीर है एक तरीके से कि वो बन जाएंगे, कोई उसमें दो राय नहीं दिख रही है?
6: शुभेंदु अधिकारी के स्वाभाविक नेचुरल चॉइस है। अभी बंगाल में जो वर्तमान स्थिति है, अगर टीएमसी का राज में कानून व्यवस्था सही नहीं था, अभी कानून व्यवस्था को सही करना सबसे बड़ा चैलेंज है नया सरकार के लिए। इस तरह का कहा जाता है कि एक हीलिंग टच देना है, चुनाव के दौरान जो हो गया हो गया, इसके बाद बंगाल अपेक्षा कर रहा है कि जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था इस कायद से वो डेवलपमेंट के तरफ ये नया सरकार ले जाएंगे, इसलिए एक विजनरी लीडर का भी जरूरत है। मैं शुभेंदु का खिलाफ, शुभेंदु एज ए पॉलिटिशियन सक्सेसफुल राजनीति, लेकिन एक विजन के लिए अगर देखना है तो उसके द्वारा किस तरह सरकार चलाएंगे, क्योंकि मुझे एक शंका लग रहा है कि अभी से मैं देख रहा हूँ पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो तरह का रिएक्शन आ रहा है वो सही नहीं है। दोनों देश आपस में रहना है, सही रहना, जो चुनाव का दौरान हो गया अभी वो कट्टर जो हार्ड लाइन का बात जो बोल रहे हैं, हार्ड लाइन से अभी सरकार नहीं चला ना, जीतने के लिए सही था। मुझे लग उम्मीद है कि शायद सरकार के आने के बाद शुभेंदु हो कोई भी हो वो उस तरह का ही वो दिखाएंगे, क्योंकि नहीं तो सरकार चलाना डिफिकल्ट है।
0: प्रियंका
6: मैं
0: डबरेवाल,
6: मुख्यमंत्री नाम में
0: चुनाव के
6: कोई
0: भीतर
6: अटकल
0: हार्ड
6: नहीं
0: लाइन,
6: करना
0: चुनाव
6: चाहता।
0: के बाद सॉफ्ट लाइन, एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद लाइन थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं गौतम लाहिरी वो सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कैसे देखती है, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी में नेता किसको चुना जाएगा, मीडिया बहुत संभल कर इसको लेकर गेस वर्क करती है, क्योंकि हमने कई बार झटका खाया है। मुझे इस बात को मानने में कोई अचरज नहीं है, क्योंकि कई बार हमने देखा हुआ है कि एक ऐसे चॉइस निकल कर आए हुए हैं कि किसी ने सोचा ही नहीं था। उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ जो सांसद थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, बाकी राज्यों में भी हमने कई बार इस तरीके की घटनाएं देखी है। महाराष्ट्र में 2014 में देवेंद्र फडणवीस जो पहले कभी मंत्री नहीं रहे थे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्या बंगाल में कोई सरप्राइज है अभी भी बाकी?
7: देखिए अब ये तो पार्टी का निर्णय रहेगा, लेकिन हमने देखा है शुभेंदु अधिकारी जी का जो प्रयास रहा है पिछले 5 सालों में वो किसी से छुपा नहीं रहा। चाहे वो 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के बाद उनकी भूमिका थी, हर वक्त वो प्रखर रूप में जो है वो जमीनी स्तर पर मौजूद थे, और लोगों में उत्साह जगाना, उनको वापस से खड़ा करना, कर्मियों का मनोबल बांधना, ये सारी चीजें जो है वो हमने शुभेंदु अधिकारी जी से देखी है और सीखी भी है। अब इसके बाद पार्टी जो भी निर्णय लेती है हम तो उन्हें अपना लीडर मानते हैं। दूसरी बात जो आपने सॉफ्ट और हार्ड लाइन की कही, देखिए जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, ये बात हमने पश्चिम बंगाल में तृणमूल के समय देखा था कि किसी एक खास वर्ग का मुख्यमंत्री बनकर के रह गई थी ममता बनर्जी। उन्होंने कभी भी पश्चिम बंगाल की पूरी जनता का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश नहीं की, मगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन्नयन की तरफ बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट को देखते हुए यहाँ जो मुख्यमंत्री रहेगा वो पश्चिम बंगाल के सभी लोगों का मुख्यमंत्री रहेगा, और पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट हमारा टारगेट रहेगा कि किस तरह से जो 6,900 कंपनियां और इंडस्ट्रीज यहाँ छोड़ के चली गई थी वो यहाँ आए, लोगों को नौकरियां मिले। आज जो शिक्षक रास्ते पे बैठे हुए थे सबसे पहला काम रहेगा उनको नौकरियां देना। जो पे कमीशन रुका हुआ था वो देकर के सरकारी जो मुलाजिम थे उनको एक सेटिस्फेक्शन देना, इन सारी चीजों पर हमारा काम रहेगा। तो ये जो जिस तरह से राजनीति पहले चलती आई है, किसी एक खास वर्ग को या तो प्रमोट करो या किसी दूसरे को नजरअंदाज करो, ये सब टारगेट
0: जब अमित
7: बीजेपी के लिए
0: शाह
7: नहीं है।
0: प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे कोलकाता के भीतर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सभी ने देखी थी, और वहां पर करीब 10 लोग बैठे हुए थे उस मंच पर अमित शाह जी के अलावा, और वो जो लोग बैठे हुए थे, किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था कि इनमें से कौन चेहरा बनेगा, तो अमित शाह का जवाब बड़ा सिंपल था उसमें, कि जो बंगाली भाषी होगा, जो यहां का रहने वाला होगा वही बनेगा। प्रियंका जी एक तरीके से
7: जी
0: वही
7: बिल्कुल,
0: चीज होगी, क्योंकि बंगाल के भीतर अगर
7: उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि
0: जी
7: पश्चिम बंगाल में जो भूमि पुत्र है या पुत्री है वही बनेंगे, तो यही हो रहा है। देखिए इससे एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है कि तृणमूल जो बार बार बीजेपी को बहिरागत, बंगला विरोधी और भाषा विरोधी कहता था, आज उनके मुंह सिल गए हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है उसे ऊपर की तरफ उठाएंगे हम, उसे बढ़ाएंगे हम, और ये आपने देखा होगा भारतीय जनता
0: कोई
7: पार्टी के
0: ऐसा
7: हर काम में
0: कोई
7: ये
0: ऐसी
7: सामने
0: चर्चा
7: आया
0: तो
7: है।
0: नहीं पुराने बीजेपी के लोग, अभी देखिए हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से शमिक भट्टाचार्य हो या दिलीप घोष हो, वो कैसे इमरजेंसी के जमाने से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, संघ के साथ जुड़े हुए हैं।
7: देखिए
0: शुभेंदु अधिकारी तो
7: बिल्कुल
0: नए एंट्रेंट्स है ना, एक तरीके से 5 साल हो
7: नहीं
0: गए
7: नहीं
0: शुभेंदु
7: देख
0: अधिकारी, 5-6 साल हो गए बीजेपी में आकर, या ये
7: एक
0: फर्क नहीं
7: मिनट
0: रह गया
7: देखिए,
0: बीजेपी के भी?
7: ये बात भी जो है वो तृणमूल उसे हवा देने की कोशिश कर रहा था, तृणमूल इसे भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने आपको कहा कि शुभेंदु दा को हमने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन चुना। लीडर ऑफ अपोजिशन जब वो बने थे
0: जी
7: तभी भी यही सारी बातें थी कि वो अभी अभी आए उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया। नहीं, पार्टी जो है वो जमीनी स्तर पर देखती है कि आप कार्यकर्ता के साथ किस वक्त में खड़े हैं, क्या काम आपने किया है, किस तरह आप उनके साथ उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो सारी
0: प्रकाश जी
7: क्वालिटी
0: सुन लिया
7: शुभेंदु दा
0: आपने,
7: में देखी गई।
0: नेता विपक्ष बनाया है तो हो सकता है मुख्यमंत्री भी बनेंगे, और शुभेंदु तो आपकी खोज है तो आपको भी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बंगाली है मतलब आप पूरा खरा सोना देख सकते हैं बंगाली अस्मिता का उनमें।
8: नहीं, देखिए इंटरनल मैटर है ये भारतीय जनता पार्टी का कि वो किसको अपना मुख्यमंत्री और किसको अपना नेता माने, मगर पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री रही है, महिला अस्मिता की बात हो रही है, महिला बिल की है, तो मैं चाहूंगा कोई महिला, मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहूंगा कि अगर आप महिला मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी ने विभीषण का काम किया, कल इनके साथ
7: उसी
8: कल
7: महिला
8: हमारे
7: बिल
8: साथ
7: जिसका
8: किया, कल
7: विरोध
8: इनके
7: इन लोगों ने
8: साथ
7: किया था।
8: नहीं, उस बिल का विरोध नहीं किया, वो बिल पास हुआ हुआ है प्रियंका जी, आप पढ़ी लिखी वकील है, वो महिला बिल
7: नहीं
8: पास
7: किया
8: किया
7: तो
8: जा
7: विरोधी
8: चुका
7: था आप
8: था,
7: लोगों ने क्या?
8: डिलिमिटेशन नहीं, डिलिमिटेशन का विरोध था, उस महिला बिल के साथ ने आपने जो गलत किया, उस महिला बिल को आज तक लागू नहीं होने दिया, अगर महिला बिल लागू होता तो 33% से ज्यादा महिलाएं आज चुनाव लड़ती, नहीं लड़ी ना भारतीय जनता पार्टी से,
7: देखिए
8: नहीं लड़ पाई, 100 महिलाएं
7: जो
8: आज,
7: है
0: लेकिन
7: वो
0: स्वयं
7: तो एक
0: प्रकाश जी कोई
7: प्रक्रिया है,
0: चुनौती तो नहीं होगी
7: वो
0: ज्यादा?
7: होके रहेगी।
8: नहीं, देखिए
7: डिलिमिटेशन
8: चुनौती
7: एक प्रक्रिया
0: राजनीति
7: है,
0: के
7: वो
0: अंदर
7: होके
0: में
7: रहेगी। जनगणना एक प्रक्रिया है, वो होके रहेगी।
8: देख,
7: यूसीसी लागू होके रहेगा, मगर
8: हाँ
7: महिलाओं
0: ठीक है
7: का
0: करियो
7: विरोध
0: ना,
7: करते
0: अरे
7: हुए पूरे ऑपोजिशन को देश ने देख लिया और आपका जो
0: नहीं
7: मुखौटा
0: सर,
7: है वो हट गया।
0: अब आपने
7: शायद
0: अपने
7: यही
0: समय में
7: कारण
0: बोला
7: है कि
0: प्रियंका जी,
7: 1500 का लकी
0: चलिए
7: नंबर
0: आज
7: है जो
0: आज
7: इस
0: बोल रहे
7: मामले
0: ये
7: में
0: चर्चा
7: सोलह
0: का मौका
7: महिलाओं
0: नहीं
7: का
0: है,
7: वोट नहीं दिया।
0: ये चर्चा अब अगले 5 साल तक बंगाल के भीतर करनी होगी, क्योंकि बीजेपी अपना एक एजेंडे के साथ आएगी और तृणमूल कांग्रेस उनके आइडियोलॉजी के मुताबिक उसका शायद विरोध करेगी, तो कई बार ये चर्चा करनी होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक अहम मुद्दे पर चर्चा करनी है, क्योंकि बंगाल के भीतर हिंसा नहीं रुक रही है, जो वादा किया गया था उस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हमारी इस खास पेशकश पर, आप बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए आज।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
13: So thank God I get to wake
12: and everything
13: up
12: else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
16: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
17: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
18: सोच बदलो और बैंक भी।
19: और वही कहाँ गए थे घूमने?
20: जीके मैक्स।
21: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
20: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
21: जेके वॉल मैक्स
20: बेस्ट पेंट,
21: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स, जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
22: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
23: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
24: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
25: नहीं,
24: और म्यूचुअल फंड से
25: सही।
26: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
27: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है,
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: विमल, बोलो जुबा केसरी।
4: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
7: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
8: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज ही पता चल पाएगा कि बंगाल का अब नया अधिकारी कौन बनेगा। क्या शुभेंदु अधिकारी के हाथ में बंगाल की कमान आएगी या कोई और बीजेपी चुनेगी। लेकिन उससे पहले ये नए अधिकारी क्या बंगाल की ये तस्वीर, ये चरित्र, ये रक्त चरित्र क्या बदल पाएंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले चंद्रनाथ रथ, उनकी हत्या और जिस तरीके से यह हत्या हुई पूरे बंगाल को चौंका दिया। और दूसरी तरफ धार्मिक नारेबाजी, हावड़ा में बमबाजी। जिस तरीके से बमबाजी हुई है चुनाव के बाद, माना जा रहा था कि इस बार के चुनाव वायलेंस फ्री हुए हैं, तो हो सकता है कि पोस्ट पोल भी कोई वायलेंस नहीं होगा, चुनाव के बाद भी कोई वायलेंस नहीं होगा। लेकिन अभी भी शुभेंदु के पीए के हत्यारों का सुराग नहीं मिल पाया है और हावड़ा में बमबाजी उसी वक्त हो गई। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता बारूदी जंग में भिड़ गए। सवाल यह है कि आखिर कब तक हिंसा का यह दौर चलता रहेगा। और बंगाल के हावड़ा में बमबारी का एक नया वीडियो इस वक्त सामने आया हुआ है। बमबारी की घटना शिवापुर के चौड़ा बस्ती इलाके में हुई थी, जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई और फिर बमबाजी की तस्वीरें भी सामने आई। इस हिंसा में बीजेपी के दो कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, पत्थरबाजी की और बम फेंके। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति को काबू करने में भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल लग गए। तैनाती भी उनकी भारी वहां पर की गई। क्विक रिस्पॉन्स टीम को भी मौके पर भेजा गया है। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवपुर थाने का घेराव कर जोरदार वहां पर प्रदर्शन किया। जरा तस्वीरें देख लीजिएगा।
1: हम लोग भी जब अपना वहाँ पर गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं देखने, तो वो लोग मारने लगा, ईटा मारने लगा, कोई कांच का बोतल मारने लगा। और हम लोग अपना डिफेंस में जब अपना कुछ चलाने लगे तो वो लोग राउंड फायर करने लगा। 7 से 8 राउंड फायर किया सर। उसका बाद जब हम लोग भागने लगे तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर। 12 को बम चलाया लोग टोटल सर। यहां से मेरा गोली गया, बम एकदम पैर का नीचे आके फटा। हम लोग 12 से 15 आदमी घायल हो गया सर, सब हॉस्पिटल में एडमिट है। आप जा करके देख सकते हैं ऐसा सर। हम लोग जीत, हम वो लोग बोल रहा था कि तुम लोग को बीजेपी करने नहीं होगा, तो भाई बीजेपी करने नहीं होगा, बीजेपी तो पार्टी है, हम लोग का मन है, ये तो आजाद हिंदुस्तान है।
0: पर फिर आपको आवाज सुनाते हैं जरा, ये बम की आवाज सुनना बहुत जरूरी। टीएमसी के वहां के नेता पर आरोप है, बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेताओं की तरफ से यह बमबारी वहां पर की गई। हावड़ा के शिवपुर की यह बमबारी की तस्वीर है और उसके साथ साथ आवाज आप आसानी से सुन सकते हैं, बम विस्फोट का आवाज। और दरअसल यह आवाज इस बात का आगाज है कि बंगाल के भीतर जो उनका चरित्र है वो अभी तक नहीं बदला है। और जो भी नई सरकार आएगी, जो भी अधिकारी वहां पर बैठेंगे, अब उन्हें इस बात का फैसला करना है कि यह चरित्र किस तरीके से बदला है। तपस सेनगुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपस, हमने देखा कि चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, उसके बाद मानो ऐसे लग रहा था कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद की जाएगी, एक बार फिर सबको झंझोड़ कर रख दिया है कि इस तरीके से हत्या होती है। लेकिन दूसरे ही दिन हावड़ा में, कोलकाता से पास है, हावड़ा के भीतर बमबारी।
2: जी देखिए, इस तरह की घटनाएं पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रहा है और हावड़ा के शिवपुर में ये पहली घटना नहीं है। हम जानते हैं इस इलाके में, चौड़ा बस्ती इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। अगर आप याद करें 2 साल पहले रामनवमी के जुलूस पर अटैक किया गया था और भाजपा के कार्यकर्ताओं को खूब मारा गया था। और उसके बाद शमीम अहमद, एक लोकल क्रिमिनल जो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हैं, उनके खिलाफ आरोप था। एनआईए ने उसे गिरफ्तार भी किया था। और इस बार भी आरोप ये लगाया जा रहा है कि उस इलाके में कुछ लोग भाजपा में शामिल हुए थे और चुनाव के दौरान वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे, तो उस समय से उन्हें धमकियां दी जा रही थी। और चुनाव के बाद जब अरूप राय मध्य हावड़ा से जीते तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार, तो उसके बाद शमीम अहमद के लोगों के खिलाफ आरोप है कि शमीम अहमद अपने गुंडों को लेकर चौड़ा बस्ती पहुंचे और जो जो भाजपा के पक्ष में काम किया था चुनाव में और चुनाव से पहले उन्हें टारगेट करके गाली गलौज और उन्होंने मारपीट करना शुरू किया। जब दोनों गुट आमने सामने आ गए तो
0: चुनाव के बाद जो माना जा रहा था कि जिस तरीके से वहां पर सीएपीए की व्यवस्था वहां पर रखी गई है, 2.5 लाख वहां पर जवान तैनात किए गए हैं, उसके बाद हो सकता है कि इस बार पोस्ट पोल वायलेंस ना हो, अगले आदेश तक उन्हें वहां पर रहने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद पोस्ट पोल वायलेंस की घटनाएं नहीं रुक रही है। आज बंगाल में नया अधिकारी चुना जाएगा, लेकिन उस अधिकारी के पीए के हत्यारे अभी भी पकड़ से बाहर है, क्योंकि हावड़ा के घोड़ा बस्ती में हिंसा की घटना उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के एक रोज बाद ही हुई है और चंद्रनाथ के कातिलों का अब तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। कातिल अभी भी फरार है और इस बीच पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ संदिग्धों को उठाया हुआ है, 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है और एक्शन तो शुरू हो चुका है तपस, लेकिन कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि शायद वो सीमा पार भाग गए होंगे, क्योंकि गाड़ी मिली बाइक मिली मामला कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन
2: जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से कड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाया जा रहा है इस पर, लेकिन अभी भी पुलिस को सफलता नहीं मिली है जहां तक इन हमलावरों को आइडेंटिफाई करने की बात हो, अभी तक पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर की है, जो पूरा ऑपरेशन रहा गाड़ी को रोकना उसके बाद गोली चलाना फिर वहां से भागना, 50 सेकंड का एक ऑपरेशन था और इसके लिए जो हमलावर जो बाइक इस्तेमाल कर रहे थे वो बाइक के साथ वो वहां पर तकरीबन 3 से 4 घंटे उस रास्ते में इंतजार कर रहे थे। जो 4 व्हीलर यूज किया गया था वो भी उस गली में थोड़ा आगे जाकर 4 घंटे तक इस्तेमाल इंतजार कर रहा था, ये सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि बारीकी से प्लानिंग की गई थी और इस समय बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि जो मेन 2 गनमैन जिन्हें सीसीटीवी में देखा जा रहा है उन्हें धर दबोचना, लेकिन अभी तक पुलिस को इसकी सफलता नहीं मिली है। और जो बॉर्डराइन जो एरिया है जो बांग्लादेश से सटा हुआ जो 2 जिले
0: क्योंकि बंगाल की जनता इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि अगर 2 चरणों में जहां पर चुनाव होता है वहां पर वायलेंस नहीं होगा, पीठ थपथपाई थी चुनाव आयोग की भी और वहां पर सुरक्षा बलों की। देखिए इस बार बंगाल के भीतर एक भी वायलेंस की घटना नहीं हुई, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सोमवार को चुनाव के नतीजे आ गए, मंगलवार से लेकर आज शुक्रवार तक लगातार एक भी रात शाम सुबह ऐसी नहीं गुजरी है कि बंगाल के भीतर मारपीट नहीं हुई हो, किसी की हत्या नहीं हुई हो, गोली मारी नहीं गई हो या बमबारी नहीं हुई हो।
3: जी बिल्कुल, और देखिए हमें इसकी पूरी आशंका थी कि हारने के पश्चात तृणमूल की जो ये हालत होगी ये बौखला जाएंगे और बौखलाहट में इस तरह के इंसिडेंसेस ये हर जगह करने की कोशिश करेंगे। यही कारण था कि बार बार इलेक्शन कमीशन को हमने रिक्वेस्ट किया था कि सेंट्रल फोर्सेस को तैनात रखिए। इतनी तैनाती के बावजूद अगर ये घटनाएं घट रही हैं तो अगर ये सेंट्रल फोर्सेस नहीं होती तो ये यहाँ पर क्या घटाते ये सोचिए। देखिए आज जो लोग कल तक तृणमूल किया
0: उनके होते हुए भी घटनाएं हो रही है प्रियंका जी,
3: मैं वही आपसे कह रही हूँ
0: सीरियस बात ये है कि उनके होते हुए भी घटनाएं हो रही है। 8 से 10 लोगों की हत्या हो चुकी है अब तक, बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं, तोड़फोड़ भी हो रही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ता करते थे वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं,
3: बिल्कुल भी नहीं।
0: और टीएमसी वाले भी अभी भी अपने जो कार्यकर्ता है वो अभी भी बाज नहीं आ रहे, जो इससे पहले करते थे वो भी बाज नहीं आ रहे।
3: ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो लोग कल तक टीएमसी करते थे पार्टी के हारते ही उन्होंने अपने आप को बीजेपी डिक्लेयर कर दिया और टीएमसी से ही बदला ले रही है। जिनका आपस में गुष्टीदंड था, जिनकी आपस में लड़ाई थी, वो एक दूसरे का ये हालत कर रहे हैं और झंडा उठा लिया बीजेपी का। तो हमारा यही कहना है कि भाई आज अचानक आप बीजेपी कैसे हो गए, कल तक आप टीएमसी थे और आज अपने ही स्कोर सेटल करने के लिए आप बीजेपी का झंडा थाम ले रहे हो। लेकिन इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होके रहेगी।
0: मैं इसके बीच
3: एक चीज और बोलती हूँ, मैं इसके बीच एक चीज और बोलती हूँ। देखिए
0: ममता बनर्जी
3: ने क्या कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, ये ममता बनर्जी ने कहा मैं रिजाइन नहीं करूंगी। ये सारी घटनाएं उन 2 दिनों के बीच में हुई जब उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। क्यों रिजाइन नहीं करना चाहती थी? इन घटनाओं को हवा देना चाहती थी। देखिए बीजेपी ने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की है, अभी तक बीजेपी सरकार में नहीं आई है। बीजेपी के सरकार में आ जाने के बाद एक भी घटना नहीं घटेगी।
0: ठीक है, उम्मीद वही है, लेकिन आज विधानसभा भंग हो गई है और आज और कल के भीतर अगर कुछ वहां पर घटनाएं होती है तो किसको जिम्मेदार ठहराइए वो भी जरा बता के रखना होगा सभी को। लेकिन स्वयं प्रकाश जी आप वीडियो दिखाइए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो वीडियो हमने दिखाया था उसका जवाब दीजिएगा। जो शमीम अहमद का नाम लिया गया था, हमारे संवाददाता वहां पर नाम ले रहे थे, जो बम फोड़ रहे हैं, ये क्या है, ये कहां से आते हैं ये सब बम और ये सारी चीजें?
4: मैं आपकी दोनों बात, आपकी ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेरी बहन प्रियंका टिबड़ेवाल जी अभी बोल रही थी कि टीएमसी के लोग कर रहे हैं, ये इनके प्रवक्ता और नेता है कुशल पांडे, हाथ में गदा लेकर के तोड़ मचा रहे हैं, इनका नाम ये देख लीजिए सोशल मीडिया हैंडल पर है, कुशल पांडे को ये जानती है, इनके दल के प्रवक्ता है, हाथ में हनुमान जी की गदा लेकर के ये जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उस दिन सब जगह तोड़फोड़ तृणमूल के पार्टी कार्यालयों में सब जगह की है, हुड़दंग मचाया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, आपने जीता है बंगाल के चुनाव को लूटा है, आप जीतने का अधिकार आप बोल रहे हैं।
0: तो ये बम कौन फोड़ रहा है? जो स्वयं प्रकाश जी हावड़ा में फोड़ रहा है, हावड़ा के भीतर बम कौन फोड़ रहा है?
4: हावड़ा बम रहा,
0: हावड़ा के भीतर बम कौन फोड़ रहा है?
4: 2.5 लाख टैंकर, मिलिट्री फोर्सेस, टैंकर सब उतार दिए, सिर्फ राफेल उतारना बाकी रहा और उसके बावजूद भी बम फोड़े जा रहे हैं, ये किसके किस किसने कौन हवा दे रहा है इस चीज को? इसके बारे में तो सवाल होना चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए इस व्यक्ति की, भी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, और जहां पे
3: गिरफ्तारियां हो रही हैं एक एक रात में 200,
4: फिर आप बीच में बोल रहे
0: 433 गिरफ्तारियां अब तक,
4: कुशल मैंने दिखाया इसकी की क्या, आप क्या करेंगे ना, अभी आप बचने की बात करने के लिए बोले तृणमूल वाले झंडा पकड़ा क्यों रहे, झंडा मारिए आप उनको, पकड़ के जेल में डालिए, क्यों तृणमूल वाले वो भाजपा में ले रहे हैं, नहीं ले करेंगे, कितने नेता जाएंगे? प्रियंका जी आपसे बात करूंगा, आपसे बात करूंगा, कितने पार्षदों से आपने संपर्क साधा है तृणमूल के और कितने ग्राम पंचायत के सदस्यों से, सबको ले रहे
3: हैं, ले रहे
4: अभी भी शुभेंदु अधिकारी भी तृणमूल का है,
3: शुभेंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस का है,
4: शुभेंदु अधिकारी भी कांग्रेस पार्टी से गया है, आपके पास नेता नहीं है,
0: क्या ये बात सही है? एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, एक मिनट लेकिन एक पॉलिटिकल चरित्र हमने देखा गया है, जैसे ही कोई पार्टी चुनाव हारती है उन्हीं का कैडर तुरंत झंडा और कपड़े स्लोगन सब बदल देता है, लेफ्ट ने वही किया, लेफ्ट के कार्यकर्ता शिफ्ट हो गए आपके पास, कुछ बीजेपी के पास चले गए, आज वही हो रहा है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कल तक आपके साथ में खड़े होने वाले कई लोग अचानक ज्ञान देने लग गए कि कैसे टीएमसी की गलतियां वहां पर हो गई, ये बदलाव तो हर चुनाव में हम देखते हैं, ये पॉलिटिकल आदमी का कैरेक्टर होता है, ये किसी स्टेट का, भाषा का या बंगाल का अस्मिते का कैरेक्टर नहीं है, ये पॉलिटिकल व्यक्ति का कैरेक्टर होता है हर जगह।
4: जिनको राजनीति करके राजनीति से पैसे कमाना है मैं इसके खिलाफ हूं, अगर आप आइडियोलॉजिकल स्वयं प्रकाश पुरोहित अगर महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करता है उसको भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मगर इन्होंने संतोष पाठक को लिया जो एआईसीसी का कैशियर है, ट्रेजरर है, एआईसीसी मेंबर है और ट्रेजरर था वेस्ट बंगाल, उनको टिकट दिया चौरंगी से, हार गए चुकी वो चुनाव, प्रियंका जी भी मेरी चुनाव लड़ी थी नहीं जीत पाई इस
3: और ना ही आपकी सरकार जीती, कम से कम हमारी सरकार जीती, यही फर्क है आप में और बीजेपी में, मैं हार कर खुशूं क्योंकि मेरी सरकार जीती,
4: मेरी सरकार कोई बात नहीं, हाँ ठीक है आप खुश रहिए, मगर मैं
3: अरे भाई
0: लेकिन जरा ना एक बात का ख्याल रखना होगा, देखिए ये वाद विवाद, पॉलिटिकल वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहेगा, लेकिन जो नई सरकार आएगी वो और जिन्होंने ये करवाया है वो उन सभी को चंद्रनाथ रथ की मां को जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि चंद्रनाथ रथ की मां ने टीएमसी की को बेटे की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया हुआ है, टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया हुआ है, उन्होंने दोषियों के लिए फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा मांगी है, क्योंकि मां ये कह रही है कि मैं फांसी की सजा नहीं मांग सकती, अभी भी चंद्रनाथ रथ की मां कह रही है कि मैं फांसी की सजा नहीं मांग सकती, क्या कहा है जरा एक बार सुनते हैं।
5: আমি একজন মা, আমি চাইব না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি, আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমাদের ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দল নেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়, আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটে।
0: सुनाचार्य, उम्मीद ये की जा रही थी कि चरित्र बदलेगा, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है अभी भी।
6: देखिए, मेरा एक दूसरा व्यू है। ये बांग्लादेश कहिए, ये त्रिपुरा कहिए, ये बंगाल कहिए, बंगाली का कैरेक्टर है। हम 50 साल का अगर इतिहास को देखें तो वही कैरेक्टर है वेस्ट बंगाल का। वो लेफ्ट फ्रंट जमाना में कांग्रेस का वोट देता था तो हार्ट काट देता था। अभी तृणमूल का पावर में आया, वो ऐसा ही लेफ्ट का लोगों का मारा था। 21 में बीजेपी का लोगों को मारा था। अभी आप बांग्लादेश को देखिए, वही के सेम कैरेक्टर है। त्रिपुरा को देखिए, यही सेम कैरेक्टर है। मेरा तो लगता है बंगाली कैरेक्टर में ऐसा है हिंसा, फोर्सफुल वायलेंस का। अगर पूरा के पूरा रीजन देखिए, हम इसका ऊपर एक समीक्षा भी कर रहे हैं।
0: मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं आपसे, लेकिन गौतम लाहिरी, आप इस पर बात करिए, क्योंकि मैंने मैंने शुरुआत में ही कहा था, किसी स्टेट का या किसी भाषिक व्यक्ति का यह कैरेक्टर नहीं होता, आम आदमी का यह कैरेक्टर नहीं होता हिंसा का। जो राजनीतिक नेता है या राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसका यह कैरेक्टर होता है, क्योंकि उसको बदला लेना होता है, उसको बदला लेना होता है। क्या यह बदले की राजनीति रुकेगी? बदलाव होगा।
7: देखिए, हमें तो उम्मीद था शाहिद जी की इस बार बदलाव होगा, क्योंकि चुनाव का दौरान कोई हिंसा नहीं हुआ। शायद सुरक्षा बल की तरफ से कोई चूक होगी है, वो सोचा था कि कुछ ऐसे पोस्टपोन वायलेंस शायद नहीं होगा, इतना भारी बहुमत से पार्टी आई है। लेकिन बंगाल का इतिहास में जो है, प्रश्न बोल रहे बात सही है, लेकिन इस तरह का सिर्फ टीएमसी भाजपा नहीं। आप देखिए, जब सत्ता में 15 साल वामपंथी नहीं गए, आप लेनिन का मूर्ति भी तोड़ रहे हो, क्या है? वामपंथी है ही नहीं, मुश्किल से एक सीट जीता। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जो चरित्र में हो सकता है, लेकिन ये नेताओं को समझना चाहिए। भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनौती होगा सरकार का कैसे एक कुछ तरह से लोगों को समझाना है। एक मैं चाहता हूँ कि हर दल का जिम्मेवारी है, कोई सिर्फ भाजपा नहीं, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सबको शांति रखने के लिए जो ज्वाइंटली कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा कल।
0: इम्पोर्टेंट नहीं है बंगाल का अगर राजनीतिक चरित्र, राजकीय चरित्र अगर इस तरीके से है तो उसे बदलना होगा, और इसी बदलाव के लिए जनता ने वहां पर इस तरीके से वोट डाला, यह भी कहा जा रहा है। तो यह बदलाव होता है नहीं होता है, या बदले की राजनीति होती है क्या होता है, उस पर तो नजर रखनी होगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही होगी कि बंगाल के भीतर नया अधिकारी उनका चुना जाएगा, नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा आज शाम तक। बंगाल का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए कौन करेगा, इसका फैसला होने जा रहा है। तो इस पर हमारी लगातार कवरेज जारी रहेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे को लेकर खबर हमारी कवरेज जारी रहेगी, आप देखते रहिए। आज
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सबसे बड़ी परेशानी महंगाई है। सर्वे में सामने आया है कि 76% अमेरिकी बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग से नाराज है। वहीं 72% लोगों ने महंगाई संभालने के तरीके को खराब बताया है, जबकि ईंधन की बढ़ती कीमतों ने भी लोगों का गुस्सा बढ़ाया है। इसी बीच ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ी संख्या में अमेरिकी मान रहे हैं कि इस टकराव का असर सीधे उनकी जेब पर पड़ रहा है। सर्वे में कहा गया है कि 66% लोगों ने ईरान से निपटने के तरीके पर असहमति जताई है। वहीं 61% अमेरिकी पहले ही इस जंग को गलती बता चुके हैं, जबकि ईरान तनाव के बाद गैस प्राइस में उछाल ने नाराजगी बढ़ाई है। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने हैं और उससे पहले ये आंकड़े रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे की घंटी माने जा रहे हैं, क्योंकि सर्वे में डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती दिख रही है। ऐसे में सर्वे में जो राय सामने आई है उसके मुताबिक 49% लोग डेमोक्रेट उम्मीदवारों को वोट देने के पक्ष में हैं, वहीं 44% लोग रिपब्लिकन उम्मीदवारों के साथ नजर आ रहे हैं और फरवरी के मुकाबले डेमोक्रेट्स की बढ़त मजबूत हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को इमिग्रेशन के मुद्दे पर बाकी मामलों से बेहतर सपोर्ट मिला। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पॉलिसी को लेकर 45% लोगों ने ट्रंप का समर्थन किया है, वहीं 54% लोग इससे असहमत हैं। सर्वे में दूसरी तस्वीर ये निकलकर सामने आई है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी किसी भी पार्टी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर 33% लोगों ने दोनों पार्टियों पर भरोसा नहीं जताया, जबकि अर्थव्यवस्था पर 27% लोग किसी के साथ नहीं नजर आए। वहीं क्राइम और इमिग्रेशन पर भी भरोसे का संकट नजर आ रहा है। ट्रंप की गिरती रेटिंग इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उन्हें 52% अप्रूवल मिला था, लेकिन कुछ महीनों में तस्वीर तेजी से बदल गई। हालांकि रिपब्लिकन समर्थकों के बीच उनकी पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है, जहां उन्हें 85% सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका की राजनीति में ये गिरावट केवल एक सर्वे का आंकड़ा नहीं मानी जा रही। महंगाई, ईरान तनाव और बढ़ती फ्यूल कीमतों ने व्हाइट हाउस की चुनौती बढ़ा दी है। ऐसे में मिड टर्म चुनाव ट्रंप के लिए ताकत दिखाने से ज्यादा भरोसा बचाने की लड़ाई बनते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मुख्यमंत्री भी चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु सबसे आगे, राज्यपाल ने भंग की विधानसभा।
1: बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, हावड़ा के शिवपुर में चले बम का सामने आया वीडियो। टीएमसी बीजेपी में खूनी झड़प से पूरा इलाका धुआं धुआं, धार्मिक नारे लगा रहे तो उपद्रवी। चुनाव के बाद से करीब 500 गिरफ्तारियां।
0: शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ के हथियारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, चप्पे चप्पे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। शूटर्स के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ फरार होने का शक।
1: तमिलनाडु में गहराने लगा सरकार का संकट, डीएमके और एआईएडीएमके में गठबंधन की खबरों से टीवी के नाराज। विधायकों के इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं विजय। लोक भवन के बाहर टीवी के ने किया प्रदर्शन।
0: अरब के आसमान पर फिर बारूदी धुआं, ईरानी यूएई पर दागी मिसाइलें। ईरानी बंदरगाहों पर अटैक के बाद हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले। ट्रंप की धमकी, डील नहीं हुई तो तबाह कर देंगे। डिस्ट्रॉयर के सुरक्षित होने का दावा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम
1: और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। तमिलनाडु की राजनीति से लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एनडीए से बाहर निकालने पर विचार AIADMK की तरफ से किया जा रहा है। डीएमके के साथ AIADMK के गठबंधन की खबरें तेज हो गई हैं। बहुत सी खबरें इस वक्त तमिलनाडु से आ रही हैं और रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि AIADMK डीएमके के साथ और अनौपचारिक गठबंधन पर विचार कर सकती है, जिससे TVK को झटका लग सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए से बाहर हो सकती है AIADMK। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तमिलनाडु में इस वक्त सियासी हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। AIADMK और डीएमके में जिस तरह की नजदीकियां हो रही हैं, उससे इस वक्त TVK काफी नाराज चल रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि AIADMK में भी कई विधायक ऐसे हैं जो पार्टी के नेतृत्व से नाराज हैं और इसीलिए हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए।
0: और अब रुक करेंगे शतक आज तक का।

0: आज बंगाल बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक, आज शाम 3 से 5 बजे के बीच चुना जाएगा नया मुख्यमंत्री चेहरा। आज कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह, बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर रहेंगे मौजूद। सीएम पद की रेस, सिर्फ बिंदु अधिकारी सबसे आगे, टीएमसी को हराने वाले नेता पर सीएम पद को लेकर चर्चा थे। कल होगा बंगाल में भव्य शपथ ग्रहण समारोह, कोलकाता के मैदान में नई सरकार लेगी शपथ। कल रविंद्रनाथ टैगोर जयंती पर शपथ, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता समारोह में मौजूद रहेंगे। शुभेंदु के पीए की हत्या पर सियासी संग्राम, चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में जांच तेज, 3 लोग हिरासत में। हमलावरों की बाइक बरामद, पुलिस को हत्या में इस्तेमाल बाइक मिली, कई एंगल से जांच जारी है। ड्राइवर की हालत अभी गंभीर, चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर की कई सर्जरी, अस्पताल में इलाज जारी। शुभेंदु बोले पहले से रची गई थी साजिश, हत्या से पहले कई दिनों तक रेकी किए जाने का दावा। टीएमसी ने मांगी कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जांच, पोस्ट पोल वायलेंस पर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज।
1: हावड़ा में बमबाजी, 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल, शिवपुर के चौरा बस्ती इलाके में हमले के बाद भारी तनाव। हावड़ा में हुए बवाल का नया वीडियो आया सामने, धार्मिक नारे लगाते दिखे उपद्रवी, आरोप है कि इस दौरान ईंट पत्थर फेंके गए और बमबाजी की गई। वीडियो में हमलावर अल्लाहू अकबर और नारा एक तकबीर का नारा लगाते सुनाई दिए, मौके पर भारी पुलिस बल और केंद्रीय बल के जवानों की तैनाती। शिवपुर थाने का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, घटना के विरोध में प्रदर्शन, मौके पर QRT और केंद्रीय बल तैनात। चुनाव के बाद हुई हिंसा के चलते आसनसोल की कुलटी और नियामतपुर की पुलिस चेकिंग तेज, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई, बाइक सवारों पर विशेष नजर। अखिलेश यादव ने ममता से की मुलाकात, बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। अखिलेश बोले बीजेपी ECI की मिलीभगत से चुनाव लूटा गया, बंगाल में लोकतंत्र और वोटिंग अधिकार खतरे में। अखिलेश यादव ने कहा कि दीदी को हराने के लिए पूरा सिस्टम लगाया गया, चुनाव में बड़े स्तर पर साजिश का आरोप। ममता और अभिषेक को सुरक्षा खतरा, SP प्रमुख ने बीजेपी पर डर और दबाव की राजनीति का आरोप लगाया। अखिलेश यादव बोले बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
0: तमिलनाडु में बड़े फेरबदल की संभावना, सूत्र के मुताबिक AIADMK NDA से बाहर निकलने पर विचार कर रही है। राज्यपाल से विजय की दूसरी मुलाकात भी बेनतीजा, 118 विधायकों का समर्थन साबित करने को कहा गया, बहुमत से अभी भी दूर TVK, कांग्रेस गठबंधन के पास 112 विधायक, बहुमत के लिए चाहिए 118 का आंकड़ा। तमिलनाडु में शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, TVK ने अपने विधायकों को मामल्लापुरम के लग्जरी रिजॉर्ट में भेजा। AIADMK ने भी विधायकों को किया शिफ्ट, TVK की जोड़ तोड़ की कोशिशों के बीच विधायकों को पुडुचेरी भेजा गया। आज गुरुग्राम आएंगे राहुल गांधी, सद्भाव यात्रा में शामिल होकर चुनावी माहौल को देंगे धार। नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन, 10 मई वोटिंग से पहले राहुल का रोड शो और जनसंपर्क। सद्भाव यात्रा को लेकर कांग्रेस में मतभेद, कुछ नेताओं ने पहले यात्रा का विरोध भी किया था। शशि थरूर पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दायर की याचिका। नाम और तस्वीर के गलत इस्तेमाल पर थरूर सख्त, दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई।
1: ट्रंप ने ईरानी हमलावर को बड़े नुकसान का किया दावा, कहा हमले की चपेट में आए तीनों अमेरिकी युद्धपोत बिना नुकसान होर्मुज़ से निकलने में कामयाब। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर युद्ध विराम उल्लंघन के लगाए आरोप, ईरान की सरकारी मीडिया ने अमेरिका पर पलटवार कर वीडियो किया जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद पलटवार के दावों के बावजूद ईरान के साथ समझौता कोशिश जारी रखने की बात कही। पश्चिम एशिया में फिर से जंग भड़की, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से UAE को बनाया निशाना। UAE की वायुसेना प्रणाली ने कई जगहों पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को नाकाम किया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का आतंकियों को किसी भी तरह की इम्यूनिटी से इनकार, हिजबुल्ला कमांडर को हमले में ढेर करने के बाद बयान। गुरुवार को गाजा पर इजरायली हमले में कम से कम 3 लोग की मौत, इजरायल का हमास के गार्ड पोस्ट को निशाना बनाने का दावा। ट्रंप ने EU के लिए 4 जुलाई तक ट्रेड डील फाइनल करने की समय सीमा तय की है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समय सीमा में डील नहीं होने पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात, लूला ने कहा क्यूबा पर हमले पर विचार के ट्रंप ने नहीं दिए संकेत। WHO ने हंटा वायरस से बड़ी महामारी फैलने की आशंका को किया खारिज, WHO ने हंटा वायरस संक्रमण की अर्जेंटीना में 2018-19 के हालात से तुलना की।
0: ब्लास्ट बयान पर बीजेपी का भगवंत मान को कानूनी नोटिस, 7 दिन में माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग। बीजेपी बोली मान फैला रहे हैं झूठ, बयान वापस नहीं लेने पर आपराधिक और सिविल कार्रवाई की चेतावनी। पंजाब ब्लास्ट पर सियासत तेज, मान ने कहा था बीजेपी चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाती है। बीजेपी ने डीजीपी से एफआईआर दर्ज करने की मांग की, तरुण चुग बोले मुख्यमंत्री का बयान बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना। पौड़ी के महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में ओपन जिम में सीएम योगी और सीएम धामी एक साथ जिम करते नजर आए। पंजाब में ईडी रेड में सियासी भूचाल, मोहाली चंडीगढ़ में बिल्डरों और सहयोगियों पर बड़ी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी सरकार पर करप्शन नेटवर्क चलाने का आरोप, कांग्रेस और अकाली दल ने मान सरकार को घेरा। सीएलयू लाइसेंस घोटाले में ईडी की बड़ी जांच, सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। प्रताप बाजवा बोले आपका असली चेहरा सामने आया, सीएम मान के करीबी लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। अमन अरोड़ा ने आरोपों को बताया झूठा प्रचार, कहा मेरा पूरा जीवन पारदर्शी रहा, डरने वाला नहीं हूं।
1: डीआरडीओ और आईएएफ ने ओडिशा तट के पास स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल परीक्षण किया, बिना गाइड वाले बमों को सटीक निर्देशित हथियारों में बदलने में है सक्षम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड 19 महामारी के दौर को याद करते बिना नाम लिए एक विकसित देश पर निशाना साधा। सुरीनाम में अलग अलग वर्गो के प्रतिनिधियों को संबोधित करते विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा भारत एक ऐसा देश था जिसने कोविड का सामना आगे बढ़कर किया। पीएम मोदी के 10 और 11 मई को संभावित जामनगर दौरे को लेकर शहर में जोर शोर से तैयारियां शुरू, अधिकारियों द्वारा वीआईपी मूवमेंट को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले बीजेपी सांसद डीके अरुणा का बयान, कहा आने वाले चुनाव में तेलंगाना में भगवा झंडा लहराएगा। 15 जून को लखनऊ से नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। एक घंटे में पूरा होगा सफर, देश के बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित हो रहा है नोएडा का एयरपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, द्वारका में 806 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज, हर साल एमबीबीएस की 250 सीटें उपलब्ध होंगी। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, देश में कुल अपराध घटे लेकिन साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 1 लाख से ज्यादा साइबर केस दर्ज, जिनमें सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड के मामले हैं। श्रीनगर में देखने को मिल रही है फूलों की बहार, बागवानी विभाग ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पौधे बांटने की मुहिम शुरू की है।
0: पाकिस्तान आईएसआई के शहजाद भट्टी मॉड्यूल के पकड़े गए गुर्गों ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा, दिल्ली का एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर था आईएसआई के निशाने पर। पाकिस्तान आईएसआई के इस मॉड्यूल से जुड़े एक आरोपित ने इस मंदिर की रेकी की थी, इस मंदिर के फोटो पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स को भेजे गए थे। मंदिर पर मौजूद पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों पर गोली चलाकर मंदिर को निशाना बनाना टारगेट में शामिल था। हिसार में मौजूद एक सैन्य कैंप भी पाकिस्तान आईएसआई के निशाने पर था, जिसकी भी रेकी का वीडियो पाकिस्तान हैंडलर्स को भेजा गया था। नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपित निदा खान को पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर से किया गिरफ्तार, 25 दिन से थी फरार। पीलीभीत में शराब की दुकान खुलवाने गई आबकारी टीम पर महिलाओं का हमला, हमलावर महिलाओं ने पुलिस और अधिकारियों को खदेड़ा। गांव बना छावनी, अभी भी आबकारी विभाग की दो गाड़ियों पर गांव वालों का कब्जा, नाम सहित 45 और 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, आरोपियों में ज्यादातर संख्या महिलाओं की। द्वारका के समुद्री तट पर एक बार फिर बरामद हुई चरस, हर्षद दरिया तट से कई किलो अवैध चरस की तस्वीरें सामने आई। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाहर छेड़छाड़ के मामले में तीर्थयात्रियों पर हमला, कुछ अज्ञात युवकों ने महिला तीर्थयात्रियों के साथ छेड़छाड़ की। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में टेस्टिंग के दौरान दर्दनाक हादसा, धमाके में दो मजदूरों की मौत, एक की हालत नाजुक।
1: गोंडा में पुलिस ने पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के बहाने ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से सोना चांदी बरामद। आगरा में आयकर विभाग के रिकवरी इंस्पेक्टर ने किया आत्महत्या, इनकम टैक्स ऑफिस की 7वीं मंजिल से कूदकर इंस्पेक्टर ने दी जान। राजनांदगांव में पद्मश्री फूल बासन यादव अपहरण मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 2 महिलाएं 3 पुरुष शामिल। पुणे के एमआईडीसी इलाके में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप, तेंदुआ खुलेआम घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। मेरठ में खेत से तेंदुए का रेस्क्यू, घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ा। दिल्ली के मोती बाग में चलती एम्बुलेंस में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका, पास में खड़ी बाइक चलकर खाक। एसीबी ने विद्युत विभाग के लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया, 25,000 की मांगी रिश्वत। अररिया में एक तरफा प्यार में युवक ने 17 साल की लड़की को मारी गोली, मौके पर युवती की गई जान। अलीगढ़ पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 एएमयू छात्र सहित 12 गिरफ्तार। सहारनपुर में एक हुंकार कुत्तों का आतंक, कुत्तों ने 110 भेड़ों को नोचा, पशुपालक को हुआ भारी नुकसान।
0: दक्षिण मुंबई के पायधुरी में तरबूज खाने से एक ही परिवार के चार और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप पश्चिम बंगाल से कोलकाता से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। आज विधायक दल के साथ बैठक होगी और आज ही वो नाम सभी के सामने होगा कि कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री। क्या वो पुरुष होगा या महिला होगी, बहुत ही जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बंगाल बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया है अमित शाह का।
1: पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, जबरदस्त स्वागत अमित शाह का, और जिस तरीके से इस पूरी विक्ट्री, इस पूरी जीत को पश्चिम बंगाल में डिजाइन किया गया है, उसमें अमित शाह का एक अहम योगदान, और जाहिर तौर पर जब आज वो यहाँ पहुंचे हैं तो एक बेहद अहम दिन।
2: बेहद अहम दिन, और आज के दिन शाम में हमको पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाता हूँ। एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह और भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं जो उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत जो है वो बीजेपी को मिला है और गृहमंत्री अमित शाह जो है वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। देखिए कि कैसे यहाँ पर स्वागत उनका किया जा रहा है। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं जहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, प्रचंड बहुमत जो है वो मिला है। कोशिश करते हैं गृहमंत्री सर। अमित शाह जी सर क्या कहेंगे, बहुमत मिला है सर भारतीय जनता पार्टी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त आज तक के कैमरे पर मौजूद है। हालांकि फिलहाल उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लाखों कार्यकर्ता बीजेपी के जो है वो यहाँ पहुंचे और गृहमंत्री अब यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा वो जो है आज कई बैठकें भी करने वाले हैं, उनके साथ में जो है कई नेता शुभेंदु अधिकारी भी देख सकते हैं हम, और इसके साथ साथ जो सुकांत मजुमदार है बीजेपी अध्यक्ष है वो भी यहाँ मौजूद है। फिलहाल कुछ कहते हुए यहाँ से नजर नहीं आया, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं चारों तरफ। अंकित अपने कैमरा पहन करके आपको दिखा सकते हैं और हर कोई जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है बंगाल की राजनीति में नेहा, और आज ही के दिन पश्चिम बंगाल को अगला मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं और बीजेपी को पहला मुख्यमंत्री। तो गृहमंत्री अमित शाह अब पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, कोलकाता में वो मौजूद हैं।
0: अच्छा पीयूष ये बताइए कि एयरपोर्ट से तो निकल चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ से वो कहाँ पहुंचेंगे? आपके सूत्रों से क्या खबर मिल पा रही है? बैठक कब शुरू हो सकती है, कब खत्म होगी और कब तक नाम सामने आ सकता है?
2: जी सुगंध मजुमदार जी देखिए आज बैठकों का दौर है सर। एक प्रश्न, आज कितना बड़ा महत्वपूर्ण दिन है सुगंधता, आज कितना महत्वपूर्ण दिन है, क्या कहेंगे आप? काफी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, पहला मुख्यमंत्री बीजेपी जय श्री राम। सुकांत मजुमदार के अलावा कई बीजेपी के नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबके सब जो है काफी प्रफुल्लित है कि आज एक नया दिन इतिहास रचने जा रहा है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री जो है उनको मिलने जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, कुछ देर में वो यहां से जो है दक्षिणेश्वर मंदिर जाने वाले हैं और वहां मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सीधा नोवोटेल होटल जाएंगे। वहां पर कई बैठकें होने वाली हैं नोवोटेल होटल में, और उन बैठकों के बाद आज शाम लगभग 3 बजे के आसपास गृहमंत्री अमित शाह उस होटल में, उस कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे जहां पर सभी विधायक आज पहुंचने वाले हैं। यानी कि आज विधायकों के पहुंचने के बाद लगभग शाम 5 बजे के आसपास ये तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें कोई दोहराए नहीं कि शुभेंदु
1: लिस्ट में 5 नाम बताए जा रहे हैं, 5 नाम में फ्रंट रनर शुभेंदु हो गए, बाकी 4 नाम कौन से हैं पीयूष?
2: देखिए बाकी 4 नामों में सुकांतो मजुमदार है, साथ साथ इसके अलावा शमिक भट्टाचार्य, अग्निमित्र पॉल है, रूपा गांगुली है, कई नेता हैं, कई बड़े नेता हैं, इन्होंने बीजेपी के लिए काफी लंबे समय से काम किया है और उनमें से किसी एक को जो है आज मुख्यमंत्री का आप देखेंगे के नाम का ऐलान होने की आज संभावना है। शाम 5 बजे के आसपास ये संभावना हो जाएगी। मैं लगातार आपको दृश्य पे दिखाता हूँ, चारों तरफ आप देख सकते हैं कैसे काफी भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता है और नेता भी है। राहुल सिन्हा फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, हम कोशिश करेंगे कि एक बार राहुल सिन्हा से बात कर लें, क्योंकि हर जो यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है मौजूद है सब लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्रीराम के नारे यहाँ पर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सा स्टेज लगाया गया था जब अमित शाह, सर क्या उम्मीद है सर, बड़ा महत्वपूर्ण जीत के बाद
3: देखिए बात यह है, आज बड़ा खुशी का दिन है, जो अहंकारी लोग ने कहे थे जो अमित शाह को या कोई केंद्रीय नेता 4 तारीख के बाद आ नहीं पाएंगे, आज देखिए 56 इंची छाती लेके अमित शाह यहीं पर आया। और जो लोग ऐसा अहंकारी बात कहे थे वो लोग मुख छुपा के मैं घर पे बैठा है, पद चला गया, सरकार चले गए, जनता चले गए, फिर भी ख्वाब देख रहा है। हम अभी भी त्याग पत्र नहीं दिया। अरे वो त्याग पत्रों को पकड़ के तुम घर पे परा रहो, बंगाल आगे चलते रहेगा, बंगाल का उन्नति हमारा मूल चिंता, डेवलपमेंट पूरा बंगाल में होगा, यही बीजेपी का सपना है।
4: क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं?
3: नहीं नहीं, वो तो लगने का कुछ नहीं, वो तो जो हमारा विधायक दल है वो तय करेगा।
4: शाम को कब तक ये क्लियर हो जाएगा सर?
3: वो 6 बजे तक क्लियर हो जाएगा। 6 बजे
5: क्लियर हो जाएगा तो आज शाम को 6 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा नेहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है, बिस्वा कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद शाम में ये तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन है और बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कौन पश्चिम बंगाल को मिलने जा रहा है। लेकिन इन सभी नामों के बीच में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम चल रहा है तो वो है शुभेंदु अधिकारी। क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ एक एग्रेसिव फाइट तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ी बल्कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को पिछली बार हराया था और इस बार भवानीपुर से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जॉइंट क्लियर के तौर पर वो उभर कर सामने आए हैं। और एक एक एक बड़ा इलाका पश्चिम बंगाल का एक बड़ा इलाका है जहां पर उनका काफी ज्यादा प्रभाव भी है, तो इसीलिए उनको इस वक्त फ्रंट रनर के तौर पर देखा भी जा रहा है। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं कि बीजेपी एक वैसी पार्टी है जो सरप्राइजेस सामने रखने के लिए जाने जाती है। हमने ये देखा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, और अब हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी कोई एक नया चेहरा निकल के आ जाए। वो इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में
0: आपने सही कहा कि सरप्राइजेस बीजेपी देती रही है और कई राज्यों में हम ऐसा देख भी चुके हैं, तो आज सरप्राइज मिलेगा या नहीं शाम का इंतजार करना होगा। अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उसी होटल से जहां पर अमित शाह से कुछ देर बाद पहुंचेंगे और बैठक शुरू होगी। लेकिन उससे पहले अभी आप जिनका बयान सुन रहे थे, उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत किया जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उसी वक्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया और अब यहां से बैठकों का दौर शुरू होगा, उस नाम पर चर्चा होगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का नाम आगे है, लेकिन बहुत से नाम ऐसे हैं जो अचानक से सामने आते हैं और बीजेपी का अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो ऐसा कई राज्यों में हुआ है, तो यहां पर भी क्या सरप्राइज मिलेगा उसके लिए शाम तक का इंतजार।
1: मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, अब एयरपोर्ट से अमित शाह नोवोटेल के लिए रवाना होंगे, वहां पर अब आगे का कार्यक्रम क्या है क्योंकि 3 बजने में तो अभी लगभग 4 घंटे का समय, इस दौरान क्या कुछ होगा?
6: जी देखिए बिल्कुल नेहा, इस वक्त मैं नोवोटेल के ठीक सामने हूँ, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ होटल जहाँ थोड़ी देर में ही अमित शाह यहाँ प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ पर भी एक मीटिंग होनी है। मुख्य जो विधायक दल का नेता चुने जाने की मीटिंग है वो विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में है, लेकिन उससे पहले जब अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता और पर्यवेक्षक यहाँ मौजूद होंगे और एक मीटिंग यहाँ पर भी निर्धारित की गई है। लगभग 12:30 के आसपास ये मीटिंग शुरू होगी, 2:30 बजे तक ये मीटिंग चलेगी जिसमें शमिक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष के, सुनील बंसल, मंगल पांडे, इन लोगों के रहने की बात है, तो यहां पर भी चर्चा होगी। आगे की रणनीति किस तरह से तय की जाए उस पर चर्चा होगी। खास तौर पर जो मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई है दिल्ली में उसको यहां पर और विस्तार दिया जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे यहां पर जमावड़ा भी बढ़ना शुरू हो गया है, हालांकि यहां अभी कार्यकर्ता वगैरह नहीं है यहां पर, क्योंकि वरिष्ठ नेता ही रहेंगे, गृहमंत्री रहेंगे, मीटिंग का दौर चलेगा और 3 बजे के आसपास यहां से निकलकर वो चले जाएंगे विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर न्यू टाउन में। यहां से ज्यादा दूर नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर है जहां पर सस्पेंस खत्म होगा लगभग 2 घंटे की मीटिंग के बाद। 3 से 5 का समय निर्धारित किया गया है, विधायकों का मन टटोला जाएगा, सारे 207 विधायकों को आमंत्रित किया गया है जो वहां पहुंचेंगे। एक तो सबसे पहले थोड़ा सा ग्रीटिंग्स होगी, सबको धन्यवाद ज्ञापन दिया जाएगा, अमित शाह शुरू में थोड़ा भाषण रख सकते हैं, इसके बाद भीतर में मन टटोलने के बाद जो विधायक दल का नेता है उसके नाम पर मोहर लगेगी।
0: अच्छा एक बात बताइए अनुपम ये बताइए क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है कि जो भी हम सोचकर चलते हैं कि ये नाम आगे आएगा उसकी जगह कोई और नाम सामने आ जाता है, सरप्राइज होता है। अभी शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर माने जा रहे हैं, लेकिन बंगाल में इतने सालों तक ममता दीदी ने राज किया, क्या ये माना जाए कि किसी महिला का नाम सामने आ सकता है, अग्निमित्रा पॉल या रूपा गांगुली, ऐसा कुछ सरप्राइज मिल सकता है?
6: जी देखिए बीजेपी के शासन में इस तरह का उदाहरण पिछले कई राज्यों में भरा पड़ा है, चाहे आप दिल्ली को ले लें, प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था लेकिन रेखा गुप्ता की अनाउंसमेंट हो गई। आप उड़ीसा के दिलचस्प है कि मोहन चरण मांझी जो सह पर्यवेक्षक हैं आज की विधायक दल की मीटिंग में वो रहेंगे, अमित शाह मुख्य पर्यवेक्षक हैं, तो मोहन चरण मांझी को भी अचानक से बनाया गया। राजस्थान का उदाहरण ले सकते हैं, मध्य प्रदेश का ले सकते हैं, तो ऐसे में भले ही शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है, जायंट किलर के तौर पर वो उभरे हैं, दो बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उन्होंने हराया है 2021 में।
1: पीयूष भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, आपने तो पूरा इलेक्शन कैंपेन लगभग कवर किया, एक बहुत बड़ा जीत का एलिमेंट ये भी था कि ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में हराना और दो जगह से चुनाव जीतना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है शुभेंदु अधिकारी के पूरे जो ग्लोरी है उसमें, जो कहते हैं कि आपने ये पूरा चुनाव जीता उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट शुभेंदु अधिकारी की भवानीपुर से जीत और दूसरी सीट पे भी जो जीत हासिल करी वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि वही इस वक्त सबसे बड़े कैंडिडेट हैं सीएम के।
5: जी बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जो ममता बनर्जी के गढ़ माने जाते थे वहां से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। नंदीग्राम में पिछली बार भी जीते थे और इस बार भी जीते हैं और इस बार भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा के मार्जिन से ममता बनर्जी को हराया। जहां तक शुभेंदु अधिकारी की दावेदारी की बात है, हमारी एक बहुत वरिष्ठ नेता से एक बार बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का वो होगा जो पूरे राज्य को एक साथ लेकर चल सके, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चल सके। और अगर हम जब भी पश्चिम बंगाल में हम घूमे और जहां हम गए हैं वहां पर शुभेंदु अधिकारी को लेकर एक अलग ही तरह की भावना कार्यकर्ताओं में है। कुछ दिनों पहले वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी जब शुभेंदु अधिकारी एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे और वहां पर नारेबाजी हुई थी, शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री।
0: अच्छा, तो मतलब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी का नाम भले ही आगे चल रहा है लेकिन सरप्राइज कब मिल जाए ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीजेपी का ये इतिहास रहा है। इंतजार करते हैं कि कब तक ये स्पष्ट हो पाता है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
9: Ecom Auctions, the world's largest collector car auction company, returns to Indianapolis for Dana Mecham's 39th Original Spring Classic, May 8th to the 16th at the Indiana State Fairgrounds. Join us for the fun, fast-paced, high-energy Mecham experience with 3,000 vehicles up for grabs. For avid collectors, first-time buyers, and enthusiasts of all ages, there's something for everyone. Register to bid and buy spectator tickets now at Mecham.com.
10: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
11: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है
13: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
14: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
13: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो
14: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
15: नहीं
14: और म्यूचुअल फंड्स है
15: सही।
16: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: said before, we better hold the sins.
17: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
18: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
20: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
21: सोच बदलो और बैंक भी।
22: और वही कहाँ गए थे घूमने?
23: जीके मैक्स।
24: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
23: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
24: जेके वॉल मैक्स
23: बेस्ट पेंट,
24: जेके मैक्स।
23: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: शिव और राम क्या दो अलग अलग हैं? उसके बारे में सोच रहा था, तभी हनुमान चालीसा सुनते सुनते इस पंक्ति पर अटक गया। जब बात राम कथा की हो तो उनकी कृपा की आवश्यकता तो होती है। राम को लेकर हमारे यहाँ कोई विभाजन हो ये हमारी संस्कृति स्वीकार ही नहीं कर सकती।
6: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहाँ पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: तो बंगाल में आज सियासी हलचल तेज है। बीजेपी बंगाल पर्यवेक्षक अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजुमदार समेत बंगाल बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने उनका स्वागत किया।
1: और आज बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए अमित शाह कोलकाता पहुंचे हैं और अब कोलकाता में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन क्या कोई नया नाम सामने आ सकता है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 3 बजे बैठक शुरू होगी। और जब हमारे सहयोगी भी बात कर रहे थे बीजेपी नेताओं से, तो उनका कहना था कि शाम 6 बजे तक या फिर हो सकता है कि 5 से 6 बजे तक ये लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि ट्रंप का कौन रहने वाला है, जो फ्रंट रनर शुभेंदु अधिकारी, क्या उन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी या फिर किसी और का नाम सामने आ सकता है। पीयूष से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। जैसे ही अमित शाह कोलकाता में पहुंचे, कैसे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे थे। और एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था, जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुपम, एयरपोर्ट से तो अमित शाह निकल चुके हैं, लेकिन आप जहां पर मौजूद है वहां क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां कार्यकर्ताओं का जमावड़ा क्या है, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है?
2: बीजेपी को मिला है और गृहमंत्री अमित शाह जो है वो लोगों
3: ये देखिए, मैं नोवोटल में हूँ जहाँ पर बैठक होने वाली है। पहली बैठक जो होने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो होटल। लेकिन यहाँ पर समर्थकों का जमावड़ा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस डिप्लॉयमेंट है, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर समर्थकों का जमावड़ा संभवतः नहीं होगा, या थोड़ी देर में अगर हो तो वो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी। लेकिन यहाँ पर मीटिंग्स तय हैं 12:30-12:30 बजे से। यहाँ पर जो अमित शाह हैं उनके साथ जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो बड़े नेता हैं, दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी हो, शमिक भट्टाचार्य हैं, ये लोग रहेंगे। इनके साथ मीटिंग तय होनी है। मीटिंग होने के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण मीटिंग है, जो विधायक दल का नेता चुनने की मीटिंग है, वो यहां नहीं है। वो नोवोटेल से निकलकर यहां से 2-3 किलोमीटर दूर विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर होनी है और वहीं पर चुना जाएगा कि कौन विधायक दल का नेता होगा और अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो यहां पर जो मीटिंग होनी है, इसमें अगला किस तरह से काम किया जाएगा, हो सकता है कि कैबिनेट में कौन हो उनके पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये सब बातें इस मीटिंग में होंगी। कल की जो प्रिपरेशन है, कल किस तरह से कार्यक्रम होगा, उसकी चर्चा होगी यहाँ पर। कल चूंकि आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होना है, सुबह से समारोह शुरू होना है, प्रधानमंत्री के शामिल होने की बात है, गेस्ट वगैरह हैं, किनको बुलाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कार्यक्रम में क्या क्या होगा, ये सब फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन एकदम मुहर यहाँ पर उस बैठक में, उस मीटिंग में लगाई जाएगी।
0: साथ ही ये जानना चाहेंगे हम आपसे अनुपम, कि जिस तरीके से लगातार शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर रहे, तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन संशय की स्थिति क्यों बनी? क्या बीजेपी का कैरेक्टर और नेचर ऐसा है कि कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट वो ले आते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल तो वही रहे। देखिए, पिछले चुनाव से अब तक चुनाव में जो प्रचंड जीत का ये सफर है, उसे पूरा कराने वाले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शुभेंदु अधिकारी निभाई। हालांकि और भी कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा नाम रहे।
3: जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का जो इतिहास रहा है इससे पहले दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने का, उसी की वजह से ये संशय की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा, दिल्ली चाहे आप ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, राजस्थान ले लें, वहां के मुख्यमंत्री का जो नाम चर्चा में चल रहे थे, जब फाइनली अनाउंसमेंट हुआ तो जिसके बारे में चर्चा तक नहीं हुई थी वो नाम सामने आ गया। तो संशय की स्थिति, संशय इसीलिए बना हुआ है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जायंट किलर के तौर पर उभरे हैं, मुख्य फ्रंट रनर है, दौड़ में सबसे आगे हैं, तो उसका नाम जाहिर तौर पर चर्चा में सबसे आगे है। लेकिन इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं, शमिक भट्टाचार्य जो प्रेसिडेंट बने कुछ महीने पहले, पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद पहली बड़ी सफलता, सबसे बड़ी सफलता उन्हीं के नेतृत्व में हासिल हुई, उनका नाम भी है। दिलीप घोष जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मास लीडर माने जाते हैं, हालांकि बीच में उनसे दूरी बना ली थी पार्टी ने, लेकिन जब कुछ महीने पहले फिर से चुनाव की तैयारियां शुरू हुई तो उनको वापस जोड़ा गया, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अगर किसी को, चूंकि 15 वर्ष तक पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री का शासन रहा, तो ऐसे में अगर महिला चेहरा कोई बनाया जा सकता है तो अग्निमित्रा पॉल
1: और रूपा गांगुली का भी नाम चल रहा है। मतलब नाम बहुत है, नाम अनेक हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही नाम ऐसा है जिस पर मोहर लगेगी। पीयूष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर हमने देखा था कार्यकर्ताओं का बहुत हुजूम था, भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे, तो तो आपकी उनसे भी क्या बातचीत हुई? वो किसका नाम आगे चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री के रूप में, किसे देखना चाह रहे थे वो?
4: देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग तो यह है कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ग का जो कार्यकर्ता है वो नहीं चाहता, बल्कि सभी वर्ग के जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया, उनको कमान प्रदेश की दी जाए। उसका कारण ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चले, लगभग हर जिले का दौरा उन्होंने किया, हर जगह कैंपेन करने के लिए गए, नंदीग्राम और भवानीपुर पर उनका खास फोकस रहा। तो एक बड़ा वर्ग जो है का वो शुभेंदु अधिकारी को लेकर कहता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जानी जाती है सरप्राइजेस के लिए, तो आज बैठकों का दौर पश्चिम बंगाल में होने वाला है, कोलकाता में नोवोटेल होटल में। गृहमंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे तो वहां पर सभी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, और जब एयरपोर्ट से वो निकले तो उनके साथ शुभेंदु अधिकारी और शमिक भट्टाचार्य भी वहां से एक ही गाड़ी में निकले। तो ये कहने के संदेश देता है कि किस तरह से गृहमंत्री अमित शाह भी उन नेताओं को तवज्जो दे रहे हैं जिनकी वजह से पहली बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में सफल हुई है।
0: लॉरिंग आपके पास, इस बीच बंगाल में पहली बीजेपी सरकार की बागडोर किसके हाथ में होगी, सवाल से चंद घंटे दूर है हम। आज दोपहर 3 बजे कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर इस बैठक में शामिल होंगे और वो अब कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: विधायक दल की बैठक से पहले अमित शाह बंगाल के बीजेपी नेताओं से मंत्रणा करेंगे, बात करेंगे। और यूं तो बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाने वाले फैसले करती रही है, लेकिन अब तक दौड़ में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे दिख रहे हैं। वो ये रेस जीत पाते हैं या नहीं, ये शाम 5 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा।

0: बंगाल की राजनीति में अब जिस एक चेहरे पर सबकी नजर है वो है शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय शुभेंदु अधिकारी। जिन्हें टीएमसी से लाकर बीजेपी में अमित शाह ने स्थापित किया वो शुभेंदु अधिकारी। जिन्होंने पहली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया वो शुभेंदु अधिकारी। जिन्हें अमित शाह ने भवानीपुर में ममता के खिलाफ उतारकर सबसे बड़े उलटफेर की पटकथा लिखी वो शुभेंदु अधिकारी। आज जब बंगाल के नए मुख्यमंत्री का लकी ड्रॉ निकलने वाला है तो सबकी निगाहें एक बार फिर अमित शाह के उस बयान पर जाती है जो सबूत है कि बीजेपी के फ्यूचर प्लान में शुभेंदु अधिकारी की क्या जगह पहले से तय थी।
1: शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं ममता के घर में जाकर उसको हराना।
0: सब जानते हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्रियों के चयन में हैरान करने वाले फैसले करती रही है। 2025 में दिल्ली में रेखा गुप्ता, 2024 में हरियाणा में नायब सिंह सैनी, 2024 में ओडिशा में मोहन चरण मांझी, 2023 में मध्य प्रदेश में मोहन यादव, 2023 में ही राजस्थान में भजनलाल शर्मा, 2023 में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, 2021 में उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, 2021 में गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल, 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ने लीग से हटकर नए चेहरे को सत्ता की बागडोर सौंपी लेकिन शुभेंदु अधिकारी का मामला खुद में लीग से हटकर है। बंगाल में बीजेपी के विजय प्लान के शुरू से केंद्र में रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता को दो बार चुनाव में मात देकर परिवर्तन के बड़े प्रतीक वो पहले ही बन चुके हैं। बंगाल की बेहद संवेदनशील राजनीति की पेचीदगी को शुभेंदु अच्छे से समझते हैं। सबसे बड़ी बात, बंगाल में हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के नए नायक बनकर उभरे हैं शुभेंदु। इसलिए अगर चुनावी जीत के बाद शुभेंदु डंके की चोट पर ये कहते हैं कि उन्हें हिंदुओं ने जिताया, उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं, तो ये साफ हो जाता है कि बंगाल में बीजेपी की राजनीति किस राह आगे बढ़ने वाली है और उस सफर का सारथी कौन हो सकता है।
2: आपको क्या लगता है कि मुस्लिम इतना जो जीत हुई है मुस्लिमों का भी वोट मिला है या नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है,
3: एकदम नहीं,
2: कहीं पे भी नहीं मिला
3: है? नहीं नहीं, बीजेपी को नहीं दिया
2: नंदीग्राम या
3: एकदम नहीं, 5-6 एक बूथ में।
2: हाँ, ये हालत है,
3: एकदम पूरा हिंदू वोट में। आप बूथ वाइज भवानीपुर में तो मेरा एक वार्ड में 20,000 डेफिसिट कर दिया 77 में।
2: ममता बनर्जी तो
3: उसके खिलाफ हिंदू लोग भी किया,
2: ममता बनर्जी तो घुस गई, हमने देखा।
3: 99% मुसलमान वोट मैं तो भवानीपुर नंदीग्राम को बता रहा हूँ, पूरा टीएमसी को दिया, ममता को दिया।
2: तो हिंदू वोट भी एक तरह से कंसोलिडेट हो गया।
3: इतना नहीं हुआ लेकिन बहुत ज्यादा हुआ। पिछले बार 54% हुआ था बंगाल में, इस बार 85-90% तो हुआ नॉर्थ बंगाल में, ईस्ट मिदनापुर में, और ओवरऑल स्टेट में मोर देन 80% हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। मतलब भवानीपुर में तो 85% हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, इसलिए मैं जीता।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत आभार।
0: अब जरा एक और तस्वीर को गौर से देखिए। बंगाल से सटे बिहार में एक दिन पहले सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होता है। हैरान करने वाली पुरानी परिपाटी से अलग बीजेपी सम्राट चौधरी को सीएम बनाती है क्योंकि वहां भी सवाल बिहार का है जहां पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। सम्राट चौधरी भी कभी आरजेडी में होते थे लेकिन बीजेपी ने उन्हें चुना, गढ़ा और सत्ता तक पहुंचाया। और आज बंगाल में भी नए मुख्यमंत्री का चुनाव होना है। अमित शाह पर्यवेक्षक है, शुभेंदु अधिकारी की पीठ पर उनका हाथ है, ये किसी से छिपा नहीं है। और बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है और सम्राट चौधरी की तरह ही शुभेंदु भी टीएमसी से होते हुए बीजेपी में आगे बढ़े हैं। तो सवाल है कि क्या बिहार में सम्राट और बंगाल में शुभेंदु बीजेपी के नए पोस्टर बॉय होने जा रहे हैं? तमाम संकेतों के बावजूद इसके लिए शाम 5 बजे तक इंतजार करना होगा। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।
5: और देखिए पश्चिम बंगाल में जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था, अमित शाह लगातार हर बार हर सभा में कह रहे थे कि भूमिपुत्र ही यहां का मुख्यमंत्री बनेगा, तो ऐसी कुछ बातें भी चल रही। पीयूष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो पहुंच चुके हैं और गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, अब बैठकों का दौर भी यहां पर शुरू हो जाएगा, लेकिन अमित शाह की मौजूदगी को कैसे देखें? सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए वहां पर वो पहुंचे हुए हैं विधायकों से बात करने के लिए, या फिर पोस्ट पॉल जो वायलेंस हुआ है उसमें भी एक संदेश देना चाहते हैं कि सब कुछ बहुत जल्द सही हो?
6: जी बिल्कुल, सब कुछ बहुत जल्द सही हो, इसी मैसेज को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आए हैं। और पश्चिम बंगाल से उनका नाता आज का नहीं है, पिछले काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कैसे गृहमंत्री अमित शाह लगातार यहां पर आते रहे हैं, सुरक्षा की बात करते रहे, घुसपैठ की बात करते रहे। उनका सबसे बड़ा मोटिव यह है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बने तो सबसे पहला काम यह किया जाए कि जो बंगाल की सीमा है उसकी और बांग्लादेश के साथ जो सीमा जुड़ती है वहां पर फेंसिंग की जाए। और इसीलिए वो ज्यादा पश्चिम बंगाल को लेकर ज्यादा जो है काम भी करते रहे हैं। जब यहां पर चुनाव प्रचार रहा तो 15 से 16 दिन तक लगातार पश्चिम बंगाल में रहे, कोलकाता में उनका ठहराव होता था, लेकिन चारों तरफ वो घूमते थे और बड़ी बड़ी रैलीज वो करते थे, 8 से 10 रोड शोज, 40 से ज्यादा प्रोग्राम उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किए। और जैसा कि अमित शाह की अगर हम बात करें तो वो ये भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अंदर कई ऐसे धड़े हैं नेताओं के जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन सभी को एक साथ लेकर भी चलना है। हमको वो समय भी याद है जब यहां पर अलग अलग कैंप्स बन गए थे, सुकांता मजूमदार,
5: लेकिन सबको एकजुट किया और वो एकजुटता का असर अब बहुत स्पष्ट बंगाल के चुनावी परिणामों में दिखाई दिया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आए, 4 दिन बीत चुके हैं, नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो रही है, नई सरकार के गठन की तैयारी हो रही है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद से बंगाल में शहर शहर में छिड़ा संग्राम थमा नहीं है।
7: तो बंगाल के कई शहरों में भारी उपद्रव है, बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने। इस बीच हावड़ा के शिवपुर इलाके से हिंसा की ऐसी तस्वीर सामने आई जो दहशत पैदा कर रही है।
8: भीड़ उग्र है, भारी तनाव है कि तभी एक एक कर बम धमाकों की आवाज सुनाई देती है और मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। दहशत फैलती है, जान बचाने के लिए लोग पीछे हटते नजर आते हैं और बमबाजी के बीच नारे सुनाई देते हैं अल्लाह हू अकबर के। भारी हिंसा और बमबाजी की ये तस्वीरें हावड़ा के शिवपुर की, जहां चौड़ा बस्ती इलाके में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प के बाद पत्थर बरसाए गए, बमों से हमला हुआ, पूरा इलाका चुनाव के बाद भारी हिंसा का गवाह बना। हावड़ा में हुई इस बमबाजी की एक और तस्वीर देखी, तेज धमाका होता है, चारों ओर धुआं धुआं फैल जाता है। यूं तो 4 मई को आए चुनावी नतीजों के बाद से ही हावड़ा में तनाव बना हुआ है, बीजेपी टीएमसी में तनातनी है, लेकिन स्थिति गुरुवार दोपहर बेहद खराब हो गई। दिन दहाड़े बम बरसाए गए और पूरा इलाका दहशत से भर गया। इस घटना से लोग कितने खौफजदा हैं वो बमबाजी के एक और वीडियो से साफ समझा जा सकता है। सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक हावड़ा के शिवपुर में ऐसा क्या हुआ कि बवाल बम वाले हमले तक पहुंच गए? बीजेपी का आरोप, उसके कार्यकर्ता पार्टी की जीत का जश्न मना रहे थे, तभी टीएमसी के स्थानीय नेता शमीम अहमद की अगुवाई में भीड़ ने समर्थकों पर हमला कर दिया। पहले लाठी डंडे बरसाए, पत्थर चलाए, फायरिंग की, फिर बमबाजी शुरू कर दी।
9: हम लोग यहाँ पर खड़े थे, हम लोग जश्न मना रहे थे अपना जीत का, हम मेरा बाबा चाचा लोग सब बीजेपी पार्टी करते हैं, हम लोग जश्न मना रहे थे यहाँ पर अपना जीत का, मेरा दोस्त लोग, मेरा भाई लोग सब यहाँ पर खड़े थे। तो वहाँ से वो लोग आया, लोग बड़े का गुंडा, बड़े भी साथ में था। अब कहाँ कहाँ से अपना लड़का लेकर के आया था हम लोग को ही नहीं पता। अब आया लोग वहाँ से गाली गलौजा स्टार्ट कर दिया लोग, इतना गाली दिया सर, इतना गाली दिया। हम लोग भी जब अपना वहाँ पर गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं देखने, तो वो लोग मारने लगा, ईटा मारने लगा, कोई कांच का बोतल मारने लगा। और हम लोग अपना डिफेंस में जब अपना कुछ चलाने लगे तो वो लोग राउंड फायर करने लगा, 7 से 8 राउंड फायर किया सर। उसका बाद जब हम लोग भागने लगे तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर, 12 बम चलाया लोग टोटल सर।
8: हिंसा कैसे हुई? टीएमसी वालों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की, बमबाजी की। हावड़ा में हुई हिंसा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में तनाव बना हुआ है।
7: वहीं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने ममता बैनर्जी और स्टालिन के साथ एक फोटो पोस्ट की है। अखिलेश ने लिखा है कि हम वो नहीं है जो मुश्किलों में साथ छोड़ रहे हैं। ममता बैनर्जी और स्टालिन दोनों चुनाव हार गए, ऐसे में अखिलेश यादव ने पोस्ट करके सॉलिडारिटी दोनों के साथ दिखाई।
5: और ये वो तस्वीर है अखिलेश यादव की तरफ से जो पोस्ट की गई, जिसमें ममता बनर्जी एक तरफ दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ स्टालिन। और यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates. Steely Dan, Loggins and Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
6: It's your boy,
5: just
6: Jay-Z.
5: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जो आप 19 में से 18 और मुस्लिम में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके पीछे चुनाव आयोग की 2023 की परिसीमन प्रक्रिया है, जिनमें उन सीटों की संख्या घटाकर लगभग 36 से 22 कर दी गई जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक थे। कुछ इलाकों को बांटा गया, कुछ को जोड़ा गया, कुछ सीटों को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटों तक पहुंचने का मौका मिला। आपका जवाब।
8: देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये सब बोलने के लिए शर्म आना चाहिए। किस लिए? जो गौरव गोगोई का अपना पार्लियामेंट्री सीट है जोरहाट, परिसीमन का बाद उन्होंने जोरहाट सीट 2026 का लोकसभा में जीते थे एंड उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 सीटों का 9 सीटों में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको लीड मिले थे। लेकिन इस बार गौरव गोगोई खुद भी हारे और सारे 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो गौरव गोगोई 26 में लीड मिले थे, हम उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे जीत हासिल हुए। परिसीमन का बात का यह घटना है, जो परिसीमन का बात 2024 में जो सीटें कांग्रेस ने जीते वो सीट इस बार बीजेपी जीते, तो उसका मीनिंग क्या है? दूसरा, आप थोड़ा वोट परसेंटेज देखिए। हम सीट नहीं जीते हैं साथ साथ में, हमारा एब्सोल्यूट वोट परसेंटेज भी 50 तक पहुंच चुका है। तो ये खाली सीट का काम नहीं है, पॉपुलर वोट भी 50% हुए हैं। ये लोग बोल सकते थे परिसमन के लिए हम जीते, अगर हमारा सीट

0: बांटते थे, वोट नहीं बांटते थे।
1: एक बार फिर से वो डेटा दिखाइएगा जिसकी चर्चा वो भी कर रहे हैं, मतलब मिस्टर शर्मा भी कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं सर। वोट परसेंटेज 2021 में जब आपकी 60 सीट आई थी
0: हाँ,
1: तो 33% के करीब आपका वोट परसेंटेज था। इस बार 38% सिर्फ बीजेपी का है, लगभग 6.5% असम गण परिषद का है। उसके बाद आपका अलायंस में जो पार्टनर है बीपीएफ, उनका 10 सीट है, वहां भी आपको 4% के करीब है, तो मिलाकर हो गया। और कांग्रेस पार्टी 29% पर है, वो हम दिखा रहे हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

प्रचंड विजय के बाद ऑब्जर्वर के तौर पर बंगाल पहुंचे अमित शाह, शाम तक सामने आएगा सीएम का चेहरा। थोड़ी देर में शुरू होगी विधायकों की मीटिंग, मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु सबसे आगे। बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, हावड़ा के शोपुर में चले बम, धार्मिक नारे लगा रहे थे उपद्रवी। शुभेंदु के पीए के हथियारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। शूटर्स के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ फरार होने का शक। तमिलनाडु के नतीजों ने बदली गठबंधन की सियासत, कांग्रेस पर अखिलेश का बड़ा तंज। ममता और स्टालिन के साथ फोटो शेयर कर लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। एनडीए से अलग होने पर सोच कर रहा है एआईएडीएमके। बयालीस दिन बाद टीसीएस केस की मुख्य आरोपित निदा खान महाराष्ट्र के संभाजीनगर से गिरफ्तार। पुलिस का दावा, फोन बंद कर बदल रही थे ठिकाने। आक्रमक शिवसेना ने कहा कि निदा को बचा रही है ओबीसी की पार्टी। और अरब के आसमान पर फिर बारूदी धुआं, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें। ईरानी बंदरगाहों पर अटैक के बाद हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले, ट्रंप की धमकी, डील नहीं हुई तो तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉयर के सुरक्षित होने का दावा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत पश्चिम बंगाल की सियासी हलचल से करने जा रहे हैं। आज बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं, जोरदार उनका स्वागत हुआ। और अब दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। अमित शाह इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। अमित शाह के साथ में ओडिशा के सीएम मोहन मांझी सह पर्यवेक्षक होंगे। और देखिए, यही उम्मीद जताई जा रही है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर विधायक दल की बैठक में मोहर लग जाएगी और वो कल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम के रूप में शपथ लेंगे। अब इस वक्त कोलकाता में क्या सियासी सरगर्मी है, ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर, शुभेंदु अधिकारी ही है। लेकिन जैसा बीजेपी का इतिहास रहा है, कई राज्यों में हमने देखा है कि अचानक एक चेहरा सामने आता है और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेता है। क्या यहां पर भी ऐसा होगा? बहुत जल्द ये स्पष्ट हो जाएगा। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सियासी सरगर्मी, हर एक पल की हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष, क्या हो रहा है वहां पर और आपके पास अभी तक क्या खबर आ रही है? बैठक 3 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले किस तरह की खबरें हलचल है?
1: जी बिल्कुल हिमांशु, बैठक 3 बजे के आसपास शुरू होगी, लेकिन सभी विधायकों को 2 बजे बिस्वा कन्वेंशन सेंटर पहुंचने के लिए कहा गया है। इस वक्त कोलकाता में सभी विधायक पहुंच भी चुके हैं और जल्द यहां से महज, यानी नोवोटेल जहां पर गृहमंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं, यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बिस्वा कन्वेंशन सेंटर है। तो वो खुद भी 3 बजे के आसपास ही उस कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे। और वहां पर जैसे ही गृहमंत्री पहुंचते हैं, उनके अलावा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सभी सांसद हैं, सभी तो नव निर्वाचित विधायक है, सबके सब जब पहुंच जाएंगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा। दरवाजा जब बंद हो जाएगा तो अंदर बैठक होगी और उस बैठक में सभी विधायकों के मन को टटोला जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि किसको कौन सा नेता पसंद है। कुछ नेताओं की तरफ से, जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा कि एक नाम शुभेंदु अधिकारी का हो सकता है या एक और नाम जो केंद्रीय लीडरशिप से आया है उनका हो सकता है। तो इन सभी नामों को रखने के बाद लगभग जो नाम रखे जाएंगे सभी विधायकों से, उनके मन की बात पूछी जाएगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि सबसे ज्यादा मत किस नेता को मिले जो इस विधायक दल का नेता बनने जाएगा। तो यही कहीं ना कहीं लगभग 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और 5 बजे ये ऐलान कर दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये ऐलान गृहमंत्री अमित शाह स्वयं करेंगे क्योंकि वो पर्यवेक्षक बनकर यहां पर आए हैं। और एक और बात जो यहां पर समझने की है कि उनके साथ मोहन चरण मांझी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, भी सह पर्यवेक्षक बनकर आए हैं। इसके पीछे भी एक सोच है बीजेपी की, वो भी समझने की जरूरत है। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी अंग मंग और कलिंग की बात करते थे और वो कहते थे कि यहां पर जब बीजेपी का राज होगा तो पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है उसका विकास होगा। तो यानी बिहार, उड़ीसा और बंगाल, यानी बंग की बात जो कही जाती थी वो बंगाल। तो अब बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी यहां पर आ रहे हैं और बिहार में ही कल शपथ के बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ। तो तीनों प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए
0: बहुत, ये शपथ बहुत अच्छी तरीके से पीयूष आपने समझाया है कि सोच बहुत दूर तक की है। बने रहिए आप हमारे साथ। तो ये बात तय है कि सारी नजरें इस वक्त कोलकाता की ओर है। बंगाल को बीजेपी का पहला सीएम मिलने वाला है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा, वो आपको दिखाते हैं।
2: देखिए, बात यह है, आज बड़ा खुशी का दिन है। जो अहंकारी लोग ने कहे थे जो अमित शाह को या कोई केंद्रीय नेता 4 तारीख के बाद आ नहीं पाएंगे, आज देखिए 56 इंची छाती लेके अमित शाह यहीं पर आया। और जो लोग ऐसा अहंकारी बात कहे थे वो लोग मुख छुपा के मैं घर पे बैठा है। पद चला गया, सरकार चले गए, जनता चले गए, फिर भी ख्वाब देख रहा है। हम अभी भी त्याग पत्र नहीं दिया। अरे, वो त्याग पत्रों को पकड़ के तुम घर पे पड़ा रहो। बंगाल आगे चलते रहेगा, बंगाल का उन्नति हमारा मूल चिंता, डेवलपमेंट पूरा बंगाल में होगा, यही बीजेपी का सपना है।
1: क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं?
2: नहीं, वो तो लगने का कुछ नहीं है, वो तो जो हमारा विधायक दल है वो तय करेगा।
1: आज शाम को कब तक ये क्लियर हो जाएगा सर?
2: वो 6 बजे तक क्लियर हो जाएगा।
0: तो आज शाम तक 6 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा, ये बात कही गई। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दे, थोड़ी देर में बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये बताया जा रहा है कि 3 बजे करीब ये बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले भी कई बैठकें हैं जिनका जिन बैठक में अमित शाह शामिल होंगे। और ये आपको बता रहे हैं नवोतल होटल, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपसे कुछ ही देर में बैठक में शिरकत करेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नोवोटेल होटल में बीजेपी की बैठक होने जा रही है और उसके बाद भी एक बैठक होगी जिसमें विधायक दल ये चुनेगा कि कौन होगा बंगाल का मुख्यमंत्री। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुपम, आप जहां पर मौजूद है वहां से आपके पास क्या खबर आ रही है? और एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, भले ही शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर हैं, लेकिन नाम कई लोगों के सामने चल रहे हैं, क्या कोई महिला नाम भी सामने आ सकता है? आपके पास क्या खबर अनुपम?
3: जी देखिए, विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, अमित शाह के घुसने का वक्त हो गया है और गाड़ियां प्रवेश कर रही हैं नोवोटेल में। देखिए, एयरपोर्ट से वो सीधे गए थे दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, और दक्षिणेश्वर काली टेम्पल से अब उनका कॉन्वॉय होटल में प्रवेश कर रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमित शाह गृह मंत्री जो पर्यवेक्षक के तौर पर कोलकाता पहुंचे हैं, अभी पहुंच रहे हैं कोलकाता के नोवोटेल में, जहां पर मीटिंग शुरू होने वाली है। ये देखिए, जैमर वाली गाड़ी भी आ गई, कॉन्वॉय भी उनका आ गया, पीछे पीछे अमित शाह की गाड़ी कार भी है, और अमित शाह के साथ श्रमिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी भी हैं। अभी यहां पर घुसने के बाद ही बैठक शुरू होगी। फिलहाल देखिए, गाड़ियां धीरे धीरे प्रवेश कर रही हैं, जो कॉन्वॉय होता है वो प्रवेश कर रहा है अमित शाह का कॉन्वॉय। ये देखिए, अमित शाह हाथ हिलाते हुए भीतर प्रवेश कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी उनके पीछे बैठे हुए हैं, और उन्हीं की गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी और श्रमिक भट्टाचार्य दोनों बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन रहे इतने दिनों तक, जायंट किलर के तौर पर उभरे ममता बनर्जी को हराया शुभेंदु अधिकारी, श्रमिक भट्टाचार्य दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में अमित शाह के साथ नोवोटेल में प्रवेश कर चुके हैं। बाकी सारे नेता भी धीरे धीरे अब प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, निशित प्रामाणिक अब अंदर जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ और भी जो नेता हैं, दिलीप घोष समेत सभी नेता अब धीरे धीरे नोवोटेल में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये अब बैठकों का दौर शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्योंकि भीतर घुसने के बाद थोड़ी देर में ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। पहली मीटिंग जो है वो लगभग आधे घंटे बाद शुरू होगी, जहां पर पहले तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स होंगी। जितने भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि कैबिनेट में कौन होगा इसकी चर्चा तो दिल्ली में हो चुकी है, उस पर भी मन टटोला जाएगा लोगों का, बातचीत होगी। खासतौर पर श्रमिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी तो उस मीटिंग में शामिल रहेंगे ही। दोनों ही कितने प्रमुख हैं, आपको इस बात का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे अमित शाह के साथ, भीतर घुसे हैं, तो सभी को साथ लेकर चलने की योजना है। जो नाम उभर कर आएगा 3 बजे के बाद, जो विधायक दल की बैठक,
0: आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप ही की बात को अनुपम आगे बढ़ाते हैं। पीयूष मिश्रा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये तस्वीर बहुत खास है, अमित शाह आगे बैठे हुए हैं, पीछे श्रमिक भट्टाचार्य भी हैं और शुभेंदु अधिकारी भी हैं। क्या इन तस्वीरों से ये माना जाए, जो कयास लगाए जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी श्रमिक भट्टाचार्य, उनको बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब 5-2 कर दें या अभी भी 5 ही रहने दें?
1: देखिए, अभी जब अनाउंसमेंट हो जाए तब चीजें आगे बेहतर और हो जाएंगी और ऑफिशियल हो जाएंगी, तो हमको लगभग तस्वीर समझ आ जाएगी। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी एकदम कंधे से कंधा मिलाकर अमित शाह के साथ पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में दिखे। एक तरफ जहां अमित शाह नॉर्थ बंगाल में चुनाव कर रहे हैं, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी साउथ बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। तो हमने देखा कि कैसे एक टीम की तरह इन्होंने काम किया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। और अभी की जो तस्वीर है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, गाड़ी के अंदर 5 लोग सवार हैं, एक अमित शाह के ड्राइवर, साथ में अमित शाह, उनके बाद बैठे हुए हैं श्रमिक भट्टाचार्य, उसके बाद बैठे हैं शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह के सहयोगी। यानी कि इन 5 लोगों में 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, श्रमिक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष। और जब भी हमने कोई बड़ा कार्यक्रम देखा है यहाँ पर प्रधानमंत्री का, उसमें श्रमिक भट्टाचार्य प्रधानमंत्री के साथ रहे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत में। वहीं शुभेंदु अधिकारी जो है वो एक सबसे बड़े नेता के तौर पर गृहमंत्री के साथ इस वक्त इस गाड़ी के अंदर जाते हुए नजर आए। और जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम बीजेपी के यहाँ पर पहले भी हुए वहां पर शुभेंदु अधिकारी और श्रमिक भट्टाचार्य साथ साथ दिखे हैं। तो एक साथ सबको लेकर चलने की बात जो बीजेपी करती है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी नारे को पार्टी में भी अप्लाई करती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह यहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर तो जरूर पहुंचे, लेकिन जब वो एयरपोर्ट से निकले उसके बाद वो दक्षिणेश्वर मंदिर गए और दक्षिणेश्वर मंदिर से वो नवोटल आए, यानी लगभग एक घंटे का समय जो है तीनों नेताओं को एक साथ गाड़ी के अंदर मिल गया और कुछ बातें आपस में जरूर कर ली होगी कि कैसे आगे बढ़ना है, शपथ ग्रहण समारोह कैसे होगा, कौन से नेता हैं वो कैबिनेट के हिस्सा हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर जरूर मंथन हुआ।
0: अच्छा, ये जो आपने बात कही है ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत खास बात है अनुपम। ठीक है, बैठकें होती हैं, 2:30 बजे बैठक शुरू होगी, 3 बजे बैठक शुरू होगी विधायक दल की जिसमें नेता चुना जाएगा, लेकिन ये जो वक्त है जो पीयूष बता रहे थे कि दक्षिणेश्वर मंदिर से होटल तक पहुंचे, गाड़ी में बैठे हैं दो बड़े दिग्गज जिन पर जिम्मेदारी थी, अमित शाह वहां पर हैं, तो यहां जो बातचीत होती है वो बहुत अहम होती होगी, जो आगे की रणनीति बिल्कुल तय करती होगी, ठप्पा भी लगाती होगी।
3: हाँ बिल्कुल सही, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए होटल के बाहर अब गहमा गहमी बढ़ गई है और ये बैठकों का दौर जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी से कुछ घंटे तक, 5 से 6 घंटे तक ये तय हो जाएगा कि कौन बंगाल का बीजेपी का मुख्यमंत्री हो रहा है। निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर है, लेकिन इनके साथ भी काफी अटकलें लग रही हैं। अब मैं बताऊं, भीतर में काफी लोगों ने प्रवेश किया है, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, सभी जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने प्रवेश किया है, उनके साथ एक फॉर्मल डिस्कशन होना है। लेकिन जो बीजेपी की रीत रही है पिछले कई सालों में, हमने देख लिया है कि अटकलें लगती रहती हैं लेकिन नाम बदल जाता है। हाँ। और इसका उदाहरण भरा पड़ा है, दिल्ली देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए। तो ऐसे में अभी से मोहर लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि हम ये जरूर कह सकते हैं कि फ्रंट रनर शुभेंदु अधिकारी, उसकी वजह भी क्या क्या है वो सब हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन प्रिपरेशंस पर भी आज चर्चा होनी है। कल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें बहुत सारे लोगों को बुलावा दिया जा रहा है, सेलिब्रिटीज जो हैं उनको बुलावा दिया जा रहा है, इसके अलावा जो गणमान्य व्यक्ति हैं पश्चिम बंगाल के उनको बुलावा दिया जा रहा है, राजनीतिज्ञ तो हैं ही, संभवतः ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को भी न्योता दिया जाएगा, वो आते हैं नहीं आते हैं ये बात अलग है, लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं पर भी आज चर्चा होगी। हाँ। शपथ ग्रहण को किस तरह से कामयाब बनाया जाए इस पर भी अभी चर्चा होनी है, तो बहुत कुछ अभी होना है।
0: अच्छा, ये जो आपने बताया ये बहुत अच्छी बात है पीयूष, और इससे बहुत स्पष्ट ये पता चलता है कि एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है जो कई सालों का इंतजार किया गया, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता आने का, पूर्ण बहुमत का, जब वो मिली और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कार्यक्रम इतना भव्य होगा कि इसका संदेश बहुत दूर तलक जाए, मैं तो ये कहता हूं कि 2027 तक जाए, ऐसा बीजेपी तैयारी कर रही होगी और इसीलिए ये बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम इस शपथ ग्रहण में बुलाए जाएंगे।
1: जी बिल्कुल, बड़े चेहरे बड़े नाम सब शिरकत करेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में, और जानकारी ये भी मिल रही है कि बीजेपी और एनडीए के सभी मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और कई नेताओं को इसमें जो है निमंत्रण दिया जाएगा, कुछ एक्टर्स हैं उनको भी निमंत्रण देने की बातचीत कुछ नेताओं के बीच में चल रही है, तो वो इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा। और जो आपने एक बात कही कि बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि एक लंबे तौर तक उसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनी रहे, आपको इसकी वानगी तब भी देखने को मिली थी जब हमने देखा था, जब शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि ऐसा काम करेगी बीजेपी की सरकार की 100 साल यहाँ सत्ता से वो ना आ जाए। तो इस तरह की तैयारी बीजेपी कर आई है, इस तरह के वादे लोगों से किए गए हैं और पहली बार पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री, 206 सीटें आप लेके आ जाते हैं बीजेपी की, क्या बीजेपी लेकर आ जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये वो पार्टी है जिसने 1 से शुरुआत की थी, 1 से 3, 3 से 77 और 77 से सीधा 200 पार की जो वो है नंबर्स है वो गेन कर लिए बीजेपी ने। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कैसे पार्टी तैयारियां कर रही है, पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार है, आगे लोगों ने जिस तरह का भरोसा पार्टी पे जताया उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या काम किया जाए, उन सभी चीजों को लेकर जरूर मंथन होगा और उसी हिसाब से कैबिनेट भी तय किया जाएगा, उसी हिसाब से जिम्मेदारी भी नेताओं को दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी के पास बहुत ज्यादा काबिल नेता मौजूद हैं, जैसे अमित भट्टाचार्य बताया वो एक, एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। अग्निमित्रा पॉल काफी लंबे समय से जो है वो फैशन डिजाइनिंग में काम करती नहीं है, तो उनको उसका अनुभव है। तो हर एक फील्ड से लोग जो है वो बीजेपी के पास है और
0: हर एक फील्ड से है, लेकिन हर फील्ड से लोग होने के बावजूद मोहर किसी एक पर लगेगी और जिस एक पर वो मोहर लगेगी वो 5 से 6 बजे तक बहुत स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर जो चर्चा का विषय बनी हुई है उस पर एक बड़ी खबर वो हम आपको बता देते हैं कि जब दक्षिणेश्वर मंदिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए और वहां से नोवोटेल होटल पहुंचे तो वो तस्वीरें बहुत खास थी। बीजेपी की बैठक के लिए अमित शाह पहुंचे हैं और एक ही गाड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो आगे बैठे हुए थे, शुभेंदु अधिकारी और सौमिक भट्टाचार्य उनके साथ गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और एक ही गाड़ी में अमित शाह शुभेंदु अधिकारी। तो ये तस्वीरें भी बहुत खास है और इन तस्वीरों पर भी अब चर्चा होने लगी और बहुत से लोग ये मानने भी लगे हैं कि अब लगभग फाइनल हो गया है कि शुभेंदु भट्टाचार्य पर ही मोहर लग जाए, शुभेंदु अधिकारी पर ही मोहर लग जाए। हालांकि इंतजार तो करना होगा 5 से 6 बजे तक का। बने हुए अनुपम मिश्रा हमारे साथ। अनुपम, ये तस्वीरें बहुत अहम है और इन तस्वीरों पर चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि हमने ये देखा है कि फ्रंट रनर जिनका आप जिक्र कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी, पिछले कई सालों से बीजेपी को मजबूत करने में वो जुटे हुए थे। 2 बार ममता बनर्जी को लगातार उन्होंने हराया। कद बहुत बड़ा है उनका पश्चिम बंगाल बीजेपी में और अमित शाह के साथ उनकी इस बातचीत और इन तस्वीरों को कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए काली मंदिर की भी तस्वीर आ गई है जहां पर अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी जब साथ में उन्होंने दर्शन किया और ये हमने देखा भी है कि बीजेपी जब भी कोई बड़ा काम करने जाती है उससे पहले मंदिर में जाके पूजा अर्चना की जाती है, ये हमने देखा है, चाहे वो चुनाव प्रचार का आगाज करना हो या फिर किसी भी काम की शुरुआत करना हो। और यहां पर भी आप देखिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ में उनके मौजूद होते हैं शुभेंदु अधिकारी और सौमिक भट्टाचार्य, वो भी उनके साथ में मौजूद रहते हैं। मंदिर में पूजा पाठ की जाती है, एयरपोर्ट से सीधे मंदिर जाते हैं, एयरपोर्ट से सीधे मंदिर और फिर मंदिर के बाद अब नोवोटेल होटल जहां पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है, सभी दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। अनुपम बने हुए हमारे साथ। अनुपम, ये तस्वीरें इनके क्या मायने निकाले जाएं?
3: ये तस्वीरें बहुत खास हैं, आपको बताऊं हिमांशु, इस तस्वीर में कई संदेश छिपे हुए हैं। सबसे पहली बात है कि अटकलें लग रही हैं शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर हैं, लेकिन इन तस्वीरों में एक बात और संदेश के तौर पर उभर कर आ रही है कि सौमिक भट्टाचार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है इस वक्त अमित शाह के लिए। और आपको बताएं कि उनकी अध्यक्षता में ही प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, आपको याद होगा चुनाव अनाउंस होने के कुछ महीने पहले ही सौमिक भट्टाचार्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। एक बंगाली अस्मिता, बंगाली पहचान, बंगाली अस्मिता की छवि रखने वाले सौमिक भट्टाचार्य को इसीलिए ही प्रेसिडेंट बनाया गया था कि पिछले बार 2021 में बहिरागत यानी बाहरी का टैग लगा था बीजेपी पर। अच्छा। और एक वजह मानी जा रही थी कि बीजेपी पर जो एक इमेज क्राइसिस हुई है उसकी वजह से इसको बदलने की कोशिश हुई थी और उसमें कामयाबी हासिल हुई। सौमिक भट्टाचार्य बंगाली अस्मिता के प्रतीक के तौर पर उभरे और उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत सारी रैलियां की, शुभेंदु अधिकारी में बहुत सारी रैलियां की। तो गेस वर्क हमारे लिए लगाने को छोड़ दिया गया है, दोनों को ही महत्वपूर्ण दिखाया जा रहा है इस वक्त। और ये बीजेपी की खासियत रही है कि आप जितनी भी अटकलें लगाएं आखिरकार अचानक से कुछ अचरज भरी भरे घोषणा भी हो जाती है। इसका उदाहरण हम पिछले चुनावों में देख चुके हैं, पिछले राज्यों कई सारे राज्यों में हम देख चुके हैं, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो आकलन लगाए गए थे वो सही साबित नहीं हुए थे। तो ऐसे में इस बार भी शुभेंदु अधिकारी निश्चित तौर पर फ्रंट रनर है, जायंट किलर के तौर पर उभरे हैं, लेकिन सौमिक भट्टाचार्य भी काफी महत्वपूर्ण इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों से एक संदेश तो बिल्कुल सामने आ रहा है।
0: और बीजेपी के रणनीतिक, ठीक है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जब मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जैसे सबसे पहले आपको बताया एयरपोर्ट से निकलते ही दक्षिणेश्वर मंदिर मां काली के दर्शन करने पहुंचे थे, अब यहां पर पूजा अर्चना की। अब देखिए आप अमित शाह यहां पर मौजूद हैं, उनके ठीक पास में आप देखेंगे बाईं तरफ शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं, सौमिक भट्टाचार्य भी वहां मौजूद हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की, नतमस्तक हुए, आशीर्वाद लिए। और इससे पहले भी हमने देखा था जब चुनावी कैंपेन की शुरुआत की गई थी पश्चिम बंगाल में, तब बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर आए थे, पूजा अर्चना की थी यहां पर, आशीर्वाद लिया था विजय का। और देखिए विजय तो मिली है और उसके लिए मेहनत भी बीजेपी ने की है, कई सालों का इंतजार था और उसके बाद अब ये तस्वीरें यहां पर देखी जा रही हैं। और ये बात अभी जैसे बता रहे थे, हमारे सहयोगी अनुपम बता रहे थे कि बीजेपी इस बार मीडिया के लिए भी काम आसान नहीं छोड़ रही है। कयास लगाते रहिए, कंफ्यूज होते रहिए, किसका नाम सामने आएगा उसके लिए तो आपको 5 से 6 बजे तक इंतजार करना ही होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर वो हम आपको बता दें, इन तस्वीरों को तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर वो भी कोलकाता से, कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण की जबरदस्त तैयारी इस वक्त चल रही है। वक्त है कल सुबह 10 बजे का, कल सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने की उम्मीद है। बीजेपी के बहुत से बड़े नेता इसमें शिरकत करने वाले हैं। पीयूष भी बता ही रहे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर शामिल होंगे, कई एक्टर्स यहां पर शामिल होंगे, जैसे अनुपम बता रहे थे बड़ी हस्तियां यहां पर शामिल होंगी, और बंग की जो बात की जाती है, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यहां के भी बड़े चेहरे यहां पर शामिल किए जाएंगे। एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी, एक मजबूती दिखाने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से, और इसका संदेश वो चाहते हैं कि आने वाले साल में होने वाले 27 में जो कई राज्यों में चुनाव हैं, चाहे वो गोवा हो, गुजरात हो, मणिपुर हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, वहां तक ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी अपने लक्ष्य तक पहुंचना जानती है, ये बीजेपी की तरफ से संदेश दिया जा रहा है। तो कल सुबह 10 बजे शपथ समारोह होगा, हो सकता है पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जरा बताइए, आपने तो मौके पर पहुंचे होंगे ब्रिगेड परेड मैदान में, किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, और बीजेपी इस भव्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम से क्या संदेश देने की तैयारी में है?
1: देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि वो पश्चिम बंगाल की तरक्की के लिए काम करेगी, क्योंकि ये वादे लोगों से जरूर किए गए जब चुनाव चल रहा था। उस वक्त कई बड़े बड़े वादे पश्चिम बंगाल की जनता से किए गए, जिसमें नौकरी, इंडस्ट्री, इसी के साथ साथ महिला सुरक्षा, इन सभी चीजों पर बीजेपी काम करने जा रही है, और इसीलिए एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाला है। और ये वो ब्रिगेड ग्राउंड है, जब भी पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर कोलकाता में आते हैं और यहां पर रैली करते हैं तो उसी ब्रिगेड ग्राउंड में उनकी रैली होती है, और लाखों की संख्या यहां पर लोग पहुंचते हैं, और इसीलिए कई लोगों के आने की भी तैयारी है। पूरा पश्चिम बंगाल हो सकता है कि यहां पर हर कोई जो बीजेपी के समर्थक है और जो लोग जिन्होंने वोट किया बीजेपी को, वो सभी इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में आने की कोशिश करें। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसीलिए इसको भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को ऑर्गेनाइज करने की भी तैयारी की गई है। बड़ा सा स्टेज लगाया गया है, सभी जितने भी मुख्यमंत्री हैं, 17 राज्यों में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री, और बाकी एनडीए में जहां पर बीजेपी और एनडीए की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी इन जगहों पर पहुंचे, उनके लिए बैठने की जगह हो, साथ साथ जो शपथ लेंगे उनके लिए प्रॉपर बैठने की जगह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बैठने की जगह हो, तो सभी के इंतजाम इस वक्त किए जा रहे हैं और पूरी तैयारी की जा रही है। पूरा जो ग्राउंड है उसको सजाया जा रहा है, और बीजेपी की सरकार बनने की जो तैयारी है वो की जा रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि जो बीजेपी का थीम सॉन्ग है पलटन ही दरकार चाहे बीजेपी सरकार, वो नारे भी लगातार लोगों की तरफ से लगाए जाएंगे, साथ साथ जय श्री राम और जय मां काली के नारों के बीच में कल एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। पहली बार ऐसा होने वाला है कि बीजेपी की अपनी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनने जा रही है, और दशकों तक बीजेपी ने तैयारी की इस दिन को देखने के लिए। हमने वो समय भी देखा है जब सिर्फ 3 सीटें बीजेपी की थी, और 3 से 77 और 77 से 200 पार सीटें बीजेपी लेकर आई है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, भव्य समारोह भी होगा। लेकिन
0: पीयूष, जिस तरह से बंगाल में बीजेपी ने नारा दिया था, उस नारे का उच्चारण आपने किया, उससे लगता है कि बंगाल में रहकर आपकी भी बंगाली काफी अच्छी हो गई है। तो देखिये, आज बैठकों से जुड़ी हर एक तस्वीर, हर एक खबर आपको दिखाते रहेंगे, हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

बंगाल में प्रचंड जीत के बाद कोलकाता पहुंचा अमित शाह। एयरपोर्ट पर शुभेंदु की थपथपाई पीठ, शाम तक सामने आएगा सीएम का चेहरा। थोड़ी देर में विधायकों की मीटिंग, मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु सबसे आगे।

बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। हावड़ा के शिवपुर में चले बम, धार्मिक नारे लगा रहे थे उपद्रवी। शुभेंदु के पीए के हत्यारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। शूटर्स की बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ फरार होने का शंक। तमिलनाडु के नतीजों ने बदली गठबंधन की सियासत। कांग्रेस पर अखिलेश का बड़ा तंज। ममता और स्टालिन के साथ फोटो शेयर कर लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। एनडीए से अलग होने पर सोच रहा है एआईएडीएमके। बयालीस दिन बाद टीसीएस केस के मुख्य आरोपित निदा खान महाराष्ट्र के संभाजी नगर से गिरफ्तार। पुलिस का दावा, फोन बंद कर बदल रही थे ठिकाने। आक्रमक शिवसेना ने कहा, निदा को बचा रही है ओवैसी की पार्टी। और अरब के आसमान पर फिर बारूदी धुआं। ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें। ईरानी बंदरगाहों पर अटैक के बाद हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले। ट्रंप की धमकी, डील नहीं हुई तो तबाह कर देंगे। डेस्ट्रॉयर के सुरक्षित होने का भी दावा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। ईरान की जंग में डील और ड्रामा देखा जा रहा है और एक बड़ा दावा भी किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमेरिका को लेकर ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। हालांकि अभी तक अमेरिका ही बड़े दावे कर रहा था, लेकिन अब ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिकी जंगी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया। यह ईरान की तरफ से दावा किया गया है और ईरान ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी नाकाबंदी को तोड़ रहे थे वॉरशिप और फिर उसके बाद ईरान की नेवी ने हमला किया। अमेरिकी जंगी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया और यह बताया गया है कि 3 युद्धपोत डिस्ट्रॉयर युद्धपोत अमेरिका के थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाते हैं, एंटर करते हैं, नाकाबंदी को तोड़ते हैं। उसके बाद ईरान की नेवी वहां हमले करती है, छोटी नाव का सहारा लिया जाता है। ईरान की नेवी उन डिस्ट्रॉयर पर हमले करती है और यह ईरान की नेवी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारी नुकसान पहुंचाया गया है अमेरिका के जंगी जहाजों को। तो ईरान की जंग में डील है और ड्रामा का ऐसा घालमेल इस वक्त चल रहा है कि एक पल डील की बात सामने आती है और अगले ही पल मिसाइलें चलने लगती हैं। डील और ड्रामे के बीच एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी इशारों इशारों में दी है, स्पष्ट नहीं बोला है। तो क्या ट्रंप की शर्तों पर नहीं झुकने के बाद ईरान के ऊपर एटमी हमला होने वाला है? यह आशंका भी खत्म नहीं हुई है।
1: क्या ईरान पर एटम बम दागने वाले हैं ट्रंप? क्या इंसानियत के खिलाफ इकलौता महापाप दोहराएगा अमेरिका? क्या न्यूक्लियर डस्ट के लिए ईरान को धूल में मिलाएंगे ट्रंप? क्या होर्मुज के समंदर में ही अगला एटम बम फटने वाला है? पाकिस्तान को किनारे रखकर अमेरिका और ईरान एक दूसरे से सीधी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसी बातचीत के दौरान होर्मुज में कुछ ऐसी तनातनी हो रही है कि ट्रंप ने ईरान को बिना कहे एटमी धमकी दे दी है।
2: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran, and they better sign their agreement fast.
1: Trump ने ईरान के अंदर से निकलने वाली बिग ग्लो यानी बहुत बड़ी रोशनी कहते हुए हाथों से जो इशारा किया वो एटमी हमले की धमकी की तरफ ही इशारा कर रहा था। ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं कि अगर इस बार ईरान ने डील नहीं की तो दुनिया अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि उसके साथ क्या होगा।
2: Now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yep.
1: ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ईरान की जंग के दौरान परमाणु हमले का संकेत देते हुए धमकी दी है। इससे पहले ट्रंप अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि वो ईरान को नेस्त नाबूद कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, सभ्यता ही खत्म कर देंगे, पाषाण युग में भेज देंगे, अभूतपूर्व हमला करेंगे। दरअसल अमेरिका ने चाहे जून 2025 में ईरान पर B-2 बॉम्बर से बम बरसाए हों या 28 फरवरी से लगातार 39 दिन तक ईरान में तबाही मचाई हो, दोनों हमलों के पीछे ट्रंप ने वही दलील दी है कि ईरान एटम बम बना रहा है। और ताजा हमलों के बाद एक तरफ ट्रंप ये भी कहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दशकों पीछे धकेल दिया गया है, दूसरी तरफ ओवल ऑफिस में स्कूली बच्चों से लेकर अपने कर्मचारियों तक को घूम घूम कर बता रहे हैं कि ईरान अमेरिका पर एटमी हमला करने ही वाला था। दरअसल ट्रंप ईरान से जंग में हो रही अपनी बदनामी का असर मिड टर्म में घरेलू सियासत के मोर्चे पर भी देख रहे हैं, लिहाजा ईरान की जंग में अमेरिकी रुख का बचाव वो हर मंच पर कर रहे हैं। और आज जो अमेरिका की गर्दन हुर्मुज की हांडी में फंसी है उसके लिए वो डेमोक्रेट राष्ट्रपति ओबामा की डील को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
2: If I didn't terminate the Barack Hussein Obama Iran nuclear deal, Iran would have had a nuclear weapon at a high level
1: ईरान की जंग के कारण अमेरिका में डेमोक्रेट ही नहीं रिपब्लिकन्स के अंदर भी ट्रंप की नीतियों को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। उसका मुकाबला करने के लिए ट्रंप ओबामा की नीतियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप की इन बहानेबाजियों पर अमेरिकी यकीन नहीं कर रहे और ट्रंप से आए दिन महंगे होते तेल गैस के दामों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही लिंकन मेमोरियल से जुड़े एक सवाल पर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया चैनल की महिला पत्रकार को सवाल पूछने पर गालियां देना शुरू कर दिया। इसके बाद ट्रंप सबके सामने ही महिला पत्रकार को गंदी सी गाली देते हुए वापस मुड़ गए और वहां खड़े लोग मुस्कुराते रहे। आज तक ब्यूरो।
0: तो ट्रंप की एचबी धमकी दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के दौरान आ रहे उतार चढ़ाव का एक दौर है, वरना जब ट्रंप कह रहे हैं कि 44 घंटे की बातचीत के बाद एक शानदार डील होने वाली है, उसी बीच हॉर्मुज के समुद्र से लेकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई तक बारूदी धमाके नहीं होने लगते। कल की रात ईरान और अमेरिका के बीच समुद्र से जमीन तक जंगी हालात थे।
3: ट्रंप की नजर में ईरान की ध्वस्त हो चुकी सेना नाराय तकबीर के साथ मिसाइलें लॉन्च कर रही थी। उधर संयुक्त अरब अमीरात के आसमान में बारूदी आतिशबाजी जैसा नजारा था। ईरानी जमीन से हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों ने ना तो संयुक्त अरब अमीरात को सोने दिया, ना ही हॉर्मुज के समंदर में अमेरिकी नौसेना को चैन की नींद लेने दी। ईरानी सेना स्टिकर चिपका चिपका कर अमेरिका पर हमले का वीडियो जारी कर रही थी। किसी पर लिखा था कि फारस की खाड़ी तुम्हारी कब्रगाह है, तो किसी पर लिखा था कि ये मीनार के शहीदों की याद में, किसी पर लिखा था देना डिस्ट्रॉयर के शहीदों की याद में, तो किसी पर ईरानी सेना के मारे गए अफसरों के नाम लिखे थे। ये मिसाइलें संयुक्त अरब अमीरात की जमीन से लेकर आसमान तक फट रही थी। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही है। उधर ईरानी मीडिया ने दावा किया कि यूएई को पता नहीं, लेकिन हॉर्मुज के बाहर जरूर ईरानी सेना ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर हमले किए हैं।
4: पोर्टो में बताया गया कि केशम द्वीप के पास धमाकों की आवाज सुनी गई। इन रिपोर्टों के बाद एक जानकार सैन्य अधिकारी ने कहा कि जब आक्रामक अमेरिकी सेना ने एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया तो हॉर्मुज में मौजूद दुश्मन की टुकड़ी ईरानी मिसाइल हमले की चपेट में आ गई और नुकसान पहुंचने के बाद उन्हें वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा।
3: हालांकि ट्रंप ने हॉर्मुज में 7 मई को हुई झड़प को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, ठीक वैसे ही जैसे हमने आज उन्हें फिर से बाहर कर दिया, भविष्य में हम उन्हें और भी जोरदार तरीके से और कहीं ज्यादा हिंसक ढंग से बाहर करेंगे। अगर उन्होंने अपना समझौता जल्दी से जल्दी साइन नहीं किया तो हमारे 3 डिस्ट्रॉयर जहाज अपने बेहतरीन क्रू के साथ अब हमारी नौसैनिक घेराबंदी में फिर से शामिल हो जाएंगे। सचमुच स्टील की एक दीवार है। उधर ईरानी मीडिया कह रहा था कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स उनकी जद में घुस रहे थे तो हमले के बाद वापस लौटे। इधर अमेरिकी सेंटकॉम कह रहा था कि ओमान की खाड़ी से गुजरते वक्त यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन पर ईरान ने मिसाइलें, ड्रोन और स्पीड बोट्स से हमले की कोशिश की, जिन्हें खत्म कर दिया गया। अमेरिका की किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। हॉर्मुज में इस तनातनी और डील की बातचीत के दौरान अमेरिकी रुख एक बार फिर बदला है और ट्रंप ने 2 दिन पहले हॉर्मुज में जहाजों को एक्सकॉर्ट करके निकालने के ऑपरेशन फ्रीडम को जो रोका था उसे फिर से चालू कर दिया है। सऊदी और कुवैत ने अपने एयरबेस के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और अमेरिका एक बार फिर हॉर्मुज से जहाजों का एक्सकॉर्ट शुरू कर चुका है। आज तक ब्यूरो।
0: और एक बड़ी खबर बताते हैं, इसी बीच हॉर्मुज के मोर्चे से ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के हॉर्मुज ब्लॉकेड का ईरान पर तुरंत कोई असर नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक CIA ने अमेरिकी हुकूमत को खुफिया रिपोर्ट दी है कि मौजूदा ब्लॉकेड के बावजूद ईरान 3-4 महीनों तक आराम से अपनी इकोनॉमी को संभाले रख सकता है। ये CIA की तरफ से खुफिया रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि आप ब्लॉकेड कर दीजिए, लेकिन ब्लॉकेड के बावजूद ईरान 3-4 महीनों तक आराम से अपनी इकोनॉमी को संभाल के रख सकता है। तो जब अमेरिका और ईरान के बीच इतनी तनातनी चल रही है, हॉर्मुज में के बाद एक हमले हो रहे हैं, यूएई पर हमले हो रहे हैं, तो आखिर बातचीत कैसे चल रही है, सवाल होगा लोगों के मन में। ट्रंप का कहना है कि डील पर बात लगातार जारी है और अमेरिका को उम्मीद है कि उनकी शर्तों पर ईरान आखिरकार मानेगा, वरना तबाह हो जाएगा।
3: ईरान और अमेरिका के बीच इतनी बारूदी तबाही हुई, लेकिन आखिरकार तबाही के बाद बातचीत का ही आसरा दोनों मुल्कों को है। ये बातचीत कैसे और किससे हो रही है, इसके बारे में अब अमेरिका की ओर से सिर्फ ट्रंप का बयान आ रहा है और अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान उनकी शर्तों को मान रहा है।
5: When you talk about regime change, you know, they keep talking about regime change. Well, we got rid of the first regime, we got rid of the second regime, we got rid of most of the third regime.
3: दरअसल अमेरिका की ओर से मीडिया में जारी चर्चा में आखिरी ब्यौरे के मुताबिक ट्रंप और ईरान के बीच कुछ अनिवार्य शर्तों पर बातचीत हो रही है, जिसमें छह बड़ी शर्तें हैं। पहली कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम सौंपेगा और अगले 20 साल तक कोई एनरिचमेंट नहीं करेगा। ईरान कहेगा कि उसे एटम बम नहीं चाहिए। ईरान अपनी प्रमुख परमाणु सुविधाओं को नष्ट करेगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में निरीक्षण होगा और भूमिगत परमाणु कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा।
5: Basically said they will not have nuclear weapons, they're going to hand us the nuclear dust and many other things that we want.
3: ट्रंप का यह बयान कितना भरोसेमंद है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि ईरान जंग के बाद से पहला ये मौका है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्किन ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से मुलाकात की बात कबूली है और उन्हें बहुत नम्र इंसान बताया है।
6: عزیزم رسیدیم نزدیک 2 ساعت 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
3: फिर भी अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और अमेरिकी ब्लॉकेट का असर ईरान की इकोनॉमी पर तेजी से होने लगा है, उसे देखते हुए ईरान जल्द ही शर्तों को मान लेगा और डील को राजी हो जाएगा।
7: You would call that we're in good shape, right?
8: Fantastic.
7: We're in good shape. And now we're doing well, now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
3: अमेरिका की ओर से ट्रंप की इस डील की बात दुनिया पिछले 8 साल से सुन रही है। एक डील तोड़कर नई डील के चक्कर में ट्रंप ने सैकड़ों टन बारूद फूंक दिए, लेकिन ये डील अभी हॉर्मुज में आकर अटक गई है। पहले हॉर्मुज की हांडी से ट्रंप का गला निकले तो ईरान की डील आगे बढ़े। आज तक ब्यूरो।
0: तो एक तरफ ईरान अमेरिका से डील की टेबल पर बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अंदरूनी मोर्चे पर आवाम की हौसला अफजाई में वो जुटा हुआ है। ईरान के चौक चौराहों पर रोज लोगों का मेला तो उमड़ ही रहा है, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब ईरान की सड़कों पर सैकड़ों कार बाइक के साथ लोग रैलियां निकाल रहे हैं, हाथों में उनके झंडे हैं। ये रैलियां सरकार और सेना के समर्थन में निकाली जा रही हैं। 7 मई ईरान के फार्स प्रांत में ऐसी एक रैली दिखाई थी जो लार इलाके से निकाली गई थी। इस जंग के हालात में ईरान के अंदर और क्या तस्वीरें आ रही हैं, हमारी संवाददाता गीता मोहन जो इस वक्त ईरान में है, वहां के चप्पे चप्पे से आपको रोज हाल बता रही हैं कि वहां क्या हो रहा है। तेहरान के पास चारबाग से गीता मोहन के इस नए ईरानी डिस्पैच में क्या है वो हम आपको दिखाते हैं।
9: 7 अप्रैल को इस विला में एक प्रिसिशन स्ट्राइक हुआ इजरायली मिसाइल से, जिसमें 15 लोग थे इस घर में, यहाँ पे विलास थे, जिनमें से 11 लोग मारे गए, 4 लोग बच गए। ये तेहरान से काफ़ी दूर है, यहाँ पे कोई आपको मिलिट्री हेडक्वार्टर भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन कहा जाता है कि इस ख़ानदान के एक इंडिविजुअल थे जो मिलिट्री में थे। ये भी कहते हैं कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजिशन में नहीं थे, लेकिन 11 लोग जिसमें से सबसे छोटा एक 14 महीने का बच्चा और सबसे बड़े जो थे वो 75 ईयर्स या उससे थोड़े ऊपर रहे होंगे. इमोशनल सीन्स यहाँ पर आपको उस पहले कुछ घंटों में नज़र आए थे, जहाँ पे जो यहाँ के डेप्यूटी मेयर है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स है, जिनसे हमने बात की, आप उनकी उनकी बात भी सुनेंगे. जिस तरीके से उन्होंने बयां किया यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 AM का वक्त था, रात था, अंधेरा था, और यहाँ पे आग, और 11 लोग मारे गए, जिनमें से जिनके बॉडीज है बस 9 बॉडी बैग्स मिल पाए हैं. अभी भी एक इंसान है जो इंचार्ज है यहाँ पे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको उसको निकालने के लिए. अभी जब हम बात ही कर रहे थे तो सत्या के साथ, सत्या उनके साथ गया और देखा कि अभी भी वो बॉडी पार्ट्स निकाल रहे हैं. यहाँ पर ग्राफिक इमेजेस हैं तो ज़रा संभल के सोच के कॉशियसली इस वीडियो को देखिएगा. लेकिन सवाल यही उठता है कि जो ये आपने देखे पोस्टर्स लगे हुए हैं, फोटोज लगे हुए हैं हर तरफ, इनका जनाजा कम्युनिटी, इस पूरे कम्युनिटी ने निकाला, क्यों? क्योंकि पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया है. जो घायल थे वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए. सवाल यही उठता है कि अगर आप आज ये जंग रोक भी थे, तब भी यहाँ के लोग जिनके बच्चे मारे गए हैं, मिनाब के पेरेंट्स, यही पूछेंगे कि क्या ये ज़रूरी था, क्या ये जंग ज़रूरी था, और क्या फिर अमन और शांति और ऐसा माहौल बन सकता है जहाँ पे दोनों देश या तीनों देश, अमेरिका, इज़राइल, ईरान, लड़ाई छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे. क्या इन्हें लोग भूल पाएंगे ईरान के? क्या दुनिया भूल पाएगी इस जंग में कितने लोग मारे गए?
0: और अब एक बड़ी खबर पॉलिटिक्स से जुड़ी आपको बताते हैं. तमिलनाडु की राजनीति को लेकर ये बड़ी खबर है, सूत्रों से आ रही है. एनडीए से बाहर निकलने पर एआईएडीएमके विचार कर रही है. डीएमके के साथ एआईएडीएमके के गठबंधन की खबरें तेज हो गई हैं. टीवीके के सूत्रों की माने तो डीएमके और एआईएडीएमके की खबरों को लेकर टीवीके नाराज नजर आ रही है. यानी एक तरफ आप देखेंगे तो स्टालिन और दूसरे पलानीसामी, टीवीके नाराज नजर आ रही है. विरोध में बड़ी तादाद में इस्तीफा दे सकते हैं टीवीके के विधायक. यह भी बताया जा रहा है कि जो टीवीके की नाराजगी है, अगर डीएमके एआईएडीएमके साथ आते हैं तो टीवीके के विधायक इस्तीफा दे सकते हैं. और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी हुई ये सूत्रों से बड़ी खबर है. टीवीके को समर्थन देने वीसीके लगभग तैयार है. लेफ्ट पार्टियों के फैसले का इंतजार किया जा रहा है वीसीके पार्टी की तरफ से. वहीं लेफ्ट पार्टियों के रुख के बाद ही वीसीके अपना फैसला लेगी. तो टीवीके, अनघा केशव इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी है तमिलनाडु से, सीधे उनसे बात करते हैं. अनघा, इस वक्त तमिलनाडु की पॉलिटिक्स प्योर सिनेमा नजर आ रही है. टीवीके के विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, डीएमके एआईएडीएमके साथ आने की खबरें आ रही हैं. हो क्या रहा है इस वक्त वहां?
8: अभी हम कम्युनिस्ट ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं. कम्युनिस्ट लीडर्स का मीटिंग चल रहा है और हमें ये बताया जा रहा है कि आज इवनिंग कुछ क्लैरिटी आएगा. अगर लेफ्ट लीडर्स और वीसीके विल अलाई विथ विजय, वीसीके का निर्णय कल हमें पता चलेगा, पर आज वीसीके के लीडर्स अभी मीटिंग कर रहे हैं. विल गेट टू नो वीसीके का, लेफ्ट पार्टीज का स्टैंड क्या है. अगर ये सब लेफ्ट पार्टीज और वीसीके ने नहीं सपोर्ट दिया तो फिर डीएमके आउटसाइड सपोर्ट दे सकते हैं एआईएडीएम को, तो फिर यहाँ एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक होगा, क्योंकि एआईएडीएमके और डीएमके पॉलिटिकल एनिमीज है. बहुत सारे डिकेड से ये दोनों पार्टीज ऑपोजिट में है और अभी ये सिचुएशन आ चुका है जो डीएमके और एडीएमके अलायंस कर सकते हैं. तो हम वेट कर रहे हैं कि लेफ्ट पार्टीज
0: का डिसीजन. बहुत सियासी उथल पुथल अभी तमिलनाडु में मचना बाकी है, और अगर टीवीके के सभी विधायक इस्तीफा देते हैं तो वाकई राजनीतिक भूकंप आ सकता है. शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. एक और बड़ी खबर बताते हैं. समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ और स्टालिन के साथ ये फोटो पोस्ट किए जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. एक तस्वीर में ममता बनर्जी हैं, दूसरी तस्वीर में स्टालिन हैं, और कैप्शन में अखिलेश यादव ने लिखा है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें. ममता बनर्जी और स्टालिन दोनों चुनाव हार गए हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने ये पोस्ट करके सॉलिडारिटी दिखाई। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as it can. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
5: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
4: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
8: सोच बदलो और बैंक भी.
9: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रो फाइबर है.
9: माइक्रो फाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
9: हमारे सीमेंट में नहीं है.
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
12: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन.
13: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी.
14: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे.
13: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया.
15: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर.
12: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर.
16: इन एसोसिएशन विद
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
18: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
19: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा. मैच एनालिसिस, मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक. कोई नहीं है दूर दूर तक, मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक.
20: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है. ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे. वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे. कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर, यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक.

बंगाल प्रचंड जीत के बाद कोलकाता पहुंचे अमित शाह। एयरपोर्ट पर शुभेंदु की थपथपाई पीठ, शाम तक सामने आएगा सीएम का चेहरा। थोड़ी देर में विधायकों की मीटिंग, मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे। बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, हावड़ा के शिवपुर में चले बम, धार्मिक नारे लगा रहे थे उपद्रवी। शुभेंदु के पीए के हथियारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। सरकार पर सस्पेंस बरकरार, एनडीए से अलग होने पर विचार करिए। एआईएडीएमके टीवीके को समर्थन देने पर लेफ्ट वीसीके की मीटिंग, ममता स्टालिन की फोटो के साथ अखिलेश का कांग्रेस पर तंज, लिखा हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। बयालीस दिन बाद टीसीएस केस की मुख्य आरोपी निदा खान महाराष्ट्र के संभाजी नगर से गिरफ्तार। पुलिस का दावा, फोन बंद कर बदल रही थी ठिकाने। अरब के आसमान पर फिर बारूदी धुआं, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें। ईरानी बंदरगाहों पर अटैक के बाद हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले, ट्रंप की धमकी, डील नहीं हुई तो तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉयर के सुरक्षित होने का दावा।

0: नई बीजेपी सरकार के गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, प्रदेश अध्यक्ष स्वामी भट्टाचार्य समेत कई नेताओं ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर ही अमित शाह ने थपथपाई शुभेंदु अधिकारी की पीठ, समर्थकों से हाथ मिलाते नजर आए शाह। इसके बाद अमित दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर ट्वीट कर लिखा, पार्स ने विश्वास और समर्थन के लिए बंगालवासियों को नमन करता हूं। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विधायक दल के नेता और नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया जा सकता है। कल होगा बंगाल में भव्य शपथ समारोह, कोलकाता के मैदान में नई सरकार लेगी शपथ। हावड़ा में बमबाजी, दो बीजेपी कार्यकर्ता घायल, शिवपुर के चौरा बस्ती इलाके में हमले के बाद भारी तनाव। हावड़ा में हुए बवाल का नया वीडियो आया सामने, धार्मिक नारे लगाते दिखे उपद्रवी, आरोप है कि इस दौरान ईंट पत्थर फेंक गए और बमबाजी की गई। वीडियो में हमलावर अल्लाहू अकबर और नारे तकबीर का नारा लगाते दिखाई दिए, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। शिवपुर थाने का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, घटना के विरोध में प्रदर्शन, मौके पर QRT और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात। चुनाव के बाद हुई हिंसा के चलते आसनसोल के कुल्टी और नियामतपुर में पुलिस की चेकिंग तेज, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई, बाइक सवारों पर विशेष नजर। पी हत्याकांड में कोलकाता पुलिस को एक और सफलता, हत्या में इस्तेमाल होने वाला दूसरी बाइक बरामद, फोरेंसिक जांच कराएगी पुलिस की टीम। शुभेंदु के पीए का हत्या पर सियासी संग्राम, चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में तेज हुई जांच, तीन लोग हिरासत में। हमलावरों की बाइक बरामद, पुलिस को हत्या में इस्तेमाल बाइक मिली, कई एंगल से जांच की जा रही है। ड्राइवर की हालत अब भी गंभीर, चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर की कई सर्जरी, अस्पताल में है इलाज जारी। शुभेंदु बोले, पहले से रची गई थी साजिश, हत्या के पहले कई दिन तक रेकी किए जाने का दावा। तमिलनाडु में बड़े फेरबदल की संभावना, सूत्र के मुताबिक AIADMK NDA से बाहर निकलने पर विचार कर रही है। राज्यपाल से विजय की दूसरी मुलाकात बेनतीजा, 118 विधायकों का समर्थन साबित करने के लिए कहा गया। बहुमत से अभी भी दूर है TVK कांग्रेस गठबंधन, गठबंधन के पास 112 विधायक, बहुमत के लिए 118 चाहिए। तमिलनाडु में शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, CVK ने अपने विधायकों को मामल्लापुरम में लग्जरी रिजॉर्ट पे भेजा। AIADMK ने भी विधायकों को किया शिफ्ट, TVK की जोड़तोड़ की कोशिश के बीच MLAs को पुडुचेरी भेजा गया। अखिलेश यादव ने तमिलनाडु के कार्यवाहक CM MK स्टालिन और ममता बनर्जी के साथ तस्वीरें शेयर की, लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी राज्यपाल का इस्तेमाल करके समय और विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया, डीप फेक वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। अदालत ने सभी पक्षों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामले की अंतरिम राहत की मांग पर आदेश जारी करेगा। पंजाब में ईडी रेड को लेकर सियासी घमासान तेज, मनीष सिसोदिया ने कहा बीजेपी को ज्यादा चंदा देने के लिए ईडी ने आपके एक मंत्री का नाम जोड़ा। ट्रंप ने ईरानी हमलावरों को बड़े नुकसान का किया दावा, कहा हमले की चपेट में आए तीनों अमेरिकी युद्धपोत बिना नुकसान और मुंह से निकलने में रहे कामयाब। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर युद्ध विराम उल्लंघन के लगाया आरोप, ईरान की सरकारी मीडिया ने अमेरिका पर पलटवार कर वीडियो जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वार पलटवार के दावों के बावजूद ईरान के साथ समझौता कोशिश जारी रखने की बात कही। पश्चिम एशिया में फिर से जंग भड़की, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से UAE को निशाना बनाया। UAE की वायु रक्षा प्रणाली ने कई जगहों पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को नाकाम किया। इसराइल प्रधानमंत्री का आतंकियों को किसी भी तरह की इम्यूनिटी से इनकार, हिजबुल्ला कमांडर को हमले में ढेर करने के बाद बयान। गुरुवार को गाजा पर इसराइली हमले में कम से कम 3 लोग की मौत, इसराइल का हमास के गार्ड पोस्ट को निशाना बनाने का दावा। ट्रंप ने EU के लिए 4 जुलाई तक ट्रेड डील फाइनल करने की तय की समय सीमा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समय सीमा में डील नहीं होने पर टैरिफ बढ़ाने की कही बात। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात, लूला ने कहा क्यूबा पर हमले पर विचार के ट्रंप ने नहीं दिए संकेत। WHO ने हांटा वायरस से बड़ी महामारी फैलने की आशंका को किया खारिज, WHO ने हांटा वायरस संक्रमण की अर्जेंटीना में 2018-19 के हालात से तुलना की। ब्लास्ट वाले बयान पर बीजेपी का भगवान मान को कानूनी नोटिस, 7 दिन में माफी मांगने या बयान वापस लेने की मांग। बीजेपी बोली मान फैला रहे झूठ, बयान वापस नहीं लेने पर आपराधिक और सिविल कार्रवाई की चेतावनी। पंजाब ब्लास्ट पर सियासत तेज, मान ने कहा था बीजेपी चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाती है। बीजेपी ने DGP से FIR दर्ज करने की मांग की, तरुण चुग बोले मुख्यमंत्री का बयान बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना। पौड़ी के महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय के ओपन जिम में सीएम योगी और सीएम धामी एक साथ जिम करते नजर आए। डीआरडीओ और आईएफ के उड़ीसा तट के पास विदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल परीक्षण, बिना ग्लाइड वाले बमों को सटीक निर्देशित हथियारों में बदलने में सक्षम। विदेश मंत्री अजय शंकर ने कोविड 19 महामारी के दौर को याद करते हुए बिना नाम लिए एक विकसित देश पर निशाना साधा, बोले जनसंख्या से 8 गुना ज्यादा वैक्सीन जमा कर ली थी। सुरीनाम में अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा भारत एक ऐसा देश था जिसने कोविड का सामना आगे बढ़कर किया। पीएम मोदी के 10 और 11 मई को संभावित जामनगर दौरे को लेकर शहर में जोर शोर से तैयारियां शुरू। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले बीजेपी सांसद डीके अरुणा का बड़ा बयान, कहा आने वाले चुनाव में तेलंगाना में भगवा झंडा लहराएगा। 15 जून को लखनऊ से नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट, 1 घंटे में पूरा होगा सफर। देश के बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित होगा नोएडा एयरपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, द्वारका में 6 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज, हर साल एमबीएस की 250 सीटें होंगी उपलब्ध। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, देश में कुल अपराध घटे लेकिन साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 1 लाख से ज्यादा साइबर केस दर्ज हुए जिसमें सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड के मामले हैं। श्रीनगर में देखने को मिल रही है फूलों की बहार, बागवानी विभाग ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पौध बांटने की शुरू की है मुहिम। पाकिस्तान आईएसआई के शहजाद भट्टी मॉड्यूल के पकड़े गए गुर्गों ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा, दिल्ली का एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर था आईएसआई के निशाने पर। पाकिस्तानी आईएसआई के इस मॉड्यूल से जुड़े एक आरोपी ने इस मंदिर की रेखी की थी, इस मंदिर के फोटो पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स को भेजे गए थे। मंदिर पर मौजूद पुलिसकर्मियों और सैनिक बलों पर गोली चलाकर मंदिर को निशाना बनाना टारगेट में शामिल था। इस साल मौजूद एक सैन्य कैंप भी पाकिस्तान आईएसआई के निशाने पर था जिसकी रेखी का वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजा गया था। नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी नेता खान को पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर से किया गिरफ्तार। मंत्रिमंडल विस्तार के अगले दिन पटना में 10,000 से ज्यादा छात्र सड़क पर, बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे छात्र, पोस्टर और झंडे के साथ जमकर नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ माउंट रोड पर विरोध प्रदर्शन किया, जानबूझकर सरकार गठन में देरी का आरोप लगाया। हरियाणा के सीएम नायर सिंह सैनी का सीएम मान पर पलटवार, का अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। आज तक की खबर का असर, कलेक्टर ने लिया एक्शन, अंबिकापुर में सरकारी योजना से बनी सड़क चंद घंटों में उखड़ी, गुणवत्ता के साथ बनाने के दिए निर्देश। टीसीएस धर्मांतरण मामले में नेता खान की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना नेता संजय शिरसाट का आरोप, का एआईएमएम और उसके नेता इम्तियाज जलील पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। मथुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव को मारी गई गोली, अस्पताल में इलाज जारी। छपरा में दुर्घटना का शिकार हुई कलाकारों से भरी पिकअप वैन, 3 की मौत कई घायल। हमीरपुर में दंगों ने बारात रोककर बेरहमी से की मारपीट, कार ने खींचकर दूल्हे का सिर फोड़कर किया लहूलुहान। कोटा में वरमाला के बाद दुल्हन परिवार समेत फरार, दूल्हा पक्ष बोला 4 लाख लेकर गायब हुए। पीलीभीत में शराब की दुकान खुलवाने गई आबकारी टीम पर महिलाओं का हमला, हमलावर महिलाओं ने पुलिस और अधिकारियों को खदेड़ा। गांव बना छावनी, अब भी आबकारी विभाग की 2 गाड़ियों पर गांव वालों का पंजाब, 4515 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, आरोपियों में ज्यादातर संख्या महिलाओं की। द्वारका के समुद्री तट पर एक बार फिर बरामद हुई चरस, हर्षद दरिया तट से कई किलो अवैध चरस की तस्वीरें आई सामने। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाहर छेड़छाड़ मामले में तीर्थयात्रियों पर हमला, कुछ अज्ञात युवकों ने महिला तीर्थयात्रियों के साथ छेड़छाड़ की। गाजियाबाद की फैक्ट्री में टेस्टिंग के दौरान दर्दनाक हादसा, 2 मजदूरों की मौत, 1 की हालत गंभीर। गोंडा में पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के बहाने ठगी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से सोना चांदी और कैश बरामद। आगरा में आयकर विभाग में एक रिकवरी इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या, इनकम टैक्स ऑफिस की 7वीं मंजिल से कूदकर इंस्पेक्टर ने दी जान। राजनांदगांव में पद्मश्री फूल बासन यादव अपहरण मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 2 महिलाएं 3 पुरुष शामिल। पुणे के एमआईडीसी इलाके में तेंदुए की एंट्री से मचार कम, तेंदुआ खुलेआम घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। मेरठ में खेत से तेंदुए का रेस्क्यू, घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ा तेंदुआ। ओडिशा के बालासोर में युवक को पीटते दिखी भीड़, युवक पर महिला से दुर्व्यवहार करने का आरोप। एसीबी ने विद्युत विभाग के लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार, 25,000 की मांगी गई थी रिश्वत। अररिया में एक तरफा प्यार में युवक ने 17 साल की लड़की को मारी गोली, मौके पर युवती की गई जान। अलीगढ़ पुलिस ने डकैती की योजना बनाने गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 एमयू छात्रों सहित 12 गिरफ्तार, 6 अवैध हथियार बरामद। सहारनपुर में खूंखार कुत्तों का कहर, 110 भेड़ों को नोचा, पशुपालक को हुआ भारी नुकसान। दक्षिण मुंबई के पायुधनी में वायु धुनी में तरबूज खाने से एक ही परिवार के चार की मौत में बड़ा खुलासा। चारों मृतकों के शरीर से चूहे मारने वाली दवा में इस्तेमाल होने वाले रसायन मिला। तरबूज के सैंपल में जिंक फॉस्फाइड की मौजूदगी की पुष्टि। फोरेंसिक डॉक्टर से परामर्श लेकर मामले की जांच आगे जारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई को देखते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। जब्त हथियारों की बाजार की कीमत 43,48,000 रुपए। पुलिस का अनुमान, हथियारों का जखीरा कोलंबिया, चीन, यूएई, अमेरिका और अन्य देशों से लाया गया। मणिपुर में भारत में आमार सीमा पर हिंसा बढ़ी। गांव पर हमले, उपद्रवियों ने घरों में लगाई आग, 6 लोग घायल। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर इंडियन आर्मी ने चुशूल में 15,000 फीट की ऊंचाई पर एथलेटिक्स से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। छात्रों और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। इस पहले युवाओं को शारीरिक फिटनेस और सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने दिखाया अपना हुनर। राजधानी कोटा में युवा कराटे खिलाड़ी अनुराग ने एक बार फिर शहर का नाम किया रोशन। भोपाल में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे टूर्नामेंट में जीता सिल्वर। ओडिशा के कटक में देश की पहली सुपर फ्लेक्स वेल्ड मेश लाइन का शुभारंभ। आधुनिक निर्माण तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। गुजरात के जामनगर में निकली अनोखी बारात। घोड़े की जगह दूल्हे ने की हाथी की सवारी। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमाघर में कॉमेडियन कपिल शर्मा और नीतू कपूर की फिल्म दादी की शादी ने दी दस्तक। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म में एक्टर नहीं हूं बड़े पर्दे पर रिलीज। रिटायर्ड कश्मीरी बैंकर की कहानी है ये फिल्म। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 के दीवानों के लिए खुशखबरी। को प्रोड्यूसर ज्योति देश पांडे ने दिए संकेत। साल के अंत में आ सकती धुरंधर फ्रेंचाइजी की एक और फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला का जलवा बरकरार। 150 करोड़ रुपए का फिल्म ने किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। रितेश देशमुख की लेटेस्ट मराठी फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर कर रही अच्छी कमाई। सातवें दिन मूवी ने 4 करोड़ का कारोबार किया। आज दिल्ली हाई वोल्टेज आई फिल्म मुकाबला देखेगी अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर आमने सामने। दोनों टीमें पॉइंट टेबल में संघर्ष कर रही हैं। डीसी नंबर 7 और केकेआर नंबर 8 पर हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ फॉर्म जारी। 8 मैचेस में सिर्फ 2 में जीत। टीम पर दबाव बढ़ा। केकेआर जीत के लक्ष्य के साथ मैदान उतरेगी। पिछले मैच में शानदार जीत के बाद टीम आत्मविश्वास से भर गई है। पिच और टॉस बना सकते हैं मैच का अहम फैसला। अरुण जेटली स्टेडियम में चेस करने वाली टीम्स का रिकॉर्ड बेहतर रहा है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: और अब खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आज नए सीएम को लेकर सस्पेंस साफ हो जाएगा। इससे पहले बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने एक बड़ा बयान दिया है। महतो ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार एक हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लंबे समय से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति यहां चल रही थी। टीएमसी सरकार ने बंगाल की स्थिति को पाकिस्तान जैसा बना दिया था। बंगाल की जनता को इससे मुक्ति मिलेगी। अगले 24 घंटे में बंगाल में एक नए सूर्योदय की शुरुआत होगी।
3: देखिए, मैं तो बोलूंगा कि पश्चिम बंगाल में पिछले जो आजादी के बाद 47 साल के बाद पहली बार कोई हिंदू हृदय सम्राट बनने वाला है सीएम। इतना दिन तक था धर्मनिरपेक्ष के आड़ में मुस्लिम तुष्टिकरण करते गया है और बंगाल को पाकिस्तान का जो हाल है ऐसे बना दिया गया था और उससे मुक्ति मिलेगा बंगाल के जनता को। और इसका अपेक्षा लगभग 24 घंटा और बाकी है। 24 घंटा के बाद नया सवेरा होगा और नया सूर्योदय होगा।
4: इसमें बंगाल विकास के पथ पर जाने वाला है कल। और बंगाल की जनता का जो सपना था, इतने सालों का तपस्या था, वो पूरा होने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी सरकार के नेतृत्व में।
5: देखिए, अगर कोई जबरदस्ती रहना चाहते हैं, वो उन्होंने कहा था मैं चेयर नहीं छोड़ूंगी, तो जो संविधान में लिखा हुआ है उसी हिसाब से उनका जो समय था वो कल खत्म हो गया, तो खारिज हो गई है सरकार। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है, आज भी अगर ममता बनर्जी के आप सोशल मीडिया अकाउंट में जाओ, आज भी उन्होंने लिख के रखा है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ये कौन सी ऑनर है? ये ऑनर नहीं है, डिसऑनरेबल होगा। ये शर्मनाक बात है। अब तो मतलब उनको थोड़ा सा आत्मसम्मान रख के, थोड़ा सा अपने आप को सम्मानित करके छोड़ देना चाहिए था। अभी भी उनको लगता है कि वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, तो मतलब क्या बोलेंगे, हंसी भी आ रही है, शर्म की भी बात है।
0: इस बीच बड़ी खबर कोलकाता से, जहां का ब्रिगेड परेड मैदान नई सरकार की शपथ ग्रहण के लिए तैयार है। वहां पर इस वक्त भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कल सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने की उम्मीद है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसमें शिरकत करने वाले हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यह कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शिरकत कर सकते हैं। कल सुबह 10 बजे से शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, लेकिन अभी नाम पर सस्पेंस बाकी है। कौन होगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, ये तस्वीर आज शाम तक साफ हो जाएगी। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं ब्रिगेड मैदान में?
6: देखिए, एसपीजी के अंतर्गत पूरा आ गया है ब्रिगेड परेड ग्राउंड, आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां सुबह 10 बजे के बाद कार्यक्रम शुरू होगा और शपथ ग्रहण होगी। इसमें बहुत सारे लोगों को बुलावा दिया जा रहा है, खास तौर पर जो बीजेपी के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सेलिब्रिटीज जो हैं, गणमान्य व्यक्ति जो हैं, उनकी भी एक सूची बनाई गई है। तो एक लंबी तालिका तैयार की जा रही है, फाइनल मोहर लगनी, अभी चर्चा हो रही है, फाइनल लगभग तय हो चुका है, बस फाइनल मोहर लगनी बाकी है, क्योंकि आज से ही शाम तक सबको निमंत्रण पत्र भी भेजा जाना कंप्लीट करना है। तो ऐसे में उस पर लगभग फाइनल हो गया है, तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कल सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शपथ ग्रहण का शुरू हो जाएगा ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, और उसके लिए जो प्रिपरेटरी मीटिंग होती है वो भी इस वक्त नोवोटेल में, मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे पीछे जो नोवोटेल है, वहां पर वो मीटिंग चल रही है। अमित शाह गृहमंत्री वहां पर मौजूद हैं, साथ में अभी अभी सुनील बंसल भी भीतर गए हैं। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी, श्रमिक भट्टाचार्य, ये दोनों तो भीतर हैं ही, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरे जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल हैं। जो अंतिम रूपरेखा है उसको एकदम मुहर लगाने की जो बात होती है वो यहां पर हो रही है, और इसके बाद ही लगभग 2:30-3 बजे से यहां से सभी लोग निकल जाएंगे विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर, जो यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहां पर विधायक दल की बैठक होगी।
0: हमारे साथ अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, टिकते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: Like I said before, we better own the sins.
6: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
7: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
6: आप कैसे कर लेते हो?
8: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
9: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो
10: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
11: नहीं
9: और म्यूचुअल फंड्स है
11: सही।
12: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
17: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते।
18: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
19: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
20: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
21: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
22: सोच बदलो और बैंक भी।
23: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
24: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
25: इसमें माइक्रो फाइबर है।
24: माइक्रो फाइबर यानी?
25: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
24: हमारे सीमेंट में नहीं है?
25: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
26: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: विमल, बोलो जुबा केसरी।
4: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
7: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: Like I said before, we better hold the sins.
8: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
9: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रोफाइबर है।
9: माइक्रोफाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
9: हमारे सीमेंट में नहीं है,
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
12: ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में है नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में या तो चुनाव कमीशन के हाथ में, और पुलिस का, पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था, पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे उनको रोकना चाहिए।
13: इस बार पावर से जाने के बाद उनका गुस्सा, उनका प्रतिहिंसा, उनका फ्रस्ट्रेशन, यही सब बाहर आ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि उन्होंने जिनको टारगेट किया एकदम नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि चंद्रो का यही उसका दोष था कि भवानीपुर के चुनाव में बहुत वो काम किया था शुभेंदु दा के लिए और भवानीपुर से ममता बनर्जी हारी। इसी गुस्से में क्या ऐसा हुआ है? सूत्रों से हम लोग पता चलता है कि बहुत ठंडे दिमाग से ये प्लान किया हुआ मर्डर है।
14: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बीच शाम तक सामने आएगा सीएम का चेहरा। थोड़ी देर में विधायकों की मीटिंग, मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु सबसे आगे। बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, हावड़ा के शिवपुर में चले बम, धार्मिक नारे लगा रहे थे उपद्रवी। शुभेंदु के पीए के हथियारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस बरकरार, एनडीए से अलग होने पर विचार कर रही है एआईएडीएमके। टीवीके को समर्थन देने पर लेफ्ट वीसीके की मीटिंग, ममता स्टालिन की फोटो के साथ अखिलेश का कांग्रेस पर तंज, लिखा हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। बयालीस दिन बाद टीसीएस केस की मुख्य आरोपी निदा खान महाराष्ट्र के संभाजी नगर से गिरफ्तार, पुलिस का दावा फोन बंद कर बदल रही थी ठिकाने। आक्रामक शिवसेना ने कहा निदा को बचा रही हो वैसी की पार्टी।

0: ट्रंप की धमकी, डील नहीं हुई तो तबाह कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा मातम। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मंत्रिमंडल विस्तार के अगले दिन ही पटना में 10,000 छात्र सड़क पर उतरे। बीपीएससी TRE4 के विज्ञापन जारी करने की मांग पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की संख्या 10,000 के करीब है। पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ छात्र बढ़ रहे हैं। छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में ये छात्रों का जुलूस निकाला जा रहा है। लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा है स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए, क्योंकि 10,000 से ज्यादा छात्र हैं, इसलिए संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल का प्रयोग कर रही है। पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों का ये लंबा मार्च। पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ ये छात्र बढ़ रहे हैं। कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं, लेकिन वो सड़क पर से हटने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वहां पर कैसे अब स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि छात्रों की संख्या ज्यादा है और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। बीपीएससी TRE4 का विज्ञापन जारी करने को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: पटना में TRE4 के अभ्यर्थियों और पुलिस आमने सामने हो चुके हैं। पटना के JP गोलंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से पटना में पुलिस और आप देखिए किस तरीके से जो TRE4 के अभ्यर्थी है वो आमने सामने हो चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, बैरिकेटिंग को हवा में उठा दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ रही है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को उठा दिया गया है, बैरिकेटिंग को लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और बच्चे जो है वो देखिए बोतल उन्होंने उधर से फेंकना शुरू किया है, एक बोतल जो है वो फेंकी गई है। और ये तस्वीर देखिए बोतल चलाने लगे हैं। ये तस्वीर देखिए अभ्यर्थियों ने बोतल चला करके पुलिस की तरफ फेंकना शुरू किया है और लाठीचार्ज शुरू हो गई है। ये तस्वीर देखिए बैरिकेडिंग तोड़ने वालों को जो है ये देखिए कि लाठियों से जो उनके हाथ पर प्रहार किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए ताकि बैरिकेडिंग न टूटे और बोतल जो है वो फेंक करके ये देखिए तस्वीर देखिए बॉटल्स फेंके जा रहे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से। यहाँ पर तस्वीर देखिए पुलिस के लिए बेहद ही चुनौती जो है वो शुरू हो गया है। और देखिए अभ्यर्थी जो है वो बॉटल चला करके बच गए और लाठीचार्ज हो गई है। ये तस्वीर देखिए लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए लाठीचार्ज करके खदेड़ गया है। ये तस्वीर देखिए लाठीचार्ज कर दी गई है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है। और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से देखिए लाठीचार्ज की जा रही है। ये तस्वीर देखिए और तबा तो लाठी चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए खूब लाठी चलाई, देखिए लाठी चलाई जा रही है। ये देखिए लाठी चार्ज कर दिया गया है, जबरदस्त लाठी चलाई जा रही है। ये देखिए किस तरीके से लाठियों से प्रहार किया जा रहा है और इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी हैं। और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है। और ये देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिर रहे हैं। और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है, पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है। ये तस्वीर देखिए देखिए किस तरीके से छात्र न सिर्फ छात्र छात्राओं को भी खदेड़ा गया है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चार्ज जो है वो किया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर देखिए जबरदस्त लाठी जो है वो पुलिस की तरफ से छात्रों के ऊपर चलाई गई है और छात्रों को जबरदस्त पीटा गया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।
0: अनिकेत की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे प्रदर्शन स्थल वाली जगह से। दरअसल यहाँ पर इस कदर लाठीचार्ज किया गया है कि इस वक्त स्थिति अनियंत्रित होती हुई दिखाई दे रही है। रोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे पटना से। रोहित, इस स्थिति को किस तरीके से समझें, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर एक लंबी दूरी के लिए छात्र जमा हो रहे थे या फिर प्रदर्शन कर रहे थे, उस तरह की तैयारी पुलिस बल की थी भी या नहीं?
2: देखिए, पहले बता दूं कि पिछले तकरीबन 7 महीने 8 महीने से जो है TRE4 की परीक्षा को नोटिफिकेशन के लिए ये छात्र जो है वो मांग कर रहे हैं, यानी चुनाव से पहले से ही मांग कर रहे हैं, लेकिन 6-8 महीने का वक्त बीत चुका है चुनाव होने के बाद भी। और इसके बाद आज तकरीबन हजारों की संख्या में पटना के भिकना पहाड़ी और यूनिवर्सिटी इलाके में छात्र जुटना शुरू हुए थे और आंदोलन का जो है आज इन लोगों ने कॉल भी दिया हुआ था। और फिर जब थोड़ी देर पहले जब ये लोग पूरा मार्च करते हुए पटना के जेपी गोलंबर तक पहुंचे, तो उसके बाद स्थिति जो है अनियंत्रित हो गई, क्योंकि हजारों की संख्या में ये छात्र हैं और पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग लगाई हुई थी और उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़कर जो है ये सभी जो अभ्यर्थी हैं ये आगे जाना चाह रहे थे और उसी दौरान पुलिस को 2 राउंड जो है लाठीचार्ज करना पड़ा है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से पुलिस की भारी संख्या में जो है यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हेलमेट और सब कुछ पहन कर तैयारी है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरीके से कहें तो रण क्षेत्र में ये इलाका जो है थोड़ी देर पहले तब्दील हो गया था। और पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र जो है यहाँ डटे हुए हैं। और क्योंकि अभी 1:30 बजे का वक्त है, स्कूल्स की भी छुट्टियां हुई हैं, चारों तरफ जो है वो जाम की स्थिति हो गई है और कोई भी रोड इस तरफ जो है जेपी गोलंबर के पास सब तरफ जो है जाम लगा हुआ है और छात्र लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं?
3: हम टीआरई शिक्षा का बहाली के लिए हम लोग कर रहे हैं, TRE4 का जल्द से जल्द आवेदन आवे। ठीक, हम लोग लगातार 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि 5 दिन में आता है, 10 दिन में नोटिफिकेशन आता है, फिर भी नहीं आता नोटिफिकेशन। अब तो PT और मेंस भी लगा दिया, ये कोई बात हुआ? 7 एग्जाम देने के बाद भी हम लोग टीचर बनने के लिए आ रहे हैं, फिर भी अब TRE4 में PT और मेंस लगा दिए हैं।
4: सबसे बड़ी संस्थान होती है, जो सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो होती है UPSC। वो 3 एग्जाम लेती है, एक PT और एक मेंस, एक और इंटरव्यू, उसके बेस पे उसका सिलेक्शन होता है। मैं जितना भी BPSC का पदाधिकारी है मैं उसको चैलेंज करता हूँ, वो हम लोग सीटेट पास सभी कैंडिडेट है। मैं उसे
2: नोटिफिकेशन चाह रहे हैं।
4: जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन और मेंस को कैंसिल
2: नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर डटे हुए हैं। और पुलिस का बंदोबस्त भी आप देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती है और वाटर कैनन को भी यहाँ बुला लिया गया है। देखते हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां भी जो है यहाँ बुला ली गई है, यानी कि स्थिति और ज्यादा अनियंत्रित अगर होती है तो फिर ये पानी के फव्वारे भी चलाए जाएंगे। तो पुलिस का यहाँ पर आप देखिए
0: आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। रोहित, इस बीच अनिकेत वहां पर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए, उन्होंने बताया कि कैसे दरअसल ये लाठीचार्ज शुरू हुआ और अब तक जारी है, जैसा कि रोहित भी बता रहे हैं।
1: पटना में TRE4 के अभ्यर्थी और पुलिस आमने सामने हो चुके हैं। पटना के जेपी गोलंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से पटना में पुलिस और आप देखिए किस तरीके से जो TRE4 के अभ्यर्थी है वो आमने सामने हो चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, बैरिकेटिंग को हवा में उठा दिया गया है, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ रही है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को उठा दिया गया है, बैरिकेटिंग को लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और बच्चे जो है वो देखिए बोतल उन्होंने उधर से फेंकना शुरू किया है, एक बोतल जो है वो फेंकी गई है। और ये तस्वीर देखिए बोतल चलाने लगे हैं, ये तस्वीर देखिए अभ्यर्थियों ने बोतल चला करके पुलिस की तरफ फेंकना शुरू किया है और लाठीचार्ज शुरू हो गई है। ये तस्वीर देखिए, देखिए बैरिकेडिंग तोड़ने वालों को जो है ये देखिए कि लाठियों से जो उनके हाथ पर प्रहार किया जा रहा है, ये तस्वीर देखिए, ताकि बैरिकेडिंग न टूटे और बोतल जो है वो फेंक करके ये देखिए तस्वीर देखिए बॉटल्स फेंके जा रहे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से। यहाँ पर तस्वीर देखिए पुलिस के लिए बेहद ही चुनौती जो है वो शुरू हो गया है। और देखिए अभ्यर्थी जो है वो बॉटल चला करके बच गए और लाठीचार्ज हो गई है। ये तस्वीर देखिए लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया है, ये तस्वीर देखिए लाठीचार्ज कर दी गई है। ये तस्वीर देखिए इस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है। और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से देखिए लाठीचार्ज की जा रही है। ये तस्वीर देखिए और तबाहतोड़ लाठी चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए खूब लाठी चलाई है, देखिए लाठी चलाई जा रही है। ये देखिए लाठी चार्ज कर दिया गया है, जबरदस्त लाठी चलाई जा रही है। ये देखिए किस तरीके से लाठियों से प्रहार किया जा रहा है और इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी हैं। और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं। और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है। ये तस्वीर देखिए देखिए किस तरीके से छात्र न सिर्फ छात्राओं को भी खदेड़ा गया है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चार्ज जो है वो किया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहाँ पर देखिए जबरदस्त लाठी जो है वो पुलिस की तरफ से छात्रों के ऊपर चलाई गई है और छात्रों को जबरदस्त पीटा गया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।
0: तस्वीरें आपने देखी कैसे अब माहौल वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि स्थिति अनियंत्रित होती हुई दिख रही है। इन महिलाओं और पुरुष जो कि छात्र बताए जा रहे हैं, ये टीआरई 4 नोटिफिकेशन की मांग को लेकर धरने और प्रदर्शन पर बैठे थे। तीन तस्वीरें आपके सामने। और दरअसल ये प्रदर्शन काफी लंबा चलने वाला था क्योंकि 10,000 से ज्यादा संख्या इनकी और ये पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे तक मार्च करने वाले थे, लेकिन पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी, इन्हें रोकने के लिए लाठियां भागनी पड़ी, इन्हें एक पॉइंट से आगे जाने से रोकने के लिए। पोस्टर बैनर के साथ ये छात्र मौजूद हैं। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, देखिए ये छात्र तो नहीं हटने वाले वहां से, वहीं धरने पर बैठ गए हैं, वहां से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है?
2: नहीं, देखिए बहुत बड़ी चुनौती जो है इस वक्त पुलिस प्रशासन सरकार के सामने है, क्योंकि कल ही देखिए पूर्ण एक तरीके से कहते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सरकार का पूर्ण गठन हुआ है और अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर इतनी कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण स्थिति जो है वो सरकार के लिए वहां पैदा हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में ये छात्र उग्र होकर टीआरई 4 एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि डेट की घोषणा होनी चाहिए कि आखिर परीक्षा होगी तो कब होगी, और उसी को लेकर आज सुबह से ही जो है ये पूरे बिहार भर से ये अभ्यर्थी पटना में उनका जुटान शुरू हुआ था और लगातार ये पटना यूनिवर्सिटी इलाके से जो है चलते हुए वो जेपी गोलंबर तक आ रहे थे और जेपी गोलंबर पे ही दरअसल हर बार जो है बैरिकेडिंग लगा के ऐसे उग्र प्रदर्शन को रोका जाता है। लेकिन आज यहाँ पर एक बार फिर से ये छात्र इतने उग्र हो गए कि बैरिकेडिंग जो है वो तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान पुलिस को जो है दो राउंड एक लाठी चार्ज करना पड़ा है। चाहे वो लड़के हो, लड़कियां हो, अभ्यर्थी तमाम लोगों पे जो है जमकर लाठियां चटकाई गई हैं। और यहां देखिए प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यहां देखिए प्रशासन की तरफ से लगातार यहां अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि वो यहां से हट जाए वरना कार्रवाई की जाएगी। देखिए प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि आप अपना डेलीगेशन अगर आपके पास है तो उसको बुलाइए, हम लेके आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगे, आपको ले चलेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन कोशिश कर रहा है कि अराजकता की स्थिति को जो है वो समाप्त किया जाए। और
0: एक बार ये लाउडस्पीकर से जो अनाउंसमेंट हो रहा है ये भी सुन लेते हैं, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं एक बार सुन लेते हैं।
2: सर, आप लोग की तरफ से क्या निर्देश दिए जा रहे थे?
5: हम लोग ने इनसे बोला है, प्रतिनिधि मंडल बना के आए हैं लोग।
2: और क्या लगता है कार्रवाई होगी कि लोग हटेंगे नहीं तो फिर?
5: वो तो अभी बात की बात है, अभी बात है।
2: अरे स्थिति क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है?
5: अभी नहीं बात कर रहे हैं।
2: देख सकते हैं प्रशासन जो है वो लगातार कह रहा है कि इनको अभ्यर्थियों को हटने की ये कल के लिए यहाँ से कहा जा रहा है, लेकिन ये अभ्यर्थी जो है ये यहाँ पर उग्र अभ्यर्थी डटे हुए हैं। पुरुष महिलाएं यहाँ सब है, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में भरी दोपहरी में ये लोग जो है उग्र आंदोलन कर रहे हैं, परीक्षा की मांग कर रहे हैं और हाथों में तख्तियां हैं, झंडा लेके ये लोग सवाए हुए हैं, लेकिन इन्हें आगे नहीं दिया जाने दिया जा रहा है। प्रशासन इन्हें यहाँ रोक के रखा हुआ है और स्थिति जो है पूरी तरीके से कहें यहाँ पे देखिए एक राउंड इधर देखिए इस तरफ भी जो है कुछ यहाँ पे लाठियां इधर भी इस तरफ भी भांजी जा रही है। यहाँ से भी देखिए जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी यहाँ के भी जो छात्र इकट्ठा हो रहे थे चारों तरफ, इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ देखिए यहाँ भी जो है सबको कहा जा रहा है कि इस इलाके को खाली करें, लेकिन ये छात्र जो है ये हटने को तैयार नहीं है। हजारों की संख्या में जो है इनकी भीड़ यहाँ पर जो है जुटी हुई है और स्थिति जो है लगभग अनियंत्रित यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से प्रशासन सबको कह रहा है यहाँ से हटने के लिए, देखिए किस तरीके से यहाँ पे पुलिस लोग के लोग जो
0: किसकी अगुवाई में ये सब किया जा रहा है, किसने जुटाए इतने सारे छात्र, कैसे इनको मैसेज भेजा गया, क्या कुछ किया गया कि सब एक जगह एकजुट हो जाएं आज के दिन।
2: देखिए दिलीप कुमार जो एक छात्र नेता है, अक्सर अमूमन देखते हैं उन्हीं के नेतृत्व में इस तरीके का आंदोलन होता है। और डीएसपी साहब है साकेत कुमार जी हमारे साथ। साकेत जी किस तरीके आप लोग के शांति क्या कर रहे हैं? तो देख सकते हैं प्रशासन अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पहली प्राथमिकता जो है वो है भीड़ खाली कराना, लेकिन अभी भी ये छात्र देखिए किस तरीके से फिलहाल गांधी मैदान के इस पूरे इलाके में जो है वो डटे हुए हैं और वाटर कैनन लेकर भी जो है यहाँ पर प्रशासन तैयार है कि अगर स्थिति और ज्यादा अनियंत्रित होती है, अगर ये अभ्यर्थी यहाँ से हटने को तैयार नहीं होते हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी इन पर किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल राजधानी पटना में इस वक्त बड़ा बवाल जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा जो है देखा जा रहा है, जहां पुलिस और अभ्यर्थी जो है आपस में भिड़े हुए हैं। नेहा
0: और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि रोहित वहां पर बड़ी संख्या में जो छात्र इकट्ठा हुए हैं, दरअसल उन्हें मैसेजेस भेजे गए होंगे कि आज के दिन वो तय समय पर यहां जुटे और बड़ी संख्या में अपना विरोध दर्ज करें। ये TRE4 क्या ये लंबे समय से मांग थी इनकी और अनसुनी कर दी गई, उसके बाद इनका ये गुस्सा दिख रहा है?
6: चलिए चलिए मैडम चलिए।
2: देखिए नेहा जाहिर सी बात है बिहार में परीक्षाएं अमूमन जो है वो देर से ही हुआ करती हैं, सही शेड्यूल पर जो है नहीं हो पाती हैं, तो TRE4 यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, टीचर शिक्षक के लिए बहाली के लिए आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है यहाँ पर बिहार में, BPSC के जरिए ये परीक्षा ली जाती है। लेकिन इसका जो चौथा चरण है उसकी परीक्षा की मांग ये लोग लगातार चुनाव से पहले से कर रहे हैं, यानी कि ये कितने समय से लंबित है ये आप समझ सकते हैं कि बिहार चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बना था जब वो छात्र मांग कर रहे थे कि भाई TRE4 का नोटिफिकेशन होना चाहिए। उस वक्त सरकार ने वादा किया था कि हम परीक्षा लेंगे सही समय पर लेंगे, लेकिन अभी सरकार बनने के 7-8 महीने के बाद भी TRE4 का नोटिफिकेशन नहीं निकला है कि कब परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पर देखिए DSP जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और क्योंकि अब 8 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है और इसीलिए एक बार फिर से ये उग्र छात्र जो है आज सरकार गठन के अगले दिन ही आप समझ लीजिए मंत्रिमंडल का कल विस्तार हुआ है, अगले दिन ही जो है सड़कों पर उतर
0: किया जा रहा है क्या सम्राट चौधरी सरकार से एक बार सुनाने की कोशिश करिए।
7: आगे कर दे उचित माध्यम से मिलवाने का काम करेंगे।
2: जी जी जी सर आप लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हट रहे हैं बच्चे
8: अभी एट प्रेजेंट तो नहीं हट रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना हो।
2: तो सरकार के नुमाइंदे जो है यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा नहीं हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आप देख सकते हैं कम से कम जो है स्थिति जो है यहाँ गंभीर तो बनी हुई है। ये छात्र देखिए बैठ गए हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं गांधी मैदान के ठीक बाहर जो है ये लोग अब एक तरीके से कहें कुछ खड़े हैं कुछ धरने पर बैठ गए हैं और इस तपती दोपहरी में जो है आप देखिए सड़कों पर बैठ के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस ने 2 राउंड लाठियां चलाने के बाद अब इनको यहाँ रोक कर रखा हुआ है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है हालात तो पैदा हो सकते हैं। और चारों तरफ इस वक्त पटना में इस इलाके में जो है वो जबरदस्त जाम की स्थिति पैदा हो गई है नेहा, और ये पूरा का पूरा इलाका जो है फिलहाल अभी कह सकते हैं यहाँ पर बवाल देखने को मिल रहा है। नेहा
0: ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी है और वहां पर जाम भी लग रहा है, जाहिर तौर पर ये पूरी रोड ब्लॉक हो गई है। अगर जो पटना के लोग हैं या फिर जो लोग पटना को समझते हैं वो समझ पाएंगे कि दरअसल ये मुख्य इलाका है जो कनेक्ट करता है अलग अलग इलाकों को, और अगर ऐसी स्थिति में वहां पर जाम होता है तो जाहिर तौर पर जल्द पुलिस को कोई एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन बड़ी संख्या है छात्रों की, इसलिए काफी ज्यादा सावधानियां भी बरती जा रही हैं। रोहित हम देख पा रहे हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, क्या उनके लिए उपयुक्त महिला पुलिस फोर्स भी है?
9: शीघ्रता से अपने अपने स्थान से हट जाएं,
2: देखिए आप अनाउंसमेंट सुन सकती हैं, अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है, बार बार कहा जा रहा है इन अभ्यर्थियों को यहाँ से हट जाएं, लेकिन हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जैसा कि बता रहे थे अभ्यर्थियों में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और इसीलिए जो है
0: ठीक है आपके पास इस बीच वहाँ से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: पटना में TRE4 के अभ्यर्थी और पुलिस आमने सामने हो चुके हैं। पटना के जेपी गोलंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से पटना में पुलिस और आप देखिए किस तरीके से जो TRE4 के अभ्यर्थी है वो आमने सामने हो चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, बैरिकेटिंग को हवा में उठा दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ी है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को उठा दिया गया है, बैरिकेटिंग को लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और बच्चे जो है वो देखिए बोतल उन्होंने उधर से फेंकना शुरू किया है, एक बोतल जो है वो फेंकी गई है। और ये तस्वीर देखिए बोतल चलाने लगे हैं, ये तस्वीर देखिए अभ्यर्थियों ने बोतल चला करके पुलिस की तरफ फेंकना शुरू किया है। और

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

खंड जीत के बाद कोलकाता पहुंचे अमित शाह। एयरपोर्ट पर शुभेंदु की थपथपाई पीठ, शाम तक सामने आएगा सीएम का चेहरा। थोड़ी देर में विधायकों की मीटिंग, मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे।

हावड़ा के शिवपुर में चले बम, धार्मिक नारे लगा रहे थे उपद्रवी। शुभेंदु के पीए के हत्यारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। शूटर्स के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ फरार होने का शक। तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस बरकरार, एनडीए से अलग होने पर विचार कर रही है एआईएडीएमके। टीवीके को समर्थन देने पर लेफ्ट, वीसीके की मीटिंग, ममता स्टालिन की फोटो के साथ अखिलेश का कांग्रेस पर तंज, लिखा हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। पटना में प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर टीआरई 4 कैंडिडेट्स का हल्ला बोला।

सऊदी धुआं। ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें। ईरानी बंदरगाहों पर अटैक के बाद हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले। ट्रंप की धमकी, डील नहीं हुई तो तबाह कर देंगे। डिस्ट्रॉयर के सुरक्षित होने का दावा।

0: मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
1: हमार रेकॉर्ड करे रखूं नाम भवानीपुरे हराबो।
2: बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। हम बंगाल का रुख आज करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर पटना से आपको बता दें। पटना में नौकरी मांगने सड़कों पर उतरे छात्रों को लाठियां मिली हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने TRE 4 की परीक्षा की मांग को लेकर BPSC मुख्यालय का घेराव करने वो जा रहे थे। पटना के JP गोलंबर में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई। प्रदर्शनकारियों ने इसे तोड़ा, पुलिस ने लाठियां बरसाई, फिर छात्रों और पुलिस में दंगल वहां शुरू हो गया। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां TRE 4 कैंडिडेट्स जो हैं उनके ऊपर पुलिस की ओर से, सुरक्षा कर्मियों की ओर से लाठियां बरसाई गई हैं।
1: तस्वीर देखिए, हम सड़कों पर बिखरी हुई चप्पल और कपड़े आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। कई लड़कियां, कई छात्र छात्राएं जो हैं वो घायल हुई हैं। सबसे पहले आप सड़कों पर बिछी इन चप्पलों को देखिए, किस तरीके से, क्या मंजर जो है वो यहां पर हुआ पड़ा है। ये तस्वीर देखिए, जैसे तस्वीर देखिए, और तस्वीर देखिए, अभी फिर से लाठी चलाई जाने लगी है। ये तस्वीर देखिए, फिर से लाठी जो है वो बरसाई जाने लगी है। लाठी चलाए जा रहे हैं और लड़कियां कैसे घसीटी जा रही है ये भी देखिए। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से छात्राओं को घसीटा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से छात्राओं को घसीटा जा रहा है। छात्राओं को घसीटा जा रहा है। देखिए तस्वीर देखिए, देखिए छात्रों को कैसे घसीटा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए चप्पल, छात्र ने गुस्से में चप्पल हाथ में उठा लिया है। पुलिस से देखिए किस तरीके से यहाँ पर। चलिए हम कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जहाँ पर आपको छात्रों के चप्पल जमीन पर दिख रहे होंगे और छात्र एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, छात्र जो हैं वो एक बार फिर से आगे आते हुए दिख रहे हैं पुलिस के लाठी चार्ज के बावजूद। देखिए यहाँ पर जबरदस्त लाठी चार्ज की गई थी, कई छात्रों को चोट लगी, छात्राओं को चोट लगी। उसके बावजूद देखिए कि छात्र जो हैं वो एक बार फिर से आगे की तरफ जो है वो बढ़ चुके हैं। हम ये तस्वीर आपको दिखाते, देखिए अब देखना ये होगा कि पुलिस दोबारा से इन्हें कैसे रोकती है। देखिए छात्र अब यहाँ पर फिर से जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर लड़कियां हैं, लड़के हैं, कई छात्र छात्राएं जो हैं वो चोटिल भी हुई है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि एक बार फिर से जो छात्र हैं वो पहुंच गए हैं यहाँ पर। कुछ लड़कियां हैं, आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप
2: देखिए, मेरे पैर में चोट लगा हुआ। TRE 4 ये ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ये महिलाओं पे, पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांति पूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना, कोई किसी को कुछ अपवादी वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी, चोट लगे, सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे, डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं, पुलिस चार्ज को कहीं नहीं से वो कर रहे हैं।
0: वहां पर पहुंचे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के बाद पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज। लेकिन अभी यहां पर यह समझने की जरूरत है कि आखिर लाठी चार्ज क्यों शुरू किया गया यहां पर। क्या छात्रों की तरफ से जो आंदोलन हो रहा था, जो अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन हो रहा था, उसमें क्या एक बार बातचीत करने का भी प्रयास हुआ है? रोहित सिंह हमारे साथ पटना से इस समय जुड़ रहे हैं। रोहित, लाठी चार्ज को लास्ट एक तरीके से रिजॉर्ट कहा जाता है, आप अगर जोर लगाना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों पर जो वहां पर शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाह रहे थे और मुझे लगता है सूचित किया हुआ था, इसीलिए बैरिकेड लगा होगा, क्या कारण रहा कि अचानक इस तरीके से लाठी चार्ज और इस समय की स्थिति क्या है?
3: श्वेता, देखिए ये आंदोलन जो है इसका कॉल जो है पहले से ही दिया हुआ था और इसीलिए आप जो बता रही थी कि पुलिस का इंतजाम था यहाँ पे, हम लोग गांधी मैदान के JP गोलंबर के पास मौजूद हैं और क्योंकि हजारों की संख्या में छात्र थे, अभ्यर्थी हैं और नाराज थे और प्रदर्शन करते हुए लगातार वो आ रहे थे पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसी दौरान इनको जब यहाँ पर रोका गया तो ये लोग थोड़ा ज्यादा उग्र हो गए क्योंकि ये लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे, डाक बंगला चौराहे तक जाना चाह रहे थे और उसी दौरान कुछ छात्रों ने जो है बैरिकेटिंग जो है तोड़ने की कोशिश की है, बैरिकेटिंग को फेंकने की कोशिश की है। उसके बाद आगे बढ़ने की जब उन लोगों ने कोशिश की तो उसी दौरान पुलिस ने जो है इनको रोकने के लिए यहाँ पर, ताकि आगे न जा सके, इन पर लाठियां चलाई गई हैं और एक नहीं दो राउंड, बताया जाता है कि दो राउंड इन पर जो है लाठियां जो है भांजी गई है और लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो हैं उन पर भी, सब पर जो है वो लाठियां बरसी हैं। और ये तब हो रहा है जब कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नए नए जो अब मंत्री जो बने हैं, शायद चाहे शिक्षा विभाग के हो, मिथिलेश तिवारी हो, उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती है, या फिर कहे संजय टाइगर जो कि हायर एजुकेशन के हैं, उनके लिए भी ये चुनौती है। तो सरकार के पूर्ण गठन के अगले ही दिन इस तरीके से एक बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन के सामने नजर आ रही है। और पिछले तकरीबन एक डेढ़ घंटे से आप देखिए पूरा का पूरा ये जेपी गोलंबर का इलाका गांधी मैदान के आसपास चारों तरफ से जाम हो चुका है। और स्कूल की छुट्टियां हो चुकी है 12:30 के आसपास, बच्चे जो है कई जगहों पर फंसे हुए हैं, गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ आप देखिए ये छात्राएं हो, ये सब लोग यहाँ पर TRE4 विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। ये मांग कर रहे हैं कि भाई परीक्षा कब लेगी सरकार, इसकी घोषणा हो। सरकार बन रही है, सरकार फिर उसका जो है दूसरी सरकार बन रही है, एक पिछले 8 महीने में 2-2 सरकारें बन गई है, लेकिन एक परीक्षा जो है वो नहीं ली जा रही है।
0: जिस क्षेत्र से रोहित की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां पर भीड़ आपको दिख रही है, वहां पर कम से कम 3 स्कूल हैं बड़े, जहां से इस समय और ज्यादा दिक्कतें और प्रशासन के सामने वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बनेगी। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल यह भी हो जाता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांगे हैं उस पर किस तरीके से संवेदना से विचार हो। आगे बढ़ते हैं, बंगाल का रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर यह आ रही है कि 2 डिप्टी CM बंगाल में हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज ये निर्णय होना है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इसी के साथ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल में 2 डिप्टी CM होंगे और इन 2 डिप्टी CM में एक महिला डिप्टी CM हो सकती है। 2 डिप्टी CM में एक महिला चेहरा संभव है। जाहिर है इतने लंबे समय से ममता बनर्जी वहां पर रही मुख्यमंत्री के रूप में, बंगाल की महिलाएं अब तक उन पर भरोसा जताती रही थी। अब बीजेपी की ओर से एक डिप्टी CM की बात, एक महिला डिप्टी CM की बात हो रही है। पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, मतलब अभी 2 बजे के बाद किसी भी समय ये बैठक शुरू होनी है, उससे पहले ये बड़ी खबर कि 2 डिप्टी CM और एक उनमें से महिला, पीयूष?
4: जी बिल्कुल श्वेता, ये जानकारी हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है कि बीजेपी की सरकार में जो बंगाल में कल शपथ लेने वाली है उसमें 2 डिप्टी CM हो सकते हैं और कल मुख्यमंत्री के साथ ये दोनों डिप्टी CM भी शपथ ले सकते हैं और इन 2 डिप्टी CM में से एक जो है वो महिला हो सकती है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले अग्निमित्र पॉल की मुलाकात दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई थी और सूत्र ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आगे चल रहा है महिला डिप्टी CM के नाम को लेकर तो वो अग्निमित्रा पॉल है। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अग्निमित्रा पॉल नोवोटेल होटल में गई हैं, उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी कन्वेंशन सेंटर पर है जहां पर कुछ देर में विधायक दल की बैठक भी शुरू होने वाली है। देखिए नेता पहुंचने शुरू हो गए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। अमित मालवीय जो प्रभारी रहे काफी लंबे समय से और विप्लव देव जो सह प्रभारी रहे यहां के, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। अमित जी, आप जी अभी फिलहाल इस वक्त अभी बात करने से वो मना कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं कि लगातार जो सरगर्मियां तेज होती जा रही है, लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा दूं चारों तरफ की किस तरह से। आप ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है नव निर्वाचित विधायक दल बैठक, बांग्ला में लिखा हुआ है नव निर्वाचित विधायक दल बैठक। और इसके शुरुआत में ही यहां पर जब जैसे ही कोई आता है, जैसे कोई विधायक आता है तो उनका स्वागत यहां पर एक रंगोली से होता है। आप देखिए कि बीजेपी का जो सिंबल है लोटस कमल, वो उसका यहां पर रंगोली बनाया गया, एकदम स्वागत इस तरह से यहां पर किया जा रहा है। ढाक की तैयारी भी यहां पर शुरू हो गई है, तो पूरे उत्साह के साथ सभी विधायकों का स्वागत यहां पर बीजेपी करने वाली है और लगभग 4 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। 2 बज चुका है और धीरे धीरे सभी विधायकों का आना शुरू हो चुका है। अंदर किस तरह की तैयारियां की गई है वो भी श्रोता मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि कैसे अंदर यहाँ पर तैयारी की गई है। जैसे ही कोई विधायक आता है तो उनकी चेकिंग यहाँ पर होती है और चेकिंग होने के बाद सीधा फिर दरवाजे से यहाँ पर एंट्री मिलती है। मैं अंदर चल के दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं। जो कोलकाता पुलिस के जवान है उनको भारी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर भी अंदर भी एक रंगोली बनाई गई है, फूलों की एक रंगोली बनाई गई है जिस पर जो कमल का निशान है वो बनाया गया है। अंदर आने के बाद जो विधायक हैं वो धीरे धीरे आगे जाते हैं और उनका स्वागत जो है वो माला के साथ अंगोछा, जो बीजेपी का अंगोछा है वो पहनाकर किया जाता है। उनको टीका लगाया जाता है और टीका लगाने के बाद उनके ऊपर जो पुष्प है वो डाले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बीजेपी के विधायकों का स्वागत भी किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या सामान रखे हैं, क्या क्या चीजें हैं। देखिए, ये है बीजेपी का अंगोछा। और जैसे एक विधायक यहाँ पर आए हैं जो नव निर्वाचित विधायक है, उनका स्वागत ऐसे हो रहा है और उनको चंदन लगाया जा रहा है। देखिए, टीका किया जा रहा है, लाल रंग के टीके से उनका स्वागत है, सनातन जो रंग है उससे उसका स्वागत किया जा रहा है। साथ साथ ये देखिए कैसे जो धूप हम इस्तेमाल करते हैं पूजा के अंदर, उस धूप जो है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर विधायकों के स्वागत में किया जा रहा है। और यहाँ पर एक शंख भी है, शंख भी है, और जब भी कोई विधायक यहाँ पर आते हैं तो शंख बजाकर भी उनका स्वागत किया जा रहा है। तो इस तरह से इस वक्त तैयारियां कर ली गई है विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में। और ये शंखनाद कहीं ना कहीं बताता है कि कैसे बीजेपी ने इतिहास पश्चिम बंगाल में रच दिया और 200 से ज्यादा की सीटें जो बीजेपी की आई है उसमें सभी वर्गों का जो कहीं ना कहीं भाग हो सकता है। अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो एक महिला डिप्टी सीएम होने की चर्चा चल रही है, बहुत जोरों से चर्चा चल रही है। साथ साथ मथुआ कम्युनिटी से भी कोई एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो इस तरह की तैयारियां फिलहाल विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में है। कुछ देर में यहां पर गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और जो यहां का बेसमेंट है, मैं एक बार तस्वीर आपको और दिखा दूं, यहां पर जो बेसमेंट है उसी बेसमेंट में ये बैठक भी होने वाली है। फिलहाल वहां पर मीडिया को जाने से मनाही है, लेकिन नीचे देखिए सुरक्षा कर्मी जो है फिलहाल बैठे हुए हैं और कुछ देर में जो गृहमंत्री अमित शाह आते हैं तो इसी रास्ते से, जो एस्केलेटर्स नीचे जा रहे हैं इस रास्ते से होते हुए वो नीचे जाएंगे। पूरा जो बेसमेंट का इलाका है उसको इस वक्त सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर की मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ एक तरफ
0: आपके पास
4: बीजेपी के विधायकों का स्वागत किया जा रहा है।
0: और हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र भी हमारे साथ हैं और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी जी मौजूद हैं, साथ में आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम चूंकि अभी का वो समय है अनुपम, एक और चीज कि अभी का वो समय है जब भले फ्रंट रनर्स की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन, उसमें सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी की बात हो रही है, लेकिन इस सब के बीच जो एक हिंसा का दौर जो बंगाल में अलग अलग हिस्सों से जो सामने आ रहा है वो सरकार गठन से पहले ही बहुत चुनौतियां भी बढ़ा रहा है। अनुपम
5: जी, बिल्कुल सही, लेकिन इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि 4 तारीख दोपहर बाद से, जब स्पेसिफिकली शाम के बाद जब सरकार बीजेपी ने सत्ता जीत ली वहां, उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई और 2 दिन तक ये बहुत मास स्केल पर हुआ। पश्चिम बंगाल का शायद ही कोई ऐसा जिला बचा हो जहां पर टीएमसी के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ नहीं हुई हो, उन पर कब्जा नहीं किया गया हो। इसके अलावा 2-3 हत्याएं भी हो गई, लेकिन पिछले 2 दिनों से इस पर काफी हद तक लगाम लगाई जा चुकी है। कल एक घटना जरूर हुई है हावड़ा में जहां बमबाजी हुई है, लेकिन वो टीएमसी के ही 2 गुटों में बमबाजी हुई है। दरअसल अब इसमें 2-3 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये बात सामने आ रही है कि जैसे ही सत्ता बदली है, जैसे ही टीएमसी का पतन हुआ है, बीजेपी का उदय हुआ है पश्चिम बंगाल की सत्ता पर, यहां पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे बहुत जिलों में, वो भी अचानक से उन्होंने अपनी जर्सी चेंज कर ली है, अपना कलर चेंज कर लिया है, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बहुत जगहों पर, जैसे मुझे मालूम भी है बीरभूम में के नानूर में जो हत्याकांड हुआ या यहां वहां पर जो हिंसा हुई वो 2 टीएमसी के गुटों में हुई जो चेंज होकर बीजेपी में आ गए। तो ऐसे में बहुत जगहों पर इस तरह की भी हालात हैं, बहुत जगहों पर ऐसी भी स्थिति है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो पिछले कई सालों से उन पर अत्याचार हुआ वो कह रहे थे, उन्होंने टीएमसी के पार्टी ऑफिसर्स पे आक्रमण किया, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार अपील की गई और पुलिस का जो इनएक्शन पहले 2 दिनों में दिखा था उसके बाद वो नहीं दिखा, पुलिस ने भी थोड़ी कड़ाई की। तो इन सब के बीच में जो हिंसा हो रही थी उस पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है। कुछ छिटपुट जगहों पर हिंसा जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से मास स्केल पर 2 दिनों तक हुई थी उससे अभी काफी राहत है।
0: काफी राहत है, लेकिन अनुपम जो बात कह रहे हैं वो सवाल मैं गौतम दा आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर में किसी भी समय अब विधायक दल की बैठक की शुरुआत कोलकाता में हो सकती है। कोलकाता में जो बिस्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है वहां पर ये बैठक होनी है, विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमित शाह संबोधन आज क्या निर्णय वहां से निकलता है, अमित शाह पर्यवेक्षक हैं जो विधायकों की बैठक होगी, जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें शुभेंदु अधिकारी एक नाम जिसके लिए ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री होंगे, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछली बार नंदीग्राम इस बार भवानीपुर। लेकिन गौतम दास जिस सवाल से मैं शुरू करना चाहती हूँ, जो बात कर रहे थे अनुपम कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बस अपना टी शर्ट बदल लिया है, ये लेफ्ट जब हटकर और टीएमसी आया था उस समय भी ये हुआ था, और वो टी शर्ट बदलने के चक्कर में क्या होता है, वायलेंस कभी खत्म ही नहीं होता है। लेकिन इस बार ये बड़ी चुनौती रहेगी कि अगर बीजेपी ये बोलकर आई है कि हम कानून व्यवस्था पर ध्यान देंगे, हम सिंडिकेट राज नहीं चलने देंगे, तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी।
6: मुझे तो लगता है कि जब मुख्यमंत्री जो भी बने, सरकार तो आज ही काल अवध लेना, शपथ लेना है, सबसे बड़ा चुनौती यह है कि बंगाल का कानून व्यवस्था का सुधारना, कि नहीं तो इसका छवि जो अगर खराब होते जाएंगे, हमारा बहुत ही शंका है कि इसका कोई ना इम्पैक्ट हमारा पड़ोसी क्योंकि लगा हुआ है बॉर्डर वहाँ पे ना हो जाए, इसके लिए सबसे ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। दूसरी बात है, आपने जो कह रहा है कि ये जारसी बदलना, वो तो 1977 में जब CPM जीता तब एक तरह का हम देखा था, क्योंकि 72 से 77 तक कांग्रेस का राज रहा, उनमें भयंकर टॉर्चर भी अत्याचार भी हुई थी, लोगों को गोली से कम बहुत लोगों को मृत्यु भी हुई थी, तो उसका एक रोष था जनता के बीच में, शायद उसको ही देखा गया चुनाव के बाद। 77 से जब वामपंथी राज था 34 साल, खास तौर पे लास्ट दो टर्म उनमें बहुत ही खतरनाक रहा है, वहाँ पे जो विरोधी दल जो है उसके ऊपर कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कि बाकी जो टीएमसी का भी हो, सबके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसका एक बदला लेने का, बदलाव का भाव लगता है कि अच्छा एक दिन तो हमारा राज आएगा। तो ये जो राज आ गया, इस बार एक फर्क थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि वो तो टीम अगर सबसे, क्योंकि कानून जिस तरह से चुनाव हुआ 1977 हो 2011 हो, चुनाव का पहले भी हिंसा होते थे, इस बार चुनाव का पहले कोई हिंसा नहीं हुआ, चुनाव का दिन नहीं हुआ, तो शायद खुफिया एजेंसी और सब सोच रहा है कि आराम से इतना बड़ा भारी मैंडेट आ गया, एक वो एक सोच ही भी नहीं सकता था कि कोई ऐसे तरह का होगा। इसलिए देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग जिसको अपॉइंट किया है वही चीफ सेक्रेटरी रहा है, वही गृह सचिव है, वही DGP है, कोई ममता बनर्जी के पुराना समय में जो था सबको हटा दिया था, चुनाव आयोग के पास सत्ता रहते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा तो चूक हुई है, लेकिन बाद में कार्रवाई कर रहा है और कुछ गिरफ्तार भी हो रहा है। लेकिन यही चाहिए, दिखाना चाहिए कि जो भी हंगामा करे किसी भी पार्टी का हो, TMC हो, BJP हो कि वामपंथी हो, उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए,
0: उसके खिलाफ होना चाहिए। और इस सब के बीच जो बड़ा सवाल इस समय है अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सामने, कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, और जिस स्टेट में हर व्यक्ति की उम्मीद सबसे पहली ये हो कि कानून व्यवस्था, और सबसे बड़ा वादा ये हो आशुतोष जी, उसमें जो मौजूदा विधायक हैं और शुभेंदु अधिकारी का जो एक तरीके से उनकी शैली रही है, उसमें अगर ये सोचा जा रहा है कि फ्रंट रनर ही नहीं बल्कि शायद सबसे बेस्ट CM हो सकते हैं इस समय विकल्पों में, तो आप इससे सहमत हैं या आपको लगता है कि किसी और पर दांव लग सकता है?
7: देखिए, अगर आप शुभेंदु अधिकारी का पूरा प्रोफाइल देखें तो शुभेंदु अधिकारी RSS की शाखा से निकले हुए नेता नहीं है, न वो BJP के अनुशासन से निकले हुए नेता है, वो कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस और उसके बाद यहाँ आए हैं, 2020 में आए हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर लंबे समय तक संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत भी की है और काफी लाठियां भी खाई, ऐसा नहीं कि उनके लिए बहुत आसान था। तो सिर्फ 5 साल पहले 6 साल पहले कोई व्यक्ति आए और जीतने के बाद अगर वो मुख्यमंत्री बन जाए तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। पहली बार 1996 में मुझे 2026 में जो संघ के या BJP के अनुशासन से निकला हुआ व्यक्ति हो उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। दूसरी बात, तो मुख्यमंत्री बनने के पहले ही लगातार विवादास्पद व्यक्तित्व रहे हैं आप, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगे रहे, और एक बड़ा कारण यह भी था जब तृणमूल कांग्रेस से BJP में आए तो लोगों का कहना था क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उससे बचने के लिए वो इधर आए। तीसरी बात, जिस तरीके से वो हिंदुत्व की विचारधारा को आरएसएस के लोगों से आगे चल के बोल रहे हैं वो भी उनके लिए कहीं कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आज बंगाल को एक हीलिंग टच की जरूरत है, बंगाल को उस आक्रामकता से बाहर निकालने की जरूरत है और बंगाल में ये मैसेज देने की जरूरत है कि ये सरकार सारे बंगालियों के हित की बात करती है, उनके सर्वांगीण विकास के बारे में बात करती है, ना कि केवल कुछ हिंदुओं के बारे में। जो बार बार बार बार जो हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये देश के लिए भी ठीक नहीं है, बंगाल के लिए भी ठीक नहीं है और बंगाल की संस्कृति इन सब चीजों के लिए जानी भी नहीं जाती है। वहां सब लोग साथ रह के चलते हैं, चाहे टैगोर, क्योंकि टैगोर की धरती है, विवेकानंद की धरती है, जो बार बार कहा करते थे कि हिंदू मानस और मुस्लिम शरीर की बात करते थे, तो वो जगह है। मुझे लगता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्रेसिव, क्योंकि आपने मेरा
0: जी मैंने आपकी राय
7: मेरा मेरी राय में तो संघ से या
0: बीजेपी की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं,
7: बीजेपी का कोई पुराना कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा, जाता बेहतर तरीके से।
0: संगीत रागी जी भी आ चुके हैं लेकिन ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से इशारे आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि शायद शुभेंदु अधिकारी ही वो व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री होंगे नए पश्चिम बंगाल के। लेकिन इस ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए आज।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
3: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
4: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
3: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
5: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
2: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
6: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Monte Carlo, it's the way you make me feel.
7: हर चेहरा सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी। कभी सुर्खियों में, कभी सवालों में, हम बताते हैं उस चर्चा का सच। चर्चित चेहरा देखना ना भूलें सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज तक पर।
8: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

थोड़ी देर में बंगाल में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। कोलकाता पहुंचे पर्यवेक्षक अमित शाह। सूत्रों के अनुसार एक महिला समेत दो डिप्टी सीएम होंगे। मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे। बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। हावड़ा के शिवपुर में चले बम, धार्मिक नारे लगा रहे थे उपद्रवी। शुभेंदु के पीए के हथियारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। शूटर्स के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ फरार होने का शक। तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस बरकरार। एनडीए से अलग होने पर विचार कर रही है एआईएडीएमके। टीवीके को समर्थन देने पर लेफ्ट वीसीके की मीटिंग। ममता स्टालिन की फोटो के साथ अखिलेश का कांग्रेस पर तंज। लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। और पटना में प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर TRE4 कैंडिडेट्स का हल्ला बोल। अरब के आसमान पर फिर बारूदी धुआं। ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें। ईरानी बंदरगाहों पर अटैक के बाद हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले। ट्रंप की धमकी, डील नहीं हुई तो तबाह कर देंगे। डिस्ट्रॉयर के सुरक्षित होने का दावा।

0: में नई सरकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में पॉल्टनो दरकार यानी बदलाव की जरूरत है का नारा दिया था। 15 साल बाद बंगाल में बदलाव आया। ममता राज खत्म हो गया, बीजेपी की सरकार आने वाली है। थोड़ी देर में कोलकाता के विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायक दल के नेताओं की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक हैं। दोनों नेता विधायकों की बैठक के बाद नए नेता का ऐलान करेंगे। शाम 5 बजे बंगाल के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आने की संभावना है। हालांकि संकेत कुछ मिलने लगे हैं। अमित शाह जब कोलकाता पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए शुभेंदु अधिकारी खड़े थे, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई, आशीर्वाद दिया, 3 शब्द भी कहे। सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल में 2 डिप्टी सीएम होंगे। दोनों डिप्टी सीएम में एक महिला चेहरा हो सकता है, एक डिप्टी सीएम नॉर्थ बंगाल से हो सकते हैं। तो अभी जो संभावनाएं, जो अटकलें सामने हैं, उनमें ये 3 तस्वीरें कुछ और महत्वपूर्ण संकेत दे रही हैं। मारिया शकील भी हमारी संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मारिया, जिस तरीके से अमित शाह ने भेंट की शुभेंदु अधिकारी से, जिस तरीके से पीठ उनकी थपथपाई, हालांकि सबसे ज्यादा गुंजाइश तो शुभेंदु अधिकारी की ही लग रही है, लेकिन ये चीजें और उसको पक्का सील कर रही हैं।
1: जी श्वेता, वो जायंट किलर हैं। 2021 के चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया और 2026 में बड़े मार्जिन से ममता बनर्जी के गढ़ में यानी भवानीपुर में हराया। मैं अभी विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हूँ श्वेता, और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे ढोल नगाड़े सब दिख रहे हैं, आवाज आ रही है, पूरा म्यूजिक बज रहा है और यहाँ पर कमल खिल चुका है। इस फूलों के इस कमल से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कमल खिलने वाला है। 2007 कमल है भाजपा के पास, और ओवरऑल वोटर परसेंटेज जो है श्वेता वो अभी 46%। तो भाजपा ने लगभग 8% का वोट शेयर गेन किया है 2021 के कंपैरिजन में। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की चर्चा करें और बताएं तो उनके लिए क्या क्या फैक्टर वर्क कर रहा है। वो अधिकारी परिवार से आते हैं जो ये माना जाता है कि बंगाल की पॉलिटिक्स में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है उन्होंने, और नंदीग्राम के आंदोलन में शिशिर अधिकारी उनके जो पिता रहे हैं, और उसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने खुद ममता बनर्जी का साथ दिया था, और कुछ सालों में उन्होंने भाजपा को एक्सपैंड करने में बंगाल में बहुत मदद की है। तो सारे संकेत ये हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही नए मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वो विधायक दल में चुने जाएंगे। लेकिन श्वेता, कहा जाता है क्योंकि हम भाजपा कवर किए हैं काफी सालों से, कोई सरप्राइज के लिए हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। 2 डेप्यूटी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, 2 डेप्यूटी सीएम, उसका भी संकेत दिया जा रहा है। एक खास करके महिला हो सकती है, क्योंकि महिलाओं ने एक महिला मुख्यमंत्री का साथ छोड़ करके भाजपा का साथ इस चुनाव में दिया है। उसके अलावा मथुआ कम्युनिटी का कोई एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ये भी संकेत आ रहा है। मथुआ क्यों श्वेता? क्योंकि अगर आपको याद होगा 2019 के चुनाव के बाद भाजपा ने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट किया तो उनका कैलकुलेशन था कि मथुआ जो यहाँ पर 2 से 3 करोड़ उनकी संख्या है वो भाजपा की तरफ जुड़ जाएंगे। 2021 के चुनाव में हमें साफ तौर पर दिखा कि नॉर्थ 24 परगना में और नदिया में भाजपा से ये जो मथुआ समाज के जो लोग थे वो उनके साथ जुड़े, और उसके बाद जो भी चुनाव हुआ 2021 का विधानसभा चुनाव या 2024 का लोकसभा चुनाव, मथुआ समाज भाजपा के साथ जुड़ा रहा। तो जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं श्वेता हम, और जो सामाजिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ये बात माना जा रहा है कि मथुआ समाज का भी कोई उप मुख्यमंत्री हो सकता है।
0: हाँ, और ये संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। संगीत रागी जी, आपकी तरफ से भी जल्दी से, क्योंकि आशुतोष जी को कुछ आपत्तियां थी कि शुभेंदु अधिकारी नहीं, मतलब
2: राय है, आपत्ति का भाई वो पार्टी का मामला,
0: राय में तो आपत्ति थी ना थोड़ी सी।
2: मेरी राय है कि भाई ये होना चाहिए।
3: देखिए, विवेकानंद से ही मैं शुरू करता हूँ। विवेकानंद जी ने कहा कि एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, हिंदू समाज का वो एक दुश्मन पैदा होता है। ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद से बोल रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने विवेकानंद की बात को बहुत डिस्टॉर्ट किया. उन्होंने कहा वेदांतिक माइंड एंड इस्लामिक बॉडी, इसका मतलब इस्लाम की तरह तुम संगठित हो लेकिन तुम्हारा जो माइंड होना चाहिए यानी कि जो दार्शनिक जो है आध्यात्म जो है वो तुम्हारा हिंदू फिलॉसफी ही होना चाहिए. लेकिन यदि हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो इस्लामिक बॉडी की तरह उनको एकजुट रहना होगा. दूसरी बात, नहीं प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए. दूसरी बात देखिए, बंगाल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में वोट जिहाद होता है. और मैं इसलिए वोट जिहाद होता है और इसलिए मैं कहता हूं कि जहां भी मुस्लिम जनसंख्या है 90% जहां आबादी है वहां पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को 2, 5, 7, 2.5 से नीचे वोट मिलता
0: पर
3: है.
0: उससे ज्यादा एक मिनट लेना है, उन विधायकों में कोई मुसलमान है नहीं.
3: नहीं नहीं, मैं दो दो एक दो वो बात की हूँ उसको मैं पहले काउंटर कर दूं. दूसरी बात जो है कि पूरा चुनाव हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है,
0: ठीक है.
3: मुसलमानों ने हराने की कोशिश की और हिंदुओं ने
0: सीएम तय होना है,
3: ठीक है, बिल्कुल है. तो भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. लेकिन जो लोग अब बांग्लादेशी हैं जिनको राजनीतिक दामाद की तरह तृणमूल कांग्रेस पाल करके रही है उनको पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा बनाए तो ये तो संभव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए. उनको चाहे आप कटघरे में खड़ा करके
0: रखिए. हम चेहरे भी दिखा रहे हैं, श्रमिक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, ये सारे चेहरे, सब पर चर्चा चल रही है. सुकांतो मजुमदार कौन हो सकता है, क्या इनमें से कोई नया मुख्यमंत्री हो सकता है. अग्निमित्रा पॉल के लिए तो कहा जा रहा है मुमकिन है कि वो डिप्टी सीएम रहे, हालांकि मुख्यमंत्री की रेस से भी उन्हें अभी हटाया नहीं गया है. मतलब जो चर्चा चल रही है उसके हिसाब से पीयूष मिश्रा हमारे साथ सीधे कन्वेंशन सेंटर के भीतर से मौजूद है जी.
3: मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि हाँ. सामने का दुश्मन आपको लड़ाका है और वो गली की लड़ाई और चौराहे की लड़ाई हाँ. ऐसे आदमी को लाइए जो इनका जवाब भी दे सके, मुंह तोड़ जवाब दे सके
0: हाँ.
3: सठम साठ्यम समाचरित ये भी आवश्यक है और पब्लिक पॉलिसी भी आवश्यक है, दोनों बहुत जरूरी
0: है.
4: एक बात कह दूं इसका, इनके कहने का मतलब ये कि संघ परिवार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस तरीके से सरकार चला.
3: मैंने ऐसे तो मैंने
4: उधार के नेता की जरूरत इनको पड़ रही है.
0: चलिए तो पहले पहले पीयूष पीयूष वो इनविटेशन दिखाइए जी, जो कल कल के शपथ ग्रहण के लिए आया हुआ है जी.
5: जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको दिखा भी दूंगी. देखिए मेरे साथ इस वक्त सुदीप कुमार मुखर्जी हैं जो विधायक हैं, तीसरी बार विधायक बनकर आए हैं और इनके हाथ में ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड है. आप इस पर पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है. इस पर लिखा हुआ है द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी स्वॉन इन बाय Honorable Governor of West Bengal on Saturday, May 9, 2026 at 11 a.m. at the Brigade Parade Ground, Kolkata. Your presence is solicited. और ये आया है Chief Secretary है Government of West Bengal के दुष्यंत नरला जी की तरफ से. और ये सभी विधायकों को इस तरह का कार्ड दिया गया है, VVIPs के ऊपर लिखा हुआ है और सभी विधायकों को कहा गया है कि कल शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे. सुदीप कुमार मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, विधायक है, इनके हाथ में ये कार्ड भी है, इनसे बात करते हैं. सर अब आप वो विधायक बन चुके हैं जो विधायक मुख्यमंत्री चुनेगा पश्चिम बंगाल का, आपके मन में किस तरह का भाव है. हम जब आप आए तो बाहर ढाक बज रहा था, अंदर जो लोटस है जो सिंबल है बीजेपी का वो बना हुआ था, क्या भाव है आपके अंदर आज आप मेरा मुख्यमंत्री.
6: नहीं देखिए, बंगाल को पिछले 50 सालों से पूरा पिछड़ा दिया था. केंद्र का जो सरकार है उसका विरोधी सरकार पिछले 50 सालों से चल रहा है, 49 सालों से. इस बार बहुत दिन का बाद ये केंद्र में जिसका सरकार है राज्य में आया है. राज्य का हर आदमी बच्चा बूढ़ा सभी चाहता है जो डेवलपमेंट. यहाँ से जो लेबर लोग बाहर काम करने जाते हैं वो अपना घर में नौकरी चाहता है, शिक्षा का उन्नति चाहता है, स्वास्थ्य व्यवस्था का उन्नति चाहता है, नारी सुरक्षा का सुरक्षा चाहता है. बंगाली का जो अस्मिता है, सारा देश बंगाली समाज को, बंगाली जाति को, हम लोग को जो सम्मान पहले करता था उसको हम लोग वापस चाहते हैं.
5: मुख्यमंत्री आप चाहते हैं कौन मुख्यमंत्री हो.
6: मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा. हम लोग सभी हम लोग का सम्माननीय केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री जी आएंगे.
5: अधिकारी जी का नाम सबसे आगे चल रहा है कि आपकी इच्छा
6: है. अभी ये सब आप लोग का बना बनाया हुआ है, पार्टी का सभी सदस्य मिलके वहाँ पर हम लोग तय करेंगे. हम लोग का सम्माननीय उड़ीसा का सीएम साहब भी आ रहा है, सभी बैठ के हम लोग बातचीत करके तय करेंगे. ये अभी कोई अभी कुछ तय नहीं हुआ, उसी का लिए ही बैठक बुलाया गया.
5: तो ये अमूमन होता है श्वेता, जब भी नव निर्वाचित विधायकों से आप पूछेंगे कि किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं तो वो तुरंत, ये लाजमी है भी कि पार्टी नेतृत्व जो है वो तो वो तय करता है, लेकिन सबके मन में कोई ना कोई नाम जरूर होता है। शुभेंदु अधिकारी को लेकर चर्चाएं बहुत चल रही है और आप देखिए यहाँ पर कैसे यहाँ पर लाइन से जो है विधायक है और आप और विधायक जो है चंद्रशेखर जी है यहाँ पर। सर कहाँ से आप जीतते हैं?
7: दुर्गापुर पूर्व विधानसभा।
5: कैसा लग रहा है आपको?
7: बहुत अच्छा फील हो रहा है।
5: बीजेपी का अंगोछा पहने और यहाँ पर आप टीका लगाए आए हुए हैं, आप सबके मन में क्या भाव है आज बीजेपी का मुख्यमंत्री?
7: ये वो तो पार्टी तय करेगा, हम लोग विधायक दलों का बैठक है, उस बैठक में हम लोग आए हैं और ये पार्टी तय करेगा, लेकिन हम लोगों को जिसमें खुशी है, यहाँ हमारा बंगाल में हिंदुओं का गवर्नमेंट बना और हिंदू लोग खुशहाल रहेगा और बंगाल का विकास होगा।
5: अच्छा, ये कई नेताओं से सुन रहा हूँ कि हिंदुओं की सरकार बन गई, क्यों ऐसा क्या हुआ कि अब आपको लग रहा है हिंदुओं की सरकार बन गई, पहले क्या नहीं थी?
7: इस बार तो हम लोग जहाँ से खड़ा हुए हैं, सोच लीजिए एक बूथ है जो संख्यालघु बूथ, उसमें 1000 वोटर है, तो उसमें से 980 वोट टीएमसी को मिला। हाँ, तो 2 वोट हमको मिला है, तो क्यों हम नहीं बोलेंगे हिंदुओं का एमएलए?
5: उसमें 1000 कितने
7: 980 पोल हुआ, 970 मिला टीएमसी को,
5: 30 मिला
7: नहीं नहीं हमको एक भी नहीं मिला।
5: आपको एक भी नहीं
7: मिला, हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम जो हिंदू बूथ है उसमें से ही जीते हैं।
5: तो आप हिंदुओं की सरकार है ऐसा क्या?
7: हाँ,
5: तो इस तरह की भावना भी है श्वेता, क्योंकि ये एक मुद्दा भी रहा चुनाव के दौरान और लगातार विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जब उनको वो आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। स्वागत हो गया सर? सरपंच
8: हो गया,
5: चंदन लग गया,
8: टीका चंदन लग गया।
5: कैसा लग रहा है टीका चंदन?
8: ये टीका तो लगा है बंगाल का, लोगों का घर घर का, लोगों में हर एक लोगों का टीका लगा रहा, विजय तिलक और मन में उसका लगे कुछ हुआ है, सरकार का परिवर्तन हुआ, सबको सुविधा मिले। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तो अच्छा कैसे लगेगा, इसलिए हमको इंतजार करना पड़ेगा नया मुख्यमंत्री का ऐलान।
5: जीत कर आए
8: हम वीरभूम का रामपुरहाट है, तारा माँ का जो क्षेत्र है ना, वहाँ के हम है।
5: वहाँ पर क्या स्थिति थी, क्या तृणमूल कांग्रेस हारा कि कौन वाम कौन हारा?
8: ओ तृणमूल, पांच बार का तृणमूल का एमएलए जो उसको हम हराया है।
5: क्या स्थिति, किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा? वहाँ
8: दुर्नीति है, करप्शन है, विकास रुक गया था, इसको ऐसा करके हम जीते हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए जीते हैं,
5: न्याय दिलाने के लिए जीते हैं। और ये इस तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ही कोई विधायक यहाँ पर आते हैं श्वेता, तो उनका स्वागत सम्मान यहाँ पर किया जाता है, अंगोछा पहनाया जाता है, उनको टीका लगाया जाता है और फिर वो आगे विधायक दल की बैठक के लिए आगे बढ़ते हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं नजारा ऐसा है कि चेहरे पर मुस्कान और कहीं ना कहीं
0: कई इनमें से ऐसे होंगे जो पहली बार एक विधायक बने हैं, पहली बार वहां विधानसभा पहुंचेंगे और उन्हें भी मालूम है कि एक अगर इतना बड़ा मैंडेट होता है गौतम दा, तो वो पब्लिक बहुत सारी अपेक्षाएं आपसे कर रही है। अब जैसे आशुतोष जी ने कहा कि एक आउटसाइडर को नहीं बनाना चाहिए, हालांकि हम बगल के ही राज्य असम में देख रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं और हैट्रिक लगा दी है उन्होंने, और कई नेता तो ये भी कहते हैं कि उनसे वो जितने बीजेपी
2: बने थे श्वेता, पहले
0: सर्बानंद सोनोवाल बने थे और वहां पर मतलब ये उनको हटाया गया, हेमंत बिस्व शर्मा को लाया गया और पार्टी के भीतर ऐसा नहीं है कि कोई ऑपोजिशन उस बात का हुआ। आज अगर शुभेंदु अधिकारी को हम देख रहे हैं, फॉर दैट मैटर अग्निमित्रा पॉल को अगर हम देख रहे हैं, तो वो भी 2019 में शामिल हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबसे मुखर चेहरा हो गई थी।
9: नहीं, एकदम बिल्कुल सही बात, भले ही कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन शुभेंदु अपने आप को भाजपा का चेहरा बना लिया, लोग देख भी लिया, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य होगा अगर शुभेंदु नहीं हुआ तो, बाहर का भले ही हो। लेकिन साथ साथ बीजेपी का जो मैंडेट इस बार है, मैंडेट को मुझे लगता है कि एनालाइज करने के बाद ही कैबिनेट या डिप्टी सीएम हो सकता है। महिला का सबसे बड़ा जो मतदा जो ममता को करते थे, इस बार वो टूट के भाजपा का तरफ उसको उलझन दिखा दिया, इसलिए दूसरी बार है महिला अत्याचार, जिसका चेहरा बन गया था अभय का माँ, है ना। दूसरी बात है आदिवासी जंगल मोहल, जहां पर प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाया, तो जो इस तरह से देखेंगे तो देखिए दिलीप घोष तो आते हैं जादव कम्युनिटी से, सदगप प्रचारक भी है, उसी एरिया से आते हैं, उनको भी हो सकता है कि मैं नहीं बोल रहा, लेकिन इस बार चेहरा बन गया, सबने मान भी लिया, देख लिया कि शुभेंदु ही चेहरा है। बाकी कोई महिला होंगे, कोई आदिवासी से कोई हो, सबसे बड़ा शिकायत है नॉर्थ बंगाल का। पिछले 2021 में नॉर्थ बंगाल ही बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट दिया था, एमपी भी दिया था, वहां से जो मंत्री भी बने। मुझे उम्मीद है कि शायद निश्चित जो वहां का जो स्वराष्ट्र गृह मंत्री का बने थे कि केंद्र में, संभावना है वो यहाँ पे आ सकता है। नॉर्थ बंगाल को एक चाहिए, नॉर्थ बंगाल हो कि खास तौर पे वहां पे जो राजवंशी है, आदिवासी है, कभी कोई गोरखा मंत्री बहुत दिन नहीं बना,
0: नहीं वहां बना। पर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट,
9: स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, सारे सीट जीता इस बार।
0: हाँ।
9: सारे सीट जीता,
0: इससे पहले भी जब मतलब सबसे हाँ, पहला इनरोड्स हाँ, तो वहीं पर।
9: ये जो
0: आपको लग रहा है रत्ना देवनाथ भी बन सकती हैं, उनको भी हो सकता है जगह दिया जाए।
9: नहीं, वो बनने से देखिए मुझे लग रहा है कि इट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि वो चेहरा था महिला अत्याचार का सिंबल बन गया था, है ना। वो वोट भी मिला, जीत भी गया, आप जितना आलोचना जो भी कर रहे, लेकिन वो हो सकता है कि पॉलिटिक्स में उसका कोई ज्ञान नहीं है, पहली बार आ रहा है। इसे कोई अग्निमित्र पाल डेफिनेटली बहुत ही एलिटिस्ट महिला क्लब में हाँ। माना जाता है, क्योंकि फैशन डिजाइनर रहा है, बॉलीवुड का सारे फिल्म उसको ड्रेस, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का ड्रेस वो बनाते थे, उसका अपना एक कंपनी भी है जो फेमस है ब्रांड, तो उस तरह का जो महिला वो तो चला है, क्योंकि एक सोसाइटी के लिए मैसेज जाएगा, लेकिन गरीब दलित पिछड़ा के लिए जो मैसेज देना है वहां से किसी को आना है, किसी को आना पड़ेगा, किस पोस्ट में आएगा मुझे पता नहीं
0: हाँ।
9: लेकिन ये तभी मैंडेट को आप रिस्पेक्ट करना,
0: डिसीजन तो उस बैठक हाँ। में जाकर ही लिया जाएगा, विधायकों के तरफ से होगा, लेकिन ये जो तय हो चुका है वो आपको बता दें, बंगाल में कल सुबह 11 बजे शपथ समारोह होने वाला है ब्रिगेड ग्राउंड, जो बहुत ही सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इसीलिए क्योंकि जब विपक्षी एकता की भी बात हुई थी और ममता बनर्जी ने उसकी अगुवाई की थी, तो उसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मंच पर विपक्षी एकता की वो तस्वीर बनी थी, जब सब एक साथ हाथ पकड़कर खड़े हुए थे वहां पश्चिम बंगाल में, और तब ऐसा लगा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को सबसे बड़ी चुनौती मुमकिन है वहां से निकलने वाली थी। लेकिन वो दिन, आज का दिन, जब पश्चिम बंगाल में ही भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपनी सरकार बनाने वाली है, हमारी यह विशेष पेशकश जारी है, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी कोलकाता में, अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, in association with
11: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
13: Thank God I get to wait.
12: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
11: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
10: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
11: Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
13: Thank God I get to wait.
12: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
14: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

0: पश्चिम बंगाल के नतीजे आए, चुनावी संघर्ष खत्म हुआ, सत्ता बदली तो जमीन पर खूनी जंग शुरू हो गई। कहीं पत्थर चले, कहीं दफ्तर में आगजनी हुई, कहीं बम बरसाए गए तो कहीं पर गोलियां चली। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या से यह हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। बीते चार दिनों से पश्चिम बंगाल के कई इलाके हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। उपद्रव बेहिसाब है और हालात बेहद खराब। अभी शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की जांच चल ही रही है। इस बीच उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मार दी गई। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में विजय जुलूस के दौरान बुलडोजर से एक दुकान और टीएमसी कार्यालय तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लेनिन की मूर्ति भी तोड़ दी गई। हावड़ा, आसनसोल, कस्बा, टॉलीगंज, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में टीएमसी के कार्यालयों पर हमले हुए। आसनसोल के रानीगंज, बर्दपुर और बाराबनी क्षेत्र में टीएमसी कार्यालयों के बोर्ड हटाकर उन्हें भगवा रंग से रंगने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कोलकाता के बेलियाघाटा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक का शव उनके घर के बाहर मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर ले गए और पीट पीट कर हत्या कर दी। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली और नजत इलाके में उपद्रवियों ने पुलिस और केंद्रीय बलों पर भी गोलीबारी की। इस हमले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के जवान घायल हुए। इलाके से बम से भरे बैग बरामद किए गए। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में हिंसा फैलाकर डर का माहौल बना रही है। उनका दावा है कि पार्टी के सैकड़ों कार्यालयों और नेताओं के घरों पर हमले हुए। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंसा फैलाने वाले टीएमसी समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के वेश में उपद्रव कर रहे हैं।
1: ये प्री प्लान्ड है, आपने हमें बताया, इट इज ए कोल्ड ब्लडेड प्लान मर्डर।
0: चुनावी नतीजों के बाद से पश्चिम बंगाल में उपद्रव जारी है, तनाव बना हुआ है। हिंसा पर काबू पाना प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। आज तक ब्यूरो।

थोड़ी देर में बंगाल में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। कोलकाता पहुंचे पर्यवेक्षक अमित शाह। सूत्रों के अनुसार एक महिला समेत दो डिप्टी सीएम होंगे। मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे। बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। हावड़ा के शिवपुर में चले बम। धार्मिक नारे लगा रहे थे उपद्रवी। शुभेंदु के पीए के हत्यारों की बाइक बरामद, लेकिन नहीं मिले कातिल। शूटर्स के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ फरार होने का शक। तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस बरकरार। एनडीए से अलग होने पर विचार कर रही है एआईएडीएमके। टीवीके को समर्थन देने पर लेफ्ट। वीसीके की मीटिंग, ममता स्टालिन की फोटो के साथ। अखिलेश का कांग्रेस पर तंज, लिखा हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। पटना में प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर TRE4 कैंडिडेट्स का हल्ला बोल। अरब के आसमान पर फिर बारूदी धुआं। ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें। ईरानी बंदरगाहों पर अटैक के बाद हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले। ट्रंप की धमकी, डील नहीं हुई तो तबाह कर देंगे। डिस्ट्रॉयर के सुरक्षित होने का दावा।

0: मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ लंबी ग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
1: हमार रेकॉर्ड करे रखूं नाम, भवानीपुरे हराबू।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बंगाल का बॉस कौन, इस पर हमारी नजर है आज तक पर हर खबर। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ये मेगा कवरेज जारी है कोलकाता में, चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात हैं। आज बंगाल की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि अब से कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अमित शाह का बी यानी बंगाल प्लान क्या है, सब कुछ थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान पर शपथ ग्रहण होगा। इतिहास में पहली बार बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और ये मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी पर सभी की नजरें हैं। सबसे पहले आज तक पर ही आपको पता चलेगा कि बंगाल का ताज किसके सिर पर सजने वाला है। जो सभी विधायक हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो सब विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। क्या शुभेंदु अधिकारी, जिन पर सबसे अधिक दांव सब लगा रहे हैं कि वही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे, वही चेहरा रहेगा, या फिर कोई सरप्राइज हो सकता है। मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की यह बैठक है। 206 विधायक चुनकर भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, जिनमें से दो सीटों पर तो शुभेंदु अधिकारी ही है। नंदीग्राम सीट भी जीते और भवानीपुर भी वो जीते हैं। अमित शाह कोलकाता पहुंचे, पूजा अर्चना वहां पर की है उन्होंने। कल 11 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। न्योता जा चुका है सबको, जो विधायक हैं उन्हें वीआईपी न्योता है, लेकिन चूंकि जो ब्रिगेड ग्राउंड है उसका आकार बड़ा है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं जब भी, न केवल रैलियों के लिए बल्कि इस तरह के शपथ ग्रहण के लिए भी। एक ऐसी जगह रहती है जहां पर कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं। वहां की तैयारियां भी हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जहां पर बांस बल्लियां बांधी जा रही हैं और इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है। वहां क्या तैयारियां हैं सबसे पहले आपको वही दिखा देते हैं।
1: 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का शानदार प्रदर्शन, फिर भारी बहुमत से जीत और अब बारी है सरकार गठन की। 9 मई ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि समारोह को लेकर जोरों से यहाँ पर तैयारी की चल रही है और कहा जा सकता है युद्धकालीन तत्परता से यहाँ पर इस समय जो टेंट्स है वो लगाए जा रहे हैं और यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि लाखों की तादाद में आम जनता आ पहुंचेंगे। और क्यों ना हो, एक ऐतिहासिक जीत और ये एक ऐतिहासिक ग्राउंड ब्रिगेड परेड ग्राउंड। यहां देख सकते हैं कि लगातार यहां पिछले 2 दिनों से वॉर फुटिंग पर काम चल रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां आकर इलाके का मुआयना कर रहे हैं। हालांकि इस समय इस पूरे ग्राउंड की जो सिक्योरिटी है वो एसपीजी के पास चली गई है और यहां पर जो सिक्योरिटी बंदोबस्त है उसे भी पुख्ता किया गया है। कहा जा रहा है कि कई सारे बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे, रहेंगे। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, साथ में गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेता भाजपा के, जिसमें पश्चिम बंगाल के भी बड़े नेता लोग शामिल रहेंगे। यहां तमाम जो विधायक जो जीत दर्ज किए हैं वो भी यहां पर मौजूद होंगे और ये पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह है तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद रहेंगे, यहाँ पर राज्यपाल भी आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है वो तकरीबन 10 बजे के आसपास शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको बाहर का चित्र दिखाता हूँ। यहाँ पर इस समय जिस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है कि लगभग यहाँ पर गाड़ी चलना मुश्किल हो गया है और ये बताया जा रहा है कि कल ये इस रास्ते पे जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसे पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और सिर्फ मीडिया के लोग और कुछ खास जो मेहमान हैं उन्हें इन इलाकों से एंट्री करने दिया जाएगा। बाकी आम जनताओं के लिए अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं जहां से वो जाएंगे।
0: तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने दो संवाददाताओं के पास। पीयूष मिश्रा हमारे साथ विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर से जुड़ रहे हैं और अनुपम मिश्र हैं इस समय नोवोटेल होटल पर, जहां पर अनुपम, अमित शाह क्या वहां से निकल चुके हैं? हालांकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है इन दोनों जगहों में। अनुपम, मैं आती हूं आपके पास
2: जी। इस वक्त मैं आपको
0: पीयूष पीयूष के जी पीयूष आपके साथ कुछ खास मेहमान है जी।
3: जी जी बिल्कुल, मेरे साथ जो असीम सरकार है, बीजेपी विधायक है और पिछले काफी लंबे समय से जो है वो संघर्ष करते रहे कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर आ जाए। सर, आप बंगाली कल्चर, बंगाली गीत और बंगाली खाना तीनों को लेकर आप लोगों के बीच में जाते रहे और आज बीजेपी की सरकार आई है। आप, मैंने आपको कई जगह देखा, आप भजन कीर्तन भी करते रहे। आज आपके भजन के माध्यम से जो आज माहौल है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको आप किस तरह से प्रख्यात करेंगे?
4: देखिए, ये एक तालिबानी उग्रपंथी सरकार था यहाँ पर ममता बनर्जी को नेतृत्व थी। वो तालिबानी सरकार को हमारा जनता जनार्दन, बंगाल का जनता जनार्दन को विसर्जन दे दिया। अभी राम राजत्व आ गया ना, वो खुशी से हम गाता है, हरदम कहियो भैया राम जी को नाम, हरदम कहियो भैया राम जी को नाम, जरूर मिलेगी तेरी दिल में आराम, जरूर मिलेगी तेरी दिल में आराम, हरदम कहियो भैया राम जी को नाम। आज बहुत खुशी का दिन है, ये राम राजत्व आज बंगाल में प्रतिष्ठित होता है, उसीलिए हमारा बहुत खुशी का दिन है। बहुत लड़ाई दिया ये दीदी को हटाने को लिए, दीदी को हटाने को लिए नहीं, दीदी का जो बीच में उग्रपंथी का और वो ऊपर बंगला जमात इस्लाम को जे दिल में हमारा स्थान कर दिया था ना, उसलिए उसको हटाने के लिए हमारा लड़ाई।
3: श्रीराम के अलावा जय माँ काली भी हमने देखा बीजेपी कार्यकर्ताओं को नारे लगाते हुए, माँ काली के लिए कोई एक भजन अगर आप
4: देखिए, जय माँ काली बोलो, जय माँ दुर्गा बोलो, जय बोलो ना ना, हमारा सनातन धर्म धर्म, ये सनातन धर्म में धर्म का गणतंत्र है, जो जिसको जो इच्छा वो नाम करो तुम, एक ही है सनातन में, एक ही है, लेकिन एक शक्ति मातृशक्ति काली दुर्गा और पितृशक्ति कृष्ण राम चैतन्य, ठीक है ना। এবার মাতৃশক্তি জেগেছে মমতা তাই ভেগে গিয়েছে, মাতৃশক্তি জেগেছে মমতা তাই ভেগে গিয়েছে, সবাই জয় কালী জয় দুর্গা বলে, জয় কালী জয় দুর্গা বলে আনন্দে নাচিতেছে, দিদিমণি ভেগে গিয়েছে।
3: असीम सरकार जो बीजेपी विधायक है, उन्होंने भजन के माध्यम से ये जरूर साबित कर दिया कि किस तरह की खुशी बीजेपी विधायकों के अंदर है। श्वेता, और भगवान राम को लेकर और माँ काली को लेकर उन्होंने दो प्यारे भजन हमारे सामने गाए और ये बताया कि आज बीजेपी के राज में कहीं ना कहीं विकास होगा, कहीं ना कहीं जो बात कही गई है बीजेपी के द्वारा उन सभी चीजों पर सरकार काम करेगी। और कुछ देर में विधायक दल की बैठक यहाँ पे शुरू होने वाली है और लगभग 2 से 3 घंटे में साफ हो जाएगा श्वेता कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री और बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है।
0: बस, और सारे विधायक जैसा आप दिखा रहे हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, लगभग मुझे लगता है विधायक तो पहुंच गए हैं, लेकिन अनुपम वही सवाल आपसे कि क्या अमित शाह वहां से निकल चुके हैं, होटल से वो निकल चुके हैं कन्वेंशन सेंटर के लिए?
5: जी, अमित शाह अभी भी नोवोटेल में ही है, मैं पीछे दिखाता हूं, पुलिस की एक्टिविटी थोड़ी अब बढ़ गई है, हो सकता है थोड़ी देर में अमित शाह यहां से निकले। अभी थोड़ी देर पहले भूपेंद्र यादव की का जो कॉन्वॉय है वो यहां से निकला है, यहां से ज्यादा दूरी नहीं है, 5 से 7 मिनट लगना चाहिए। जो कॉन्वॉय है अमित शाह का वो भीतर ही है। अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी, श्रमिक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल, ये सब लोग अभी भीतर हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ी देर में, चूंकि 3 बजे का समय दिया गया था और लगभग हो चुका है समय, ऐसे में बहुत ज्यादा देरी तो नहीं की जाएगी। हालांकि जो शेड्यूल था अमित शाह का वो थोड़ा लेट शुरू हुआ, क्योंकि कल रात में आने की बात थी, उसके बाद वो कल रात वो नहीं आए, वो आज दोपहर 11 बजे के आसपास पहुंचे, इसके बाद दक्षिणेश्वर मंदिर गए, तो यहां पर जो मीटिंग तय होनी थी 12 बजे से वो उसको शुरू होने में थोड़ा सा वक्त लगा, तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय ज्यादा लगे, क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी भीतर में। तो मेरे ख्याल से जो खबर आ रही है, भीतर से बैठक तो खत्म हो गई है और अब निकलने की तैयारी शुरू हो रही है, धीरे धीरे करके एक एक जो नेता है वो बाहर निकल रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी देर में अमित शाह यहां से बाहर निकले और कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे।
0: भूपेंद्र यादव जो कि प्रभारी थे इन महत्वपूर्ण चुनावों में, सह प्रभारी, उनके साथ त्रिपुरा के सीएम रहे, अब पूर्व त्रिपुरा के जो सीएम थे बिप्लव देव वो रहे, अब वो सब निकल चुके हैं। जैसा कि बिप्लव देव को कुछ देर पहले हमने देखा था कन्वेंशन सेंटर पे पहुंचते हुए, और अनुपम भी बता रहे हैं कि अब भूपेंद्र यादव निकल चुके हैं, लेकिन अब मुख्य तौर पर तो यहीं पर निर्णय होना है ना संगीत रागी जी, मुख्य तौर पर तो अमित शाह अगर वहां पर हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, अगर वहां पर श्रमिक भट्टाचार्य हैं, अग्निमित्रा पॉल हैं, तो एक तो एक ग्राउंड तैयार होकर पहुंचेंगे ना वहां पर।
6: देखिए विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें तो घोषणा होती है, ये सच्चाई बात तो यह है कि
7: पर्ची निकलती है।
6: नहीं नहीं, पर्ची हो जो भी हो, देखिए इस देश में हाई कमांड का कल्चर कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। जितने भी रीजनल छत्र थे, जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू थे, यहाँ पर टंडन जी थे, तो बड़े पंथ थे, तो उस समय जो है वो जवाहरलाल नेहरू की चलती नहीं थी। बट जब मिसेस गांधी सत्ता में आई,
0: आज भी तो, आप नेहरू तक जाकर ही उस बात
6: नहीं, नहीं, नहीं मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि भूमिका बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी हाई कमांड कल्चर जो हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसे अपनाया, इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और जो अमित शाह जी ने तय किया होगा जाकर के, उन्होंने बताया होगा कि भाई आप आम राय ऐसी आई है, निकल करके विधायकों से हमने बातें की है, आप लोगों की क्या लगता है। और उसमें एक स्वाभाविक तौर पर जो बड़े कंटेंडर्स होंगे, दिलीप घोष जी हैं, समीक भट्टाचार्य हैं, इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल है, शुभेंदु अधिकारी, इन्हीं लोगों के नाम चल रहा है, तो इस कोर कमिटी में ही वो तय हो जाएगा कि भाई किसको है, साथ में भूपेंद्र यादव वगैरह जो भी प्रभारी रहे होंगे वो सब मिल करके तय कर रहे होंगे नाम। और जो विधायक दल में होगा उसको किसी को कह दिया जाएगा,
0: कोई नाम
6: जैसे विजय कुमार सिन्हा को कह दिया गया था कि आप जाकर के प्रपोज कर दिए,
0: सम्राट चौधरी का नाम,
6: सबसे नाखुश वही थे, तो उन्हीं से कहा जाता ना कि सब जो मॉनिटर जो है वो सबसे ज्यादा तिकड़म,
0: यहां नाखुश भी होने की आपको गुंजाइश लग रही है।
6: देखिए अंदर से जो आंसू बोल रहे थे,
0: नहीं तो वही बोल रहे,
6: नहीं नहीं आंसू बोल रहे थे, तो उसमें देखिए कभी कभी तो ये लगता है ना, जब बड़ी पार्टी है और लोगों ने आरएसएस के प्रचारक के तौर पे, आरएसएस के एक्टिविस्ट के,
0: फैसला स्वीकार करना अलग चीज है, मुझे लगता है राजनीति में महत्वाकांक्षा तो होनी ही चाहिए।
7: जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लगा कि एक नया कल्चर आएगा और कांग्रेस के कल्चर को तिलांजलि दी जाएगी। वो कल्चर आज भी मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो केंद्र तय करता था, जो प्रधानमंत्री तय करते थे, वही बनता था, आज भी वही कल्चर है। भजनलाल शर्मा को जिस तरीके से नियुक्त किया गया, पर्ची जिस तरीके से दिखाई गई, तो सारे दुनिया के सामने है। मतलब क्या वो विधायक दल वाकई में अगर भजनलाल शर्मा को चुन सकता था? नहीं चुन सकता था। आज की तारीख में मेरा मानना यह है कि विधायक दल की बैठक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वाह होना चाहिए, जिसको विधायक चाहे बहुमत से उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कायदे से परंपरा यह होनी चाहिए। आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जब मुरारजी देसाई ने अपना स्टेक क्लेम किया तो लाल बहादुर शास्त्री उनके बीच में बाकायदा वोटिंग हुई।
0: पर यहाँ पर एक फर्क है ना, क्योंकि यहाँ पर गुटबाजी नहीं हुई उसके बाद। भजनलाल शर्मा भले बने लेकिन ऐसा नहीं, आप गहलोत और सचिन पायलट का दौर देख लीजिए,
6: वहां पर वही कह रहा हूँ। केरला के अंदर अभी आप देखिए, केरला के अंदर विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि हमें यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो मैं सिर्फ एमएलए रहूंगा।
0: ठीक है, ऐड कर लीजिए, फिर मारिया भी जुड़ चुकी हैं।
7: दो इसके कारण, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह कि जब इंदिरा गांधी थी तब कोई गुटबाजी नहीं थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। दूसरा, डेमोक्रेसी में गुटबाजी तो होनी ही चाहिए भाई। एक आदमी अगर दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, 3 डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसका तो सम्मान होना चाहिए। इसका मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है कम से कम। लेकिन जब जब केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री बहुत मजबूत होता है तो पार्टी के अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज आती
0: हैं। इसमें हो सकती है कि मतलब क्या सरकार चलाने पर फोकस होना चाहिए या सीएम बनने पर फोकस होना चाहिए।
6: बहुत जरूरी है, क्या यदि फेयर चुनाव होता तो राहुल गांधी अध्यक्ष बन सकते थे कभी?
0: अच्छा चलिए, वो
6: बन सकते थे क्या?
0: आगे निर्णय उसका हो जाएगा, लेकिन अभी हम
6: गांधी बन सकते।
0: मारिया शकील,
7: अगर चुनाव होता तो नरेंद्र
0: मोदी दिखाइए बाकी तस्वीरें, वहां पर नेताओं का पहुंचना जारी है।
8: जी यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच जाएंगे और तपस रॉय जी हमारे साथ यहाँ पर हैं और कहा जा रहा है कि शायद वो स्पीकर बन सकते हैं। तपस जी, कैसी जीत को, भाजपा की इस जीत को, आपके अपनी पार्टी की इस जीत को कैसे देखते हैं?
9: बहुत खुश है, क्योंकि ये तृणमूल को हरा के बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली मर्तबा सरकार कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं, और ममता को हार, हमको हम बहुत खुश है।
8: आप तो तृणमूल कांग्रेस से आए थे यहाँ?
9: हाँ, क्या है, बहुत सारे हैं कांग्रेस से भी तो तृणमूल में है, लेकिन तृणमूल तृणमूल जैसे स्कैम करप्शन और जो नौकरी बिका लॉलेसनेस हिंदुओं का ऊपर जो आक्रमण किए हैं हिंदू को गंदा धर्म जो बोले इसके बाद कोई रह सकता इस गंदा ये गंदा पार्टी के साथ
8: आप गंदा पार्टी बोल रहे हैं आप तृणमूल
9: हाँ गंदा पार्टी गंदा धर्म हो सकता बोल सकता ममता हम गंदा पार्टी नहीं बोल सकते हिंदू को गंदा धर्म बोल सकती है ममता
8: 48 घंटे में जितना हंगामा हुआ है पूरे बंगाल में
9: ये पहली मर्तबा ममता मुख्यमंत्री होने का बाद 13 साल से जितना भी चुनाव हुआ चाहे हो पंचायत हो चाहे हो कॉरपोरेशन हो म्यूनिसिपैलिटी हो चाहे हो उपचुनाव हो चाहे हो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो कोई भी चुनाव खून बगैर खून नहीं बहा ऐसा नहीं हुआ लाश नहीं गिरा ऐसा नहीं हुआ
8: ये मुख्यमंत्री बनेगा
9: मुख्यमंत्री बनेगा पार्टी जिसको तय करेगा
8: अभी पता चल जाएगा चलिए थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए तपस रॉय हमारे साथ थे श्वेता और ये देखिए इस तरह का बहुत सारी जगह यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है गेंदे के फूल से कमल हर जगह बना हुआ है और 207 कमल खिले हैं इस बार श्वेता तो इसलिए ये जो आज का दिन भी बहुत ही खास है भाजपा के लिए लेकिन उससे ज्यादा कल होगा क्योंकि कल 11 बजे ब्रिगेड ग्राउंड में कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह होगा अभी कुछ देर पहले भूपेंद्र यादव जो प्रभारी रहे हैं बंगाल के वो यहां पर पहुंच आ गए थे उसके अलावा अमित मालविया जो को इंचार्ज रहे हैं उसके अलावा सारे नेता यहां पर मौजूद हैं अभी कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह आ जाएंगे और मोहन मांझी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनके दोनों के बीच में जब उन लोगों के आने के बाद ही पूरा जो लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग है शुरू होगा लेकिन अगर आप देखिए पूरे ये कन्वेंशन सेंटर का माहौल एमएलएज आने लगे हैं जो विधायक चुने गए हैं भाजपा के सब यहां पर मौजूद हैं कुछ ही देर में ये लोग सब अब नीचे जाएंगे जहां पर कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग होगी और जैसा तपस रॉय ने कहा काफी ऐसे विधायक चुने गए हैं श्वेता जो तृणमूल कांग्रेस से आए थे भाजपा में उनको भाजपा ने टिकट दिया था लेकिन पिछले 5 साल में उन्होंने भाजपा के साथ काम किया है तो ये जीत काफी खास है उन लोगों के लिए भी और बीजेपी के लिए तो है ही
10: ये और दो महिलाओं के चेहरे हम दिखा रहे हैं एक अग्निमित्रा पॉल एक रूपा गांगुली दो चेहरे हम दिखा रहे हैं और ये अटकलें चल रही हैं कि इनको बड़ी जिम्मेदारियां नई सरकार जो गठन होता है जो विभागों का बंटवारा होता है उसमें मिल सकता है हालांकि एक संगीत रागी जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को इनवाइट गया है मुझे लगता है क्योंकि हमने उड़ीसा में भी देखा था वहां भी परंपरा और वहां तो आए थे वो तो अब क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ममता बनर्जी जो रिजाइन नहीं कर रही थी वो यहां पर आ सकती हैं लेकिन मुझे लगता है अभी मारिया से हमारा संपर्क कटा है
6: ममता बनर्जी को कोई देने गया होगा डर से या नहीं देने गया होगा या उनको पोस्ट से भेजा गया होगा क्या पता कि वो जिस प्रकार का उनका स्वभाव है
11: हिंदू अगर ओत ले रहे
6: पता नहीं उनको दौड़ा दे
11: सही बात
10: नहीं जो चीज देखिए हम यहाँ पर जो खासकर जो तृणमूल से आए हुए नेताओं का भी रुख हम देख रहे हैं चाहे वो नए नए इन चुनावों से पहले उन्होंने ज्वाइन किया हो या 5 साल पहले या 6 साल पहले मतलब वो 19 से साथ हो या मतलब अधिकांश नेता ऐसे हो जाते हैं और अधिकांश चेहरे ऐसे हो जाते हैं जो जिनका कोई ना कोई एक बैकग्राउंड रहा है जो बीजेपी का नहीं रहा है पर आज जब शमिक भट्टाचार्य हिंसा को देखने के बाद कहते हैं कि तृणमूलीकरण हम नहीं होने देंगे बीजेपी का तो उसको भी विपक्ष तोड़कर कहता है कि नहीं देखिए ये इशारा शुभेंदु पर कर रहे हैं जबकि उनका उस हिंसा के कल्चर पर इशारा रहा
11: नहीं वो तो बात सही है देखिए अभी जो आज जो स्थिति है इसमें तो तय होगा तय कर लिया होगा प्रधानमंत्री जी का साथ काल बैठक भी हो चुका है अमित शाह का इसे नाम तो तय है शायद उन्होंने बोला है कि इन्विटेशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री का नाम भी तय हो चुका है ऑलमोस्ट लगता है कि इसे अकेला एक मुख्यमंत्री नहीं हो रहा है दूसरी बात यह कि जो मैं कहा ना जरूर भाजपा ने एनालाइज किया है वर्डिक्ट को इस तरह से जैसे मैं एक सरप्राइज नाम मैं मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा हूँ जैसे विकास महतो कुर्मी से आते हैं जंगल महल 1 लाख ऊपर मार्जिन से जीता है ना तो उसको तो कुछ ना कुछ मिल सकता है क्योंकि वो कम्युनिटी बहुत दिन से बंगाल में मूवमेंट में थे शुभेंदु खुद है माहिष्य कम्युनिटी या कहता है कि वैष्णव ये पता नहीं एग्जैक्टली क्लासिकल ब्राह्मण तो है नहीं ठीक है तो ये जो है जो जैसे दिलीप घोष वो होता है ओबीसी कैटेगरी से ऊंची जात का अगर हिसाब से बंगाल में जात कभी दिखाई नहीं देता किसी को, जानते ही आज हम चर्चा कर रहे हैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि दिलीप घोष सदगप, लेकिन दिलीप घोष शायद बहुत लोगों को पता है कायस्थ हुआ, ऐसे ही है बंगाल में चर्चा नहीं होता है। लेकिन मैं इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो लग रहा है कि काल जो दिन तय किया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का 165वां जन्मदिन मनाया जाएगा उसी दिन बीजेपी ने भाजपा ने चुना, ये समीक भट्ट जो पहले बोला था अगर पार्टी मान लेते हैं तो हम चाहते हैं उसी दिन हो, तो ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट एक दिन है, एक मैसेज भी है। लेकिन हो सकता है कि जो ट्रेडिशनली वहां पे जो गाना फाना होता था उसी एरिया में वो शायद नहीं होगा सिक्योरिटी रीजन से, उसके लिए कुछ लोग कुछ आलोचना कर रहे हैं अलग बात है। दूसरा एक सिद्धांत मेरे को अच्छा लगा वो है कि शायद इसका सचिवालय होगा पुराना राइटर्स बिल्डिंग, नवान्न नहीं, इसलिए अभी शुभेंदु का ऑफिस होगा अगर वो मुख्यमंत्री होता है जो भी होगा, विधानसभा में उसका अभी सेक्रेटेरिएट होगा जब तक राइटर्स बिल्डिंग को संस्कार किया जाएगा, संस्कार का काम शुरू हो चुका है,
10: कई परिवर्तन तो ये देखने के लिए मिल सकते हैं।
11: अद्भुत एक दूसरी कारण जो है एक्चुअली नवान्न बना था वो मकान हावड़ा में जो हट है उसमें जो फूल बेचते हैं उनको शिफ्ट करने के लिए सीपीएम गवर्नमेंट बनाया था, लेकिन सीपीएम चला गया उसका ममता उसको लेके उसको बना दिया सेक्रेटरियट को, लाल रंग से उसका आपत्ति है। बंगाल में अब ये देखना है कि नील और सफेद रंग है ना, वही है स्टेट कलर
10: रंग
11: बन
10: गया भी बदला
11: था। अभी भगवा
10: रंग
11: स्टेट
10: भी बदल
11: कलर
10: सकता
11: होगा
10: है।
11: देखना
10: एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं लेकिन हमारी ये खास पेशकश जारी है, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, you're killing me.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
5: Presented by Patanjali Gai Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
6: In association with
7: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Your Saturday nights will never be the same.
12: The biggest hits back to back in the mix.
13: Get ready for the biggest mix show on the planet.
14: The Tailgate Block Party.
11: The Tailgate Block Party.
13: 6 hours nonstop. Nonstop.
14: The best DJs from around the world.
11: The Tailgate Block Party.
13: Saturday night,
11: 8 p.m. Eastern.
14: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
13: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
15: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
16: GK Max.
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: GK Max. Best putty.
18: JK Wall Max.
16: Best paint.
18: JK Max.
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग.
17: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
19: इसमें माइक्रोफाइबर है.
17: माइक्रोफाइबर यानी
19: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
17: हमारे सीमेंट में नहीं है.
19: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
20: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
6: In association with Hint,
5: बड़े आराम से समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
6: विमल, बोलो जुबां केसरी.
5: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक.
5: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी. वेयर आर यू?
21: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
22: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
23: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है. ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं, ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे. वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे. कैमरा पर्सन सत् थे राउत्र के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद।
1: तमिलनाडु में विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक जो जरूरी आंकड़े, जरूरी नंबर्स की बात हो रही थी, अब ये खबर आ रही है कि वीसीके की तरफ से और लेफ्ट की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है टीवीके को, यानी विजय की पार्टी को, और वहां पर सरकार गठन का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सीपीआई, सीपीएम और वीसीके टीवीके का समर्थन करेंगे। शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान हो सकता है। ये खबरें सामने आ रही हैं। अभी तक गवर्नर के पास दो बार जाकर विजय लौट आए थे क्योंकि उनके पास जरूरी आंकड़ा नहीं था, लेकिन अब 118 का आंकड़ा उनके पास है सीपीआई, सीपीएम, वीसीके के साथ आने के कारण। तो ये सारा जो नंबर्स है वो 118 का कुल आंकड़ा विजय की पार्टी को दे देता है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री बनने का रास्ता उनका मुमकिन है साफ हो जाए। प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। प्रमोद, अभी तक जितनी बातें हो रही थी बैक एंड फोर्थ की, क्या व्हाट्सएप पर कोशिश की जा रही है, नाराज भी हो गया वीसीके, लेकिन आखिरकार अब हम समझें कि सब सॉल्व हो चुका है। प्रमोद, आवाज आ रही है आपको?
2: हाँ जी, आवाज आ रही, बोलिए
1: जी। तो अब रास्ता साफ हो चुका है, सब जो जितनी इश्यूज थे वो सब सॉल्व हो चुके हैं
2: जी। ये तो एक सिंपल सिनेरियो था, जैसे कि उनके पास कांग्रेस ऑलरेडी चल गया और अभी उनका तो सिर्फ 6 MLA के लिए जरूरत था। अभी सीपीएम, सीपीआई और वीसीके का प्लान और डिस्कशन शुरू हो रही है। फिर भी आज शाम 5 बजे को वीसीके ने बोला कि उनका एक इंटरनल ऑनलाइन मीटिंग होने वाला है, पर सीपीएम और सीपीआई पहले उसकी पहले ही उन्होंने एक मीटिंग आज अराउंड 10 AM शुरू कर दिया। उन्होंने उनका सीपीआई का वर्किंग कमिटी मीटिंग था और सीपीएम का स्टेट लेवल कमिटी मीटिंग था, और ये दो मीटिंग पे विजय की टीवीके को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने फुल सपोर्ट दिए हुए हैं। पर इसके बाद इसको दिल्ली भेजना पड़ेगा और वहां से भी उनको परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फाइनल अनाउंसमेंट 4:30 जैसा अनाउंस करेंगे।
1: लेकिन क्योंकि हम एक तरफ ये भी देख रहे थे कि इस तरह की खबरें आने लगी कि क्या डीएमके, AIADMK भी एक साथ आ सकते हैं अगर उनको विजय को सत्ता से बाहर रखना हो, क्या ये चीजें भी प्ले कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी विजय को वो समर्थन मिले और वो सरकार बना सके वहां?
2: अगर ये 6 MLA का सपोर्ट उनको मिल गया तो जरूर वो विजय अभी भी 4:30 बजे को गवर्नर को मीट करने का वो अपॉइंटमेंट भी उन्होंने पूछा है। तो लाइक पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है कि अराउंड 4:30 अगर सीपीआई, सीपीएम और वीसीके ने उन्होंने अनाउंस किया हो, ऐसा फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया, तो वो विजय जरूर उनका इन्फॉर्मेशन गवर्नर को देकर वो बोल सकते हैं कि उनके पास 118 MLA है, और उसके बाद कल ही वो ये ओथ टेकिंग सेरेमनी भी उनका होने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। पर फाइनल डिसीजन आज सीपीआई और सीपीएम 4:30 को अनाउंस कर रहे हैं।
1: बहुत शुक्रिया प्रमोद माधवन, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि सीपीआई, सीपीएम, वीसीके ये दो दो चार चार जहां से भी विधायक मिल रहे हैं वो सब जोड़कर 118 का आंकड़ा सबसे महत्वपूर्ण तमिलनाडु में, ताकि विजय वहां पर मुख्यमंत्री बन सके। कांग्रेस की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका था कि डीएमके के साथ नहीं, बल्कि अब वो यहां पर तमिलनाडु में वो विजय के साथ अपनी राजनीति आगे करेंगे। तो जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, विजय मुलाकात का समय मांग चुके हैं वहां पर गवर्नर से, 118 का आंकड़ा, वो नाम सामने रहेंगे, तो जल्द ही तमिलनाडु के भी नए मुख्यमंत्री का चेहरा सबके सामने होगा। लेकिन बंगाल के नए मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के लिए इस समय बैठक की शुरुआत होनी है, बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, अधिकांश विधायक पहुंच चुके हैं, लेकिन अमित शाह के साथ भी बंगाल बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की बातचीत चल रही है, उन सबके बैठक की जगह पर पहुंचने की प्रतीक्षा हो रही है। बैठक में बंगाल के नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले ही जो कल शपथ ग्रहण है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कोलकाता के, वहां का इन्विटेशंस जारी हो चुका है, वहां के इन्विटेशंस जा चुके हैं। सुबह 11 बजे वहां पर वो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह, ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन यहां जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विधायकों के बैठक के लिए, ये तैयारियां जहां पर सभी विधायकों को ये आई कार्ड्स आप देख रहे थे उनके, उनका स्वागत बड़े पारंपरिक अंदाज में चल रहा था। पीयूष हमारे साथ तूसी कन्वेंशन सेंटर से जुड़े हुए हैं, अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मारिया शकील जुड़ी हुई हैं। पीयूष बताएं क्या इस समय की स्थिति है वहां पर?
3: जी बिल्कुल श्वेता, धीरे धीरे करके सभी विधायक कन्वेंशन सेंटर पहुंच रहे हैं और कुछ देर में गृहमंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच जाएंगे। और मैं आपको एक बार तस्वीरें पे दिखा दूं कि यहां पर तैयारियां कैसे चल रही है। देखिए यहां पर जब विधायक आते हैं, यहां पर जैसी एंट्री होती है तो उनका उनकी पूरी चेकिंग होती है। यहाँ पर एक ढाक जो बहुत फेमस यहाँ पर है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो यहाँ पर बजाया जा रहा है। सभी विधायकों का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है नव निर्वाचित विधायक दल बैठक और बांग्ला में लिखा हुआ है। तो इस तरह का माहौल इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में है और कुछ देर में और नेता भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, अमित मालवीय, विप्लव देव, ये कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो कुछ देर पहले मीटिंग में मौजूद थे गृहमंत्री अमित शाह के साथ, वो पहुंच चुके हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जो गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर गए थे, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए और उन्हीं के साथ साथ श्रमिक भट्टाचार्य भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो धीरे धीरे करके जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी जो वरिष्ठतम नेता है बीजेपी के उनको यहाँ पर पहुंचना बाकी है। धीरे धीरे विधायकों का आना भी लगातार जारी है। देखिए कैसे जो राजू बिस्ता दार्जिलिंग से सांसद है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी विधायक जो है अंदर जाकर जो बेसमेंट में कन्वेंशन सेंटर का जो बेसमेंट है वहां पर जो मीटिंग हो रही है वहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर में विधायक की बैठक भी शुरू हो जाएगी श्वेता। और लगभग एक से डेढ़ घंटे में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने वाला है और अगला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का कौन होने वाला है, उसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो भी जोर शोरों से चल रही है।
1: इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, अगर शुभेंदु अधिकारी के नाम, अच्छा इंद्रजीत अभी नहीं है हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन पीयूष क्या शुभेंदु अधिकारी के नाम के ऐलान के रास्ते में कुछ अड़चन भी आपको दिख रही है? क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं इस बात को इस समय चाहे? क्या मान मनोवल की बात हो सकती है या फिर एक बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें कि इतना समय लग रहा है कि आप निर्णय लेना चाहते हैं उन सारी चीजों को सोच समझ कर?
3: अभी तक की परिस्थिति के हिसाब से श्वेता इसमें कोई दोहराए नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर है। उसका कारण यह भी है कि वो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, सभी विधायकों की पसंद भी है। हालांकि कैमरे पर कोई नहीं बोला, लेकिन कैमरा हटाते जब हम सुनते हैं तो उनके मुंह से सीधा शुभेंदु अधिकारी निकल के सामने आता है। तो जो विधायकों की पसंद वो ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन क्या होने वाला है वो कुछ देर में साफ हो जाएगा। आज शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें तो दो जगह तो ममता बनर्जी को हरा ही चुके हैं, साथ साथ पिछले काफी लंबे समय से वो यहाँ पर पार्टी में काम भी करते रहे और एग्रेसिव पॉलिटिक्स दरअसल राजनीतिक हिंसा एक बड़ा हिस्सा रहा है यहाँ की राजनीति का। उस राजनीतिक हिंसा का जवाब भी शुभेंदु अधिकारी ने दिया है और अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो हर जगह खड़े रहे। तो फिलहाल की इस परिस्थिति के सामने शुभेंदु अधिकारी लेकिन श्वेता आपने और हमने वो चुनाव भी कवर किए और इस तरह की बैठक भी कवर की है जहाँ पर नाम किसी का चलता है लेकिन नाम बाद में फाइनल किसी और का आता है। दिल्ली की बात करें राजू बिस्ता हमारे साथ हैं, राजू बिस्ता सही समझ लेते हैं, फिलहाल वो अंदर जा रहे हैं, हालांकि वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने वो विधायक की बैठक में वो देखा है कि नाम किसी का चलता है लेकिन फाइनल नाम किसी और का आता है। दिल्ली की मैं आपको बात बताऊँ, परमेश वर्मा सबसे आगे चल रहे थे, हालांकि कुछ नेताओं ने उनकी बैठक हुई थी जिसमें उनको ये पता भी दिया गया था कि वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? रेखा गुप्ता। बीजेपी वो पार्टी है जो सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है। अभी फिलहाल शुभेंदु अधिकारी के नाम सबसे आगे चल रहा है, हो सकता है कि कोई और हो जाए, अगले में प्रभाव हो सकती है। उसका कारण ये है कि पिछले काफी लंबे समय से महिला एक मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में राज किया तो महिलाओं ने जिस तरह समर्थन भी बीजेपी को दिया है उसको देखते हुए प्रभाव का नाम सबसे आगे चल रहा है तो वो मुख्यमंत्री
1: ये संभावित नाम हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बाकी स्टेट से यहाँ पर एक फर्क ये हो जा रहा है अनुपम कि भले ही बाकी जगहों पर मीडिया में अटकलें चलती हूं लेकिन शुभेंदु अधिकारी वो चेहरा है जो हर एक मंच पर जाकर पूरे पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे और मुख्य रूप से पब्लिक में परसेप्शन ये जा रहा था कि ये चेहरा है, ये चेहरा हो सकते हैं। क्या ये चीज उनके फेवर में जा सकती है?
4: देखिए शुभेंदु, अधिकारी के पक्ष में कई सारी ऐसी बातें जा रही हैं जो उनको सबसे दौड़ में सबसे आगे रख रही हैं। उसमें से सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर से हराना, और एक बार नहीं दो बार सिटिंग सीएम को हराने का जो कारनामा है वो शुभेंदु अधिकारी ने कर दिखाया। सिर्फ ये एक बात है। दूसरी बात है जो उनका इलाका है पूर्व मिदनापुर, और इसके बाद जो जंगल महल का इलाका है 2021 से 2026 तक पूरा उनके कंट्रोल में रहा है। जो एमएलएज सेलेक्ट किए गए वो उनके द्वारा ही मतलब ज्यादातर सेलेक्ट किए गए। पूर्वी मिदनापुर तो पूरा का पूरा उन्होंने ही सेलेक्ट किया था। इसके अलावा जंगल महल की जो चार जिले हैं बांकुड़ा, झारखंड, पुरुलिया और पश्चिम मिदनापुर, ये चारों जिलों भी उनके अंतर्गत थे। यही यहां पर भी उन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार किया। और आप देखिए जंगल महल और पूर्वी मिदनापुर में बहुत अच्छा रिजल्ट बीजेपी का हुआ है। मतलब 54 में से 48 सीटों से ज्यादा हासिल करना जंगल महल में ये बड़ी बात है। इसके अलावा पूर्व मिदनापुर की 14-15 सीटें हासिल करना, तो ऐसे में बहुत बड़ा चंक उनके हिस्से में आता है। जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है उसमें एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पक्ष में थी, उनके लिए थी। तो ऐसे में ये सारी बातें। दूसरी बात, जैसे कि आप बता रही थी कि हमने देखा भी कि चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने पूरा बंगाल का दौरा किया। ये देखिए कॉन्वॉय रेडी हो गया है और अमित शाह अब निकलने वाले हैं। होटल नोवोटेल से सीधा आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कॉन्वॉय अब बाहर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह, श्रमिक भट्टाचार्य सब भीतर थे, मीटिंग चल रही थी। अब ये कॉन्वॉय बाहर की ओर निकल रहा है। देखिए ये पायलट कार पहले निकली है और इसमें ये देखिए ये दूसरी गाड़ी निकली, सुकांतो मजुमदार। ये दूसरी गाड़ी लिखा हुआ है सुकांतो मजुमदार, सुकांतो मजुमदार भी निकल गए। अब देखने वाली बात है कि अमित शाह कितनी देर में निकल रहे हैं। ये एक काफिला अभी निकला, तो अब मुझे लगता है कि यहां से निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अहम किरदार थे बंगाल बीजेपी के, जो सबसे बड़े चेहरे थे शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजुमदार, श्रमिक भट्टाचार्य, ये सब भीतर थे और मीटिंग खत्म होने के बाद अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं। सुकांत मजुमदार अब बाहर निकले हैं और जो मेन कॉन्वॉय है, जो अमित शाह का कॉन्वॉय है, काफिला है, वो अभी भीतर ही खड़ा हुआ है। तो उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ी देर में अमित शाह का काफिला भी यहां से कन्वेंशन सेंटर के लिए निकलेगा। और एक आपको बता दूं कि वहां पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए मुझे जो लग रहा है, क्योंकि सब कुछ तय ही माना जा रहा है। जो भीतर से बात सामने आ रही है, दिल्ली से ही बात तय हो चुकी है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यहां पर घोषणा करने की बात है। हालांकि जितने भी 206 विधायक यहां पहुंचेंगे, 207 सीटें जीती थी पर 206 विधायक हैं जो यहां पर रहेंगे, उनका थोड़ा सा पहले मन टटोला जाएगा। जो जीत हासिल हुई है, एक ऐतिहासिक जीत है, उस पर बधाई संदेश दिए जाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी अमित शाह नोवोटेल में ही हैं, यहां से अभी वो निकले नहीं है, बस थोड़ी देर में वो यहां से निकलेंगे। लेकिन बाकी जो नेता हैं, जो मीटिंग खत्म हो चुकी है, बाकी जो नेता थे वो धीरे धीरे, इससे पहले भूपेंद्र यादव निकले, तो अब सुकांत मजुमदार निकल गए हैं, भीतर में शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं, तो ये अभी धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे। तो ऐसे में वो जो वक्त है, वो जो सस्पेंस का वक्त है, वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है।
1: ये सस्पेंस कम होता नजर आ रहा है, लगभग तय हो चुका है कि कौन बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। और इसमें बहुत सारी चीजें मारिया जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में जा रही हैं। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि एक बहुत ही यंग एज प्रोफाइल उन सभी नेताओं का, जिन चेहरों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी भी लगभग 55 साल उनकी उम्र है। अभी सुकांतो मजुमदार को हमने देखा, वो भी 45-46 साल की उम्र के आसपास आते हैं। अब कई इनमें से केंद्र में अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहां पर बंगाल का चेहरा बने हुए हैं। लेकिन आज बंगाल को अपना चेहरा मिलेगा कि कौन बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री उनका होने वाला है। मारिया
5: जी, बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। और जहां पर अभी अनुपम है, वहां से जहां पर मैं हूं, विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर लगभग डिस्टेंस है 5 मिनट्स का, 5 से ज्यादा मिनट नहीं लगेगा। तो अमित शाह जैसे ही चलेंगे, तब तक यहां पर सारे एमएलएज कन्वेंशन सेंटर में बैठ चुके होंगे। आपने चर्चा की श्वेता, शुभेंदु अधिकारी के यंग है युवा चेहरा है, लेकिन अगर उनका नाम आज फाइनली अनाउंस होता है श्वेता, तो इसका मतलब ये भी होगा कि भाजपा में बहुत सारे इम्पोर्टेड चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं और उन्होंने आकर भाजपा में अपनी पहचान बनाई और अपनी पैठ भी बनाई। अगर आप देखिए, याद होगा कि जैसे हिमंता बिस्वा सरमा कांग्रेस से आए, सम्राट चौधरी की पूरी पॉलिटिक्स आरजेडी और जेडीयू की रही, और अब शुभेंदु अधिकारी ममता के किसी जमाने में सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले, 2006-2007 में जब नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन चल रहा था तो ये कहा जाता है कि अधिकारी परिवार उसके आर्किटेक्ट थे, और आज शुभेंदु अधिकारी का नाम अनाउंस होगा और कल वो ओथ लेंगे। क्योंकि अगर हम दिखाएं आपको ये जो कन्वेंशन सेंटर है श्वेता, और कैमरा अगर पैन होकर जाएगा के देखिए, जो एमएलएज हैं, जो नए चुने गए एमएलएज हैं, वो सब आने लगे हैं, और ये जो भाजपा का कमल खिला है श्वेता, एक कोई पर्टिकुलर रीजन में नहीं है। जैसे 2021 में ज्यादातर भाजपा की सीटें आई थी नॉर्थ बंगाल से, इस बार प्रेसिडेंसी हो, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, जो ज्यादातर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, या फिर नॉर्थ 24 परगना हो या साउथ 24 परगना, पैन बंगाल मैंडेट है भाजपा का। इसीलिए जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले निशित प्रमाणिक से बात की, जो कूच बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, उनका कहना था कि ये जो जीत है वो ये नहीं कहा जा सकता कि नॉर्थ बंगाल को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए या साउथ बंगाल को, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि कैसे जो कैबिनेट का फॉर्मेशन हो उसमें पूरा बंगाल रिप्रेजेंटेड हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो जैसे स्वपन दास गुप्ता को कुछ देर पहले हमने देखा, और श्वेता मैं इस जीत के बारे में एक बात जरूर कहूंगी, महिलाओं की भूमिका, कुछ ही देर पहले रत्ना देवनाथ यहाँ पर आई, रत्ना देवनाथ की पूरी कैंपेन को मैंने पानीहाटी में कवर किया था, और ये फिर से ये देखते हैं, ये जो इन्विटेशन है श्वेता, ये इन्विटेशन आपने देखा होगा, लेकिन ये फिर से देखिए, ये बंगला में और इंग्लिश में इन्विटेशन है, द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी सोन इन बाय द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन सैटरडे एट 11 AM एट द ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता, योर प्रेजेंस इज सॉलिसिटेड, थैंक यू सो मच। इस तरह के VIP इन्विटेशन दिए जा रहे हैं। और रत्ना देवनाथ की बात कर लेते हैं श्वेता, रत्ना देवनाथ का मैंने पानीहाटी में उनका कैंपेन कवर किया था, रत्ना देवनाथ आरजी कार विक्टिम की माँ है, और जो माहौल वहां पे देखा मैंने श्वेता, मैं आपको बताऊं कि जब वो रत्ना देवनाथ लोगों से बात करती थी, लोगों के आंख में आंसू रहते थे, बहुत भावुक हो जाते थे लोग, क्योंकि एक सेंस था कि एक महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं को लेट डाउन किया है, कमजोर किया है बंगाल में, और वही शायद हुआ कि महिलाओं ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ा। सो रत्ना देवनाथ हो या संदेश खाली की विक्टिम, उन लोगों का जीतना ये एक बहुत बड़ा मैसेज है ममता बनर्जी के मैंडेट, ममता बनर्जी के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के खिलाफ।
1: और ये वाकई वो सारे कैंपेन्स, उनमें भले पॉलिटिकली बहुत सारी टिप्पणियां की गई हों, लेकिन आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 207 सीटों का मैंडेट, 206 विधायकों का पहुंचना, वो अगर देखा जा रहा है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन सारे मैसेजेस को भी पढ़ पाना जिनका जिक्र मारिया इस समय कर रही हैं। मारिया, अब कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं, चूंकि सुकांतु मजूमदार भी निकल चुके हैं वहां नोवोटेल से, तो एक एक करके सभी नेताओं का पहुंचना अब वहां पर रहेगा। पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद, पीयूष से हमारा संपर्क इस समय टूट गया है, हम आगे उनसे पूछेंगे, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि आज भी जो कहने के लिए एक बैठक है, लेकिन आज भी उत्सव का वो माहौल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अंग बंग कलिंग की बात करती है और आज उस पूरे क्षेत्र में अपनी सत्ता को देख रही है, तो बंगाल उसके लिए केवल एक अवसर नहीं है अनुपम, बल्कि एक चुनौती भी है कि यहां पर जितने बड़े दावे किए गए हैं उन सबको पूरा करना है, एक ऐसा चेहरा जो उन जिम्मेदारियों को आगे पूरा करेगा। अनुपम,

0: चलिए, दरअसल दरअसल जो गहमा गहमी है, क्योंकि गृह मंत्री भी वहां पर हैं, वो जो जितने भी कनेक्शंस, मोबाइल कनेक्शंस पर असर पड़ता है, लेकिन मारिया वहां पर जिस तरीके से सभी विधायक इस समय पहुंचे हैं, उनको मालूम है कि अभी लगभग 2 बजे का समय था, फिर 3 बजे बताया गया कि विधायक दल की यह बैठक शुरू होनी है, अब 4 बजने को हो रहे हैं। हम क्या समझें कि लगभग तय है इस कारण ये देरी है, या फिर मंथन है इस कारण ये देरी है?
1: जी, तय है श्वेता। अगर कुछ ही देर में तस्वीरें आएंगी जब गृह मंत्री अमित शाह नोवोटेल होटल, जो 5 मिनट के डिस्टेंस पर है यहाँ पर से, अगर उनके साथ शुभेंदु अधिकारी बैठे होंगे, क्योंकि आपने जिस तस्वीर की चर्चा की श्वेता, जब गृह मंत्री पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी के उन्होंने पीठ पर थपथपाया तो एक मैसेज चला गया कि शायद शुभेंदु अधिकारी ही नए मुख्यमंत्री होंगे भाजपा के बंगाल से, तो एक मैसेज फिर से जाएगा अगर शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री के साथ उनकी कार में मौजूद होंगे। और जहां पर मैं मौजूद हूं, ज्यादातर विधायक आ चुके हैं और कन्वेंशन सेंटर में वो लोग सब बैठ चुके हैं। अब वो मोमेंट का इंतजार हो रहा है, उस समय का इंतजार किया जा रहा है जब गृह मंत्री आएंगे और उड़ीसा के मुख्यमंत्री आएंगे, और उन्होंने और वो फिर जब नाम को प्रपोज किया जाएगा, जो ज्यादातर एमपीज और एमएलएज मिल करके करेंगे, तो वो एक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्या सुकांता मजुमदार शुभेंदु अधिकारी का नाम प्रपोज करेंगे और उनके साथ इंडोर्स करने वाले कौन कौन होंगे, किस किस रीजन के वो लोग होंगे, वो सब हम इंतजार करेंगे वो डिटेल्स का श्वेता। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का कल ओथ होगा, और जहां तक पूरी कैबिनेट का सवाल है उसकी पूरी पिक्चर शायद बाद में ही क्लियर हो, लेकिन ज्यादातर जो विधायक हैं वो आ चुके हैं और वो लोग सब जाकर के कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। उसके साथ साथ भूपेंद्र यादव जो इंचार्ज हैं बंगाल के, को इंचार्ज अमित मालविया और बिप्लब देव, वो लोग दोनों भी आ चुके हैं। तो ये अब फॉर्मेलिटी का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है।
0: हम अनुपम से ही जान लेते हैं कि क्या वहां की स्थिति वो देख रहे हैं। अनुपम, हलचल हमने देखी थी, लेकिन क्या गृह मंत्री वहां से अब निकल रहे हैं?
2: जी नहीं, गृह मंत्री और श्रमिक भट्टाचार्य सिर्फ 2 लोग भीतर में हैं, बाकी सभी कोई निकल चुके हैं। सुकांत मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी सब निकल चुके हैं, सिर्फ श्रमिक भट्टाचार्य और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त होटल में मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, तत्परता यहां पर बढ़ी हुई है, पूरी की पूरी फोर्स यहां पर मौजूद है, डिप्लॉयमेंट पूरे जोशो खरोश में है, लेकिन अभी भी दोनों भीतर में हैं। अभी मैंने खबर ली तो निकलने की बात थी, लेकिन फिर वो कुछ देर के लिए रुक गए हैं। अब क्यों रुके हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन श्रमिक भट्टाचार्य जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो और अमित शाह दोनों इस वक्त भीतर हैं, और भीतर में कोई नहीं है जो अभी खबर आ रही है। सुकांत मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी दोनों थोड़ी देर पहले यहां से निकल चुके हैं। तो फिलहाल ये अपडेट मैं आपको इस होटल से दे रहा हूं।
0: तो हम जो कह रहे हैं कि नई सरकार की तैयारी, अब कौन होगा अधिकारी, ये देखना है वहां पर। लेकिन पीयूष, जो विधायक वहां पर पहुंचे हैं वो भी कमोवेश जानते हैं कि यहां पर निर्णय क्या है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं। एक वहां से जो अनुपम ने बताया था, शुभेंदु पहुंच चुके हैं। पर अभी वो कुछ कहने से बचेंगे, सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, पर अब देखिए इतनी वहां पर अफरा तफरी सी है। शुभेंदु अधिकारी सब जानते हैं कि वो सबसे आगे इस दौड़ में चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक हर चीज में सबसे ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, वो क्या जब यहां पर घोषणा होती है तो शुभेंदु अधिकारी का ही नाम होगा, वो देखना होगा। लेकिन वो पहुंच चुके हैं उस कन्वेंशन हॉल में जहां पर यह बैठक होनी है, और बार बार हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब एयरपोर्ट से होटल तक अमित शाह पहुंचे और उन्होंने पीठ थपथपाकर, जो स्वागत करने आए थे शुभेंदु अधिकारी, उनका पीठ थपथपाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया था। बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए अब केवल 2 लोगों की प्रतीक्षा वहां पर हो रही है, श्रमिक भट्टाचार्य और अमित शाह की। हाँ, दोनों एक ही कार में भी गए थे, पर अभी वो कार से पहले पहुंच चुके हैं।

0: जो कई विधायकों के साथ आए, शुभेंदु अधिकारी के साथ भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं और धीरे धीरे विधायकों का पहुंचना यहाँ पर लगातार जारी है। गृहमंत्री अमित शाह जब आते हैं तो विधायक बिल की बैठक शुरू हो जाएगी और उनके साथ मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे। उस बैठक में सभी विधायकों से बात किया जाएगा, उनका मंत्र तोड़ा जाएगा और उसके बाद जो विधायकों का मत होगा उस हिसाब से विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेगा। लेकिन अभी की बातचीत अभी की तस्वीर के अगर हम बात करें तो शुभेंदु अधिकारी जो पहले गृहमंत्री के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर नोवोटेल होटल में पहुंचे थे वो फिलहाल अपनी गाड़ी में बैठकर कन्वेंशन सेंटर आ चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह और शमिक भट्टाचार्य इस वक्त नोवोटेल होटल के अंदर बैठे हुए हैं और लगातार दोनों नेताओं के बीच चर्चा चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं बल्कि कौन कैबिनेट का हिस्सा होगा, किसका प्रतिनिधित्व कितना होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स कितने होंगे, इन सभी को लेकर चर्चा चल रही है। साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना श्वेता कि पिछले काफी लंबे समय में जब चुनाव प्रचार हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने कई बड़े बड़े वादे किए, उनमें घुसपैठ का एक सबसे बड़ा वादा था। तो पहला काम सरकार क्या करने वाली है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है क्योंकि कल जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा उसके बाद पहली बार सचिवालय में बीजेपी का मुख्यमंत्री जाएगा और पहला साइन कौन सी फाइल पर बीजेपी का मुख्यमंत्री करने वाला है वो देखना होगा और हो सकता है कि उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो।
1: इस वक्त अनुपम क्या ये गुंजाइश है कि पूरा केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के नाम या फिर और भी संख्या में मंत्रियों के नाम, ये सारी चीजें क्या इसको लेकर कुछ रूपरेखा अभी समझ में आ रही है आज की बैठक के बाद कम से कम और कल के शपथ ग्रहण में क्या क्या हो सकता है?
2: जी देखिए, अभी तक जो भीतर से खबर है उसके मुताबिक आज तो विधायक दल का नेता ही चुना जाएगा जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन आज ये घोषणा के बाद कल सुबह तक में हो सकता है कि डिप्टी सीएम के नाम पर जो चर्चा हुई है उस पर कुछ मुहर लगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम पर जो हमारे पास खबर है 27 लोगों के नाम हमारे पास हैं, लेकिन उस पर जो चर्चा होगी वो थोड़े दिन बाद होगी। कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें मुख्यतः जो चीफ मिनिस्टर होगा उन्हीं की शपथ होगी। इसके अलावा बाकी जो चर्चा में आ रहा है कि दो डिप्टी की जो डिप्टी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया फॉर्मूला, जिस तरीके का फॉर्मूला अन्य राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर लाया गया है, यहां पर भी लाया जा सकता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस तरह की रूपरेखा या इस तरह का ट्रेडिशन इससे पहले हमें देखने को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री एक ही हुआ है, उप मुख्यमंत्री का पद इससे पहले तक पश्चिम बंगाल में नहीं रहा है, लेकिन चूंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, दूसरे राज्यों में तो दो उप मुख्यमंत्री हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां दो मुख्यमंत्री हैं, यूपी में तीन उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या उस पर मोहर लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि 207 सीटें जीती हैं, 206 विधायक हैं, ऐसे में अकोमोडेट भी करना होगा, पद भी बढ़ाने होंगे, तो हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री का दो पद यहां पर क्रिएट किया जाए। लेकिन आज अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक आज विधायक दल का के नेता का चुनाव है और उसके बाद हो सकता है कि जो उप मुख्यमंत्री की बात आ रही है उस पर आज से कल के बीच में कुछ निर्णय लिया जा सके,
1: क्योंकि पीयूष इसके आगे तो अभी जो पूरा मंत्रिमंडल जब सोचा जाएगा तो पूरे राज्य को उसमें सोचना होगा क्योंकि अलग अलग वर्गों के अलग अलग जगहों से अलग अलग क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास अगर मतदाताओं ने जताया है तो उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक इस तरह के फैसले लेने होंगे। केवल वहां कुछ हलचल दिख रही है। अग्निमित्र पॉल शायद पीयूष दिखाइए तस्वीर
0: फिर पहले गृहमंत्री जी लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं श्वेता, आप तस्वीरों में देख सकते हैं अग्निमित्र पॉल जिनकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से हुई वो फिलहाल यहां पर पहुंच गई हैं और कुछ कार्यकर्ता भी उनके यहां पर आए हैं और जब उनका स्वागत हुआ तो जैसे पारंपरिक स्वागत सभी विधायकों का हो रहा है, टीका लगाकर साथ में उनको बीजेपी का अंगोछा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, वो सभी यहां पर पहुंच गए। और देखिए अग्निमित्र पॉल इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो पहुंच चुकी हैं और कुछ देर में उम्मीद यही जताई जा रही है कि गृहमंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो फिर जो बैठक है, सबसे बड़ी बैठक है बीजेपी की, वो शुरू हो जाएगी और बीजेपी विधायक दल अपना नेता यहाँ पर चुनने के लिए चुनेंगे और लगभग सभी विधायक यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं। और अग्निमित्रा पॉल जो आसनसोल से जीतकर आई है पिछले काफी लंबे

0: में से मुझे वो क्षण भी याद है श्वेता, जब 2016 में जेपी नड्डा यहाँ पर आए थे अध्यक्ष बनकर, तो उनका स्वागत करने के लिए अग्निमित्रा पॉल आई थी और माँ काली मंदिर में वो स्वागत किया था उन्होंने उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष का, और उससे पहले से ही वो पार्टी में काफी लंबे समय से सक्रिय रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ एक मोर्चा लेकर वो चली, बीच में उनको प्रवक्ता बनाया, उसके बाद उनको कई बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर दी, लेकिन अब जब वो आसनसोल से जीत कर आई है तो उनकी दावेदारी भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही है। अब पार्टी को तय करना है कि किसको क्या पद देना है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन उप मुख्यमंत्री बनने वाला है, क्या महिलाओं का नेतृत्व इसी तरह से जिस तरह की बात कही जा रही है वैसे ही दिखाई देगा, इन सभी चीजों के उत्तर कुछ देर में यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन चारों तरफ आप गहमागहमी देख सकते हैं, अगर अंकित सिंह मेरे सहयोगी कैमरा पैन करके आपको दिखा दें चारों तरफ, तो आप देख सकते हैं कि न सिर्फ मीडिया कर्मी यहाँ पर भारी संख्या में बल्कि जो विधायकों के साथ उनके सहयोगी आए हैं वो भी यहाँ पर भारी संख्या में, और जिस वक्त हम जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में सुरक्षा बल को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इस लाइन के आगे जाना जो है वो मनाही है। यहाँ से आगे जाने के बाद सामने लिफ्ट है और लिफ्ट से बेसमेंट में जितने भी विधायक है वो जा रहे हैं, सबसे पहले वो इस जगह पर आते हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर उनका स्वागत होता है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, देखिए यहाँ पर अंगोछा पहनाया जाता है, देखिए फिर एक विधायक यहाँ पर आए हैं और उनको तिलक लगाया जा रहा है, माथे पर तिलक लगाया जा रहा है, अंगोछा पहनाया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, और जैसे ही ये स्वागत हो जाता है तो ये एक यहाँ पर एक लेयर सी बनाई गई है सुरक्षा बलों के द्वारा, इस लेयर को पार करने के बाद विधायक आगे बढ़ते हैं और सीधा जाते हैं जहां पर लिफ्ट है, और लिफ्ट से वो बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं जहां पर विधायक दल की बैठक जो है वो कुछ देर में शुरू होने वाली है जब गृहमंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल अमित शाह यहां पर नहीं पहुंचे हैं, वो पर्यवेक्षक के तौर पर इस बार बंगाल आए हैं और पहली बार बंगाल आए हैं बीजेपी के प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद। तो गहमागहमी तो नवोटल में भी हुई, वहां पर भी कई बैठकें हुई, अग्निमित्रा पॉल भी वहां पर पहुंची थी एक बैठक में, जो बैठकें हुई उसमें सुकांत मजुमदार के अलावा शुभेंदु अधिकारी, शमिक भट्टाचार्य और भी कई नेता मौजूद थे, लेकिन फिलहाल सभी नेता कन्वेंशन सेंटर आ चुके हैं, सिर्फ 1-to-1 मीटिंग चल रही है शमिक भट्टाचार्य और गृहमंत्री अमित शाह के बीच में। ये भी बहुत जरूरी समझना कि शमिक भट्टाचार्य वो बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं राज्य के, जिनके नेतृत्व में बीजेपी सरकार लेकर आई है, तो उनका रोल भी बहुत अहम है। तो दो बड़े किरदार इसमें निकल के सामने आते हैं श्वेता, एक शमिक भट्टाचार्य, दूसरे शुभेंदु अधिकारी। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी तो यहाँ पर आ गए, लेकिन शमिक भट्टाचार्य की 1-to-1 मीटिंग गृहमंत्री अमित शाह के साथ चल रही है।
1: स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के और साथ में अमित शाह जो कि पर्यवेक्षक है, मुख्य पर्यवेक्षक है, वो दोनों नहीं पहुंचे हैं। मारिया, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है आप फ्रेम में आ जाए। मारिया शकील इस समय जो कन्वेंशन सेंटर है उसके ठीक बाहर से हमारे साथ जुड़ी है, पीयूष कन्वेंशन सेंटर के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अनुपम मिश्र उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस समय अमित शाह जहां पर मौजूद हैं और शमिक भट्टाचार्य जहां पर मौजूद हैं। तो वहां से जैसे ही निकलेंगे हम आपको फौरन बताएंगे। अब कुल मिलाकर जो चर्चाएं हैं, चूंकि एक नए विधायक हैं जो सब यहां पर पहुंचे हैं इस बैठक के लिए, जो चर्चाएं हैं वो तो जो टॉप लीडरशिप है स्टेट का, साथ में जो अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं सह पर्यवेक्षक के साथ, तो वहां पर चर्चा होनी है और उसके बाद ये तय होना है कि अगर उस नाम का प्रस्ताव आता है तो बाकी जो विधायक हैं उनकी राय क्या है इस पर। हालांकि एक तरीके से जो जिस चेहरे को लेकर सबसे ज्यादा गहमागहमी चल रही है उस चेहरे को लेकर ही हम समझ सकते हैं। पर अनुपम, जो हम अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व अलग,
2: देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं,
1: जी जी दिखा,
2: देखिए कॉन्वॉय धीरे धीरे यहां से निकल रहा है, ये देखिए कॉन्वॉय निकल रहा है यहां से। इस कॉन्वॉय में नोवोटेल से एक कॉन्वॉय निकल रहा है, शमिक भट्टाचार्य निकल गए हैं और अभी समझ में नहीं आ रहा है, एक कॉन्वॉय जरूर निकला है लेकिन कांच पे रिफ्लेक्शन आ रहा था इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। अमित शाह अभी नहीं निकले हैं, गृहमंत्री अभी नहीं निकले हैं, एक कॉन्वॉय जरूर निकला है। तो इसमें अभी भी गृहमंत्री अमित शाह नहीं निकले हैं, गहमागहमी यहां पर बनी हुई है, उत्सुकता बनी हुई है कि गृहमंत्री अमित शाह जो पर्यवेक्षक हैं, मुख्य पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो कब निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रस्तुति है, यहाँ पे जो तैयारी है, वो देख के लग रहा है कि अब ज्यादा समय नहीं है, उस पल का इंतजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
1: गौतम दास सही कह रहे हैं कि वो मुमकिन है मोहन मांझी हो, जो कि सह पर्यवेक्षक हैं, जो डेप्यूटी ऑब्जर्वर हैं, जो साथ में पहुंचे हैं वहां पर, मुमकिन है उनका भी कॉन्वॉय हो, चूंकि मुख्यमंत्री हैं। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रो, अच्छा, हम उनसे हम अभी संपर्क करेंगे जैसे, तो ये कुल मिलाकर हम क्या समझेगा, तो क्यों इतना समय कि मतलब चर्चा तो
3: एक्चुअली वो मैंने ये बोल पाएगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले की विधायक का एक एक करके पूछा गया, ऐसे कुछ चुने गिने चुने विधायक ही मिले, अमित शाह से ऐसे नहीं है कि सारे विधायक
1: सारे नहीं मिले हैं,
3: 207 नहीं मिले हैं। हाँ। तो प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद नाम अनाउंस किया जाएगा, सब हाथ उठाएंगे, तो इनका पहले बताए कौन बताएगा पहले,
1: तो वो तो तय हो जा रहा है, वो इसी मीटिंग में तय हो रहा है कि कौन प्रपोज करने वाला है।
3: समझने का कोशिश कर रहा हूँ किस प्रोसेस में नेता चुना जाएगा।
4: ये है बाहरी बनाम घर वालों का झगड़ा है, आप कह नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो 25 साल से 30 साल से 40 साल से जिन्होंने पूरा जीवन उस पे खपा दिया है, उनके अंदर ये टीस तो होगी कि आप ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाने की, उसको भी कंसेंसस बिल्ड करना पड़ा, ऐसा नहीं कि उसका विरोध नहीं होगा या उस पर मर्मरिंग नहीं होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ खुली बगावत हो रही, लेकिन वो मर्मरिंग तो अंदर होगी, भाई मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, आप एक ऐसे शख्स को जिसको जिसका जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके खिलाफ हमने भ्रष्टाचार गंभीर आरोप लगाए हैं,
1: ठीक है पीयूष, पीयूष वहां कुछ और सुगुगाहट दिख रही है, क्योंकि वहां से अब मुझे लग रहा है कि जो फाइनल नोवोटेल से निकलने का जो सफर है सभी नेताओं का, एक एक करके सब बाहर निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं एक एक करके।
0: जी बिल्कुल श्वेता, और कुछ देर में गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है, लगभग सभी विधायक पहुंच चुके हैं, और अग्निमित्रा पॉल कुछ आखिरी के चंद विधायकों में शुमार थी जो पहुंचे हैं, और फिलहाल सभी विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाले हैं, और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी का नाम,
1: और ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, हम आपको बता रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे, शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं, चर्चा लगातार चल रही थी, और अब विधायक दल की बैठक में इस नाम का प्रस्ताव, जिस पर सभी विधायकों की हामी के साथ थोड़ी देर में इस बात का ऐलान संभव है कि शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस समय आ रही है, पश्चिम बंगाल में विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की शुरू होने वाली है, उससे पहले मंत्रणा का दौर लगातार जारी रहा, अमित शाह जो कि पर्यवेक्षक हैं, पीयूष इस बात को जो फ्रंट रनर वही
0: जी
1: मुख्यमंत्री।
0: जी बिल्कुल, विश्वसनीय सूत्रों से हमको जानकारी मिली है श्वेता कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं, और इस बात की मुहर लग चुकी है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें शमिक भट्टाचार्य शुभेंदु अधिकारी का नाम आगे रखेंगे, और उस नाम को लेकर लगभग सभी विधायक अपनी हामी भी भरने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये हमें विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है, और ये डिसाइड हुआ है जो लगातार बैठकें नोवोटेल में हुई है। आपको बता दें कि आज सुबह ही गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे हैं, और उन्होंने लगातार बैठकों का दौर किया, और इस बैठक में सहमति बन चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे पश्चिम बंगाल के, और कुछ देर में इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, और विधायकों के साथ उनकी चर्चा भी चल रही है, सभी विधायकों के साथ वो अंदर मौजूद हैं शुभेंदु अधिकारी, और लगभग सभी विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं, और कुछ लम्हों के बाद यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के साथ संभवतः शमिक भट्टाचार्य जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ यहाँ पर आएंगे, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो उसके तुरंत बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी, और उस बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा शमिक भट्टाचार्य के द्वारा, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, किशवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना जाए और इस प्रस्ताव पर लगभग सभी विधायकों की सहमति भी बन सकती है और अगला मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी के तौर पर हम पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं। ये हमें विश्वसनीय सूत्रों ने जानकारी दी है कि लगातार बैठकों के बाद ये कहीं ना कहीं फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया है। हम कई विधायकों से लगातार बात भी करते रहे, उन्होंने कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर फैसला लेगा और सूत्र बताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने फैसला ले लिया है और शिवेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लग चुकी है। मैं आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गहमागहमी लगातार चल रही है और पूरे इलाके को सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। कुछ देर में जब गृहमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो सीधा इसी रास्ते से होते हुए वो कन्वेंशन सेंटर के बेसमेंट में जाएंगे जहां पर विधायक सभी विधायक लगभग आ चुके हैं और उन सभी विधायकों के साथ बैठक होगी। उनके साथ मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और इन सभी नेताओं के बीच में जब सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी वहां पे होंगे, बीजेपी के सांसद जितने वो सभी मौजूद रहेंगे, विधायक सभी मौजूद रहेंगे, इन सभी नेताओं के बीच में विधायक दल की बैठक में सूत्र ये दावा कर रहे हैं श्वेता कि शमिक भट्टाचार्य नाम प्रस्ताव शिवेंदु अधिकारी के नाम का रखेंगे और जैसे ही वो रखते हैं उसके बाद सभी विधायक लगभग सभी विधायक उनके नाम पर हामी भर देंगे और शिवेंदु अधिकारी संभवतः अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
1: अनुपम मिश्र के पास चलते हैं। अनुपम जी, क्या क्या क्या वहां पर अब अमित शाह निकल रहे हैं?
2: बिल्कुल, हलचल तेज हो गई है, अभी निकलने की बात सामने आ रही है। मैं ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर जो है जो सुरक्षा कर्मी है वो रेडी हो चुके हैं और किसी भी पल किसी भी क्षण अमित शाह यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए जो सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस कर्मी है, जो वायरलेस वैंस हैं, वो सब उसमें हलचल तेज हो गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि एक दो मिनट के भीतर ही जो कॉन्वॉय है गृहमंत्री अमित शाह का वो यहां से निकलेगा। हालांकि अभी भी हम सभी को इंतजार है कि गृहमंत्री अमित शाह यहां से निकलेंगे और जब वो निकलेंगे तो उनके साथ मुख्य तौर पर हो सकता है कि शमिक भट्टाचार्य हों, क्योंकि शमिक भट्टाचार्य और अमित शाह ही अभी भीतर रह गए थे। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण पल बंगाल के इतिहास में, पहली बार बंगाल में बीजेपी को सत्ता हासिल हुई और पहली बार अब आज कुछ ही देर में अनाउंसमेंट होगा बंगाल के नए बीजेपी के मुख्यमंत्री का। तो फिलहाल हलचल यहां तेज है और इंतजार है काफिले का। काफिला अब किसी भी पल यहां से बाहर निकलने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि ये एक जो सत्ता परिवर्तन हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये 15 वर्षों बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। ऐसे में अब बहुत कुछ आने वाले 5-6 महीनों में बहुत तरह की खबरें भी देखने को मिलेगी, बहुत तरह के नए परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, इतना तो तय है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है नए मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के बीजेपी के, उनकी अनाउंसमेंट के साथ कल शपथ ग्रहण होगा। और आज एक और खबर, एक और सूचना जो अब आ रही कि दो उप मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान हो सकता है। हालांकि ये तो तय है कि विधायक दल के नेता का नाम का ऐलान के साथ का ऐलान होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद होगा या एक बीच में कुछ घंटों का दरमियान रहेगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, क्योंकि उस पर भी चर्चा हुई है भीतर में। जो अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, इनमें से एक महिला हो सकती है और एक इनमें से हो सकता है, या तो देखिए अब ये हलचल और तेज हो रही है। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हलचल बेहद तेज, गाड़ियां निकलने ही वाली हैं भीतर से नोवोटेल जहां पर गृह मंत्री पहुंचे थे। ये देखिए पायलट कार निकली, ये पहली पायलट कार निकल रही है, ये दूसरी गाड़ी निकल रही है और इसके पीछे जो काफिला है वो काफिले की एक एक करके गाड़ियां निकल रही है। जैमर की गाड़ी भी अभी निकलेगी और ये अमित शाह का काफिला अब धीरे धीरे बाहर की ओर आ रहा है। तो वो पल अब लगभग खत्म, 4:14 अमित शाह का काफिला अब निकल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह का काफिला। ये देखिए जैमर वाली गाड़ी अब आ गई बाहर और इसके बाद अब अमित शाह की कार आएगी। तो 4:15 कर 4:15 के आसपास नोवोटेल से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकल रहा है। यहां से बमुश्किल 5-10 लगेगा। ये देखिए अमित शाह फ्रेम में, आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह को फ्रेम में और अमित शाह यहां पर देख रहे हैं आप, अमित शाह यहां पर बैठे हुए हैं, अमित शाह निकल रहे हैं, यहां पर अमित शाह की कार निकल गई बाहर।
1: दरअसल जब अमित शाह की गाड़ी यहाँ से निकल रही है और मारिया अगर आप आवाज सुन पा रही हैं, इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ हैं। इंद्रो, ये जो तस्वीर है ये इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जब 2014 फिर 2019 हर चुनाव में अमित शाह की तरफ से एक आंकड़ा दिया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बंगाल में जीतेगी, बहुत सारे सवाल उठते थे। आज ये एक तरीके से ये बहुत ही पोएटिक है कि जो व्यक्ति वहां पर शुरुआत कर रहा था उस पूरे दौर की, उस लड़ाई की, और जो कह रहा था कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और क्रिटिक्स सवाल पूछा करते थे, आज वो पर्यवेक्षक के रूप में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान वहां पर करने वाले हैं। इंद्रो,
5: बिल्कुल श्वेता, पोएटिक आप कह सकते हैं, और इसके साथ साथ अब अंग्रेजी में कह सकते हैं द व्हील कम्स फुल सर्कल, क्योंकि अमित शाह उनका एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट बन गया था पश्चिम बंगाल को जीतना बीजेपी के लिए। अगर उन्हें बीजेपी से चाणक्य कहा जाता था तो कहीं ना कहीं उस चाणक्य को पश्चिम बंगाल का जो कोड है उसको क्रैक करना था, और उन्होंने कर दिया। मेरे पीछे देखिए ये जो लोटस है, लोटस ब्लूम्स फाइनली इन वेस्ट बंगाल जिसे कहते हैं, और उन्होंने करके दिखाया, वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अपनी धरती में। ये महत्वपूर्ण है, ये ऐतिहासिक है। और अगर 2014 की हम बात करें जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 14 से 26 महज 12 साल लगे हैं पश्चिम बंगाल में इस लोटस को खिलने में और बीजेपी को अपना पावर कैप्चर करने में। 1998 में, 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस की प्रतिष्ठा हुई थी, सब 2011 में उनको क्षमता मिली तो उनको 13 साल लगे थे, लेकिन एक साल कम लगा है बीजेपी को 2014 से अगर हम लोग गिनती शुरू करें तो। ऐतिहासिक बहुत तरह से ये है। और शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है, सब लोगों को यहाँ पे उम्मीद थी कि जिस तरह से नंदीग्राम और उसके बाद भवानीपुर, ये दोनों ही बार ममता बनर्जी के ही शिष्य ने जिस तरह से चुनावी टक्कर देते हुए हरा दिया है, ये बंगाल की राजनीति में एक इतिहास बनाने वाला ही चैप्टर है, इसका कोई प्रिसिडेंट नहीं है। और यही कारण कि शुभेंदु अधिकारी का जो स्टेचर है बंगाल की राजनीति में वो एकदम क्रिसेंडो पे इस वक्त पहुंच गया है, और शायद यही कारण है कि बीजेपी के जो अंदरूनी अगर आप पॉलिटिक्स कहें या बीजेपी के अंदर जो टॉप लीडरशिप है, दिल्ली लीडरशिप, उनको भी ये पता है कि जो पब्लिक मूड है, जो दल के अंदर, बीजेपी के अंदर, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अंदर जो मूड है, सेंटिमेंट है, वो अब शुभेंदु अधिकारी के फेवर में है। किसी भी तरह से अब शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए ये सरप्राइज हो सकता है। तो एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न कुछ भी हो सकता है, सरप्राइजेस नहीं है, लेकिन जैसे हमारे संवाददाता पीयूष ने यह कंफर्म किया है कि शुभेंदु अधिकारी का नाम पे सील लग चुका है और कुछ क्षणों का अपेक्षा है उसके बाद विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर जहां पे हम लोग है, यहां पे 200 से ज्यादा जो बीजेपी के नव निर्वाचित एमएलएज हैं वो पहुंच चुके हैं। सिर्फ अब इंतजार है अमित शाह का, गृहमंत्री का, वो आएंगे और वो महज औपचारिकता, वो एनवलप खोलेंगे और मीडिया के सामने दिखाएंगे कि कौन होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पहला सरकार, ऐतिहासिक सरकार के चेहरे कौन बनने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन कुछ ही देर होगा। श्वेता,
1: अब किसी भी समय यहां पर पहुंचेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अनुपम दिखा चुके हैं कि वहां से काफिला निकल चुका है और अब जहां पर इंद्रजीत मौजूद हैं और जहां पर पीयूष मौजूद हैं वहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं एक पर्यवेक्षक के रूप में। और पीयूष, इसमें वाकई जो हम अमित शाह की भूमिका की बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने एक तरीके से जिद ठान लिया था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी को वहां पर चुनावी जीत दिलानी है, और भले ही उनके ऊपर सवाल उठ जाते थे, कटाक्ष होता था कि आपने तो इतने सीट बोले थे लेकिन देखिए बीजेपी नहीं जीत पाई, करते करते आज जब ये 207 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में हासिल किया है तो आज रिडेम्पशन का दिन भी अमित शाह के लिए।
6: इसमें कोई दोराय नहीं है श्वेता, हमने वो दिन भी देखा है जब बीजेपी 3 सीट लाई थी, फिर 3 से 77 और 77 से 200 पार बीजेपी अचीव कर चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर, और उसमें पूरा श्रेय कहीं ना कहीं गृहमंत्री अमित शाह को इसके भी जाता है क्योंकि वो लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में रहे, लगभग 14 से 15 दिन जो आखिरी के थे जिसमें चुनाव प्रचार भी था, वोटिंग के दोनों दौर थे, उस समय वो पश्चिम बंगाल के अंदर रहे, लगातार कार्यकर्ताओं से वो मिलते रहे, रात के 3-4 बजे तक उन्होंने बैठकें की हैं ताकि समझा जा सके कि कहां पर किस चीज की कमी है, किस सीट पर कौन सा कार्यकर्ता उतारना है उसको लेकर वहां पर जाकर लोगों से बातचीत करना, जहां पर सीट कमजोर है, जहां ये लगता था कि ये कमजोर सीट है और यहां पे हार सकते हैं, वहां पर जाकर रोड शोज करना, रैली करना, ये सभी चीजें गृहमंत्री अमित शाह ने की है। मैं आपको एक अंदर की स्ट्रैटेजी बताता हूं। जब बीजेपी ने शुरुआत किया था यहां पर चुनाव प्रचार का, तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों को ए बी सी डी ई यानी 5 कैटेगरी में बांटा गया था। ए वो सीट थी जिसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी बीजेपी की कि वहां पर वो जीत सकते हैं, और ई वो सीट थी जो बीजेपी को लग रहा था कि यहां पर सबसे बेकार प्रदर्शन होगा। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे पहले फोकस उन ई सीट्स पर किया, ई डी और सी सीट्स पर किया जहां पर पॉसिबिलिटी कम लग रही थी, और बाद में उन इन सीट्स की कैटेगरी को ए सीट्स में लेकर आ गया, यानी कि वो सीट बन गई जहां पर ये यकीन हो गया पार्टी को कि यहां पर जरूर विधायक उनका जीतेगा। और इसी रणनीति पर काम लगातार पार्टी करती रही, जहां पर कमजोर थे वहां पर ताकत दी, जहां पर जरूरत थी ताकत की वहां पर और कार्यकर्ताओं को लगाया और 294 में से 206 सीटें लेकर आए। और इन सभी स्ट्रैटेजीज के पीछे अमित शाह की एक बड़ी टीम लगातार काम करती रही, सुनील बंसल, बिप्लब देव, भूपेंद्र यादव, ये वो चेहरे हैं जो घंटों तक बैठ के करते थे, कार्यकर्ताओं से जाकर मिलते थे, ग्राउंड पर जाकर काम करते थे। और इस बार बीजेपी ने जो मुद्दे थे जो ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहे थे, चाहे वो लॉलेसनेस हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर जो करप्शन है, इन सभी मुद्दों पर चुनाव लड़ा। इस बार जय श्रीराम से ज्यादा जय मां काली कहा गया ताकि वोटर्स के साथ कनेक्ट किया जाए। तो ये सभी स्ट्रैटेजीज थी जिस पर बीजेपी ने बहुत बारीकी से काम किया, और हम देख पा रहे हैं वो जगहें जहां पर पार्टी का नामो निशान नहीं था, कार्यकर्ता खड़े नहीं होते थे, झंडा लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, विधायक के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिलता था, वहां पर 45,000-50,000 की मार्जिन से बीजेपी जीत कर आ रही है। इसका श्रेय पूरा उस चाणक्य को जाता है जो यहां पर लगभग 15-16 दिन तक आखिरी के रहे और उस स्ट्रैटेजीज पर काम किए, जिन स्ट्रैटेजीज पर काम करने के बाद बीजेपी को ये सफलता मिली। और अब आज वो यहां पर पर्यवेक्षक बन के आए हैं, और पर्यवेक्षक वो क्यों बने हैं वो भी हमको समझना होगा। गृहमंत्री अमित शाह वो नेता है जिन्होंने बीजेपी के जो अलग अलग धड़े थे, चाहे वो सुकांत मजुमदार का हो, श्रमिक भट्टाचार्य का हो, शुभेंदु अधिकारी का हो, इन सभी धड़ों को एक साथ किया, उनसे कहा कि हमको एक स्वर में एक आवाज बनकर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और इन सभी धड़ों को एक साथ बात समझाने के लिए भी वो यहां पर एक नाम को अनाउंस करने के लिए आए हैं। दूसरा नाम है चरण मोहन मांझी, जो यहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं श्वेता, और उनके आने की भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कहानी है, उनके पीछे भी कहानी है। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अंग बंग और कलिंग की बात करती थी कि यहाँ पर जब सरकार होगी तो फिर विकास होगा, विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होगा। अंग यानी बिहार झारखंड, बंग यानी बंगाल और कलिंग यानी उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, बिहार में हमने अभी देखा कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, और बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो तीनों को कहीं ना कहीं तीनों जो राज्य इनकी थ्योरी उसको मिक्स करके इनकी थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और जब तीनों जगहों पर राज्य हो जाएंगी, सरकारें हो जाएंगी बीजेपी के, तो आगे विकास होगा, इस थ्योरी के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। कुछ ही देर में, कुछ लम्हों में गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचने वाले हैं। मैं अपने सहयोगी अंकित को एक बार कहूंगा जूम करके आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए
1: पीयूष, जो खबर आपकी आपने दी उस खबर पर मोहर लग चुकी है, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे, जो खबर आपने दी उस पर मोहर लग चुकी है, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे, श्रमिक भट्टाचार्य उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, बीजेपी विधायक दल में इस नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा, और ऐसा कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल में चुना न जाए। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान होने वाला है। अमित शाह वहां से निकल चुके हैं, पहुंच रहे हैं वो इस कन्वेंशन सेंटर पे। श्रमिक भट्टाचार्य और अमित शाह की जो मंत्रणा है वो अभी कुछ समय पहले तक चल रही थी, जिसके बाद दोनों नेता एक एक करके वहां से निकले हैं। और पीयूष, अब स्पष्ट हो चुका है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। पीयूष,
6: जी बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे और सूत्रों ने यह दावा किया था कि शुभेंदु अधिकारी को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी वो चर्चाएं खत्म हो चुकी हैं। कुछ और नाम चर्चाओं में आए थे लेकिन शुभेंदु अधिकारी की दावेदारी सबसे प्रबल रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने भवानीपुर और नंदीग्राम, ये दोनों सीटें हैं अश्वता जहां पर से ममता बनर्जी को हराया। भवानीपुर में इस बार 15,000 के मार्जिन से ज्यादा की शिकस्त ममता बनर्जी को थी और नंदीग्राम में 2021 में उस वक्त की जीत और इस वक्त की जीत, कहीं ना कहीं ये दोनों वो जीते हैं जो बीजेपी को भाती हैं और एक ऐसे नेता को बीजेपी चाहती थी जो जो ममता बनर्जी को हरा सके और वो है शुभेंदु अधिकारी। ना सिर्फ उन्होंने ममता बनर्जी को हराया बल्कि पश्चिम बंगाल का एक बड़ा जो कैंपेन रहा उसको उन्होंने लीड किया। साथ साथ कई जो चयन हुए विधायकों के लिए के विधायक सीट को लेके वहां पर जो प्रतिनिधि रहे उनमें उनकी भूमिका रही। प्रचार प्रसार कैसे होगा, लोगों तक कैसा पहुंचा जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बोलबाला रहा। तो कैसे नब्स पकड़ी बंगाली वोटर्स की, यहाँ पर जो नॉन बंगाली हिंदू वोटर्स हैं उनको कैसे रुझाया, साथ साथ बाकी जो वर्ग है उनको कैसे रुझाया, ये सभी चीजें जो है वो शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में की गई। एक तरफ जहां नॉर्थ बंगाल में अमित शाह प्रचार करते थे तो वहीं साउथ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी प्रचार करते थे। नंदीग्राम से भवानीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर से पूर्वी मेदिनीपुर तक लेकर शुभेंदु अधिकारी लगातार रोड शोज रैलीज करते रहे। आपको एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ अश्वेता कि शुभेंदु अधिकारी का रूट क्या होगा। दरअसल होता क्या है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बारे में जानकारी आ जाती है कि ये नेता इतने बजे यहाँ पर जाकर रोड शो या रैली करने वाले हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का कभी कोई रोड शो का रूट, रैली का रूट कभी नहीं हमारे पास आया। उसके पीछे जब हमने कुछ कार्यकर्ताओं से बात की तो ये पता चला कि शुभेंदु अधिकारी अचानक ही किसी इलाके में पहुंच जाया करते थे और वहां पर प्रचार प्रसार करते थे और जब वो पहुंच जाया करते थे तो जनता उनके साथ लग जाया करती थी और ये एक डोर टू डोर कनेक्ट अपने आप को करना, लोगों के बीच में जाना, कैसे काम करना है, कैसे ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है, ये सभी चीजें शुभेंदु अधिकारी किया करते थे और आज उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है और शुभेंदु अधिकारी की दावेदारी प्रबल तौर पर निकल के सामने आ रही है। और ये पता चला है, सूत्रों ने हमें बताया है कि विधायकों के जो मन की बात है कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बने, उस मन पर केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहीं ना कहीं मोहर लगा दी है और जिस शिष्य ने ममता बनर्जी को हराया आज उस शिष्य को कहीं ना कहीं वो पोजीशन मिलने वाली है जो टॉप मोस्ट पोजीशन है पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये कुछ देर में फॉर्मली अनाउंस भी होने वाला है। श्वेता मैं एक बार तस्वीरें और आपको दिखा दूं, अंकित लगातार जूम कर सकते हैं अपना कैमरा क्योंकि यहां से नोवोटेल ज्यादा दूर नहीं है, महज 5 से 7 मिनट की दूरी पर है और गृहमंत्री अमित शाह वहां से निकल चुके हैं। ये देखिए कैसे सुरक्षा बलों ने एक चेन बना ली है ताकि लोग बीच में ना आए। विधायकों के साथ काफी उनके सहयोगी भी यहां पर आए हैं तो वो सहयोगी जो है वो भी कहीं बीच में ना आए, रास्ते में अड़चन ना आए, इसीलिए जो है यहाँ पर एक चेन से बना ली गई है और धीरे धीरे करके लोगों को कहा जा रहा है कि वो पीछे हो जाएं। कुछ ही देर में, अगले कुछ क्षणों में आपको गृहमंत्री अमित शाह की छवि भी दिखाई देगी, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं और पहुंचने के तुरंत बाद यहाँ जो रास्ता है एक बार मैं आपको और दिखा दूं पीछे की तरफ।
1: वैसे तो सही में मतलब पूरी एक टीम लगी रही, भूपेंद्र यादव से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हो या फिर अमित शाह स्वयं रहे हो, एक पूरी पूरी टीम लगी रही भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि यहां पश्चिम बंगाल में सरकार बीजेपी ने एक तरीके से इसका संकल्प ले रखा था। अब यहां पर हम अगर अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी को भी देखें तो एक टीम की तरह दोनों नजर आए। आज भी आज के दिन तो संकेतों में लोगों ने पढ़ा लेकिन जिस दिन से शामिल उन्हें किया गया था भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के ही मंच पर उन्होंने ही हाथ पकड़कर उनका हाथ उठाया था और आज पीठ थपथपाकर वो संकेत, तो ये दोनों की टीम भी रही जो एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों तक लगी रही।
6: जी बिल्कुल, वो टीम जो है लगातार काम करती रही और लोकसभा की आपने बात की, हमें वो क्षण भी याद है श्वेता जब लोकसभा में जब सेशन चलता था तो बीच बीच में अचानक शुभेंदु अधिकारी आ जाया करते थे और गृहमंत्री से उनकी मुलाकात होती, तो मुलाकात एक बार नहीं हुई है, कई बार मुलाकातें हुई है। इन मुलाकातों में चर्चा की गई है कि कैसे पश्चिम बंगाल में सरकार बनानी है, जो संकल्प पिछले काफी सालों से बीजेपी के नेताओं ने लिया था उस संकल्प को कैसे पूरा करना है, उस संकल्प को लेकर
0: लगातार बैठकों का दौर हुआ और हमने बीच में एक चीज और देखी कि कैसे श्रमिक भट्टाचार्य को अध्यक्ष बनाया गया। श्रमिक भट्टाचार्य वो है जो एकदम जो कहा जाता है ना यहाँ पे जो ममता बनर्जी राजनीति करती थी कि बंगाली वर्सेज नॉन बंगाली की, तो जो कट्टर बंगाली अगर कहा जाए किसी को तो वो श्रमिक भट्टाचार्य है जो यहीं के हैं, यहीं की बंगाली भाषा बोलते हैं, तो उनको जब लेके आए तो बंगाली लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद लगातार बैठकों के बाद एक टीम बनाई गई जिसमें भूपेंद्र यादव और बिप्लब देव इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई। भूपेंद्र यादव वो चेहरे हैं अमित शाह की टीम के जो पिछले काफी समय से लगातार अमित शाह के साथ काम करते हैं। 2014 से पहले से भूपेंद्र यादव अमित शाह के साथ काम करते रहे। राजस्थान से वो आते हैं, उनको कई बड़े बड़े राज्यों का प्रभारी बनाया। हमने पश्चिम बंगाल में उनको देखा कि वो कैसे यहाँ पर लगातार बैठके करते थे, घर घर जाते थे। और भूपेंद्र यादव ने कोई रैली नहीं की। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भूपेंद्र यादव और बिप्लब देव जैसे नेताओं ने खास कोई बड़े प्रोग्राम नहीं किए, कोई रोड शोज नहीं किए, उन्होंने बस इंटरनल स्ट्रैटेजीज बनाई डोर टू डोर लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए। एक बात और कि 28 फरवरी तक यहाँ पर एग्जाम्स थे, जब 28 फरवरी यानी कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक का जो दौर था, जो समय था, उस वक्त यहाँ पर एग्जाम्स थे बच्चों के माफ कीजिएगा, तो उन एग्जाम्स के दौरान यहाँ पर कोई स्पीकर बजाना या कोई रैली करना यहाँ पर अलाउड नहीं था। उस वक्त क्या हुआ, भूपेंद्र यादव और बिप्लब देव की टीम ने लगभग 1,25,000 से ज्यादा छोटी बैठकें की, यानी कि 15-20 लोगों के साथ एक बैठक कर ली जाए और उन्हीं में से किसी एक को जिम्मेदारी दी गई कि आप जाके कहीं और बैठक कीजिए, वहां पर लोगों से, कार्यकर्ताओं से जुड़िए, लोगों को बताइए कि कैसे बीजेपी की सरकार लानी है। तो 1,25,000 से ज्यादा बैठकें एक महीने डेढ़ महीने के अंदर इन नेताओं ने की और कनेक्ट करते हुए धीरे धीरे अमित शाह की टीम आगे बढ़ती रही और लोगों को जोड़ती रही और आज कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमको 200 से ज्यादा सीटों में बीजेपी की आती हुई दिखाई दे रहा है। हमें एक बात और पता चली श्वेता कि गृहमंत्री अमित शाह जब 15 दिन तक यहाँ पर रुके हुए थे तो वो लगातार रात के 3-4 बजे तक नेताओं के साथ बैठक करते थे और अगले दिन कैसे रोड शोज करने हैं, क्या बातें रखनी है, उन सभी चीजों को लेकर चर्चाएं होती थी। घंटों काम करने का नतीजा आज बीजेपी की ये स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में होती हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले और हलचल बढ़ गई है, हलचल बढ़ चुकी है यहाँ पर। जो सुरक्षा कर्मी थे वो फिलहाल जो है उन्होंने जो सुरक्षा घेरा बनाया था वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अब खत्म हो चुका है और कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे तो यहाँ पर विधायक दल की बैठक भी शुरू हो जाएगी। जी
1: कोई चूंकि यहाँ पर उनकी एंट्री के साथ वो सुरक्षा लेकिन फिलहाल वो नहीं दिख रही है, लेकिन मुमकिन है कि कुछ और एंट्रेंसेस हों जिसमें गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हो। अभी तो बड़ा दिलचस्प होगा ये भी देखना कि शुभेंदु अधिकारी जो दो ऐसी सीटों से जीत कराए हैं, एक वो जगह जो उनका अपना गृह क्षेत्र है नंदीग्राम का पूर्वी मेदिनीपुर और दूसरा भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी को उनके गढ़ में आके उन्होंने हराया, यानी कोलकाता के भीतर आकर वो कौन सी सीट अभी छोड़ते हैं वो भी पश्चिम बंगाल में बड़ा इंटरेस्ट का विषय होगा क्योंकि बहुत टफ कंटेस्ट था दोनों ही सीटों में। हालांकि अब जब बीजेपी इतना बड़ा मैंडेट वहां पर लेकर आ चुकी है पीयूष, तो उसके बाद बहुत ज्यादा ये दिक्कत नहीं बचती है कि कौन सी सीट वो छोड़ते हैं, लेकिन सिंबॉलिक महत्व उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
0: ये देखिए सूत्र ये बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर को रिटेन करेंगे और नंदीग्राम छोड़ देंगे। उसका कारण ये कि भवानीपुर से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया है और जो नंदीग्राम है वहां पर उनका घर है, तो नंदीग्राम घर होने की वजह से लगातार उनके दौरे वहां पर रहेंगे और अपने ही किसी एक सहयोगी को वहां से वो टिकट दिलवाने की बात भी केंद्रीय नेतृत्व से कर सकते हैं क्योंकि जब वो छोड़ेंगे तो वहां पर बायपोल होगा और जब
1: बायपोल शुरू हो गई है। पीयूष साथ में ये भी बता दें विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं कोलकाता में, बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। इंद्रो इंद्रजीत आवाज आ रही है आपको? कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की जी जी जी जी बताएं।
7: श्वेता सुन सकता हूं मैं आप अगर अपना
1: विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है वहां इंद्र
8: बिल्कुल देखिए राजनीति में
7: देखिए कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह वो पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ जो विधायक दल की मीटिंग है वो मीटिंग शुरू हो जाएगी, और उसी की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। काफी हलचल है क्योंकि मीडिया की गहमागहमी भी है, उसके साथ साथ 207 जो एमएलएज है और उनके जो
1: अमित शाह की तस्वीरें हम विधायक दल की बैठक में देख पा रहे हैं इस समय। इंद्रजीत, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं उन सबको माल्यार्पण, उनको प्रणाम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये भूमि चौरंगी के इलाके में ही उनका वो निवास स्थान है, जहां जो एक संग्रहालय के रूप में आज वहां के लोगों के लिए मौजूद है। और चंद कदमों की ही दूरी पर एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मकान, एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मकान, बड़े बड़े प्रख्यात विख्यात लोग वहां से आते हैं, सत्यजीत रे की भी निशानियां वहां पर मौजूद हैं। लेकिन यहां जो आप उन तस्वीरों पर माल्यार्पण देख रहे हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उस विचार को आगे बढ़ाते हुए आज पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और उसी सरकार का जो मुखिया होगा उस नाम के चयन के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक जिसकी शुरुआत हो चुकी है इस समय। इंद्रजीत,
7: बिल्कुल श्वेता, मीटिंग शुरू हो चुकी है। मैं फिर से दिखा दूं, ये जैसा कि आपने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी जो जन्मभूमि पश्चिम बंगाल, और तथागत रहे जो पूर्व अध्यक्ष रहे बंगाल बीजेपी के, उनसे बात हो रही थी दो दिन पहले, तो वो ये कह रहे थे, उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो वो भी ये कह रहे थे कि कितनी ऐतिहासिक ये और कितनी इमोशनल क्षण उन सब के लिए जो पुराने बंगाल में बंगाल बीजेपी करते थे, जब एक एमएलए हुआ करता था या दो एमएलए हुआ करता था, ऐसा समय हुआ करता था जब बीजेपी का झंडा पकड़ने वाला बंगाल में नहीं मिलता था क्योंकि कम्युनिस्टों का शासन रहता था। तो उनके लिए एक बहुत ही एक माइलस्टोन आप मान सकते हैं पश्चिम बंगाल में। और ये जो आप दिख रहे हैं, दोनों की जो प्रतिमा यहाँ पे लगाई हुई है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो सबसे ऊपर है, नीचे लिखा हुआ है बांग्ला में, नवो निर्वाचित विधायक दलेर बैठक, नई चुने गए विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी। और ये इसको हम लोग जितना भी हाईलाइट करें उतना कम है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खुद की धरती में बीजेपी, पूरे देश में बीजेपी जब इतने सारे राज्यों में राज कर रही है, लेकिन एक रह गया था पश्चिम बंगाल जो किसी भी तरह उसका वो फॉर्मूला बीजेपी नहीं निकाल पा रही थी, अब 2021 में नहीं निकल पाया, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 18 सीटों से 12 सीट हो गया, और कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि जितने भी बाईपोल्स हो रहे थे बंगाल में बीजेपी हार रही थी, तो जो कार्डर्स के मनोबल है उस पर भी असर पड़ रहा था। लेकिन 2026 का ये जो कैंपेन है जहां पे बीजेपी ने ये कहा भय नॉय भरोसा या भय नहीं भरोसा, ये एक गेम चेंजर माना जा सकता है, क्योंकि सिर्फ जो भय की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही थी उसको बदलने की कोशिश नहीं हुई है। आज देखिए विरोधी दल जो बन चुकी है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, उसके अंदर में भी जो नेता है वो बाहर आके कह रहे हैं कि डर के वजह से वो लोग कुछ कहते थे आज कुछ और कह रहे हैं, और दल के जो नेतृत्व है उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो भय का वातावरण या माहौल था ये एक ऑल इनकम्पासिंग पश्चिम बंगाल के राजनीति में था, हर एक पार्टी में था, उसको तोड़ना मुझे लगता है बीजेपी का एक सबसे बड़ा उपलब्धि है, और यही कारण है
1: ममता बनर्जी के सामने भी यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे, ये बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हो गया है, बंगाल को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे, ये बीजेपी विधायक दल में इस बात पर मुहर लग गई है। शुभेंदु अधिकारी जो कि जिनके नामों की चर्चा सबसे अधिक हो रही थी, एक समय पर बीजेपी का मुखर विरोध भी करते थे, तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन जब से बीजेपी में शामिल हुए तब से तृणमूल कांग्रेस किस तरीके से पूरी तरीके से उखड़ जाएगी पश्चिम बंगाल से, बीजेपी का कमल कैसे खिलेगा, ये पूरा काम जमीन पर कैसे किया जाए, कैसे पार्टी में टिकट का आवंटन हो कि जीत की संभावना सर्वाधिक रहे, प्रचार के लिए मंच चाहे पूर्वी बंगाल का हो या फिर किसी भी हिस्से में, शुभेंदु अधिकारी हर जगह जाकर प्रचार करके वोट मांग के अपनी सीट पर भले उन्होंने उतना प्रचार न किया हो बाकी सीटों पर घूमते रहे। आज अगर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिख रहे हैं तो ये पूरी बीजेपी के लिए एक सपना साकार होने जैसा है। एक मिशन, एक लक्ष्य के तौर पर अमित शाह ने इसे स्थापित किया था। अब कैसे जिस बंगाल का वादा, जिस बंगाल का भरोसा बंगाल की जनता को बीजेपी ने दिया है वो आगे जाएगा, उसकी जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी पर, जो कि दो दो सीटों से जीतकर विधानसभा में पहुंच रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। नंदीग्राम में कभी उस आंदोलन के साथ ममता बनर्जी को स्थापित किया था, पूर्वी मेदिनीपुर में एक ताकत के रूप में टीएमसी उभरी थी, लेकिन आज वही भूमि बीजेपी को स्वीकार कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार जब पश्चिम बंगाल में बनेगी तो उसके मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। पीयूष, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे, बैठक में उनके नाम पर मोहर लग चुका है। मारिया
8: जी, बिल्कुल सही कहा श्वेता, बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग चुकी है। शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री, और इसी के साथ ही बीजेपी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है सुनार बांग्ला का वो आज से शुरू होगा। और बीजेपी का अगर आपको नारा याद हो श्वेता, भय नहीं भरोसा, उसी भरोसे का के गवर्नेंस को कायम करने की जिम्मेदारी होगी शुभेंदु अधिकारी की, जिन्होंने ममता बनर्जी को 2021 में नंदीग्राम में हराया और 2026 में उन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया। मुझे याद है जब मैंने उनका कैंपेन कवर किया था श्वेता और उनका इंटरव्यू किया था नंदीग्राम में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 140 से ज्यादा उनके खिलाफ केसेस और FIR है जो ममता सरकार ने, तृणमूल सरकार ने उनके खिलाफ करवाए थे, लेकिन वो उससे भी डरे नहीं और डटे रहे हैं। और इसीलिए शायद बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने उनके लीडरशिप पे भरोसा जताया और ये दिखाया कि जो अब आगे का जो बीजेपी का एम है, जो जिस तरह का बंगाल वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए शुभेंदु अधिकारी सबसे खास रहेंगे, उसके लिए वो सही चॉइस हैं, क्योंकि उनको पता है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा कि पिछले 48 घंटे में काफी सारी घटनाएं बंगाल से खबर आई है, और उसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी भी उसमें कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है श्वेता। तो इसलिए इस बात पर ये चैलेंज सब देखते हुए बीजेपी को ये लगता है कि ये सबसे बेहतर साबित होंगे इस माहौल में बंगाल को गवर्न करने के लिए और मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन क्या क्या फैक्टर शुभेंदु अधिकारी के फेवर में गया, सबसे पहले ये कि वो जायंट किलर हैं, लेकिन ये भी श्वेता कि वो तृणमूल कांग्रेस के सिस्टम को समझते हैं, टीएमसी के सिस्टम को समझने वाला जरूरी था, क्योंकि यहाँ बंगाल की सियासत में एक हिस्ट्री रही है कि जब भी अगर कोई नई पार्टी आती है तो लगभग काडर दूसरी पार्टी का बदलता है और ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए शुभेंदु अधिकारी को पता है कि किस तरह से सही तौर पर बीजेपी के प्रिंसिपल्स पर बंगाल की सरकार को वो चलाएं, और इसलिए अब जब आज उनका नाम जो अनाउंस हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स में ये भी फैक्टर था कि उनको नट्स एंड बोल्ट्स पता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के आदमी है और पैन बंगाल, पूरे बंगाल में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। वो अपने बारे में बोलते हैं कि मैं शुभेंदु अधिकारी मेदिनीपुर से हूं, लेकिन जब इस चुनाव में लगभग 100 सीटों की उनको जिम्मेदारी दी गई थी जहां उन्होंने कैंपेन किया, और वो उस 100 सीट में हमारे सूत्र बता रहे हैं करीब उनके स्ट्राइक रेट 90% रहा है। तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी का स्ट्राइक रेट, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और जायंट किलिंग के किलर के तौर पर उभरने वाला इमेज, ये सब उनके फेवर में वर्क किया है।
1: कहा जा रहा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कल शपथ ग्रहण 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री सब वहां पर पहुंचेंगे, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, 1970 में दिसंबर के महीने में जन्म है शुभेंदु अधिकारी का। ये वो समय था जब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की तरफ से, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से लोगों का आना, रिफ्यूजियों का आना शुरू हो चुका था। एक वर्ष के जब रहे होंगे इंद्रजीत, उस समय 15 दिसंबर 1970 में उनका जन्म है, यानी एक वर्ष के जब तक वो हुए तब तक बंट चुका था पाकिस्तान, बांग्लादेश का गठन हो चुका था। आज उसी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैदी से चुनाव प्रचार में शुभेंदु अधिकारी जब लगते हैं, तो जैसा मारिया भी कह रही है ना कि तृणमूल की फंक्शनिंग भी वो जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से ऊपर उठाया गया है वो जान रहे हैं, और बंगाल के उन मुद्दों को भी समझ रहे हैं। इंद्रजीत,
7: बिल्कुल श्वेता, शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी के अंदर ये जो जर्नी है वो भी स्पेक्टेक्युलर है। 2021 में बीजेपी भाजपा ज्वाइन किए वो, और 2026 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो सोचिए 5 साल में किस तरह की छलांग उन्होंने लगाई है, और वो भी कैसे, क्योंकि वो जब तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे थे तो किस वजह से छोड़े थे, अभिषेक बनर्जी के वजह से, क्योंकि उनको लगा अभिषेक बनर्जी एक पैरेलल अथॉरिटी बन रहे, उनका भविष्य वहां पे कुछ नहीं है, क्योंकि वो सबसे कहा जा सकता है सबसे कैरिस्मेटिक लीडर ममता बनर्जी के बाद उभरता हुआ सितारा तृणमूल कांग्रेस के अंदर थे। वो निकल के आए, उनको चैलेंज किया अभिषेक बनर्जी, उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया 2-2 बार, और 5 साल में अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। अनुपम दा भी हमारे साथ है। अनुपम दा, शुभेंदु दा का ये जो राजनीतिक उत्थान है पश्चिम बंगाल की राजनीति पे, जहां वो इस वक्त पहुंच गए हैं, 2 बार ममता बनर्जी को हराना और उसके बाद 5 सालों की इस लड़ाई बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद आज वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। ये ऐतिहासिक, महज ऐतिहासिक नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जो इतिहास है उसमें एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है।
9: देखिए, शुभेंदु अधिकारी हमने देखा पश्चिम बंगाल सरकार में जब थे तब भी वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक समय तुम्हें याद होगा कि सिंगूर आंदोलन, नंदीग्राम आंदोलन, खुद वो उस वक्त में ममता बनर्जी के बाद दूसरे सबसे बड़े कद के नेता बनकर उभरने लगे थे, और धीरे धीरे 2011 के बाद तो जब उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया, धीरे धीरे जब वो उनको मंत्रिसभा मिलने लगी तब उनका कद और बढ़ा होने लगा।
7: तो एक समय पे 6 मिनिस्ट्री उनके पास हुआ करता।
9: ऐसे में उनको उनको मुख्यमंत्री बनाने के पीछे ये भी एक वजह है, छोटी सी है लेकिन ये भी एक वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार किस तरह से काम करती है, इसका अनुभव आज की तारीख में बीजेपी के पास सिर्फ 2 लोगों को है। एक है शुभेंदु अधिकारी, दूसरा है तापोश राय। तापोस राय भी मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत सालों तक मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन तापोस राय को, चूंकि उनकी उम्र काफी है, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, उनको स्पीकर का पद दिए जाने की बात है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की जहां तक बात है, उन्होंने बहुत सारी मंत्रिसभा पश्चिम बंगाल सरकार में संभाली है, बहुत दिनों तक उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए काम किया है, तो काफी अच्छा खासा उनका अनुभव है कि पश्चिम बंगाल में सरकार कैसे चलाई जाती है। तो ये भी एक वजह इन सबके पीछे, उनको बनाए जाने के पीछे रही है। बाकी तो वजह है, जॉइंट क्लर्क के तौर पर उभरे, सिटिंग सीएम को 2 बार हराया, खास तौर पर पूर्वी मिदनापुर और जंगल महल में जो टीएमसी के खिलाफ जो बीजेपी का विस्तार हुआ, जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ, उसमें सबसे अहम भूमिका शुभेंदु अधिकारी ने निभाई। इस पूरे इलेक्शन में चुनाव प्रचार के दौरान सब जगह वो गए, उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक, अपने को सिर्फ महज नंदीग्राम और भवानीपुर में सीमित नहीं रखा। तो ये सारी वजहें उनके फेवर में गई हैं और बहुत सारे समीकरण मिले हैं, तभी जाकर बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है।
7: कहीं ना कहीं मुझे श्वेता ये भी लगता है कि ये जो समीकरण की बात अनुपम दा कह रहे हैं, और जो बंगाल की राजनीति हम फॉलो करते हैं, हमें ये लगता है कि इतना हेविली स्टैक्ड है शुभेंदु अधिकारी के फेवर में कि ये कोई सरप्राइज हो सकता था या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि शुभेंदु अधिकारी को बनाने के अलावा बीजेपी के पास और कुछ चारा
1: आज तक पर हम लगातार बता रहे थे कि किसी भी तरह का वो नहीं, मतलब सूत्रों के हवाले से ये खबर पुष्ट थी हमारे पास। और सबसे पहले हमने मारिया ये बताया कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के नाम पर अब कोई संशय नहीं रह गया है, वही होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री। क्या हम ये उम्मीद करें कि डिप्टी सीएम्स के नाम की भी आज घोषणा होगी, या फिर वो स्वेरिंग इन के समय वो चीज स्पष्ट हो पाएगी? मारिया,
8: जी बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा, सहमति बन चुकी थी, ये लगभग तय था। और जो जैसे संकेत आप बता रही थी सुबह से आ रहे थे, जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पीछे
10: और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है, लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बुके।
11: এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যার সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের শ্রমিক ভট্টাচার্যকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করাও।
12: आप लोग बैठ जाओ।
11: আমাদের উড়িষ্যা সিএম আমাদের মোহন মাঝি জি সংবর্ধনা করলেন, আমাদের বিধায়ক দল নেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের
1: শুভকামনাই দি গই, फूलों का हार पहनाया गया। सबसे पहले अमित शाह ने उन्हें फूलों का हार पहनाया।
11: हमरा उड़ीसा सीएम,
1: उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी उनका स्वागत सम्मान हुआ। अब नया मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिलने वाला है, बीजेपी के विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं शुभेंदु अधिकारी, और कल सुबह 11 बजे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से नेताओं से कहा गया था कि वो निर्णय लें और एक ही नाम का निर्णय आया।
13: श्रीयुक्त अमित शाह जी, पश्चिम बंग राज्य बीजेपी के अध्यक्ष श्रीयुक्त शमिक भट्टाचार्य जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त सुकांत मजुमदार जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त शांतनु ठाकुर जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक बीजेपी मान्यवर श्रीयुक्त सुनील बंसल जी, सह प्रभारी मान्यवर अमित मलविया जी, नवनियुक्त विधायक दल की नेता मान्यवर श्री शुभेंदु अधिकारी जी और विधानसभा के भी विरोधी दल के नेता,
1: तो संपन्न हुआ ये। लेकिन अब कल जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भी उतना ही भव्य होने वाला है। इंद्रजीत कुंडू, जब भी पश्चिम बंगाल में जब भी हम कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन देखते हैं तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड उसका गवाह बनता है। कल एक नया इतिहास, एक नई जिम्मेदारी के साथ शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करने वाले।
7: बिल्कुल श्वेता, और शमिक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि एक सामूहिक अनुष्ठान होने जा रहा है, एक भव्य अनुष्ठान होने जा रहा है जैसा बंगाल इससे पहले नहीं देखा है। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, कल 9 मई है।
1: इंद्रो,
7: कल
1: थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि अमित शाह ने जो ऐलान किया है हम एक बार फिर सुना देते हैं अपने दर्शकों को।
10: अभी कुछ दिन कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है, लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
12: तो अमित शाह यहां पर ऐलान करते हुए कि शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के भारतीय जनता पार्टी

पश्चिम बंगाल विधायक दल के नेता चुने गए हैं और सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के भीतर होंगे, 56 साल के शुभेंदु अधिकारी। बड़ा दिलचस्प सफर रहा है उनका राजनीतिक सफर, और यहां पर शुभेंदु अधिकारी का स्वागत किया अमित शाह ने। उनका नाम ऐलान करने के बाद माला पहनाई गई और उसके साथ साथ दुर्गा मां की

0: का नाम ऐलान करने के बाद माला पहनाई गई और उसके साथ साथ दुर्गा माँ की तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष थे पश्चिम बंगाल के भीतर, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में शुभेंदु अधिकारी का सफर भी एक विधायक, सांसद और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर के तौर पर ममता बनर्जी की कैबिनेट में उनका सफर रहा है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2021 में पहली बार उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था और उसके बाद 2026 में एक बार फिर, लेकिन इस बार भवानीपुर में मात दी थी ममता बनर्जी को। उसके बाद से ही शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था और इस बात का जिक्र भी अमित शाह ने किया जो पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर गए हुए थे। और उन्होंने कहा कि हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, अलग अलग नेताओं से राय मांगी, उनसे प्रस्ताव मांगे गए और सिर्फ एक ही नाम का प्रस्ताव उन सभी के तरफ से आया गया, दूसरा कोई भी प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं की तरफ से नहीं आया और एक ही नाम वो था शुभेंदु अधिकारी का नाम। काफी सारे चैलेंजेस उनके सामने होंगे, लेकिन एक नई पारी पश्चिम बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी की और उसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी की भी एक नई पारी विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री, नेता विपक्ष और अब मुख्यमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी की यह पारी होगी। यह भी कहा जा रहा है कि इनके कैबिनेट में दो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। कल सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे पश्चिम बंगाल में ये विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के भीतर। अमित शाह ने ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। आज सुबह अमित शाह कोलकाता पहुंचे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विधायकों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के भीतर जो विधायक दल की बैठक हुई वहां पर यह शपथ कल ली जाएगी। कल 11 बजे अमित शाह ने इस नाम का ऐलान किया। परेड ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार समारोह आयोजित किया गया है जिसमें शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी, बड़ी दिलचस्प बात है कि ममता बनर्जी अविवाहित थी, 15 साल तक उन्होंने राज किया और शुभेंदु अधिकारी भी अविवाहित है। एक बार आपको एक बार फिर सुना देते हैं कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का नाम घोषित किया गया।
1: अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है, लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है, इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: तो अनिर्बान के पास हम चलते हैं। अनिर्बान शुभेंदु अधिकारी के घर के बाहर वहां पर खड़े हैं। दरअसल ये शुरुआत जो इनकी नई सफर की शुरुआत जो है वो न्यू टाउन विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हो रही है जिसमें बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छवि नजर आती है। तो शुभेंदु अधिकारी पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन अनिर्बान उनके घर पर क्या माहौल है? अधिक शुभेंदु अधिकारी के घर में राजनीति नई नहीं है, किस तरीके का माहौल अनिर्बान? पीयूष, पहले पीयूष के पास चलेंगे क्योंकि वहां पर जहां पर ये घोषणा की गई वहां पर पीयूष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पीयूष, बड़ी दिलचस्प घोषणा की गई उन्होंने। उन्होंने कहा कि सभी से हमने राय मांगी और एक ही प्रस्ताव, 8 प्रस्ताव आए, सभी प्रस्तावों में एक ही नाम दिया गया था। यानी एक तरीके से कहा जाए पूरे 207 जो विधायक है उनकी मुहर इस प्रस्ताव पर लगी है, ये हम कह सकते हैं।
2: जी बिल्कुल साहिल, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब विधायक यहाँ पर पहुंच रहे थे कन्वेंशन सेंटर में विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, तो कैमरे पर तो कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन जब हम माइक हटाते थे तो लगभग सभी विधायकों ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया था और उसी वक्त लगभग ये साफ हो गया था कि शुभेंदु अधिकारी ही अगले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के बनने जा रहे हैं। निशित परमानी के एक अकेले विधायक थे जिन्होंने ये कहा था कि जिस नेता ने मुख्यमंत्री को यानी ममता बनर्जी को 2 बार हराया उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए और जो विधायक सभी कार्यकर्ताओं के साथ में

0: उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं विधायकों की मन की बात अब केंद्रीय नेतृत्व ने पढ़ ली और शुभेंदु अधिकारी जिनको लेकर चर्चा।
1: इस बीच खबर ये भी आ रही है कि 6:30 बजे राज्यपाल से शुभेंदु अधिकारी मिलेंगे और अपना सत्ता स्थापन करने का दावा भी पेश करेंगे। सरकार बनाने का दावा शुभेंदु अधिकारी द्वारा पेश किया जाएगा शाम को 6:30 बजे, यानी अब से करीब डेढ़ घंटे के बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल के राज्यपाल को मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पीयूष
0: जी बिल्कुल, 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई है और शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान विधायक दल की बैठक में हो चुका है साहिल। तो अब आगे की प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा, राज्यपाल से मिलेंगे, जो दावा है जो जितनी सीटें बीजेपी ने जीती है उन सभी सीटों को आगे रखा जाएगा, दावा पेश किया जाएगा कि अब अगली सरकार बीजेपी के द्वारा हम लोग बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास सब बहुत।
2: मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साथ आए हुए सह पर्यवेक्षक श्री मोहन चरण मांझी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, और एक प्रकार से आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ राज्य और केंद्र की टीम के साथीगण, और आज जिसको देखकर मन आत्मा शरीर सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, इतना बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा है, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी, सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजो कर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व तो है कि हर निश सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है, चित्त जेथा भय शून्य उच्च जेथा शीर, जहां मन भयमुक्त हो और शीर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल। 5 दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के हास की दृष्टि से, और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है। और हम सबका दायित्व तो है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें। बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें। हम सब की जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही इस मैंडेट का एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर। 2014 से जो यात्रा निकली ये अभूतपूर्व यात्रा है। मित्रों, अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं, 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाही है, विचार के लिए गवाही। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के, केरल और बंगाल इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को, देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है, 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। और 3 से 77 और 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में 0 सत्ताधारी दल का एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। जब चलता था तब चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए, न केवल टीएमसी, इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है, और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं है, एक भी नहीं है। 93% मतदान हुआ है और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए हैं। मैं आज चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को, बंगाल सरकार के सभी कर्मचारियों को और बंगाल पुलिस को भी हृदय पूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है इससे विश्व भर में लोकतंत्र का मैसेज गया है। 23 जिलों में से 20 जिलों में भाजपा नंबर एक पार्टी बनी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा विधायक नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर 16 की 16 भाजपा, झारग्राम सभी सीटें भाजपा, पुरुलिया सभी सीटें भाजपा, बांकुड़ा सभी सीटें भाजपा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय होती है तो पानीहाटी की प्रत्याशी श्रीमती रत्ना देवनाथ वो हमारी प्रत्याशी बनकर बंगाल भर में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ है वो अत्याचार का प्रतीक बनकर सभी माताओं बहनों को एक प्रकार से ढाढ़स बंधा। हिगलगंज की प्रत्याशी बहन रेखा पात्रा संदेश खाली के अत्याचार के सामने सत्याग्रह की प्रतीक, और ओसग्राम की प्रत्याशी कलिता माझी वो बंगाल के, कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा, बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाते हैं। और बंकिम बाबू के परिवार से भी बहन सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा बात ये है, सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी खड़े हैं यहां पर, सबसे बड़ा बात यह है कि वंदे मातरम जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बंकिम बाबू ने की हुई उद्घोषणा थी, इसके 150वें साल में ही हमें ईश्वर ने बंकिम बाबू की भूमि पर सरकार बनाने का मौका दिया है। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। और ये शांतिपूर्ण चुनाव आने वाले दिनों में बंगाल के लिए शुभांकर साबित होने वाला है। मैं आज इस मंच से सभी दलों को भी अपील करना चाहता हूं, आइए हम सब साथ में मिलें, लोकतंत्र ये मत की अभिव्यक्ति का उत्सव है, इसमें हिंसा कहां से हो सकती है? देश के सभी राज्यों में हिंसा समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए, कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है मित्रों। और इसी के लिए हमें मैंडेट मिला है, हमें इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक धैर्यपूर्ण साधना के कारण ही आज ये सिद्धि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। हम जहां जहां शासन में आए वहां चुनावों में पारदर्शिता लाए हैं, जहां जहां हम शासन में आए वहां पर हिंसा मुक्त चुनाव हमने कर दिखाए हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जनता का मत भय के बगैर अभिव्यक्त हो पाए, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। और मैं आज इसमें सभी दलों का सहयोग भी मानना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई, आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है, और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग बंग कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। और जिन लोगों ने पूर्वी भारत को विकास से महरूम रखा, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे पूर्वी भारत ने किया है। मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गए उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा ना राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है, और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दुनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएंगे। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही, मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। और फिर से एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जो वाक्य है वो सच साबित होगा, बंगाल आज जो सोचता है भारत कल सोचता है। ऐसा बंगाल का निर्माण करने का जिम्मेदारी हम सबके सिर पर देश की जनता ने रखी है। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, कला, साहित्य और संस्कृति पूरे भारत की पहचान बंगाल से होती थी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा, इस सभी क्षेत्रों में बंगाल देश का नेतृत्व करें। हमने एक बहुत छोटा सा वादा किया है कि जैसे पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, ऐसे हम यहाँ पर तख्ते के लिए मतलब थिएटर के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो दुनिया भर के थिएटर को ताकत देगा। मित्रों, ये हमारा एक छोटा सा जेस्चर हमारी सरकार की दिशा बताने के लिए, इसके परिचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से, और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बंगाल की जनता को मन पूर्वक धन्यवाद और प्रणाम करता हूं, और शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। हमारे 321 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है आज उसका परिणाम मिला है। और देश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी से लेकर हम बूथ के अध्यक्ष तक सभी ने मेहनत की है, इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार मन पूर्वक बोलेगा, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
3: एयरपोर्ट हमरा
1: शाह शुभेंदु अधिकारी का चयन होने के बाद अमित शाह वहां पर संबोधित कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को। बड़ी बातें उन्होंने जो कही है, ममता राज में अपराधी ही राजनेता बन रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण उनके शासन में हुआ था वो अब खत्म होगा। अंग बंग कलिंग सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी का राज, घुसपैठ रोका जाएगा, ध्रुवीकरण नहीं, दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये जीत है, ये भी बात अमित शाह ने वहां पर कही है। साथ साथ 100 साल के वैचारिक यात्रा की समाप्ति एक तरीके से यहां पर होगी, वो यात्रा पूरी करने के बाद बंगाल में आज उनकी सत्ता बन रही है। अनिर्बान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर से आते हैं, वहां पर जश्न हो रहा है। अनिर्बान
4: भारत माता के बंदे बंदे, आमी प्रथमे श्रद्धार संगे कृतज्ञतार संगे अंतर थेके आमी श्रद्धा एवं प्रणाम निवेदन करब विश्वेर सर्वबृहत् राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टीर जे गणतांत्रिक व्यवस्थापना रयेछे সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় আজকে যিনি পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে গণতান্ত্রিকভাবে আপনাদের সকলের মতামত এবং সমর্থন নিয়ে আমাকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করার কাজ পরিচালনা করেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির অত্যন্ত একজন বলিষ্ঠ নেতা, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চাণক্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজিকে সহপর্যবেক্ষক হিসেবে আমাদের প্রতিবেশী উড়িষ্যা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিজি এসেছেন, তাকেও আমি সম্মান এবং জোহার জানাব। আমাদের রাজ্যের মাননীয় সভাপতি, আমার অগ্রজ দাদা, আমার অভিভাবক, আমার পরিচালক, মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ শমিক ভট্টাচার্যকে অন্তর থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বছরের পর বছর ধরে, 3 বছরের অধিক কাল পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে তিনি এক সূত্রে গেঁথে আজকের এই সাফল্যের দোরগোড়ায় পিছন থেকে পৌঁছে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সকলের নেতা সব কাজে সফল হয়েছেন, আজকেও সফল সুনীল বানসালজি, তাকে আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাব। ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবজি, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হয়ে ঠিক দুর্গাপূজার পরে পুজোর তিনি পশ্চিমবাংলায় এসে
5: দুর্গাপূজা
4: যেভাবে
5: খতম ভি নেই হুই,
4: আমাদের সকল
5: लाल में आकर जिस तरीके से हम सभी को एक सूत्र में पिरोकर चुनाव की रणनीति तैयार की, दार्जिलिंग से दिखा उस बिहार के तात्विक सब घूम घूमे भूपेंद्र यादव जी को मैं सहा चढ़ाता।
4: 4 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন সহপ্রভারী মঙ্গল পাণ্ডে জি, তাকেও ধন্যবাদ।
5: মানে 4 বর্ষ से हमारे साथ रहे मंगल पांडे जी को
4: अमित मालविया जी,
5: 5 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে अमित पालजी जी को जो 5 वर्षों
6: हमारे संगे थे के हमारे साथ धन्यवाद जानिए चैन हमारे काज करे चैन त्रिपुरार प्राक्तन मुख्यमंत्री विप्लव देव जी के एवं
5: मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव जी को और शासकों का प्रतीक
6: नरेंद्र मोदी
5: मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने अलीपुर द्वार में सबसे पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा में पश्चिम बंगाल की जनता को सपना दिखाया था जिन्होंने दमदम में कोलकाता मेट्रो के उद्घाटन के वक्त पश्चिम बंगाल के हित और गौरव को वापस लौटाने की गारंटी दी जिन्होंने क्रिकेट पर मैदान में भय आउट और भरोसा इन करने की बात कही जिनको देखकर लोगों ने हमें वोट दिया जिनकी वजह से हम जीते हमारे नरेंद्र मोदी जी को मैं अपने अंतर मन से कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ नरेंद्र मोदी की के लिए सभी विधायक एक बार खड़े होकर 1 मिनट तक ताली बजाएं
6: मोदी जी जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद आसन ग्रहण करुन आमादेर पश्चिम बंगे भारत भुक्ति
5: हमारे पश्चिम बंगाल में
6: दुई स्थापति 1947 এর 20 জুন
5: 1947 का
6: प्रतिष्ठा राजन प्रसाद मुखर्जी एवं भारत सेवा संघ के प्रतिष्ठाता स्वामी प्रणवानंद
5: भारत सेवा आश्रम के प्रतिष्ठाता स्वामी प्रणवानंद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं प्रणाम करता हूँ
6: पश्चिम बंगाल जरा भारतीय जनता पार्टी
5: मैं स्मरण करता हूँ पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की जगह पहुंची है उनका योगदान रहा
6: शास्त्री महोदय
5: प्रयास विष्णुकांत शास्त्री महोदय प्रयास सुकुमार सत्य प्रतिजी प्रयास सुकुमार बनर्जी जी एवं
6: कपिल
5: घोष राहुल सिन्हा सत्येंद्र दिलीप घोष
6: भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता
5: स्मरण करना चाहता हूँ की जो भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बलिदान दिया
6: हजार हजार लक्ष लक्ष বিজেপি কর্মী যারা ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন
5: অত্যাচার আনে বালে দিন আপনি সপন পুরা করতে কাম ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার
6: নরেন্দ্র মোদী
5: আমারে নেতা नरेंद्र मोदी जी ने जो जो गारंटी दी है सारी गारंटी पूरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी मैं नहीं हम लोग नीतिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी
6: चार्जशीट प्रकाश दिन माननीय नेता अमित शाह जी
5: चार्जशीट प्रकाशित हुई अमित शाह ने दो वादा किया था लोगों को संदेश खाली से आखिर होकर जिन माँ बहनों पर अत्याचार हुआ है उनके लिए कमीशन बैठाया जाएगा और जो आरोपी है उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा अमित शाह ने चार्जशीट की घोषणा के दौरान वादा किया था कि करप्शन और स्कैम जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कमीशन बैठाया जाएगा और सरकारी संस्था जिन्होंने दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ हम कदम उठाएंगे। जो मैनिफेस्टो अमित शाह ने प्रकाशित किया है और बाद में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने और हमारे प्रधान प्रचारक ने जिनकी मीटिंग में लाखों लाखों लोग आए जिनके परिश्रम और जिन्होंने वादा किया है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि आने वाले मंडल और विधायक दल और भारतीय जनता पार्टी के संगठन विचारधारा से जुड़े लोग और असंख्य पश्चिम बंगाल से सांस्कृतिक चेतना के राष्ट्रवादी लोग संकल्प पत्र की हर बार समय सीमा के मुताबिक पूरा करेंगे। आइए, एक ही मंत्र है स्वामी जी का मंत्र, चरैवती चरैवती
7: सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
5: हमारा एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, आने वाले दिनों में यही हमारा मंत्र है। आइए पश्चिम बंगाल को मोदी जी के आदर्श के मुताबिक नव निर्माण करें।
7: प्रत्याशा पूरण करी इतनी हो आज के दिन हमारे संकल्प खूब सठीक भावे माननीय अमित शाह जी बोले
5: बहुत सही तरीके से। अमित शाह जी ने कहा है कि हम फोन कर भरोसे के साथ वापस खड़े हुए हैं। अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने कर से उबर कर वापस कदम लगाया
7: पश्चिम बंगाल बीजेपी कर्मी नेतारा नान आ समुद्र हिमाचल भारतीय जनता
5: पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि समूचे देश के बीजेपी कार्यकर्ता और देश के लोगों ने जिस तरीके से हमें सहयोग दिया है, समीपता को जिस तरीके से सहयोग दिया गया है, मैं उन सभी को आंतरिक प्रणाम करता हूँ। आपकी सहायता से ही हम लोग जीते हैं। आओ भरोसा इन कवि गुरु की कथा
7: गृहर प्राचीर आपन प्रांगण तले दिवस सर्वरी वसुधारे करे नाई खंड क्षुद्र करी मुक्त कर भय आपन माझे শক্তি ধরো নিজেরে কর জয় জয় করতেই হবে বাংলার মানুষের আশা ভরসা জয় করার মত
5: বাংলার কে লোগো কি আশা আর ভরসা তো ইতনা হি হোগা
7: আগামী নির্বাচনে ইতিবাচক কাজ করে সংকল্প পত্র কার্যকর করে মোদিজির স্বপ্ন পূরণ করে বাংলার মানুষের আশাকে
5: আগামী চুনাও তক যে সংকল্প পত্র হ্যাঁ উসকে গাম কো পুরা করকে মোদিজি কে স্বপ্নে কো পুরা কর লোগো কো বাপস লানা হোগা মা বহনো কো সুরক্ষিত করনা হোগা রাষ্ট্রবাদ কো মজবুত করনা হোগা ভারতবর্ষ কি সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা আর আধ্যাত্মিক চেতনা কি জমিন পশ্চিম বঙ্গাল কি ভূমি কো সোমার বাংলা মে পরিবর্তিত করনা হোগা ইসলিয়ে আজ বাত কম করুঙ্গা কাম জ্যাদা করে मैं नहीं हूँ हम हैं। संगठन सर्वोपरि सबको धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ।
7: जय जय श्री राम प्रणाम जाराई प्रभु श्री चैतन्य देवे चरणे ठाकुर हरिचाँद ठाकुर गुरुचाँद ठाकुर चरणे प्रणाम जानाई চিলা রায় পঞ্চানন বর্মার চরণে প্রণাম জানাই ভগবান বিরসা মুন্ডার চরণে সবাই ভালো থাকবেন জোহার নমস্কার জয় গোর্খা ভালো থাকুন।
3: এইবার
1: আমাদের আউট ভরসা ইন।

0: शुभेंदु अधिकारी भाई आउट भरोसा इन, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक मिनट तक सभी ने तालियां बजवाई सबसे, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सारे जो चुनावी प्रभारी बनकर वहां पर गए थे उनका भी उन्होंने धन्यवाद दिया। यहाँ पर शमीक भट्टाचार्य दुर्गा माता की जो मूर्ति है वो देकर अमित शाह का वहां पर स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब सुबह 11 बजे शपथ लेंगे, अभी थोड़ी देर में 6:30 बजे बंगाल के गवर्नर से वो मिलने जाएंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल और खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। ये लगातार हमारी कवरेज चल रही है, देखते रहिए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
7: इसमें माइक्रोफाइबर है।
6: माइक्रोफाइबर यानी
7: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
6: हमारे सीमेंट में नहीं है,
7: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
8: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
9: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
12: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
16: जेके मैक्स पेंट्स।
15: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल बनाओ किस
1: माइक्रोफाइबर।
2: माइक्रोफाइबर यानी
1: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है,
1: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
3: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
4: In association with Hind, बड़े आराम से समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: विमल, बोलो जुबा केसरी।
6: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
9: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक के बाद अमित शाह ने किया नाम का ऐलान। कल सुबह 11 बजे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का रखा प्रस्ताव। अमित शाह ने कहा, भयमुक्त करेंगे बंगाल, सोनार बांग्ला का सपना होगा साकार। शुभेंदु बोले, कटमनी होगी खत्म। तमिलनाडु में विजय सरकार का रास्ता साफ। सीपीआई सी

0: आज नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर टीआरई 4 कैंडिडेट्स का हल्ला बोल। और अरब के आसमान पर फिर बारूदी धुआं, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, ईरानी बंदरगाहों पर अटैक के बाद हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले, ट्रंप की धमकी, डील नहीं हुई तो तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉयर के सुरक्षित होने का किया दावा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: भारत माता के।
1: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता है। आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब की बारी शुभेंदु अधिकारी। जी हां, बंगाल में अगर भगवा शासन की शुरुआत हो रही है तो शुभेंदु अधिकारी के साथ हो रही है। आज से आज सस्पेंस एक तरह से खत्म हुआ और आज जब विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने बाकायदा ये अनाउंसमेंट किया कि जितने भी सुझाव मांगे गए उसमें सभी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया। दोबारा मौका दिया गया, फिर भी सबने शुभेंदु अधिकारी का ही नाम दिया, किसी ने कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया। यानी सर्वसम्मति से जिस शख्स ने लगातार दो दो बार ममता बनर्जी को शिकस्त दी, पहले नंदीग्राम, वही नंदीग्राम जहां से अपने राजनीतिक अस्तित्व की शुरुआत की थी ममता बनर्जी ने, वही जहां से 2011 में उन्होंने वाम दलों के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन के जरिए, जिस नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वाम दलों को उखाड़ फेंका था, उसी शुभेंदु अधिकारी ने उसी नंदीग्राम से हराया। और इस बार आप सोचिए, भवानीपुर से हराया था, दो दो जगहों से, जिसने बार बार ममता बनर्जी को दोनों चुनावों में शिकस्त दी, उन शुभेंदु अधिकारी को विधायकों ने भी चुना है। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं, जब ये विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद नव निर्वाचित मुख्यमंत्री पद के लिए विधानमंडल के नेता घोषित करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने
1: 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: ये तो हुआ ही, उसके बाद आप सोचिए गृहमंत्री अमित शाह ने बाकायदा संबोधित भी किया सभी विधायकों को और वहां पर अंत में उन्होंने नारा लगाया वंदे मातरम का और जय श्री राम का। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी जाएंगे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे वो, और इसलिए वो लोकभवन कुछ देर में वो रवाना होने वाले हैं। तो आज का घटनाक्रम ऐसे ही, आज वहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, विधायक दल की बैठक हुई, उसमें नवनिर्वाचित नेता उनको घोषित किया गया विधानमंडल का, और उसके बाद से लोकभवन के लिए शुभेंदु अधिकारी रवाना हो रहे हैं जहां पर वो सरकार बनाने का दावा राज्यपाल को पेश करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज इस मंच से नेता घोषित तो कर ही दिया शुभेंदु अधिकारी को, लेकिन उसके बाद उन्होंने अनेक विषयों पर बोला। एक तरह से उन्होंने ममता बनर्जी पर भी हमला किया, ममता बनर्जी उनके शासनकाल पर भी हमला किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष को भी जवाब दिया और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को घेरा।

0: लेकिन इससे पहले कि हम आपको गृहमंत्री अमित शाह ने क्या क्या कहा है वो सुनाए कुछ इससे, आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, ये रिपोर्ट देखिए।
1: दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: और बंगाल के नए मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान हो गया। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल के बदलाव की मशाल थमा दी गई है। बंगाल में जब ये नया इतिहास लिखा जा रहा है, अमित शाह सारथी की भूमिका में बीजेपी के इस नए अर्जुन को राह दिखाने वाले बने हैं।
1: आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे ग्यारंटी दिए सब ग्यारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे।
0: शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी का साथ सिर्फ 6 साल पुराना है। दिसंबर 2020 में अमित शाह ने शुभेंदु को बीजेपी में शामिल कराया था। तभी ये संकेत मिल गए थे कि अमित शाह ने ममता बैनर्जी के बेहद करीबी रहे शुभेंदु को अपने पाले में मिलाकर दूर की कौड़ी चली है। ममता के नंदीग्राम आंदोलन की जमीन तैयार करने वाले शुभेंदु ने ममता के भतीजावाद पर उनसे बगावत की थी।
3: दीदी मैं आपको याद कराने आया हूँ, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था? आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं, आपको दल बदल लग रहा है दीदी?
0: शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए तो वो सिर्फ ममता बैनर्जी को सियासी पटखनी देने नहीं आए, बल्कि उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व को अपनी राजनीति से जोड़कर सबको हैरान कर दिया।
4: आज बंगाल जो 50 साल और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला, आज वो बंगाल को हम लोग सब कुछ देंगे। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉ एंड ऑर्डर, महिला का सम्मान, माँ दुर्गा माँ काली पूजा करते हैं लेकिन असली माँ दुर्गा माँ काली का सम्मान कहाँ है? तो सबका सम्मान, सबका सुरक्षा वापस लाना, ये हम लोग का वादा है, मोदी जी का वादा है।
0: बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर सत्ता तक पहुंचने में बीजेपी को लंबा संघर्ष करना पड़ा। 2016 में हाशिए की पार्टी से 2026 में प्रचंड समर्थन हासिल करने की इस यात्रा में धैर्य के साथ साथ बलिदान और रणनीति के कौशल ने साथ दिया। ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाली अस्मिता से जितना बाहरी बताती थी, बीजेपी उतनी ही मजबूती से इसकी काट तैयार करती रही। बंगाल में जन्मे बंगाली बोलने वाले मुख्यमंत्री का चुनाव आज इसका प्रमाण बना।
5: मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा, और बंगाली बोलने वाला होगा, इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा।
0: बंगाल में नई सरकार के शपथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी की रैलियां, रोड शो, झालमुरी, हुगली में नाव यात्रा, सब कुछ एक जादू की तरह बंगाल पर छाया। प्रधानमंत्री के करिश्मे को कल फिर कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड देखेगा। सुबह 11 बजे से नई सरकार के शपथ के साथ बंगाल का भगवा परिवर्तन पूरा होगा। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल लौंडे पाटिल, जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं, पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी वहीं से मौजूद है जहां आज ये ऐलान किया गया विधायक दल की बैठक के बाद कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी सीएम बन रहे, और अनिल बान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा उनके निवास यानी शुभेंदु अधिकारी के घर के बाहर से। पीयूष, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आप साये की तरह, मतलब नंदीग्राम भी मुझे याद है जब वहां वोटिंग हुई, भवानीपुर, लगातार आप उनके साथ साथ रहे, जब जब चुनाव प्रचार के लिए शुभेंदु अधिकारी उतर निकल रहे थे, कहीं कहीं जा रहे थे, तो अब तो हो गया कि राज तलक की करो तैयारी, अब की बारी शुभेंदु अधिकारी। अब एक पूरे पार्टी के लिए ये दिन बहुत बड़ा है पीयूष, और वो आपको आज देखने को मिला होगा।
6: जी बिल्कुल अंजना, ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 207 सीटें बीजेपी का पश्चिम बंगाल में जीत जाना, जहां एक समय ऐसा था कि कोई झंडा पकड़ने वाला नेता, एक नेता से हमारी बात होती थी, उन्होंने कहा कि 1 से 3, 3 से 77, 77 से 207 की कहानी बहुत बड़ी और पीड़ादायक भी रही है। लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, उसकी तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा दूं। ये देखिए शुभेंदु अधिकारी जो अब चुन लिए गए हैं विधायक दल के नेता, उनको सभी जो विधायक है वो आके उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको हाथ में, आप देखिए विधायकों हाथ में फूल है, अलग अलग कलर के फूल हैं, जिसको जो कलर का फूल मिला वो फूल यहाँ पर लेके आया, और शुभेंदु अधिकारी को वो थमाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई विधायक देखिए साथ में सेल्फी भी खींच रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी सबके साथ आराम से सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। तो इन विधायकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इनमें से कई सारे फर्स्ट टाइम एमएलएज भी हैं, और इनकी भी कहानी काफी पीड़ादायक रही है। जिस पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है अंजना, वहां पर राजनीतिक हिंसा को चीरते हुए कई विधायक यहाँ पहुंचे, और जो शुभेंदु अधिकारी से उम्र में छोटे हैं उनका पैर भी छूते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर काफी आत्मीय तस्वीर है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी हर विधायक का अभिनंदन भी स्वीकार कर रहे हैं, और अब यहां से तैयारी हो गई है गवर्नर हाउस जाने की। आपने बताया नंदीग्राम में हम मौजूद थे अंजना, जब उस वक्त सीधा जब हमने बात की शुभेंदु अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि हम 200 पार सीटें लाएंगे। वो आकलन कोई ऐसा ही ऐसा वैसा आकलन नहीं था, और उस आकलन पर अब खड़े उतरते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। 207 सीटें बीजेपी की पश्चिम बंगाल में आई है, जो कहीं ना कहीं करिश्मा के तौर पर, एक जादुई करिश्मा के तौर पर बीजेपी के लिए निकल के सामने आया। गृहमंत्री अमित शाह ने जब कुछ देर पहले अपनी बात कही, तो उन्होंने कहा कि जो भी ऐसा जो हुआ है, ये पूरी जीत जो है उन 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान गंवाई बीजेपी की इस यात्रा में। ये जीत उन लोगों के लिए है जिनके लिए अब आगे सरकार काम करने वाली है, कानून व्यवस्था को लेकर सुनार बांग्ला बनाने की बात गृहमंत्री अमित शाह ने की, और यही बात लगभग सभी नेताओं ने यहां पर दोहराई। और अब किस तरह से सुनार बांग्ला बनेगा वो देखना होगा। कल 11 बजे ब्रिगेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को यहां पर बुलाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद रहेंगे, और उसके बाद देखने वाली बात यह अंजना कि सबसे पहली वो कौन सी फाइल होगी, कौन सा वो फैसला होगा जिस पर शुभेंदु अधिकारी साइन करने जा रहे हैं।
0: अभी तो भव्य समारोह पहले होगा शपथ ग्रहण समारोह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं शपथ कराने के लिए, और शुभेंदु अधिकारी की सरकार की शुरुआत वहां पर करने के लिए। अनिर्बान, जल्दी से आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद तीनों नेताओं के पास चलेंगे। घर में मतलब खुशी तो होगी ही, चरम की ही खुशी होगी,

0: यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का घर है, देख सकते हैं कैसे बाजा बज रहा है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ की मोहल्ले की लड़का है शुभेंदु अधिकारी, कैसे स्वागत किया जाएगा ये बताइए।
1: बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छे, हमारे दिन भी बहुत अच्छे, बहुत।
0: और देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजा बज रही है, उसके साथ साथ जो है कि लोग उत्साह के साथ नाच रहे हैं। और ये कहना है उन लोगों की कि कहीं पे शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ से इतनी कष्ट करके, स्ट्रगल करके, राजनीतिक तौर पे अपनी जो आगे बढ़े हैं, उसका सबसे बड़ी जो फल आज उन लोगों को मिल रहा है, इन लोगों का कहना ऐसा है। अंजना जी,
2: कुछ जल्दी से निर्वाण पूछिए, कुछ पुरानी बात याद हो शुभेंदु अधिकारी की, कैसे वो देखते रहे हैं उनको।
0: जी हाँ, देखिए ये पूछना है कि पुराने जैसे शुभेंदु अधिकारी छोटे थे, छोटे से भरे हुए हैं, और उसके साथ साथ उनकी राजनीतिक करियर भी चेंज हुई है, तो आप लोग याद आ रहा है, कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है क्या, किस चीज के बारे में याद आ रही है सबसे ज्यादा?
3: हमार सबसे भारत मन है हमार কাঁথি কলেজে তখন এসে বাই ছিল শুভেন্দুবাবু, তখন সবাই ছাত্র পরিষদ করছিলেন, তখন 37টা সিট ছিল, 37টা যখন 37টাতে এগেস্টকে নীল করেছিল, সেখান থেকে শুভেন্দুবাবুর উৎপত্তি সেটা আমার চোখের সামনে করেছে। আর আমার মনে হচ্ছে আমরা তো ছোট, আমরা ভারতের স্বাধীনতা দেখিনি, কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কাছে আজকেই হচ্ছে এটা স্বাধীনতা দিবস, তাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আজকেই স্বাধীন হলো, আমরা এটাই স্বাধীনতা দিবস।
0: দেখি অঞ্জনা জি, ইয়ে কে রে হে কি ইয়ে শুভেন্দু জি কো ছাত্র পরিষদ করতে হুয়ে দেখে থে, আর ওয়াহাঁ পে জেসে ওয়াহিঁ সে ও লিডার কি তোর পে বন গয়ে, ও লিডার থে, আর ইয়েহি সবসে বড়ি জো বাত ইয়াহাঁ পে উঠ কে আ রহি হ্যায়। আর উসকে সাথ সাথ ইয়ে কহে কি ইয়ে স্বাধীনতা দিবস হ্যায়, ইয়ে ফ্রিডম ডে হ্যায় আজ কে লিয়ে বঙ্গাল কে লিয়ে, ক্যোঁকি শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বন গয়ে হ্যায়।
2: धन्यवाद आपका। और बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआती दिनों में कई चुनाव ऐसे थे जो खुद शुभेंदु अधिकारी हार गए थे, लेकिन हार नहीं माने थे, और यही से रास्ता सफलता का निकलता है। तापस से जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं। तापस, आप लोकभवन में पहुंच गए हैं, मुझे बताया जा रहा है कि कुछ देर में वहां पर शुभेंदु अधिकारी, हालांकि अभी तो कुछ देर पहले वो सेल्फी वेल्फी खिंचवा रहे थे जहां पर उनको सीएम घोषित किया गया है, लोकभवन के लिए रवाना होने वाले हैं, आज ही पेश कर देंगे दावा।
4: जी देखिए, कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी दावा पेश करने के लिए यहाँ लोक भवन आ पहुंचेंगे। मैं आपको बाहर का चित्र इस समय दिखाता हूँ, काफी ज्यादा चहल पहल है, यहाँ पे मीडिया के जो साथी हमारे सब यहाँ पर मौजूद है, और काफी ज्यादा पुलिस बंदोबस्त को पुख्ता रखा गया है, राजभवन भी कहीं ना कहीं आज सजा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो सूत्र हवाले से खबर की शुभेंदु अधिकारी यहाँ 6 से 7 विधायकों के साथ पहुंच सकते हैं, 6:30 बजे का समय दिया गया है राज्यपाल की तरफ से, और उसके बाद वो राज्यपाल से मिलकर अपना अपना दावा रखेंगे नए सरकार बनाने की, और उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह में औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी, और उनके साथ उनके कैबिनेट और के तमाम जो मंत्री होंगे और जो विधायक जीते हैं सबको शपथ दिलाया जाएगा, प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। एक अजीब सा आलम है इस समय, काफी ज्यादा लोग यहाँ से, ये ऑफिस का इलाका माना जाता है, काफी व्यस्त इलाका माना जाता है, लोग आते जाते रुक के पूछ रहे कि कौन आने वाला है, और जब उनको पता हो रहा है कि शुभेंदु अधिकारी आने वाले, कुछ देर के लिए रुक रहे, लेकिन सिक्योरिटी कारणों से उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी राजभवन में इंतजार है कुछ देर और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे, अपना दावा पेश करेंगे, फिर राज्यपाल से औपचारिक तौर पर मिलने के बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे, और जाने से पहले हमारी नजर होगी कि वो यहाँ पर आके और क्या कुछ कहते हैं राज्यपाल से मिलने के बाद। अंजना,
2: ठीक है तापस, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तीनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करते रहेंगे बीच बीच में अगर कोई बड़ी जानकारी आती है तो। लेकिन आज चेहरा ही अमित शाह का देखने लायक था, अक्सर आपने गृहमंत्री अमित शाह को बहुत
5: सब जगह नहीं
2: है। तो गृहमंत्री की मैं चर्चा कर रही थी, गृहमंत्री को अक्सर आपने देखा होगा बड़े आक्रामक अंदाज में भाषण देते हैं, आक्रामक तौर पर उनको देखा जाता है, इंटरव्यूज में भी जब बात करते हैं तो बड़े संगीन होकर, लेकिन आज पहली बार जब वो अपने डबल सेंचुरी वाले विधायकों के सामने खड़े थे, उनको संबोधित कर रहे थे, तो बड़े हर्षित दिख रहे थे और उन्होंने यहीं से शुरुआत की कि आज बड़ा गर्व हो रहा है कि हम लोगों का इतना बड़ा विधायक दल एक मंडल हो गया है जो आज यहां मेरे सामने बैठा हुआ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस संघर्ष की चर्चा की जो 5 दशक में उन्होंने यहां पर इस मकाम तक पहुंचने के लिए किया है। आप सोचिए, जिस राज्य ने राष्ट्रगीत दिया, जिस राज्य ने राष्ट्रगान दिया और जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वही राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों से बड़ा दूर था, सत्ता मिली है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए।
5: 5 दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के हास की दृष्टि से और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है। और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें। बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें।
2: अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से है। अब ये कोई सस्पेंस तो था नहीं, सबको लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही बनेंगे, हालांकि आपकी पार्टी चौंकाने के लिए जानी जाती है, इसलिए लोगों को लग रहा था कि कुछ ऐसा अचानक से कोई एक्स फैक्टर ना जाए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी सीएम बने हैं, किस तरह से देख रही है बीजेपी से?
6: अंजना जी, आभार आपका। और मैं समझता हूं कि जैसे आज हमारा मन प्रफुल्लित है, ऐसे ही हर पश्चिम बंगाल निवासी के मन में उमंग की लहर तो है ही, साथ ही उनकी कुछ उम्मीदें भी हमारी पार्टी से। आप सोचिए, 79 साल बाद आजादी के पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये भी वो सरकार है जो मजबूती से 3/4 सीटें लाकर हम लोगों ने जीती हैं, सरकार बनाने जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे लिए परम श्रद्धे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि और वहां पे हमारी सरकार बन रही है, तो अपने आप में हमारे लिए ये दिन ऐतिहासिक पल है और यादगार पल भी है। हमें यह भी याद रखना चाहिए अंजना जी कि यह सरकार तब बन रही है जब विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी अडिग रही और 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का बलिदान दिया है इस पार्टी ने। आज ये सच्ची श्रद्धांजलि उन सबको भी है। और इसके साथ मैं एक बात और कहूंगा अंजना जी, देखिए अभी पूरे पश्चिम बंगाल में एक उमंग की लहर है और हम ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का स्वर्णिम युग अब शुरू होने जा रहा है, तभी हम कहते हैं सुनार बांग्ला। और आप देखिएगा, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे, हमारी प्राथमिकताएं सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा की, जो घुसपैठिए आते थे अब वो और नहीं, एक भी नहीं घुसेगा और उनको वापस भेजा जाएगा। दूसरा, महिला सुरक्षा, आपने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज संदेश खाली हुआ, हमें सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को उनका उचित स्थान मिले। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आधुनिकरण पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से खत्म हो गया है उसको हमें सुनिश्चित करना है वहां पे आए। और इसके साथ साथ जब शुभेंदु अधिकारी जैसा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिलेगा, जो निडर है, जो ईमानदार है, जो सच्ची श्रद्धा से लोगों की सेवा करेगा। और ये मैं इसलिए कहता हूं, ममता बनर्जी बड़ी नेत्री हैं, उनके गढ़ में एक बार नहीं दो बार ममता बनर्जी को हराया है, ऐसे है शुभेंदु अधिकारी। अगर कोई बहुत बड़ा जो है चुनौती भी होगी तो उस चुनौती को पूरा करेंगे, पार करेंगे, ये हमें यकीन है।
2: चलिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अब आप मोर्चा संभालिए। आज गृह मंत्री ने वोट चोरी से लेकर ममता बनर्जी सब पर बोला है और उन्होंने कहा कि किस तरह का शासन पहले था और कैसे भय मुक्त भारतीय जनता पार्टी शासन वहां की जनता को देने वाली है। तो आज आप बधाई देंगे या आज भी मतलब लड़ाई शुरू हो जाएगी?
7: नहीं, लड़ाई और बधाई की बात ऐसा है कि देखिए, लोगों का दिमाग तबाह कर दिया है, लोगों के दिमाग से तो खेल रहे हैं ना ये लोग। हिंदू मुसलमान कर करके वोट कराया, विभीषण को सत्ता देनी थी, हमेशा विभीषण को ही सत्ता मिलती है, जो घर का बेदी लंका ढाए, ये कहावत है ना। तो विभीषण थे, उनके पास ऑप्शन नहीं था। उन्होंने क्या कहा अमित शाह जी के भाषण में, मैंने एक लाइन सुनी और उसका मतलब ये निकला कि भाई 207 में से कोई दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं आया, इसका मतलब कोई में भी नेतृत्व क्षमता नहीं है, उनके पास वही लोग हैं, ये एक डील है, उस डील के तहत उनको बना दिया गया है। और जो इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने काम किया है सबने देखा है। गौरव भाटिया जी कह रहे थे 300 लोग मरे हैं, 300 लोग एसआईआर की प्रक्रिया में भी मरे हैं, उनके प्रति भी थोड़ी सी संवेदना दर्शा देते हैं।
2: अरे पुरोहित जी सुनिए तो, आज मैं भी जरा दूर दूसरे देश से ये लाइव बुलेटिन कर रही हूँ, तो थोड़ा आप भी सहयोग कीजिए, जब मैं टोकू तो रुक जाइए। लेकिन पुरोहित जी आप ही बता दीजिए, चलिए टीएमसी में आप बता दीजिए कि ममता बनर्जी की जगह कोई ले सकता है? ममता बनर्जी को हटाकर किसी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाते? 3 बार सीएम बनी, किसी की हिम्मत है आपकी पार्टी में कि किसी और का नाम ले ले?
7: नहीं नहीं, देखिए सीएम बनी ममता बनर्जी, वो अपनी योग्यता पर बनी, सुनिए, उन्होंने खुद चुनाव लड़ा। यहाँ शुभेंदु अधिकारी, यहाँ तो अमित शाह जी थी और आकर के 15 दिन चुनाव लड़के
2: तो शुभेंदु अधिकारी योग्य नहीं है।
7: क्लास का
2: मॉनिटर अधिकारी ने भी तो 2-2 बार हराया उनको।
7: क्लास का सुनिए ना, क्लास का मॉनिटर बनाते हैं ना, आपको मॉनिटर बना दिया गया, देखते हैं कब तक क्लास में ठीक ठाक चलाते हैं। अभी तो कच्चा है ना इनके लिए, तो 22-21 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, इनको मॉनिटर बना दिया है शुभेंदु अधिकारी को कि आप मॉनिटरिंग करिएगा, आपके हाथ में ये चीज है, आपके खुद के साथ में आपने जो झूठे वादे किए हैं, आपको पता है स्वास्थ्य साथी जो स्कीम है हेल्थ की, जब से नतीजे आए हैं, मैं दिल्ली में था आपके साथ 4 तारीख को और आज 7 तारीख हो गई है, स्वास्थ्य साथी में जो महिलाओं को जो और जो बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार हॉस्पिटल में खड़े हैं उनकी सेवाएं देने में क्या दिक्कत हो रही है भाई? केंद्र में आपकी सरकार है, आप तुरंत चालू करिए। आप जो महिलाओं को, गरीब महिलाओं को जो पैसा मिल रहा था 2.5 करोड़ महिलाओं को, वो पैसा इमीडिएट चालू करिए। आपने जो वादे किए, आप मैंडेट लिया है, दिया है, चलिए ठीक है, मगर आपको काम करना है। आपने कहा 45 दिन में घुसपैठिए सारे बंद हो जाएंगे, आज नहीं बाद में दे दीजिएगा सर, ये बाहर से बोल रही है तो इनको मैं बीच में मत बोलिए, इनको चिल्लाना पड़ेगा जी। नहीं नहीं, देखिए 27 लाख लोगों के नाम कटे और जो जो घुसपैठिए के शब्द पर, आज घुसपैठियों की बात नहीं हुई, एक शब्द भी घुसपैठियों पर नहीं निकलता है इनका। घुसपैठिए को निकालिए ना अमित शाह जी, आप गृह मंत्री है, 45 दिन में बॉर्डर सील करिए और एक भी इंची आप जमीन मत छूए। और
2: ठीक है, एक वक्त खबर आ रही है, आपको रोक रही हूं मैं, लोक भवन के लिए निकल गए हैं शुभेंदु अधिकारी और सरकार बना मतलब अपने वजूद में आने के बाद बीजेपी ने लंबा संघर्ष किया है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना वहां पर असंभव एक वक्त पर माना जाता था। खुद गृहमंत्री ने बताया कि कैसे वहां पर सबसे पहले एक बार खाता खुला, उसके बाद 3 सीटें, 3 से 77, 77 से सीधा 207 सीटें हुई। जल्दी से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद से मैं गौरव भाटिया जी आपसे जवाब लूंगी, जल्दी से 2 लाइन में पूरी कीजिए।
7: नहीं नहीं, बस इतना ही बोलूंगा कि जो नई
2: बधाई दीजिए, खत्म कीजिए,
7: बधाई है, बधाई है, बधाई आपको, बधाई गौरव भाटिया जी को, बधाई ज्ञानेश कुमार जी को, बधाई कि आज इतने लोग जो हो रहे बधाई दे देते, आपकी बात पर बधाई दे रहे हैं। मुझे दिल से इन्हें बधाई देने की इसलिए इच्छा नहीं है क्योंकि जो विभीषण है ऐसे लोगों को, आपके पास तो नेता थे ना, अग्निमित्रा पाल थी, आपने महिलाओं की बात की थी, बना देते अग्निमित्रा पाल को, क्यों डेप्यूटी बनाया? आप उनके हाथ में लीड देते, महिलाओं की बात होती है, एक महिला को हटा के महिला मुख्यमंत्री, एक मैसेज जाता, मगर आप
2: ठीक है, आप जवाब दीजिए,
7: नहीं कर सकते।
2: गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, महिलाओं की इतनी बात तो महिला सीएम क्यों नहीं? ठीक है बोलिए, महिला सीएम क्यों नहीं?
6: देखिए सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि अब स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है पश्चिम बंगाल के लिए, हमें नहीं भूलना चाहिए एक मुख्यमंत्री जो 15 साल तक पद पे थी, उन्होंने चुनाव में करारी हार झेलने के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया और राज्यपाल को असेंबली को भंग करना पड़ा। आज तक आजाद भारत के इतिहास में अंजना जी कभी ऐसा नहीं हुआ
7: होना चाहिए
6: कि जो है कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारे और कहे कि मैं इस्तीफा
7: नहीं दूंगा। शपथ ले लेंगे
6: अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। जैसे मैं इनकी बात सुन रहा था, ये भी सुन, चुनाव हार चुके हैं, ममता जी गई 4 मई, ममता गई, कहा था आप सुनिए आराम से, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखिए क्योंकि महिला की बात हो रही है तो महिला सशक्तिकरण में नरेंद्र मोदी जी ने जो कर दिखाया है वो कोई कर नहीं सकता है। और पश्चिम बंगाल में हम सब जानते हैं किस तरह से महिला होके भी महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा था, और आरजी कर मेडिकल हत्याकांड में हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी थी, गृह मंत्री भी थी और महिला भी थी, लेकिन खड़ी हुई टीएमसी के गुंडों के साथ जिन्होंने अपराध किया था। अब चुनाव अंजना

0: जी खत्म हो चुके हैं। मैं तो ये बताना चाहूंगा क्या बदलेगा। जैसा मैंने कहा, महिला सशक्तिकरण, आधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कोई घुसपैठिया अंदर ना आए। और मैं आपको एक जानकारी दे दूंगा, अभी एक सप्ताह पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई। क्या कहा? आप बॉर्डर फेंसिंग के लिए जो जमीन जिसका मुआवजा ले चुकी है, क्यों नहीं देती बीएसएफ को कि वहां पे बॉर्डर फेंसिंग हो सके? 127 किलोमीटर में केवल 8 किलोमीटर जो जगह थी वो ट्रांसफर की गई थी। अब आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या बड़ा मुद्दा नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए केवल रोहिंग्या अपने थे और पश्चिम बंगाल और भारत के जो नागरिक है वो उनके लिए अपने नहीं थे। अब ये बदलेगा। और इसीलिए, और अंत करूंगा एक बात कह के, 19 साल बाद आसनसोल में हमने देखा किस तरह से मंदिर के कपाट खुले। और क्यों बंद हुए थे? क्योंकि तुष्टिकरण करना था, कह रही थी कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। अब कैसे ठीक है? अब आप बताइए अंजना जी, अगर मंदिर के कपाट इसलिए बंद हो जाए क्योंकि किसी विशेष वर्ग को खुश रखना है, तो ये किस तरह का जो है सरकार चलाना होता है? मैं समझता हूं ममता बनर्जी विफल थी, जनता ने रिपोर्ट कार्ड दिया,
1: ठीक है,
0: फेल हो गई।
1: अतुल लौंडे पाटिल जी, अब तो आप सरकार में हैं, अब आप सरकार में हैं, बिल्कुल कल शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, कल से डे वन शुरू। पश्चिम बंगाल को आपने जो वादे किए हैं वो जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो अब बीजेपी की सरकार को वहां पर जो जो करना है आपको वादे निभाने होंगे जो जो आपने वादा वहां पर किया। तो लौंडे पाटिल जी, आप ही से पूछ लेते हैं वही सवाल जो मैंने उनसे भी पूछा कि आज बधाई देंगे या आज भी लड़ाई वाला ही मूड चल रहा है?
2: नहीं, बधाई तो जरूर देंगे, बधाई तो है, बहुत बहुत बधाइयां है दिनेश कुमार जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक, सबको बहुत बहुत बधाइयां है। बधाइयां क्यों नहीं देंगे? पूरी दिल से देंगे बधाइयां। लोकतंत्र को बचाने का बिड़ा उठाया है तो मुद्दे भी उठाएंगे। ऐसा नहीं होगा अंजना जी कि रेड कारपेट डाल दिया, आप जो भी करो, मन मर्जी करो, गुंडागर्दी करो, इलेक्शन चुराओ, और मुद्दे भी नहीं उठाएंगे और विपक्ष जो है वो लोकतंत्र को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बधाइयां है, बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां कि आज आपको सरकार मिली है। और जब बात कर रहे थे गौरव भाटिया जी भी और अमित शाह जी जब बात कर रहे थे, तो मुझे उन्नाव की बेटी याद आ रही थी, मुझे हाथरस की बेटी याद आ रही थी, मुझे हिमाचल में हंसराज इनका जो विधायक है वो याद आ रहा था जिसने शोषण किया, ब्रजभूषण शरण सिंह, दिनेश फोगट ने तो सीधा आरोप किया बलात्कार का, हजार महिलाओं को उसने यौन शोषण किया, मुझे याद आ रही थी सोफिया कुरेशी, हमारी हमारी सैनिक जो है, फौजी जो है, उसको आतंकी की बहन कहा था, विजय शाह ने, मंत्री है आज भी, उसके ऊपर कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की। एक जिलाध्यक्ष है जिसने एक महिला को, पार्टी के ही, बीजेपी के पार्टी के महिला को उपाध्यक्ष बनाने के लिए हम बिस्तर होने का ऑफर दिया, उसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई की नहीं। ये सारी बातें मुझे याद आ रही थी। मुझे ये भी याद आ रहा था कि सबूत के साथ सब कुछ रखने के बावजूद इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो कुछ नहीं कर रहा था। मुझे ये भी याद आ रहा था 2023 में 147 सांसदों को बाहर कर निलंबित कर ऐसा कानून पास किया गया कि इस देश का चुनाव आयोग, उसका कमिश्नर जो मन चाहे कर ले, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं। उसके बाद में ऐसा कानून भी पारित किया, ये भी मुझे याद है। मुझे ये भी याद है, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है,
1: ठीक है,
2: ये भी याद आ रहा था कि के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश को बाजू कर एक अपने जूनियर मंत्री को साथ में लाकर चयन समिति को भी किस तरह से लोकतंत्र उसमें का खत्म किया, और हम चाहे उसे नियुक्त कर देंगे इस तरह का हमने किया, ये भी हमने देखा। और कोनराड संगमा तो सबसे सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री था देश का, दो इनके दो ही सदस्य आए तो उसके साथ जाके दूसरे दिन शपथ निधि में शामिल हो गए।
1: अतुल जी,
2: बहुत सारी चीजें हैं अंजना जी।
1: अतुल जी, कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता मुझे मिले थे, मैं नाम नहीं बताऊंगी, हो सकता है उनका मन ना हो कि उनको बताया जाए, क्योंकि उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड मुझे कहा था, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, ऑफ रिकॉर्ड कहा था और साफ साफ कहा था कि भारी एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने देखी। अब इसका मतलब क्या होता है मैं छोड़ देती हूँ आप लोगों पर, कि पीछे में कुछ और बोलना है, सामने में कुछ और बोलना है, आखिर क्या मंशा है और क्या लोकतंत्र को लेकर सबको भ्रम पैदा करना है? आइए आपको जल्दी, मैं लौट रही हूं सर आपके पास, एक बार सुना देते हैं, आप ही से शुरू करूंगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बीजेपी के संघर्ष पर आज अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए।
3: 50 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।

0: जब 370 हटी तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था भला क्या बचा अब, तब उन्होंने कहा था बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर।
1: गंगोत्री से गंगा सागर तक का भारतीय जनता पार्टी का सफर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके सपने को पूरा करने की बात लगातार बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं और बहुत बड़ी जीत ये उनके लिए कहलाएगी अतुल लौंडे पाटिल जी, क्योंकि इतने दशकों तक वो लगातार संघर्ष करते रहे। आप ही बताइए क्या बंगाल में कांग्रेस वैसे लड़ी जैसे बीजेपी लड़ी? मतलब आप सोच लीजिए कि जितने शीर्ष नेता थे, आप ही कंपेयर कर लीजिए ना, खुद सिर्फ गृह मंत्री का ले लीजिए, प्रधानमंत्री का छोड़ दीजिए, 20-25 रैलियां उन्होंने की, खुद गृह मंत्री हर जिले में रह रहे थे, भवानीपुर में वो जाजा के 22,000 जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं, 22,000 गुजराती समाज के लोग हैं वहां, 22 अनेकों जो व्यापारी हैं सबसे रोज मिल रहे थे, सबके साथ ग्रुप्स बना बना के डिनर कर रहे थे। तो इस स्तर का जो उन्होंने काम किया है, और बाकी नेताओं को तो छोड़ ही दीजिए जो वहां पर प्रचार के लिए गए थे, गृहमंत्री 15 दिन वहां पर रहे, तो जो जिस तरह से बीजेपी लड़ी आप लड़े, और उस बात पर भी जवाब दीजिएगा, उन्होंने खुद कहा था कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कि जमीन पर ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, भारी दिख रहा है।
2: ठीक है चलो मान लेते हैं कि मेरे सहकारी है, मेरे कलीग है, बात काटूंगा नहीं, उन्होंने कह दिया कि चलो ममता बनर्जी के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। 27 लाख वोटरों का अधिकार छीनने का अधिकार किसको दिया है, किसने दिया है इलेक्शन कमीशन को, किसने दिया है? और जिस तरह से लोगों के पास माता पिता को वोटिंग राइट है, इनको नहीं है, 34 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, उनका निपटारा क्यों नहीं हुआ चुनाव के पहले? क्या इस देश का सर्वोच्च न्यायालय जब ये कहता है कि अभी नहीं दिया वोट तो क्या हुआ, अगले बार दे देंगे वोट, क्या ये लोकतंत्र में मंजूर है? सारी बातें मानने के बाद भी जो बातें सामने आती है, अभी हमने कई FIR किए हैं, FIR हुए हैं वोट चोरी के, वोट चोरी पकड़ी गई है 8,000 वोट की हमारे यहाँ चंद्रपुर में राजूरा की, उसकी मैंने प्रेस की, उसका FIR हुआ है 11 अभी कितना बहुत सारे महीने हो गए, 15 महीने से ज्यादा महीने हो गए, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं तो FIR जो किया है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, FIR इलेक्शन कमीशन ने किया है हमारे शिकायत पर। तो जो चुनाव हुए हैं वो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत पारदर्शिता से हुए हैं, ऐसा आपको लगता है तो फिर मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ये बेमानी लगती है जो दिखती है वो। अगर वो चुनाव उन्होंने मेहनत की है तो मेहनत पे तो सराहना करनी चाहिए, सभी ने मेहनत की है, सभी मेहनत करते हैं।
1: चलिए गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी ये भी एक सच्चा, अरे सर छोड़ो ना, अतुल जी छोड़िए, ना अतुल जी प्लीज, फिर वही कैमरे पर कुछ पीछे में कुछ, आपको भी पता है कि पश्चिम बंगाल में कितना मेहनत आपकी पार्टी ने किया है, क्या मेहनत की है आप ही बताइए, आपके शीर्ष नेता कितने गए हैं, क्यों इस बहस में पड़ते हैं? आप लोगों ने वहां पर चुनाव लड़ा ही नहीं, ममता बनर्जी पर लास्ट मोमेंट में राहुल गांधी जी ने लिख दिया कि वो पोलराइजेशन कर रही है, बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो ये ऐसे तो आप लोग चुनाव लड़े वहां पर, मिलके लड़ते तो शायद मुकाबला भी करते। बट गौरव भाटिया जी ये बात भी एक सच्चाई है कि 27 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, 1600 लोग जो कोर्ट में गए उनके उनके अधिकार को सही माना गया, वो वोटिंग कर पाए, ऐसे अगर बाकियों के भी अगर हियरिंग हो जाती तो फिर हो सकता है, मुमकिन है कि वो भी वोट डाल सकते थे। अब भाई अपने ही देश में रहकर वो देश में वोट ना डाल पाए तो ये तो आपने नागरिक से उसके नागरिक होने का हक ही छीन लिया ना।
3: अंजना जी 3 बिंदुओं पे उत्तर देना है, पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। ये देश संविधान से चलता है, यहां न्यायालय जो सबसे ऊपर है वो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगी, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं या जो लोग अपना नागरिकता नहीं दिखा पाए हैं वो 27 लाख लोगों को मत डालने का अधिकार नहीं है। अब या तो आप सर्वोच्च न्यायालय को मान लीजिए और या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ममता बनर्जी कह रही थी जाएंगी, वो जा सकती है कि नहीं पहले संविधान पढ़ ले, वो हो जाएगा। दुख की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी चैनल पे चर्चा में आके प्रश्न लगाया जाए।

0: जाता है, ये इनकी प्रतिबद्धता है सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के प्रति। दूसरी बात, बधाई दे रहे थे ज्ञानेश कुमार जी को, बधाई का पात्र है निर्वाचन आयोग, बधाई की पात्र है पैरामिलिट्री फोर्सेस, और क्यों है, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है, केरला में, तमिलनाडु में जीते हैं ना, इसलिए बधाई दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और ईवीएम खराब है, जैसे ही परिणाम आने लगे टीएमसी कांग्रेस कहने लगी, गौरव गोगोई कहने लगे ईवीएम खराब है पश्चिम बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, लेकिन अंजना जी ईवीएम अच्छी है केरला में, तमिलनाडु में, ये कैसा विरोधाभास है, ये भी पूछा जाएगा। तीसरी बात, आप देखिए विचारधारा की अधिकता क्या होती है। श्रद्धे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में जब उनकी मौत हुई संदिग्ध परिस्थिति में, उससे पहले एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। असंभव को संभव कर दिया, अनुच्छेद 370 को संशोधित कर दिया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी, और यही पश्चिम बंगाल में हुआ जो उनका जन्म स्थान है, आज हम सरकार बना रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, लेकिन हमने उनके हत्यारों के साथ कोई समझौता नहीं किया। मैं आपको बताता हूं अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा, अंजना जी, उन्होंने कहा कांग्रेस का कार्यकर्ता मारा गया और टीएमसी के गुंडों ने मारा है, ये चुनाव से पहले की बात है, लेकिन इंडी अलायंस में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी एक साथ थे। आप बताइए कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जिस परिवार ने अपना लड़का खोया उसको कैसा लगा होगा कि जिस कांग्रेस पार्टी के लिए,
1: ठीक है ठीक है, थोड़ा टाइम कम है, तो टाइम कम है बिल्कुल, अब उसको इंसाफ दिलाइए, आप सरकार है उसको इंसाफ दिलाइए, और हर हाल में इंसाफ उसको मिलना चाहिए, किसने ऐसा किया है ये पता चलना चाहिए जल्द से जल्द। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आज बात अगर उस विचारधारा की गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं उस मंच से, तो जो वो कह रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर, उनके लिए तो सबसे बड़ा ये वो था, संघर्ष था, वो इस मकाम तक पहुंचे, कड़ी मेहनत की है उन्होंने, और एक के बाद आज उन्होंने याद किया आपने 300 से ज्यादा उन कार्यकर्ताओं की जिनकी राजनीतिक हत्या यहां पर हुई है, तो फिर उस वो तो संघर्ष करके यहां पर पहुंचे हैं।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए उन्होंने जो भी कहा ये उनको कहना था, क्योंकि सुबह 9 बजे चुनाव के नतीजे आने के पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लग जाते हैं बैनर कि वो बंगाल हमारा है जहां जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुबह 9 बजे लग जाते हैं, इनको नतीजा पता है। यही तो सवाल है ना, ये सवाल देश की पढ़ी लिखी जनता पूछ रही है, आप भी पूछ रही है बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की, ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जो सुप्रीम कोर्ट गई, आज उसका दंड दिया गया।
1: वक्त इतने की इजाजत देता है पुरोहित जी, देखिए ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत, और इस जीत के साथ वो नया इतिहास रचने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कल शपथ लेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, और इसी के साथ साथ तमाम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के परेड ग्राउंड में इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कल कोलकाता पहुंचने वाले हैं। लगातार कवरेज भी आप आज तक पर देखेंगे, आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे साथ जरूर विश्लेषण देखिएगा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे अब की बारी शुभेंदु अधिकारी, राजतिलक की करो तैयारी, आ गए शुभेंदु अधिकारी, उन्हें सीएम घोषित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में कैसे रचा ये इतिहास, कैसे वो पहुंचे इस मकाम पर, ये सब रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देश दुनिया के बाद खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: country roads.
1: Thank God I get to wake
0: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम, एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट।
3: बड़े आराम से।
6: बहुत टायर्ड हो गई।
7: Take a date, not bites.
8: No added sugar, प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
12: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
13: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
14: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
15: पर मार्केट की समझना, बाउंसर जा रही है।
14: आप कैसे कर लेते हो?
16: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
15: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
17: नहीं,
15: और म्यूचुअल फंड्स है
17: सही।
18: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
19: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
8: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
6: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
0: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: यार, ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रो फाइबर है।
15: माइक्रो फाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
15: हमारे सीमेंट में नहीं है।
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
17: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: Character, the taste of success.
10: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
15: यार, ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रो फाइबर है।
15: माइक्रो फाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
15: हमारे सीमेंट में नहीं है।
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
3: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरो

0: भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
1: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
0: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
2: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
3: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर। In association with
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: Monte Carlo, it's the way you make me feel.

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल। विमल बोलो जुबा केसरी, कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: बहुत टायर्ड हो गई।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, not bites.
3: Lion date, not bites.
5: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
6: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही।
5: आप कैसे कर लेते हो?
7: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
6: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो
7: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
8: नहीं
6: और म्यूचुअल फंड्स है
8: सही।
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रोफाइबर है।
10: माइक्रोफाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
10: हमारे सीमेंट में नहीं है।
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: अभी कुछ दिन कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। पचास से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट।
1: शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक के बाद अमित शाह ने किया नाम का ऐलान। लोक भवन में राज्यपाल से मिले, कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन। अमित शाह ने कहा भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले सबका साथ सबका विश्वास पर काम। तमिलनाडु में विजय सरकार का रास्ता साफ। सीपीआई सीपीएम वीसीके ने दिया समर्थन पत्र। थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात। पटना में छात्रों का प्रदर्शन हंगामा। पुलिस ने किया लाठी चार्ज। नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध की आहट। ईरान ने यूएई पर दाखी मिसाइलें। अपने बंदरगाहों पर हमले के बाद हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी अटैक। ट्रंप की धमकी, डील नहीं हुई तो कर देंगे तबाह।

0: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील और शंखनाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है, जहां मैं सीधे आ रही हूं कलकत्ता के लोक भवन से। यहां पर बंगाल में अब तस्वीर साफ हो चुकी है, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। और कुछ ही देर पहले शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के अन्य लोग, अन्य वरिष्ठ नेता यहां पर आकर वो यहां पर आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं आप, अब सुकांता मजुमदार भी आ गए हैं। ये लोग सब अब अंदर जा रहे हैं क्योंकि अब वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे गवर्नर के सामने। शुभेंदु अधिकारी के नाम का घोषणा अमित शाह ने खुद किया और उन्होंने कहा अब बंगाल भयमुक्त होगा। और ये भी उन्होंने साफ कह दिया कि चुनार बांग्ला बनाने की कवायद आज से शुरू हो जाएगी। बंगाल की तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन तमिलनाडु में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि कुछ ही देर में एक्टर विजय सिग्नेचर्स के साथ जाएंगे गवर्नर आर्लेकर से मिलने के लिए वहां लोक भवन में। तो एक लोक भवन से दूसरे लोक भवन तक जो जो तस्वीरें आ रही हैं, हम अगले एक घंटे में आपको साफ तौर पे दिखाएंगे। लेकिन क्या क्या हुआ आज कलकत्ता में? पहली बार 3 से 4 घंटा मुलाकात चली, गृह मंत्री ने काफी सारी मीटिंग्स ली श्रमिक भट्टाचार्य के साथ, उन्होंने अलग बातचीत की। उसके अलावा शुभेंदु अधिकारी से बातचीत करने के बाद फिर जो बांग्ला केंद्र है, कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर सारे विधायक दल के सामने शुभेंदु अधिकारी का नाम अनाउंस हुआ और सारी फॉर्मेलिटीज के बाद उनका नाम अनाउंस हुआ। तपश हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं और वो भी यहीं पर मौजूद हैं लोक भवन के सामने। तपश, जो डेलीगेशन आया है उसमें कौन कौन शामिल है, जो गवर्नर से मिलने पूरा डेलीगेशन भाजपा का आया है उसमें कौन कौन शामिल है?
1: जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डेलीगेशन में सुकांतो मजुमदार पहुंचे, दिलीप घोष पहुंचे हैं, तापोस रॉय पहुंचे और 6:52 पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। उससे पहले शांतनु ठाकुर और लॉकेट चैटर्जी, इस समय ये तमाम नेता भाजपा के वो लोक भवन में प्रवेश किए हैं। और ये बताया जा रहा है कि 7 बजे का वक्त दिया हुआ था और 7 बजे वो राज्यपाल से अभी मिल रहे हैं और मिलकर अपने सरकार बनाने का वो दावा पेश करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये उम्मीद जताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बाहर निकल के प्रेस को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर तमाम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दूसरे छोर पर सड़क के भाजपा के समर्थक भी आए हुए हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी व्यवस्था है काफी ज्यादा पुख्ता किया गया है। सड़क के उस पार भाजपा के कार्यकर्ता को देख सकते हैं कि जो फ्लैग लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं और नारी

0: बाजी कर रहे थे जब शुभेंदु अधिकारी यहां पर पहुंचे, और क्यों ना करें, शुभेंदु अधिकारी एक जायंट किलर के तौर पे उभर आया इस बार। लगातार दूसरी बार ममता बनर्जी को उन्होंने चुनौती दी और हराया, पहले अपने घर से और उसके बाद भवानीपुर, जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। और आज उनका नाम जब पेश किया गया अमित शाह की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए, ये साफ गृहमंत्री ने कर लिया कि जब मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा हुई थी तब शुभेंदु अधिकारी के अलावा किसी और के नाम का कोई चर्चा नहीं हुआ था। तो इस वजह से शुभेंदु अधिकारी अनडिस्प्यूटेड एक लीडर के तौर पर उभर आए हैं भाजपा में पश्चिम बंगाल में, कि वो इस सरकार को लीड करेंगे। अभी ये तमाम बड़े नेता अंदर हैं और राज्यपाल से भी मिलते हुए अपने दावे को पेश कर रहे हैं।
1: काफी कयास लगाया जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम के अनाउंसमेंट हो सकता है, वो क्यों नहीं हुआ आज? अंगमित्रा पॉल और एक और नाम जो मथुआ कम्युनिटी से हो सकता था, ये कयास लगाया जा रहा था कि उनका भी नाम आज शायद घोषित होगा, वो नहीं हुआ।
0: जी देखिए, पहली बात तो यह है कि एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस,
1: चलिए यहाँ पर शमिक भट्टाचार्य जो
0: के अंदर से खबर है
1: जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी अभी आ गए हैं। तो ये जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें लोगों जो उनमें नेताओं की संख्या बढ़ रही है और टोटल डेलीगेशन है जो अंदर है अभी, शुभेंदु अधिकारी, शमिक भट्टाचार्य, शांतनु ठाकुर जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो यहाँ पर इंचार्ज के तौर पर आए हैं, उन लोग सब अभी अंदर हैं, गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं और कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा ब्रिगेड ग्राउंड में, जो लगभग यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जी बोलिए तपश, क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया भाजपा ने दोनों उप मुख्यमंत्री के नाम का भी?
0: जी देखिए, फिलहाल जो भाजपा के अंदर के खेमे से खबर आ रही है कि फिलहाल वो इस बारे में अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि वाकई में दो मुख्यमंत्री की जरूरत है या नहीं है, या पोर्टफोलियो जो कैबिनेट पोर्टफोलियो होगा उसे लेकर भी चर्चा इस समय जारी है। और कल सिर्फ शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे और बाकी जो विधायक है वो बाद में शपथ ग्रहण करेंगे, इसलिए बीजेपी चाहती है कि और ज्यादा वो चर्चा करें और लोगों की राय ले अपनी पार्टी के अंदर से, कि अगर इस तरह का फैसला होता है कि उप मुख्यमंत्री में एक या दो नाम शामिल किए जाए तो वो किनका किया जाए। जल्दबाजी में वो कोई फैसला नहीं लेना चाहते, ये बात बताई गई है और इस बारे में चर्चा आगे भी होगी, लेकिन बहुत जल्द ये पता चल जाएगा, ये फैसला लिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में कोई उप मुख्यमंत्री के तौर पे एक या दो नाम उभर आएंगे या मुख्यमंत्री के तौर पे मुखिया सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही बने रहेंगे।
1: चलिए तपस, जुड़े रहिए क्योंकि अब चलते हैं सीधे चेन्नई, जहां पर टीवी के मुखिया विजय पहुंच चुके हैं लोक भवन, वहां से सगाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 118 सिग्नेचर्स के साथ पहुंचे हैं विजय वहां पर, क्योंकि आज उनको समर्थन मिल गया है सीपीआई, सीपीआईएम, वीसी के सबका, और उसके उनके पास 112 जो एमएलएज हैं उनके नाम थे, अब और उनमें जोड़ करके तो ये क्लियर हो गया है कि उनके पास 118 का आंकड़ा अब पार कर रहे हैं टीवी के मुखिया विजय, तलपति विजय के पास अब नंबर्स आ गए हैं और वो सीधा पहुंच गए हैं चेन्नई में लोक भवन गवर्नर आर्लेकर से मुलाकात करने के लिए। सगई, क्या अपडेट है, क्या सारे सिग्नेचर्स के साथ वो वहां पर गए हैं इस बार, क्योंकि गवर्नर का बार बार सवाल यही था आप सिग्नेचर्स लाइए और उसके बाद आपका शपथ होगा।
2: हाँ जी, इस बार पूरा तैयारी के साथ विजय निकल गए हैं और सीपीआई, सीपीएम और विद्यालय कच्छी पार्टी और कांग्रेस, चारों पार्टी का सपोर्ट का लेटर मिला है और पूरे लेटर लेके लोक भवन निकल चुके हैं डॉक्टर विजय। सर, आपको याद रहना चाहिए कि गवर्नर जब पहले बार उन्होंने मीट किया था तब उन्होंने मांगा था 118 सिग्नेचर, अभी फिलहाल उनके पास 119 सिग्नेचर है, कांग्रेस का 5, 3, सीपीआई का 2, सीपीएम का 2 और विद्यालय कच्छी का 2, 6 और 5, 11 सिग्नेचर और उनके पास 108 था, कुल मिला के 119 का 19 एमएलए का सपोर्ट है और उनके लिए पूरा मैंडेट है जहाँ पे
1: सगे कैलकुलेशन जो गवर्नर कर रहे हैं, जो राज्यपाल आर्लेकर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उनके मुताबिक, क्योंकि विजय ने 2 सीट से कॉन्टेस्ट किया है, 2 सीट से वो जीते हैं, तो एक बार उनका सिग्नेचर माना जा रहा है, इसलिए टीवी के का नंबर अभी 107 है और इसलिए वो 100 18 का जो आंकड़ा है वही वो टच कर रहे हैं, और इसलिए अब उनके पास सारे नंबर है, मेजोरिटी नंबर है, तो क्या पता आज ही उनको आमंत्रण आ जाए कि वो आकर के सरकार बना ले। तो कब तक ये चांस है आपके पास, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं गवर्नर हाउस से कि कब तक ओथ का टाइम मिल जाएगा उनको?
2: देखिए, अभी विजय पहुंचे हैं लोक भवन और कभी भी उनके साथ मुलाकात होगी, और उनका एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे थे, उनके घर के अंदर गए थे और उनके साथ ऑस्पिशियस टाइप और डेट का पूछताछ कर रहे थे। उसके हिसाब से गवर्नर के पास ये बोलेंगे कि हमारा पास इतना लोग है, इतना सपोर्टर और इतना मिनिस्टर विजय के साथ शपथ लेंगे और उनका डेट और टाइम गवर्नर को बताएंगे, उसके हिसाब से जो भी अरेंजमेंट होगा वो होगा। सूत्रों के अनुसार शायद 10 तारीख को ये शपथ ग्रहण चेन्नई में होगा।
1: जी सगाई, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इंतजार करेंगे कि किस दिन होगा शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई में एक्टर विजय का, वो अब कुछ देर में ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोलकाता में अभी शुभेंदु अधिकारी अंदर हैं लोक भवन में, लेकिन जब उनको विधायक दल का नेता चुना गया तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, देखते हैं।
3: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे ग्यारंटी दिए छेन सब ग्यारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे, आमी नय आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे।
4: मोदी जी को प्रति आभार प्रकट करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूँ, सब विधायक का समर्थन हुआ, बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना, संगठन को लेकर जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान वो पूरा करने का काम कर।
1: भय मुक्त होगा बंगाल, इसी भरोसे के साथ अमित शाह ने क्या कहा, सुनते हैं।
5: मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजो कर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व तो है कि हर निश सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे।
1: बंगाल की भारी मैंडेट के बाद आज पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर के तौर पर कलकत्ता पहुंचे और उसके बाद उन्होंने धुआंधार काफी सारी मीटिंग्स की, और मीटिंग के बाद जब वो कन्वेंशन सेंटर पहुंचे जहां पर विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद उन्होंने ये स्पीच दिया था। क्या क्या हुआ आज और अब अगले घंटे में क्या होने वाला है, कुछ देर में और मीटिंग्स होंगी और फाइनली कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेजेंस में ब्रिगेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी बंगाल के पहले मुख्यमंत्री का, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। तपश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपश, 207 का मैंडेट, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी का एहसास दिलाया अमित शाह ने अपने सारे विधायकों को।
0: जी बिल्कुल, देखिए 207 का जो मैंडेट है वो भारी बहुमत से भाजपा इस बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 15 साल पश्चिम बंगाल के लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, लोग वहां से निकलना चाहते हैं, वहां से छुटकारा चाहते हैं। अगर करप्शन की बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, इन तमाम बुनियादी चीजों की मांग पश्चिम बंगाल के लोग कर रहे थे। बीजेपी के कई नेताओं से हमें हमारी पहली भी बात हो चुकी थी, लेकिन उन्हें ये लैंडस्लाइड विक्ट्री और ये लैंडस्लाइड जो मैंडेट है।
1: जी तपश हमारे साथ जुड़े रहिए। शुभेंदु अधिकारी ने दावा पेश कर दिया है राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद, और कल उनका शपथ होगा 11 बजे। उनको राज्यपाल ने आमंत्रण दे दिया है कि आप आकर के शपथ लीजिए बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। दावा पेश हुआ और उसके बाद उनको आमंत्रण मिला। ये बहुत ही खास वक्त है भाजपा के लिए, बहुत ही अहम वक्त है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी रही है उसमें शुभेंदु अधिकारी का जुड़ना, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए और कल फॉर्मलाइज हो जाएगा उनका मुख्यमंत्री पद। कैसा रहा है उनका सफर, ये रिपोर्ट देखिए।
5: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
6: जिस नंदीग्राम से ममता की सियासत का उदय हुआ, उसी नंदीग्राम से ममता को शुभेंदु ने शिकस्त दी। जिस भवानीपुर को ममता ने अपना गढ़ बनाया, उस भवानीपुर में ममता शुभेंदु से मात खा गई। अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज वो सत्ता का सिंहासन शुभेंदु के लिए तैयार है। ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को चुना। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है। और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन रही है, तो सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। 17 दिसंबर 2020 को शुभेंदु ने तृणमूल छोड़ी थी और 19 दिसंबर 2020 को बीजेपी ज्वाइन की थी, और तृणमूल छोड़ने के सिर्फ 64 महीने के अंदर शुभेंदु ने बीजेपी को बंगाल में बंपर जीत दिला दी।
5: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए।
6: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव करके कैसे दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई, और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक राज्य में कोई ऐसा लोकल नेता नहीं होता जो सीधे ममता के गढ़ में घुसकर उन्हें चुनौती देता, तब तक बंगाल जीतना मुश्किल था। इसीलिए बीजेपी की तलाश शुभेंदु पर आकर खत्म हुई। शुभेंदु ममता के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
7: बंगाल में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भातीजा को लाया है और भातीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
6: ये असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई लेकिन शुभेंदु अपना मन बना चुके थे और दिसंबर 2020 में वो बीजेपी से जुड़ गए।
7: को कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कॉम्फर्ट जोन से पैसेज छोड़ के आया है।
6: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु ममता के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बने। वो अपने गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़े तो ममता ने भी उन्हें सबक सिखाने की ठानी। ममता शुभेंदु के खिलाफ लड़ने के लिए नंदीग्राम पहुंच गई, वही नंदीग्राम जहां से ममता का उदय हुआ था।
1: कभी ममता बनर्जी के सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी कल बंगाल के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे। बंगाल में तस्वीर साफ हो चुकी है, शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन थलपति विजय का शपथ कब होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बताएंगे।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
11: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
14: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
15: अरे भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
14: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
16: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
17: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
20: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: यार
21: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
22: इसमें माइक्रो फाइबर है।
21: माइक्रो फाइबर यानी
22: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
21: हमारे सीमेंट में नहीं है?
22: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
23: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
24: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते।
25: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
26: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
27: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
28: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
29: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
30: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
31: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
32: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
33: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
34: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
35: लायन डेट नट बाइट्स।
36: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
37: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
38: विक्रम, एक हिंट तो देते।
39: विक्रम!
38: हिंट।
37: बड़े आराम से।
21: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
22: इसमें माइक्रो फाइबर है।
21: माइक्रो फाइबर यानी
22: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
21: हमारे सीमेंट में नहीं है?
22: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
23: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
40: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
41: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
42: सोच बदलो और बैंक भी।
43: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
31: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
32: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
44: और वही कहाँ गए थे घूमने?
45: जीके मैक्स।
46: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
45: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
46: जेके वॉल मैक्स
45: बेस्ट पेंट,
46: जेके मैक्स।
45: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
47: Like I said before, we better own the sins.
20: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
3: अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
4: सात अप्रैल को इस विला में एक प्रिसिशन स्ट्राइक हुआ इजरायली मिसाइल से, जिसमें 15 लोग थे इस घर में, यहाँ पे विलास थे, जिनमें से 11 लोग मारे गए, 4 लोग बच गए। ये तेहरान से काफ़ी दूर है, यहाँ पे कोई आपको मिलिट्री हेडक्वार्टर भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन कहा जाता है कि इस ख़ानदान के एक इंडिविजुअल थे जो मिलिट्री में थे। ये भी कहते हैं कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजिशन में नहीं थे, लेकिन 11 लोग, जिसमें से सबसे छोटा एक 14 महीने का बच्चा और सबसे बड़े जो थे वो 75 ईयर्स या उससे थोड़े ऊपर रहे होंगे। इमोशनल सीन्स यहाँ पर आपको उस पहले कुछ घंटों में नज़र आए थे, जहाँ पे जो यहाँ के डेप्यूटी मेयर हैं, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं, जिनसे हमने बात की, आप उनकी बात भी सुनेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बयां किया यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 AM का वक्त था, रात था, अंधेरा था, और यहाँ पे आग और 11 लोग मारे गए, जिनमें से जिनके बॉडीज़ है बस 9 बॉडी बैग्स मिल पाए हैं। अभी भी एक इंसान है जो इंचार्ज है यहाँ पे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको, उसको निकालने के लिए। अभी जब हम बात ही कर रहे थे तो सत्या उनके साथ गया और देखा कि अभी भी वो बॉडी पार्ट्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर ग्राफिक इमेजेस हैं तो ज़रा संभल के, सोच के, कॉशियसली इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो ये आपने देखे पोस्टर्स लगे हुए हैं, फोटोज़ लगे हुए हैं हर तरफ, इनका जनाजा कम्युनिटी, इस पूरे कम्युनिटी ने निकाला, क्यों? क्योंकि पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया है, जो घायल थे वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए। सवाल यही उठता है कि अगर आप आज ये जंग रोक भी थे, तब भी यहाँ के लोग जिनके बच्चे मारे गए हैं, मिनाब के पेरेंट्स, यही पूछेंगे कि क्या ये ज़रूरी था, क्या ये जंग ज़रूरी था, और क्या फिर अमन और शांति और ऐसा माहौल बन सकता है जहाँ पे दोनों देश या तीनों देश, अमेरिका, इज़राइल, ईरान, लड़ाई छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे? क्या इन्हें लोग भूल पाएंगे ईरान के? क्या दुनिया भूल पाएगी इस जंग में कितने लोग मारे गए?
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
7: बंगाल में तस्वीर साफ है, शुभेंदु अधिकारी जो अभी गवर्नर से मिल रहे हैं यहाँ पर लोक भवन में कोलकाता में, उनको निमंत्रण मिल चुका है, उन्होंने दावा पेश कर दिया है और कल 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। और वहां अभी खबर आ रही है कि थलपति विजय भी कल 11 बजे ही शायद चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में शपथ ले सकते हैं। सीधा चलेंगे अक्षता के पास। अक्षता, क्या खबर है? क्योंकि गवर्नर हाउस जाने से पहले थलपति विजय ने अपने ज्योतिषी से भी बातचीत की थी
8: जी, और उसकी वजह से पूरा लेट भी हुआ था यहाँ लोकभवन आने में मारिया, क्योंकि देख रहे थे कि सही टाइम क्या है। दो बार ऑलरेडी मिल चुका है राज्यपाल से और दोनों बार अच्छा से नहीं गया, तो इस बार पूरा मतलब चेक करके सही टाइम क्या था फिर मिल दिया। और विजय का चॉइस यही था कि कल 11 बजे उनका शपथ ग्रहण होना चाहिए। हमको यही खबर मिल रहा है कि राज्यपाल भी मान लिया, ओके कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो इसलिए मारिया कल 11 बजे दो राज्य में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होने वाला है। एक बंगाल में जहां पे आप हो शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण होने वाला है, और दूसरे यहां पे चेन्नई में जहां पे मैं हूं, जहां पे विजय तलपति ऑफ तमिलनाडु होने वाला है, उनके शपथ ग्रहण भी 11 बजे ही होने वाला है। तो दो हिस्टोरिक स्वेरिंग इन सेरेमनीज दोनों राज्य में, एक बदलाव के हवा जो आ रहा था तमिलनाडु में, बंगाल में भी, इसलिए शुभेंदु अधिकारी वहां पे और यहां पे तलपति विजय सुपरस्टार से सुपर सीएम तमिलनाडु में मारिया।
7: जी जी बिल्कुल। और अक्षिता, दोनों राज्यों में एक नए पॉलिटिक्स का आगाज भी, बीजेपी के लिए बंगाल खास, वहीं तमिलनाडु में एक्टर विजय एक नए पॉलिटिक्स का आगाज करेंगे, एक नए लैंग्वेज जो बोलते हैं भाषा, पॉलिटिक्स की भाषा, ग्रामर का आगाज करेंगे कल से।
8: नहीं बिल्कुल, और मेरे को लगता है मारिया जितना भी हम शब्द ऐतिहासिक यूज करते हैं उतना मतलब इट डजंट डू जस्टिस कि क्या होने वाला है तमिलनाडु में। मैंने काफी तमिलनाडु के चुनाव कवर की हूँ, लेकिन इतना बड़ा मैंडेट और इतना बड़ा चेंज बदलाव कभी नहीं देखी हूँ। मतलब 1967 से मारिया, 1967 से हमेशा तमिलनाडु में या तो डीएमके पावर में आता था या तो AIADMK, ये हमेशा फ्लिप होता था। कभी कभी AIADMK नॉन स्टॉप पावर में थे, कभी भी नहीं एक नया प्लेयर आकर इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। हाँ, हमने देख लिया कि दूसरे बार भी अभिनेता फील्ड पॉलिटिकल फील्ड में आए थे, लेकिन इतना सक्सेस कभी नहीं हुआ। विजय अभी आकर इतना बड़ा चेंज और बदलाव लेकर आगे कि काफी एक्सपेक्टेशंस भी है। जैसे बंगाल में अमित शाह पहले बात करके बोल रहा था कि बीजेपी अभी लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करेंगे, बदलाव लेकर आएंगे बंगाल में, यहां पे भी काफी एक्सपेक्टेशंस है विजय से। और आप देख सकते हैं जितने भी गाड़ी मेरे पीछे जा रहे हैं, लोग टीवी के विजय विजय के स्लोगन्स बोलकर जा रहे हैं क्योंकि कैमराज भी ऑन है, लेकिन यहां पे भी काफी एक्सपेक्टेशंस है कि बदलाव के साथ प्रोग्रेस भी होगा। मारिया,
7: नारों की बात करें तो अगर कैमरा यहां पर पैन हो, देखिए भाजपा के झंडे दिखाए जा रहे हैं और जय श्री राम के नारे भी यहां पर लगाए जा रहे हैं कोलकाता की सड़कों पे। और कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी यहां पर आ जाएंगे और यहां पर शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यही संभावना है, क्योंकि वहां पर सारी माइक्स, अगर आप देख सकते हैं जूम इन करने के लिए मैं कहूंगी अभिषेक को, वहां पर सारी माइक्स लग गई हैं और कुछ ही देर में शुभेंदु आएंगे और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो कल 11 बजे दो राज्यों में दो मुख्यमंत्री की शपथ होगी। पहला शुभेंदु अधिकारी यहां पर कोलकाता में शपथ लेंगे और वहां पर चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मौजूद होंगे। शायद राहुल गांधी भी आने वाले हैं, इसके बारे में बताइए अक्षिता पहले।
8: जी, हमको ये सुनने में आ रहा है मारिया कि शायद राहुल गांधी आने वाला है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि टीवी के से विजय से इनवाइट गया है दोनों, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के लिए। तो जहां पे एक स्टेज में बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, यहां पे शायद राहुल गांधी भी खड़े होंगे और पहले बार हम वो इमेज देखेंगे जहां पे यूजुअली हम स्टालिन और राहुल गांधी दोनों साथ साथ बाय एक दूसरे को बुलाते हैं, बाय बाय की तरह से खड़े हो जाते हैं। इस बार चेंज हो जाएगा, इस बार राहुल गांधी और विजय के इमेजेस तस्वीर मिलेगा। तो एक साइड प्रधानमंत्री मोदी शुभेंदु अधिकारी, इस साइड राहुल गांधी और विजय की तस्वीर चेन्नई से। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 11 बजे दोनों साइड में शपथ ग्रहण। बंगाल के बारे में मेरे को पता नहीं मारिया, लेकिन यहाँ पे पूरा मतलब धमाकेदार शपथ ग्रहण होने वाला है, जैसे एक फिल्म रिलीज वैसा, वैसे ही पॉलिटिक्स में सीएम का स्वेयरिंग होने वाला है।
7: अक्षिता, भगवा रंग में रंग गया है बंगाल। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं विधानसभा की, जहां पर पूरा सैफरन हो चुका है, तो भगवा रंग दिख रहा है। शुभेंदु अधिकारी, शमिक भट्टाचार्य, आप सब निकल रहे हैं और शायद वो कुछ ही देर में प्रेस को भी संबोधित करेंगे। लेकिन अक्षिता, जो धमाके की बात आप कर रही हैं, बहुत ही धमाकेदार यहाँ पर भी कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और जितने जो शासित राज्य हैं, जो जितने भाजपा और एनडीए शासित राज्य हैं, सबके मुख्यमंत्री आएंगे। तो आपने देखा शुभेंदु अधिकारी और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मांझी साहब, जो को ऑब्जर्वर हैं, वो लोग अब जा चुके हैं। अब शायद ये लोग सीधे जा रहे हैं नोवोटेल होटल, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो डेट और टाइम दोनों जगह से क्लियर हो चुका है और कल 11 बजे दोनों राज्यों में शपथ हो गए, दो नए मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आएंगे। टीवी के अध्यक्ष विजय की पॉलिटिक्स नहीं है, उसी तरह से भाजपा आइडियोलॉजिकली रूटेड है। तो अभी किसी ने मुझे बताया कि दोनों का कंपैरिजन शायद फेयर नहीं है। अक्षिता, यही मैं बोलूंगी आपसे, शायद ये दोनों का कंपैरिजन फेयर नहीं होगा। एक आइडियोलॉजिकली रूटेड पार्टी है जो बीजेपी है, दूसरा एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है। एक्टर विजय की जो टीवी की है, वो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर उभरी है तमिलनाडु में।
8: नहीं बिल्कुल, और मारिया मेरे को ये भी फर्क दिख रहा है कि देखो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है नेशनली एक इलेक्शन मशीन है, जैसे भी चुनाव आते हैं उनका पूरा एक प्रोसेस है, जैसे बनाते हैं, और मिशन बंगाल हमको जानते हैं, आपको सबसे बड़े जानते हो कि कैसे मतलब पूरा प्लान करके एक चुनाव के बाद पूरा प्लान कर रहे थे और दो तीन चुनाव भी फाइट कर दिया, लड़ लिया बंगाल में। विजय का अगर आप देख लिया तो दो साल में पार्टी शुरू करके, दो साल में चुनाव जीत के, दो साल में मुख्यमंत्री बन गया, तो इसलिए आप सही हो कि कंपैरिजन नहीं है। बस मेरे को लग रहा है कि जो कंपैरिजन है वो यही है कि दोनों बंगाल और तमिलनाडु लोगों जो है, सिटीजन्स जो है, बदलाव के लिए चूज किया है और उस बदलाव के साथ काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो बीजेपी बंगाल में हो या फिर टीवी के तमिलनाडु में। ये भी फर्क है मारिया कि बंगाल में एक क्लियर मैंडेट था बीजेपी के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, नंबर्स इजिली बीजेपी के साथ था, इसलिए शुभेंदु अधिकारी एक ही बार जाना पड़ा गवर्नर के साथ, यहाँ पे तीन बार विजय को जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु जो बंगाल की तरह हमेशा एक क्लियर मैंडेट देता है, इस बार थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीवी के था, लेकिन मेजोरिटी मार्क आने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन सब अभी सेटल हो गया। जी मारियम
7: जी, अक्षिता ये बताएं हमें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की भूमिका रही, मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका रही, उन्होंने लेफ्ट पार्टीज और वीसीके को ऑन बोर्ड करने में मदद की, क्या रही पूरा जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए।
8: जी बिल्कुल मारिया, जैसे मैं बता रही थी यहाँ पे काफी मुश्किल था टीवी के लिए वो नंबर्स मिलने में। पहले बार जब मतलब मैंडेट आया था मंडे को, इमीडिएटली कांग्रेस ने शुरू कर दिया उनकी चर्चा कि क्या हम टीवी के साथ जाए या नहीं, फिर मतलब इमीडिएटली, जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि कांग्रेस इतना जल्दी डिसीजन ले सकता है, लेकिन तमिलनाडु में ले लिया कि हम विजय के साथ चले जाएंगे। उस पे काफी मतलब गुस्सा हुआ डीएमके को भी, जो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया उसके ऊपर। लेकिन जो नंबर्स था वीसीके और लेफ्ट, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, देखो दो दिन से चर्चा हो रहा है, दो दिन से एक मुलाकात के बाद एक और, स्टालिन से मीट किया, जिसके बाद सब बोल रहे थे कि चांस नहीं है, अभी टीवीके के साथ नहीं जाएगा। हमारे पास यही खबर है कि जैसे वीसीके जिसका चीफ है तोल तिरुमावलवन, एमपी है, तो काफी समय दिल्ली में बैठता है, तो एक इक्वेशन होता है उनके साथ कांग्रेस लीडरशिप के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे डायरेक्टली वीसी के चीफ तोल तिरुमावलवन से बात किया और कन्विंस कर दिया कि देखो इनको सपोर्ट दे दीजिए, नहीं तो बीजेपी का बैकडोर एंट्री हो जाएगा तमिलनाडु में। ये मेंशन करके लेफ्ट को भी इन्हीं के साथ आ गया, वीसी के और लेफ्ट दोनों एक ही साथ आ गए और इसकी वजह से 6 नंबर आ गया टीवीके के पास।
7: जी अभी बस आईयूएमएल बचा है डीएमके के साथ, वही एक ही पार्टी है जो अभी डीएमके के साथ है। ज्यादातर डीएमके के जो सहयोगी दल थे सब अब टीवीके के साथ आ गए हैं और एक्टर विजय को वो सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे चुके हैं और सारे समर्थन पत्र के साथ 118 सिग्नेचर के साथ एक्टर विजय अभी जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है तमिलनाडु के, गवर्नर आर्लेकर से मुलाकात कर रहे हैं। 11 बजे का उनको समय दिया गया है, जो अक्षिता बता रही हैं कल 11 बजे उनका शपथ समारोह होगा, जिसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी, लगभग 48 घंटे से ऊपर से तैयारी चल रही है। उस स्टेडियम की हमें तस्वीरें आ चुकी हैं अक्षिता, लेकिन उसी स्टेडियम में कल तलपति विजय अकेले शपथ लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर बंगाल में कल बस शुभेंदु अधिकारी ओथ लेंगे, बाकी जो डेप्यूटी सीएम्स हैं उनके बारे में अभी चर्चा चल रही है। अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है कि क्या कल शुभेंदु अधिकारी के साथ दो डेप्यूटी सीएम्स जो होंगे उनका भी ओथ होगा। जी अक्षिता, मैं आपके साथ फिर से आऊंगी। मुझे ये बताइए कि जो टीवीके के जो वीसीके के साथ क्या प्रॉमिस हुआ है, मुझे कोई बता रहा अभी, कोई मेरे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि शायद डेप्यूटी सीएम का पद उनको प्रॉमिस किया गया है।
8: नहीं बिल्कुल मारिया, जैसे आप बता रहे थे बंगाल में दो डिप्टी सीएम होने वाला है और उनके नाम अब तक पता नहीं। यहाँ पे काफी चर्चा हो रहा था कि एक डिप्टी सीएम होगा जो वीसीके से होगा, और ये देखिए मारिया कि जैसे मतलब आप पूरा टर्न करते हैं पॉलिटिक्स यहाँ पे तमिलनाडु में, कि जिस पार्टी के पास दो सीट है उसको डेप्यूटी सीएम शायद मिलेगा। लेकिन हमको ये भी मिल रहा है खबर कि डेप्यूटी सीएम नहीं होगा तो वो नहीं हो रहा है, लेकिन जो कैबिनेट है उसमें एक पोजीशन वीसीके को मिल गया। मैं अपूर्वा जयचंद्रन को भी इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ना चाहती हूँ। अपूर्वा पुदुचेरी में है जहां पे AIADMK विधायक वहां पे है, और अपूर्वा हमको ये बताइए कि पुदुचेरी में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे AIADMK एमएलए अभी भी बैठे हैं, वहां पे विधायक अभी भी बैठे हैं। कुछ चर्चा हो रहा था डीएमके AIADMK के अलायंस के बारे में जो कोई सोचा भी नहीं था कि हो सकता है, लेकिन उस चर्चे के बीच में अभी विजय को नंबर्स आ गया। इन विधायक को क्या होगा, क्या AIADMK अभी भी लग रहा है कि उनको कुछ चांस है?
9: अक्षता, अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो विधायक हैं, लगभग 25 से अधिक जो AIADMK के विधायक हैं, एक से एक यहाँ आते जाते रहे हैं इस जो पुदुचेरी के रिसॉर्ट में। जैसे आप देख सकते हैं एक से एक बढ़कर विधायक अंदर जा रहे हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए आराम करने के बाद वापस जा रहे हैं, कई मंदिर जाने के लिए, कई और बाहर जाने के लिए, और उसके बाद दोबारा से वापस इसी रिसॉर्ट में ये विधायक वापस आ रहे हैं। इनका सिर्फ ये मानना है कि जो भी चाहे जो कुछ भी हो, नंबर्स हो कई, और अगर हम देखेंगे तो इनका सिर्फ यही मानना है कि इनफैक्ट जैसे आप देख सकते हैं यही है जो चार्ल्स मार्टिन जो यहाँ पे
7: जो भी गेम प्लान हो उनका वो पूरा नहीं हुआ। जी बेशक जो भी उनका गेम प्लान हो वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि टीवीके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और राज्यपाल को उनको बुलाना था और वही हुआ। उनके पास 118 एमएलए जो विधायक हैं उनके सिग्नेचर हैं, और इसलिए कल 11 बजे दोनों राज्यों में, एक जहां अक्षिता हैं, दूसरा जहां मैं हूं, दोनों राज्यों में बंगाल और तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री का शपथ होगा। यही हमारा टॉप फोकस रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक और देखते रहिए आज तक।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, come home. It's supper time.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
1: Jack FM, playing what we want.
4: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
5: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
4: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
6: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
7: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रो फाइबर है।
7: माइक्रो फाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
7: हमारे सीमेंट में नहीं है,
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
10: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
11: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
12: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना, मैं शांति को साथ रखता हूँ।
13: म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
14: नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
15: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
16: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
17: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
18: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
19: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
20: सोच बदलो और बैंक भी।
21: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
22: और वही कहाँ गए थे घूमने?
23: जीके मैक्स।
24: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
23: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
25: जेके वॉल मैक्स।
23: बेस्ट पेंट
25: जेके मैक्स।
23: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स, जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
26: Like I said before, we better hold the sins.
27: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: Anybody can dream.
4: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है.
5: Breathable fabrics, awesome comfort, effortless style, AD from the house of Arvind.
6: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
7: इसमें माइक्रोफाइबर है.
6: माइक्रोफाइबर यानी
7: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
6: हमारे सीमेंट में नहीं है?
7: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
8: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
9: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है. खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
10: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
13: सोच बदलो और बैंक भी.
14: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके.
15: पचास से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण. जब 370 हटी तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है. मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी. और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर. ये विजय का एक और मायना है. आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है, और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है. घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है, और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी.

0: देश के दो बड़े राज्यों में नई शपथ ग्रहण, नई सरकार, नए सियासी इतिहास का बनने जा रहा है। जहां कल सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार का शुभेंदु युग शपथ के साथ शुरू होगा, तो देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी कल सुबह 11 बजे चेन्नई में विजय सरकार का नया सफर शुरू होगा। दोनों राज्यों ने इतिहास रचा है। बंगाल में 15 साल की टीएमसी सरकार की विदाई करके बीजेपी जीती है, तो वर्षों से स्थापित सियासत करते हुए 10 साल से सत्ताधारी डीएमके गठबंधन को हराकर थलपति विजय की नई नवेली पार्टी लेफ्ट के समर्थन से कल शपथ लेगी। कल शनिवार का दिन है। सुबह 9:08 से लेकर सुबह 10:45 तक राहु काल है। 11 बजे तक राहु काल समाप्त होगा, उसके बाद का समय न्यूट्रल से पॉजिटिव माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से है, जो राजकाज, लीडरशिप, अथॉरिटी के लिए शुभ माना जाता है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में आज से लेकर कल तक होने वाली हलचल से खबरदार करते हैं। 55 साल के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में कल से मुख्यमंत्री होंगे। आज कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। इसके बाद शुभेंदु लोकभवन में राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कल सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
2: 6 साल पहले जिन शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में अमित शाह ने शामिल कराया, 6 साल बाद उन्हीं को पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का ऐलान किया। जहां 8 के 8 प्रस्ताव और समर्थन केवल शुभेंदु अधिकारी के नाम पर आए, ना कोई किंतु, ना कोई परंतु, केवल शुभेंदु।
1: आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी,
2: गले में माला पहनाकर जब शुभेंदु के कंधे को अमित शाह थपथपाते हैं, तो ये केवल एक मुख्यमंत्री को चुनने का पल नहीं, ये एक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने की तस्वीर है। वो यात्रा जिसमें पर्यवेक्षण केवल विधायक दल की बैठक भर का अमित शाह का नहीं रहा, ये 2014 से 2026 तक बंगाल में शाह के पूर्ण पर्यवेक्षण की गवाही है, जहां इतिहास बनाकर शुभेंदु को राजपाट सौंप दिया गया।
1: मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं, 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहा है।
2: बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी और बंगाल में पहली बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण का मैदान तैयार है। कोलकाता का परेड ग्राउंड नए राजनीति के उदयकाल का साक्षी बनने जा रहा है। 46 साल पुरानी बीजेपी के कोर मुद्दे राम मंदिर, कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति देना नरेंद्र मोदी पूरा कर चुके। समान नागरिक संहिता पर जमीन तैयार की जा रही है और पश्चिम बंगाल विजय का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।
3: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद।
1: जब 370 हटी, तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ता

0: कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर। 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्रों। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है।
1: वंदे मातरम का 150 साल मनाते देश में 9 मई को जब रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती होगी, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, जिनके नाम का ऐलान विधायक दल की बैठक में करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे। वो कोलकाता जहां पर टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव नतीजों के बाद उन्हें रुकने की चुनौती दी थी, उसी कोलकाता में पहुंचकर अमित शाह दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करते हैं, कमल के फूलों की माला अर्पित करते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि बंगाल में पहली बार बीजेपी का केवल कमल खिला ही नहीं बल्कि टीएमसी का सुपड़ा भी साफ हुआ है।
0: हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है, 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देते हूं। और 307 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है।
2: शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और वहां पर सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। ये उसी की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। बंगाल में शुभारंभ की बात जो हम कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व साथ में मोहन मांझी एक और आपको दिख रहे हैं, बीजेपी के पश्चिम बंगाल का तमाम नेतृत्व, मुमकिन है इनमें से कुछ चेहरे आपको जब कैबिनेट का स्वरूप पश्चिम बंगाल का स्पष्ट हो तो वो भी सामने आएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा आज अलग रंग में दिख रही है, भगवा रंग की लाइट से रोशन हो रही है। वो विधानसभा जहां बीजेपी का कमल खिलने, बीजेपी का भगवा रंग होने का सपना दशकों से पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन रचने वाले नेता देखते रहे। कल शपथ होगी, उससे पहले असेंबली भगवा रंग से रोशन है। ये रंग रोशन करने में सबसे अहम चेहरा बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का रहा। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सेनापति हुआ करते थे, लेकिन आज वो बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए। ममता से शुभेंदु की अभिषेक बनर्जी को लेकर बात बिगड़ी और नौबत ममता की सियासी पैकअप तक जा पहुंची। अब ममता बनर्जी को लेकर सवाल है कि उनकी पार्टी बचेगी या नहीं। वहीं शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के शुभांकर बन गए।
0: और आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी।
3: तारीख 19 दिसंबर 2020 पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर, बीजेपी की एक रैली जिसमें शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मास्क उतारकर सबसे पहले भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर कुर्सी पर बैठने से पहले एक शख्स को हाथ से बुलाने का इशारा किया। वो शख्स थे शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने अमित शाह के पैर छूकर बीजेपी का हाथ थामा और पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदलने की जमीन तैयार हो जाती है।
4: भारत माता के
1: जय। अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने मिलकर बीजेपी का जो झंडा उस रैली में उठाया वो हर दिन के साथ नई ऊंचाई बंगाल की राजनीति में हासिल करता चला गया। इसीलिए बीजेपी की जीत के बाद जब मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा शुरू हुई तो शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे, सबसे अलग, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिखाई दिए। रही सही कसर अमित शाह ने पूरी कर दी जब उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ शुभेंदु के कंधे पर हाथ रख दिया और फिर कुछ घंटे बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक दल के नेता चुन लिए जाते हैं।
0: शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है।
1: इस तरह अमित शाह की मौजूदगी में ही शुभेंदु अधिकारी का सफर बीजेपी के साथ आगे बढ़ता है और मुख्यमंत्री के रूप में उनका चुनाव भी पर्यवेक्षक बनकर पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह नहीं किया। सिर्फ 5 साल में ही शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में न सिर्फ लंबी छलांग लगाई बल्कि ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता को दो दो बार हराने का इतिहास भी रच दिया।
4: जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। भलो थकुन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
1: इस तरह जिन शुभेंदु अधिकारी ने लेफ्ट सरकार में ममता बनर्जी की पार्टी को बंगाल में विस्तार दिया, भतीजे के लिए उस नेता की अनदेखी करना ममता बनर्जी के लिए घातक फैसला साबित हुआ।
0: जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करकर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
1: दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होते हैं तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही साल पार्टी की रणनीति शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार होता है।
4: बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
1: बंगाल की कमान बीजेपी ने एक ऐसे नेता को सौंपी है जो तृणमूल कांग्रेस की नस नस से वाकिफ रहे हैं। शुभेंदु आज से करीब 6 साल पहले जिस मेदिनीपुर की रैली में बीजेपी में शामिल होते हैं वहाँ उनके परिवार का दबदबा रहा। 12 साल की उम्र में शुभेंदु ने पिता को विधायक के तौर पर जीतते देखा और तय कर लिया कि वो भी राजनीति में आएंगे। 7 साल बाद राजनीति में उन्होंने कदम रखा, उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। शुभेंदु की राजनीतिक तकदीर ने साल 2006 में बड़ी करवट ली जब नंदीग्राम में लेफ्ट की बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आंदोलन हुआ। लेफ्ट सरकार ने इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को 25,000 एकड़ जमीन देने की कोशिश की, लेकिन शुभेंदु ने बड़ा आंदोलन खड़ा करके इसे नाकाम कर दिया। 14 मार्च 2007 को पुलिस की फायरिंग में 14 गांव वाले मारे गए और जनता में आक्रोश फैला। ममता बनर्जी ने शुभेंदु को लेफ्ट के इस गढ़ का इंचार्ज बनाकर अचानक उनका कद बढ़ा दिया। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ तब टीएमसी की जड़ें जमाई और 2011 आते आते वो ममता के बाद तृणमूल में दूसरे बड़े नेता बन गए। शुभेंदु की तैयार की हुई जमीन पर ममता ने नंदीग्राम और सिंदूर के आंदोलन को देखते हुए माँ माटी और मानुष का नारा दिया और 2011 में लेफ्ट की सरकार उखाड़ दी। इसके बाद ममता सरकार में शुभेंदु अधिकारी की तूती बोलती रही
3: लेकिन अचानक ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के एंट्री से उनका तृणमूल कांग्रेस से मोहभंग होने लगा। शुभेंदु को लगने लगा कि उनकी बरसों की मेहनत को परिवारवाद की बलि चढ़ाया जा रहा है। अंदर ही अंदर उनका संतोष बढ़ता गया और 17 दिसंबर 2020 को शुभेंदु ने टीएमसी से इस्तीफा देकर 3 दिन बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली।
5: शुभेंदु अधिकारी को कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया। मैं छोड़ के आया है, मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कॉम्फर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है।
3: शुभेंदु के राजनीतिक कद को रोकने के लिए सीधे ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से उन्हें चुनौती दी। शुभेंदु ने यह चैलेंज स्वीकार किया और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी को 1956 वोट से हरा कर तहलका मचा दी। बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गया।
0: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं।
3: शुभेंदु ने न सिर्फ नंदीग्राम जीता बल्कि बीजेपी की 77 में से 29 सीटें शुभेंदु के दबदबे वाले इलाके से तबाही। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी और वोट शेयर 10% से सीधे 38% पहुंचा, जिसने साल 2026 के चुनाव में करीब 46% का वोट लेकर रिकॉर्ड बना दिया और बंगाल जीतते ही बीजेपी ने शुभेंदु को राज्य का अधिकारी बना दिया।
2: तो नए दौर का आरंभ होने वाला है पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी गवर्नर से मिलने आज पहुंचे, आरएन रवि से उन्होंने मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया। लगभग 7:15 बजे शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं के साथ लोक निवास पहुंचे, जहां पर राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। अब बीते कुछ वर्षों में हम देखें तो ममता बनर्जी का जिस तरह का संबंध रहा राजभवन के साथ, यही उम्मीद बंगाल की जनता को भी होगी कि यहां से एक नई पारी की, ऐसी पारी की शुरुआत हो रही है जहां जो वादे किए गए हैं एक भयमुक्त समाज की, एक भयमुक्त माहौल की, जहां पर आगे और अवसरों और नौकरियों की बात की जा रही है, उन सारी चीजों का दौर, उन सारी चीजों का शुभ आरंभ यहां से हो जाएगा। ममता बनर्जी जब तक सत्ता में रही उनकी सादगी चर्चा में रही, सूती धोती, पैर में हवाई चप्पल, साधारण घर ममता का चर्चा में रहता रहा। लेकिन अब जब उसी कुर्सी पर शुभेंदु अधिकारी बैठने जा रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि शुभेंदु भी कोई बड़ी संपत्ति के मालिक नहीं है। चुनाव के दौरान जमा किए गए हलफनामे के अनुसार शुभेंदु अधिकारी की कुल घोषित संपत्ति लगभग 85,87,000 रुपए है, जिनके पास चल संपत्ति लगभग 24,57,000 रुपए है। इसमें 12,000 लगभग नकद राशि है, यानी बंगाल के कल सीएम बनने वाले शुभेंदु अधिकारी के पास केवल 12,000 रुपए कैश हैं। उनकी अचल संपत्तियों का मूल्य लगभग 61,30,000 रुपए है। इसमें मुख्य रूप से कृषि भूमि, गैर कृषि प्लॉट और 3 आवासीय संपत्ति शामिल है। शुभेंदु अधिकारी के पास न तो कोई निजी कार है, न किसी तरह का गोल्ड, मोटरसाइकिल तक शुभेंदु अधिकारी के नाम पर नहीं है, न ही किसी तरह का कर्ज। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री चुनने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने 7 बड़े ऐलान किए हैं। बंगाल में वो सब कुछ करने का ऐलान जो अब तक असंभव बना दिया गया था।
0: त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। ये जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है, ये जीत का महत्व है। ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, ना राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
2: पश्चिम बंगाल जो देश में केरल के साथ चुनावी हिंसा, राजनीतिक खूनी रंजिश का रक्त रंजित इतिहास समेटे है, वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव दर चुनाव जान गंवाई। अब की बात पहली बार जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने अपने साथियों के साथ जो घटा वो याद कराया। आज भी विधायक दल की बैठक के बाद उस इतिहास को याद किया।
4: इस पार्टी को स्थापना करने वाला महान व्यक्ति यही बंग भूमि का सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारी पार्टी की स्थापना की थी। आज देश भर में भाजपा और एनडीए की 21 सरकारें हैं। जरा जोर से बोलो भाई, कितनी सरकारें हैं? अरे जोर से बोलो, कितनी है? कोई मतलब नहीं है 21 सरकार का। ये बंगाल की भूमि पर हमारे 60 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी। 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
0: ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाही है, विचार के लिए गवाही। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को, देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं।
2: एक महीने पहले देश में बीजेपी के 15 मुख्यमंत्रियों में 3 ऐसे थे जो पहले दूसरी पार्टी में रह चुके थे। अब देश के 17 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो 5 यानी करीब 29% मुख्यमंत्री वो हैं जो दूसरे दलों से आए, या कहें कि बीजेपी ने रणनीति के तहत विचारधारा के सांचे में ढालकर उन्हें अपने साथ मिलाया और फिर सत्ता का नया जनादेश हासिल किया। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, हिमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू भी पहले कांग्रेस में थे, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी कांग्रेस में थे। बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी कल नए मुख्यमंत्री की शपथ होगी। विजय थलपति सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के चीफ और एक्टर विजय लगातार तीसरे दिन लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिले। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजय को लेफ्ट पार्टियों सीपीआई और सीपीआईएम वीसीके के बाद अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी समर्थन दे दिया है। इस तरह विजय के पास अब 120 विधायकों का समर्थन हो गया है। बड़ी खबर यह भी है कि कल राहुल गांधी उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इससे पहले विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले राज्यपाल ने 118 विधायकों का समर्थन लाने को कहा था, जिसके बाद आज विजय ने 120 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया, जिसने उनके शपथ ग्रहण का रास्ता साफ कर दिया। विजय के पास अब 120 विधायकों का समर्थन है। विजय के पास कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन पहले से है, लेफ्ट के 4 विधायकों के अलावा वीसीके के 2 और आईयूएमआई के 2 विधायक भी विजय के साथ आ गए हैं, जिन्हें मिलाकर 120 का अंक होता है। विजय थलपति की शपथ में देरी के से समर्थक परेशान हो रहे थे। लोकभवन के सामने उन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी भी की, लेकिन अब शपथ के ऐलान ने विजय के प्रशंसकों को राहत जरूर दी होगी, जो सालों से धीरे धीरे विजय की फिल्मों के जरिए उनके समर्थक बनते चले गए। अगर विजय आज तमिलनाडु की सबसे बड़ी सियासी आवाज बन गए हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह विजय की फिल्में हैं जो प्रशंसकों को उनके पक्ष में लामबंद करती गई।
6: राजनीति में थलपति विजय को यह कामयाबी अचानक नहीं मिली है। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन में भले धमाका दिखे, लेकिन ये इससे कहीं गहरा है। विजय अपनी कामयाबी की नींव धीरे धीरे फिल्म दर फिल्म अपने प्रशंसकों के दिल में रखते गए। विजय के वो दर्शक आज उनके वोटर भी हैं, जो विजय को उनकी तकदीर बदलने वाले की भूमिका में वर्षों से देख रहे हैं, जो उनकी हालत बदलने के लिए कब पसंदीदा बन गए ये किसी को पता नहीं चला। साल 2012 में आई फिल्म थुपक्की को याद करना होगा। पहली नजर में ये भले एक शानदार एक्शन फिल्म लगे, लेकिन भाग दौड़ भरे दृश्य और दबंगई के पीछे एक नैतिक स्पष्टता छिपी थी। विजय सिर्फ खलनायकों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि किसी बड़ी बुराई से रक्षा भी कर रहे थे। उनमें अनुशासन, संयम और अपने फर्ज को लेकर वो संजीदगी थी, जो वोटरों को तमिलनाडु के मौजूदा नेताओं में ढूंढने पर नहीं मिलती। इसके 2 साल बाद आई फिल्म कत्थी ने सिनेमा घरों का माहौल बदल दिया। सीटियां थम गई, तालियां थोड़ी देर बाद और जोर से बजने लगी। ये अब सिर्फ प्रशंसकों की दीवानगी नहीं थी, ये सहमति थी कई लोगों के लिए, जिनके लिए विजय सिर्फ एक स्टार नहीं रहे बल्कि एक आवाज बन गए। इसी साल 2014 में आई जिला और इसके 2 साल बाद आई थेरी जैसे फिल्मों में विजय ने समझदारी के साथ इसी संदेश को दोहराया कि सरकारी कामकाज हमेशा उस तरह का काम होता है जैसा उन्हें करना चाहिए। सत्ता के दुरुपयोग से लोग हाशिए पर चले जाते हैं, ये संदेश देते हुए विजय सुपर हीरो से कब राजनीतिक विकल्प लोगों के मन में बन गए पता ही नहीं चला।
7: नी पत्र वैत निरुपोंद्र।
6: साल 2017 में फिल्म मरसल ने विजय के संदेश को और साफ साफ तरीके से लोगों तक पहुंचाया। विजय की इस फिल्म में स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार और असमानता जैसे मुद्दों को उठाया गया, लेकिन जो बात सबसे अलग थी वो थी इससे जुड़े संवाद बोलते विजय का दृढ़ विश्वास। विजय के डायलॉग अभिनय से कहीं बढ़कर थे, ऐसा लग रहा था मानो तमिलनाडु की जनता के मन की बात कोई बिना लाग लपेट बोल रहा हो।

0: इस कड़ी को सरकार ने और मजबूत किया। फिल्म की कहानी एक वोटर के वोट छीनने के इर्द गिर्द बुनी गई और लोगों के दिल में उतर गई। विजय तमिलनाडु के लोगों की सियासी बहस का हिस्सा बन गए। साल 2019 में आई फिल्म बिगिल के साथ विजय का लहजा थोड़ा नरम हुआ, लेकिन इरादा नहीं बदला। फिर दो साल बाद आई मास्टर, जिसमें कॉलेज चुनाव के सीन भले ही छोटे लगे, लेकिन इसमें एक बड़ा संदेश छिपा था। जब विजय ने जेडी के रूप में कदम रखा तो वो सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक टूटी हुई व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म ये चुपचाप दिखाती है कि कैसे चुनाव हेर फेर होने पर अपना महत्व खो सकते हैं। तो 5 साल पहले तक लोग विजय की सिर्फ फिल्म ही नहीं देख रहे थे, बल्कि वो उनकी फिल्मों में अपने लिए अर्थ भी ढूंढ रहे थे, जो उन्हें मौजूदा सिस्टम में बार बार ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। इसीलिए साल 2006 में जब जन नायकन की चर्चा शुरू हुई तो ये कोई चौंकाने वाली घोषणा नहीं लगी, ये एक स्वाभाविक अगला कदम लगा। मानो कहानियां इसके लिए जमीन तैयार कर रही थी, क्योंकि वर्षों से विजय ने बेहद छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम लोगों की जिंदगी में रख दिए थे, जो समय के साथ उन्हें जोड़ते चले गए। विजय के चुने गए मुद्दे या फिर उनके निभाए गए किरदार, हर फिल्म में वो जनता के रक्षक, सिस्टम को चुनौती देने वाले, समाज को सुधारने वाले रूप में सामने आए। राजनीति में नेता अपने भाषणों और चुनावी अभियानों से अपने समर्थन में कहानी गढ़ते हैं। विजय ने ये काम अपनी फिल्मों से किया। बार बार उन्होंने अपने पक्ष में दर्शकों के दिल में जगह बनाई। उन्होंने एक ही बार में जनता का दिल जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके लिए उन्होंने लंबा लेकिन सधा रास्ता चुना। इसलिए थिएटर में उनके लिए बजने वाली सीटी केवल उत्साह नहीं थी, बल्कि समर्थन थी। उनके फैंस की तरफ से दोहराया गया विजय का संवाद केवल दीवानगी नहीं था, बल्कि उनकी याद था। इसीलिए जब विजय ने अचानक अविश्वसनीय सियासी छलांग लगाई तो जनता को आश्चर्य नहीं हुआ। वो जान गए कि विजय के लिए जो पसंद उनके दिल में चुपचाप आकार लेती रही, वो आखिरकार उनकी जीत के रूप में सामने आ गई है।
1: विजय सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है, उनकी कहानी भी पूरी फिल्मी लगती है। एक सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बनने का सफर भले ही आसान लगे, लेकिन विजय की कामयाबी के इस महल की नींव उनके पिता चंद्रशेखर ने रखी, जिन्होंने पहले अपने बेटे को तमिलनाडु के लोगों की नजरों में सुपरस्टार बनाकर थलपति की उपाधि दिलाई और फिर धीरे धीरे उनके लिए सियासी आधार तैयार किया। लेकिन इस कहानी में रोचक मोड़ तब आया जब विजय ने अपने ही गॉडफादर को अदालत में घसीट लिया, माता पिता दोनों के खिलाफ केस कर दिया।

लड़ाई भी इसे सबसे अनोखी बनाती है। विजय की जिंदगी की कहानी बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है, जिसमें आखिर में सब कुछ हैप्पी एंडिंग वाला हो जाता है।

0: बिल्कुल फिल्मी कहानी, विजय और उनके पिता की कहानी, राजनीति से फिल्मों तक की सबसे मशहूर कहानी बन गई, जिसमें सबसे चौंकाने वाला मोड़ साल 2020 में आया, जब तमिलनाडु की जनता की धड़कन बन चुके विजय ने अपने ही माता पिता के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसकी वजह थी, विजय को बताए बिना उनके पिता ने पार्टी बना ली, ऑल इंडिया हलपति विजय मक्कल यक्कम नाम से उसे रजिस्टर भी करवा लिया। खुद को महासचिव और पत्नी को कोषाध्यक्ष बनाकर विजय के लिए फिल्मों की तरह सियासी आसमान में छा जाने के सपने सजाए जाने लगे। लेकिन विजय इससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने खुद को पिता की राजनीतिक गतिविधियों से अलग कर लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे तमिलनाडु को चौंका दिया। विजय को थलपति बनाने वाले माता पिता बेटे के कानूनी केस के शिकार हो गए। विजय ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके माता पिता उनकी तस्वीर और उनकी लोकप्रियता का कोई राजनीतिक फायदा ना उठा सके।
1: சார் கண்ணு சமந்திருக்கு கண்ணாடி போட்டுக்கோங்க.
2: இதுவும் வாத்தியானாலே
1: கையில புத்தகம் இல்ல பரம்பு இல்ல
2: பார்த்தா வாத்தியானு உண்டான அறிவு இல்ல.
0: தமிழ்நாடு ஒரு தமிழ் சினிமா दोनों विजय की इस हरकत से दंग रहे। पहली बार किसी बड़े सितारे ने इस तरह से अपने माता पिता के खिलाफ तब अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसका नतीजा पिता पुत्र के बेटों में दूरियों के रूप में आ गया। बातचीत बंद हो गई। पूरा राज्य इस विवाद को हैरानी से देखता रहा। वजह सबको पता थी, सब जानते थे कि ये विजय के पिता चंद्रशेखर ही थे जिन्होंने 1990 के दशक में अपने बेटे जोसेफ विजय चंद्रशेखर को स्टार बनाने का बीड़ा उठाया। विजय ने अभिनय की दुनिया में कदम पिता की फिल्मों से ही रखा। साल 1992 में 18 साल की उम्र में विजय को नालाया थिरुपु से हीरो के रूप में लॉन्च किया गया। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन उनके पिता चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी। उन्होंने सेतुरा पांडे, रसीगर, विष्णु और देवा जैसी फिल्मों से बेटे को लगातार स्क्रीन पर बनाए रख धीरे धीरे विजय थलपति बन गए।

0: विजय थलपति बने वो कमांडर जिनकी फिल्मों का स्वागत मंदिर की रस्मों और ढोल की गड़गड़ाहट के साथ होने लगा। लेकिन इनके पिता इससे भी कुछ बड़ा अपने बेटे के लिए देख रहे थे। बेटे के प्रशंसकों की भीड़ में उन्हें सियासी समर्थक दिख रहे थे जो उनके बेटे को वहां पहुंचा सकते थे जहां तक रजनीकांत और कमल हसन जैसे बड़े अभिनेता भी नहीं पहुंच पाए। साल 2009 से ही विजय के पिता ने बेटे की राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी। विजय के पिता ने सबसे पहले तमिलनाडु के सभी विजय फैन क्लब्स को एक ही संस्था में विजय मक्कल एकम में मिला दिया। इससे साफ हो गया कि विजय भले ही एक स्टार बनकर खुश है लेकिन उनके पिता बेटे के लिए एक सेना खड़ी करते रहे। इसीलिए जब विजय ने अपने पिता चंद्रशेखर के खिलाफ केस किया तो सब हैरान रह गए। लेकिन साल 2026 में विजय की जीत ने पिता पुत्र के इस रिश्ते को लगी चोट पर मरहम लगाने का काम किया। जीत की खुशियों में पुरानी कड़वी यादें बह गई। विजय की जीत को चंद्रशेखर ने ऐतिहासिक बताते हुए बिना गठबंधन किए लड़ने के बेटे के फैसले की तारीफ की। इस तरह विजय की जीत सिर्फ एक राजनीतिक विजय नहीं, ये उनके माता पिता के लिए वो खास पल है जिन्होंने अपने बेटे को सिनेमा का सुपरस्टार बनाने से लेकर सियासी सुपरस्टार बनाने में अहम रोल निभाया है।
1: और अब आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर से खबरदार करते हैं, खबर बेरोजगारों के हक की। कल ही बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। आज पटना की राजधानी पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकले जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों की मांग है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, देरी न हो।
2: लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए।
3: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टियारी फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
4: लड़के हो या लड़कियां दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी सब पर जो है वो लाठियां बरसी है।
5: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है।
0: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है।
2: को हवा में उठा दिया गया है, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ी है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। यह तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को उठा दिया गया है।
0: कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है।
2: लाठीचार्ज हो गई है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठी चार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है। और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से, देखिए लाठी चार्ज की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, और तबाहतोड़ लाठी चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है।
6: ये प्रदर्शनकारी कोई मनमानी नहीं कर रहे, केवल हक की नौकरी पाने के लिए भर्ती परीक्षा का चाहते हैं कि विज्ञापन जारी हो, लेकिन मांगे सुनने की जगह लाठी मारी जाती है।
2: इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी हैं। और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं। और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है।
6: पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र हैं या कोई छात्रा।
2: आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप
3: देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टीआरई फोड़ी है। ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ये महिलाओं पे पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना, कोई किसी को कुछ अपवादी वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी चोट लगे, सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे, डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं?
6: दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है।
4: ये टीआरई 4 की परीक्षा दरअसल होनी कब चाहिए थी? अगर शेड्यूल के हिसाब से चलता तो कब ये परीक्षा हो जानी चाहिए?
7: सर शेड्यूल से अगर होना रहता तो 2-3 साल पहले एग्जामिनेशन हो जाती।
4: 2-3 साल पहले?
7: जी जी। ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ बच्चों से वोट लेते हैं। ये तमाम बिहार के जो है ना छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपको राजगद्दी दिए हैं। आप क्या करते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी नीतीश जी बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे। अरे हम ही लोग तो वोट देकर आपको राजगद्दी दिए हैं। तो आप व्यवस्था, जब वोट आपको लेना था तो उस समय आप क्या कहते थे? सिर्फ नीतीश जी ही कहते थे कि बहुत जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। शिक्षा मंत्री जी पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि अब वैकेंसी आएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वरगलाने का काम किया जा रहा है।
2: चार बार मैं खुद यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता है।
5: बार बार अपना डेट देकर अपना बात से मुकर जा रही है। जो विद्यार्थी 2-3 साल से पटना में है, आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वो गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पीटी मेंस का बहाना कर करके टीआरई को टाला जा रहा है, और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं।
1: वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: कूल फैंस से घर को सजाएं।
3: कूल फैंस, बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
2: कूल फैंस, घर की शान बढ़ाएं।
4: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा दे,
5: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
6: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
7: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
8: है। भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, anybody can dream।
7: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
9: Breathable fabrics, awesome comfort, effortless style, AD from the house of Arvind।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
11: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
10: आप कैसे कर लेते हो?
12: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
11: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
12: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
13: नहीं,
12: और म्यूचुअल फंड्स है
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
15: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
17: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
18: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
19: इसमें माइक्रोफाइबर है।
18: माइक्रोफाइबर यानी
19: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
18: हमारे सीमेंट में नहीं है,
19: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
20: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
21: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
22: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
23: विक्रम, एक हिंट तो देते।
24: विक्रम!
23: हिंट।
22: बड़े आराम से।
25: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
26: Take it, take it, date not bites.
27: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates take not bites.
26: Take it, lion date not bites.
28: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
29: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
30: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
31: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
32: सोच बदलो और बैंक भी।
33: Character, the taste of success.
34: Like I said before, we better own the sins.
1: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
18: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
19: इसमें माइक्रोफाइबर है।
18: माइक्रोफाइबर यानी
19: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
18: हमारे सीमेंट में नहीं है,
19: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
20: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
35: और वही कहाँ गए थे घूमने?
36: JK मैक्स।
37: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
36: JK मैक्स बेस्ट पुट्टी।
37: JK वॉल मैक्स
36: बेस्ट पेंट।
37: JK मैक्स
0: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
36: जेके मैक्स पेंट्स।
0: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का स्तर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
6: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रोफाइबर है।
5: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है।
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
3: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
2: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल। विमल बोलो जुबां केसरी, कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
2: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
3: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
2: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
4: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
1: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
0: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Monte Carlo, it's the way you make me feel.

पूजनीय नेताओं में से एक है। उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आज बीजेपी अपना सरकार बना रही है। दूसरी बड़ी बात, बंगाल की अपनी एक संस्कृति है, बंगाल का अपना एक इतिहास है, बंगाल अपने आप में आप अगर आप देखिए तो चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो विज्ञान हो, हर क्षेत्र में इतना संपूर्ण रहा है। इस देश को राष्ट्रगीत दिया है बंगाल ने, इस देश को राष्ट्रगान दिया है बंगाल ने। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों को बच्चे बच्चे याद करके अपने जीवन में उकेरते हैं, उतारते हैं। उसी पश्चिम बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी एक लंबी लड़ाई के बाद अपनी सरकार बना रही है और भव्य परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और इसी के साथ माना जा रहा है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में एक तरह सा शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा सकता है। आज गृहमंत्री अमित शाह शुभेंदु अधिकारी का नाम घोषित करने के बाद बहुत भावुक नजर आए। वो भावुक इस बात से थे कि उनके सामने इतना बड़ा विधायक दल बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारी संख्या एक, एक से तीन, तीन से 77 और आज देखिए इतना बड़ा विधायकों का समूह मेरे सामने बैठा हुआ है। अलग अंदाज में दिख रहे थे, अक्सर आपने उनको आक्रामक अंदाज में और किसी ना किसी मुद्दे पर जवाब देते हुए सुना होगा, लेकिन आज बड़े हर्षित थे, अपने विधायकों को देखकर गदगद थे और इसी के साथ भावुक भी हुए। भावुक हुए जब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये सफर कैसे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक का अंग बंग कलिंग का ये पूरा सपना पूरा हुआ है। बीजेपी ने बंगाल में बाकायदा तैयारी ऐसी की, ऐसे कप्तान को मैदान में उतारा जो टीएमसी की फील्डिंग को बहुत अच्छे से समझता था। जी हां, अगर आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे तो इसके पीछे कारण यही है। शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बैनर्जी को इतने करीब से देखा था, सालों साल देखा था, वो जानते थे कि उनकी कमजोरी क्या है, उनकी मजबूती क्या है। याद कीजिए वो दिन जब लगभग साल 2020 में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए, तब सिर्फ 3 विधायक थे, वहां से लेकर ये 207 विधायकों का सफर। दरअसल उन्हें कमजोरी पता थी, ममता बैनर्जी खुलकर मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती थी और उनकी इसी कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। एक वक्त ऐसा भी था जब ममता बैनर्जी छोड़कर, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर जा रहे थे बीजेपी में, तो ममता बैनर्जी ने कोशिश की उन्हें मनाने की। प्रशांत किशोर को उन्होंने उनके घर भेजा और ये कोशिश की कि प्रशांत किशोर किसी तरह से शुभेंदु अधिकारी को मना ले, समझा ले और टीएमसी में ही रोक ले। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने मन बना लिया था, उन्होंने अपने तिरस्कार को ही ममता बैनर्जी के तिलिस्म को तोड़ने का सबसे बड़ी ताकत बना डाला। वो अडिग रहे, वो आगे बढ़े, एक स्ट्रैटेजी के तहत बढ़े। उन्होंने हिंदुत्व की पिच पर उतरकर जबरदस्त बैटिंग की और शायद यही वजह थी कि आज अंजाम ये है, 207 विधायक बीजेपी के, वो सीएम बन रहे।

0: 4 मई को बंगाल में बीजेपी के लिए शुभ घड़ी आई और आज 8 मई को इस शुभ घड़ी के साथ शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए। सिर्फ 6 साल पहले तक शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार थे। उन्हें टीएमसी में ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन इसके बाद परिवारवाद की राजनीति के कारण उन्होंने अपमान का घूंट पिया। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से टीएमसी को सींचने वाले शुभेंदु अधिकारी को किनारे लगा दिया, लेकिन यही तिरस्कार साल 2026 में ममता बनर्जी के तिलिस्म को तोड़ने की ताकत बना और बंगाल में बीजेपी का झंडा फहराने का सपना पूरा हो गया।
1: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके घर में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम

0: बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति में जायंट किलर बनकर उभरे और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी उनकी योग्यता को जानती नहीं थी। 2007 में नंदीग्राम की लाल मिट्टी पर संघर्ष करने से लेकर 34 साल पुराने वाम शासन की जड़ों को हिलाने तक शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के लिए सब कुछ किया। साल 2019 तक शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर दो माने जाते थे। उनकी टीएमसी के कैडर पर मजबूत पकड़ थी और ये बात ममता बनर्जी भी जानती थी, लेकिन इसके बाद शुभेंदु अधिकारी के साथ वही हुआ जो ज्यादातर परिवारवाद वाली पार्टियों में होता है। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए शुभेंदु अधिकारी को पीछे धक्का दिया जाने लगा। स्थिति ये हो गई कि ममता बनर्जी भी शुभेंदु अधिकारी की अनदेखी करने लगी। उनसे ये उम्मीद की गई कि वो जैसे ममता बनर्जी के सिपह सालार बने, वैसे ही अभिषेक बनर्जी के भी साथी बनेंगे। ये शुभेंदु अधिकारी के साथ नाइंसाफी थी और इसे ममता बनर्जी भी समझ रही थी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा होने दिया गया। ये तय कर लिया गया कि अभिषेक बनर्जी ही ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, न कि शुभेंदु अधिकारी। इसी के बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह तय किया कि वो अब और नहीं सहेंगे। उन्होंने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और इसके एक महीने बाद विधायक पद से इस्तीफा दिया। इन दोनों इस्तीफों के बीच एक महीने का अंतर इसलिए था क्योंकि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में ही रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए, अपने कई लोगों को शुभेंदु अधिकारी के पास भेजा, जिनमें प्रशांत किशोर भी शामिल थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब उनका फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगा। इससे पहले ममता बनर्जी ने कभी किसी नेता को इस तरह पार्टी में रोकने की कोशिश नहीं की थी। 2017 में जब मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ने की बात कही थी, तब ममता बनर्जी ने बिना देर किए उन्हें खुद पार्टी से बाहर कर दिया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को लेकर ममता बनर्जी नर्म नहीं। कारण यही था कि ममता बनर्जी जानती थी कि शुभेंदु अधिकारी के साथ गलत हुआ है और उन्हें उनके हक से दूर रखा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी के कारण शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से निकलकर बीजेपी में आए और आज वो बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।
2: आमितादेश सबाई के अंतर थके प्रणाम दिन जानाते चाय आपनादे सकले सहयोगिताय आमरा जीते थी भय आउट फॉर साइन।
1: शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने इसलिए भी मुख्यमंत्री चुना क्योंकि वो चुनावों में पार्टी की जीत का बड़ा फैक्टर बने। जिस मेदिनीपुर क्षेत्र पर शुभेंदु अधिकारी की मजबूत पकड़ थी, वहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 96% रहा। मेदिनीपुर क्षेत्र की 56 में से 54 सीटें शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को जिताई और सिर्फ 2 सीटें ही टीएमसी जीत पाई। ये करिश्मा कम था कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में घुसकर हराया और उनसे भवानीपुर सीट भी छीन ली। शुभेंदु अधिकारी की यही जीत उनके मुख्यमंत्री बनने की सबसे बड़ी योग्यता साबित हुई। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो ब्राह्मण समुदाय से हैं। इससे पहले 15 साल तक मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य और 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे अजॉय मुखर्जी भी ब्राह्मण समुदाय से थे। इसके अलावा कायस्थ समुदाय से बंगाल में 3 मुख्यमंत्री बने, जिनमें विधान चंद्र रॉय, प्रफुल्ल घोष और ज्योति बसु का नाम शामिल था, जबकि सवर्ण समाज से ही वैद्य समुदाय के 2 मुख्यमंत्री बने, जिनमें प्रफुल्ल सेन और सिद्धार्थ रॉय का नाम शामिल है। शुभेंदु अधिकारी 55 साल की उम्र में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले बीजेपी के 9 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 55 साल से कम उम्र में मुख्यमंत्री बने और 7 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 55 साल से ज्यादा उम्र में मुख्यमंत्री बने। यहाँ हम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की उम्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी में ये ट्रेंड है कि जो नेता 55 साल या उससे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनता है उसे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका जरूर मिलता है। जैसे योगी आदित्यनाथ 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे और अब तक दो बार लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका तीसरा चुनाव अगले साल है। और आप सबने ये तस्वीरें तो देखी ही होंगी जब शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था। मौजूदा वक्त में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पांचवे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो दूसरी पार्टी से आए हैं। उनसे पहले बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने जो आरजेडी से बीजेपी में आए थे। असम में हिमंता बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बने जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। त्रिपुरा में मानिक साहा मुख्यमंत्री बने और वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने और वो भी कांग्रेस से पार्टी बदलकर बीजेपी में आए थे। यहाँ बीजेपी का एक खास पैटर्न ये भी है कि वो उन राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर प्रयोग नहीं करती जहाँ उसे पहली बार जीत मिलती है या जहाँ उसका बहुत मजबूत कैडर नहीं होता। असम में भी उसने यही किया और अब पश्चिम बंगाल में भी वो यही कर रही है।
3: आज हमने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के काम पर एक डॉक्यूमेंट्री आपके लिए बनाई है। आइए आपको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि शून्य से सत्ता के शिखर तक का ये सफर कैसे तय किया गया।
0: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता है।
3: बंगाल में हुए उलटफेर के पीछे एक और कहानी है और इस कहानी के सबसे बड़े किरदार हैं शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वोटर्स को उनके लिए लॉयल माना जाता था और वहां जमीन पर टीएमसी का इतना मजबूत कार्डर था कि बीजेपी के लिए बंगाल में पैर जमाना, पैर घुसाना मुश्किल था। 2021 में बीजेपी से ये चूक भी हुई थी कि जब 3 से 77 सीटें पर पहुंची लेकिन टीएमसी को वो हरा नहीं पाई। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के काडर की वो काट निकाली जिसने भारत के चुनावी इतिहास में एक नई मिसाल पेश कर दी। आज हम आपको शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी बताना चाहते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की मदद से ग्राउंड पर टीएमसी के काडर को कैसे मात दी। देखिए,
1: तारीख 19 दिसंबर 2020 जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भगवा रंग में रंग चुके थे, उन्हें अमित शाह ने बीजेपी में शामिल कराया। और आज इस घटना के 1966 दिन बाद जब बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार पर काबिज हो रही है तो मुख्यमंत्री के रूप में जो नाम पुकारा गया वो नाम है शुभेंदु अधिकारी और इस नाम का ऐलान किया खुद गृह मंत्री अमित शाह ने।
0: केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: जब इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगाई गई, तो अमित शाह ने माला पहनाकर शुभेंदु अधिकारी का अभिनंदन किया और इस पर शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह अभिभूत नजर आए। वो बार बार अमित शाह और विधायक दल का शुक्रिया कर रहे थे। आज बंगाल में वो हो गया जो आजादी के बाद से बीजेपी और जनसंघ के न जाने कितने नेताओं का सपना था और अब इतिहास में पहली बार बीजेपी कोलकाता की कुर्सी पर काबिज हो रही है।
0: इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है।
1: विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी को भले ही पहली बार हराया हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम है जिसने ममता बनर्जी को व्यक्तिगत तौर पर लगातार 2 बार शिकस्त दी और आज बंगाल की कुर्सी उनके नाम लिखी जा चुकी है। दशकों तक अपराजेय माने जाने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का सत्ता से बाहर होना किसी करिश्मे से कम नहीं है। सिर्फ एक शख्स ने टीएमसी के कैडर को छिन्न भिन्न कर दिया। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी टीएमसी के संगठन पर सबसे गहरी पकड़ रखते थे, उन्होंने उसी संगठन की ईंट से ईंट बजा दी।
4: मोदी जी को प्रति आभार प्रकट करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूँ, सब विधायक का समर्थन हुआ, बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना, संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम कर।
1: शुभेंदु जानते थे कि टीएमसी की ताकत उसका बूथ लेवल कैडर है। उन्होंने टीएमसी छोड़ रहे कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाया कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है, जिससे कार्यकर्ताओं के मन में दीदी का खौफ खत्म हो गया। शुभेंदु ने इस चुनाव को सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और अस्मिता पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर ये संदेश पहुंचाया कि तृणमूल अब वो पुरानी पार्टी नहीं रही जो आम लोगों के लिए लड़ती थी। शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने ममता बनर्जी के अजय होने के नैरेटिव को खत्म किया। उन्होंने टीएमसी के काडर को ये महसूस कराया कि जहाज डूब रहा है और फिर उन्हें बीजेपी के रूप में एक सुरक्षित विकल्प दिया।
3: पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में आज एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। आखिर कैसे शून्य से शिखर तक का सफर बीजेपी ने महज एक दशक में तय कर लिया। बीजेपी को पहली बार खाता खोलने के लिए 36 सालों का इंतजार करना पड़ा। साल 1980 में बीजेपी की स्थापना से लेकर साल 2016 तक बीजेपी को खाता खोलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2014 के बाद और अगले 10 सालों में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो एक वक्त पर नामुमकिन लगता था। आज बंगाल में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इस चमत्कार के पीछे कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति थी जिसका आधार था हिंदू वोटों का एकीकरण। बीजेपी ने बंगाल की राजनीति की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया, खुल्लम खुल्ला दांव खेला। रणनीति साफ थी, उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को ढाल बनाकर बीजेपी ने मतुआ समुदाय से लेकर आदिवासी इलाकों तक हिंदुत्व की अलख जगाई। जहां विपक्षी दल मुस्लिम वोटों के गणित में उलझे रहे, वहीं बीजेपी ने 70% हिंदू आबादी को अपना सारथी बना लिया। जय श्री राम का नारा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। आज बंगाल की सियासत 2 ध्रुवों में बटी है, एक तरफ वो जो अल्पसंख्यक वोटों के बिना जीत की कल्पना नहीं करते और दूसरी तरफ बीजेपी जिसने साबित कर दिया कि बहुसंख्यक वोटों की लामबंदी सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का रास्ता हो सकती है। एक दशक में 3 सीटों से 207 सीटों की छलांग ने बंगाल के राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर बंगाल में बीजेपी ने कैसे कमल खिलाया, यानी बंगाल बीजेपी जीती कैसे।

0: असम के बाद पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां 27% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बाद भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में काउंटर कंसोलिडेशन हुआ। हर बार मुसलमान अपना एक मुश्त वोट टीएमसी को देते थे, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भी अपना एक मुश्त वोट बीजेपी को दिया। खासकर उन सीटों पर बीजेपी को हिंदुओं के बम्पर वोट मिले जहां मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। ऐसी 62 सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत हुई। उसे 15 सीटों का फायदा हुआ जबकि टीएमसी को इन्हीं मुस्लिम फैक्टर वाले इलाकों में 20 सीटों का नुकसान हुआ। ये बदलाव सिर्फ एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं आया, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने खुद हिंदुत्व का ये लॉन्च पैड तैयार किया। बंगाल की धरती पर अगर कमल खिला तो इसके लिए ममता बनर्जी ने खुद बीजेपी को जमीन तैयार करके दी। टीएमसी ने मुसलमानों पर जितनी ममता दिखाई उतने ही हिंदू बीजेपी के साथ एकजुट होते गए, और इसकी पहली नींव साल 2016 में यानी आज से 10 साल पहले रखी गई थी। साल 2016 का बंगाल सांप्रदायिक राजनीति के दलदल में बुरी तरह धंस चुका था। चारों तरफ एक ही सवाल था कि मुसलमानों पर सरकार की इतनी ममता क्यों है। उस दौर में मुहर्रम उसी दिन पड़ रहा था जिस दिन पूरे राज्य में दुर्गा विसर्जन होना था। अगर सरकार चाहती तो वो ना मुहर्रम को रोकती और ना दुर्गा विसर्जन को। इससे सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होता। इसके लिए बस ममता बनर्जी की सरकार को पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने इसे एक मौका समझा, मौका पश्चिम बंगाल के 27% मुसलमानों को खुश करने का, मौका मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने का, और मौका मुसलमानों को ये बताने का कि टीएमसी चुनावों में उनका एक मुश्त वोट मिलने से गदगद है और वो उनकी भावनाओं का ख्याल रखेगी। सरकार ने ऐसा किया भी। ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 2016 का मुहर्रम जुलूस बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये उसी दिन निकलेगा जिस दिन दुर्गा विसर्जन होना है। इसके लिए ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन को ही एक दिन के लिए स्थगित कर दिया, और 2016 के इसी फैसले ने हिंदुओं के मन में एक टीस पैदा की। टीस इस बात की कि वोट तो हिंदुओं ने भी ममता बनर्जी को दिया था, फिर ऐसा क्यों हुआ कि मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोक दिया गया।
1: শুধু একদিনই দেওয়া যাবে না, সেটা হচ্ছে পয়লা অক্টোবর একাদশীর দিন। একাদশীর দিন এমনিতে আমরা বিসর্জন দিতেও চাই না অনেক সময়, একাদশীর দিনটা শুধু দেয়া বিসর্জন হবে না, কারণ ওই দিন মুহরম আছে বলে।
0: ये सिर्फ एक साल नहीं हुआ, इसके बाद आया साल 2017। इस बार भी ममता बनर्जी ने कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी और इस बार ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट गया। सरकार की नीतियों और फैसलों को देखकर अदालत को भी ये कहना पड़ा कि मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोकना गलत है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार दो समुदायों के बीच दरार को जानबूझकर गहरा कर रही है, और ये बात हिंदुओं के मन में घर कर गई। हिंदुओं को ऐसा महसूस होने लगा कि पश्चिम बंगाल में उनकी नहीं बल्कि मुसलमानों की सरकार का शासन है। वक्त आगे बढ़ा और फिर आया साल 2019। इस बार लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे का विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लड़कों को जय श्री राम का नारा लगाने पर जेल में डालने की धमकी दे दी और ये कहा कि जय श्री राम बंगाल में नहीं चलेगा। इस बार भी ममता बनर्जी ने बीजेपी की जमीन तैयार की और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया।
2: बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा है, और पुलिस को कह रहे थे पकड़ो जेल में डाल दो। तुष्टिकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है।
0: बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को सिर्फ उछाला था, लेकिन ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ने बीजेपी को बंगाल में एक नया अवसर दिया। लोकसभा चुनावों में पहली बार बंगाल की 18 सीटों पर बीजेपी जीती और 22 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी।
2: ये को याद है।
0: बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को सिर्फ उछाला था, लेकिन ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ने बीजेपी को बंगाल में एक नया अवसर दिया। लोकसभा चुनावों में पहली बार बंगाल की 18 सीटों पर बीजेपी जीती और 22 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी। ये हार ममता बनर्जी के लिए कई सबक लेकर आई, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी की सुई मुसलमानों पर अटकी रही। उन्हें लगा कि वो मुसलमानों के कम वोट मिलने ने बीजेपी को बंगाल में एक नया अवसर दिया। लोकसभा चुनावों में पहली बार बंगाल की 18 सीटों पर बीजेपी जीती और 22 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी। ये हार ममता बनर्जी के लिए कई सबक लेकर आई, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी की सुई मुसलमानों पर अटकी रही। उन्हें लगा कि वो मुसलमानों के कम वोट मिलने कारी बीजेपी में आए, जो आगे चलकर हिंदू हृदय सम्राट बने और 2021 के चुनावों में बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी को उम्मीद थी कि ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से आक्रोशित होकर बड़ी संख्या में हिंदू उसे वोट देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी और टीएमसी के बीच 10% वोटों का अंतर रहा। उस बार काउंटर कंसोलिडेशन नहीं हुआ, यानी मुसलमान तो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन हिंदुओं के बीच वैसी एकजुटता नहीं दिखी। बीजेपी हारी, लेकिन उसने हिंदू वोटर्स को छोड़ा नहीं और ममता बनर्जी धीरे धीरे बीजेपी का काम आसान करती रही। इसी साल चुनावों से पहले ममता बनर्जी ने अपना आखिरी बजट पेश किया, जिसमें अल्पसंख्यक और मदरसों के लिए 5,714 करोड़ रुपए दिए, जबकि उद्योगों के लिए सिर्फ 1,484 करोड़ रुपए, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिर्फ 217 करोड़ रुपए और कानून से जुड़े मामलों के लिए 23 करोड़ रुपए ही दिए गए। इस बजट से ममता बनर्जी मुसलमानों को साधना चाहती थी और उनकी प्राथमिकता स्पष्ट थी, लेकिन इस बार बंगाल के हिंदू भी ये सब देख रहे थे। आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ पर हिंदुओं के घर घर पहुंचे और इस बजट के बारे में लोगों को बताया। जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, उसे भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। इससे हिंदू समुदाय एकजुट हुआ और उसके मन में ये भावना पैदा हुई कि अगर ममता बनर्जी को उन्होंने नहीं हटाया तो अभी बांग्लादेश में ये हो रहा है, लेकिन आगे बंगाल में भी हो सकता है। ऊपर से रही सही कसर टीएमसी के नेताओं ने पूरी कर दी। लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने कहा कि उनकी पार्टी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि जय श्री राम के नारे पर वोट मांगना पड़े, लेकिन यही सायोनी घोष अपनी चुनावी रैलियों में काबा और मदीना के गाने गाती रही और यही से हुआ काउंटर कंसोलिडेशन।

0: अब बंगाल भगवा मैं हो चुका है। और जो शुभेंदु अधिकारी ये कहते थे कि ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल को तोड़ देगी, वही शुभेंदु अधिकारी अब अपने राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं और कल उनका शपथ ग्रहण होना है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार टीएमसी के वोट बैंक की नहीं बल्कि अस्तित्व की जीत हुई। बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे जिस सबसे बड़ी ताकत का नाम लिया जा रहा है वो है मथुआ समुदाय। एक वक्त था जब ममता बनर्जी ने मथुआ समुदाय के लिए विकास की झोली खोल दी थी। शिक्षा से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक ममता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक मोर्चे पर दीदी पूरी तरह से बेबस नजर आई और वो था नागरिकता का मुद्दा। है हिंदू, आए हैं बांग्लादेश से, लेकिन यहां पर वो अपने ही मतलब पश्चिम बंगाल में जहां वो रह रहे थे अलग अलग टेंट्स में रहते थे और एक तरह से रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे थे। बीजेपी ने इसी कमजोर नब्ज को पकड़ा। पार्टी जानती थी मथुआ समुदाय के लिए पहचान का संकट सबसे बड़ा है। केंद्र सरकार सीए को लेकर आई और मथुआ समुदाय को सीधे नागरिकता का अधिकार थमा दिया। यानी मथुआ समुदाय के कुछ लोग पहले से भारत के नागरिक थे, लेकिन जो नहीं थे अब वो भी नागरिक बन गए। नतीजा सबके सामने है। जिस समुदाय को ममता अपना वोट बैंक मानती थी उसी समुदाय ने इस बार बीजेपी का समर्थन किया। ममता का अभेद्य किला ढह गया। रणनीति पर बीजेपी ने 2014 से काम शुरू किया था और इस बार वो काम आया। ये नया एम फैक्टर

0: मतुआ फैक्टर है। ये नया एम फैक्टर कैसे ममता बनर्जी के एम फैक्टर पर हावी साबित हुआ, वो पूरी कहानी देखिए।
1: बंगाल की राजनीति में जिस मुस्लिम फैक्टर के दम पर ममता बंगाल के सिंहासन पर बैठी थी, उसकी काट बीजेपी ने मतुआ फैक्टर से निकाली। नदिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना से लेकर मालदा तक फैला ये वो समुदाय है जो करीब 34 से 40 विधानसभा सीटों की किस्मत लिखता है। 2014 तक जो मतुआ समुदाय ममता बनर्जी के सिंहासन की ढाल बना हुआ था, आज वो बीजेपी का सबसे मजबूत हथियार बन चुका है। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। नागरिकता का वो वादा जो सीएए बनकर जमीन पर उतरा और एक ऐसा इमोशनल कनेक्ट जिसने ठाकुरबाड़ी की दहलीज तक बीजेपी को पहुंचा दिया, और इस तरह बीजेपी ने मतुआ फैक्टर से जीत का सफर तय किया। कहानी शुरू होती है 2014 से। तब मतुआ समुदाय पूरी तरह तृणमूल कांग्रेस के साथ था। मतुआ संप्रदाय की बोड़ो माँ यानी बीना पाड़ी देवी के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर टीएमसी के टिकट पर बनगांव से सांसद थे, लेकिन 2014 में ही उनके निधन के बाद राजनीति की बिसात बदल गई। ममता बनर्जी ने कपिल कृष्ण की पत्नी ममता बाला ठाकुर को उपचुनाव लड़ाया और इस वक्त बीजेपी को सही मौका दिखा। बीजेपी की नजर इस वोट बैंक की दरार पर थी और उसने ठाकुर परिवार के दूसरे धड़े यानी छोटे भाई के परिवार को अपनी ओर खींचा। हालांकि उपचुनाव में जीत टीएमसी की ममता बाला ठाकुर को ही मिली। बीजेपी ने बोडो माँ के पोते शांतनु ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी और इस तरह मतुआ समुदाय के केंद्र ठाकुरबाड़ी में दो फाड़ हो गए। एक तरफ ममता बाला ठाकुर टीएमसी में तो दूसरी तरफ शांतनु ठाकुर बीजेपी में। मतुआ समुदाय को सबसे बड़ा तोहफा बीजेपी ने नागरिकता कानून से दिया जो ममता बनर्जी के दायरे से बाहर था। ममता ने मतुआ समुदाय के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, विकास बोर्ड बनाया, लेकिन वो एक चीज नहीं दे सकती थी और वो थी नागरिकता।
2: मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती।
1: विभाजन और 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश से आए इन शरणार्थियों के लिए नागरिकता महज एक कागज नहीं, पहचान और सम्मान की लड़ाई थी। बीजेपी ने इसी नब्ज को पकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बार बार भरोसा दिलाया कि सीए आएगा और मतुआ समुदाय के लोगों को भारत का वैध नागरिक बनाएगा। 2024 में कानून लागू कर बीजेपी ने दिखा दिया कि उसकी रणनीति चुनावी नहीं बल्कि डिलीवरी आधारित है।
3: मैं मतुआ नाम शूद्र और अन्य सभी शरणार्थी परिवारों से कहूंगा, आपको नागरिकता भी मिलेगी, आपको पक्का एड्रेस मिलेगा, आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतवासी को देश के नागरिक को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है।
1: बीजेपी की जीत का रास्ता सिर्फ फाइलों से नहीं बल्कि आस्था के कनेक्ट से होकर गुजरा। 2019 में पीएम मोदी ने बड़ों माँ के पैर छूकर जो आशीर्वाद लिया, उसकी तस्वीर आज भी मतुआ घरों की दीवारों पर है। इतना ही नहीं, मार्च 2021 में बंगाल चुनाव के बीच प्रधानमंत्री सीधे बांग्लादेश के ओराकांडी पहुंचे। ये वो पवित्र भूमि है जहां मतुआ संप्रदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था। धोती कुर्ता पहने मोदी जब वहां ढोल और शंख की ध्वनि के बीच मंदिर पहुंचे, तो बंगाल के करोड़ों मतुआ वोटर्स को सीधा संदेश मिल गया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां जाना एक ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक था।
3: मेरी यहां कुछ महानुभाव से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांडी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांडी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं।
1: बीजेपी की ये मेहनत रंग लाई। मथुआ समुदाय का प्रभाव क्षेत्र नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मालदा जिलों में है और करीब 5 सीटों पर इनका सीधा असर है। 2019 में बनगांव और राणाघाट जैसी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2021 में जब पूरे बंगाल में टीएमसी की लहर थी, तब भी मथुआ बहुल इलाकों में बीजेपी ने अपना वोट शेयर और सीटें बनाए रखी।
2: ये दीदी मथुआ समाज वालों को धमकाती है कि अगर हम आए तो आपके वोट चले जाएंगे। अरे दीदी ये मथुआ समाज तो हमारा प्राण है, प्राण है, इसको कोई छू नहीं सकता। कोई मथुआ समाज के नमोशूद्र समाज के व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है।
1: बीजेपी ने साबित कर दिया कि उनकी रणनीति शॉर्ट टर्म नहीं होती। उन्होंने एक तरफ ठाकुर परिवार के शांतनु ठाकुर को केंद्र में मंत्री बनाकर प्रतिनिधित्व दिया तो दूसरी तरफ सीए के जरिए कानून की ताकत दी। ममता बनर्जी ने आखिर तक मथुआ विकास बोर्ड के जरिए संघर्ष किया, लेकिन नागरिकता का जो ठप्पा बीजेपी ने लगाया है उसने मथुआ समुदाय को भगवा रंग में रंग दिया है। बंगाल की सत्ता का रास्ता अब मथुआ के हरी बोल से होकर ही गुजरता है। मथुआ समुदाय अब सिर्फ शरणार्थी नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति के किंग मेकर हैं और इस किंग मेकर को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने दीदी के मुस्लिम फैक्टर को एक बड़ी चुनौती दे दी है।
0: एक बार ममता बनर्जी ने पूछा कि अमित शाह कौन है, लेकिन आज ममता बनर्जी अमित शाह को और उनकी रणनीति को अच्छी तरह जान चुकी होंगी। अमित शाह साल 2014 से 2020 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने बंगाल प्रोजेक्ट पर ऐसे काम किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज देखने में लगता है कि बीजेपी 207 सीटें कैसे जीत गई, लेकिन जब आप अमित शाह की चाणक्य नीति को देखेंगे और उसकी पूरी टाइमलाइन को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल में तो बीजेपी का बमबम होना निश्चित था और निश्चित इसलिए था क्योंकि अमित शाह ने बंगाल के लिए चाणक्य नीति ही बना डाली थी। देखिए
2: दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए।
1: कौन अमित शाह? साल 2014 में जब ममता बनर्जी ने ये अहंकार भरा सवाल पूछा था तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि गुजरात से निकला ये शख्स बंगाल की राजनीति का भूगोल बदलने वाला है। 2014 से 2026 तक करीब एक दशक की वो तपस्या, वो प्रोजेक्ट बंगाल जो कागजों पर नहीं अमित शाह के दिल और दिमाग में लिखा गया था, आज बंगाल जब भगवामय हो रहा है तब उसके पीछे अमित शाह की चाणक्य नीति ही है। ये कहानी शुरू होती है साल 2014 से। दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी काबिज हो चुके थे और अमित शाह बीजेपी की कमान संभाल चुके थे। उस वक्त बीजेपी के लिए बंगाल एक अभेद किला था। वामपंथियों और ममता दीदी के गढ़ में बीजेपी का वजूद ना के बराबर था, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली उनकी नजरें कोलकाता पर टिक गई। अमित शाह के लिए पहली बड़ी अग्नि परीक्षा बंगाल के 2016 के विधानसभा चुनाव में आई। शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार 3 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपना खाता खोला। सीटें भले ही 3 थीं, लेकिन शाह ने मन छोटा नहीं किया। उन्होंने समझ लिया कि बंगाल में लड़ाई सड़कों पर भी होगी और बूथों पर भी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव ने पूरी बाजी पलट दी। अमित शाह ने बंगाल के कोने कोने का दौरा किया, बूथ मजबूत किए और पहली बार टीएमसी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी।
2: पिछले बंगाल के विकास को ममता दीदी का ग्रहण लग गया, बंगाल का विकास थमा पड़ा है। मैं आपको बताता हूं, इस सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने कंगाल बांग्ला बनाया है, कंगाल बांग्ला बनाया है।
1: और इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी बंगाल में 2 लोकसभा सीटों से 18 सीटों पर पहुंच गई। ये बंगाल में भगवा उदय की पहली बड़ी झांकी थी। अमित शाह जानते थे कि दीदी को हराने के लिए उनके घर में सेंध लगानी होगी। उन्होंने 2020 के दिसंबर में शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराकर पूरी कमान सौंप दी। इस समय अमित शाह मोदी सरकार में गृह मंत्री बन चुके थे, लेकिन उनका प्रोजेक्ट बंगाल जारी था। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3 सीटों से सीधे 77 सीटों तक पहुंच गई। यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया, लेकिन बीजेपी को विपक्ष में ही बैठना पड़ा। चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा ने बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश की। 2024 लोकसभा चुनाव में सीटें घटी तो विरोधियों ने कहा कि बीजेपी ममता को नहीं हटा सकती, लेकिन ये तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। 2026 के चुनाव में अमित शाह ने फिर कमान संभाली, खुद जाकर बंगाल में डेरा डाला। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद ही शाह ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि बीजेपी आ रही है। शाह ने अपनी माइक्रो मैनेजमेंट टीम को मैदान में उतारा। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जिसने टीएमसी के किले की ईंट से ईंट बजा दी।
3: भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय।
1: आज जब बीजेपी बंगाल की सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो रही है तो वो सवाल हवा में गायब हो चुका है कि अमित शाह कौन है। आज ममता बनर्जी और पूरा देश जानता है कि अमित शाह वो नाम है जिसने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से उखाड़ दिया है और खुद आकर बंगाल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया है।
0: और अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। ऐसा फिर से लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से ना छिड़ जाए, क्योंकि बीते दिन जो अमेरिकन नेवी है उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए। अब देखिए, युद्ध विराम की घोषणा तो दोनों तरफ से कर दी गई है, बावजूद इसके एक लड़ाई की स्थिति बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक तरफ ईरान ने बंद किया था, अब वहां पर यूएस ब्लॉकेड के बाद ईरान मुश्किलों का सामना कर रहा है और इन सब के बीच युद्ध विराम कहीं संकट में ना जाए, ये स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने युद्ध विराम को तोड़ते हुए यूएस की नेवी ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। अब ईरान क्या वापस उस युद्ध विराम को तोड़कर कुछ कर सकता है? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध विराम लागू है, लेकिन क्या ईरान मानेगा? क्या ये युद्ध फिर से नए सिरे से शुरू हो सकता है? देखिए।
4: Yeah, it is. It's, they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
0: और इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
3: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
2: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: ऐसा कूलर दिखा पूरी फैमिली बोले वाह।
6: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
5: ज्यादा बड़ी ना है,
6: छोटे ऑन कर दे,
5: ऑन कर दे, ऑन कर दे, पैक कर दे समर कूल।
6: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
7: मैं करता हूँ ना, मैं करूँगा।
8: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
7: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
8: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
7: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
8: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
9: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
10: है। अरे भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
9: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
11: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, AD फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम, एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट।
3: बड़े आराम से।
6: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
7: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
6: ज्यादा बड़ी ना है।
7: छोटे ऑन कर दे,
8: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
6: पैक कर दे समर कूल।
7: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
9: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे PNB वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या FD, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
10: PNB वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
11: कूल फैंस से घर को सजाएं।
12: कूल फैंस, बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
11: कूल फैंस, घर की शान बढ़ाएं।
13: In association with Hint, बड़े आराम से।
14: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
15: विमल बोलो जुबां केसरी।
16: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
17: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
18: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पचास से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है, और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है, और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी।
2: कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जो आप 19 में से 18 और मुस्लिम में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके पीछे चुनाव आयोग की 2023 की परिसीमन प्रक्रिया है, जिनमें उन सीटों की संख्या घटाकर लगभग 36 से 22 कर दी गई जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक थे। कुछ इलाकों को बांटा गया, कुछ को जोड़ा गया, कुछ सीटों को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटों तक पहुंचने का मौका मिला। आपका जवाब।
3: देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये सब बोलने के लिए शर्म आना चाहिए। किस लिए? जो गौरव गोगोई का अपना पार्लियामेंट्री सीट है जोरहाट, परिसीमन का बाद उन्होंने जोरहाट सीट 2026 का लोकसभा में जीते थे, एंड उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 सीटों का 9 सीटों में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको लीड मिले थे। लेकिन इस बार गौरव गोगोई खुद भी हारे और सारे 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो गौरव गोगोई 26 में लीड मिले थे, हम उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे जीत हासिल हुए। परिसीमन का बात का यह घटना है, जो परिसीमन का बात 2024 में जो सीटें कांग्रेस ने जीते वो सीट इस बार बीजेपी जीते। तो उसका मीनिंग क्या है? दूसरा, आप थोड़ा वोट परसेंटेज देखिए। हम सीट नहीं जीते हैं, साथ साथ में हमारा एब्सोल्यूट वोट परसेंटेज भी 50 तक पहुंच चुका है। तो ये खाली सीट का काम नहीं है, पॉपुलर वोट भी 50% हुए हैं। ये लोग बोल सकते थे परिसमन के लिए हम जीते, अगर हमारा सीट बढ़ते थे वोट नहीं बढ़ते थे।
2: एक बार फिर से वो डेटा दिखाइएगा जिसकी चर्चा वो तो भी कर रहे हैं, मतलब शर्मा भी कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं सर। वोट परसेंटेज 2021 में जब आपकी 60 सीट आई थी,
3: हाँ,
2: तो 33% के करीब आपका वोट परसेंटेज था। इस बार 38% सिर्फ बीजेपी का है, लगभग 6.5% असम गण परिषद का है। उसके बाद आपका अलायंस में जो पार्टनर है बीपीएफ, उनका 10 सीट है, वहां भी आपको 4% के करीब है, तो मिलाकर हो गया। और कांग्रेस पार्टी 29% पर है, वो हम दिखा रहे हैं।

0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और यहां पर हर कोई अपनी लाइफ को एडिट करके दिखा रहा है, असलियत तो बस फिल्टर जानता है। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। अमित शाह ने किया नाम का ऐलान। कल सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ। प्रधानमंत्री मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन। अमित शाह ने कहा भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय की शपथ पर सस्पेंस। लोक भवन सूत्रों के अनुसार फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन। राज्यपाल ने नहीं दी है तारीख। गुरुग्राम के सद्भाव यात्रा में राहुल ने बंगाल और असम के चुनावी रिजल्ट पर उठाए सवाल। कहा सरकार ने दोनों राज्यों में की चुनाव की चोरी। एसआईआर में हटाए गए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में फिर युद्ध की आहट। ईरान ने यूए पर दाखी मिसाइलें। हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी अटैक। ट्रंप की धमकी डील नहीं हुई तो कर देंगे तबाह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पथ। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज।
2: आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
3: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे

0: अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दे। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
1: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
0: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। ये जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। ये जीत का महत्व है, ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
1: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
2: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी के इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 सीटों तक पहुंचाया। और इसीलिए बीजेपी आज ऐलानिया कह रही है, आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से।
0: जी हां, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है। जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে যে গ্যারেন্টি দিয়েছেন সব গ্যারেন্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে, আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। ভয় আউট, ভরসা ইন।
3: अब इसे बीजेपी और अमित शाह की रणनीति कहें या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की खुन्नस, लेकिन शुभेंदु के बीजेपी खेमे में आने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिली बल्कि आज बंगाल में बीजेपी की सरकार भी है। तो आइए हम आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी जिसने आज बंगाल में बीजेपी का सपना साकार किया है।
0: 27 नवम्बर 2020, अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी के खास सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने थे, आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 1 दिसंबर की रात 4 दिग्गज एक कमरे में जुटते हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची होती है और सुबह सौगत रॉय ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में शुभेंदु ने व्हाट्सएप मैसेज से धमाका कर दिया। उन्होंने सौगत रॉय को लिखा कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर देना।
4: আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে, কে বলছে? যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারত রত্ন তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না।
5: তিনবার হয়েছে, 2-3 বার পরপর হয়েছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
0: 17 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आधिकारिक तौर पर कहा अलविदा और 19 दिसंबर 2020 को मेदिनीपुर के मैदान में भारी जन सैलाब के बीच अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। शुभेंदु ने शाह के पैर छुए और बन गए बीजेपी के सारथी और आज 5.5 साल बाद वही अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्हें बीजेपी की तरफ से बंगाल की कमान सौंप रहे हैं और शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम होंगे। और आज शुभेंदु अधिकारी की पहचान मेदिनीपुर के चाणक्य से बंगाल के किंग मेकर तक होती है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु की असली लड़ाई ममता से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी से है।
6: दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ममता के लिए शुभेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी खूब ले रही थी। ये जुगलबंदी जम भी खूब रही थी। शुभेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वो एक तरह से अघोषित नंबर 2 हो गए थे लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। यहीं से शुभेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और नौबत पार्टी छोड़ने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के इस पूरे चुनाव को भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की लड़ाई बना दिया क्योंकि राजनीति शुभेंदु को विरासत में मिली। आज नतीजा सबके सामने है। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकुली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति की खुशबू भी थी और राजनीति का माहौल भी। दादा खेनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से ऐसी बगावत की आजादी से पहले 3 बार उनका घर जलाया गया। पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल गांधी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायक बनते देखा और तभी ठान लिया कि उनका रास्ता भी राजनीति ही है। 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। टीएमसी बनने के 2 साल बाद साल 2000 में शुभेंदु कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे। लेकिन शुभेंदु के जीवन में बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। दरअसल दिसंबर 2006 में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ मिलकर बंगाल के नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब बनाने का फैसला किया। किसान इसके खिलाफ थे और जनवरी 2007 में लेफ्ट सरकार के इस फैसले को जमीन पर लागू होने से रोकने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई जिसके कमांडर बने शुभेंदु अधिकारी। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ही ममता बनर्जी 3 दशक पुराना वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। नंदीग्राम के बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल का इंचार्ज बनाया। ये इलाका माओवादियों और वामपंथियों का गढ़ था। शुभेंदु ने यहाँ हर बूथ पर टीएमसी की जड़ें मजबूत की और साल 2011 के चुनाव में शुभेंदु ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता बन चुके थे। इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और 34 साल की वामपंथी सरकार का अंत हुआ। सीएम बनी ममता बनर्जी।
4: আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।
0: लेकिन ममता का झुकाव अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ हुआ तो शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनकी सादगी कुर्ता पैजामा चप्पल जो बंगाल के लोगों को पसंद है। ग्रामीण वोटर से अच्छा कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़ यही उन्हें मास लीडर बनाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्थ का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 85.87 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बंगाल में बीजेपी के सीएम बनने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटकर जब आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे टूटा युद्ध विराम फिर मचेगा कोहराम, आप देखते रहिए दस्तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का। इन
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: GK Max.
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: GK Max. Best putty.
5: JK Wall Max.
3: Best paint.
6: JK Max.
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
3: जेके मैक्स पेंट्स।
7: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
9: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
10: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
11: नहीं,
10: और म्यूचुअल फंड से
11: सही।
12: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रो फाइबर है।
13: माइक्रो फाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
13: हमारे सीमेंट में नहीं है?
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
16: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
17: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
18: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, भाई साहब सब पचा देते।
19: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
20: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
21: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। EU
22: सोच बदलो और बैंक भी।
23: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
24: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
25: विक्रम, एक हिंट तो देते।
26: विक्रम,
25: हिंट।
24: बड़े आराम से।
27: Character, the taste of success.
28: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
29: Take a date, not bites.
30: No edit.

0: बताइए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
1: विक्रम, एक हिंट तो देते।
2: विक्रम!
1: हिंट।
3: बड़े आराम से।
4: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
5: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
8: फील्स लाइक समर मोंटे कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
9: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रो फाइबर है।
9: माइक्रो फाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
9: हमारे सीमेंट में नहीं है,
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हैं ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
4: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
5: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
6: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
5: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
7: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
4: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
9: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
10: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है। ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं, ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर, यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए हमला करने का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने ईरानी टैंकरों पर हमले को सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई बताया। अमेरिका और ईरान के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक बार फिर से युद्ध के मैदान में दोनों देश आमने सामने। खबर यह भी है कि होर्मुज में ईरानी टैंकर्स पर हुए हमले के बाद ईरान ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच अब युद्ध विराम नहीं, बल्कि महायुद्ध का सायरन बजने लगा है।
3: ईरान पर एक बार फिर अमेरिकी बमबारी शुरू। ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक। ईरान का दावा, 3 अमेरिकी युद्ध पोतों को उड़ाया। यूएई पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन से हमला। हुर्मुज में चीनी तेल टैंकर पर हमले का दावा। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, महायुद्ध की तैयारी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर मुहर लगती उससे पहले ही युद्ध के मैदान में अमेरिका और ईरान के बीच हमले शुरू हो गए। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने उसके सैन्य अड्डों और तेल के टैंकरों पर हमला करके युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज पार कर रहे अमेरिका के 3 युद्ध पोतों को तबाह कर दिया। वहीं अमेरिका का दावा है कि ईरान के तेल टैंकरों और सैन्य ठिकानों पर किया गया हमला ईरानी हिमाकत का करारा जवाब है, यानी सेल्फ डिफेंस में की गई सैन्य कार्रवाई है। लेकिन ये कार्रवाई यही नहीं रुकेगी। अगर ईरान शांति समझौते के बजाय युद्ध का रास्ता चुनता है तो ईरान पर कल्पना से परे हमला किया जाएगा। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए हमले ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर महायुद्ध की घंटी बजा दी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच हुए टकराव के बाद ईरान की मिसाइलों ने यूएई पर बड़ा हमला किया, जिसे यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नाकाम कर दिया। मतलब यही है कि होर्मुज से दुनिया को डराने वाली खबर आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बारूदी टकराव को लेकर क्या कहा, उससे पहले इस तस्वीर को देखिए जिसे ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ट्रंप ने ईरान पर हमले के बाद यही तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें एक अमेरिकी युद्धपोत ईरानी ड्रोन को मार गिराता हुआ दिखाया गया है। पोस्ट में कैप्शन है, लेजर बिंग बिंग गायब। ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले के संकेत दे दिए हैं। अगर ईरान शांति समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो एक बार फिर अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। आपने शायद सुना होगा कि हमने करीब 3 डिस्ट्रॉयर्स को आज बेहद खतरनाक हालात के बीच आगे बढ़ाया और हमने दुश्मन को बुरी तरह तबाह कर दिया। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं देगा। ईरान इस बात पर सहमत हो गया है। अब देखते हैं कि वो इस पर दस्तखत करने को तैयार है या नहीं। बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि अगर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी हमले को लव टैप नाम दिया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने बीती रात होर्मुज के करीब ईरानी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के केशम पोर्ट और बंदर अब्बास में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस सिस्टम शामिल थे। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे थे, तभी उन पर उकसावे वाले हमले किए गए। अमेरिकी सेना ने सभी हमलों को इंटरसेप्ट करने के बाद जवाबी कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और सर्विलांस सिस्टम को निशाना बनाया। ये कार्रवाई उन सैन्य सुविधाओं के खिलाफ की गई जहां से अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी बोट्स के जरिए हमले किए गए। अमेरिकी सेना तनाव बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन अपने सैनिकों और सैन्य संसाधनों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं ईरान सेना की तरफ से अमेरिका पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ट्रंप को सीधी धमकी दी गई है। IRGC की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है, आतंकवादी और लूटपाट करने वाली अमेरिकी सेना ने हुर्मुज में एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया, साथ ही UAE के फुजैरा बंदरगाह के करीब हुर्मुज में प्रवेश कर रहे एक दूसरे जहाज को निशाना बनाकर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। उसी वक्त हुर्मुज के करीब ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले भी किए गए। ईरान के सशस्त्र बलों ने हुर्मुज के पूर्व और चाबहार बंदरगाह के दक्षिण में अमेरिकी सैन्य जहाजों पर तुरंत जवाबी हमले शुरू किए, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। ईरानी सेना किसी भी आक्रमण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ ईरान की क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने के लिए संकल्पित है। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ मिडल ईस्ट पर नए हमलों की धमकी दी है। इसी कड़ी में UAE पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। UAE का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन को रोक दिया, जिससे 3 लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए। UAE के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की सुरक्षा और स्थिरता के खिलाफ खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ताज़ा हमलों से चंद घंटों पहले भी UAE पर ईरान ने हवाई हमला किया था। UAE और अमेरिकी युद्ध पोतों पर हुए हमलों को लेकर ट्रंप ने ईरान के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है।
4: After these strikes, is the ceasefire with Iran still on?
5: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
3: अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बावजूद ईरान ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने ऐलान किया है कि उनके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। युद्ध फिर से शुरू हुआ तो ईरान की मिसाइलों को रोकना अमेरिका के बूते की बात नहीं होगी। जब भी कूटनीतिक समाधान का रास्ता खुलता है, अमेरिका एक लापरवाह सैन्य अभियान का विकल्प चुनता है। क्या ये दबाव बनाने की एक क्रूर रणनीति है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का परिणाम है जो एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को एक और दलदल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। कारण चाहे जो भी हो, परिणाम एक ही होता है। ईरानी कभी दबाव के आगे नहीं झुकते और कूटनीति हमेशा इसकी शिकार होती है। CIA गलत है। 28 फरवरी की तुलना में हमारा मिसाइल भंडार और लॉन्चर क्षमता 75% नहीं है, सही आंकड़ा 120% है। ईरान ने भी अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया है, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। ईरान की धमकी पर पलटवार करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है, अगर ईरान अमरीकियों को धमकी देता है तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा। अगर आप अमेरिकी नौसेना के जहाज पर गोलीबारी करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बेशक हमने भी उन पर जवाबी गोलीबारी की। अगर वो हमारी नौकाओं की ओर आ रहे हैं तो हम उन नौकाओं को उड़ा देंगे। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता असंभव है? क्या अब युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध होगा? आज तक ब्यूरो।
2: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान में क्या हो रहा है। तेहरान से एक ऐसी रिपोर्ट जो ईरान की हिम्मत और जज्बे की गवाही देती है। हमारी संवाददाता गीता मोहन आज तेहरान के उस बहशत जहरा कब्रिस्तान पहुंची जहां युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गीता मोहन ईरान में वॉर जोन से एक एक तस्वीर को आप तक पहुंचा रही हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता गीता मोहन की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।

0: अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के अंदर 3,500 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 1600 से अधिक आम नागरिक और 250 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इतनी मौतों के बाद भी ईरान का जज्बा बुलंद है, तो आज हम आपको ईरान की राजधानी तेहरान के उस कब्रिस्तान की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। ये है दक्षिण तेहरान का बहशते जहरा कब्रिस्तान। जुमे के दिन इस कब्रिस्तान में लोग जंग में मारे गए लोगों की शहादत का जश्न मनाने आए हैं। शहीदों की कब्रों को फूलों से सजा रहे हैं, उन्हें शहादत के लिए सलाम कर रहे हैं।
1: How difficult has this war been?
2: नुकसान और शोक के लिहाज से जंग का ये समय ईरान के लिए कितना मुश्किल है।
3: As you can witness, actually, the only thing that we can...
4: आप यहाँ चारों ओर केवल और केवल शोक में डूबे परिवार देख सकते हैं। यहाँ माताएं, बहनें और दोस्त अपनों के लिए आंसू बहा रही हैं। माना ये समय हमारे लिए बहुत कठिन और हृदय विदारक है, लेकिन हमारे देश में शहादत, शहादत की संस्कृति और इस्लाम बड़ी चीज है। ये वो शक्ति है जो हमें देशभक्ति और आगे बढ़ते रहने के लिए दी गई है। हम रो रहे हैं, लेकिन साथ ही हम शहादत पर भरोसा भी रखते हैं।
0: आपको बता दें कि श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास समंदर में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को टॉरपीडो से हमला करके डुबो दिया था। ये ईरानी जहाज भारत में एक नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था, जिस पर 100 से अधिक नाविक सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में 80 से अधिक नाविकों की जान चली गई। उन्हीं में से एक थे ईरान के मोहम्मद अली वजीरी। उनकी कब्र भी बहशते जहरा कब्रिस्तान में बनाई गई है और लोग वजीरी की शहादत को सलाम कर रहे हैं।
5: 4 मार्च को अमेरिकन टॉरपीडो ने आइरिस डेना को इंडियन ओशन में डुबा दिया था, एक बहुत ही बड़े हमले में जिसमें 87 सेलर्स मारे गए थे, ईरानियन सेलर्स। श्रीलंका से उनके बॉडीज को यहाँ पर, उनके शव को यहाँ ईरान लाया गया। अलग अलग जगह से थे तो अलग अलग जगह ले जाए गए, लेकिन मोहम्मद वजीर जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उनके, उनका तस्वीर, वो यहाँ लाए गए बहश जहरा कब्रिस्तान में। और ये उनका कब्र है जहाँ दुनिया आउटरेज कर रही थी कि ऐसा शिप जो इंडिया में एक फ्रेंडली विजिट के लिए आया हुआ था, इंटरनेशनल फ्रीट रिव्यू ऑफ 2026 के लिए आया हुआ था, अनआर्म्ड थे, उनके पास ना मिसाइल्स थे ना वेपन्स थे, और ऐसे शिप को डुबा दिया गया इंडियन ओशन में। जवाब देना होगा, लेकिन अमेरिका इसको एक विक्ट्री के तौर पे उन्होंने सेलिब्रेट किया, जबकि 87 अनआर्म्ड सेलर्स ईरान के मारे गए, जिसमें से एक मोहम्मद वजीर भी थे। Has this war...
2: क्या आपको लगता है कि इस जंग ने लोगों को एकजुट किया है, क्योंकि अतीत में हमने बहुत सारे विरोध प्रदर्शन देखे हैं।
6: I believe so, yeah, it has. It's
4: certainly, हाँ बिल्कुल, इस जंग ने ईरान के लोगों को एक कर दिया है। वास्तव में पिछले साल की जंग में भी ऐसा ही हुआ था, उसके बाद लोग बहुत एकजुट हो गए थे। ईरान में जो कुछ भी होता है वो हमारा आंतरिक मामला है, उसका किसी बाहरी से कोई लेना देना नहीं है। जो देश खुद को सुपर पावर समझते हैं वो हमेशा कमजोर देशों के साथ ऐसा ही करते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ ऐसा किया, सीरिया के साथ ऐसा किया, वो लेबनान के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो लीबिया जैसे देशों पर कब्जा कर सकते हैं और उन्हें स्थायी युद्ध में उलझा सकते हैं। हम यहाँ उन्हें यह दिखाने के लिए खड़े हैं कि यह उनके लिए आखिरी कदम है और भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
0: आपको बता दें कि तेहरान के इस कब्रिस्तान में पहले से ही बहुत सारी कब्रें तैयार कर दी गईं। ईरान का कहना है कि अगर आगे जंग में लोग शहीद होते हैं तो उन्हें इन्हीं कब्रों में दफनाया जाएगा। सोचिए ईरान की उस सोच के बारे में जो अमेरिका और इसराइल से रत्ती भर भी डरना तो दूर बल्कि शहादत देने के लिए भी तैयार है।
5: ईरान उनकी जंग अमेरिका और इसराइल के साथ बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या फिर बैटलफील्ड में नहीं है, उनका जवाब यहाँ इस कब्रिस्तान में भी है जहाँ पे लोग शहादत को सेलिब्रेट करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप कैसे लड़िएगा जब न केवल उस तरफ जहाँ लोग आए हुए जुम्मे के दिन अपने लोगों को, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, इस तरफ देखिए, ये वो इलाका है, वो एरिया है कब्रिस्तान का जहां पर अभी कब्र बन रहे हैं उन लोगों के लिए जो अगर शहीद होते हैं फ्यूचर वॉर्स में तो उनको यहीं पे दफनाया जाएगा। ये मैसेज और ये जो सोच है इसको आप कैसे, इससे कैसे लड़िएगा? अमेरिका और इसराइल को ये सोचना होगा कि वो डरा सकता है ईरान को, डराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन खत्म कैसे करेगा उस देश को जो कहता है कि हम अपने हर जर्रे, मिट्टी के हर जर्रे के लिए मरने को तैयार है, झुकने को नहीं।
0: और आज भी सच यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ ईरान को डील के लिए मजबूर करना चाहते हैं, बल्कि धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अपना परमाणु प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो महायुद्ध होगा। लेकिन ईरान है कि अमेरिका के साथ मुकाबले के लिए तैयार है। तेहरान से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।
7: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: Shack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
1: What about me, Jack? What about me?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Well played, Jack. Well played.
0: Jack FM, playing what we want.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
6: इसमें माइक्रोफाइबर है
5: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
5: हमारे सीमेंट में नहीं है
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
8: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें
10: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था
11: सॉरी सर मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था
12: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना मैं शांति को साथ रखता हूँ म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
13: नहीं
12: और म्यूचुअल फंड से
13: सही
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
15: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम AU
16: सोच बदलो और बैंक भी
17: और वही कहां गए थे घूमने
18: जीके मैक्स
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
18: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी
19: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट
19: जेके मैक्स
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
20: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ बहुत अपसेट हूँ
21: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
22: लायन डेट नट बाइट्स
23: लाइक आई सेड बिफोर वी बेटर होल्ड दिस इन

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
2: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
3: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
2: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
4: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
1: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: Monte Carlo, it's the way you make me feel.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रोफाइबर है.
4: माइक्रोफाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
4: हमारे सीमेंट में नहीं है.
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
7: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है. खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.
9: पांच दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के हास की दृष्टि से और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है. और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें. बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को पांच दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें. 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है.
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इंडियन एयरफोर्स में काम कर चुके चंद्रनाथ ममता बैनर्जी को उनके गढ़ में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी के खासम खास थे। लेकिन इन्हीं चंद्रनाथ रथ को बुधवार 6 मई की रात जिस तरह पीछा कर बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया गया वो चौंकाने वाला है। खासकर ऐसे मौके पर जब बंगाल में पूरे 15 साल बाद सियासत ने करवट बदली है और इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये कोई पॉलिटिकल किलिंग है, यानी सियासी रंजिश की वजह से किया गया कत्ल, या फिर चंद्रनाथ रथ से किसी की निजी दुश्मनी का अंजाम? कहीं इस कत्ल के पीछे कोई ऐसी साजिश तो नहीं जिसके बारे में फिलहाल कोई जिक्र ही नहीं कर रहा? चंद्रनाथ की मौत के बाद ये सवाल हर किसी की जहन में है, लेकिन कत्ल को अंजाम देने के तौर तरीके को देखते हुए ये सियासी कत्ल कम और दुश्मनी के चलते हुई टारगेटेड किलिंग ज्यादा लगती है। अब सवाल यह है कि आखिर इसे टारगेटेड किलिंग क्यों कहा जा रहा है? आज वारदात में इस पर पॉइंट वाइज बात करेंगे, लेकिन आइए पहले जल्दी से समझ लीजिए कि चंद्रनाथ रथ की हत्या की पूरी टाइमलाइन क्या है। चंद्रनाथ अपनी स्कॉर्पियो से रात करीब 9 बजे कोलकाता से निकले। वो मध्यमग्राम अपने घर जा रहे थे। मध्यमग्राम में रात करीब 10 बजे सीसीटीवी में उनकी स्कॉर्पियो की तस्वीरें कैद हुई। पीछे पीछे एक कार और दो बाइक पर तीन लोग भी जाते हुए दिखे। इन्हीं लोगों ने 10:30 बजे दोहरिया जंक्शन के पास उनकी गाड़ी रोक ली और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगी। कार को स्कॉर्पियो के सामने लगा दिया गया और बाइकर बगल से आकर चंद्रनाथ को शूट करने लगे। इसके बाद कातिल कार छोड़कर दो बाइक पर ही फरार हो गए। तब से लेकर अब तक ये पूरा केस एक पहेली बनी है। न तो कातिलों का कुछ पता लगा है और न ही मोटिव का। ये और बात है कि इसे लेकर सियासी इल्जामों का दौर जरूर शुरू हो गया, लेकिन इस कत्ल के टारगेट किलिंग होने की बात क्यों कही जा रही है, आइए समझते हैं। इशारा नंबर 1, कत्ल का तरीका। कातिलों ने जिस तरह से कई किलोमीटर तक पीछा कर चंद्रनाथ रथ को अपनी गोलियों का शिकार बनाया, उससे साफ है कि वो काफी समय से चंद्रनाथ के पीछे पड़े हुए थे और उन्हें सही मौके का इंतजार था। वरना रात के अंधेरे में बीच सड़क पर पूरी तैयारी से न तो उनकी गाड़ी को घेर कर रोका जाता और न ही उन्हें निशाना बनाकर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की जाती। खबरों के मुताबिक चंद्रनाथ के कत्ल के लिए कातिलों ने कम से कम 10 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोलियां चंद्रनाथ को लगी।
1: दस के करीब हुआ, बारिश हो रहा था, बारिश थमने के तुरंत बाद ही अचानक दो गोली का आवाज मिला। उसी समय हमारे पास से दो आदमी गुजरा तो वो लोग बता रहे थे जो गोली मार दिया गया। तो हमने बोला किसको? बोला वो देखो गाड़ी पड़ा है। हम दौड़ के गया, जाके देखा दो आदमी, एक आदमी रो रहा था, दो आदमी पड़ा है, उनका गली लगी है। तो हमने बोला किसने मारा? वो बोलने के हालत में नहीं थे, रो रहे थे। तो हमने बोला गाड़ी का शीशा नामा, शीशा उतारने के बाद देखा दो आदमी पड़ा है, उनका सीने से खून निकल रहा है। वो तभी जिंदा थे। तो हमने बोला
2: चंद्रो तब भी जिंदा था?
1: हाँ जिंदा थे, तभी दोनों ही जिंदा थे। तो हमने बोला ये तो अभी जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, हम पुलिस बुला रहे हैं। तो गाड़ी घुमा के हॉस्पिटल ले चले गए और हमने पुलिस को बुलाया।
0: इशारा नंबर 2, टाइमिंग। इस वारदात को ऐसे मौके पर अंजाम दिया गया जब बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और नए निजाम की शुरुआत होने जा रही है। आमतौर पर सत्ता परिवर्तन का असर पुलिस के काम करने के तौर तरीके पर भी पड़ता है और अक्सर महकमे के लोग हवा का रुख भांप कर अपने काम करने का तौर तरीका भी तय करते हैं, जिसका फायदा कई बार जुर्म की दुनिया से जुड़े लोग उठाने की कोशिश करते हैं। और चंद्रनाथ की हत्या के मामले में भी कुछ ऐसा ही लगता है। इशारा नंबर 3, सुपारी के लिए। खबरों की माने तो चंद्रनाथ रथ को ग्लॉक 47X से टारगेट किया गया, हालांकि अभी जिस्म में पैवस्त

0: गोलियों और चंद खोल के अलावा मौका वारदात से कोई हथियार या पिस्टल हाथ नहीं लगा है। लेकिन फिर भी बुलेट मार्क से लेकर लगातार एक ही हथियार से की गई फायरिंग ये इशारा करती है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए किसी सोफिस्टिकेटेड वेपन यानी अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। और ऐसे हथियार का इस्तेमाल आमतौर पर पेशेवर अपराधी ही करते हैं जो सुपारी लेकर किसी की भी जान ले सकते हैं। हालांकि ये भी एक सच है कि सिर्फ चली हुई गोलियों और उनके खाली खोल के आधार पर किसी भी असलहे का सही सही पता लगाना नामुमकिन है। हाँ, एक्सपर्ट्स अनुमान जरूर लगा सकते हैं।
1: जहाँ पर इंसिडेंस हुआ वहीं से 3 कारतूस का खोल मिला भी है। अच्छा। हमने पुलिस को दे दिया। अच्छा। उसके बाद सब पुलिस आया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
2: चंद्रो के साथ उनके ड्राइवर ही थे गाड़ी में।
1: वो जगह तो अंधेरा था और हम किसी को पहचानते भी नहीं है। कौन ड्राइवर है और कौन उनका पीए है, शुभेंदुदा का पीए कौन है, हम पहचानते नहीं थे। 2 आदमी पड़ा था और 1 आदमी रो रहा था। हमने तुरंत बोला जाए ये जब अभी जिंदा है तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, हम पुलिस बुला रहा हूँ।
0: इशारा नंबर 4, शातिराना तैयारी। चंद्रनाथ अपनी स्कॉर्पियो से रात करीब 10:30 बजे अपने घर मध्यम ग्राम की तरफ जा रहे थे। उन्हें बीच सड़क पर घेरने की कातिलों ने मुकम्मल तैयारी की थी। समझा जाता है कि वो एक कार और 2 बाइक पर थे। कार ने पहले चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया और फिर बीच सड़क पर आड़े तिरछे तरीके से खड़ी हो गई। ऐसे में स्कॉर्पियो को रुकना ही पड़ा, लेकिन इसके बाद पीछे से बाइक पर आए शूटर्स ने उन्हें गोलियों का निशाना बना लिया। खास बात ये रही कि शूटर्स ने चंद्रनाथ को टारगेट करने के बाद अपनी कार मौके पर ही छोड़ दी और 2 बाइक पर सवार होकर वहां से भाग गए। इस मामले की जांच में कार एक अहम सुराग साबित हो सकता था। कातिलों को भी इस बात का एहसास था और इसीलिए उन्होंने पुलिस को उलझाने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उन्होंने न सिर्फ कार में एक फेक यानी जाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया बल्कि कार का चेसिस नंबर भी खिसकर बराबर कर दिया ताकि कार बरामद होने के बाद भी पुलिस उसके सहारे कातिलों तक न पहुंच सके।
3: अगर ऐसा होगा कि आपका गाड़ी कहाँ है, आप कहाँ है, तो हम बोला हम तो सिलीगुड़ी में है। तो बोला ठीक है, आपका गाड़ी का नंबर जो है, आपका गाड़ी का नंबर यूज करके कोई एक मर्डर हुआ है, तो इसका डिटेल्स आप भेजिए। गाड़ी अभी फोटो लेके गाड़ी का डिटेल्स हमको भेज दो। फिर हम भेजा, उसके बाद में सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आया। उसके बाद हम लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी के लिए लेके गया और सारा जो भी उनको इंक्वायरी करना था किया, गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया, उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर छोड़ दिया।
0: इतना ही नहीं, कातिलों ने वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई बाइक के साथ भी कुछ ऐसा ही किया और उन पर भी जाली नंबर प्लेट लगा दी। पुलिस ने पिछले 2 दिनों के अंदर इन दोनों ही बाइक को लावारिस हालत में बरामद तो कर लिया, लेकिन यहाँ भी वही कहानी निकली। और तो और, बाइक में जो जाली नंबर प्लेट लगाए गए थे वो भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की तरह दिख रहे थे। अब ये पता करना है कि चोरीशुदा बाइक की तरह ये नंबर प्लेट भी कहीं से चुराए गए थे या फिर ये प्लेट बिल्कुल ही बनावटी थी। बीच सड़क पर कार छोड़ने से लेकर नंबर प्लेट चेंज करना और चेसिस नंबर तक घिस देना, ये इशारा करता है कि कातिलों की तैयारी कितनी जबरदस्त थी।
4: हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्टेजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है। बाद बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस, लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: इशारा नंबर 5, सीसीटीवी है भी और नहीं भी। इस मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस को अब तक इससे जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज हाथ लग चुके हैं। इनमें कुछ फुटेज सड़क से गुजरते चंद्रनाथ रथ के स्कॉर्पियो के हैं, तो कुछ संदिग्ध बाइक और कारों की। लेकिन हैरानी यह है कि ये सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज ही धुंधले किस्म के हैं और ठीक जिस जगह पर ये वारदात हुई है उस जगह को कवर करता हुआ कोई कैमरा एक्टिव नहीं है। बताया जाता है कि एक कैमरा पास के ही एक पोल में लगा भी है मगर वो काम नहीं करता। ऐसे में पुलिस के पास इस वारदात से पहले और बाद के सीसीटीवी फुटेज तो मौजूद हैं, लेकिन वारदात की कोई साफ साफ तस्वीर कैप्चर करने वाली फुटेज नहीं मिली है। जाहिर है ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, यानी ये भी पेशेवर कातिलों की तैयारी का एक सबूत है। इशारा नंबर 6, हर हाल में हत्या। चंद्रनाथ रथ की हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो कातिलों की हताशा और उनकी बेसब्री को दिखाता है। कातिलों ने पहले रेकी की, दूर तक पीछा किया, बीच सड़क पर उनकी गाड़ी रोकी और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी जान ली। और तो और तैयारी के तौर पर कत्ल में इस्तेमाल एक कार और बाइक के नंबर प्लेट तक पहले ही चेंज कर दिए। ये चंद्रनाथ की डिस्परेट किलिंग यानी हर हाल में की गई हत्या की तरफ इशारा करती है, यानी कातिल चाहते थे कि चंद्रनाथ किसी भी कीमत पर न बच पाए, उनकी हर हाल में मौत। कोई भी कातिल ऐसा तभी करता है जब वो सुपारी लेकर किसी काम को अंजाम दे रहा और पूरी तरह से कमिटेड, या फिर मकतूल से ऐसी भयानक रंजिश रखता हो कि उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। अचानक हुए झगड़े या सियासी खेमेबाजी में हुए कत्ल में इस तरह का डिस्पेरेशन यानी बेसब्री नहीं दिखा। कोलकाता से तापस सेनगुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
5: शुभेंदु अधिकारी के किसी खासम खास की रहस्यमयी हालात में हुई मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी शुभेंदु अपने 3 बेहद करीबी लोगों को गवा चुके हैं। आखिर क्या है ये दर्दनाक इत्तेफाक, कैसे हुई शुभेंदु के 3 करीबियों की मौत, ये जानना भी जरूरी है।
0: चंद्रनाथ रथ की मौत को लेकर रहस्य इसलिए भी और ज्यादा गहरा है क्योंकि इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी के 3 और करीबियों की पिछले 13 सालों में रहस्यमयी हालात में मौत हो चुकी है। अपने 3 करीबियों को खोने वाले शुभेंदु के 4th साथी का यूं एकाएक रहस्यमयी तरीके से मारा जाना भी सवाल खड़े करता है। 2013 में जब शुभेंदु तृणमूल के सांसद थे तब उनके पीए प्रदीप झा की मौत हो गई थी। इसके बाद 2018 में उनके पीएसओ शुभव्रतो चक्रवर्ती की भी रहस्यमयी हालात में जान गई, इसे सुइसाइड बताया गया। 2021 में शुभेंदु के एक और पीए पुलक लाहिड़ी की भी जान संदिग्ध परिस्थितियों में गई थी। सवाल यह है कि आखिर शुभेंदु के करीबियों को साल दर साल कौन एक एक कर टारगेट कर रहा है और क्यों, ये राज भी गहरा है। कोलकाता से तापस सेनगुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
5: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए।
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: आप देखते रहिए आज तक।
9: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।

0: कभी टेक सेक्टर को सबसे सुरक्षित करियर माना जाता था। एक बार इस सेक्टर में जॉब मिली तो भविष्य सुरक्षित हो जाता था, लेकिन बदलती टेक्नोलॉजी ने इस भरोसे को हिला दिया है। 2026 की पहली तिमाही में हजारों लोगों की नौकरी चली गई और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी मार्च में 95 कंपनियों ने 73,200 से ज्यादा एम्प्लॉइज को निकाल दिया और बीते दो हफ्तों में कई बड़ी कंपनियों ने नई छंटनी का ऐलान किया है, जिससे मौजूदा तिमाही में भी जॉब्स पर खतरा मंडराता रहेगा। ये आंकड़े बताते हैं कि टेक सेक्टर में नौकरी की सुरक्षा पहले जैसी नहीं रही और असर सीधे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स पर दिख रहा है। छंटनी के पीछे की वजहें भी साफ हैं। कंपनियां खर्च घटा रही हैं, काम को आसान बना रही हैं और सबसे बड़ा बदलाव एआई का तेजी से बढ़ता दखल है। दरअसल ऑटोमेशन और एआई के चलते कई रोल्स की जरूरतें कम हुई हैं। रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए कंपनियां लीन मॉडल पर काम कर रही हैं। इसी बदलाव के बीच कुछ और बड़ी कंपनियों के फैसले हालात की गंभीरता की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि स्नैप ने करीब 1,000 एम्प्लॉयज यानी 16% वर्कफोर्स को कम करने की तैयारी की है। डिज्नी ने भी करीब 1,000 नौकरियों में कटौती करने का ऐलान किया है। वहीं मेटा ने इस साल कई फेज में हजारों पद खत्म किए हैं। ओरेकल में 20,000 से 30,000 जॉब्स पर खतरा है, जिससे भारत में करीब 12,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। इन कर्मचारियों को निकालने वाले कई कंपनियां सेवरेंस पैकेज दे रही हैं, तो कहीं 4 महीने की सैलरी और कहीं हर साल की सर्विस पर अलग अलग पे आउट मिल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि नौकरी जाने के बाद अगला कदम क्या होगा। फाइनेंस के एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं कि एआई के इस्तेमाल के तरीकों को समझना नौकरी बचाने और इस तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए बेहद जरूरी है। यानी बदलते दौर में केवल टेक्निकल स्किल काफी नहीं है, सोचने का तरीका और सीखने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। छंटनी की यह लहर एक बड़ा संकेत दे रही है। जहां कंपनियां तेजी से एआई को अपना रही हैं, वहीं कर्मचारियों को भी खुद को उसी हिसाब से ढालना होगा। आज स्थिति ये है कि जो स्किल्स कल तक जरूरी थी वो आज रिप्लेस हो रही हैं और यही वजह है कि मार्केट में डिमांड कम होने लगी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हायरिंग स्लो रहेगी, क्योंकि कंपनियां नए लोगों की जगह एग्जिस्टिंग सिस्टम को एआई से मजबूत कर रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में नौकरी केवल डिग्री से नहीं, स्किल और अडॉप्टेबिलिटी से तय होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप बदलते दौर के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: अभी कुछ दिन कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: सात अप्रैल को इस विला में एक प्रिसिशन स्ट्राइक हुआ इजरायली मिसाइल से, जिसमें 15 लोग थे इस घर में, यहाँ पे विलास थे, जिनमें से 11 लोग मारे गए, 4 लोग बच गए। ये तेहरान से काफ़ी दूर है, यहाँ पे कोई आपको मिलिट्री हेडक्वार्टर भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन कहा जाता है कि इस ख़ानदान के एक इंडिविजुअल थे जो मिलिट्री में थे। ये भी कहते हैं कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजिशन में नहीं थे, लेकिन 11 लोग, जिसमें से सबसे छोटा एक 14 महीने का बच्चा और सबसे बड़े जो थे वो 75 ईयर्स या उससे थोड़े ऊपर रहे होंगे। इमोशनल सीन्स यहाँ पर आपको उस पहले कुछ घंटों में नज़र आए थे, जहाँ पे जो यहाँ के डेप्यूटी मेयर हैं, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं, जिनसे हमने बात की, आप उनकी बात भी सुनेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बयां किया यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 AM का वक्त था, रात था, अंधेरा था, और यहाँ पे आग, और 11 लोग मारे गए, जिनमें से जिनके बॉडीज है बस 9 बॉडी बैग्स मिल पाए हैं। अभी भी एक इंसान है जो इंचार्ज है यहाँ पे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको, उसको निकालने के लिए। अभी जब हम बात ही कर रहे थे तो सत्या उनके साथ गया और देखा कि अभी भी वो बॉडी पार्ट्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर ग्राफिक इमेजेस हैं तो ज़रा संभल के, सोच के, कॉशियसली इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो ये आपने देखे पोस्टर्स लगे हुए हैं, फोटोज़ लगे हुए हैं हर तरफ, इनका जनाजा कम्युनिटी, इस पूरे कम्युनिटी ने निकाला, क्यों? क्योंकि पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया है, जो घायल थे वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए। सवाल यही उठता है कि अगर आप आज ये जंग रोक भी थे, तब भी यहाँ के लोग जिनके बच्चे मारे गए हैं, मिनाब के पेरेंट्स, यही पूछेंगे कि क्या ये ज़रूरी था, क्या ये जंग ज़रूरी था, और क्या फिर अमन और शांति और ऐसा माहौल बन सकता है जहाँ पे दोनों देश या तीनों देश, अमेरिका, इज़राइल, ईरान, लड़ाई छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे? क्या इन्हें लोग भूल पाएंगे, ईरान के? क्या दुनिया भूल पाएगी इस जंग में कितने लोग मारे गए?

0: शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि बंगाल पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे साफ है कि कातिल पूरी तैयारी के साथ आए थे और भागने का रूट भी पहले से तय था। अब सवाल यही है, कातिल कौन थे, कहां से आए और हत्या के बाद कहां गायब हो गए। जांच में पुलिस को जो सुराग मिले हैं उससे साफ है कि पूरी वारदात कई लेयर वाली साजिश का हिस्सा थी। हत्याकांड में प्रोफेशनल शूटर शामिल, हत्या से पहले कई दिनों तक रेकी, फर्जी नंबर प्लेट वाली कार बाइक, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग, विदेशी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल, भागने के लिए अलग अलग रूट तैयार। जांच की सबसे अहम कड़ी बनी है कातिलों का एस्केप रूट। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। शुरुआती फुटेज में हमलावरों की बाइक और कार अलग अलग रास्तों पर जाती दिखाई दी। जांच एजेंसियों को शक है कि हत्या के बाद शूटर पहले एयरपोर्ट इलाके की तरफ भागे, फिर 12-7 और बेलघरिया कनेक्टर के रूट इस्तेमाल हुए। कुछ मोबाइल फोन वारदात के बाद अचानक स्विच ऑफ हुए, कई संदिग्ध नंबर बंगाल से बाहर के मिले। पुलिस को सुपारी किलिंग मॉड्यूल का शक। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब मोबाइल टॉवर डंप डेटा और सीसीटीवी फुटेज को मैच कर रही है ताकि हमलावरों की लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक की जा सके। जांच उस वक्त और दिलचस्प हो गई जब हत्या में इस्तेमाल गाड़ियों की नंबर प्लेट फर्जी निकली। कार नंबर WB741-227 असल मालिक सिलीगुड़ी निवासी जेम्स विलियम्स, बाइक नंबर पश्चिम वर्धमान RTO में रजिस्टर्ड, दिए गए पते पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। यानी कातिलों ने सिर्फ हत्या की प्लानिंग नहीं की थी बल्कि जांच को गुमराह करने की तैयारी भी पहले से कर रखी थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि फर्जी नंबर प्लेट कहां तैयार हुई और हत्या में इस्तेमाल असली गाड़ियां किस नेटवर्क के जरिए जुटाई गई। बंगाल पुलिस की कई स्पेशल टीमें अब इस केस पर काम कर रही है। 12-7 पुलिस जिला अलर्ट पर, STF और स्पेशल ब्रांच की एंट्री, बॉर्डर जिलों में अलर्ट जारी, संदिग्धों के ठिकानों पर रेड, कुछ लोगों से पूछताछ जारी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ को कोलकाता से निकलने के बाद से ट्रैक किया जा रहा था। जैसे ही उनकी स्कॉर्पियो मध्यम ग्राम पहुंची, एक स्लेटी रंग की कार ने ओवरटेक कर स्कॉर्पियो का रास्ता रोक लिया। इसके बाद बाइक सवार शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वारदात सिर्फ कुछ सेकंड में खत्म हुई और उसके तुरंत बाद हमलावर प्लान के मुताबिक अलग अलग दिशा में भाग निकले। सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या शार्प शूटर बंगाल के ही थे या बाहर से बुलाए गए? हत्या के बाद उन्हें किसने पनाह दी? क्या पूरा ऑपरेशन किसी बड़े मास्टरमाइंड के इशारे पर हुआ? फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि कातिलों तक पहुंचने के लिए कई अहम सुराग हाथ लगे। कोलकाता से अनिर्बन सिन्हा रॉय, अनुपम पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हिंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। अमित शाह ने किया नाम का ऐलान। कल सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ। पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन। अमित शाह ने कहा भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय की शपथ पर सस्पेंस। लोक भवन सूत्रों के अनुसार फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन। राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम की सद्भाव यात्रा में राहुल ने बंगाल असम के चुनावी रिजल्ट पर उठाए सवाल। बोले सरकार ने दोनों राज्यों में की चुनाव की चोरी। एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में फिर युद्ध की आहट। ईरान ने यूएई पर दाखी मिसाइलें। हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी अटैक। ट्रंप की धमकी डील नहीं तो कर देंगे तबाह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसे।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस के फरार आरोपी निदा खान को पनाह देने को लेकर राजनीति तेज हो गई। नासिक पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर से एआईएमआईएम पार्षद को निदा की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। महायुति सरकार उसके बहाने महाराष्ट्र एआईएमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील पर निशाना साध रही है।
2: आखिरकार नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस की फरार आरोपी निदा खान को करीब एक महीने बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 7 मई को पुलिस ने उसे छत्रपति संभाजी नगर के नरेगांव इलाके से गिरफ्तार किया। वो कैसर कॉलोनी के एक घर में अपने माता पिता, भाई और मौसी के साथ छिपकर रह रही थी। नासिक पुलिस ने निदा खान की माँ और मौसी को भी गिरफ्तार किया है।
3: देर शाम नासिक क्राइम ब्रांच और छत्रपति संभाजी नगर पुलिस की मदद से इस घर पर रेड की गई और निदा खान को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि जिस समय जब रेड की गई तो उस समय इस घर में निदा खान के पिताजी, माँ और भाई शामिल थे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नासिक पुलिस निदा खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी और कल देर शाम में इसी घर पर रेड करके निदा खान को गिरफ्तार किया गया,
2: जिसके बाद टीसीएस केस की मुख्य संदिग्ध निदा खान को नासिक सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने निदा को 11 मई तक नासिक पुलिस की हिरासत में भेज दिया।
4: एक महीने से ज्यादा फरार रहने के बाद नासिक टीसीएस केस में आरोपी निदा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत नासिक पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर पुलिस की मदद से निदा खान को छत्रपति संभाजी नगर के एक इलाके में ट्रेस किया। इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पर सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी भेजे गए। वहां पर पता लगाया गया कि यहां पर निदा खान रह रही है या नहीं। जब कंफर्म हो गया कि निदा खान इस पर्टिकुलर एरिया में एक फ्लैट में रह रही है छत्रपति संभाजी नगर इलाके में, उसके बाद पुलिस को भेजा गया। निदा खान वहां पे पाई गई। वो कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां पर रह रही थी और ये भी पता चला नासिक पुलिस को कि मतीन पटेल नामक एक एआईएमआईएम पार्टी के नगर सेवक ने निदा खान की मदद की थी, उन्हें शह दी थी, जबकि वो पुलिस के लिए वॉन्टेड थी, फरार आरोपी थी, तब भी उन्हें शह दी गई। इसीलिए मतीन पटेल जो कि एआईएमआईएम के छत्रपति संभाजी नगर के नगर सेवक हैं, उन पर भी केस रजिस्टर कर लिया है नासिक पुलिस ने।
2: वहीं निदा खान की मदद के आरोप में नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छत्रपति संभाजी नगर के नरेगांव से एआईएमआईएम पार्षद अब्दुल मतीन पटेल को भी हिरासत में लिया है। मतीन पर आरोप है कि उसने नरेगांव में निदा खान को पनाह दी थी। अब संभाजी नगर के संरक्षक मंत्री संजय शिरसाट ने एआईएमआईएम पर आरोप लगाया है कि निदा खान तो सिर्फ एक मोहरा है। इस वारदात के मास्टरमाइंड एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील है।
5: निदा खान को 2 महीने के बाद, करीबन मार्च में यह घटना घटी थी, 2 महीने के बाद उसको संभाजी नगर में से कल पकड़ा गया है। उसके साथ में उसकी मौसी थी, उसकी माँ थी, ये तीनों को भी अटक की गई। डाउट यह है कि ये निदा खान नासिक से संभाजी नगर आई कैसे, उसको लाया किसने, और जिस एरिया से जो इलाके से उसको पकड़ा गया है वो एरिया स्लम कहा जाता है, जहां जिसे कहा सकते हैं दो नंबर के धंधे ज्यादा होते हैं। कल जो मैंने वहां की जो मालूमत ली है उसमें मुझे पता चला है कि उसमें एमआईएम का हाथ है। तो एमआईएम की कर्ता धरता कौन है, तो वो एक्स एमपी इम्तियाज जलील है। उन्होंने जब ये घटना नासिक में घटी थी वो टाइम भी उनको सपोर्ट करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है ये जो निदा खान का क्या नाम है उसका इसमें ज्यादा रोल नहीं है, ये एक मोहरा है। इसके मास्टरमाइंड ये इम्तियाज जलील सरीके और बहुत सारे लोग हो सकते हैं।
2: एआईएमआईएम ने शिरसाट के आरोपों पर पलटवार करने में देरी नहीं की।
6: अगर उनको कोई शिकायत है, उनकी कोई तकरार है, तो वो पुलिस कमिश्नर के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, वहाँ पे जाके शिकायत करे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैंने इनके भ्रष्टाचार के पलीदा खोला था पूरा, उसमें वो किसी तरीके से ऊपर नीचे मैनेज करके बच तो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि वो पहाड़ के नीचे आया है तो जितनी धुलाई कर सकते हैं धुलाई कर ले।
2: दरअसल इम्तियाज जलील ने निदा खान को जमानत देने की मांग का समर्थन किया था, जिसके बाद से महायुति उन पर निशाना साध रही है।
6: और हमको भी समझ में आ रहा है कि कैसा ट्रायल बाय मीडिया चलाया जा रहा है इस मामले के अंदर। हर आरोपी को, मेरा मतलब ये है, आरोपी एक्यूज्ड पर्सन को यह अधिकार होता है कि उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगे है तो वो अदालत जा सकता है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकता है। निचली कोर्ट में इस लड़की को बेल नहीं मिली, उसका राइट है कि वो हाईकोर्ट में जाए, हाईकोर्ट में रिजेक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये कानून का नियम है। इस लड़की के ऊपर महज आरोप है और उस आरोप के तहत अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके लेके गई है तो पुलिस अपना काम करेगी।
7: ये निदा खान को गिरफ्तार करने से ज्यादा बड़ा प्रश्न यही है कि निदा खान को अभी तक कौन प्रोटेक्शन दे रहा था, कौन उसके पीछे था, उसको कहाँ से अरेस्ट हुआ है। तो एमआईएम कॉरपोरेटर के घर पे छुपी थी, तो ये जो एमआईएम का कॉरपोरेटर है वो जो हमको पर ये हमारे पास ये भी न्यूज है कि उसको इम्तियाज जलील सपोर्ट कर रहा था, तो फिर ये एमआईएम ये जो पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पीएफआई आईएसआई अलकायदा से कुछ अलग काम ये लोग करते नहीं है, वो लोग भी जिहादियों को ही मदद करते हैं।
8: ये जो लोग हम पे इल्जाम लगा रहे बेबुनियाद, ये ना संविधान को मानते ना किसी चीज को मानते, बस इनको सिर्फ एक ही चीज दिखता है, कुछ भी हुआ लव जिहाद वोट जिहाद ये जिहाद। एमआईएम को जोड़ा रहा है, एमआईएम का क्या है आप बताओ ना मेरे को। अगर कोई आरोपी पकड़ी है फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको पुलिस रिमांड लेके इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन ट्रायल बाय मीडिया क्या है ये? और उसके बाद में तो हमारे पार्टी के नेता का नाम लो, इम्तियाज जलील जो है वो हमारी पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, अभी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, उनका क्या है? ये संजय सिरसाट जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है।
2: वहीं शिवसेना नेता बच्चू कड़ू ने कहा है कि धर्मांतरण जैसे मामलों में मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए।
9: तो बहुत गलत है इस तरह से धर्मांतर की बात को ही धर्म करता है, तो इससे बदनाम मुस्लिम ही ज्यादा हो रहा है, मुस्लिम धर्म ही ज्यादा बदनाम हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ मुस्लिम धर्म के जो बड़े गुरु है, जो भी लोग है, उन्होंने इसका निश्चित करना चाहिए, क्योंकि एक के वजह से अगर सब मुस्लिम बदनाम होता होगा तो ये बहुत गलत बात है।
2: निदा खान पर नासिक टीसीएस केस में पीड़ित लड़कियों के जबरन धर्मांतरण की कोशिश, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने और इस्लामिक रीति रिवाज को थोपने के साथ रेप और यौन शोषण के आरोपी टीम लीडरों की मदद करने के आरोप। मुंबई से दिव्येश सिंह और दीपेश त्रिपाठी के साथ इसरार चिश्ती, संभाजीनगर, आज तक।
0: बीजेपी की विधायक चित्रा बाघ ने नेशनल क्राइम डेटा पर कहा कि दुखद है कि लड़कियों का यौन शोषण उनके परिवार या रिश्तेदार वाले ही कर रहे हैं। वो बोली कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
10: हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता और विधायक चित्रा बाघ जी। मैम, नेशनल डेटा क्राइम का जो है वो जारी हुआ है, जिसमें पुणे महाराष्ट्र में सबसे अव्वल है आपराधिक मामलों में, खास करके महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में।
11: नहीं, ये बड़ी दुखद बात है कि ये जो घटनाएं घट रही है, हमने देखा कि अगर आप ठीक से इस घटनाओं की जांच करें तो आपको पता लगेगा कि पॉक्सो की केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी वहां पे दिखाई दे रही है। परसों की जो घटना हुई है, हमने देखा कि एक नाना ने अपने नाती के ऊपर जो है इस प्रकार से अत्याचार करने का प्रयत्न वहां पे किया है। बहुत सारी जगहों पे अपना मामा हो, चाचा हो, भाई हो, बाप हो, इस प्रकार की लोग जो है, ये जो नाता है, हम क्या कहेंगे इसका, जो रिश्ता है, उस रिश्ते को शर्मसार करने का काम हो रहा है और इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार से जबरदस्ती हो रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन तो है, जैसे ही घटना सामने आ जाती है पुलिस हरकत में आ जाती है, इनको पकड़ा भी जाता है, लेकिन ये दरिंदगी को मिटाने के लिए सिर्फ सरकार और पुलिस काफी नहीं है, समाज को एक साथ आना होगा। आप मुझे बताइए, अभी सरकार और प्रशासन ये हर बाप को जाके बताएगी अपने बेटी के साथ कैसे व्यवहार करना है, हर नाना और हर दादा को जाके बताएगी कि अपने नातिन के साथ कैसा व्यवहार करना है, हर मामा और चाचा को जाके बताएगी कि उसने अपने भांजी के साथ में, अपने भतीजे के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, आप मुझे बताइए। और इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये विकृति कहीं ना कहीं बढ़ रही है। शासन और प्रशासन पूरी तरह से पीड़िताओं के साथ है, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो इसलिए समाज ने भी साथ में आना बहुत जरूरी है, ऐसे मेरे जैसे कार्यकर्ता को लग रहा है।
0: मुंबई में एक नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। शिवसेना यूबीटी का दावा है कि बीएमसी लोकल मार्केट में मछली काटने पर रोक लगा सकती है। इस अफवाह के बाद मछली व्यापारियों में नाराजगी है। इसे दूर करने के लिए बीएमसी के मेयर ऋतु तावड़े ने वकूला मछली मार्केट पहुंचकर उन्हें भरोसा दिया कि यह सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है।
12: कहते हैं कि अफवाह के पैर नहीं होते, लेकिन वो जंगल में आग की तरह फैलती है। कुछ ऐसा ही मुंबई के मछली बाजार में भी हुआ है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा जिसमें दावा किया गया कि बीएमसी लोकल मार्केट में मछली काटने पर रोक लगा सकती है। इसके बाद वकोला मछली मार्केट में कथित तौर पर कुछ पुलिस वाले और बीएमसी के कर्मचारी पहुंचे और मछली काटने पर प्रतिबंध की बात कही, जिसके बाद से शिवसेना यूबीटी और बीजेपी में टकराव देखा जा रहा है।
13: मुंबई में मछली बाजार पर अब सियासत तेज होते नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में मुंबई के सांताक्रूज इलाके में वाकोला में ये जो फिश मार्केट है और यहाँ पर जो कोली बांधव रहते हैं, जो कोली समुदाय यहाँ पर पिछले कई पीढ़ियों से मछली बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अचानक से एक निर्णय सामने आता है कि आप मछलियाँ काट कर नहीं बेच सकते और इससे हड़कंप मच जाता है। कहीं ना कहीं इसका तीव्र विरोध होते दिखता है और खुद मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े को यहाँ आना पड़ता है और बताना पड़ता है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं है, आप अपना व्यवसाय जो है वो उसी तरह से शुरू रख सकते हैं जैसे पहले करते थे। आखिरकार हुआ क्या है, हम उन्हीं कोली महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। मुझे सबसे पहले तो बताइए कि ये जो निर्णय की बात हुई थी कि आप मछलियाँ काट नहीं सकते, ये कहाँ से आया था, क्या सच सही मायने में बीएमसी ने कोई कार्रवाई भी की है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं?
14: नहीं, ऐसा हुआ है कि पेपर में आने के वजह से यहाँ के नजदीक के पुलिस स्टेशन बीएमसी ये लोग आए इधर, इनके ऊपर कार्रवाई की, इनके ऊपर मारहानी किया और ये बातमी मीडिया पर पेपर में आने की वजह से मीडिया में बहुत जोर के इससे चलने लगा और सब मीडिया यहाँ पे आए, तभी ऐसा लगा कि ऋतु तावड़े मेयर खुद कल सुबह मेयर भी आके गई कि उनको ऐसा बोला है कि नहीं आप धंधा करिए, आपको कोई उठाएगा नहीं।
12: मछली कारोबारी कह रहे हैं कि वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहाँ गंदगी ना फैले, लेकिन मछली काट कर बेचना उनकी मजबूरी है क्योंकि हर ग्राहक पूरी मछली नहीं लेता है।
15: वो लोग जो बोलने वाले है कि यहाँ पर गंदगी होती है, क्या होती है, तो बोलना चाहिए ना, मच्छी मार्केट है तो थोड़ा बहुत तो होएगी गंदगी, हम लोग साफ सफाई करते हैं, अच्छे से रखते भी है, वो नहीं दिखता है उनको। और ये कार्रवाई करने वाले सामने कहाँ आते, पीछे से गोली मारते हैं ना, सामने आके बोले तो हम उनको बताए कि भाई क्या करना है क्या नहीं। और आज ये रोड का काम चल रहा है तो उन लोग को ज्यादा जोर आया है कि भाई इसको ये करना चाहिए कार्रवाई, और इसलिए इतने दिन क्यों नहीं कार्रवाई करे, आज सालों से हम लोग कर रहे हैं, जब तो नहीं करे, अभी सब कायदे निकाल रहे नया, ये नहीं करने का वो नहीं करने का, ऐसा तो नहीं होगा ना।
13: लेकिन बिना मछली काटे क्यों नहीं बेच सकते आप, क्या दिक्कत है आपकी?
16: एक मच्छी का वजन 1 किलो से लेकर 20 किलो तक होती है। मच्छी अगर 1 किलो की भी रहेगी तो घर पे पब्लिक कैसे काटेगी, मच्छी काट के ही चाहिए ना। एक मच्छी काटने जाओ तो 100-200 ग्राम कचरा निकलता है, घर पे तो पब्लिक काट नहीं सकती है, उसको मच्छी काट के ही चाहिए। मच्छी का वजन 1.5 किलो, 3-3 किलो, 10-10 किलो की मच्छी होती है, बगैर काटे मच्छी कस्टमर लेता नहीं है।
12: हालांकि बीजेपी ने इन दावों को पूरी तरह से नकार दिया और इसे शिवसेना यूबीजी की तरफ से फैलाई गई अफवाह करार दिया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुंबई की मेयर रितु ताबड़े खुद मछली बाजार पहुंची और मछली कारोबारियों को भरोसा दिया कि डरने की जरूरत नहीं है।
17: ही सामना मध्ये चाललेली बातमी आहे, कुठल्याही मीडियाच्या अधिकृत पेज वरती पण नाही चॅनल वरती ही अफवा पसरली जाते। मी जेव्हा प्रशासनाच्या अलका ससाने मॅडमशी बोलले, डिपार्टमेंटशी बोलले, कोणीही अशा पद्धतीचं काही निर्देश दिलेले नाहीयेत या ठिकाणी, फक्त आणि फक्त शुद्ध अफवा।
12: शिवसेना युबीटी ने बीजेपी पर मुंबई के पारंपरिक खाने और संस्कृति में दखल देने की कोशिश का आरोप लगाया।
18: मिस इन्फॉर्मेशन है, अगर मिस इन्फॉर्मेशन होता था तो मेयर मैडम वहाँ नहीं जाती थी, और उन्होंने जाने के बाद में उन्होंने लोगों को बोला कि आप जो मच्छी बेचते हैं महिलाएं कि आप मच्छी काट सकते हो, तो एक मिनट मच्छी काट सकते हो, और ऐसा कोई रूल नहीं है। अभी किसने बोला, किसने अनाउंस किया वो आज भी पता नहीं, लेकिन ये बात है कि जैसे बात न्यूज आ गई कि मच्छी जो महिलाएं हैं जो मच्छी काट के बेच रही है उनको नहीं काटा, ऐसा नहीं होता ना। अगर फिश मार्केट है तो वो इतने सालों से चल रहे हैं, लेकिन किसने वो रूमर फैलाया पता नहीं। लेकिन एक बात है कि मेयर मैडम ने जाके उधर उनको बोला कि ऐसे नहीं होगा, आप मच्छी काट सकते हो।
12: फिलहाल मछली बाजार वाले आदेश पर सियासत तेज हो सकती है।
13: कहीं ना कहीं मराठी बनाम मराठी मुद्दे को तूल पकड़ते हुए सियासत तेज होते नजर आ रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि पिछले कई पीढ़ियों से जो यहाँ पर मछली बेच रहे हैं, जिनका घर इस व्यवसाय पर चल रहा है, आखिरकार वो अचानक कहाँ जाए? कार्रवाई करने से पहले क्या सरकार कोई धोरण निश्चित करेगी कि इनको कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जाए, इनको अलग से जगह दी जाए? और ये जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है, क्योंकि सिर्फ मुंबई में लगभग 150 से 200 ऐसे मछली बाजार है जहां पर हजारों परिवार मछली बेचने का काम करते हैं और जिनका पेट उस पर चलता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सियासत किए बगैर क्या इस जटिल प्रश्न का कोई हल निकालेगी सरकार, ये भी पूछना उतना ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बीजेपी ने बीएमसी में अपने पार्षदों के लिए अटेंडेंस अनिवार्य कर दी और सदन की कार्यवाही में उनकी मौजूदगी को भी अनिवार्य कर दिया गया। बीजेपी ने अपने पार्टी ऑफिस में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए मशीनें लगा दी, जिससे सदस्यों को बिल्डिंग में बिताए गए अपने सटीक समय को ट्रैक करने के लिए लॉग इन और लॉग आउट करना जरूरी हो गया। दरअसल कम अटेंडेंस के कारण से एक जरूरी प्रस्ताव के पास न हो पाने के कारण 89 बीजेपी पार्षदों को पार्टी की ओर से नोटिस जारी किया गया।
19: आपने मांग की है कि हाउस के बाहर भी इस तरह का बायोमेट्रिक सिस्टम रहना चाहिए, फिजिकल अटेंडेंस जो कि अभी हम होते हुए अभी भी देख सकते हैं वो बंद होना चाहिए।
20: बिल्कुल, आई थिंक इट इज द फ्यूचर। और यहाँ क्या है कि बेशक आज जैसे बीजेपी ने उनके कार्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम बिठाया है, मेरी मांग है कि कॉरपोरेशन में भी सब नगर सेवकों के लिए उनके अटेंडेंस हो, फिर या कोई वोटिंग करने की बात आई उसके लिए हो, बायोमेट्रिक ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है, इट इज द वे फॉरवर्ड। आज अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक विषय में अभी पोल लिया जा रहा है, गए आधे पौने घंटे से लोग लाइन में खड़े साइन करने के लिए। यही अगर हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं या बायोमेट्रिक बेसिक चीज जैसे बायोमेट्रिक यूज करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, लोगों में डिसिप्लिन लाने के लिए भी ये अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से अटेंडेंस भी इससे बढ़ना चाहिए।
19: थिन मेजोरिटी बीएमसी में देखने मिलती महायुति महाविकास आघाड़ी के बीच में, पहले भी कॉर्पोरेटर्स बीजेपी के शिवसेना के मौजूद नहीं थे तो कई प्रपोजल्स उनके डिफीट हुए हैं, इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस और नोटिस दिया गया कॉर्पोरेटर्स को कि अटेंड किया।
21: किसी भी कॉर्पोरेटर को सभागृह में कॉर्पोरेशन में हाजिर रहना बहुत जरूरी है, उसी के लिए हम चुन के आए। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी संख्या की बुनियाद पर, संख्या के बल पर किसी भी मुद्दे को पास कराना चाहती है। हमने बार बार कहा है कि आप पास करना चाहते हैं हमसे बात कीजिए, चर्चा कीजिए, उसके ऊपर बहस हो, लेकिन ये उस बात को ना मानते हुए वो करते हैं। अर्जेंट बिजनेस के नाम पर जिस प्रपोजल को उन्होंने लाया था उसको हमने गिराया, उनको हराया, इसलिए अब उन्होंने नया तरीका निकाला कि यानी जिस तरह से भी वो आसानी से सिंपल मेजॉरिटी में जीत सकें।
0: बीएमसी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले पर हंगामा तेज हो गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी के मेयर ऋतु तावड़े से मुलाकात कर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद ऋतु तावड़े ने 5 आरोपी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अब इस मामले की जांच तेज हो गई। आरोप है कि कागज में ऐसे हॉस्पिटल्स में लोगों का जन्म दिखाया गया जो अस्पताल असल में है ही नहीं।
12: मुंबई में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सियासत तेज हो गई। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा है कि मुंबई में 87,000 से ज्यादा जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा चुके हैं। किरीट सोमैया ने मुंबई की मेयर रितु तावड़े से मुलाकात कर इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
1: मुंबई में 87,000 से ज्यादा फेक बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, ऐसा दावा बीजेपी नेता किरीट सोमैया जी ने किया था, जिसके लिए लगातार वो जो बीएमसी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आज वो मुंबई में मुंबई की मेयर रितु तावड़े जी से मिले। सर, आज आप रितु तावड़े जी से मिले, महापौर से मिले, क्या मांग की आपने, क्या बातचीत की?
3: आज यहाँ पर लगभग 1.25 घंटा ज्वाइंट मीटिंग हुई, जिसमें पुलिस, राज्य सरकार, महापालिका सभी के अधिकारी उपस्थित थे। महापालिका के अधिकारियों ने जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने सीआरएस सिस्टम शुरू की, उसके बाद में 87,347 जन्म प्रमाण पत्र गत 2 साल में गैर कानूनी पद्धति से दिए। वास्तव में बोल रहे हैं हमने एक छोटा सा करेक्शन, लेकिन जब हमने उनके पास प्रूफ दिए कि पिंकी का नाम आयशा हो गया और इस प्रकार के बड़े प्रमाण में संसद पर बांग्लादेशी को भी सर्टिफिकेट दिए गए हैं, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने हमारी विनंती का स्वीकार करके आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की रचना की है।
12: वहीं मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बीएमसी के 5 अधिकारियों को सस्पेंड करने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए कि जिन 87,000 लोगों को ये सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जाएगा।
22: इल्लीगल जन्म प्रमाण पत्र घोटाला, जिसमें पता चला कि कम से कम 87,347 जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इल्लीगल है, उसके बारे में ये जो मीटिंग थे मुंबई महानगर पालिका से कम 26 वार्ड में से ये इलीगल बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू किए थे। अभी जस्ट मैंने बताया कि 1988 में पिंकी नाम की एक लड़की को बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, अब 2025 में उसने अपना नाम आयशा बताया। तो ऐसे
0: हम रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभरात्रि।
23: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
6: You're listening to CNBC.
7: This is 80s hits, exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
8: Keep it on smooth jazz.
9: This is Roots Reggae,
10: exclusively on TuneIn.
11: This is Classic Hip Hop,
12: exclusively on TuneIn.
5: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected. The shows, music, and news you love, anytime you want.
13: कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जो आप 19 में से 18 और मुस्लिम में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके पीछे चुनाव आयोग की 2023 की परिसीमन प्रक्रिया है, जिनमें उन सीटों की संख्या घटाकर लगभग 36 से 22 कर दी गई जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक थे। कुछ इलाकों को बांटा गया, कुछ को जोड़ा गया, कुछ सीटों को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटों तक पहुंचने का मौका मिला। आपका जवाब।
14: देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये सब बोलने के लिए शर्म आना चाहिए। किस लिए? जो गौरव गोगोई का अपना पार्लियामेंट्री सीट है जोरहाट, परिसीमन का बाद उन्होंने जोरहाट सीट 2026 का लोकसभा में जीते थे एंड उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 सीटों का 9 सीटों में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको लीड मिले थे। लेकिन इस बार गौरव गोगोई खुद भी हारे और सारे 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो गौरव गोगोई 26 में लीड मिले थे, हम उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे जीत हासिल हुए। परिसीमन का बात का यह घटना है, जो परिसीमन का बात 2024 में जो सीटें कांग्रेस ने जीते वो सीट इस बार बीजेपी जीते। तो उसका मीनिंग क्या है? दूसरा, आप थोड़ा वोट परसेंटेज देखिए। हम सीट नहीं जीते हैं, साथ साथ में हमारा एब्सोल्यूट वोट परसेंटेज भी 50 तक पहुंच चुका है। तो ये खाली सीट का काम नहीं है, पॉपुलर वोट भी 50% हुए हैं। ये लोग बोल सकते थे परिसमन के लिए हम जीते, अगर हमारा सीट बढ़ते थे वोट नहीं बढ़ते थे।
13: एक बार फिर से वो डेटा दिखाइएगा जिसकी चर्चा वो तो भी कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं सर, वोट परसेंटेज 2021 में जब आपकी 60 सीट आई थी,
14: हाँ,
13: तो 33% के करीब आपका वोट परसेंटेज था। इस बार 38% सिर्फ बीजेपी का है, लगभग 6.5% असम गण परिषद का है। उसके बाद आपका अलायंस में जो पार्टनर है बीपीएफ, उनका 10 सीट है, वहां भी आपको 4% के करीब है, तो मिलाकर हो गया। और कांग्रेस पार्टी 29% पर है, वो हम दिखा रहे हैं।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। अमित शाह ने किया ऐलान, सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ, पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन। अमित शाह ने कहा, भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले, सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय के शपथ पर सस्पेंस, लोक भवन सूत्रों के अनुसार 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी ने असम बंगाल चुनाव के

अब चोरी एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो कर देंगे तबाह।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त ब्लैक एंड व्हाइट का है और आज ब्लैक एंड व्हाइट में बात बंगाल की होगी। इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनी है आजादी के बाद पहली बार। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे संघर्ष को याद करते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को नमन किया। कहा कि बीजेपी को ये जीत मुफ्त की नहीं मिली है। 321 कार्यकर्ताओं ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, संघर्षरत रहे और इसीलिए आज ये मकाम उनको हासिल हुआ है। शुभेंदु अधिकारी को सीएम पद के लिए घोषित कर दिया गया है और शुभेंदु अधिकारी कल जब कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पूरा बंगाल पूरा देश मना रहा होगा तब शुभेंदु अधिकारी परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है शुभेंदु अधिकारी जिसका नाम है, जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे, जिन्होंने राजनीति में कई संघर्ष किए लेकिन वो इस मकाम तक पहुंचे कि आज वो ममता दीदी की कुर्सी पर खुद बैठ रहे हैं, वो बन रहे हैं मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 5-10 साल पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि आपको बंगाल में ऐसे लोग मिलेंगे जो बीजेपी का नाम तक लेंगे। वहां पर या तो कांग्रेस, वामदल और उसके बाद से टीएमसी का शासन रहा। बीजेपी का नाम तक लेने वाले लोग नहीं मिलते थे। बीजेपी का चुनाव चिन्ह, उनका झंडा लेकर घूमने वालों को धीरे धीरे जुटाना, पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाना और फिर ऐसे लोगों को जोड़ना अपने साथ जो पार्टी के लिए ताकत बने, जो धमकियों के बावजूद जमीन पर डटे रहे, बीजेपी के लिए संघर्ष बहुत लंबा रहा है। और इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पूजनीय नेताओं में से एक है, उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आज बीजेपी अपना सरकार बना रही है। दूसरी बड़ी बात, बंगाल की अपनी एक संस्कृति है, बंगाल का अपना एक इतिहास है। बंगाल अपने आप में, आप अगर आप देखिए तो चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो विज्ञान हो, हर क्षेत्र में इतना संपूर्ण रहा है। इस देश को राष्ट्रगीत दिया है बंगाल ने, इस देश को राष्ट्रगान दिया है बंगाल ने। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों को बच्चे बच्चे याद करके अपने जीवन में उकेरते हैं, उतारते हैं। उसी पश्चिम बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी एक लंबी लड़ाई के बाद अपनी सरकार बना रही है और भव्य परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और इसी के साथ माना जा रहा है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में, एक तरह सा शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा सकता है। आज गृहमंत्री अमित शाह शुभेंदु अधिकारी का नाम घोषित करने के बाद बहुत भावुक नजर आए। वो भावुक इस बात से थे कि उनके सामने इतना बड़ा विधायक दल बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारी संख्या 1, 1 से 3, 3 से 77 और आज देखिए इतना बड़ा विधायकों का समूह मेरे सामने बैठा हुआ है। अलग अंदाज में दिख रहे थे, अक्सर आपने उनको आक्रामक अंदाज में और किसी ना किसी मुद्दे पर जवाब देते हुए सुना होगा, लेकिन आज बड़े हर्षित थे, अपने विधायकों को देखकर गदगद थे और इसी के साथ भावुक भी हुए। भावुक हुए जब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये सफर कैसे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक का अंग बंग कलिंग का ये पूरा सपना पूरा हुआ है। बीजेपी ने बंगाल में बाकायदा तैयारी ऐसी की, ऐसे कप्तान को मैदान में उतारा जो टीएमसी की फील्डिंग को बहुत अच्छे से समझता था। जी हां, अगर आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे तो इसके पीछे

कारण यही है शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बैनर्जी को इतने करीब से देखा था, सालों साल देखा था, वो जानते थे कि उनकी कमजोरी क्या है, उनकी मजबूती क्या है। याद कीजिए वो दिन जब लगभग साल 2020 में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए, तब सिर्फ 3 विधायक थे, वहां से लेकर ये 207 विधायकों का सफर। दरअसल उन्हें कमजोरी पता थी, ममता बैनर्जी खुलकर मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती थी और उनकी इसी कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। एक वक्त ऐसा भी था जब ममता बैनर्जी छोड़कर, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर जा रहे थे बीजेपी में, तो ममता बैनर्जी ने कोशिश की उन्हें मनाने की। प्रशांत किशोर को उन्होंने उनके घर भेजा और ये कोशिश की कि प्रशांत किशोर किसी तरह से शुभेंदु अधिकारी को मना ले, समझा ले और टीएमसी में ही रोक ले। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने मन बना लिया था, उन्होंने अपने तिरस्कार को ही ममता बैनर्जी के तिलिस्म को तोड़ने का सबसे बड़ी ताकत बना डाला। वो अडिग रहे, वो आगे बढ़े, एक स्ट्रैटेजी के तहत बढ़े। उन्होंने हिंदुत्व की पिच पर उतरकर जबरदस्त बैटिंग की और शायद यही वजह थी कि आज अंजाम यह है, 207 विधायक बीजेपी के, वो सीएम बन रहे हैं।

0: 4 मई को बंगाल में बीजेपी के लिए शुभ घड़ी आई और आज 8 मई को इस शुभ घड़ी के साथ शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए। अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपह सलार थे। उन्हें टीएमसी में ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन इसके बाद परिवारवाद की राजनीति के कारण उन्होंने अपमान का घूंट पिया। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से टीएमसी को सींचने वाले शुभेंदु अधिकारी को किनारे लगा दिया, लेकिन यही तिरस्कार साल 2026 में ममता बनर्जी के तिलिस्म को तोड़ने की ताकत बना और बंगाल में बीजेपी का झंडा फहराने का सपना पूरा हो गया।
1: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति में जायंट किलर बनकर उभरे और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी उनकी योग्यता को जानती नहीं थी। 2007 में नंदीग्राम की लाल मिट्टी पर संघर्ष करने से लेकर 34 साल पुराने वाम शासन की जड़ों को हिलाने तक शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के लिए सब कुछ किया। साल 2019 तक शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 माने जाते थे। उनकी टीएमसी के कैडर पर मजबूत पकड़ थी और ये बात ममता बनर्जी भी जानती थी, लेकिन इसके बाद शुभेंदु अधिकारी के साथ वही हुआ जो ज्यादातर परिवारवाद वाली पार्टियों में होता है। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए शुभेंदु अधिकारी को पीछे धक्का दिया जाने लगा। स्थिति ये हो गई कि ममता बनर्जी भी शुभेंदु अधिकारी की अनदेखी करने लगी। उनसे ये उम्मीद की गई कि वो जैसे ममता बनर्जी के सिपह सालार बने, वैसे ही अभिषेक बनर्जी के भी साथी बनेंगे। ये शुभेंदु अधिकारी के साथ नाइंसाफी थी और इसे ममता बनर्जी भी समझ रही थी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा होने दिया गया। ये तय कर लिया गया कि अभिषेक बनर्जी ही ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, न कि शुभेंदु अधिकारी। इसी के बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह तय किया कि वो अब और नहीं सहेंगे। उन्होंने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और इसके एक महीने बाद विधायक पद से इस्तीफा दिया। इन दोनों इस्तीफों के बीच एक महीने का अंतर इसलिए था क्योंकि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में ही रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए, अपने कई लोगों को शुभेंदु अधिकारी के पास भेजा, जिनमें प्रशांत किशोर भी शामिल थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब उनका फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगा। इससे पहले ममता बनर्जी ने कभी किसी नेता को इस तरह पार्टी में रोकने की कोशिश नहीं की थी। 2017 में जब मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ने की बात कही थी, तब ममता बनर्जी ने बिना देर किए उन्हें खुद पार्टी से बाहर कर दिया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को लेकर ममता बनर्जी नर्म नहीं। कारण यही था कि ममता बनर्जी जानती थी कि शुभेंदु अधिकारी के साथ गलत हुआ है और उन्हें उनके हक से दूर रखा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी के कारण शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से निकलकर बीजेपी में आए और आज वो बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।
2: आमितादे सबाई के अंतर थके प्रणाम दिन जानाते चाय आपनादे सकले सहयोगिताय आमरा जीतेछि भय आउट भरसा इन।
0: शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने इसलिए भी मुख्यमंत्री चुना क्योंकि वो चुनावों में पार्टी की जीत का बड़ा फैक्टर बने। जिस मेदिनीपुर क्षेत्र पर शुभेंदु अधिकारी की मजबूत पकड़ थी, वहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 96% रहा। मेदिनीपुर क्षेत्र की 56 में से 54 सीटें शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को जिताई और सिर्फ 2 सीटें ही टीएमसी जीत पाई। ये करिश्मा कम था कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में घुसकर हराया और उनसे भवानीपुर सीट भी छीन ली। शुभेंदु अधिकारी की यही जीत उनके मुख्यमंत्री बनने की सबसे बड़ी योग्यता साबित हुई।
3: মন্দিরে গো মাংস খেয়েছে, ভুলে গেছেন, ভুলে গেছে সম্পদ, ভুলে গেছে, ভুলে গেছে সম্পদ। আমি বলি না, ভুলতে পারে না, ভুলতে পারে না।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो ब्राह्मण समुदाय से हैं। इससे पहले 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं ममता बनर्जी, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य और 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे अजॉय मुखर्जी भी ब्राह्मण समुदाय से थे। इसके अलावा कायस्थ समुदाय से बंगाल में 3 मुख्यमंत्री बने, जिनमें विधान चंद्र रॉय, प्रफुल्ल घोष और ज्योति बसु का नाम शामिल था। जबकि सवर्ण समाज से ही वैद्य समुदाय के 2 मुख्यमंत्री बने, जिनमें प्रफुल्ल सेन और सिद्धार्थ रॉय का नाम शामिल है। शुभेंदु अधिकारी 55 साल की उम्र में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले बीजेपी के 9 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 55 साल से कम उम्र में मुख्यमंत्री बने और 7 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 55 साल से ज्यादा उम्र में मुख्यमंत्री बने। यहाँ हम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की उम्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी में ये ट्रेंड है कि जो नेता 55 साल या उससे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनता है, उसे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका जरूर मिलता है। जैसे योगी आदित्यनाथ 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे और अब तक 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका तीसरा चुनाव अगले साल है। और आप सबने ये तस्वीरें तो देखी ही होंगी जब शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था। मौजूदा वक्त में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के 5वें ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो दूसरी पार्टी से आए हैं। उनसे पहले बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने जो आरजेडी से बीजेपी में आए थे। असम में हिमंता बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बने जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। त्रिपुरा में मानिक साहा मुख्यमंत्री बने और वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने और वो भी कांग्रेस से पार्टी बदलकर बीजेपी में आए थे। यहाँ बीजेपी का एक खास पैटर्न ये भी है कि वो उन राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर प्रयोग नहीं करती जहाँ उसे पहली बार जीत मिलती है या जहाँ उसका बहुत मजबूत कैडर नहीं होता। असम में भी उसने यही किया और अब पश्चिम बंगाल में भी वो यही कर रही है।
4: आज हमने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के काम पर एक डॉक्यूमेंट्री आपके लिए बनाई है। आइए आपको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि शून्य से सत्ता के शिखर तक का ये सफर कैसे तय किया गया।
1: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता है।
4: बंगाल में हुए उलटफेर के पीछे एक और कहानी है और इस कहानी के सबसे बड़े किरदार हैं शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वोटर्स को उनके लिए लॉयल माना जाता था और वहां जमीन पर टीएमसी का इतना मजबूत काडर था कि बीजेपी के लिए बंगाल में पैर जमाना, पैर घुसाना मुश्किल था। 2021 में बीजेपी से ये चूक भी हुई थी कि जब 377 सीटें पर पहुंची लेकिन टीएमसी को वो हरा नहीं पाई। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के काडर की वो काट निकाली जिसने भारत के चुनावी इतिहास में एक नई मिसाल पेश कर दी। आज हम आपको शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी बताना चाहते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की मदद से ग्राउंड पर टीएमसी के काडर को कैसे मात दी। देखिए,
0: तारीख 19 दिसंबर 2020, जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भगवा रंग में रंग चुके थे, उन्हें अमित शाह ने बीजेपी में शामिल कराया। और आज इस घटना के 1966 दिन बाद जब बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार पर काबिज हो रही है तो मुख्यमंत्री के रूप में जो नाम पुकारा गया वो नाम है शुभेंदु अधिकारी और इस नाम का ऐलान किया खुद गृह मंत्री अमित शाह ने।
1: केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: जब इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगाई गई तो अमित शाह ने माला पहनाकर शुभेंदु अधिकारी का अभिनंदन किया और इस पर शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह अभिभूत नजर आए। वो बार बार अमित शाह और विधायक दल का शुक्रिया कर रहे थे। आज बंगाल में वो हो गया जो आजादी के बाद से बीजेपी और जनसंघ के न जाने कितने नेताओं का सपना था, और अब इतिहास में पहली बार बीजेपी कोलकाता की कुर्सी पर काबिज हो रही है।
1: इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77, 77 से 203 की, 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में 0 सत्ताधारी दल का एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है।
0: विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी को भले ही पहली बार हराया हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम है जिसने ममता बनर्जी को व्यक्तिगत तौर पर लगातार 2 बार शिकस्त दी, और आज बंगाल की कुर्सी उनके नाम लिखी जा चुकी है। दशकों तक अपराजेय माने जाने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का सत्ता से बाहर होना किसी करिश्मे से कम नहीं है। सिर्फ एक शख्स ने टीएमसी के कैडर को छिन्न भिन्न कर दिया। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी टीएमसी के संगठन पर सबसे गहरी पकड़ रखते थे, उन्होंने उसी संगठन की ईंट से ईंट बजा दी।
5: मोदी जी को प्रति आभार प्रकट करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूँ। सब विधायक का समर्थन हुआ, बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम कर।
0: शुभेंदु जानते थे कि टीएमसी की ताकत उसका बूथ लेवल कैडर है। उन्होंने टीएमसी छोड़ रहे कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाया कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है, जिससे कार्यकर्ताओं के मन में दीदी का खौफ खत्म हो गया। शुभेंदु ने इस चुनाव को सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और अस्मिता पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर ये संदेश पहुंचाया कि तृणमूल अब वो पुरानी पार्टी नहीं रही जो आम लोगों के लिए लड़ती थी। शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने ममता बनर्जी के अजय होने के नैरेटिव को खत्म किया। उन्होंने टीएमसी के काडर को ये महसूस कराया कि जहाज डूब रहा है, और फिर उन्हें बीजेपी के रूप में एक सुरक्षित विकल्प दिया।
4: पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में आज एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। आखिर कैसे शून्य से शिखर तक का सफर बीजेपी ने महज एक दशक में तय कर लिया। बीजेपी को पहली बार खाता खोलने के लिए 36 सालों का इंतजार करना पड़ा। साल 1980 में बीजेपी की स्थापना से लेकर साल 2016 तक बीजेपी को खाता खोलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2014 के बाद, और अगले 10 सालों में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो एक वक्त पर नामुमकिन लगता था। आज बंगाल में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इस चमत्कार के पीछे कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति थी जिसका आधार था हिंदू वोटों का एकीकरण। बीजेपी ने बंगाल की राजनीति की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया, खुल्लम खुल्ला दांव खेला। रणनीति साफ थी, उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को ढाल बनाकर बीजेपी ने मतुआ समुदाय से लेकर आदिवासी इलाकों तक हिंदुत्व की अलख जगाई। जहां विपक्षी दल मुस्लिम वोटों के गणित में उलझे रहे, वहीं बीजेपी ने 70% हिंदू आबादी को अपना सारथी बना लिया। जय श्री राम का नारा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। आज बंगाल की सियासत दो ध्रुवों में बटी है, एक तरफ वो जो अल्पसंख्यक वोटों के बिना जीत की कल्पना नहीं करते और दूसरी तरफ बीजेपी जिसने साबित कर दिया कि बहुसंख्यक वोटों की लामबंदी सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का रास्ता हो सकती है। एक दशक में 3 सीटों से 207 सीटों की छलांग ने बंगाल के राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर बंगाल में बीजेपी ने कैसे कमल खिलाया, यानी बंगाल बीजेपी जीती कैसे।

0: असम के बाद पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां 27% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बाद भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में काउंटर कंसोलिडेशन हुआ। हर बार मुसलमान अपना एक मुश्त वोट टीएमसी को देते थे, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भी अपना एक मुश्त वोट बीजेपी को दिया। खासकर उन सीटों पर बीजेपी को हिंदुओं के बम्पर वोट मिले जहां मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। ऐसी 62 सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत हुई। उसे 15 सीटों का फायदा हुआ जबकि टीएमसी को इन्हीं मुस्लिम फैक्टर वाले इलाकों में 20 सीटों का नुकसान हुआ। ये बदलाव सिर्फ एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं आया, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने खुद हिंदुत्व का ये लॉन्च पैड तैयार किया। बंगाल की धरती पर अगर कमल खिला तो इसके लिए ममता बनर्जी ने खुद बीजेपी को जमीन तैयार करके दी। टीएमसी ने मुसलमानों पर जितनी ममता दिखाई उतने ही हिंदू बीजेपी के साथ एकजुट होते गए, और इसकी पहली नींव साल 2016 में यानी आज से 10 साल पहले रखी गई थी। साल 2016 का बंगाल सांप्रदायिक राजनीति के दलदल में बुरी तरह धंस चुका था। चारों तरफ एक ही सवाल था कि मुसलमानों पर सरकार की इतनी ममता क्यों है। उस दौर में मुहर्रम उसी दिन पड़ रहा था जिस दिन पूरे राज्य में दुर्गा विसर्जन होना था। अगर सरकार चाहती तो वो ना मुहर्रम को रोकती और ना दुर्गा विसर्जन को। इससे सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होता। इसके लिए बस ममता बनर्जी की सरकार को पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने इसे एक मौका समझा, मौका पश्चिम बंगाल के 27% मुसलमानों को खुश करने का, मौका मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने का, और मौका मुसलमानों को ये बताने का कि टीएमसी चुनावों में उनका एक मुश्त वोट मिलने से गदगद है और वो उनकी भावनाओं का ख्याल रखेगी। सरकार ने ऐसा किया भी। ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 2016 का मुहर्रम जुलूस बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये उसी दिन निकलेगा जिस दिन दुर्गा विसर्जन होना है। इसके लिए ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन को ही एक दिन के लिए स्थगित कर दिया, और 2016 के इसी फैसले ने हिंदुओं के मन में एक टीस पैदा की। टीस इस बात की कि वोट तो हिंदुओं ने भी ममता बनर्जी को दिया था, फिर ऐसा क्यों हुआ कि मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोक दिया गया।
1: शुद्ध एक दिन ही देवा जावे ना, सेटा होच्छे पहला अक्टूबर एकादशीर दिन। একাদশীর দিন এমনিতে আমরা বিসর্জন দিতেও চাই না অনেক সময়। একাদশীর দিনটা শুধু দেয়া বিসর্জন হবে না, কারণ ওই দিন মুহররম আছে বলে।
0: ये सिर्फ एक साल नहीं हुआ, इसके बाद आया साल 2017। इस बार भी ममता बनर्जी ने कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी और इस बार ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट गया। सरकार की नीतियों और फैसलों को देखकर अदालत को भी ये कहना पड़ा कि मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोकना गलत है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार दो समुदायों के बीच दरार को जानबूझकर गहरा कर रही है, और ये बात हिंदुओं के मन में घर कर गई। हिंदुओं को ऐसा महसूस होने लगा कि पश्चिम बंगाल में उनकी नहीं बल्कि मुसलमानों की सरकार का शासन है। वक्त आगे बढ़ा और फिर आया साल 2019। इस बार लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे का विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लड़कों को जय श्री राम का नारा लगाने पर जेल में डालने की धमकी दे दी और ये कहा कि जय श्री राम बंगाल में नहीं चलेगा। इस बार भी ममता बनर्जी ने बीजेपी की जमीन तैयार की और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया।
2: बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा है, और पुलिस को कह रहे थे पकड़ो जेल में डाल दो। तुष्टिकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है।
0: बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को सिर्फ उछाला था, लेकिन ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ने बीजेपी को बंगाल में एक नया अवसर दिया। लोकसभा चुनावों में पहली बार बंगाल की 18 सीटों पर बीजेपी जीती और 22 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी। ये हार ममता बनर्जी के लिए कई सबक लेकर आई, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी की सुई मुसलमानों पर अटकी रही। उन्हें लगा कि वो मुसलमानों के कम वोट मिलने से हारी और इसी के बाद उन्होंने ये बयान दिया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रहेंगी, फिर चाहे दूध देने वाली गाय की तरह मुसलमान भी उन्हें लात मार दे। इस बयान ने एक बार फिर बंगाल के हिंदुओं को असहज किया और फिर से हिंदुओं को लगने लगा कि टीएमसी उनकी नहीं मुसलमानों की पार्टी है। इसी दौर में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए, जो आगे चलकर हिंदू हृदय सम्राट बने और 2021 के चुनावों में बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी को उम्मीद थी कि ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से आक्रोशित होकर बड़ी संख्या में हिंदू उसे वोट देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी और टीएमसी के बीच 10% वोटों का अंतर रहा। उस बार काउंटर कंसोलिडेशन नहीं हुआ, यानी मुसलमान तो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन हिंदुओं के बीच वैसी एकजुटता नहीं दिखी। बीजेपी हारी, लेकिन उसने हिंदू वोटर्स को छोड़ा नहीं और ममता बनर्जी धीरे धीरे बीजेपी का काम आसान करती रही। इसी साल चुनावों से पहले ममता बनर्जी ने अपना आखिरी बजट पेश किया, जिसमें अल्पसंख्यक और मदरसों के लिए 5,714 करोड़ रुपए दिए, जबकि उद्योगों के लिए सिर्फ 1,484 करोड़ रुपए, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिर्फ 217 करोड़ रुपए और कानून से जुड़े मामलों के लिए 23 करोड़ रुपए ही दिए गए। इस बजट से ममता बनर्जी मुसलमानों को साधना चाहती थी और उनकी प्राथमिकता स्पष्ट थी, लेकिन इस बार बंगाल के हिंदू भी ये सब देख रहे थे। आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ पर हिंदुओं के घर घर पहुंचे और इस बजट के बारे में लोगों को बताया। जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, उसे भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। इससे हिंदू समुदाय एकजुट हुआ और उसके मन में ये भावना पैदा हुई कि अगर ममता बनर्जी को उन्होंने नहीं हटाया तो अभी बांग्लादेश में ये हो रहा है, लेकिन आगे बंगाल में भी हो सकता है। ऊपर से रही सही कसर टीएमसी के नेताओं ने पूरी कर दी। लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने कहा कि उनकी पार्टी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि जय श्री राम के नारे पर वोट मांगना पड़े, लेकिन यही सायोनी घोष अपनी चुनावी रैलियों में काबा और मदीना के गाने गाती रही और यही से हुआ काउंटर कंसोलिडेशन।

0: अब बंगाल भगवा मैं हो चुका है। और जो शुभेंदु अधिकारी ये कहते थे कि ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति बंगाल को तोड़ देगी, वही शुभेंदु अधिकारी अब अपने राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं और कल उनका शपथ ग्रहण होना है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार टीएमसी के वोट बैंक की नहीं बल्कि अस्तित्व की जीत हुई। बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे जिस सबसे बड़ी ताकत का नाम लिया जा रहा है वो है मथुआ समुदाय। एक वक्त था जब ममता बनर्जी ने मथुआ समुदाय के लिए विकास की झोली खोल दी थी। शिक्षा से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक ममता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक मोर्चे पर दीदी पूरी तरह से बेबस नजर आई और वो था नागरिकता का मुद्दा। है हिंदू, आए हैं बांग्लादेश से, लेकिन यहां पर वो अपने ही मतलब पश्चिम बंगाल में जहां वो रह रहे थे अलग अलग टेंट्स में रहते थे और एक तरह से रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे थे। बीजेपी ने इसी कमजोर नफ्स को पकड़ा। पार्टी जानती थी मथुआ समुदाय के लिए पहचान का संकट सबसे बड़ा है। केंद्र सरकार सीएए को लेकर आई और मथुआ समुदाय को सीधे नागरिकता का अधिकार थमा दिया। यानी मथुआ समुदाय के कुछ लोग पहले से भारत के नागरिक थे, लेकिन जो नहीं थे अब वो भी नागरिक बन गए। नतीजा सबके सामने है। जिस समुदाय को ममता अपना वोट बैंक मानती थी उसी समुदाय ने इस बार बीजेपी का समर्थन किया। ममता का अभेद्य किला ढह गया। रणनीति पर बीजेपी ने 2014 से काम शुरू किया था और इस बार वो काम आया। ये नया एम फैक्टर मथुआ फैक्टर है। ये नया एम फैक्टर कैसे ममता बनर्जी के एम फैक्टर पर हावी साबित हुआ वो पूरी कहानी देखिए।
0: बंगाल की राजनीति में जिस मुस्लिम फैक्टर के दम पर ममता बंगाल के सिंहासन पर बैठी थी उसकी काट बीजेपी ने मथुआ फैक्टर से निकाली। नदिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना से लेकर मालदा तक फैला ये वो समुदाय है जो करीब 34 से 40 विधानसभा सीटों की किस्मत लिखता है। 2014 तक जो मथुआ समुदाय ममता बनर्जी के सिंहासन की ढाल बना हुआ था आज वो बीजेपी का सबसे मजबूत हथियार बन चुका है। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। नागरिकता का वो वादा जो सीएए बनकर जमीन पर उतरा और एक ऐसा इमोशनल कनेक्ट जिसने ठाकुरबाड़ी की दहलीज तक बीजेपी को पहुंचा दिया और इस तरह बीजेपी ने मथुआ फैक्टर से जीत का सफर तय किया। कहानी शुरू होती है 2014 से। तब मथुआ समुदाय पूरी तरह तृणमूल कांग्रेस के साथ था। मथुआ संप्रदाय की बोड़ो माँ यानी बीना पाड़ी देवी के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर टीएमसी के टिकट पर बनगांव से सांसद थे, लेकिन 2014 में ही उनके निधन के बाद राजनीति की बिसात बदल गई। ममता बनर्जी ने कपिल कृष्ण की पत्नी ममता बाला ठाकुर को उपचुनाव लड़ाया और इस वक्त बीजेपी को सही मौका दिखा। बीजेपी की नजर इस वोट बैंक की दरार पर थी और उसने ठाकुर परिवार के दूसरे धड़े यानी छोटे भाई के परिवार को अपनी ओर खींचा। हालांकि उपचुनाव में जीत टीएमसी की ममता बाला ठाकुर को ही मिली। बीजेपी ने बोडो माँ के पोते शांतनु ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी और इस तरह मथुआ समुदाय के केंद्र ठाकुरबाड़ी में दो फाड़ हो गए। एक तरफ ममता बाला ठाकुर टीएमसी में तो दूसरी तरफ शांतनु ठाकुर बीजेपी में। मथुआ समुदाय को सबसे बड़ा तोहफा बीजेपी ने नागरिकता कानून से दिया जो ममता बनर्जी के दायरे से बाहर था। ममता ने मथुआ समुदाय के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, विकास बोर्ड बनाया, लेकिन वो एक चीज नहीं दे सकती थी और वो थी नागरिकता।
2: मथुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती।
0: विभाजन और 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश से आए इन शरणार्थियों के लिए नागरिकता महज एक कागज नहीं, पहचान और सम्मान की लड़ाई थी। बीजेपी ने इसी नब्ज को पकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बार बार भरोसा दिलाया कि सीए आएगा और मथुआ समुदाय के लोगों को भारत का वैध नागरिक बनाएगा। 2024 में कानून लागू कर बीजेपी ने दिखा दिया कि उसकी रणनीति चुनावी नहीं बल्कि डिलीवरी आधारित है।
3: मैं मथुआ नाम शूद्र और अन्य सभी शरणार्थी परिवारों से कहूंगा, आपको नागरिकता भी मिलेगी, आपको पक्का एड्रेस मिलेगा, आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतवासी को, देश के नागरिक को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है।
0: बीजेपी की जीत का रास्ता सिर्फ फाइलों से नहीं बल्कि आस्था के कनेक्ट से होकर गुजरा। 2019 में पीएम मोदी ने बड़ों माँ के पैर छूकर जो आशीर्वाद लिया उसकी तस्वीर आज भी मतुआ घरों की दीवारों पर है। इतना ही नहीं, मार्च 2021 में बंगाल चुनाव के बीच प्रधानमंत्री सीधे बांग्लादेश के ओराकांडी पहुंचे। ये वो पवित्र भूमि है जहां मतुआ संप्रदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था। धोती कुर्ता पहने मोदी जब वहां ढोल और शंख की ध्वनि के बीच मंदिर पहुंचे तो बंगाल के करोड़ों मतुआ वोटर्स को सीधा संदेश मिल गया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां जाना एक ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक था।
3: मेरी यहां कुछ महानुभाव से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांडी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मातवा संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांडी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं।
0: बीजेपी की ये मेहनत रंग लाई। मतुआ समुदाय का प्रभाव क्षेत्र नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मालदा जिलों में है और करीब 5 सीटों पर इनका सीधा असर है। 2019 में बनगांव और राणाघाट जैसी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2021 में जब पूरे बंगाल में टीएमसी की लहर थी तब भी मतुआ बहुल इलाकों में बीजेपी ने अपना वोट शेयर और सीटें बनाए रखी।
2: ये दीदी मतुआ समाज वालों को धमकाती कि अगर हम आए तो आपके वोट चले जाएंगे। अरे दीदी, ये मतुआ समाज तो हमारा प्राण है, प्राण है, इसको कोई छू नहीं सकता। कोई मतुआ समाज के, नमोशूद्र समाज के व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है।
0: बीजेपी ने साबित कर दिया कि उनकी रणनीति शॉर्ट टर्म नहीं होती। उन्होंने एक तरफ ठाकुर परिवार के शांतनु ठाकुर को केंद्र में मंत्री बनाकर प्रतिनिधित्व दिया तो दूसरी तरफ सीएए के जरिए कानून की ताकत दी। ममता बनर्जी ने आखिर तक मतुआ विकास बोर्ड के जरिए संघर्ष किया लेकिन नागरिकता का जो ठप्पा बीजेपी ने लगाया है उसने मतुआ समुदाय को भगवा रंग में रंग दिया है। बंगाल की सत्ता का रास्ता अब मतुआ के हरी बोल से होकर ही गुजरता है। मतुआ समुदाय अब सिर्फ शरणार्थी नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति के किंग मेकर हैं और इस किंग मेकर को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने दीदी के मुस्लिम फैक्टर को एक बड़ी चुनौती दे दी है।
1: एक बार ममता बनर्जी ने पूछा कि अमित शाह कौन है, लेकिन आज ममता बनर्जी अमित शाह को और उनकी रणनीति को अच्छी तरह जान चुकी होंगी। अमित शाह साल 2014 से 2020 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने बंगाल प्रोजेक्ट पर ऐसे काम किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज देखने में लगता है कि बीजेपी 207 सीटें कैसे जीत गई, लेकिन जब आप अमित शाह की चाणक्य की नीति को देखेंगे और उसकी पूरी टाइमलाइन को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल में तो बीजेपी का बमबम होना निश्चित था और निश्चित इसलिए था क्योंकि अमित शाह ने बंगाल के लिए चाणक्य की नीति ही बना डाली थी। देखिए,
2: अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए।
0: कौन अमित शाह? साल 2014 में जब ममता बनर्जी ने ये अहंकार भरा सवाल पूछा था तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि गुजरात से निकला ये शख्स बंगाल की राजनीति का भूगोल बदलने वाला है। 2014 से 2026 तक करीब एक दशक की वो तपस्या, वो प्रोजेक्ट बंगाल जो कागजों पर नहीं अमित शाह के दिल और दिमाग में लिखा गया था, आज बंगाल जब भगवा मैं हो रहा है तब उसके पीछे अमित शाह की चाणक्य नीति ही है। ये कहानी शुरू होती है साल 2014 से। दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी काबिज हो चुके थे और अमित शाह बीजेपी की कमान संभाल चुके थे। उस वक्त बीजेपी के लिए बंगाल एक अभेद किला था। वामपंथियों और ममता दीदी के गढ़ में बीजेपी का वजूद ना के बराबर था, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली उनकी नजरें कोलकाता पर टिक गई। अमित शाह के लिए पहली बड़ी अग्नि परीक्षा बंगाल के 2016 के विधानसभा चुनाव में आई। शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार 3 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपना खाता खोला। सीटें भले ही 3 थीं, लेकिन शाह ने मन छोटा नहीं किया। उन्होंने समझ लिया कि बंगाल में लड़ाई सड़कों पर भी होगी और बूथों पर भी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव ने पूरी बाजी पलट दी। अमित शाह ने बंगाल के कोने कोने का दौरा किया, बूथ मजबूत किए और पहली बार टीएमसी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी।
4: पूरे बंगाल के विकास को ममता दीदी का ग्रहण लग गया, बंगाल का विकास थमा पड़ा है। मैं आपको बताता हूं, इस सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने कंगाल बांग्ला बनाया है।
0: और इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी बंगाल में 2 लोकसभा सीटों से 18 सीटों पर पहुंच गई। ये बंगाल में भगवा उदय की पहली बड़ी झांकी थी। अमित शाह जानते थे कि दीदी को हराने के लिए उनके घर में सेंध लगानी होगी। उन्होंने 2020 के दिसंबर में शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराकर पूरी कमान सौंप दी। इस समय अमित शाह मोदी सरकार में गृह मंत्री बन चुके थे, लेकिन उनका प्रोजेक्ट बंगाल जारी था। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3 सीटों से सीधे 77 सीटों तक पहुंच गई। यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया, लेकिन बीजेपी को विपक्ष में ही बैठना पड़ा। चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा ने बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश की। 2024 लोकसभा चुनाव में सीटें घटी तो विरोधियों ने कहा कि बीजेपी ममता को नहीं हटा सकती, लेकिन ये तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। 2026 के चुनाव में अमित शाह ने फिर कमान संभाली, खुद जाकर बंगाल में डेरा डाला। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद ही शाह ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि बीजेपी आ रही है। शाह ने अपनी माइक्रो मैनेजमेंट टीम को मैदान में उतारा। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जिसने टीएमसी के किले की ईंट से ईंट बजा दी।
3: भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड़बा।
0: आज जब बीजेपी बंगाल की सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो रही है तो वो सवाल हवा में गायब हो चुका है कि अमित शाह कौन है। आज ममता बनर्जी और पूरा देश जानता है कि अमित शाह वो नाम है जिसने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से उखाड़ दिया है और खुद आकर बंगाल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया है।
1: और अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। ऐसा फिर से लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से ना छिड़ जाए, क्योंकि बीते दिन जो अमेरिकन नेवी है उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए। अब देखिए, युद्ध विराम की घोषणा तो दोनों तरफ से कर दी गई है, बावजूद इसके एक लड़ाई की स्थिति बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक तरफ ईरान ने बंद किया था, अब वहां पर यूएस ब्लॉकेड के बाद ईरान मुश्किलों का सामना कर रहा है और इन सब के बीच युद्ध विराम कहीं संकट में ना जाए ये स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने युद्ध विराम को तोड़ते हुए यूएस की नेवी ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। अब ईरान क्या वापस उस युद्ध विराम को तोड़कर कुछ कर सकता है? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध विराम लागू है, लेकिन क्या ईरान मानेगा? क्या ये युद्ध फिर से नए सिरे से शुरू हो सकता है? देखिए।
5: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए. और यहां पर हर कोई अपनी लाइफ को एडिट करके दिखा रहा है, असलियत तो बस फिल्टर जानता है. नमस्कार.

0: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण कई मानू में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन। देखिए,
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पर। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज।
2: आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
3: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्षद्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
1: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
2: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
1: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बैनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 तक पहुंचा दिया। और इसीलिए बीजेपी ऐलानिया कह रही है कि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़ कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है। जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए छेन, सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। भय आउट, भरसा इन।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह ने किया ऐलान। सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ, पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी

0: लोक भवन सूत्रों के अनुसार 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी ने असम बंगाल चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल, कहा सरकार ने की चुनाव चोरी, एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो कर देंगे तबाह। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण कई मानू में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन। देखिए,
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पर्व। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज।
2: आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
3: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी।

0: और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
1: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
2: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
1: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
3: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बैनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 तक पहुंचा दिया। और इसीलिए बीजेपी ऐलानिया कह रही है कि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़ कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढहा चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है। जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए छेन, सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। भय आउट, भरसा इन।
3: अब इसे बीजेपी और अमित शाह की रणनीति कहें या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की खुन्नस, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु के बीजेपी खेमे में आने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिली बल्कि बंगाल में बीजेपी की आज सरकार बनी। तो आइए हम आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी जिसने आज बंगाल में बीजेपी का सपना साकार किया।
0: 27 नवंबर 2020, अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी के खास सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने थे, आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 1 दिसंबर की रात 4 दिग्गज एक कमरे में जुटते हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची होती है और सुबह सौगत रॉय ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में शुभेंदु ने व्हाट्सएप मैसेज से धमाका कर दिया। उन्होंने सौगत रॉय को लिखा कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर देना।
4: আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে, কে বলছে? যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারত রত্ন তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না।
5: তিনবার হয়েছে, 2-3 বার পরপর হয়েছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ধাক্কা না ধাক্কা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
0: 17 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आधिकारिक तौर पर कहा अलविदा और 19 दिसंबर 2020 को मेदिनीपुर के मैदान में भारी जन सैलाब के बीच अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। शुभेंदु ने शाह के पैर छुए और बन गए बीजेपी के सारथी और आज 5.5 साल बाद वही अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्हें बीजेपी की तरफ से बंगाल की कमान सौंप रहे हैं और शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम होंगे। और आज शुभेंदु अधिकारी की पहचान मेदिनीपुर के चाणक्य से बंगाल के किंग मेकर तक होती है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु की असली लड़ाई ममता से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी से है।
6: दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ममता के लिए शुभेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी खूब ले रही थी। ये जुगलबंदी जम भी खूब रही थी। शुभेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वो एक तरह से अघोषित नंबर 2 हो गए थे लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। यहीं से शुभेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और नौबत पार्टी छोड़ने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के इस पूरे चुनाव को भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की लड़ाई बना दिया क्योंकि राजनीति शुभेंदु को विरासत में मिली। आज नतीजा सबके सामने है। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकोली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति की खुशबू भी थी और राजनीति का माहौल भी। दादा खेनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से ऐसी बगावत की आजादी से पहले 3 बार उनका घर जलाया गया। पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल गांधी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायक बनते देखा और तभी ठान लिया कि उनका रास्ता भी राजनीति ही है। 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। टीएमसी बनने के 2 साल बाद साल 2000 में शुभेंदु कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे। लेकिन शुभेंदु के जीवन में बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। दरअसल दिसंबर 2006 में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ मिलकर बंगाल के नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब बनाने का फैसला किया। किसान इसके खिलाफ थे और जनवरी 2007 में लेफ्ट सरकार के इस फैसले को जमीन पर लागू होने से रोकने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई, जिसके कमांडर बने शुभेंदु अधिकारी। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ही ममता बनर्जी 3 दशक पुराना वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। नंदीग्राम के बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल का इंचार्ज बनाया। ये इलाका माओवादियों और वामपंथियों का गढ़ था। शुभेंदु ने यहाँ हर बूथ पर टीएमसी की जड़ें मजबूत की और साल 2011 के चुनाव में शुभेंदु ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता बन चुके थे। इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और 34 साल की वामपंथी सरकार का अंत हुआ। सीएम बनी ममता बनर्जी।
4: আপনারা লিখে রাখুন, 500,000 ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।
0: লেকিন মমতা কা ঝুকাও আপনে ভতিজে অভিষেক বনার্জি কি তরফ হুয়া তো শুভেন্দু নে মমতা কা সাথ ছোড় দিয়া। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनकी सादगी, कुर्ता पैजामा, चप्पल जो बंगाल के लोगों को पसंद है, ग्रामीण वोटर से अच्छा कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़, यही उन्हें मास लीडर बनाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्क का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 85.87 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी। और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बंगाल में बीजेपी के सीएम बनने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर पर ये जानकारी दे दें। यह खबर बेरोजगारों की है। गुरुवार को बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अगले ही दिन बिहार की राजधानी पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है, जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों ने मांग की है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, इसमें देर न की जाए।
7: लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए।
8: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, तैयारी हो रही है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
9: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी सब पर जो है वो लाठियां बरसी है।
10: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है।
11: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है।
7: बैरिकेटिंग को हवा में उठा दिया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ी है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। यह तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को उठा दिया गया है।
11: कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है।
7: लाठीचार्ज हो गई है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ गया है। ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है। ये तस्वीर देखिए, इस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है। और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से देखिए लाठीचार्ज की जा रही है। ये तस्वीर देखिए और तबाहतोड़ लाठी चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है।
11: ये प्रदर्शनकारी कोई मनमानी नहीं कर रहे, केवल हक की नौकरी पाने के लिए भर्ती परीक्षा का चाहते है कि विज्ञापन जारी हो, लेकिन मांगे सुनने की जगह लाठी मारी जाती है।
7: इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी हैं। और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं। और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है।
11: पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र है या कोई छात्रा।
7: आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप
8: देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ टीआरडी फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये महिलाओं पे पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठीचार्ज करना चाहिए। हम तो शांति पूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना, कोई किसी को कुछ अपवादी वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी चोट लगे, सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे, डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं?
11: दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है।
9: ये टीआरई 4 की परीक्षा दरअसल होनी कब चाहिए थी? अगर शेड्यूल के हिसाब से चलता तो कब ये परीक्षा हो जानी चाहिए?
12: सर शेड्यूल से अगर होना रहता तो 2-3 साल पहले एग्जामिनेशन हो जाती।
9: 2-3 साल पहले?
12: जी जी। ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ बच्चों से वोट लेते हैं। ये तमाम बिहार के जो है ना छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपको राजगद्दी दिए हैं। आप क्या करते हैं? सिर्फ वोट लेते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी नीतीश जी बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे। अरे हम ही लोग तो वोट देकर आपको राजगद्दी दिए हैं। तो आप व्यवस्था, जब वोट आपको लेना था तो उस समय आप क्या कहते थे? सिर्फ नीतीश जी ही कहते थे कि बहुत जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। शिक्षा मंत्री जी पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि अब वैकेंसी आएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वरगलाने का काम किया जा रहा है।
7: चार बार मैं खुद यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता है।
10: बार बार अपना डेट देकर अपना बात से मुकर जा रही है। जो विद्यार्थी 2-3 साल से पटना में है, आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वे गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पीटी मेंस का बहाना कर करके तैयारी को टाला जा रहा है, और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहा है।
11: दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहां पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था, वहां प्री और मेंस दो चरण में चुनने का दावा किया जा रहा है।
13: इस सरकार मनमानी कर रही है, टीआरई 4 ही इसका एक्सपेरिमेंट है सरकार का। तो यहाँ पे टीआरई 4 में प्री और मेंस की बात हो रही है, तो ये नहीं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस माहौल पे हुआ है उसको, और आज नोटिफिकेशन जारी चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है कि डेट पर डेट दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अभी बीपीएससी कंट्रोलर बोले थे कि 19 और 20 को हम जारी करेंगे नोटिफिकेशन, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, यहाँ तक कि फॉर्म भरने का भी तिथि बता दिया गया था।
11: फिलहाल अब ये सम्राट सरकार के सामने चुनौती है कि छात्रों की मांग सुनी जाती है या नहीं।
14: टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
11: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए, वहां लाठीचार्ज की इजाजत क्यों दी गई? रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

देव की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं? शनि देव की पूजा की सावधानियां क्या हैं? और शनि देव की पूजा का सरल तरीका क्या है? क्या है शनि देव की पूजा के नियम और तरीके? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह ने किया ऐलान। सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ, पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन। अमित शाह ने कहा भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय के शपथ पर सस्पेंस। लोक भवन सूत्रों के अनुसार 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी ने असम बंगाल चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल, कहा सरकार ने की चुनाव चोरी, एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, होर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो कर देंगे तबाह। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण कई मानू में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन। देखिए
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पर। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज।
2: आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
3: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
1: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
2: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। ये जीत का महत्व है, ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
1: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बैनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 तक पहुंचा दिया। और इसीलिए बीजेपी ऐलानिया कह रही है कि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है। जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए छेन, सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। भय आउट फॉर साइन।
3: अब इसे बीजेपी और अमित शाह की रणनीति कहें या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की खुन्नस, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु के बीजेपी खेमे में आने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिली बल्कि बंगाल में बीजेपी की आज सरकार बनी। तो आइए हम आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी जिसने आज बंगाल में बीजेपी का सपना साकार किया।
0: 27 नवंबर 2020, अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी के खास सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने थे, आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 1 दिसंबर की रात 4 दिग्गज एक कमरे में जुटते हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची होती है और सुबह सौगत रॉय ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में शुभेंदु ने व्हाट्सएप मैसेज से धमाका कर दिया। उन्होंने सौगत रॉय को लिखा कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर देना।
4: हमारे विश्वासघातक बोल छे, क्या बोल छे? जरा 98 साल तृणमूल प्रतिष्ठार परे अटल जी भारत रत्न তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না।
5: তিনবার হেরেছে, 2-3 বার পরপর হেরেছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ধাক্কা না ধাক্কা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
0: 17 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आधिकारिक तौर पर कहा अलविदा और 19 दिसंबर 2020 को बेदनीपुर के मैदान में भारी जन सैलाब के बीच अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। शुभेंदु ने शाह के पैर छुए और बन गए बीजेपी के सारथी और आज 5.5 साल बाद वही अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्हें बीजेपी की तरफ से बंगाल की कमान सौंप रहे हैं और शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम होंगे। और आज शुभेंदु अधिकारी की पहचान मेदिनीपुर के चाणक्य से बंगाल के किंग मेकर तक होती है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु की असली लड़ाई ममता से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी से है।
6: दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ममता के लिए शुभेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी खूब ले रही थी। ये जुगलबंदी जम भी खूब रही थी। शुभेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वो एक तरह से अघोषित नंबर 2 हो गए थे लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। यहीं से शुभेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और नौबत पार्टी छोड़ने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के इस पूरे चुनाव को भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की लड़ाई बना दिया क्योंकि राजनीति शुभेंदु को विरासत में मिली। आज नतीजा सबके सामने है। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकुली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति की खुशबू भी थी और राजनीति का माहौल भी। दादा खेनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से ऐसी बगावत की कि आजादी से पहले 3 बार उनका घर जलाया गया। पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल गांधी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायक बनते देखा और तभी ठान लिया कि उनका रास्ता भी राजनीति ही है। 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। टीएमसी बनने के 2 साल बाद साल 2000 में शुभेंदु कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे। लेकिन शुभेंदु के जीवन में बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। दरअसल दिसंबर 2006 में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ मिलकर बंगाल के नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब बनाने का फैसला किया। किसान इसके खिलाफ थे और जनवरी 2007 में लेफ्ट सरकार के इस फैसले को जमीन पर लागू होने से रोकने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई, जिसके कमांडर बने शुभेंदु अधिकारी। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ही ममता बनर्जी 3 दशक पुराना वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। नंदीग्राम के बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल का इंचार्ज बनाया। ये इलाका माओवादियों और वामपंथियों का गढ़ था। शुभेंदु ने यहाँ हर बूथ पर टीएमसी की जड़ें मजबूत की और साल 2011 के चुनाव में शुभेंदु ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता बन चुके थे। इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और 34 साल की वामपंथी सरकार का अंत हुआ। सीएम बनी ममता बनर्जी।
7: আপনারা লিখে রাখুন, 500,000 ভোটে যদি মাননীয়কে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।
0: लेकिन ममता का झुकाव अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ हुआ तो शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनकी सादगी, कुर्ता पैजामा, चप्पल जो बंगाल के लोगों को पसंद है, ग्रामीण वोटर से अच्छा कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़, यही उन्हें मास लीडर बनाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्थ का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 85.87 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और PNB, SBI और IDBI बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बंगाल में बीजेपी के सीएम बनने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर पर ये जानकारी दे दें। यह खबर बेरोजगारों की है। गुरुवार को बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अगले ही दिन बिहार की राजधानी पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है, जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों ने मांग की है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, इसमें देर न की जाए।
8: लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए।
9: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टियारी फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
10: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी, सब पर जो है वो लाठियां बरसी है।
11: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है।
12: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि BPSC की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है।
8: बैरिकेडिंग को हवा में उठा दिया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ रही है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। यह तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को उठा दिया गया है।
12: कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है।
8: लाठीचार्ज हो गई है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से, देखिए लाठी चार्ज की जा रही है, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, और तबरतोड़ लाठी चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है।
12: ये प्रदर्शनकारी कोई मनमानी नहीं कर रहे, केवल हक की नौकरी पाने के लिए भर्ती परीक्षा का चाहते है कि विज्ञापन जारी हो, लेकिन मांगे सुनने की जगह लाठी मारी जाती है।
8: इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी हैं और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है।
12: पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र है या कोई छात्रा।
13: आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप
9: देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ टीआरई फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये महिलाओं पे पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना, कोई किसी को कुछ अपवादी वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी चोट लगे, सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे, डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं?
12: दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है।
10: ये टीआरई 4 की परीक्षा दरअसल होनी कब चाहिए थी? अगर शेड्यूल के हिसाब से चलता तो कब ये परीक्षा हो जानी चाहिए?
14: शेड्यूल से अगर होना रहता तो 2-3 साल पहले एग्जामिनेशन हो जाती।
10: 2-3 साल पहले?
14: जी जी। ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ बच्चों से वोट लेते हैं। ये तमाम बिहार के जो है ना छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपको राजगद्दी दिए हैं। आप क्या करते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी नीतीश जी बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे। अरे हम ही लोग तो वोट देकर आपको राजगद्दी दिए हैं, तो आप व्यवस्था, जब वोट आपको लेना था तो उस समय आप क्या कहते थे? सिर्फ नीतीश जी ही कहते थे कि बहुत जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। शिक्षा मंत्री जी पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि अब वैकेंसी आएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को वर्गलाने का काम किया जा रहा है।
15: चार बार मैं खुद यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता है।
16: बार बार अपना डेट देकर अपना बात से मुकर जा रही है। जो विद्यार्थी 2-3 साल से पटना में है, आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वो गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पीटी मेंस का बहाना कर करके टीआरई को टाला जा रहा है, और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहा है।
12: दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहां पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था, वहां प्री और मेंस दो चरण में चुनने का दावा किया जा रहा है।
17: इस सरकार मनमानी कर रही है, टीआरई 4 ही इसका एक्सपेरिमेंट है सरकार का। तो यहाँ पे टीआरई 4 में प्री और मेंस की बात हो रही है, तो ये नहीं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस माहौल पे हुआ है उसको, और आज नोटिफिकेशन जारी चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है कि डेट पर डेट दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अभी बीपीएससी कंट्रोलर बोले थे कि 19 और 20 को हम जारी करेंगे नोटिफिकेशन, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, यहाँ तक कि फॉर्म भरने का भी तिथि बता दिया गया था।
12: फिलहाल अब ये सम्राट सरकार के सामने चुनौती है कि छात्रों की मांग सुनी जाती है या नहीं।
18: टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
12: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए, वहां लाठी चार्ज की इजाजत क्यों दी गई? रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

शिव की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं? शनि देव की पूजा की सावधानियां क्या हैं? और शनि देव की पूजा का सरल तरीका क्या है? क्या है शनि देव की पूजा के नियम और तरीके? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। अमित शाह ने किया ऐलान, सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ, पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन। अमित शाह ने कहा, भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले, सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय के शपथ पर सस्पेंस, लोक भवन सूत्रों के अनुसार 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी ने असम बंगाल चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल, कहा सरकार ने की चुनाव चोरी, एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो कर देंगे तबाह। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा, भव्य तैयारियां।

0: शपथ ग्रहण कई मानों में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन। देखिए,
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पर। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज।
2: आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
3: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार

0: बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दे। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
1: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
0: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
1: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
2: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बैनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 तक पहुंचा दिया। और इसीलिए बीजेपी ऐलानिया कह रही है कि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है। जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে যে গ্যারেন্টি দিয়েছেন সব গ্যারেন্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে, আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। ভয় আউট, ভরসা ইন।
3: अब इसे बीजेपी और अमित शाह की रणनीति कहें या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की खुन्नस, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु के बीजेपी खेमे में आने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिली बल्कि बंगाल में बीजेपी की आज सरकार बनी। तो आइए हम आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी जिसने आज बंगाल में बीजेपी का सपना साकार किया।
0: 27 नवम्बर 2020, अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी के खास सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने थे। आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 1 दिसंबर की रात 4 दिग्गज एक कमरे में जुटते हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची होती है और सुबह सौगत रॉय ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में शुभेंदु ने व्हाट्सएप मैसेज से धमाका कर दिया। उन्होंने सौगत रॉय को लिखा कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर देना।
4: हमारे विश्वासघातक बोलचे क्या बोलचे जरा 98 साल तृणमूल प्रतिष्ठार परे अटल जी भारत रत्न তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না।
5: তিনবার হয়েছে, 2-3 বার পরপর হয়েছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ধাক্কা না ধাক্কা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
0: 17 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आधिकारिक तौर पर कहा अलविदा और 19 दिसंबर 2020 को बेदनीपुर के मैदान में भारी जन सैलाब के बीच अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। शुभेंदु ने शाह के पैर छुए और बन गए बीजेपी के सारथी और आज 5.5 साल बाद वही अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्हें बीजेपी की तरफ से बंगाल की कमान सौंप रहे हैं और शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम होंगे। और आज शुभेंदु अधिकारी की पहचान मेदिनीपुर के चाणक्य से बंगाल के किंग मेकर तक होती है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु की असली लड़ाई ममता से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी से है।
6: दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ममता के लिए शुभेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी खूब ले रही थी। ये जुगलबंदी जम भी खूब रही थी। शुभेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वो एक तरह से अघोषित नंबर 2 हो गए थे लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। यहीं से शुभेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और नौबत पार्टी छोड़ने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के इस पूरे चुनाव को भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की लड़ाई बना दिया क्योंकि राजनीति शुभेंदु को विरासत में मिली। आज नतीजा सबके सामने है। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकुली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति की खुशबू भी थी और राजनीति का माहौल भी। दादा खेनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से ऐसी बगावत की आजादी से पहले 3 बार उनका घर जलाया गया। पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल गांधी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायक बनते देखा और तभी ठान लिया कि उनका रास्ता भी राजनीति ही है। 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। टीएमसी बनने के 2 साल बाद साल 2000 में शुभेंदु कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे। लेकिन शुभेंदु के जीवन में बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। दरअसल दिसंबर 2006 में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ मिलकर बंगाल के नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब बनाने का फैसला किया। किसान इसके खिलाफ थे और जनवरी 2007 में लेफ्ट सरकार के इस फैसले को जमीन पर लागू होने से रोकने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई, जिसके कमांडर बने शुभेंदु अधिकारी। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ही ममता बनर्जी 3 दशक पुराना वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। नंदीग्राम के बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल का इंचार्ज बनाया। ये इलाका माओवादियों और वामपंथियों का गढ़ था। शुभेंदु ने यहाँ हर बूथ पर टीएमसी की जड़ें मजबूत की और साल 2011 के चुनाव में शुभेंदु ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता बन चुके थे। इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और 34 साल की वामपंथी सरकार का अंत हुआ। सीएम बनी ममता बनर्जी।
4: लिखे रखून हाफ लाख भोटे यदि माननीय के हराते ना पारी आमी राजनीति छेड़े देबो।
0: लेकिन ममता का झुकाव अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ हुआ तो शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनकी सादगी, कुर्ता पैजामा, चप्पल जो बंगाल के लोगों को पसंद है, ग्रामीण वोटर से अच्छा कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़, यही उन्हें मास लीडर बनाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्क का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 85.87 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी। और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बंगाल में बीजेपी के सीएम बनने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर पर ये जानकारी दे दें। यह खबर बेरोजगारों की है। गुरुवार को बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अगले ही दिन बिहार की राजधानी पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है, जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों ने मांग की है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, इसमें देर न की जाए।
7: लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए।
8: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, तैयारी हो रही है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
9: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी, सब पर जो है वो लाठियां बरसी है।
10: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है।
11: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है।
7: बैरिकेटिंग को हवा में उठा दिया गया है, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ रही है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को उठा दिया गया है।
11: कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है।
7: लाठीचार्ज हो गई है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है, ये तस्वीर देखिए, इस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से, देखिए लाठी चार्ज की जा रही है, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, और तबाहतोर लाठी चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है।
11: ये प्रदर्शनकारी कोई मनमानी नहीं कर रहे, केवल हक की नौकरी पाने के लिए भर्ती परीक्षा का चाहते है कि विज्ञापन जारी हो, लेकिन मांगे सुनने की जगह लाठी मारी जाती है।
7: इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी हैं और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है और ये देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है।
11: पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र है या कोई छात्रा।
12: आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप
8: देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ टीआरई फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये महिलाओं पे पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना, कोई किसी को कुछ अपवादी वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी चोट लगे, सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए है, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे, डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं?
11: दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है।
9: ये टीआरई 4 की परीक्षा दरअसल होनी कब चाहिए थी? अगर शेड्यूल के हिसाब से चलता तो कब ये परीक्षा हो जानी चाहिए?
13: शेड्यूल से अगर होना रहता तो 2-3 साल पहले एग्जामिनेशन हो जाती।
9: 2-3 साल पहले?
13: जी जी। ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ बच्चों से वोट लेते हैं। ये तमाम बिहार के जो है ना छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपको राजगद्दी दिए हैं। आप क्या करते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी नीतीश जी बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे। अरे हम ही लोग तो वोट देकर आपको राजगद्दी दिए हैं, तो आप व्यवस्था, जब वोट आपको लेना था तो उस समय आप क्या कहते थे? सिर्फ नीतीश जी ही कहते थे कि बहुत जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। शिक्षा मंत्री जी पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि अब वैकेंसी आएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को वरगलाने का काम किया जा रहा है।
14: चार बार मैं खुद यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता है।
15: बार बार अपना डेट देकर अपना बात से मुकर जा रही है। जो विद्यार्थी 2-3 साल से पटना में है, आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वो गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पीटी मेंस का बहाना कर करके टीआरई को टाला जा रहा है, और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहा है।
11: दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहां पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था, वहां प्री और मेंस दो चरण में चुनने का दावा किया जा रहा है।
16: इस सरकार मनमानी कर रही है, टीआरई 4 ही इसका एक्सपेरिमेंट है सरकार का। तो यहाँ पे टीआरई 4 में प्री और मेंस की बात हो रही है, तो ये नहीं जो टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 जिस माहौल पे हुआ है उसको, और आज नोटिफिकेशन जारी चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है कि डेट पर डेट दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अभी बीपीएससी कंट्रोलर बोले थे कि 19 और 20 को हम जारी करेंगे नोटिफिकेशन, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, यहाँ तक कि फॉर्म भरने का भी तिथि बता दिया गया था।
11: फिलहाल अब ये सम्राट सरकार के सामने चुनौती है कि छात्रों की मांग सुनी जाती है या नहीं।
17: टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
11: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए, वहां लाठी चार्ज की इजाजत क्यों दी गई? रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

शनि देव की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं? शनि देव की पूजा की सावधानियां क्या हैं? और शनि देव की पूजा का सरल तरीका क्या है? क्या है शनि देव की पूजा के नियम और तरीके? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह ने किया ऐलान। सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ, पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन। अमित शाह ने कहा भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय के शपथ पर सस्पेंस। लोक भवन सूत्रों के अनुसार 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी ने असम बंगाल चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल, कहा सरकार ने की चुनाव चोरी, एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो कर देंगे तबाह। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण कई मानू में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन। देखिए
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पथ। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज।
2: आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
3: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और लाभ भी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
1: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
2: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
1: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बैनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 तक पहुंचा दिया। और इसीलिए बीजेपी ऐलानिया कह रही है कि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है। जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে যে গ্যারেন্টি দিয়েছেন সব গ্যারেন্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে, আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। ভয় আউট, ভরসা ইন।
3: अब इसे बीजेपी और अमित शाह की रणनीति कहें या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की खुन्नस, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु के बीजेपी खेमे में आने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिली बल्कि बंगाल में बीजेपी की आज सरकार बनी। तो आइए हम आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी जिसने आज बंगाल में बीजेपी का सपना साकार किया।
0: 27 नवम्बर 2020, अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी के खास सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने थे, आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 1 दिसंबर की रात 4 दिग्गज एक कमरे में जुटते हैं, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची होती है और सुबह सौगत रॉय ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में शुभेंदु ने व्हाट्सएप मैसेज से धमाका कर दिया। उन्होंने सौगत रॉय को लिखा कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर देना।
4: हमारे विश्वासघातक बोलचे क्या बोलचे जरा 98 साल तृणमूल प्रतिष्ठार पर अटल जी भारत रत्न তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারতো না।
5: তিনবার হেরেছে, দু তিনবার পর পর হেরেছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ধাক্কা না ধাক্কা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
0: 17 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आधिकारिक तौर पर कहा अलविदा और 19 दिसंबर 2020 को बेदनीपुर के मैदान में भारी जन सैलाब के बीच अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। शुभेंदु ने शाह के पैर छुए और बन गए बीजेपी के सारथी और आज 5.5 साल बाद वही अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्हें बीजेपी की तरफ से बंगाल की कमान सौंप रहे हैं और शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम होंगे। और आज शुभेंदु अधिकारी की पहचान मेदिनीपुर के चाणक्य से बंगाल के किंग मेकर तक होती है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु की असली लड़ाई ममता से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी से है।
6: दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ममता के लिए शुभेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी खूब ले रही थी। ये जुगलबंदी जम भी खूब रही थी। शुभेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वो एक तरह से अघोषित नंबर 2 हो गए थे लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। यहीं से शुभेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और नौबत पार्टी छोड़ने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के इस पूरे चुनाव को भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की लड़ाई बना दिया क्योंकि राजनीति शुभेंदु को विरासत में मिली। आज नतीजा सबके सामने है। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकुली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति की खुशबू भी थी और राजनीति का माहौल भी। दादा खेनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से ऐसी बगावत की आजादी से पहले 3 बार उनका घर जलाया गया। पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल गांधी नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायक बनते देखा और तभी ठान लिया कि उनका रास्ता भी राजनीति ही है। 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। टीएमसी बनने के 2 साल बाद साल 2000 में शुभेंदु कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे। लेकिन शुभेंदु के जीवन में बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। दरअसल दिसंबर 2006 में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ मिलकर बंगाल के नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब बनाने का फैसला किया। किसान इसके खिलाफ थे और जनवरी 2007 में लेफ्ट सरकार के इस फैसले को जमीन पर लागू होने से रोकने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई, जिसके कमांडर बने शुभेंदु अधिकारी। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ही ममता बनर्जी 3 दशक पुराना वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। नंदीग्राम के बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल का इंचार्ज बनाया। ये इलाका माओवादियों और वामपंथियों का गढ़ था। शुभेंदु ने यहाँ हर बूथ पर टीएमसी की जड़ें मजबूत की और साल 2011 के चुनाव में शुभेंदु ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता बन चुके थे। इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और 34 साल की वामपंथी सरकार का अंत हुआ। सीएम बनी ममता बनर्जी।
7: আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।
0: लेकिन ममता का झुकाव अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ हुआ तो शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनकी सादगी, कुर्ता पैजामा, चप्पल जो बंगाल के लोगों को पसंद है, ग्रामीण वोटर से अच्छा कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़, यही उन्हें मास लीडर बनाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्क का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 85.87 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी। और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बंगाल में बीजेपी के सीएम बनने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर पर ये जानकारी दे दें। यह खबर बेरोजगारों की है। गुरुवार को बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अगले ही दिन बिहार की राजधानी पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है, जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों ने मांग की है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, इसमें देर न की जाए।
8: लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए।
9: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, तैयारी हो रही है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
10: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी, सब पर जो है वो लाठियां बरसी है।
11: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है।
12: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है।
8: बैरिकेडिंग को हवा में उठा दिया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ रही है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को उठा दिया गया है।
12: कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है।
8: लाठीचार्ज हो गई है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है, ये तस्वीर देखिए, इस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से, देखिए लाठी चार्ज की जा रही है, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, और तबरतोड़ लाठी चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है।
12: ये प्रदर्शनकारी कोई मनमानी नहीं कर रहे, केवल हक की नौकरी पाने के लिए भर्ती परीक्षा का चाहते है कि विज्ञापन जारी हो, लेकिन मांगे सुनने की जगह लाठी मारी जाती है।
8: इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी हैं और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है और ये देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है।
12: पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र है या कोई छात्रा।
13: आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप
9: देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ टीआरई फोड़ी है। ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ये महिलाओं पे पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांति पूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना, कोई किसी को कुछ अपवादी वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी चोट लगे, सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे, डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं?
12: दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है।
10: ये टीआरई 4 की परीक्षा दरअसल होनी कब चाहिए थी? अगर शेड्यूल के हिसाब से चलता तो कब ये परीक्षा हो जानी चाहिए?
14: शेड्यूल से अगर होना रहता तो 2-3 साल पहले एग्जामिनेशन हो जाती।
10: 2-3 साल पहले?
14: जी जी। ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ बच्चों से वोट लेते हैं। ये तमाम बिहार के जो है ना छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपको राजगद्दी दिए हैं। आप क्या करते हैं? सिर्फ वोट लेते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी नीतीश जी बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे। अरे हम ही लोग तो वोट देकर आपको राजगद्दी दिए हैं। तो आप व्यवस्था, जब वोट आपको लेना था तो उस समय आप क्या कहते थे? सिर्फ नीतीश जी ही कहते थे कि बहुत जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। शिक्षा मंत्री जी पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि अब वैकेंसी आएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वर्गलाने का काम किया जा रहा है।
15: चार बार मैं खुद यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता है।
16: बार बार अपना डेट देकर अपना बात से मुकर जा रही है। जो विद्यार्थी 2-3 साल से पटना में है, आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वे गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पीटी मेंस का बहाना कर करके टीआरई को टाला जा रहा है और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहा है।
12: दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहां पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था, वहां प्री और मेंस दो चरण में चुनने का दावा किया जा रहा है।
17: इस सरकार मनमानी कर रही है, टीआरई 4 ही इसका एक्सपेरिमेंट है सरकार का। तो यहाँ पे टीआरई 4 में प्री और मेंस की बात हो रही है, तो ये नहीं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस माहौल पे हुआ है उसको, और आज नोटिफिकेशन जारी चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है कि डेट पर डेट दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अभी बीपीएससी कंट्रोलर बोले थे कि 19 और 20 को हम जारी करेंगे नोटिफिकेशन, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, यहाँ तक कि फॉर्म भरने का भी तिथि बता दिया गया था।
12: फिलहाल अब ये सम्राट सरकार के सामने चुनौती है कि छात्रों की मांग सुनी जाती है या नहीं।
18: टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
12: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए, वहां लाठी चार्ज की इजाजत क्यों दी गई? रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं? शनि देव की पूजा की सावधानियां क्या हैं? और शनि देव की पूजा का सरल तरीका क्या है? क्या है शनि देव की पूजा के नियम और तरीके? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

0: शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह ने किया ऐलान। सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ, पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन। अमित शाह ने कहा भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय के शपथ पर सस्पेंस। लोक भवन सूत्रों के अनुसार 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी ने असम बंगाल चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल, कहा सरकार ने की चुनाव चोरी, एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, होर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो कर देंगे तबाह। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण कई मानू में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन। देखिए
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पर्व।

0: के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
0: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
2: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
0: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
1: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
0: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा

0: एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है, ये जीत का महत्व है। ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
1: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
2: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बैनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 तक पहुंचा दिया। और इसीलिए बीजेपी ऐलानिया कह रही है कि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढहा चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है, जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए छेन, सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। भय आउट, भरसा इन।
3: अब इसे बीजेपी और अमित शाह की रणनीति कहें या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की खुन्नस, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु के बीजेपी खेमे में आने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिली बल्कि बंगाल में बीजेपी की आज सरकार बनी। तो आइए हम आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी जिसने आज बंगाल में बीजेपी का सपना साकार किया।
0: 27 नवंबर 2020, अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी के खास सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने थे, आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 1 दिसंबर की रात 4 दिग्गज एक कमरे में जुटते हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची होती है और सुबह सौगत रॉय ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में शुभेंदु ने व्हाट्सएप मैसेज से धमाका कर दिया। उन्होंने सौगत रॉय को लिखा कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर देना।
4: আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে, কে বলছে? যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারত রত্ন তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না।
5: তিনবার হয়েছে, দু তিনবার পর পর হয়েছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ধাক্কা না ধাক্কা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
0: 17 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आधिकारिक तौर पर कहा अलविदा और 19 दिसंबर 2020 को बेदनीपुर के मैदान में भारी जन सैलाब के बीच अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। शुभेंदु ने शाह के पैर छुए और बन गए बीजेपी के सारथी और आज 5.5 साल बाद वही अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्हें बीजेपी की तरफ से बंगाल की कमान सौंप रहे हैं और शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम होंगे। और आज शुभेंदु अधिकारी की पहचान मेदिनीपुर के चाणक्य से बंगाल के किंग मेकर तक होती है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु की असली लड़ाई ममता से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी से है।
6: दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ममता के लिए शुभेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी खूब ले रही थी। ये जुगलबंदी जम भी खूब रही थी। शुभेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वो एक तरह से अघोषित नंबर 2 हो गए थे लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। यहीं से शुभेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और नौबत पार्टी छोड़ने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के इस पूरे चुनाव को भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की लड़ाई बना दिया क्योंकि राजनीति शुभेंदु को विरासत में मिली। आज नतीजा सबके सामने है। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकुली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति की खुशबू भी थी और राजनीति का माहौल भी। दादा खेनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से ऐसी बगावत की कि आजादी से पहले 3 बार उनका घर जलाया गया। पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल गांधी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायक बनते देखा और तभी ठान लिया कि उनका रास्ता भी राजनीति ही है। 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। टीएमसी बनने के 2 साल बाद साल 2000 में शुभेंदु कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे। लेकिन शुभेंदु के जीवन में बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। दरअसल दिसंबर 2006 में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ मिलकर बंगाल के नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब बनाने का फैसला किया। किसान इसके खिलाफ थे और जनवरी 2007 में लेफ्ट सरकार के इस फैसले को जमीन पर लागू होने से रोकने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई जिसके कमांडर बने शुभेंदु अधिकारी। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ही ममता बनर्जी 3 दशक पुराना वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। नंदीग्राम के बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल का इंचार्ज बनाया। ये इलाका माओवादियों और वामपंथियों का गढ़ था। शुभेंदु ने यहाँ हर बूथ पर टीएमसी की जड़ें मजबूत की और साल 2011 के चुनाव में शुभेंदु ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता बन चुके थे। इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और 34 साल की वामपंथी सरकार का अंत हुआ। सीएम बनी ममता बनर्जी।
4: আপনারা লিখে রাখুন, 500,000 ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।
0: लेकिन ममता का झुकाव अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ हुआ तो शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनकी सादगी, कुर्ता पैजामा, चप्पल जो बंगाल के लोगों को पसंद है, ग्रामीण वोटर से अच्छा कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़, यही उन्हें मास लीडर बनाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्क का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 85.87 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी। और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बंगाल में बीजेपी के सीएम बनने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर पर ये जानकारी दे दें। यह खबर बेरोजगारों की है। गुरुवार को बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अगले ही दिन बिहार की राजधानी पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है, जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों ने मांग की है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, इसमें देर न की जाए।
7: लाठियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए।
8: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टियारी फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
9: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी सब पर जो है वो लाठियां बरसी है।
10: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है।
11: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है।
7: बैरिकेटिंग को हवा में उठा दिया गया है, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ी है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को उठा दिया गया है।
11: कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है।
7: लाठीचार्ज हो गई है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ गया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है, ये तस्वीर देखिए, इस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से देखिए लाठीचार्ज की जा रही है। ये तस्वीर देखिए और तबाहतोड़ लाठी चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है।
11: ये प्रदर्शनकारी कोई मनमानी नहीं कर रहे, केवल हक की नौकरी पाने के लिए भर्ती परीक्षा का चाहते है कि विज्ञापन जारी हो, लेकिन मांगे सुनने की जगह लाठी मारी जाती है।
7: इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी हैं और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है।
11: पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र है या कोई छात्रा।
12: आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप
13: देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ टीआरडी फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये महिलाओं पे पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांति पूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना, कोई किसी को कुछ अपवादी वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी चोट लगे, सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे, डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं?
11: दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है।
9: ये टीआरई 4 की परीक्षा दरअसल होनी कब चाहिए थी? अगर शेड्यूल के हिसाब से चलता तो कब ये परीक्षा हो जानी चाहिए?
14: शेड्यूल से अगर होना रहता तो 2-3 साल पहले एग्जामिनेशन हो जाती।
9: 2-3 साल पहले?
14: जी जी। ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ बच्चों से वोट लेते हैं। ये तमाम बिहार के जो है ना छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपको राजगद्दी दिए हैं। आप क्या करते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी नीतीश जी बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे। अरे हम ही लोग तो वोट देकर आपको राजगद्दी दिए हैं। तो आप व्यवस्था, जब वोट आपको लेना था तो उस समय आप क्या कहते थे? सिर्फ नीतीश जी ही कहते थे कि बहुत जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। शिक्षा मंत्री जी पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि अब वैकेंसी आएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वरगलाने का काम किया जा रहा है।
15: चार बार मैं खुद यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता है।
16: बार बार अपना डेट देकर अपना बात से मुकर जा रही है। जो विद्यार्थी 2-3 साल से पटना में है, आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वे गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पीटी मेंस का बहाना कर करके टीआरई को टाला जा रहा है, और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहा
11: है। दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहां पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था

0: आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वे गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पीटी मेंस का बहाना कर करके तैयारी को टाला जा रहा है,
1: बिल्कुल।
0: और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहा है।
2: दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहां पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था, वहां प्री और मेंस दो चरण में चुनने का दावा किया जा रहा है।
3: इस सरकार मनमानी कर रही है, तैयारी फोर ही इसका एक्सपेरिमेंट है सरकार का, तो यह दिया गया था।
2: फिलहाल अब ये सम्राट सरकार के सामने चुनौती है कि छात्रों की मांग सुनी जाती है या नहीं।
4: तैयारी फोर के छात्रों पर जो है लाठी चार्ज की गई, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
2: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए, वहां लाठी चार्ज की इजाजत क्यों दी गई। रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

शिव की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं? शनि देव की पूजा की सावधानियां क्या हैं? और शनि देव की पूजा का सरल तरीका क्या है? क्या है शनि देव की पूजा के नियम और तरीके? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। अमित शाह ने किया ऐलान, सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ, पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन। अमित शाह ने कहा भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय के शपथ पर सस्पेंस, लोक भवन सूत्रों के अनुसार 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी ने असम बंगाल चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल, कहा सरकार ने की चुनाव चोरी, एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, होर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो कर देंगे तबाह। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण कई मानू में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन। देखिए
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी।

0: ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पथ। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज।
1: आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
0: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
2: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
0: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
1: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्षद्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
0: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
1: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं, इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
0: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
3: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बैनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 तक पहुंचा दिया। और इसीलिए बीजेपी ऐलानिया कह रही है कि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राजतिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़ कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है। जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए छेन, सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। भय आउट, भरसा इन।
3: अब इसे बीजेपी और अमित शाह की रणनीति कहें या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की खुन्नस, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु के बीजेपी खेमे में आने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिली बल्कि बंगाल में बीजेपी की आज सरकार बनी। तो आइए हम आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी जिसने आज बंगाल में बीजेपी का सपना साकार किया।
0: 27 नवम्बर 2020, अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी के खास सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने थे। आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 1 दिसंबर की रात 4 दिग्गज एक कमरे में जुटते हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची होती है और सुबह सौगत रॉय ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में शुभेंदु ने व्हाट्सएप मैसेज से धमाका कर दिया। उन्होंने सौगत रॉय को लिखा कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर देना।
4: हमारे विश्वासघातक बोलचे क्या बोलचे जरा 98 साले तृणमूल प्रतिष्ठार परे अटल जी भारत रत्न তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না।
5: তিনবার হেরেছে, 2-3 বার পরপর হেরেছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ধাক্কা না ধাক্কা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
0: 17 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आधिकारिक तौर पर कहा अलविदा और 19 दिसंबर 2020 को मेदिनीपुर के मैदान में भारी जन सैलाब के बीच अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। शुभेंदु ने शाह के पैर छुए और बन गए बीजेपी के सारथी और आज 5.5 साल बाद वही अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्हें बीजेपी की तरफ से बंगाल की कमान सौंप रहे हैं और शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम होंगे। और आज शुभेंदु अधिकारी की पहचान मेदिनीपुर के चाणक्य से बंगाल के किंग मेकर तक होती है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु की असली लड़ाई ममता से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी से है।
6: दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ममता के लिए शुभेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी खूब ले रही थी। ये जुगलबंदी जम भी खूब रही थी। शुभेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वो एक तरह से अघोषित नंबर दो हो गए थे लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर दो की हैसियत दे दी। यहीं से शुभेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और नौबत पार्टी छोड़ने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के इस पूरे चुनाव को भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की लड़ाई बना दिया क्योंकि राजनीति शुभेंदु को विरासत में मिली। आज नतीजा सबके सामने है। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकुली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति की खुशबू भी थी और राजनीति का माहौल भी। दादा खेनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से ऐसी बगावत की कि आजादी से पहले 3 बार उनका घर जलाया गया। पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल गांधी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायक बनते देखा और तभी ठान लिया कि उनका रास्ता भी राजनीति ही है। 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। टीएमसी बनने के 2 साल बाद साल 2000 में शुभेंदु कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे। लेकिन शुभेंदु के जीवन में बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। दरअसल दिसंबर 2006 में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ मिलकर बंगाल के नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब बनाने का फैसला किया। किसान इसके खिलाफ थे और जनवरी 2007 में लेफ्ट सरकार के इस फैसले को जमीन पर लागू होने से रोकने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई जिसके कमांडर बने शुभेंदु अधिकारी। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ही ममता बनर्जी 3 दशक पुराना वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। नंदीग्राम के बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल का इंचार्ज बनाया। ये इलाका माओवादियों और वामपंथियों का गढ़ था। शुभेंदु ने यहाँ हर बूथ पर टीएमसी की जड़ें मजबूत की और साल 2011 के चुनाव में शुभेंदु ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता बन चुके थे। इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और 34 साल की वामपंथी सरकार का अंत हुआ। सीएम बनी ममता बनर्जी।
4: আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।
0: लेकिन ममता का झुकाव अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ हुआ तो शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनकी सादगी कुर्ता पैजामा चप्पल जो बंगाल के लोगों को पसंद है। ग्रामीण वोटर से अच्छा कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़ यही उन्हें मास लीडर बनाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्थ का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 85.87 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बंगाल में बीजेपी के सीएम बनने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर पर ये जानकारी दे दें। यह खबर बेरोजगारों की है। गुरुवार को बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अगले ही दिन बिहार की राजधानी पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है, जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों ने मांग की है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, इसमें देर न की जाए।
7: लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए।
8: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टियारी फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
9: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी सब पर जो है वो लाठियां बरसी है,
10: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है।
11: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है।
7: बैरिकेटिंग को हवा में उठा दिया गया है, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ी है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को उठा दिया गया है।
11: कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है।
7: लाठीचार्ज हो गई है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से, देखिए लाठीचार्ज की जा रही है, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए और तबरतोड़ लाठी चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है।
11: ये प्रदर्शनकारी कोई मनमानी नहीं कर रहे, केवल हक की नौकरी पाने के लिए भर्ती परीक्षा का चाहते है कि विज्ञापन जारी हो, लेकिन मांगे सुनने की जगह लाठी मारी जाती है।
7: इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी है और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है और ये देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है।
11: पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र है या कोई छात्रा।
12: आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप
13: देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टीआरई फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये महिलाओं पे पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना, कोई किसी को कुछ अपवाद वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी चोट लगे, सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे, डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं?
11: दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है।
9: ये टीआरई 4 की परीक्षा दरअसल होनी कब चाहिए थी? अगर शेड्यूल के हिसाब से चलता तो कब ये परीक्षा हो जानी चाहिए?
14: सर शेड्यूल से अगर होना रहता तो 2-3 साल पहले एग्जामिनेशन हो जाती।
9: 2-3 साल पहले?
14: जी जी। ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ बच्चों से वोट लेते हैं। ये तमाम बिहार के जो है ना छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपको राजगद्दी दिए हैं। आप क्या करते हैं? सिर्फ वोट लेते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी नीतीश जी बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे। अरे हम ही लोग तो वोट देकर आपको राजगद्दी दिए हैं, तो आप व्यवस्था, जब वोट आपको लेना था तो उस समय आप क्या कहते थे? सिर्फ नीतीश जी ही कहते थे कि बहुत जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। शिक्षा मंत्री जी पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि अब वैकेंसी आएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को वरगलाने का काम किया जा रहा है।
15: चार बार मैं खुद यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता है।
16: बार बार अपना डेट देकर अपना बात से मुकर जा रही है। जो विद्यार्थी 2-3 साल से पटना में है, आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वो गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पीटी मेंस का बहाना कर करके टीआरई को टाला जा रहा है, और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहा है।
11: दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहां पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था, वहां प्री और मेंस दो चरण में चुनने का दावा किया जा रहा है।
17: इस सरकार मनमानी कर रही है, टीआरई 4 ही इसका एक्सपेरिमेंट है सरकार का। तो यहाँ पे टीआरई 4 में प्री और मेंस की बात हो रही है, तो ये नहीं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस माहौल पे हुआ है उसको, और आज नोटिफिकेशन जारी चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है कि डेट पर डेट दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अभी बीपीएससी कंट्रोलर बोले थे कि 19 और 20 को हम जारी करेंगे नोटिफिकेशन, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, यहाँ तक कि फॉर्म भरने का भी तिथि बता दिया गया था।
11: फिलहाल अब ये सम्राट सरकार के सामने चुनौती है कि छात्रों की मांग सुनी जाती है या नहीं।
18: टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठी चार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
11: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए, वहां लाठी चार्ज की इजाजत क्यों दी गई? रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

देव की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं? शनि देव की पूजा की सावधानियां क्या हैं? और शनि देव की पूजा का सरल तरीका क्या है? क्या है शनि देव की पूजा के नियम और तरीके? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह ने किया ऐलान। सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ, पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन। अमित शाह ने कहा भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय के शपथ पर सस्पेंस। लोक भवन सूत्रों के अनुसार 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी ने असम बंगाल चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल, कहा सरकार ने की चुनाव चोरी, एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो कर देंगे तबाह। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण कई मानू में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन। देखिए
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पथ। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज।
2: आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं।

0: और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
2: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
0: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
1: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
0: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
1: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़।

0: पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
1: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बैनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं, जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 तक पहुंचा दिया। और इसीलिए बीजेपी ऐलानिया कह रही है कि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़ कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढहा चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है, जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে যে গ্যারান্টি দিয়েছেন সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে, আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। ভয় আউট, ভরসা ইন।
3: अब इसे बीजेपी और अमित शाह की रणनीति कहें या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की खुन्नस, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु के बीजेपी खेमे में आने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिली बल्कि बंगाल में बीजेपी की आज सरकार बनी। तो आइए हम आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी जिसने आज बंगाल में बीजेपी का सपना साकार किया।
0: 27 नवंबर 2020, अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी के खास सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने थे, आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 1 दिसंबर की रात 4 दिग्गज एक कमरे में जुटते हैं, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची होती है और सुबह सौगत रॉय ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में शुभेंदु ने व्हाट्सएप मैसेज से धमाका कर दिया। उन्होंने सौगत रॉय को लिखा कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर देना।
4: আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে, কে বলছে? যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারত রত্ন তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না।
5: তিনবার হয়েছে, 2-3 বার পরপর হয়েছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতা আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
0: 17 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आधिकारिक तौर पर कहा अलविदा और 19 दिसंबर 2020 को मेदिनीपुर के मैदान में भारी जन सैलाब के बीच अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। शुभेंदु ने शाह के पैर छुए और बन गए बीजेपी के सारथी और आज 5.5 साल बाद वही अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्हें बीजेपी की तरफ से बंगाल की कमान सौंप रहे हैं और शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम होंगे। और आज शुभेंदु अधिकारी की पहचान मेदिनीपुर के चाणक्य से बंगाल के किंग मेकर तक होती है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु की असली लड़ाई ममता से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी से है।
6: दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ममता के लिए शुभेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी खूब ले रही थी। ये जुगलबंदी जम भी खूब रही थी। शुभेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वो एक तरह से अघोषित नंबर 2 हो गए थे लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। यहीं से शुभेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और नौबत पार्टी छोड़ने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के इस पूरे चुनाव को भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की लड़ाई बना दिया क्योंकि राजनीति शुभेंदु को विरासत में मिली। आज नतीजा सबके सामने है। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकोली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति की खुशबू भी थी और राजनीति का माहौल भी। दादा खेनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से ऐसी बगावत की आजादी से पहले 3 बार उनका घर जलाया गया। पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल गांधी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायक बनते देखा और तभी ठान लिया कि उनका रास्ता भी राजनीति ही है। 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। टीएमसी बनने के 2 साल बाद साल 2000 में शुभेंदु कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे। लेकिन शुभेंदु के जीवन में बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। दरअसल दिसंबर 2006 में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ मिलकर बंगाल के नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब बनाने का फैसला किया। किसान इसके खिलाफ थे और जनवरी 2007 में लेफ्ट सरकार के इस फैसले को जमीन पर लागू होने से रोकने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई जिसके कमांडर बने शुभेंदु अधिकारी। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ही ममता बनर्जी 3 दशक पुराना वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। नंदीग्राम के बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल का इंचार्ज बनाया। ये इलाका माओवादियों और वामपंथियों का गढ़ था। शुभेंदु ने यहाँ हर बूथ पर टीएमसी की जड़ें मजबूत की और साल 2011 के चुनाव में शुभेंदु ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता बन चुके थे। इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और 34 साल की वामपंथी सरकार का अंत हुआ। सीएम बनी ममता बनर्जी।
4: लिखे रखून हाफ लाख भोटे जदि माननीय के हराते ना पारि आमी राजनीति छेड़े देब।
0: लेकिन ममता का झुकाव अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ हुआ तो शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनकी सादगी कुर्ता पैजामा चप्पल जो बंगाल के लोगों को पसंद है। ग्रामीण वोटर से अच्छा कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़ यही उन्हें मास लीडर बनाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्क का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 85.87 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी। और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बंगाल में बीजेपी के सीएम बनने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर पर ये जानकारी दे दें। यह खबर बेरोजगारों की है। गुरुवार को बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अगले ही दिन बिहार की राजधानी पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है, जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों ने मांग की है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, इसमें देर न की जाए।
7: लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए।
8: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टियारी फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
9: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी सब पर जो है वो लाठियां बरसी है,
10: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है।
11: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है।
7: बैरिकेटिंग को हवा में उठा दिया गया है, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ी है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को उठा दिया गया है।
11: कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है।
7: लाठीचार्ज हो गई है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से देखिए लाठीचार्ज की जा रही है। ये तस्वीर देखिए और तबाहतोड़ लाठी चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है।
11: ये प्रदर्शनकारी कोई मनमानी नहीं कर रहे, केवल हक की नौकरी पाने के लिए भर्ती परीक्षा का चाहते हैं कि विज्ञापन जारी हो, लेकिन मांगे सुनने की जगह लाठी मारी जाती है।
7: इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी हैं और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है।
11: पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र है या कोई छात्रा।
12: आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप
13: देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ टियारी फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये महिलाओं पे पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांति पूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना, कोई किसी को कुछ अपवादी वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी चोट लगे, सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे, डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं?
11: दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है।
9: ये टीआरई 4 की परीक्षा दरअसल होनी कब चाहिए थी? अगर शेड्यूल के हिसाब से चलता तो कब ये परीक्षा हो जानी चाहिए?
14: सर शेड्यूल से अगर होना रहता तो 2-3 साल पहले एग्जामिनेशन हो जाती।
9: 2-3 साल पहले?
14: जी जी। ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ बच्चों से वोट लेते हैं। ये तमाम बिहार के जो है ना छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपको राजगद्दी दिए हैं। आप क्या करते हैं? सिर्फ वोट लेते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी नीतीश जी बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे। अरे हम ही लोग तो वोट देकर आपको राजगद्दी दिए हैं, तो आप व्यवस्था, जब वोट आपको लेना था तो उस समय आप क्या कहते थे? सिर्फ नीतीश जी ही कहते थे कि बहुत जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। शिक्षा मंत्री जी पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि अब वैकेंसी आएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को वरगलाने का काम किया जा रहा है।
15: चार बार मैं खुद यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता है।
16: बार बार अपना डेट देकर अपना बात से मुकर जा रही है। जो विद्यार्थी 2-3 साल से पटना में है, आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वे गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पीटी मेंस का बहाना कर करके तैयारी को टाला जा रहा है,
11: बिल्कुल।
16: और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहा है।
11: दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहाँ पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था, वहाँ प्री और मेंस दो चरण में चुनने का दावा किया जा रहा है।
17: इस सरकार मनमानी कर रही है, टीआरई 4 ही इसका एक्सपेरिमेंट है सरकार का। तो यहाँ पे टीआरई 4 में प्री और मेंस की बात हो रही है, तो ये नहीं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस माहौल पे हुआ है उसको, और आज नोटिफिकेशन जारी चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है कि डेट पर डेट दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अभी बीपीएससी कंट्रोलर बोले थे कि 19 और 20 को हम जारी करेंगे नोटिफिकेशन, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, यहाँ तक कि फॉर्म भरने का भी तिथि बता दिया गया था।
11: फिलहाल अब ये सम्राट सरकार के सामने चुनौती है कि छात्रों की मांग सुनी जाती है या नहीं।
18: टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
11: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए, वहां लाठीचार्ज की इजाजत क्यों दी गई? रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं? शनि देव की पूजा की सावधानियां क्या हैं? और शनि देव की पूजा का सरल तरीका क्या है? क्या है शनि देव की पूजा के नियम और तरीके? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह ने किया ऐलान। सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ, पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन, अमित शाह ने कहा भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय के शपथ पर सस्पेंस, लोक भवन सूत्रों के अनुसार 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी ने असम बंगाल चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल, कहा सरकार ने की चुनाव चोरी, एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो कर देंगे तबाह। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण कई मानू में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन। देखिए
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पथ। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज।
2: आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
3: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
1: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
2: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
1: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बैनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 तक पहुंचा दिया। और इसीलिए बीजेपी ऐलानिया कह रही है कि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़ कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है। जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए छेन, सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। भय आउट, भरसा इन।
3: अब इसे बीजेपी और अमित शाह की रणनीति कहें या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की खुन्नस, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु के बीजेपी खेमे में आने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिली बल्कि बंगाल में बीजेपी की आज सरकार बनी। तो आइए हम आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी जिसने आज बंगाल में बीजेपी का सपना साकार किया।
0: 27 नवंबर 2020, अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी के खास सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने थे। आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 1 दिसंबर की रात 4 दिग्गज एक कमरे में जुटते हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची होती है और सुबह सौगत रॉय ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में शुभेंदु ने व्हाट्सएप मैसेज से धमाका कर दिया। उन्होंने सौगत रॉय को लिखा कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर देना।
4: हमारे विश्वासघातक बोलचे के बोलचे जरा 98 साले तृणमूल प्रतिष्ठार परे अटल जी भारत रत्न তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না।
5: তিনবার হয়েছে, 2-3 বার পরপর হয়েছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাতি নষ্ট, অতি লোভের এটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ধাক্কা না ধাক্কা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
0: 17 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आधिकारिक तौर पर कहा अलविदा और 19 दिसंबर 2020 को मेदिनीपुर के मैदान में भारी जन सैलाब के बीच अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। शुभेंदु ने शाह के पैर छुए और बन गए बीजेपी के सारथी और आज 5.5 साल बाद वही अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्हें बीजेपी की तरफ से बंगाल की कमान सौंप रहे हैं और शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम होंगे। और आज शुभेंदु अधिकारी की पहचान मेदिनीपुर के चाणक्य से बंगाल के किंग मेकर तक होती है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु की असली लड़ाई ममता से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी से है।
6: दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ममता के लिए शुभेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी खूब ले रही थी। ये जुगलबंदी जम भी खूब रही थी। शुभेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वो एक तरह से अघोषित नंबर 2 हो गए थे लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। यहीं से शुभेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और नौबत पार्टी छोड़ने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के इस पूरे चुनाव को भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की लड़ाई बना दिया क्योंकि राजनीति शुभेंदु को विरासत में मिली। आज नतीजा सबके सामने है। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकुली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति की खुशबू भी थी और राजनीति का माहौल भी। दादा खेनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से ऐसी बगावत की कि आजादी से पहले 3 बार उनका घर जलाया गया। पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल गांधी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायक बनते देखा और तभी ठान लिया कि उनका रास्ता भी राजनीति ही है। 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। टीएमसी बनने के 2 साल बाद साल 2000 में शुभेंदु कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे। लेकिन शुभेंदु के जीवन में बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। दरअसल दिसंबर 2006 में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ मिलकर बंगाल के नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब बनाने का फैसला किया। किसान इसके खिलाफ थे और जनवरी 2007 में लेफ्ट सरकार के इस फैसले को जमीन पर लागू होने से रोकने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई, जिसके कमांडर बने शुभेंदु अधिकारी। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ही ममता बनर्जी 3 दशक पुराना वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। नंदीग्राम के बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल का इंचार्ज बनाया। ये इलाका माओवादियों और वामपंथियों का गढ़ था। शुभेंदु ने यहाँ हर बूथ पर टीएमसी की जड़ें मजबूत की और साल 2011 के चुनाव में शुभेंदु ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता बन चुके थे। इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और 34 साल की वामपंथी सरकार का अंत हुआ। सीएम बनी ममता बनर्जी।
4: लिखे रखून हाफ लाख भोटे जदि माननीय के हराते ना पारि आमी राजनीति छेड़े देब।
0: लेकिन ममता का झुकाव अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ हुआ तो शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनकी सादगी कुर्ता पैजामा चप्पल जो बंगाल के लोगों को पसंद है। ग्रामीण वोटर से अच्छा कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़ यही उन्हें मास लीडर बनाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्थ का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 85.87 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी। और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बंगाल में बीजेपी के सीएम बनने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर पर ये जानकारी दे दें। यह खबर बेरोजगारों की है। गुरुवार को बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अगले ही दिन बिहार की राजधानी पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है, जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों ने मांग की है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, इसमें देर न की जाए।
7: लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए।
8: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टियारी फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
9: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी, सब पर जो है वो लाठियां बरसी है।
10: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है।
11: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है।
7: बैरिकेटिंग को हवा में उठा दिया गया है, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ रही है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को उठा दिया गया है।
11: कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है।
7: लाठीचार्ज हो गई है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से देखिए लाठी चार्ज की जा रही है। ये तस्वीर देखिए और तबाहतोड़ लाठी चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है।

0: जो होनी थी, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
1: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए, वहां लाठीचार्ज की इजाजत क्यों दी गई? रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

शनि देव की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं, शनि देव की पूजा की सावधानियां क्या हैं, और शनि देव की पूजा का सरल तरीका क्या है, क्या है शनि देव की पूजा के नियम और तरीके, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह ने किया ऐलान। सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ, पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन। अमित शाह ने कहा, भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले, सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय के शपथ पर सस्पेंस। लोक भवन सूत्रों के अनुसार 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी ने असम बंगाल चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल, कहा सरकार ने की चुनाव चोरी, एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, होर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो कर देंगे तबाह। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण कई मानू में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन। देखिए,
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पर। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज। आप

0: लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
0: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
2: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
0: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
1: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
0: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है, ये जीत का महत्व है। ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा, ये ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
1: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
3: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बैनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 तक पहुंचा दिया। और इसीलिए बीजेपी ऐलानिया कह रही है कि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है। जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে যে গ্যারেন্টি দিয়েছেন সব গ্যারেন্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে, আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। ভয় আউট, ভরসা ইন।
3: अब इसे बीजेपी और अमित शाह की रणनीति कहें या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की खुन्नस, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु के बीजेपी खेमे में आने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिली बल्कि बंगाल में बीजेपी की आज सरकार बनी। तो आइए हम आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी जिसने आज बंगाल में बीजेपी का सपना साकार किया।
0: 27 नवम्बर 2020, अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी के खास सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने थे, आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 1 दिसंबर की रात 4 दिग्गज एक कमरे में जुटते हैं, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची होती है और सुबह सौगत रॉय ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में शुभेंदु ने व्हाट्सएप मैसेज से धमाका कर दिया। उन्होंने सौगत रॉय को लिखा कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर देना।
4: আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে, কে বলছে? যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারত রত্ন তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারতো না।
5: তিনবার হেরেছে, দু তিনবার পর পর হেরেছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ধাক্কা না ধাক্কা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
0: 17 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आधिकारिक तौर पर कहा अलविदा और 19 दिसंबर 2020 को बेदनीपुर के मैदान में भारी जन सैलाब के बीच अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। शुभेंदु ने शाह के पैर छुए और बन गए बीजेपी के सारथी और आज 5.5 साल बाद वही अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्हें बीजेपी की तरफ से बंगाल की कमान सौंप रहे हैं और शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम होंगे। और आज शुभेंदु अधिकारी की पहचान मेदिनीपुर के चाणक्य से बंगाल के किंग मेकर तक होती है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु की असली लड़ाई ममता से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी से है।
6: दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ममता के लिए शुभेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी खूब ले रही थी। ये जुगलबंदी जम भी खूब रही थी। शुभेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वो एक तरह से अघोषित नंबर 2 हो गए थे लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। यहीं से शुभेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और नौबत पार्टी छोड़ने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के इस पूरे चुनाव को भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की लड़ाई बना दिया क्योंकि राजनीति शुभेंदु को विरासत में मिली। आज नतीजा सबके सामने है। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकुली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति की खुशबू भी थी और राजनीति का माहौल भी। दादा खेनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से ऐसी बगावत की आजादी से पहले 3 बार उनका घर जलाया गया। पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल गांधी नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायक बनते देखा और तभी ठान लिया कि उनका रास्ता भी राजनीति ही है। 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। टीएमसी बनने के 2 साल बाद साल 2000 में शुभेंदु कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे। लेकिन शुभेंदु के जीवन में बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। दरअसल दिसंबर 2006 में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ मिलकर बंगाल के नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब बनाने का फैसला किया। किसान इसके खिलाफ थे और जनवरी 2007 में लेफ्ट सरकार के इस फैसले को जमीन पर लागू होने से रोकने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई जिसके कमांडर बने शुभेंदु अधिकारी। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ही ममता बनर्जी 3 दशक पुराना वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। नंदीग्राम के बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल का इंचार्ज बनाया। ये इलाका माओवादियों और वामपंथियों का गढ़ था। शुभेंदु ने यहाँ हर बूथ पर टीएमसी की जड़ें मजबूत की और साल 2011 के चुनाव में शुभेंदु ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता बन चुके थे। इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और 34 साल की वामपंथी सरकार का अंत हुआ। सीएम बनी ममता बनर्जी।
4: আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।
0: लेकिन ममता का झुकाव अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ हुआ तो शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनकी सादगी, कुर्ता पैजामा, चप्पल जो बंगाल के लोगों को पसंद है, ग्रामीण वोटर से अच्छा कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़, यही उन्हें मास लीडर बनाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्क का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 85.87 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी। और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बंगाल में बीजेपी के सीएम बनने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर पर ये जानकारी दे दें। यह खबर बेरोजगारों की है। गुरुवार को बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अगले ही दिन बिहार की राजधानी पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है, जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों ने मांग की है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, इसमें देर न की जाए।
7: लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए।
8: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, तियारी फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
9: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी, सब पर जो है वो लाठियां बरसी है।
10: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है।
11: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है।
7: बैरिकेटिंग को हवा में उठा दिया गया है, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ी है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को उठा दिया गया है।
11: कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है।
7: लाठीचार्ज हो गई है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है, ये तस्वीर देखिए, इस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से देखिए लाठी चार्ज की जा रही है। ये तस्वीर देखिए और तबरतोड़ लाठी चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है।
11: ये प्रदर्शनकारी कोई मनमानी नहीं कर रहे, केवल हक की नौकरी पाने के लिए भर्ती परीक्षा का चाहते है कि विज्ञापन जारी हो, लेकिन मांगे सुनने की जगह लाठी मारी जाती है।
7: इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी हैं और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है।
11: पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र है या कोई छात्रा।
12: आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप
8: देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ टीआरई फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये महिलाओं पे पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांति पूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना, कोई किसी को कुछ अपवादी वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी चोट लगे, सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे, डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं?
11: दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है।
9: ये टीआरई 4 की परीक्षा दरअसल होनी कब चाहिए थी? अगर शेड्यूल के हिसाब से चलता तो कब ये परीक्षा हो जानी चाहिए?
13: शेड्यूल से अगर होना रहता तो 2-3 साल पहले एग्जामिनेशन हो जाती।
9: 2-3 साल पहले?
13: जी जी। ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ बच्चों से वोट लेते हैं। ये तमाम बिहार के जो है ना छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपको राजगद्दी दिए हैं। आप क्या करते हैं? सिर्फ वोट लेते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी नीतीश जी बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे। अरे हम ही लोग तो वोट देकर आपको राजगद्दी दिए हैं। तो आप व्यवस्था, जब वोट आपको लेना था तो उस समय आप क्या कहते थे? सिर्फ नीतीश जी ही कहते थे कि बहुत जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। शिक्षा मंत्री जी पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि अब वैकेंसी आएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वर्गलाने का काम किया जा रहा है।
14: चार बार मैं खुद यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता है।
15: बार बार अपना डेट देकर अपना बात से मुकर जा रही है। जो विद्यार्थी 2-3 साल से पटना में है, आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वे गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पीटी मेंस का बहाना कर करके टीआरई को टाला जा रहा है, और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहा है।
11: दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहाँ पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था, वहाँ प्री और मेंस दो चरण में चुनने का दावा किया जा रहा है।
16: इस सरकार मनमानी कर रही है, टीआरई 4 ही इसका एक्सपेरिमेंट है सरकार का। तो यहाँ पे टीआरई 4 में प्री और मेंस की बात हो रही है, तो ये नहीं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस माहौल पे हुआ है उसको, और आज नोटिफिकेशन जारी चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है कि डेट पर डेट दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अभी बीपीएससी कंट्रोलर बोले थे कि 19 और 20 को हम जारी करेंगे नोटिफिकेशन, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, यहाँ तक कि फॉर्म भरने का भी तिथि बता दिया गया था।
11: फिलहाल अब ये सम्राट सरकार के सामने चुनौती है कि छात्रों की मांग सुनी जाती है या नहीं।
17: टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
11: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए, वहां लाठी चार्ज की इजाजत क्यों दी गई? रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

देव की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं? शनि देव की पूजा की सावधानियां क्या हैं? और शनि देव की पूजा का सरल तरीका क्या है? क्या है शनि देव की पूजा के नियम और तरीके? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह ने किया ऐलान। सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ, पीएम मोदी होंगे मेहमान। सभी 8 प्रस्तावकों ने शुभेंदु के नाम का किया समर्थन, अमित शाह ने कहा भयमुक्त करेंगे बंगाल। शुभेंदु बोले सबका साथ सबका विश्वास पर करेंगे काम। तमिलनाडु में विजय के शपथ पर सस्पेंस, लोक भवन सूत्रों के अनुसार 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। गुरुग्राम सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी ने असम बंगाल चुनाव के परिणाम पर उठाए सवाल, कहा सरकार ने की चुनाव चोरी, एसआईआर में हटाए लाखों नाम। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट, ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो कर देंगे तबाह। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण कई मानू में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे 9 तारीख हो या फिर शुभेंदु अधिकारी का सिलेक्शन। देखिए,
1: अमित शाह ने लगाई शुभेंदु के नाम पर मोहर।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: बंगाल में बीजेपी सरकार के बॉस हैं शुभेंदु। नौ मई को मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी का बंगाल पथ। बंगाल में बीजेपी राज, शुभेंदु के सिर ताज।
2: आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को दो बार चुनावी दंगल में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के